क्या है। बहनों, आप देखते हैं आपके आसपास में कुछ लोग बैंक में नौकरी करते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई किसी कारखाने में कार्य करता है। तो यह नौकरी करना जीविका कमाने का एक साधन है। तो इस तरह के जीविका कमाने को हम कहते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जो एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं या किसी ने कोई कारखाना खोला हुआ है। तो जीविका कमाने के इस साधन को हम कहते हैं स्वरोजगार या व्यापार। ये तो हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और पैसे से ज्यादा जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा विश्वास होता है। एक सफल गृहिणी या एक महिला जो आत्मनिर्भर है, वह उस आत्मनिर्भरता से पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेती है। आज के समय में सरकारी नौकरियां काफी कम हैं, और हमारी बहनें जो गांव में रहती हैं कम पढ़ी लिखी हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो छोटी मोटी नौकरी या जीविका का कोई साधन आसानी से बनाया जा सकता है, पर गांव में रहने के कारण छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो हमारी बहनों के पास में अपना कार्य शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि गांव में आप देखेंगे काम भी नहीं मिलता आजकल। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रोजगार का साधन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें छोटा मोटा कार्य तो करना पड़ेगा, और वो जो कार्य है वो एक तरह से हमें व्यापार करने या उद्यमी बनने की तरफ अग्रसर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मन में पहली चीज अब ये आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आत्मनिर्भर होने के लिए। अब वो करना जो है वो कोई ना कोई आपको व्यापार करना है, या कोई ना कोई आपको आत्मनिर्भर होने के लिए स्वरोजगार शुरुआत करनी है। तो स्वरोजगार की आप जो शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते समय सबसे पहले हम यह समझें कि जो एक सफल उद्यमी है, जो एक सफल व्यापारी है, उसमें क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह एक व्यापारी बन पाया या एक उद्यमी बन पाया, ठीक है। तो मैंने एक पहला चार्ट बनाया यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए कि एक सफल उद्यमी में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहली जो चीज है जो हमारी बहनों में भी है, वो होती है पहल। पहल से हमारा क्या मतलब है? जैसे ही हमारे आसपास आप देखते हो, रोजाना हमारे मन में कई तरह के नए नए विचार आते हैं, ठीक है। वो विचार आने के बाद हम उनके बारे में थोड़ा सोचते हैं और फिर हिचक के उनको कार्यान्वित नहीं करते, ठीक है। अब एक जो सफल व्यापारी है, अगर उसके सामने कोई विचार आता है तो विचार आने के बाद वह उसके बारे में चीजों को समझता है, और समझने के बाद वह ये देखता है कि यदि उससे कोई बिजनेस बनाया जा सकता है, कोई व्यापार किया जा सकता है, तो वह उसके तरफ अग्रसर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज होती है पहल। तो हमारी बहनें जो अब यहां बैठी हैं, अगर आपके मन में कोई भी विचार है, कुछ बहनों को ऐसा लगता होगा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, या पापड़ बहुत अच्छे बनाती हैं, ठीक है, या चटनी अच्छी बनाती हैं। इसके अलावा हमारी बहनों के पास में सिलाई कढ़ाई बुनाई या गांव के अंदर मिट्टी के बर्तन, या हम कहें मिट्टी के खिलौने, या आजकल साज सज्जा की जो चीजें हैं जो गांव की महिलाओं को बचपन से सिखाई जाती हैं, जो उनको आती हैं। तो इस तरह का अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार है जहां आपको ये लगता है कि उसमें आप काफी अच्छे हैं, तो पहल अगर आप करेंगे तो एक सफल व्यापारी की तरफ यह आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। एक सफल उद्यमी का दूसरा जो सबसे गुण होता है वह होता है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। अब देखो, आप कोई भी व्यापार करते हैं, सबकी इच्छा यह होती है कि व्यापार आपका सफल हो, पर ऐसा होता नहीं है। हर व्यापार सफल नहीं होता, फिर भी हमारे अंदर जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि हम जोखिम ही नहीं उठाएंगे,
यदि हम किसी भी कार्य में जोखिम नहीं उठाएंगे तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वह है हमारा जोखिम उठाना, क्योंकि जोखिम उठाने से ही कार्य होगा। फिर होता है अपने अनुभव से सीखना। व्यापार करते समय, कोई भी कार्य करते समय गलतियां तो होती हैं, ठीक है। अगर उन गलतियों से हम नहीं सीखेंगे तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा नुकसान जो होगा उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जोखिम उठाने की शक्ति काफी कम है। तो इसलिए हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर यदि दोबारा वह गलती फिर से होगी तो यह हमारी बहुत भारी गलती होगी। फिर प्रेरणा, हमारे अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए। मान लीजिए हम बहनों के बीच में कोई एक बहन ऐसी है जो कुछ कार्य करती है, कार्य करना मतलब वो आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसा कार्य करती है जिससे धन कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, तो हमें उससे प्रेरित होना चाहिए। अगर आप उससे प्रेरित होंगे तभी आपके मन में यह इच्छा जागेगी कि मुझे भी उस बहन की तरह आत्मनिर्भर होना है। इसके अलावा आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में वही सफल होता है जो अपने पर विश्वास करता है। यदि आप अपने पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए दूसरा कोई व्यक्ति आप पर क्यों विश्वास करेगा, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो आप अपने पर विश्वास पैदा कीजिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप यह कार्य कर सकती हैं। व्यापार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक महिला जो सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे घर को संभाल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, खाना बना, आप देखो आप कार्य देखिए, एक महिला की सुबह से आप दिनचर्या की शुरुआत करें आखिर तक शाम तक देखें तो एक महिला इतना कार्य करती है कि अगर उसी कार्य को व्यापार के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा आत्मनिर्भरता होने का जरिया बन सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वह होता है निर्णय लेने की योग्यता, ठीक है, या निर्णय लेने की क्षमता। आप देखेंगे आपके जीवन में या कोई भी कार्य करते समय काफी बार ऐसे मौके आते हैं जहां आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। यदि आप उस निर्णय लेने की में क्षमता रखते हैं तो निर्णय लिया, आपका निर्णय गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखो धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके सभी निर्णय सही होंगे। निर्णय हमारे गलत भी हो सकते हैं, निर्णय हमारे सही भी हो सकते हैं, बट हमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, हमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास होना चाहिए। तो एक सफल जो व्यवसायी है उसमें यह गुण तो सबसे पहले है, और मेरे हिसाब से हमारी बहनें जो यहां बैठी हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, बट उन्हें उनको बस अपने अंदर झांकना है, उनको अपने अंदर से प्रेरणा लेके आनी है, उनको यह करना है कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी आत्मनिर्भर होना है, हमें भी स्वरोजगार पैदा करना है जिससे हम अपने परिवार का अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, ताकि उन बच्चों को भविष्य में इस तरह की मुसीबतों का सामना न करना पड़े जो शायद आज हमारी बहनें गांव में रहकर कर रही हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कि अगर आप एक उद्यम शुरुआत करना जा रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत के बाद आपको किन किन कार्यों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन कार्यों को आपने करना पड़ता है मैंने चरणबद्ध उन कार्यों को लिखा है, ताकि आप यह समझ सके कि आप अगर एक बिजनेस या कोई भी व्यापार या कोई भी स्वरोजगार की शुरुआत करते हैं तो यह कार्य आपको जरूर करने होंगे। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है अवसर की पहचान करना, ठीक है। हमारे जीवन में अवसर आते जाते रहते हैं। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, घूमते घूमते आपने देखा कि फला जगह पर काफी लोग आते हैं,
वहां खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, अगर आपने यह सोच लिया क्यों ना मैं हर रोज दोपहर के वक्त वहां जाकर कुछ खाने का सामान बनाकर जो घर में बनाया जा सकता है, ऐसा सामान जिसको आसानी से बनाया जा सकता है और वह खाने लायक है और आसानी से लोग खाते हैं, अगर आप वहां जाकर बेचना शुरू कर दें, हो सकता है शुरुआत में लोग ज्यादा ना खरीदे, पर अगर वह सामान आपका बिकने लग जाए तो यह अवसर होता है। इसे हम अवसर कहते हैं। अवसर कहीं भी आपको मिल सकता है। अवसर को पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए। हर जगह पर अवसर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्यमी का कार्य है, जो आपके लिए भी है, आपके लिए पहला कार्य यह है कि आप उस अवसर की पहचान करिए। आप यह देखो कि ऐसी क्या चीज आपके पास में है, ऐसा क्या मौका आपके पास में है। यदि आप उसे उस मौके को फायदा उठा पाए, उस मौके को व्यापार में बदल पाए, तो सबसे पहला काम है हमारा है अवसर को पहचानना। अवसर को पहचानने के बाद विचारों को कार्यान्वित करना। कई बार क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको पहल करनी है। अवसर तो मिल गया, आपको लग गया हाँ भी ये कार्य किया जा सकता है। अब उस कार्य को करने के बाद आपको यह देखना है कि उस विचार जो आपके मन में आया है उसको कैसे एक व्यापार के फॉर्म में लाया जाए, कैसे उसको जमीनी स्तर पर आप उस पर कार्य करिए। तो यह एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह होता है अपने विचारों को जमीनी स्तर पर लाकर कार्यान्वित करना, ताकि कुछ शुरुआत की जा सके। इसलिए मैंने यहां सबसे पहले ही आपको बताया पहल सबसे इम्पोर्टेंट है। पहल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, और पहल विचारों को कार्यान्वित करना तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होगी। फिर संसाधनों को उपलब्ध कराना। जब आपके मन में यह बात बिल्कुल बैठ जाए कि अब तो मुझे कुछ कार्य करना है, आपने यह फाइनल कर लिया, यह आपने निश्चित कर लिया कि यह कार्य आप करेंगे, इस तरह का व्यापार आप शुरुआत करेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे उसको करने के लिए किन किन संसाधन आपको चाहिए, क्या क्या संसाधन आपको चाहिए। तो एक व्यापारी को इन सभी संसाधनों को इकट्ठा करना और उन संसाधनों को उपलब्ध कराना उसका कार्य होता है। जैसे मान लीजिए मैं खाने की बात, अब मैं देखो अगले भाग के अंदर मैं अलग अलग एक एक उस पे आऊंगा, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मान लीजिए कहीं हमने खाने का छोटा मोटा सामान बेचना शुरुआत किया, तो खाने को बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक, हर तरह का संसाधन आपने जुटाना है। और क्योंकि हमारे पास में पैसा भी कम है, जोखिम उठाने की क्षमता कम है, तो इसलिए हमें यह सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे कम से कम पैसे से हम अपनी शुरुआत कर सके। स्थापना करना, व्यापार को स्थापित करिए, शुरुआत करिए, उसके बाद प्रबंधन करना, ये सब एक व्यापारी का कार्य है। शुरुआत हो जाती है कई बार, शुरुआत में हमें रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, बट धीरे धीरे अगर हम डटे रहेंगे, अगर हमारी पहल ठीक थी, अगर हमारा अवसर ठीक था, तो उसमें वृद्धि भी होगी और उसमें फायदा भी होगा। आप देखेंगे जीवन में कभी भी ऐसा, कई बार ऐसा मौका आ जाता है हमें यह लगता है कि अब यह कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम कुछ समय और कार्य करते रहे तो वह कार्य सफल हो जाता है। वही चीज व्यापार में होती है। ठीक है, तो यह सब चीजें हमें अपने दिमाग में बिठाकर फिर हम सोचेंगे कि क्या हमारी बहनें व्यापार करने के लिए उनमें इच्छा शक्ति है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रेरित होके वो अपने अंदर इच्छा शक्ति लेके आए, आत्मविश्वास पैदा करें, और उनके साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये कार्य उन्हें करने पड़ेंगे। अंत में इस कार्यशाला के अंतिम भाग में मैं यह जरूर बात करूंगा कि आपको स्वरोजगार के फायदे क्या है, व्यापार का आपके जीवन में क्या फायदा है। ठीक है, देखो व्यापार का हमारे जीवन में सबसे पहला, सबसे मुख्य फायदा जो होता है वह होता है आत्मनिर्भर होना। हम अपने जीवन में जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों पर आधारित रहेंगे, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता,
हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता और आत्मनिर्भर होने के बाद हम अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो आत्मविश्वास हमारी बहनों में आएगा और उसके साथ जो उनके परिवार की तरक्की होगी, क्योंकि परिवार की तरक्की होगी तभी देश की तरक्की होगी। अगर परिवार ही हमारा उन्नति नहीं करेगा तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से दो चीजों में फायदा होता है, एक तो हमारी परिवार उन्नति करता है और परिवार के साथ साथ देश भी उन्नति करता है, परिवार आगे बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमारी एक विशिष्ट पहचान बनती है। अब हमारी जो बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ बहनें ऐसी होंगी जो आत्मनिर्भर हैं, जो कुछ ना कुछ कार्य करती हैं और उस कार्य करने से धन कई अर्जन होता है उन्हें, तो वो जो उनकी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है, समाज में उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो जो विशिष्टता आपके अंदर आएगी, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका परिवार और देश उन्नति करेगा। तो अंत में कार्यशाला के पहले भाग के अंदर मैं यह आपको फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी बहनें जो घर में रहती हैं, वो कृपया करके अपने मन में यह जरूर लेके आए। देखो, सबसे पहली चीज आपकी इच्छा शक्ति है। जब तक आपके मन में इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें अपने मन में इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद ही हम यह सोचेंगे कि किस तरह का व्यापार हमें करना है, कितना जोखिम हम उठा सकते हैं और उस व्यापार को करने के लिए संसाधनों को कहां से एकत्रित करेंगे। रीड इंडिया हमारी बहनों को काफी सपोर्ट करती है, सहायता भी करती है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमने व्यापार के बारे में सीखा। कार्यशाला के दूसरे भाग में हम व्यापार की स्थापना से लेकर व्यापार के बाकी भागों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
1: अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
2: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
1: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
2: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
1: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
2: तुम इतना पैरानॉइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
1: मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
3: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं।
4: हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह हैं। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पीस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वैमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
5: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
4: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है।
3: ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है।
4: एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
2: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओह, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
2: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
2: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
3: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
6: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहाँ पर भी क्रीम लगाई है वहाँ पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयाँ आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
3: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर में नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीज यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स हैं तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो हैं, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर एक सी आदमी को जो वॉट्स हैं, तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहां जहां वो नर्व निकलती है, उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से यह अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है, जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा, जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं।
4: अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है, तो इसका पूरा इलाज संभव है। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए, तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौरतलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

यदि आप करते हैं तो उसमें क्या क्या कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। यह हमारा भाग दो है वर्कशॉप का। इस भाग दो के अंदर हमारा जो मेन पॉइंट है सीखने का वह यह है कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए। व्यापार जो होता है, व्यापार करने के लिए हमारी एक व्यापारिक मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। व्यापारिक मानसिकता क्या होती है? व्यापारिक मानसिकता होती है कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए हम जोखिम उठाते हैं। तो व्यापार का पहला मूल मंत्र क्या है? जोखिम उठाना, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे मन में यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें व्यापार करना है, ठीक है। अब तक के सेशन में हमने यह तो समझ लिया था कि आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बट अब इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि व्यापार का पहला कार्य क्या है। व्यापार का सबसे प्रथम कार्य होता है अवसर की तलाश करना, सबसे पहला जो कार्य है। अगर आपके पास अच्छा अवसर है, ठीक है, अगर आपको यह पता चल गया कि मैं अगर ये काम करूं तो इससे मैं आत्मनिर्भर हो सकता हूं, तो आप मान लीजिए आधा कार्य आपका हो चुका है। जैसे हम जनरल एक हिंदी में बात कहते हैं ना कि किसी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आधा कार्य तो वहीं पर हो जाता है। ऐसे ही व्यापार में सबसे इम्पोर्टेंट यह होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह होती है कि अवसर की तलाश हो जाए, ठीक है। अब देखो, यदि हम व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो हमारे मन में कई तरह की संभावनाएं आती हैं, कई तरह की बातें आती हैं, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, ठीक है। कई तरह के अवसर हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमें हर जगह संभावना दिखती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी कार्य में संभावना दिख रही है तो मात्र उत्तेजना में आकर मैं वह कार्य शुरू कर दूं। पहले हमें यह समझना होगा कि क्या जो कार्य क्षेत्र में मुझे संभावना दिख रही है, क्या उस कार्य क्षेत्र के अंदर वो कार्य क्षेत्र व्यवहारिक है या नहीं है, क्या व्यवहारिक है उसमें व्यापार करना। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां बात करेंगे पहले कि क्या क्या अवसर हमारे पास में, हमारी बहनों के पास में हो सकते हैं जो गांव में रहती हैं या ऐसी जगहों पर रहती हैं जो शहरों से ज्यादा दूर नहीं है, शहरों के आसपास है, ठीक है। या हमारी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो वैसे नौकरी नहीं कर सकती बट कुछ अपनी ओर से कुछ कार्य करके पैसा कमाना चाहती हैं, तो इसमें देखिए, वैसे आजकल के समय में, आजकल के समय में सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा जो लोग शामिल है वह खाने पीने की चीजों से रिलेटेड व्यापार में है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर आदमी अपना कुछ पैसा खाने पर खर्च करता है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली के पास किसी गांव में रहती हैं या आप चंडीगढ़ के पास कहीं रहती हैं या कोई बहुत बड़ा शहर या छोटा शहर भी आपके पास में है, तो अगर शाम को मार्केट में घूमने भी चले जाएं तो आप यह देखेंगे कि जगह जगह पर लोगों ने अपने ठेले लगा रखे हैं, ठीक है, और उन ठेलों पर वह वो सामान बेच रहे हैं, वो खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं जो घर में बड़े आसानी से बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि देखो हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ जो पुरुष उनके घर में है या उनके कुछ बच्चे जो एज में उनकी काफी एज है, तो वो उनकी सहायता कर सकते हैं बाहर जाके खाने पीने चीजों को बेचने में। जैसे कि गोलगप्पे हैं, पानीपुरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, पानी पूरी को बनाना कितना आसान है, कुछ भी नहीं लगता उसके अंदर, ठीक है। और एक पानी पूरी 2 या 3 रुपए की ज्यादा की आपकी बिकती है, और अगर आप किसी बड़े शहर में उसे बेच रहे हैं तो वो ज्यादा की आपकी बिकने वाली है। पानी तो बेचना आपने, ठीक है, तो चीजें आसान है, तो आपको अवसर तलाशता है। तो खाने पीने की चीजों में आप और बहुत कुछ देख सकते हैं, ऐसी ऐसी सूखी चीजें होती हैं जो खाई जाती हैं, ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं खाना, तो उनको बेचा जा सकता है। इसके अलावा कढ़ाई बुनाई और सिलाई से रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि हमारी गांव की महिलाएं कढ़ाई और सिलाई में काफी तेज होती हैं, मतलब क्योंकि यह प्रशिक्षण उन्हें अपने परिवार से ही मिलता है, ठीक है। तो आज के समय में सभी महिलाएं शहर में आप देखेंगे या सभी लोग अपने घरों को चमकाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में साज सज्जा

तो जो हाथ से बनाई हुई चीजें काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो यदि आप में हाथ की कला है जिसमें आप सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, तो आप छोटी-छोटी कपड़ों पर कढ़ाई करके उसको एक डिजाइनिंग पीस में बना के शहर में बेच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वेटर एवं डिजाइनदार कपड़े आज के युग में, आज के समय में जो महिलाएं शहरों में रहती हैं, नौकरियां करती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वे अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना सकें। तो जनरली वो महिलाएं क्या करती हैं, दुकानों पर जाकर स्वेटर खरीदती हैं। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लीजिए आप जहां रहते हैं आपसे पास कोई शहर या गांव है, आप उस गांव में अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके देखें तो आपको स्वेटर बनाने के ऑर्डर मिल सकते हैं। तो आप एक बच्चे का नाप लेके उसकी स्वेटर बना सकती हैं। तो यह एक तरीके से आपका आत्मनिर्भर होने का जरिया हो सकता है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि ऊन जो है वह तो जिस परिवार ने बनवानी है अपने हिसाब से आपको देगा, ठीक है। तो आपको तो ओनली जो आप अपने हाथों से काम कर रही हैं उसी की ही मेहनताना आपको मिलना है। इसके अलावा साज सज्जा का सामान है। मैंने पहले ही आपको बताया कि सभी लोग अपने घरों को ऐसा चाहते हैं कि उनका घर चमका चमका रहे, घर उनका शानदार सा दिखे, ठीक है। तो घर को शानदार दिखाने के लिए हम साज सज्जा का सामान बनाते हैं। तो यदि हमारी कुछ महिलाएं, अगर आप में कुछ ऐसा हुनर है जो आप ऐसे डिजाइन बना सकती हैं मिट्टी के उससे कपड़े के ऊपर जो घरों में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सौंदर्य से आधारित, हर महिला अपने आप में सुंदर दिखना चाहती है, चाहे कोई भी महिला, मैं कहता हूं चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर महिला यह चाहती है कि वह सुंदर दिखे। अगर वह कहीं से जाए तो लोग माने कि हाँ वो सुंदर है, ठीक है। तो आज के समय में चाहे आपके पास पैसा है चाहे पैसा नहीं है, चाहे आपके आमदनी के साधन है चाहे आमदनी के साधन हमारे कम है, फिर भी हमारी महिलाएं जो भी उनके पास में चीजें अवेलेबल हैं उनको यूज करके सुंदर दिखना चाहती है। तो यदि आप सौंदर्य से आधारित कार्य कर सकते हैं जिसमें छोटा मोटा आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, मैं एक ब्यूटी पार्लर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप अपने घर से ही जिसमें छोटी-छोटी महिलाओं की जो जरूरतें हैं वह कार्य सीख के आप अपना कार्य शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो संस्था है रीड इंडिया है, यह हम अपनी लाइब्रेरीज या अपने सेंटर्स के माध्यम से आपके ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग देती है, ठीक है। और यदि आप हमारी संस्था के थ्रू जुड़े हैं और आप अगर आप ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेते हैं तो इतना तो आप सीख ही जाते हैं कि कैसे महिला को सुंदर दिखाया जाए, ठीक है। तो यह एक आपका अच्छा कार्य हो सकता है। इसके अलावा आप बच्चों के खिलौने बना सकते हैं, लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। यह वो चीज है जो हमेशा चलती है। देखो कोई भी इंसान है जब उसका बच्चा कुछ भी मांगे उससे, ठीक है, जब छोटा बच्चा है तो खेलने के लिए इंसान, अब चाहे उसका इनकम सोर्स है या नहीं है, फिर भी वह बच्चों के लिए काफी पैसा खर्च करता है। तो आप कोई भी, जैसे आप देखेंगे शहरों के अंदर शाम को या सुबह में जो गुब्बारे वाले होते हैं वह भी एक अच्छी कमाई कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका बच्चा गुब्बारे की डिमांड कर रहा है, गुब्बारा मांग रहा है, तो आप उसे गुब्बारा लेके देंगे। और आप सोच के देखिए, एक गुब्बारे को फुलाकर और उसको एक डोर से बांधने में आपका कुल खर्च कितना है और कुल कितना पैसा उसके लिए लिया जाता है। 10 रुपए से कम गुब्बारा नहीं बिकता, ठीक है। और यदि आप उस गुब्बारे पे खर्चे की बात करें तो आपका 1 से 2 रुपए का गुब्बारा आता है, 1-2 रुपए आप यह मान लीजिए उससे जो आपने डोर बांधी है, तो 3 से 4 रुपए के खर्च को आप 10 रुपए तक बेच सकते हैं, ठीक है। ये एक सोच की बात है, अभी देखने में हमें लगता है कि यह बेचना बहुत मुश्किल होगा, पर आप देखिए हजारों लोग ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के डिजाइनदार बर्तन आप सकते हैं बना। देखो गांव में हम बहुत तरह की कलाएं सीखते हैं, अगर हमारे हाथ में हुनर है,
तो हम ऐसी कोई भी चीज बनानी सीख सकते हैं और यह सब चीजें शहरों में बड़ी आसानी से बेची जा सकती हैं। आप देखिए किसी भी बाजार के अंदर कोई जो बड़े बड़े शहर है वहां तो सड़कों पर बाजार लगता है, ठीक है, सड़कों पर बाजार लगता है तो लोग आते हैं अपने से जो भी सामान होने चाहिए उन्हें खरीदते हैं। तो यदि आप कोई ऐसी चीज बनाने में अगर आप में हुनर है तो यह भी आपके आत्मनिर्भर होने का रास्ता खोल सकती है। इसके अलावा पापड़, अचार, जो ऐसी सूखी चीजें हैं, देखो अचार है, जो लोग बहुत साफ सुथरा ढंग से अचार बनाते हैं, यदि वह शहर में जाकर उसका विपणन करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो अचार बिकना शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ताजी चटनी, कटी हुई सब्जियां, देखो आजकल के युग में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो महिलाएं जॉब करती हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी है चाहे वह प्राइवेट नौकरी है, तो वो महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर के छोटे मोटे कार्य जो हैं वह उन्हें किए मिले। तो आजकल आप देखोगे पहले मार्केट में जाते थे तो वहां सब्जी खरीदी जाती थी, ठीक है, बट आज जमाना ऐसा आ गया है कि मार्केट में कटी हुई सब्जियां खरीदी जाती हैं। अब आप आलू वाले भैया को बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो आलू देना, अब आप ये नहीं कहोगे 1 किलो आलू देना, आप उसे ये कहेंगे मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो 1 किलो कटे आलू देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यह वो सारी बातें हैं जिनको जिनमें से आप यह देख सकते हैं कि व्यापार की, इन सब चीजों में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हो सकती है, क्योंकि जब आप अवसर के बारे में सोचती हैं, अवसर के बारे में तलाश शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या आता है, ठीक है, और कई बार ऐसी चीज होती है जो हमें आती नहीं है बट हमारे मन में आता है कि इस चीज से कोई ना कोई व्यापार किया जा सकता है। तो इस तरह से इन सभी अवसरों को कुछ मैंने यहाँ पर बताए हैं, या इसके अलावा बहनें हमारी इतनी सारी यहाँ बैठी हैं और मैं तो ये मानता हूं कि हमारे बहनों की जो सोचने की शक्ति है वह सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहनें आपस में एक समूह में होती हैं। जब आप किसी समूह में बैठे होते हो तो इतने सारे दिमाग एक साथ कार्य करते हैं, तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं भी यह आइडिया आपके मन में है। तो जो भी आइडिया आपके मन में आए, जो भी व्यापार करने की बात आपके मन में आए, आप यह उस व्यापार करने के मुद्दे को अपने सहेलियों के साथ में उनसे बात करिए, क्योंकि जब आप किसी आइडिया को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको उसमें से कुछ और अच्छी बात सुझा सकता है। तो पहला जो हमारा मुद्दा है वह है अवसर को तलाश करना। मैं फिर बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूं यहाँ पर, हमारी महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, यदि उनके मन में कोई भी अवसर है, यदि उन्होंने किसी अवसर को अगर तलाश लिया, ठीक है, और उत्तेजना में आकर व्यापार शुरू कर दिया, उत्तेजना मैं नहीं कहूंगा, पहले सोच समझकर अगर उन्होंने सारी बातें सोच समझकर कार्य करना शुरू करा तो 100% उनका कार्य यह सफल होगा, ठीक है। अब अवसर तो तलाश लिया, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, मैं मान रहा हूं, कुछ बातें मैंने बताई हैं, कुछ आप लोग भी आपस में बात करेंगे, तो यह मैं मान के चल रहा हूं कि अवसर तो हमने तलाश लिया। अब अवसर तलाशने के बाद में यह नहीं है कि जैसे ही आपने अवसर तलाशा तो मतलब आपका व्यापार चल पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अवसर तलाशने के बाद में हमारी जंग शुरू हो जाती है, हमारी जंग शुरू हो जाती है किसके साथ में, हमारी जंग शुरू हो जाती है भाग्य के साथ में, हमारी जंग की शुरुआत हो जाती है जो मार्केट में दूसरे लोग हैं जो उसी तरह के सामान को बेचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो कार्य हमारे करना होता है वह होता है विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान, अब आपको लगेगा कि विपणन क्या होता है और अनुसंधान क्या चीज होती है, तो विपणन अनुसंधान से हमारा मतलब यह होता है कि आइडिया या जो हमने अवसर के बारे में बात करी है, अब हम यह देखेंगे कि उस अवसर में कितना दम है, क्या जो हमारा ग्राहक है क्या वह उसे पसंद करेगा कि नहीं करेगा,
क्या हमारा ग्राहक जो हमारा जिसको हमें सामान बेचना है वो उसमें अलग क्या चाहता है। तो विपणन अनुसंधान के अंदर सबसे पहले हम ग्राहक की बात करते हैं, सबसे पहला हम क्या बात करते हैं, ग्राहक की, क्योंकि अंत में पैसा तो आपको ग्राहक नहीं देना है। मतलब सारी बातें अपनी जगह, कोई भी अगर हम इसमें से सामान को चुनाव करते हैं, कोई भी व्यापार करने की शुरुआत करने की बात करते हैं, तो अंत में जो पैसा है, जो सामान बेचा जाएगा, वह तो किसको बेचा जाएगा, ग्राहक को ही बेचा जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ग्राहक के बारे में सोचना होता है कि ग्राहक क्या हमारी वस्तुओं को पसंद करेगा या नहीं करेगा, और क्या ग्राहक हमारी चीजों के बारे में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ग्राहक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राहक को समझने के लिए हम पहली चीज यह देखते हैं कि हमारी चीजों में क्या क्या विशेषता है, ठीक है, और ग्राहक की क्या क्या आवश्यकता है। दोनों में हमें एक तरह से बांध बनाना होता है। ग्राहक की आवश्यकता क्या है, क्या हमारी जो वस्तु जो हमने बनाई है क्या उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लें, मान लो खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है। अब देखो हर तरह के ग्राहक है, कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, ठीक है, तो वो ऐसी वस्तुएं खाना पसंद करते हैं जो काफी साफ सफाई से बनाई गई हों, इसके अलावा ज्यादा मसालेदार न हो, ठीक है। तो हमें उन ग्राहकों को हमें देखना होगा कि हम किन ग्राहकों को टारगेट करके अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अंत में पैसा तो ग्राहक ने ही देना है। इसके अलावा मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सामान हम बना रहे हैं, उससे दूसरे सामान और क्या क्या अवेलेबल है, ये हमें जरूर देखना होता है। ऐसा नहीं कि उत्तेजना में आकर हम अपना कार्य शुरुआत कर दें और जब हम मार्केट में सामान बेचने जाएं तो हमें यह पता चले कि हमारे सामान के अलावा जो दूसरे सामान मार्केट में उपस्थित है वह क्वालिटी वाइज या उनमें गुणता हमसे ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों के प्रोडक्ट्स को भी देखना है, उनको समझना है कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या है और हम अपना जो सामान बनाएंगे हम उनसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा सामान दूसरों के सामान से बेहतर होगा तभी उसका मार्केट में बिकने के चांसेस ज्यादा है, तभी हम एक अच्छी बाजार में अपने आप को अच्छा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दूसरों के सामान को भी देखना होगा। सामान को देखने के बाद फिर हम यह देखेंगे कि हम अपने सामान को दूसरों के सामान से कैसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, और फिर यह भी आपको समझना है कि क्या हमारा सामान जो हमने बनाया है क्या वह ग्राहक की इच्छाओं को पूरा करता है, क्या वह ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि हमारा सामान ग्राहक की आवश्यकताओं को दूसरों के सामान से ज्यादा पूरा करता है तो इसका मतलब हमारे सामान को मार्केट में चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा एक मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर इंग्लिश के अंदर, पायलट टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग। अब हमारी कुछ बहनें हैं वह नहीं समझ पाएंगी कि पायलट क्या होता है। अब ये तो आपको पता ही है बहनों कि पायलट का मतलब होता है जो जहाज उड़ाता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि किसी को हम जहाज दे रहे हैं तो पहले ही उसे कहें जा बेटा जहाज उड़ा, हजार सवारी ले जा साथ में, ऐसा तो नहीं है। पहले हम कुछ थोड़े से पोर्शन पे ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार में नमक खरीदने चले, और हमने जो सड़क के किनारे नमक बेच रहे हैं उनसे बात करनी शुरुआत करी, वहां दो ढेरियां लगी हुई थी, ठीक है, एक ढेरी में नमक था और दूसरी ढेरी में भी नमक था। हमें यह देखना था किस ढेरी का नमक हम लें, तो हम क्या करते हैं, चुटकी भर लेते हैं, अपनी जीप पर लगाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें जो नमक पसंद आता है उसको हम लेते हैं। सेम यहां पर है, यदि आपके मन में कोई अवसर आ गया और आपका मन पूरा बन गया कि मुझे इस अवसर पे व्यापार करना है, तो अपने ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय पहले हम
थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे और उसे उस थोड़े से सामान को मार्केट में बेचने का प्रयास करेंगे, यह समझने के लिए कि क्या हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक नहीं है और हम काफी ज्यादा सामान बना लेते हैं तो इसमें हमारा जोखिम ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले कुछ सामान बनाकर हम मार्केट में बेचने की ट्राई करें, बेचने की कोशिश करें, और यदि हम अपनी कोशिश में सफल हो जाते हैं और ग्राहकों के फीडबैक से, जो ग्राहक हमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो हम आगे नई से नई चीजें बना सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आगे हम ज्यादा सामान नहीं बनाना चाहिए, पहले हमें उस सामान की मार्केट में पायलट टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या वह हमारा सामान जो है मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। इसके अलावा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में, आज के समय में साफ सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी ग्राहक, कोई भी, मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे अगर कुछ भी खरीदना है तो पहली बात मैं सामान को देखूंगा क्या साफ सफाई है, या जहां पर वह बनाया जा रहा है या जहां पर बैठ के आप उसे बेच रहे हो, क्या वह साफ सुथरी जगह है या नहीं है। तो सामान को बनाने से लेकर उसको बेचने तक, किसी भी सामान को बनाने से लेकर और उसे बेचने तक साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई हमारे देश की पहचान है। मोदी जी का नारा है ना स्वच्छ भारत, तो ये जो स्वच्छ भारत की बात है वो इसी बात से निकली हुई है, साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, खाने पीने की चीजें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पैकेजिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, पैकेजिंग। पैकेजिंग आकर्षित होनी चाहिए। देखो, आप मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप सामान को देखते हैं, जो सामान सबसे ज्यादा आकर्षित ढंग से जिसको पैक किया जाता है, हमारा मन पहला उसी पे टिकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, और देखो सामान तो जब आप यूज करते हैं उसके बाद ही समझ में आता है कि वो कितना आपके लिए कारगर होगा, बट सबसे पहली चीज जो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है वह होती है सामान की पैकिंग। तो पैकिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चों के गिफ्ट की बात भी करें तो हर चीज को पैक किया जाता है, पैक करने का एक उपयुक्त तरीका होता है। तो रीड इंडिया के सेंटर्स के माध्यम से पैकेजिंग कोर्स भी चलाए जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि सामान को कैसे पैक किया जाए, कैसे रैप किया जाए अच्छे रैपर्स के अंदर। तो पैकेजिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप अचार बेच रहे हैं, आप चटनी बेच रहे हैं, तो उसको किस ढंग से पैक किया जाए। ठीक है, पैक करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए ताकि ग्राहक उसको देखते ही समझ जाए कि इसके अंदर क्या चीज है। ठीक है, और अंत में हम बात करेंगे मूल्य निर्धारण की। अब यह काफी ज्यादा कठिन प्रश्न हो जाता है कि सामान का मूल्य क्या रखा जाए, सामान का मूल्य क्या रखा जाए। ठीक है, तो जो सामान हाथ से बनाया जाता है वैसे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम तो एक चीज कहते हैं कि जो हाथ से बनाई जाती है वह अतुलनीय चीज है, वह मतलब बेशुमार कीमती है, पर ऐसा नहीं है। ग्राहक तो कीमत के हिसाब से ही, अपने सामान उपयोगिता के हिसाब से ही सामान खरीदेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा नहीं कि हम यह चाहें कि इतना मुनाफा कमा लें कि एक ही सामान को बेचकर मुनाफा कमाए। देखो, मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम अपने सामान की कीमत को ज्यादा रखें, ठीक है, दूसरा हम अपने सामान की कीमत में, हमने एक मन में सोच लिया कि यदि मेरी 100 रुपए लागत है और 100 रुपए की लागत के ऊपर मैं कम से कम 15-20% का लाभ चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने एक परसेंटेज अपने मन में फिक्स कर ली, तो मैं सामान की कीमत को इस तरह से रखूंगा कि लागत के बाद जितना मुझे लाभ चाहिए उतना मैं लाभ उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है,
या हम क्या करें कि अपने सामान की सेल को बढ़ाएं। यदि ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा सामान बिकेगा, तो ज्यादा सामान बिकेगा तो कम, अगर कीमत कम भी है, कीमत अगर कम भी है तो भी हमें लाभ उतना ही होगा। तो हमें यह सोचना चाहिए कि एक बार में लाभ न कमा लिया जाए, लाभ कमाएं, मुनाफा कमाएं, बट ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा मुनाफा कमाएं कि ग्राहक दूसरी बार हमारे पास आए ना। तो हमारे सामान में क्वालिटी के हिसाब से, सामान की उपयोगिता के हिसाब से हमें उसका मूल्य निर्धारण करना होता है। मूल्य निर्धारण करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम जो है उनका मूल्य कितना है। ऐसा ना हो कि हमारे सामान का मूल्य उनके मूल्य से काफी ज्यादा हो, जिससे कि हमारे सामान के बिकने के जो चांसेस है वह कम हो जाए। तो हमें मूल्य निर्धारण पे भी काफी ध्यान देना चाहिए। तो इस भाग के अंदर हमने कई बातों पर बात करी, तो आशा है मुझे कि हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं उनको यह समझ में आया होगा कि व्यापार करना जितना बाहर से आकर्षित करता है अंदर से उतना आसान नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है हर हिस्से में, व्यापार के हर भाग में। ये नहीं कि हमने सामान बना लिया और हम यह सोचें कि हमारे घर से बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा सामान तो हमने बना लिया अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बनाया गया सामान ग्राहक की सोच से यदि मैच नहीं करता तो वह सामान हमारा बिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ग्राहक हमारे लिए देवता है, जैसा ग्राहक चाहेगा सामान तो हमें वैसा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तेजना में आकर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर सामान बना दिया जाए और फिर हम उसे बेचने जाए मार्केट के अंदर, तो यह भी मूर्खता होगी। पहले हमें यह देखना चाहिए, थोड़ा बहुत सामान बनाकर बेचने की ट्राई करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि किन किन मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है या हमारे सामान में किन किन बातों, किन किन चीजों से सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज जितनी अच्छी पैक्ड होगी, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उसकी उतनी ही उपयोगिता ज्यादा है, उतने ही वह ग्राहकों को आकर्षित करती है और उसके बिकने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। और मूल्य तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है कि ग्राहक आपका सामान तभी खरीदता है जब वह सामान उसकी उपयोगिता के हिसाब से, जो मूल्य आप उसे बता रहे हैं उसके साथ यदि वह मैच कर जाता है तो ग्राहक आपका सामान जरूर खरीदेगा। आशा है इस भाग को, वर्कशॉप के इस दूसरे भाग को समझने के बाद आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि व्यापार करने की शुरुआत कैसे की जाती है और कैसे कैसे हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। इसी वर्कशॉप के भाग तीन के अंदर हम यह सीखेंगे कि मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए। सामान तो आपने बना लिया, मूल्य भी निर्धारण कर लिया, कंपेयर भी कर लिया, कैसे मार्केटिंग करी जाए। और इसके अलावा, मार्केटिंग के अलावा हम यह भी देखेंगे कि कैसे अपने खाते बनाए जाए। मतलब आप कुछ ना कुछ खाता बना जरूर होना चाहिए ताकि आप यह देख पाए कि कितनी हमारी लागत लग रही है, कितना हमारा खर्चा आ रहा है और महीने या दो महीने के अंत में हमें कितने का लाभ होगा। तो वह हम इस वर्कशॉप के भाग तीन में सीखेंगे। आशा करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।

0: सभी श्रोताओं को मंजू
1: और महिपाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे हैजा बीमारी पर।
0: हैजा रोग वीबीओ कोलेरी बैक्टीरिया से फैलता है
1: और इसका असर आपकी आंतों में होता है, जिससे उल्टी दस्त लग जाते हैं।
0: अभी कल की ही तो बात है, मेरी सहेली सुनीता अपने बच्चों को लेकर कल इंडिया गेट पर घूमने गई थी, मगर वहां पर उसने न जाने क्या खा लिया कि वो और उसके बच्चे सभी बीमार हो गए, उनको अस्पताल तक जाना पड़ा।
1: आप ठीक कह रही है, आजकल गर्मियों के मौसम में सभी बच्चों का दिल ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कटे हुए फलों को खाने का करता है,
0: और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। गंदे पानी का सेवन और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से यह बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है।
1: हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया मनुष्य के मल में पाए जाते हैं, और जब मक्खियाँ उस मल पर बैठती हैं तो उनके पैरों की गद्दियों में ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं।
0: ये मक्खियाँ खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं, और जब कोई इन वस्तुओं को खाता है तो यह उसकी आंत में पहुंचकर बीमारी पैदा करती हैं।
1: देखिए, यह बीमारी खुले में फल, खाद्य पदार्थ व अन्य प्रकार की खाने की वस्तुओं के सेवन से फैलती है। दूषित पानी ना पिएं, खुली जगह पर मल त्याग ना करें, और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का प्रयास करें।
0: इस रोग में जबरदस्त दस्त होने के कारण शरीर के पानी के साथ ही द्रव व लवण भी निकल जाते हैं। इनकी पूर्ति शरीर में फिर से करना जरूरी होता है। यदि दो दिन तक ऐसी ही स्थिति व इलाज में कोताही की जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है।
1: तो मंजू जी, सबसे पहले आप तो हमारे श्रोताओं को यह बताओ कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, और श्रोताओं को यह कैसे पता चलेगा कि स्वस्थ व्यक्ति को हैजा हुआ है या नहीं।
0: हैजा के बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और जब यह पर्याप्त संख्या में हो जाते हैं तो वहाँ पर विष पैदा करते हैं। यही विष रोग का कारण बनता है। इसमें जबरदस्त उल्टियाँ व दस्त होते हैं। उल्टी में पानी बहुत अधिक होता है और उल्टी के साथ पतले दस्त लग जाते हैं, जिससे कि शरीर का सारा पानी दस्तों के कारण शरीर से निकल जाता है।
1: इस कारण तो शरीर कमजोर हो जाता होगा और मरीज की हालत तो बहुत बुरी हो जाती होगी।
0: आपने सही कहा, इस बीमारी में बुखार नहीं आता, बस रोगी निढाल, थका थका सा, कमजोर व शक्तिहीन हो जाता है। प्यास जल्दी लगती है, पल्स मंद पड़ जाती है, यूरिन कम आता है व बेहोशी सी महसूस होने लगती है।
1: तो फिर मंजू, हमारे श्रोता को क्या करना होगा? क्या इसका कोई वैक्सीन भी बना है? अगर हाँ तो जरा इसके बारे में तो बताओ।
0: देखिए महिपाल, यह एंटीबायोटिक दवाई बीमारी को फैलने से रोकती है, मगर इसका एक वैक्सीन भी बना है जो कि 6 माह तक ही क्रियाशील रहता है।
1: तो मंजू, सबसे पहले डॉक्टर से इसका इलाज लेना चाहिए, और जब तक मरीज को बार बार नमक शक्कर का घोल बनाकर पिलाना चाहिए, जिसे हम ORS का घोल भी कहते हैं। यह किसी भी डिस्पेंसरी व अस्पताल में मुफ्त मिल जाता है। इसे पिलाकर भी रोगी के शरीर में लवणों की पूर्ति की जाती है।
0: हैजा से बचने के लिए खुले में बिकने वाली वस्तुओं को ना खाएं और हमेशा अपना खाना ढककर रखें।
1: दोस्तों, उल्टी दस्त लगने पर तुरंत अपने नजदीक के अस्पताल या नर्सिंग होम में इसका इलाज करवाएं।
0: और हाँ, जहाँ भी जाए साफ सुथरा खाना ही खाएं।
1: मंजू, हैजा बीमारी पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, चलिए सुनते हैं उनके विचार।
2: मेरा नाम शालिनी है और मैं विवेक विहार से हूँ। हैजा फैलने का मुख्य कारण ये है कि हम जब साफ सुथरा खाना ना खाएं और बाहर की कटे हुए फल जिन पे मक्खियाँ बैठती हैं उनको खाने से जो कीटाणु आते हैं उन सब की वजह से हैजा फैलता है।
3: मेरा नाम अमी है। सड़ी गली चीजें अगर कहीं खाते हैं या उससे हैजा हो जाता है, या कहीं गंदगी फैली होती है वहाँ अगर आप रहते हैं, या उस जगह से भी हैजा होता है, मतलब जहाँ भी गंदगी होती है बस वहाँ से मतलब हैजा हो जाता है बस ये।
4: मेरा नाम सिल्वी है, मैं साकेत में रहती हूँ। हैजा मेली खुले में खाना रखने से और उसको खाने से होता है, तो जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखें और खुला खाना को हमेशा ढक के रखें।
5: मेरा नाम निर्णय है, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ। हैजा बीमारी का मुख्य स्रोत गंदगी होता है, और जो मक्खियाँ जो भी बाहर खाने से वो हैजा बीमारी फैल जाता है।
6: I'm Madhu, I live in Kutub Enclave, and as far as my knowledge goes, cholera is caused by the pathogen called Vibrio cholerae. It's a waterborne disease, and we have to be careful about the kind of water we drink. In our home, we've got the 0B fitted on to the drinking water tap, so that we are able to drink filtered water.
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हैजा बीमारी पर।
1: मंजू, इस विषय पर आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर संजीत, जो कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, और उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी गीता जी।
7: डॉक्टर संजीत, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बीमारी बच्चों को ज्यादा होती है, बच्चे शिकार हो जाते हैं, बिकॉज बच्चों को पता नहीं होता कि खुला सामान जो मार्केट में बिक रहा है उसको नहीं खाना है। तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे?
8: देखिए, एक तो है कि क्या ये जो बीमारी है ये मेनली अनहाइजीनिक और इनसैनिटेशन कंडीशन में ज्यादातर ये फैलती है, और पेरेंट्स इसके सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो इनको सिखा सकते हैं कि कैसे सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक वॉशिंग ऑफ द हैंड्स, हाथ धोने का, कैन रिड्यूस दिस एपिडेमिक बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि बाय सिंपल मैकेनिज्म्स, नो कॉस्ट, जस्ट बाय अवेयरनेस और बाय बिहेवियरल चेंज हम इसे कॉम्बैट कर सकते हैं।
7: इसका मतलब संजीत जी कि बच्चों को जो माता पिता हैं वो ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं कि वो खाना खाने से पहले हाथ धोएं, बाजार से खुला खाना न खाएं, ज्यादातर जहां मक्खी वगैरह हो उस जगह को साफ रखना चाहिए, भोजन ढक के रखना चाहिए
8: और गर्म भोजन खाना चाहिए। जहां आप कट फ्रूट्स और जहां ज्यादातर फ्लाइज बैठते हैं वहां से ये ज्यादा फैलती है। ये बीमारी इज ओनली ट्रांसमिटेड इन मैन, इट इज मैन इज द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
7: डॉक्टर साहब, एडल्ट भी इसका शिकार हो जाते हैं, ये मेरे को लगता है कि टोटल इग्नोरेंस है।
8: हाँ जी, और ये एडल्ट में ज्यादा प्रेवलेंट भी नहीं है क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी ज्यादा होता है बच्चों से, बट ये एडल्ट्स में भी होता है क्योंकि एडल्ट्स ज्यादातर आजकल बाहर खाना भी पसंद करते हैं और कट फ्रूट्स और ज्यादातर अनकुक फूड या कुक्ड फूड जो कोल्ड हो गया है और उसपे मक्खी बैठा है उसमें भी ये ट्रांसमिट होता है।
7: और बीमारी का अगर सही तरीके से उसकी प्रिवेंशन के बारे में नहीं पता है कि इससे कैसे बच सकते हैं और इलाज के बारे में नहीं पता है तो ये घातक भी हो सकती है।
8: हाँ जी, इसका मेन कारण है कि इससे बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है, इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं, इसके कारण शॉक होता है और शॉक के कारण एक आदमी मर भी जा सकता है। और ये एक बहुत लिमिटेड टाइम विद इन 24 आवर्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से डेथ देखा गया है। आजकल हैजा घट गया है पर ये एक एंडेमिक साइकिल होता है और ये साइकिल, लास्ट साइकिल हमने जब देखा था वो 1967 में देखा था और ये इंडोनेशिया में हुआ था, पर उसके बाद स्पोरैडिक केसेस हर टाइम देखा गया है। भारत में बहुत ज्यादा है अभी भी और इसका प्रिवेंशन के लिए अभी वैक्सीन्स भी है और बच्चों में ज्यादातर जब मेले होते हैं या रथ यात्रा होता है तो मास वैक्सीनेशन होता है, पर ये एक ज्यादातर इम्यूनिटी उसी टाइम के लिए ही देती है। बट टू हैव टू वैक्सीनेशंस अपार्ट इन अ मंथ्स टाइम गिव्स फुल इम्यूनिटी, पर एडल्ट्स में एक ही बार वैक्सीन की प्रयोग से कॉलेरा कॉम्बैक्ट किया जा सकता है।
7: तो ये बच्चे को इसका वैक्सीनेशन कब लगता है?
8: देखिए, जैसे दूसरा वैक्सीन है वैसे इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है।
7: अच्छा,
8: ये एज इन वेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे मान लो आप जा रहे हैं कि तीर्थ में और जहां बहुत लोग जा रहे हैं तो वैसे आप 1 month अहेड आप एक वैक्सीन ले सकते हैं एंड देन जस्ट बिफोर यू लीव यू कैन टेक अनदर वैक्सीन।
7: तो ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं?
8: हाँ, एडल्ट्स भी ले सकते हैं, पर एडल्ट्स में 2 doses की जरूरत नहीं होता है क्योंकि उनका प्रीवियसली कुछ इम्यूनिटी डेवलप्ड हो रहता है, तो इसमें एक ही डोज ऑफ वैक्सीन इज गुड एनफ।
7: तो ये तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी बाहर जा रहे हैं या जहाँ पे बहुत सारे लोग हों तो अपने बचाव के लिए 1 महीना पहले वैक्सीन ले सकते हैं इसकी, तो हम कुछ हद तक बीमारी से बच जाते हैं। तो डॉक्टर संजीत, ये जो प्रिवेंशन है वो तो इट्स ऑफकोर्स बेटर देन क्योर, पर आप थोड़े से सिम्टम्स बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि जैसे बच्चा अगर हैजे का शिकार हो जाता है तो माता पिता को एकदम क्या लक्षण से पता चलता है कि ये हैजा का शिकार हुआ है।
8: इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं और उल्टियां भी होते हैं, और ये जो दस्त होता है ये बहुत वाटरी होता है और बॉडी वेट का जितना वजन होता है उसका ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है इसमें। और ये जो दस्त होता है इसको हम लोग राइस वाटर स्टूल बोलते हैं, क्योंकि वो आप रिलेट कर सकते हैं जब आप राइस बनाते हैं तो उसका
7: उसकी माड़ का जो कलर होता है वैसे दस्त का कलर होता है।
8: और इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है सॉल्ट्स का, ये लीड करता है जनरली हाइपो वॉल्यूमिक शॉक को, जिससे आदमी का डेथ भी हो सकता है।
7: ये शॉक इंसान को या बच्चे को लगता है कि जैसे ही बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई है और उसको बहुत ही कमजोरी सी महसूस होती है।
8: हाँ, कमजोरी तो महसूस होती है, पर इसमें सबसे ज्यादा पहले देखा जाता है कि मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं।
7: हाँ, हाँ.
8: और क्रैम्प्स के बाद आपको आपका जो पल्स है
7: हाँ.
8: वो बहुत थ्रेडी हो जाता है।
7: थ्रेडी मतलब?
8: थ्रेडी मीन्स आप फील करना मुश्किल हो जाता है। और कई जगहों में तो आप फील भी नहीं कर सकते हैं। और आपका जो स्किन का टेक्सचर भी है वो भी लॉस होता है इसमें।
7: पीलापन आ जाता है इसके?
8: नहीं, पीलापन तो नहीं आता है इसमें, पर इसमें ज्यादातर जब क्रैम्प्स होता है तो आप फेंट भी कर सकते हैं, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है।
7: तो इसका मतलब इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और ORS घोल भी पिलाते रहने की जरूरत है घर पे।
8: वो बहुत जरूरी है ORS घोल पिलाने में, जितना जल्दी हो डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉस है हम तो घोल जो पिलाते हैं उससे तो बहुत ज्यादा है, तो इंट्रावीनसली भी फ्लूइड्स देके इसको बैलेंस मेंटेन करना होता है।
7: और कितने दिन का ये इलाज होता है? 2 दिन या 3 दिन या ज्यादा समय भी लग जाता है इसको ठीक होने में?
8: ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, जनरली 4 to 6 days में आप सही हो जाते हैं
7: अगर आप समय पे डॉक्टर
8: के पास पहुंचे। एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ता है, पर देर आर 2 schools ऑफ थॉट वेदर टू गिव एंटीबायोटिक्स और वेदर नॉट टू गिव एंटीबायोटिक्स, पर क्योंकि खाली फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी वेदर इट कैन बी टेकन केयर ऑफ,
7: तो वो तो उस समय डॉक्टर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। पर ये तो पक्का है कि जैसे ही उल्टी और दस्त हो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है।
8: और पेशेंट को आइसोलेट करना का भी बहुत
7: अलग से उसको रखने की जरूरत होती है। इसका क्यों ऐसे है?
8: क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है मैन टू मैन, सो इट इज बेटर टू आइसोलेट देम फॉर अ वाइल। तो उससे क्या होता है कि यू आर एबल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज।
7: बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देते हैं इसके ऊपर?
8: एक है कि खाना खाने के पहले हाथ धो के खाना खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल के पीना चाहिए, और ज्यादातर बाहर के कटे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाना नहीं चाहिए, उसको घर लाके धो के खाना चाहिए। ये मेरा सुझाव होगा।
1: तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मंजू और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार बहनों, रीड इंडिया द्वारा आयोजित व्यापार को कैसे स्थापित किया जाए एवं आत्मनिर्भर कैसे बना जाए की वर्कशॉप के भाग तीन में मैं दिनेश मिगलानी आपका स्वागत करता हूं। अभी तक के दो चरणों में या दो भागों में हमने यह सीखा था कि आत्मनिर्भरता की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है एवं भाग दो के अंदर हमने यह सीखा कि व्यापार कैसे किया जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को हमें देखना है और कैसे मूल्य निर्धारण करना है। भाग तीन के अंदर हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पहला भाग हमारा जो है कि सामान को कैसे बेचा जाए, सामान की मार्केटिंग कैसे करी जाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो, वैसे तो मार्केटिंग जो सामान को बेचना है यह एक तरह की कला है, यह एक तरह की कला है और कला ऐसी होती है जो इंसान में आंतरिक तौर पर होती है, वंशागुणत होती है। मैं तो ये कहता हूं कि वह जन्म जाती होती है। हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं बहनें हमारी ऐसी हैं जो बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताती है और इतने अच्छे या रोचक ढंग से बताती हैं कि सामने वाला उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और सारा जो बाजार का खेल है वह केवल विश्वास का खेल है। यदि ग्राहक आपकी बातों पर विश्वास कर रहा है वह आपसे सामान खरीदेगा, उसके बाद सामान का उपयोग करेगा और यदि वह आप सामान का उपयोग और आपकी की गई बातें अगर आपस में मेल खाती हैं तो ग्राहक संतुष्ट ग्राहक माना जाता है, जो एक व्यापार अच्छे व्यापार का सूचक है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर हम दो भागों में बात कर रहे हैं। पहला भाग जो है सामान को कैसे बेचा जाए। देखिए, सामान बेचने के लिए सबसे पहले हमारी अपनी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए अपने सामान के बारे में। हमें यह लगना चाहिए कि हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है, हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है। यदि हमें यह लगेगा कि मेरा सामान बहुत अच्छा है तभी मैं अपने ग्राहक को यह बता पाऊंगी कि मेरा सामान औरों से क्यों अच्छा है। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारी चीजों के तरफ एक सकारात्मक सी सोच होनी चाहिए, हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए या हमारे मन में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो सामान हम बेच रहे हैं यह मार्केट में उस दाम पर सबसे अच्छा मिलने वाला सामान है। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ साथ आपको अपने सामान के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है, मैं अपने सामान के बारे में तभी बता सकता हूं जब मुझे अपने सामान की हर बात के बारे में जानकारी होगी। मैंने सामान कैसे बनाया, किस किस कच्चे माल का उसमें प्रयोग करा, बनाते टाइम मेरी विधि क्या थी, क्या मैंने साफ सफाई का ध्यान रखा या नहीं रखा, हर चीज के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने सामान के बारे में बताते हैं तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसके बारे में एक पूर्ण रूप से जानकारी होगी। ठीक है, तो सामान की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अच्छे मार्केटिंग के लिए। हम ये कहें अच्छे जो सामान बेचने वाला होता है उसके लिए महत्वपूर्ण बात यही होती है कि सामान की जानकारी और उसका सामान दूसरे सामान से कैसे अच्छा है। क्योंकि जब हमें अपने सामान की जानकारी होगी तो हम अपने ग्राहक को यह बता पाएंगे कि हमारा जो सामान, अगर जो सामान हम बेच रहे हैं वह दूसरे सामान से कैसे अच्छा है, कितना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि तभी ग्राहक हमारा सामान खरीदेगा। तो सामान की विशेषताएं, जानकारी एवं दूसरे जो मार्केट में सामान अवेलेबल है उससे कंपैरिजन करना, या हम कहें कि उससे हम नाप पाए कि हमारा सामान उनसे कितना अच्छा है। इसके बाद हमारी वाक्पटुता होनी चाहिए। देखो, वाक्पटुता बोलने की कला है। बोलने की कला मतलब यदि कोई ग्राहक हमारे पास में आता है तो हमें बात करनी है उससे, ग्राहक से। ठीक है, क्योंकि हम यदि ग्राहक ने मान लीजिए मुझसे किसी सामान के बारे में पूछा और मैं उसे एक रूखा सा जवाब दे दूं तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि ग्राहक मेरा सामान नहीं खरीदेगा। और यहीं यदि मैं एक बहुत अच्छे ढंग से उसे जवाब दूं, अच्छे ढंग से अपने सामान की विशेषताओं के बारे में बताऊं तो ग्राहक उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और ग्राहक हमारा सामान खरीदता है। तो आपकी बातचीत की कला सामान बेचने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे बातचीत कला व्यक्ति या महिला
अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकती है। और कुछ कार्य हमारे ऐसे हैं, मैंने शुरुआती लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिन कार्यों में हमारा व्यापार जो है वह सारा जो आधारित होता है, जैसे कि एक ब्यूटिशियन का कार्य है, जो ब्यूटी पार्लर वाली महिला है जो साथ सज्जा का सामान या सौंदर्य से आधारित जो काम करती है, तो उसको बातचीत में परंगत होना चाहिए। यदि वह जिस महिला के सौंदर्य पे कार्य कर रही है, यदि वह उससे बातचीत करती है बहुत अच्छे ढंग से, उसे हर चीज को समझाती है, हर चीज की उपयोगिता बताती है, हर चीज का महत्व बताती है, तो जो दूसरी महिला है जो उसके पास एज ए ग्राहक आई है, अगली बार उसी के पास ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी बात करूं, देखो मैं बाल कटवाता हूं, ठीक है, बाल कटवाता हूं तो मैं उसी नाई के पास जाना पसंद करता हूं जो बड़े प्यार से बोलता है। बोल तो मेरे घर के आसपास काफी नाइयों की दुकानें हैं, ठीक है, बट फिर भी हम हर बार एक ही नाई के पास जाते हैं। या मान लीजिए आप कहीं से सामान खरीदते हैं, तो ज्यादातर आप देखोगे, ज्यादातर आप एक ही दुकान पे जाएंगे, बार बार उसी दुकान पे जाएंगे। यदि वह दुकानदार आपसे कुछ पैसा ज्यादा भी लेगा तो भी आपको यह लगेगा कि उसी दुकान पर जाना ही आपके लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हम यह देखते हैं कि सामान खरीदने के साथ साथ हम जिससे सामान खरीद रहे हैं क्या वह हमसे अच्छे ढंग से बातचीत करता है या नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो बातचीत है, जो उसकी बात करने की कला है, वह हमें सम्मोहित कर लेती है। तो हमारी बहनें जो यहां बैठी हैं वह बातचीत करने में काफी अच्छी हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत लोगों से हम बात करते हैं तो महिलाओं की जो वाक्पटुता होती है, महिलाओं की जो बात करने की कला होती है, वह पुरुषों के मुकाबले काफी अच्छी होती है। तो उनकी जो बातचीत करने की कला है वह आपको अपना सामान बेचने में काफी ज्यादा सहायता करती है। इसके साथ साथ हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग का पहला नियम यही है कि अपने सामान के बारे में बताते समय कभी संकोच न करें, मन में कभी संशय न लाएं, ठीक है, ना ही कभी आपको ऐसा लगे कि मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं, हर ग्राहक को बताता हूं और ग्राहक मेरे सामान को पसंद नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्राहक सामान खरीदना ही नहीं चाहता, तो यदि आप उसे विशेषताएं बताएंगे, उपयोगिता बताएंगे, तो आपकी बातों पर ध्यान न दे। तो हमें निरंतर बिना संकोच किए एक अच्छे तरीके से अपनी चीजों के बारे में ग्राहकों को बताना चाहिए। साफ सुथरा रहें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप मार्केट में जाके सामान बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, तो वहां पर कोई भी ग्राहक अगर आपके पास आता है तो ग्राहक पहले ये देखता है कि जो व्यक्ति सामान बेच रहा है वो किस वेशभूषा में है, कैसे बैठा है। यदि आप देखिए, मुझे कुछ खाने का सामान खरीदना, मान ली छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुझे पानी पूरी खानी है, ठीक है, अब मेरे सामने 3 पानी पूरी वाले ठेले हैं, ठीक है, मैं किसी उस ठेले पर जाना ज्यादा पसंद करूंगा जहां जिस ठेले पर जो पानी पूरी खिला रहा है वह साफ सुथरा व्यक्ति होना चाहिए, हाथ साफ हो, कपड़े साफ हो, क्योंकि तभी देखो आज के युग में कोई भी ग्राहक है वह आपसे तभी बात करना पसंद करेगा, तभी आपकी दुकान पर आना चाहेगा जब आप एक साफ सुथरे होंगे, ठीक है। तो हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मेहनत तो देखो पहली चीज है, मेहनत के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार मेहनत कर दी फिर आप मेहनत करना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए मेहनत कश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना मेहनत के आप कोई भी व्यापार नहीं चला सकते। इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य व्यापार का है, लाभ कमाना तो है ही है, लाभ कमाने के साथ साथ ग्राहक की संतुष्टि लक्ष्य है। तो मार्केटिंग में या सामान बेचने में आप जो आपने ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो ग्राहक की संतुष्टि, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक मार्केटिंग से एक संतुष्ट ग्राहक उस पैसे खर्चने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक जब दूसरे ग्राहकों को आपके सामान के बारे में बताएगा तो दूसरे ग्राहक भी आपके सामान के लिए आकर्षित होंगे। तो हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी सामान बेचें, जिस तरह का सामान बेचें, जिस ग्राहक को हम बेचें, वह ग्राहक हमसे संतुष्ट होकर जाए, वह हमारे सामान से संतुष्ट हो, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक आपका बेस्ट मार्केटिंग वाला पर्सन होता है, क्योंकि वह हर जगह जाकर आपकी बात को बताएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ पैसा खर्च करके मार्केटिंग करना चाहें तो हम कुछ पैम्पलेट छपवा सकते हैं अपने सामान के बारे में,
हमें पता है भी इस पर्टिकुलर एरिया के लोग हमारे सामान को खरीद सकते हैं, तो हम उनके घरों पे जाकर एक एक पर्चा फेंक सकते हैं। तो ये कई सारे माध्यम हो सकते हैं। आप देखो वैसे तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल छोटे स्केल पर, मतलब उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके पास ना तो काफी ज्यादा पैसा है, वह जो उनके पास साधन उनके पास है उन्हीं को ही यूज करके, उन्हीं का ही उपयोग करके आत्मनिर्भर होने की ट्राई कर रही हैं। तो यदि कुछ पैसा आ जाता है, यदि हमारा कार्य चलने लग जाता है, तो हम फिर अपनी मार्केटिंग के तरीकों को उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम पर्चे छपवा सकते हैं, हम एक बैनर बनवा सकते हैं जिसपे जो भी सामान हम बेच रहे हैं उस सामान से, उससे सामान में क्या क्या है, उस सामान में क्या क्या विशेषता है, जो मार्केट में दूसरा सामान अवेलेबल है वह सामान उनसे कितना अच्छा है, उस सबके बारे में उस पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सामान बेचने की ट्राई करिए, सामान बेचने की कोशिश करनी चाहिए, और जो एक मेहनत कश कार्य है जिसमें काफी मेहनत लगती है, और संतुष्ट ग्राहक को करना हमारा पहला उद्देश्य है। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। भाग तीन के दूसरे पॉइंट, जो दूसरी बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, खातों में हिसाब रखना। देखिए हम व्यापार तो शुरू कर देते हैं, ठीक है, और व्यापार शुरुआत करने के बाद शुरुआती दौर पर जब हमारे पास में कुछ जमा पूंजी होती है तो हम उसे खर्च करते हैं। ठीक है, कई बार हमारी बहनें या काफी लोग ऐसे होते हैं जो हिसाब किताब नहीं रखते, और कुछ समय के बाद में उनको यह नहीं समझ में आता कि उनका कितना पैसा किस चीज पर खर्च हुआ और उन्होंने कुल कितना पैसा खर्च किया, और जो अब वह लाभ कमा रहे हैं क्या वह उस उनकी कॉस्ट या उसके खर्चे के अनुरूप है या नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा न जाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आप एक अपनी डायरी जरूर बनाइए, एक डायरी अपनी जरूर बनाइए। ठीक है, उस डायरी में कुछ भागों में आप उसे बांट सकते हैं। ठीक है, क्या क्या भाग बना सकते हैं? एक भाग के अंदर तो आप यह देखो, मान लीजिए ये मेरा पहला पेज है, आपने आगे तो लिखना था, लिख दिया ओम नमः शिवाय, भगवान जी का नमस्कार करके अपना स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जो लक्ष्मी माता का प्रतीक है। उसके बाद पहले पेज पर आप ये देखिए, हमने इसके दो भाग कर दिए। ठीक है, एक भाग हुआ हमारा खर्चे का और एक भाग हो गया हमारा आय का। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां लिखेंगे सारा खर्चा, जो भी खर्चा होता है आपको एक एक करके रोज का खर्चा लिखना है, और यहां हमने लिखनी है आय, मतलब उससे हमें कितने का सामान बिका। मान लीजिए अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में मैं उस महीने में मैंने जितना भी खर्चा किया वह मैं सारा एक तरफ लिखता जाऊंगा। ठीक है, और जितने भी मुझे आय हुई सामान बेचने से, जहां जहां से पैसा आया वह मैं सारा यहां पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, और महीने के अंत में हम जोड़ कर लेंगे दोनों तरफ का और यह देखेंगे हमें लाभ कितना हुआ। ठीक है, ऐसी अगले महीने आपने करना है। मतलब आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि यदि आपने 100 रुपए व्यापार में लगाए हैं तो 100 रुपए किस किस जगह पे आपने खर्च किए हैं। ठीक है, और यदि महीने के अंत में हमारी जेब में 500 रुपया है तो हमें यह जरूर पता हो कि वह कहां से हमारे पास में आया है। तो इससे हमें दो बातों में फायदा होता है, एक तो हम यह कंपेयर कर सकते हैं, यह हम आपस में तुलना कर सकते हैं कि मान लीजिए जो कच्चा माल मैंने आज खरीदा, अगले महीने अगर मैं वह कच्चा माल खरीदने दोबारा जा रहा हूं तो क्या उसकी लागत में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, उसकी मूल्य बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यदि मैं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा, यदि मैं कोई खाता नहीं बनाऊंगा, तो मैं इस चीज को ढूंढ नहीं पाऊंगा कि पिछले महीने मैंने जो सामान खरीदा था उसकी लागत क्या थी, उसका मूल्य क्या था, और इस महीने जो मैं सामान खरीदने वाला हूं उसका मूल्य क्या होगा। क्योंकि यदि सामान का मूल्य बढ़ रहा है तो हम उसी के हिसाब से अपनी जो वस्तु है, अपना जो सामान है, उसका भी मूल्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि अगर आपकी लागत बढ़ेगी तो हम अपनी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को जरूर बनाइए, खर्चा सारा लिखो, आय सारी लिखो। ठीक है, इसके अलावा आप यह देखो कि व्यापार चलाने के लिए आपने किन किन चीजों को खरीदा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एसेट हैं, एसेट का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, वह भी उस डायरी में आप एक जगह पर लिखिए क्या क्या सामान आपने व्यापार के लिए खरीदा है। इसके अलावा आप जब ग्राहकों से मिलते हैं तो जो आपके संतुष्ट ग्राहक है, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए उन संतुष्ट ग्राहकों के पते भी आपके पास में हो। यदि ग्राहकों के पते आपके पास में होंगे
तो किसी कारणवश अगर कोई ग्राहक आप तक सामान लेने नहीं आ रहा है तो आप अपने सामान को वहां तक जाकर बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपका व्यापार आगे बढ़ता है फिर हम और चीजों पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए शुरुआती दौर पर हमने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, ठीक है, और 6-8 महीने की मेहनत के बाद में वह व्यापार में काफी वृद्धि हो गई। अब मुझे ये लगता है कि मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं और लागत बढ़ रही है, तो मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता। तो फिर हम यह सोचते हैं क्यों ना किसी को साझेदार बना लिया जाए, तो फिर हम साझेदारी में आ जाते हैं। तो इस तरह से समय की मांग के साथ साथ, देखो मैं तो अंत में फिर ये कहूंगा, समय की मांग के साथ साथ हमें किस तरह के व्यापार के स्वामित्व पे जाना चाहिए, एकल व्यापार करना चाहिए या साझेदारी का व्यापार करना चाहिए, वह सब बात जो आती है वह बात आती है कि हमारे व्यापार का स्केल कितना है, क्या हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा फिर आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जो पैसा हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है, मान लीजिए मुझे पता है कि अगले 6 महीने मेरे पास में इतना

अंत में फिर मैं एक बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा, जो बहनें हमारी यहां पर बैठी हैं, इन वर्कशॉप के माध्यम से मैंने आपको एक कागजी तौर पर समझाया है कि व्यापार क्या होता है, व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद अवसर कैसे तलाशते हैं, अवसर तलाशने के बाद हमें अपना सामान बनाना होता है, सामान बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा उसका मूल्य निर्धारण कैसे करना चाहिए, और उसके बाद सामान बनाने के बाद उसको कैसे बाजार में बेचा जाए, और बेचते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसके अलावा जो हमने सामान बेचा है या जो हमने खर्चा किया है या जो हमारी आय हुई है, उस आय को कैसे एक लेखा के तौर पर एक उसके खाते बनाए जाने चाहिए, एक कॉपी में जरूर, आप एक डायरी में जरूर उसको एंट्री करिए, और धीरे धीरे जब आपका व्यापार बढ़ जाता है तो किन किन बातों का आपने आगे ध्यान रखना है। आशा करता हूं मैं कि इन वर्कशॉप के तीन भाग जो मैंने आपको, आपने जो मेरे तीन भाग देखे, इनको सुनने के बाद आपके मन में यह इच्छा तो जरूर पैदा होगी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए आपको, और आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है। हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और परिवार की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है, तो उन महिलाओं को उन महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर आना चाहिए कि वह भी आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार को पाल सकती हैं और अपना गुजारा कर सकती है। अंत में रीड इंडिया के माध्यम से मैं दिनेश मिगलानी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी तत्परता से और इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से मेरे लेक्चर्स को सुना। धन्यवाद, नमस्कार।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही हैं हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो भाई की, छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। और एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेस हैं, मैं कर लूँगी, अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में, मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रही हूँ, आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है।

लेके भी गई हूँ घर। बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम एम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की मानते हैं, आजकल के ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह है, और गर्ल्स से जो कुछ कर दे जैसे बॉयज़ के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमज़ोर पता नहीं क्यों समझते हैं आज के देश में, नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज़ कमा के नहीं खिला सकते। बॉयज़ है ना बहुत मतलबी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज़ है ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स को रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज़ है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज़ की तरफ तो बहुत ही कमी जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज़ से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं, और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी ज़िंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयज़ होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का करो या मरो आह्वान और देश भर से अनगिनत आजादी के मतवाले बलिदान की राह पर चल पड़े। उन्हीं में से एक वीरांगना थी कनकलता बरुआ। असम के गोहपुर में जन्मी कनकलता के मन में क्रांति का अंकुर महज 7 वर्ष की उम्र में ही फूट चुका था, जब कनकलता ने पास के गांव में हुई एक क्रांतिकारी सभा में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तेजपुर में मृत्यु वाहिनी दल के गठन के दौरान कनकलता दल की सक्रिय सदस्य बन गईं। आंदोलन के समर्थन के लिए मृत्यु वाहिनी ने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया और 20 सितंबर 1942 को हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए कनकलता जुलूस के साथ आगे बढ़ने लगी। पुलिस की चेतावनी से बेपरवाह निर्भीक कनकलता के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ता रहा। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगते ही कनकलता गिर पड़ी और आखिरकार हाथ में तिरंगा और दिल में आजाद राष्ट्र का सपना लिए ये महान स्वाधीनता सेनानी हमेशा के लिए पंचतत्व में लीन हो गई।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: किसी का नाम
1: इसे क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
0: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है? एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
1: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
0: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
1: अच्छा,
0: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
1: ओ तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
0: ऑफ कोर्स।
1: विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
0: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है।

गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला, मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर यह रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियो आर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ न होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपका बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इंगलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो।

0: यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
1: बाय।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महान जनजातीय नायक टंट्या भील का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे

अगर तुम आना चाहो हमारी धरती पर, तो आओ बादलों की तरह और हरी कर जाओ हमारी कोख। अगर तुम आना चाहो हमारे जंगलों में, तो आओ वसंत की बयार की तरह और सूखी टहनियों में भर दो कोंपले। अगर तुम आना चाहो हमारी नदियों पर, तो आओ पंडुकों की तरह और अपनी चोंच से इसकी धार पर संगीत छोड़ जाओ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे आने पर, तो पहाड़ों से उतर आएंगे हमारे देवता आग बरसाने के लिए। हमारे पुरखों की पवित्र आत्माएं उठ खड़ी होंगी अपने सीने का पत्थर हाथ में लिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो हमें सामने खड़ा पाओगे तीर धनुष और हाथों में कुल्हाड़ी लिए। हमारे संस्कारों में नहीं है कुछ भी धोखे से प्राप्त करना। कुछ ऐसी ही हुंकार थी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उस जनजातीय समाज की, जो उनके जल जंगल और जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र लगातार रच रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए युद्ध का शंखनाद करने वाले ऐसे ही जनजातीय महानायक थे टंटिया भील, जिन्हें अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिनहुड कहकर पुकारा। निमाड़ अंचल के घने जंगलों में पले बढ़े टंटिया भील ने निर्धन और पीड़ितों के दुख दर्द को कुछ इस तरह से बांटा कि निमाड़, मालवा, धार, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जनजातीय समाज ने उन्हें एक लोक देवता की तरह अपनी चेतना में शामिल कर लिया। इन अंचलों में उनका जीवन चरित्र आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ गाया जाता है। टंटिया भील का जन्म सन 1842 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा अहीर गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनका लालन पालन उनके पिता भाऊ सिंह भील ने किया, जो एक कृषक थे। गांव में ज्वार के पौधे को सूखने के बाद लंबा और पतला होने के कारण टंटा कहा जाता है। बचपन से ही दुबला पतला और लंबा होने के कारण भाऊ सिंह के इस पुत्र का नाम टंटिया पड़ गया। पिता ने उन्हें लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने में प्रवीण कर दिया। युवावस्था आते आते काजलबाई से उनका विवाह कराकर खेतीबाड़ी की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। टंटिया गांव के युवकों में अत्यंत लोकप्रिय और उनके अघोषित नेता की तरह थे। गांव में छोटे बड़े सभी लोग उन्हें हृदय से प्यार करते और बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनकी वीरता, धीरता और न्यायप्रियता की चर्चा गांव भर में थी। टंटिया के ऊपर दुख का पहाड़ तब टूटा जब इधर पिता की मृत्यु हुई और उधर भीषण अकाल पड़ा। पेट भर भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो गया था। 4 वर्षों का लगान देना शेष रह गया। ये वो समय था जब किसान ये महसूस करने लगे थे कि सरकार जमीन की मालगुजारी के नाम पर उनकी उपज का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे ले लेती है। सरकार का समर्थन उन लोगों को था जो किसानों का शोषण करते, मनमाने ढंग से उनकी जमीन छीन लिया करते थे। जब कभी किसान इस दमन के खिलाफ खड़े होते, तो पुलिस और सेना कानून व्यवस्था के नाम पर उन्हें कुचल दिया करती। भाऊ सिंह के भलेपन और भोलेपन का बड़दा में बहुत सम्मान था। टंटिया के साहसी कारनामों की जानकारी भी मालगुजार को मिलती रहती थी, इसलिए वो टंटिया को अपने अधिकार की भूमि से बेदखल करने के बारे में बहुत पहले से ही सोच रहा था। भाऊ सिंह की मृत्यु को उसने इसका अच्छा अवसर जाना। टंटिया लगान देने में असमर्थ थे, लेकिन वो इतने स्वाभिमानी थे कि कृषक से मजदूर बनकर इसी गांव में काम करना टंटिया को स्वीकार्य नहीं था। ऐसे कठिन समय में उन्हें याद आया कि पोखर गांव में भाऊ सिंह और उनके मित्र शिवा पाटिल की भागीदारी की कृषि भूमि है, जिस पर शिवा पाटिल ही खेती करते हैं। भाऊ सिंह और शिवा पाटिल के बीच इतना गहरा प्रेम था कि भाऊ सिंह ने कभी न तो भूमि के आय व्यय की ही जानकारी रखी और न ही उपज से कभी अपना हिस्सा ही लिया। टंटिया भील ने अपनी पत्नी काजलबाई और पुत्र किशन को अपने ससुराल घाट खेड़ी छोड़ा और पोखर गांव की ओर चल पड़े। यही वो प्रस्थान बिंदु था जहां से टंटिया के जीवन की सारी उथल पुथल आरंभ हुई।

अपनी पैतृक भूमि पर शिवा पाटिल के साथ खेती किसानी कर सुखपूर्वक जीवन यापन करने का स्वप्न लिए टंटिया भील पोखर गांव पहुंच गए। शिवा पाटिल ने उनका आदर सत्कार तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन एक सप्ताह बीत गया, टंटिया जब भी भूमि पर काम करने की बात करते शिवा पाटिल उसे टाल जाता। अंततः शिवा पाटिल की मंशा जाहिर हुई जब उसने कह दिया कि इस भूमि पर सिर्फ उसी का अधिकार है, टंटिया चाहें तो यहां मजदूरी कर सकते हैं। शिवा के मुकरने के बाद टंटिया न्यायालय पहुंचे, लेकिन झूठे साक्ष्यों के आधार पर शिवा पाटिल की विजय हुई। ये अन्याय टंटिया को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो लाठी लेकर अपने खेत पर गए और वहां काम कर रहे लोगों को मारकर भगा दिया और इस तरह उन्होंने अपने खेत पर कब्जा कर लिया। इस पर शिवा पाटिल ने टंटिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने टंटिया को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दायर किया। टंटिया भील को 1 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। जेल में कैदियों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होता था। ये सब देखकर टंटिया अत्यंत विक्षुब्ध हो गए। उनके मन में विद्रोह की भावना बलवती होने लगी। जेल से छूटने के बाद वो पोखर गांव में ही मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने लगे, किंतु वहां भी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया गया। गांव में कोई भी घटना घटती तो टंटिया को उसमें फंसा देने का षड्यंत्र रचा जाता। परेशान होकर वो पोखर से हीरापुर चले आए। शिवा पाटिल के लोगों ने यहां भी गांव वालों को टंटिया भील के खिलाफ भड़काया। 2 बार चोरी के झूठे आरोप में वो गिरफ्तार किए गए। जब तीसरी बार ये हुआ तो वो भाग निकले। वो समझ चुके थे कि अगर जिंदा रहना है तो इन लोगों से डटकर मुकाबला करना होगा। इस तरह लगातार होते अन्याय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वो योजनाबद्ध तरीके से अब आगे बढ़ना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वो खजूरी गांव के बिजनिया भील से मिले और उनके साथ आ मिला दौलिया। इन तीनों ने मिलकर गुप्त मंत्रणा की, योजना बनाई जिसे 3 चरणों में पूरा करना था। पहला चरण था अपने शत्रुओं से बदला लेना। दूसरा चरण था मालगुजार और पटेलों से लगान की रकम वसूल कर उसे गरीबों में बांटना। और तीसरा चरण था थानों को लूटकर हथियार प्राप्त करना और क्रूर अंग्रेज अत्याचारियों की हत्या करना। तीनों ने मिलकर अपने दल में अनेक क्रांतिकारियों को सम्मिलित कर लिया। इस दल का भरण पोषण लूट की रकम से होता था। इस दल ने सबसे पहले टंटिया के पोखर बस्ती के दुश्मनों को ठिकाने लगाना आरंभ किया। जिन जिन लोगों ने टंटिया को सताया था और उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी थी, उनसे बदला लिया गया। इसके बाद शिवा पाटिल, जिसने टंटिया को ये रास्ता अपनाने के लिए बाध्य किया, उसे समाप्त किया गया। पटेलों को घर से निकालकर बेघर किया गया, लेकिन कभी भी महिलाओं और बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई। उनके विद्रोही तेवर ने बहुत कम समय में ही उन्हें प्रसिद्धि दिलवा दी। अब उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा। टंटिया भील का दल एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता, लोगों के सुख दुख में सहयोगी बनता। किसे कब कैसी आवश्यकता है ये टंटिया को मालूम होता था। लूट का सारा पैसा वो गरीबों में बांट देते, गरीब कन्याओं की शादी करवाते, लोगों की मदद कर वो चल देते दूसरे ठिकाने पर। जनजातीय समाज उन्हें टंटिया मामा कहकर पुकारने लगा। पूरे अंचल में ये विश्वास पैदा हो गया था कि टंटिया मामा के रहते कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। सेवा और पराक्रम की भावना ने उन्हें जननायक बना दिया। मालगुजारों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। टंटिया, बिजनिया और दौलिया को पोखर बस्ती में बुलाया और धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। हिम्मत पटेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई और झूठी गवाही भी दी। तीनों को खंडवा की जेल में कैद कर दिया गया। जेल की कोठरी नंबर 7 में तीनों एक साथ रखे गए। इसी जेल की कोठरी नंबर 8 में टंटिया के 10 भील सेवक पहले से ही कैद थे। टंटिया के आते ही उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जान गए कि अब जेल में होने वाली ज्यादतियों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। टंटिया ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, अम तमरा आफत का दिन खत्म समझो, बखत देखी ना
हम सब यहाँ से संगात निकले चलंगा।

24 दिसंबर सन 1878, टंटिया को सजा हुए एक महीने का समय बीत चुका था। दूसरे महीने का ये चौथा दिन था जब साहस, शारीरिक क्षमता, सूझबूझ और बहादुरी की उस घटना को इन महानायकों ने अंजाम दिया जिसकी विश्व इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। टंटिया और उनके साथियों ने अपने कपड़ों और कंबल की रस्सी बनाई। दीवार के एक छोटे से छेद को नाखूनों से कुरेदते हुए इतना बड़ा सुराख बना दिया कि सभी साथी उससे निकल गए। कपड़ों की रस्सी के सहारे 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर बिना शोर शराबे के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 के सभी 12 भील कैदी फरार हो गए। टंटिया ने अपना वादा निभा दिया था। जेल में कोहराम मच गया। समस्त निमाड़ क्षेत्र में मालगुजारों की जान खतरे में पड़ गई। सन 1879 में जून महीने के अंतिम दिन टंटिया अपने दल के साथ भिनपान गांव पहुंचे और हिम्मत पटेल को उसके किए की सजा दी। इस लूट और हत्या के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार पर भारी दबाव पड़ने लगा। एक के बाद एक अधिकारी नियुक्त किए गए, लेकिन सभी को निराशा ही हाथ लगी। अब ये दल अपनी योजना के तीसरे चरण में था, अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना। टंटिया को पकड़वाने पर भारी इनाम की घोषणा हुई। टंटिया ने अपने दल को कई टोलियों में विभक्त कर दिया। एक टोली आज एक स्थान पर तो दूसरी टोली अगले दिन 20 मील दूर दूसरे स्थान पर और तीसरे दिन तीसरी टोली तीसरे स्थान पर धावा बोल देती। पुलिस इस तूफानी गति से परेशान हो उठी। अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई। अब अंग्रेजों ने गुप्तचरों और सादी वर्दी में पुलिस का जाल फैला दिया। दौलिया और बिजनिया गिरफ्तार कर लिए गए। टंटिया भील को इससे बहुत धक्का पहुंचा और उन्होंने बदला लेना आरंभ कर दिया। टंटिया भील ने अनेक अत्याचारी पुलिस अधिकारियों को मारा, वेश बदल बदल कर परेशान किया। वो इतने निर्भीक थे कि एक क्रूर अंग्रेज पुलिस अधिकारी के पास हजामत करने के बहाने से स्वयं थाने में पहुंचे और उसकी नाक काटकर उसे दंड दिया और निकल भागे। पुलिस देखती ही रह गई। सन 1878 से लेकर 1886 तक उन्होंने लगभग 400 लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। टंटिया का प्रभाव मध्य प्रांत से लेकर महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्र तक फैल गया। 11 वर्षों तक वो अंग्रेजों और शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। अब टंटिया के पास बिजनिया, दौलिया, हिरिया और मेदिया जैसे जांबाज साथी भी नहीं रहे। वो अब शिथिल से हो गए थे। 11 अगस्त सन 1889, श्रावण पूर्णिमा, राखी के दिन गणपत ने अपनी पत्नी से राखी बंधवाने के लिए बनेर में अपने घर उन्हें आमंत्रित किया। अपने 6 साथियों को लेकर जब टंटिया अपनी मुंहबोली बहन के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ दिया गया। कड़े पहरे में उन्हें खंडवा से इंदौर होते हुए जबलपुर भेजा गया। टंटिया को जहां जहां से ले जाया गया उन्हें देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। जबलपुर न्यायालय में उन पर केस चला। 19 अक्टूबर सन 1889 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जंजीरों से जकड़कर जब न्यायालय से उन्हें जेल ले जाने के लिए बाहर ले जाया गया तब न्यायालय के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई थी। अपने टंटिया मामा की सजा पर भीषण कोलाहल के बीच रुदन की आवाजें गूंज रही थीं। 10 नवंबर सन 1889 को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स के अंक ने टंटिया भील की खबर छापते हुए उन्हें इंडियन रॉबिनहुड कहा। 4 दिसंबर सन 1889 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। माना जाता है कि इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी के पास उन्हें फेंक दिया गया था। यहां बने समाधि स्थल पर लकड़ी के पुतलों को टंटिया मामा की समाधि भी कहा जाता है। इस स्थल पर हर बार रेल के क्षणिक रुकने पर यात्रियों के बीच टंटिया मामा की प्रचलित और अप्रचलित कई कहानियां चर्चा का विषय होती हैं। उनके जन्म स्थान बड़दा अहीर में स्वराज संस्थान संचालनालय
संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया गया है। ग्राम गढ़ी कोटहा में उनका एक मंदिर भी स्थित है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने 1,00,000 रूपये का जननायक टंटिया भील सम्मान भी स्थापित किया है, जो शिक्षा और खेल गतिविधियों में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रदेश के जनजातीय युवा को प्रदान किया जाता है। टंटिया मामा आज भी निमाड़, मालवा, धार, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की लोक स्मृति में उसी श्रद्धा और आदर के साथ उपस्थित हैं। नमन ऐसे अमर जननायक को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन।
2: सर्वोच्च न्यायालय के कल के अहम फैसले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को पूरी तरह वैध ठहराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास SIR करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद विपक्षी पार्टियों के SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर पूरी

0: SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।
1: आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, ये जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, जो स्वच्छता की बात करते हैं इलेक्टोरल रोल की, इसमें SIR का कितना महत्व रहता है?
2: बहुत ही महत्व रहता है क्योंकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है शुरू होता है इलेक्टोरल रोल से। कोई भी देश का, खाली भारत का नहीं, कोई भी देश का इलेक्टोरल रोल जो है वो अगर सही हो तो फिर इलेक्शन साफ होता है, फ्री फेयर होता है और इलेक्शन के नतीजे लोगों का विल को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए सारी चीज का शुरुआत है वोटर लिस्ट से, जिसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। और भारत के इलेक्टोरल रोल जैसे है कि करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंचने वाला था, दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल है, शायद बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं होगा, लेकिन वो 100 करोड़ में अभी एक पॉज लग गया है SIR के जरिए। अभी थोड़ा सा रिवर्स होगा, कुछ नंबर्स घटेंगे और घटेंगे क्यों, अच्छे कारण से घटेंगे। अच्छे कारण से इसलिए घटेंगे क्योंकि सब घोस्ट नेम्स थे, ये नेम का कोई महात्म्य नहीं था। जो इलेक्टोरल रोल में जो मरे हुए लोगों का नाम हो या जो चले गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के उन लोगों का नाम हो या जो उन लोगों का नाम दो तीन जगह में हो उनका नाम हो तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस सब को साफ करने के लिए और जो लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहना चाहिए उनको नाम को निकालने के लिए और खास करके आर्टिकल 326 के अनुसार कौन कौन एलिजिबिलिटी है हमारा भारत की इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए, नागरिक होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब तो देखना होगा ना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये सब चीज को अच्छी तरह देखा गया क्योंकि उसमें एन्यूमरेशन होता है फ्रेश। एक बार मान लीजिए कि एक बार एक फ्रेश लिस्ट जैसे बनता है वो बात है, क्योंकि हर साल जो होता है समरी रिवीजन उसमें क्या है कि उसी लिस्ट के ऊपर करेक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसमें लेकिन मान लीजिए कि पूरा एक बार एक समूचा नया इलेक्टोरल रोल आपके सामने रखा गया है और जो लोग रहना चाहिए वो रहते हैं, जो लोगों को नहीं रहना है उनको निकाला जाता है, माने वो नाम को, लोगों को नहीं उस नाम को, और 20-22 साल के बाद हो रहा है। तो उससे लगता है कि अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल अगर इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है आर्टिकल 324 के तहत, तो वो काम जो 20-22 साल के बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से वो काम दुरुस्त तरीके से होता है, तो इसलिए होना चाहिए।
1: जो प्रक्रिया हुई जो बिहार से शुरू हुई और बाद में फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया सेकंड फेज में और थर्ड फेज का काम अभी चल रहा है, इस बीच में एक विवाद खड़ा हो गया SIR को लेकर, तो इन सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो पूरा विवाद रहा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आने के पहले?
2: देखिए, जितने अथॉरिटीज होते हैं देश में या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्निंग एजेंसीज होते हैं, ये सबसे इलेक्शन कमीशन थोड़ा अलग तरह के है। इनका काम ही एक हिसाब से पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कैंडिडेट के साथ, रोज काम इन्हीं के साथ ही होता है। इनका पंजीकरण करना, इनका कैंपेन को रेगुलेट करना, इनका इलेक्शन कंडक्ट करना, इनका नतीजे निकालना, ये सब इलेक्शन कमीशन काम है, सिंबल्स देना, ये सब काम है। तो ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता है एक हिसाब से। तो उसका मतलब नहीं है कि जरूर विवाद हो, उसका मतलब नहीं है कि जरूर पॉलिटिकल एक्यूजेशंस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल जरूर होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR इस तरीके से क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है लोगों को तकलीफ देता है इस तरह से नहीं करके ऐसे करना चाहिए, समय इतना लगना चाहिए, जो प्रोसीज्योर एलिमेंट है उस पर बार बार सुझाव आना चाहिए और बार बार प्रश्न भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का दायित्व बन जो प्रोसीज्योर एलिमेंट है उस पर बार बार सुझाव आना चाहिए और बार बार प्रश्न भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है उस सुझाव को लेके कुछ परिवर्तन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करेक्शन कोर्स करेक्शन करना है, किया भी है इलेक्शन कमीशन, कुछ अपने आप में किया है,

0: कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया है। अभी 60 करोड़ लोगों का SIR हो चुका है, करीब 40 करोड़ लोगों का होना बाकी है, बड़े बड़े स्टेट्स में जनरली हो चुका है। तो इसमें जो सवाल आए लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों का जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, जैसे अर्बन नहीं है, जो लिखा पढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता नहीं है और वो जाके पेपर के पीछे भाग रहे हैं या कहां अपील करने के लिए भाग रहे हैं, तो वो डिफिकल्टीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और कुछ हद तक एड्रेस भी हुआ है। लेकिन उसका राजनीतिकरण एक अलग बात है। वो राजनीतिकरण जब हो जाता है उसका मतलब यह है कि आपका पॉलिटिकल आउटकम को नजर में रखते हुए आप किसको काठगड़े में खड़ा कर सकते हो, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन को आरोप लगा सकते हो और कुछ कर सकते हो, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया बात है ही नहीं। आप देखिए, एक तरफ बात चल रहा है कि भाई इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को निकालना है, एक तरफ बात चल रहा है कि लोगों का अधिकार से वंचित नहीं करा जाना चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट लोगों का हो रहा है। मुझे लग रहा है ये सब है राजनीतिक अल्फाज, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अल्फाज है वो है दो चीज। एक है कि भाई जो डेड हैं, जो डुप्लीकेट हैं, जो माइग्रेटेड हैं, इनका नाम को जरूर निकलना है, एएचडी वोटर्स, और बाकी जो 326 में जो वोटर लिस्ट में जिनका होना चाहिए लोगों का एलिजिबिलिटी उनके हिसाब से, उनको अगर नहीं है तो उनको निकालना चाहिए, बाकी लोग जो एलिजिबल है उनको जोड़ना चाहिए। नो वन एलिजिबल शुड बी लेफ्ट आउट, नो वन इनएलिजिबल शुड बी इन। इस तरह का बात अगर हो तो तरीके की बात चलता है, फिर ये लोकतांत्रिक होता है, संविधानिक बात होता है, राजनीति को एक बार छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति, जैसे आप और हम जानते हैं और देखे भी हैं इस सिलसिले में, राजनीति बहुत हद तक इसके अंदर आ गया और राजनीतिक सवाले आए और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, तो आरोप तो किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वो सब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, टू थ्रो द बेबी टुगेदर विद बाथ वाटर, अब बाथ वाटर को आप निपटाइए लेकिन उसका मतलब बच्चा को ही फेंक देंगे क्या? तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये अवॉइडेबल था, लेकिन आज की तारीख में खास करके आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ही ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मोहर लगाया है उसके बाद विवाद अंत होना चाहिए और पीसफुल स्मूथ तरीके से सबका कोऑपरेशन के साथ बाकी SIR के जितना प्रक्रिया है, ये वाली और आने वाली कभी भी SIR होगा, वो ठीक से हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेवारी बनता है, जो जो सवाल करें सुझाव दें सुने, जो सवाल करें उसके जवाब दें।
1: सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल जजमेंट को कैसे व्यू करते हैं?
0: एक तो है कि आप आर्टिकल 3326 में जो वोटर इंडिया में इलेक्टर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसमें एक है कि वो सिटीजन होना चाहिए, तो भारत की सिटीजन को ही खाली वोटर लिस्ट में डाल सकता है कौन? डालेगा इलेक्शन कमीशन डालेगा, तो इलेक्शन कमीशन रख सकता है हाँ भाई ये सिटीजन है इसलिए वोटर लिस्ट में है, ये सिटीजन नहीं है इसलिए वोटर लिस्ट में नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोला है बहुत सही बोला है, क्योंकि SIR सिटीजनशिप या घुसपैठिया या इन्फिल्ट्रेटर बाहर के नागरिक, ये चीजों का सोल्यूशन नहीं है। SIR सोल्यूशन नहीं है ना, नागरिकता किसका है नहीं है उसका पुलिसिंग करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सिटीजनशिप एक्ट अलग है, उसका अथॉरिटीज अलग है और वो जो अथॉरिटीज हैं वो देखें कैसे लोगों को बाहर देश के लोग हमारे यहाँ आके नहीं रहे, यहाँ के नागरिक नहीं बने, या नागरिक को जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिले, ये सब देखने का काम अलग है, सिटीजनशिप एक्ट है इनका है। एक है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसी के तहत। लेकिन जो इलेक्टोरल रोल में रखेंगे वो नागरिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायलमा को या ये जो चीज को बहुत अच्छी तरह से संभाला है और पहले भी ऑब्जर्वेशन दिया था इलेक्शन कमीशन, ये तो मेरे को लगता है कि जो जजमेंट था बहुत हद तक एंटिसिपेटेड था। ये इतना सारे महीनों से चल रहा है ये सारे हियरिंग्स कि इसमें बहुत कीमती ऑब्जर्वेशंस दिया है बीच में सुप्रीम कोर्ट, वो फाइनली जजमेंट में कन्वर्ट हुआ कल। लेकिन उसने बोला है कि जो फाइनल सिटीजन कोई है या नहीं है उसको डिसाइड करेगा सिटीजनशिप एक्ट, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि किसका सिटीजनशिप का वैलिडिटी नहीं है वोटर लिस्ट में होने के लिए, तो वो वोटर लिस्ट से उसको निकाल सकता है। वो एक लिमिटेड पर्पस, अगर माने लिमिटेड पर्पस है, लेकिन उसका सिटीजनशिप का जो समूचा पर्सनालिटी है एक सिटीजन का वो डिसाइड करेगा, उसके लिए एक्ट है, अथॉरिटीज अलग है। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग करके दिखाया है और ये भी सही है, पहले भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है और ये भी सही है।
1: सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद इशू सेटल्ड माना जाए?
0: मैं तो सोच रहा हूं बिल्कुल सेटल्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सेंसिटिवनेस था वो बॉर्डर स्टेट ऑफ जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में, ये सब स्थिति ज्यादा था, एक तो पॉलिटिकल साइड से, एक बार रियल टोपोग्राफिकल या ज्योग्राफिकल सेंस में या हिस्टोरिकल सेंस में या सोशियोलॉजिकल सेंस में, वहां इस इश्यू का ज्यादा एक रिलेवेंस था, वैलिडिटी था और पॉलिटिसाइज तो था ही, तो इसीलिए वहां से अगर निकल गया है। और अभी मैंने जैसे कहा ना 60% आबादी जो है, वोटर्स आबादी जो है 100 करोड़ मान लो रफली थे, 2024 में शायद वही था, करीब 100 करोड़ वोटर होने वाले थे, और उसमें से अगर 60 करोड़ का हो गया, 40 करोड़ का तो हो जाने का तो कोई नहीं होने का मुझे नहीं लग रहा है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल मोहर लगा दिया तब तो ये सब कुछ क्लियर क्लियर क्लियर हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको और आपके श्रोताओं को कि इलेक्शन कमीशन पिछले 10-15 साल से एक बड़ा मुहिम में जुड़ा हुआ था। उसका है कि जो जो लोग हैं एलिजिबल सब पंजीकृत हो और जो पंजीकृत हैं सब वोट दें, तो लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में बहुत बड़ा मुहिम चला है, और उसका नाम एक आप स्वीप जानते हैं, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छे नतीजे आया था। जो टर्नआउट में जो लास्ट 10-15 साल में इजाफा हुआ है रजिस्ट्रेशन में भी, वो इसी का कारण से ये एक इलेक्शन कमीशन का मुहिम था। मुझे लग रहा है कि इस SIR ने जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको निकालने का जो एक कैरेक्टर बन के उभरा है, यही उसका कैरेक्टर है बेसिकली, क्योंकि जो नहीं है उनको निकालो लेकिन जो एलिजिबल हैं देश में उनको जोड़ो, वो भी इसका एक पर्पस है। लेकिन जो देखा लोगों ने, इस चीज ज्यादा उभर कर आया कि भाई नाम लोगों का निकल जा रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार और वो माहौल बनना चाहिए, कैंपेन बनना चाहिए कि जो जो लोग देश में जहां जहां हैं जो एलिजिबल हैं आर्टिकल 326 के अंदर, तो उनको सबको जोड़ा जाए। फिर जोड़ने का मुहिम अच्छी तरह हो पंजीकरण और वोटिंग में, तो फिर डेमोक्रेसी में थोड़ा भागीदारी का और एक परिवेश या माहौल बनेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन SIR के ऊपर मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है अंत है, और उसके हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिटीजन्स को, वोटर्स को और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबको आगे बढ़ना चाहिए अभी।
1: धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
4: हेलो, मेरा नाम नीलम है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लग गई थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन नहीं रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए, ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
5: Hello everyone, my name is Lancy and I passed 10th class. Then I think to join Read India Academy to improve my condition. मैंने अकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स. ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है. ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है. जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता. लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और आगे भी एक प्रोग्राम चल रहा है. मैंने ये कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ. और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है. पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी. लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती. बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ. थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी.
6: Good afternoon, my name is Tanu Tanwar. I passed 10th class and I joined Read India Academy in Shahabad, Mohammadpur. This is only one academy who teach us computer. This academy helps to be a woman independent. Read India starts tag program for girls and women only to improve the bad condition for women. And it helps us in form filling and also we helps our parents. Then we also reserve tickets. Thank you.
7: I'm Shweta. I study in IGNU University or I done NPTT course for Polytechnic Institute, Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है. और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं डिटेल दे रहे हैं तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, जैसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है. और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो. और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इस लाइन में आने से, क्योंकि इनमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए. इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं. और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनका आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं. और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं. तो इससे हमें हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट. अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं. एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में. मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है जो मिलती है वो करनी चाहिए. इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है. सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दें या मतलब बोल लें नहीं, कुछ नहीं करें, आगे नहीं बढ़े, एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है खत्म करने से खत्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको खत्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, जरूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया पास आउट हो गया स्कूल शादी कर दो ये वो, लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े और वो अपने पैरों पर खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है, उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो ये कर दो वो कर दो, नहीं प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है, तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।
8: भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन शायद कभी लोगों को मालूम होगा कि 1857 से करीब 77 बरस पहले भारत की एक रानी थी जिसके युद्ध कौशल और बहादुरी ने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि उनको परास्त कर कई बरसों तक राज किया। हम बात कर रहे हैं शिवगंगा की रानी वेलु नाचियार की, जिनको आज भी तमिलनाडु के लोग वीर मंगई या बहादुर रानी के नाम से जानते हैं। 3 जनवरी 1730 तमिलनाडु के रामनाथपुरम के राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा और रानी ने प्यार से इस कन्या का नाम वेलु रखा। बचपन से ही वेलु न सिर्फ अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी बल्कि इन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और बिना हथियारों के युद्ध में भी महारत हासिल थी। वेलु अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू में भी पारंगत थी। 16 बरस की आयु होते होते वेलु के लिए सुयोग्य वर की खोज शुरू हुई। राजा और रानी को उनके लिए शिवगंगा के राजा मुथुवडुगनाथ पेरिया के रूप में जीवन साथी मिला। करीब 20 वर्षों तक रानी वेलु और राजा पेरिया ने शिवगंगा पर राज किया। इसी बीच वेलु ने एक सुंदर कन्या विलच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन खुशियों के ये पल ज्यादा दिन नहीं चल सके। सन 1772 में अरकोट के नवाब मोहम्मद अली खान वालजा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर शिवगंगा पर हमला किया। भीषण युद्ध चला और राजा की हार हुई। रानी वेलु से पति और शिवगंगा दोनों छिन गए। उन्हें अपनी दुधमुही बच्ची की जान बचाने के लिए जंगलों में भागना पड़ा। रानी वेलु को संरक्षण मिला डिंडीगुल के विरुपची में, जहां इन्होंने गोपाला नायकर के संरक्षण में करीब 8 बरस बिताए। इतने दिन रानी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगी रही। इस बीच इनकी मुलाकात टीपू सुल्तान के पिता और मैसूर के सुल्तान हैदर अली से हुई। कहते हैं रानी वेलु ने उनसे शुद्ध उर्दू में बात की थी, जिससे प्रभावित होकर हैदर अली ने न सिर्फ इनकी मदद की बल्कि इनको अपनी बेटी की तरह माना। इस तरह अब वेलु के पास न सिर्फ एक मजबूत साथी था बल्कि मरुदू भाइयों और उदयाल जैसे शक्तिशाली सिपहसालार भी। अगले 8 वर्षों तक वेलु नाचियार धीरे धीरे अपने खोए हुए इलाके वापस पाने में लगी रही, और एक दिन वो भी आया जब वो अपने किले के सामने खड़ी थी। ये साल था 1780। रानी को मालूम था कि इस किले को भेदना आसान नहीं है, लेकिन इनके पास उस मुश्किल का तोड़ था। इन्होंने अपनी कमांडर कुइली के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये थी कि किले के अंदर विजयदशमी को प्रवेश किया जाए, जब आम दिनों के विपरीत किले में आने जाने पर उतने प्रतिबंध नहीं होते थे। कमांडर कुइली ग्रामीण औरतों के भेष में किले के अंदर प्रवेश कर गईं, और जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को कुछ समझ में आता वो उन पर कहर बनकर बरसने लगी। इस बीच अपने गुप्तचरों की मदद से कुइली को अंग्रेजों के गोला बारूद के भंडार का पता चला। उनके पास बस यही मौका था। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर मंदिर के दिए में जलने वाला घी लगाया और आग लगाकर बारूद के भंडार में घुस गई। जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसी धमाके के साथ शिवगंगा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। लेकिन इतिहास का शायद ये पहला आत्मघाती हमला था। रानी वेलू ने अगले 10 बरस तक शिवगंगा पर राज किया और अपनी बेटी वेलच्ची को उत्तराधिकारी बनाया। 1796 में 66 बरस की उम्र में रानी वेलू का स्वतंत्र शिवगंगा में निधन हो गया। इनकी वीरगाथा दक्षिण भारत की कला और नाट्य का हिस्सा है। भारत सरकार ने सन 2008 में रानी वेलू नाच्यार की याद में एक डाक टिकट जारी किया।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखने के अंतर्गत आप तक लाया गया है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आज का मेरा विषय है लू लगना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है। लू क्या होता है? लू गर्म हवाएं होती है, और हम अगर ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में रहते हैं तो हमें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव कर सकते हो और क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना क्या होता है या हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है, और इसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं गर्मी का मौसम साल का सबसे कठिन मौसम होता है। हालांकि हर कोई अपने आप को इसके लिए तैयार करता है, लेकिन ये गर्मी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आती है। सबसे प्रमुख हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में या गर्मी में रहता है, उसके शरीर का जो तापमान होता है 102 या 104 डिग्री जब पहुंच जाता है, तो इसे हीट स्ट्रोक का लक्षण माना जाता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। सामान्य लक्षणों में घबराहट, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी का लक्षण दिखते हैं। बेहोशी को पहला लक्षण माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ और लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर घूमना, गर्मी के बावजूद पसीने ना आना, लाल गर्म और सूखी त्वचा होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और बेचैनी होना। श्रोताओं, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है, तब तक उसको ठंडी जगह में यानी कि पंखे के नीचे रखना चाहिए। पैरों को ऊपर करके रखें। यदि इंसान होश में है तो उसे पानी पिलाएं। धीरे धीरे शरीर को बर्फ के या ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या होते हैं। अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद पानी पिए। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो अच्छी बात होती है। ठंडे पानी से नहाएं, हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल, खरबूजा, बेल को अपने आहार में शामिल करें। खूब सारा पानी पिएं, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें। ज्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं आप। छाता या टोपी का उपयोग करें। दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर, जब तक वो जरूरी ना हो। बच्चों को और बूढ़ों को अगर कोई डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हों तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। अगर वो ORS का घोल आपके पास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर बच्चों को और बूढ़ों को और आप भी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। हल्का खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस गर्मियों में
अपना, अपने परिवार का, उन सब का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कहानी कायर पोस्ट की, परमवीर चक्र नायब सूबेदार बाना सिंह। 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कादियाल गांव में जन्मे सूबेदार बाना सिंह शुरू से ही भारतीय सेना का अंग बनना चाहते थे। उनका सपना 6 जनवरी 1969 को पूरा हुआ और इन्हें जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में पहली तैनाती मिली और फिर 26 जून 1987 को पाकिस्तानी सेना से उनका सामना हुआ। हुआ यूं कि करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर पर बनी कायद पोस्ट को पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। भारत के सामने इस पोस्ट को दोबारा जीतना एक बड़ी चुनौती थी और इस मिशन की जिम्मेदारी सूबेदार बाना सिंह को मिली। कायद पोस्ट मतलब -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान, बर्फीले तूफान और हाड़ कपा देने वाली तेज सर्द हवाएं, जहां रहना तो दूर खड़े रहना भी आसान नहीं था। इसके बावजूद 26 जून 1987 को नायब सूबेदार बाना सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया।
1: दुश्मन को ये था कि मुश्किल है यहाँ आना हिंदुस्तान, मगर हिंदुस्तानियों भी ठान रखी थी कि इसको लेना ही लेना है।
0: अपने मिशन के लिए उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चुना जो कि जोखिम से भरा हुआ था और उसी रास्ते से उन्होंने पाकिस्तानी टुकड़ी पर औचक हमला बोला और उनके पैर उखाड़ दिए। देखते ही देखते विरोधियों की लाशें बिछ गईं। इस बेजोड़ साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर 2000 को कैप्टन की मानक रैंक के साथ बाना सिंह रिटायर्ड हुए और आज पूरे देश के लिए वो एक मिसाल हैं।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया। बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे है, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं, बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23, कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
2: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है, मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने इनके लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया, वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज़ करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने, मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ, मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना है या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपने लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम, उनके लिए जितना करूँ मैं, जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है, वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बनाए, हर काम गर्ल्स के लिए बनाए। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया है, वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है, हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीख के जाऊंगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज यहाँ की हर चीज अच्छी है।
3: आई एम प्रियंका जायसवाल, आई बिलोंग यूपी इलाहाबाद एंड लिविंग शाहबाद मोहम्मदपुर। मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज़ उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूँ, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी। इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली ना शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे, तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।
4: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है, और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

भोपाल के जाने माने वैद्य खुशीराम शर्मा के घर 19 अगस्त 1918 को जब शंकर दयाल ने जन्म लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो देश की सेवा में अपना जीवन होम कर देंगे। खानदानी पेशा न अपनाते हुए शंकर दयाल ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में पढ़ाई की। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से कानून पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही कानून के प्रोफेसर रहे, लेकिन 40 के दशक में महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। आजादी के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1952 में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1956 में नया मध्य प्रदेश बना तो 15 साल तक विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे और अनेक विभागों के मंत्री रहे। 1971 में वो संसद के लिए पहली बार चुने गए। 3 साल बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दूर संचार मंत्री बनाया। 1980 में डॉक्टर शर्मा फिर लोकसभा में पहुंचे। महाराष्ट्र और पंजाब के राज्यपाल पद पर शानदार काम करने के बाद 1987 में उन्हें देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। 5 साल बाद वो देश के सर्वोच्च पद पर थे। राष्ट्रपति के तौर पर दुनिया भर में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत का नाम रोशन किया। हर बड़ा देश उनके ज्ञान और कौशल का कायल था। देश की संविधान सभा को जब 50 साल पूरे हुए तो संसद के दोनों सदनों का खास संयुक्त अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संबोधित किया। उनका भाषण संसद के इतिहास में यादगार संबोधनों में से एक है। शिक्षा संस्थानों की क्वालिटी सुधारने और देश भर में उनका विस्तार करने के लिए डॉक्टर शर्मा को हमेशा याद किया जाएगा। 26 दिसंबर 1999 को ये कद्दावर नेता दिल के दौरे की वजह से जिंदगी हार गया।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रुक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं, चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज अ लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम
Somehow we are able to realize our dreams. Somehow we are able to, ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे. सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में. आई जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टॉवर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टॉवर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट, तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि देवर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टॉवर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टॉवर. ऊपर टॉप में पहुंच गए एंड दे सेड, ओ गॉड, इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टॉवर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे. और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग, तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था. वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टॉवर पे जाना है. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इसके टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर. तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर. तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है देखा जाए तो, बहुत छोटा सा होता है. तो वो क्या टीवी टॉवर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टॉवर पे मैं चढ़ जाऊंगा. पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है. और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे. तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना. और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से, इज बहुत इजी स्टोरी है और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे. तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थॉट लेट मी शेयर विद यू. बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको. तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स.
नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स. वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आवर प्रोग्रेस. बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और

किरण है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है। हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस। The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देती। पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें। और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है। और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है। अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें। सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम्स। द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन। ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन, they can see into the future, they have a clear exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. Maine bahut simple words mein pehli do slides mein bataya, ye definition hai ki great leaders vision hoti hai, hum bahut der se baat kar rahe hain iski, they can see the future, wo jo main ray of sunlight ki baat kar They have a very clear, exciting ideas. उनके ideas बहुत clear हैं, बहुत excited हैं, and they are going where they are going and what they are trying to accomplish. वो उनको सब clear है, and they have very excellent, very good strategic planning also. तो जो leaders हैं, उनमें ये सब हुनर हैं, और इन हुनर को shape देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वही विजनरी कहलाते हैं। दूसरा क्या है? करेज। वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज। अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से, जमीन से, खड्डे में से निकल के टीवी टावर पे क्लाइंब कर गया। हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स विथ नो एश्योरेंस ऑफ सक्सेस।

0: अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हम ICT प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं. बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. वाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माई ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल. उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं. क्या है? ट्रस्ट है. क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने. जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम IT प्लेटफॉर्म पे आ गए. IT प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला. तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया. और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट 1 or 2 अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो. दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस. सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड. हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर. आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता. आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था. आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि एक साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे. तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट? और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए. ये कोशिश हमने करनी करनी है। सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है। हम कैसे करें उसको हमें करना है। जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन। ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है। इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट होगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट। It means that you have the self-confidence and self-awareness to recognize the value of others without feeling threatened. समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, that doesn't mean कि मैं कमजोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट। तो ह्यूमिलिटी पर्सनैलिटी में लाना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो। अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे। पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट। इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, that you recognize you may not have the answers, but it means that you give credit where credit is due, which many people struggle to do. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए। हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ, मैं तो ठीक था, बिल्कुल, मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था, अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता, जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े, पर उसने क्रेडिट किसको दिया, जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया, जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर, और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए। लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है। और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं। ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन, इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट। और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है। तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए, और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनालिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर, यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं। अब आने वाले टाइम में जो एनजीओस पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है। तो दैट्स वाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ, तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं, कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। Only leaders with foresight can gain the first mover advantage. First mover advantage क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे alone कैसे, सबसे आगे कैसे stand करें। तो ये जब हम अपनी organization को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे 1 पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, which is very, very important when we are taking leadership trainings. This is the practical action which you can do for yourself, right? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, कि आप जहाँ बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो, उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? They focus on the strengths of the organization, on the things that the company does best in satisfying demanding customers in a competitive marketplace. आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो. जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो, कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए. जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड. बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे. मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा. मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी. बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते. तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया. इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट, और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट. Your ability as a leader to call the shots and make sure that everyone is focused and concentrated on the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये business language लिखी है यहाँ पे, because हमारा 1/3 focus organization का enterprise ही है. तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माय ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है. ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट. The last point is cooperation. Gain the cooperation of others by making a commitment to get along well with each key person every single day. रोज आप अपने connections, अपनी networking, अपने staff का teamwork को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे refine करें इसको. हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किस में क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5-6 हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन. सी, दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that. Right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने. बहुत इंपॉर्टेंट है विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7 पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें. और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया, अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट. लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको. अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 इयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज. झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना. इट्स ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल. दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम्बास. मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं. ठीक है. दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट एनर्जेटिक एंड पैशनेट. दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बट ऑल्सो टू हेल्पिंग ग्रुप मेंबर्स फुलफिल देयर पोटेंशियल. ये सेंटेंस में मैंने समराइज किया है जो लास्ट 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में. अब लीडर की क्वालिटीज तो बता दी कि लीडर को करना क्या है. पहले तो हमने गोल्स भी चेज करे, फिर हमने अपने वो पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट करे बेस्ट क्वालिटीज के. फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट. और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है. तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है. रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस. अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन. आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है. तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं. हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं. तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है. द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात करें, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज. हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है. मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स. इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट. मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम. हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 3 पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी. हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा. उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं. हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम. और परसिस्टेंस जो मैंने बोला था, परसिवेरेंस एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की. कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं, चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं. अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट. हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है. बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट. हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है. तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को. हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते. वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो. तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट? दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। Help improve the efficiency of people as they work towards goal. Efficiency improve करने की जरूरत है. Help people take action. Encourage people to engage in health-oriented behaviors. Health-oriented behaviors मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, right? Help people avoid unhealthy and माल एडेप्टिव बिहेवियर्स। ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है, राइट? बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्थी है, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे। हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है। इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है, बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको रिट्रेट करूँ, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पर मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट? और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करें तो हम मोटिवेशन की बात करें, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है। आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट? इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी कि हम अपनी पूरी एनर्जी उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। That's all. आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसको। ठीक है, 5 मिनट हैं
1: यस
0: हमारे पास. हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं. मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा. अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. राइट, आप प्लीज ये करिए. आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स है, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के. भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के. आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को और एक्शन उसी तरीके से लेंगे. ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज के. आप करके देखिए. ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इनटू अ डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट.
2: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए. ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस. पर्सनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी,
0: बिल्कुल
2: हमेशा कोई चीज हो जाती है, घट जाती है.
0: बहुत मायने रखते हैं ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए. हम ना सुनने की अपनी जो स्किल है ना, उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं. हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं. ये ह्यूमन बिहेवियर है, टेंडेंसी है. वेरी नाइस,
2: कंटिन्यू. यस मैम. हाँ जी, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा. तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो. फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है. तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में. पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें. ये आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस,
0: वेरी नाइसली समराइज्ड.
2: थैंक यू सो मच
0: फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल. एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी. मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया.
3: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से.
0: जी
3: मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं. आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में आपको ये एग्जांपल देके, और मैंने उसको ना एक जेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. 3-4 दिन से मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा. बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम

0: मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पर करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा। वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
1: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
0: यस बिल्कुल। और एक चीज और, कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे। तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
1: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी। हम
0: जी
1: तो डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको। हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
0: यस
1: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें, तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
0: यस मैम,
1: थैंक यू सो मच। और मैं इनकरेज करूंगी, अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज
0: राइट
1: लीडर्स आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।

0: विविधता में एकता वाला हमारा देश भारत, ये पूरे देश की एकजुटता ही थी जिसने सालों की गुलामी से उबरने में अहम भूमिका निभाई। उन दिनों उत्तर भारत में जहां क्रांति की ज्वाला प्रबल थी, वहीं दक्षिण भारत में क्रांतिवीर ब्रिटिश शासन की नींवें हिलाने का काम कर रहे थे। इन्हीं में से एक थी वीरांगना अकम्मा चेरियन। ट्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से मशहूर अकम्मा का साहस ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े थे। कांजीरपल्ली ट्रावणकोर में जन्मी अकम्मा चेरियन ने 1931 में शिक्षा पूरी कर सेंट मेरीज अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में बतौर शिक्षिका शुरुआत की। प्रतिभाशाली अकम्मा जल्द ही स्कूल की प्रिंसिपल बन गईं, लेकिन दिल में आजाद भारत का सपना था। 1938 में अकम्मा नौकरी छोड़कर ट्रावणकोर कांग्रेस की सदस्य बन गई। राज्य कांग्रेस ने ट्रावणकोर के लोगों के साथ एक उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को दबाने के लिए राज्य के दीवान ने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। विरोध में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद राज्य कांग्रेस के एक एक करके 11 अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिए गए। 12वीं अध्यक्ष अकम्मा चेरियन बनी। अकम्मा ने कोडियार राजमहल तक रैली निकालने का फैसला किया और तय दिन प्रदर्शनकारियों का एक दल ट्रावणकोर शाही महल की तरफ मार्च करने लगा। ब्रिटिश अफसरों ने रैली को रोकने के लिए आगजनी करने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही अकम्मा आगे आ गईं और दूसरों से पहले खुद को गोली मारने के लिए ललकारने लगीं। अकम्मा के साहस ने अंग्रेज अफसर को आदेश वापस लेने पर मजबूर कर दिया। एक बड़ा नरसंहार टल गया। समाचार सुनकर महात्मा गांधी ने अकम्मा को ट्रावणकोर की झांसी की रानी कहकर सम्मानित किया था। अंग्रेजों के लिए लगातार खतरा साबित हो रही अकम्मा को 24 दिसंबर 1939 को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के बाद आजादी के लिए जारी संघर्ष में अकम्मा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार हुई। 1947 में देश की आजादी के बाद अकम्मा चेरियन ट्रावणकोर से विधानसभा की सदस्य चुनी गई। अन्याय का आजीवन विरोध करने वाली उच्च नैतिक मूल्यों वाली इस वीरांगना ने 5 मई 1982 को आखिरी सांस ली।
1: पर्यावरण प्रदूषण, आज सभी की एक ही पुकार, पर्यावरण में अवश्य करो सुधार। हमारे पर्यावरण को मुख्य रूप से 4 तरह के प्रदूषण से खतरा है। भूमि प्रदूषण, बनावटी खादों के प्रयोग से भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। भूमि बचाओ, नहीं तो बीमारियां पाओ। जल प्रदूषण, बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी तथा कूड़ा कचरा नदियों में मिलकर उसके जल को प्रदूषित कर रहा है। हमें इसे रोकना होगा। जल है तो कल है। वायु प्रदूषण, पेड़ों के काटने से, कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण फैल रहा है। मनुष्य को इससे सांस की कई बीमारियां हो रही हैं। पेड़ लगाओ, देश बचाओ। ध्वनि प्रदूषण, बड़े बड़े कारखानों, वाहनों के शोर, विवाह शादी में ऊंची आवाज में बजते गाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे उच्च रक्तचाप तथा बहरेपन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बंद करो ये शोर शराबा, नहीं तो सुनोगे आधा आधा। प्रदूषण के कारण ही भूकंप, सूखा, बाढ़ आदि का प्रकोप भी झेलना पड़ रहा है। पर्यावरण पर बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हमें खुद कई प्रयास करने होंगे, जैसे कि घरों में पानी की टैंकियां ओवरफ्लो ना हो, इसका तो हमें अवश्य ध्यान रखना होगा। कारों को धोना बंद करें और सिर्फ गीले कपड़े से ही पहुंचें। कूड़ा खाली प्लाट तथा सड़कों पर ना डालकर कूड़ेदान या कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें। अपने आसपास पेड़ लगाएं, उन्हें पानी दें, उनकी देखभाल करें। कम से कम अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। बाजार जाते समय अपने पास कपड़े या जूट का एक थैला अवश्य रखें। कहीं आसपास जाना हो तो पैदल जाएं या साइकिल पर। घर में पानी, बिजली, ईंधन आदि की बचत करने का प्रयास करें। घर में सभी एक साथ खाना खाएं ताकि खाना बार बार गर्म ना करना पड़े। आइए आज हम सभी मिलकर प्रण लें कि हम पर्यावरण दिवस सिर्फ 5 जून को ही ना मनाकर हर रोज ही मनाएंगे।

हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं, जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है जिनका बचपन आमतौर पर घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहाँ पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है।

0: नहीं, गली में कूड़ा है, पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए,
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें। एक में गीला कूड़ा, जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।

0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। काफी हम लोग बात कर चुके हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, और कुछ सेशंस आई बिलीव आप लोग खुद कर रहे हैं, खुद से बना के, या कुछ सेशंस जो हम लोगों ने दिए हैं उनको भी आप शायद यूज करते होंगे। क्योंकि ये नॉन यूनिक है, और ज्यादातर हम चाहते हैं कि जितने लोगों के साथ आप ये कुछ शेयर कर सकें, उनकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप हो सकें। इंटरनेट से भी वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। एक मेजर लाइफ स्किल जो हमें एज ए इंडिविजुअल भी आनी चाहिए और एज अ यू नो फैमिली पर्सन भी आनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हम मनी को लेके हम सबको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, चैलेंजेस रहते ही हैं, चाहे आज हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम

0: आज अर्न कर रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं. सो वी थॉट दैट इट कुड बी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अ लाइफ स्किल, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स में कॉलेजेस में इस पे बात होती है, लेकिन ये लाइफ स्किल ऐसी है जो जब हम लाइफ में जब इस इसके अंदर उतरते हैं तभी वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है. लेकिन कुछ ऐसी चीजें प्रॉबेबली हैं जो अगर हम शुरू से ही अपने दिमाग में रखें तो हम एक बेटर फंड मैनेजर या बजट मैनेजर या इंडिविजुअल जो अकाउंट की जो हमारी अपनी वेल्थ मैनेजमेंट है उसको हम बेटर कर सकते हैं. सो टेकिंग दैट आई कैन शेयर सम स्लाइड्स. यहाँ पे मैंने अपनी जो एक फोटो है वो लिखी एक लगाई हुई है, बट आई बिलीव जब आप ये सेशन अपने बेनिफिशरीज के साथ करेंगे उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें यूथ भी हो सकता है, उसमें हो सकता है बुजुर्ग भी होंगे. सो सबसे पहले हमें ये जरूरत है उस चीज की मैपिंग की कि मुझे एज एन इंडिविजुअल मनी चाहिए क्यों. सो कैन एनीबडी टेल कि मनी हमें लाइफ में चाहिए क्यों होता है. पहले जब रुपए नहीं आए थे तभी भी तो जिंदगियां चलती थी ना, बार्टर सिस्टम से चलती थी या फिर उसके अलग तरीके होते थे. अब क्योंकि मनी है, करेंसी आई है, तो ये और अब हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जा रहे हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरीज बैंक में क्रेडिट होती है, हम मनी को फिजिकल फॉर्म में तो देख ही नहीं पाते. वो आती है ईएमआईज में चली जाती है, पेमेंट्स में चली जाती है, स्कूल फीस में चली जाती है. सो एज एन इंडिविजुअल मनी हमें चाहिए क्यों, कोई बता सकते हैं. एज एन इंडिविजुअल इसमें कुछ सही कोई गलत नहीं है, हमारी जिंदगी में मनी हमें क्यों चाहिए, इफ समबडी कैन यू नो डिफाइन दैट.
1: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली.
0: हेलो जी,
1: एक बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए मैम,
0: मनी हमें बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए. वेरी गुड
1: अच्छे से
0: सर.
1: कंफर्टेबल
0: मैं
1: लाइफ
0: सत्यम
1: के
0: फतेहपुर.
1: लिए.
0: मैम, मनी की हमें आवश्यकता मैम हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए भी बहुत जरूरी थी आज के टाइम में, क्योंकि एक तौर पर ये एसेट के तौर पर इसे आइडेंटिटी दी गई है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. सो बेसिक नेसेसिटी यानी कि खाना, कपड़े हो गए, हमारी एजुकेशन हो गए. एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री है, लेकिन फिर भी हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफी मनी चाहिए होता है. डू वी अग्री ऑन दैट? यस मैम.
0: तो एनीथिंग एल्स, एक तो बेहतर लाइफ के लिए हमें चाहिए, बेसिक लाइफ के लिए चाहिए जो कि अभी हमारे दोस्त ने हमें बताया, संगीता जी ने बताया कि बेटर लाइफ के लिए चाहिए, और किस चीज के लिए मनी चाहिए हमें?
1: मैम प्रिया वर्मा, बाराबंकी सेंटर. मैम जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए
0: हाँ
1: हमें
0: जी,
1: मनी की नीड होती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कि हमारे फतेहपुर सेंटर से किसी ने बताया था शायद कि बेसिक नीड्स, और आप भी वही बोल रहे हैं, दैनिक दैनिक नीड्स जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमें चाहिए पैसा चाहिए, यानी कि पेट भरा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है. ये दो चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए हमें मनी चाहिए होता है? आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज के लिए पैसा चाहते हैं? दैनिक नीड में क्या हमारे और कुछ जरूरतें आती हैं, या ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको मनी चाहिए होता है?
1: इसमें हमारा
0: हेल्थ
1: स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई.
0: हेल्थ के लिए चाहिए. वेरी गुड.
1: एक्चुअली मैम
0: हेल्थ
1: इनफैक्ट हर
0: एजुकेशन.
1: एक चीज के लिए हमें मनी चाहिए ही है एट प्रेजेंट, सब कुछ के लिए. इवन पानी भी अभी तो पैसे से ही है, सब कुछ के लिए.
0: तो वो तो बेसिक नीड्स में कवर हो जाता है ना, पानी हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया, राइट?
1: मैम
0: जी बताएं.
1: मैम सत्यम फतेहपुर
0: बिल्कुल
1: मैम,
0: बिल्कुल
1: हमें मैम मनी की आवश्यकता मैम कोई स्टार्टअप करने के लिए भी पड़ती है, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने के
0: बिल्कुल.
1: लिए.
0: तो हमें बेसिक से उठ के अगर हमें कोई रोजगार शुरू करना है, बहुत ही अच्छा. थैंक यू सो मच. मैं इसी तरह के
1: मैम
0: इनपुट्स की कोशिश कर रही थी. जी
1: मैम
0: बताइए.
1: फार्मिंग के
0: हाँ,
1: लिए भी चाहिए होती है. मैंने
0: फार्मिंग के लिए,
1: हमारे
0: बिजनेस के लिए चाहिए. ठीक है, और
1: पास
0: बताएंगे क्या आपको? अगर अच्छा फोन चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं. यहाँ तो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम मनी खर्च किन किन चीजों पे करते हैं आजकल? हम एक्सपेंसिव कपड़ों पे खर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जगह पे घूमने जाएं, उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है. हम चाहते हैं कि कभी कभी की अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाने जाएं,

0: कि हमें अपना कुछ ऐसा पैसा चाहिए जो हम अपना उद्योग शुरू कर सकें या अपना बिजनेस शुरू कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि सना ने बोली है कि आजकल हम बेसिक से उठ के अपनी एक इमेज मैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए भी हम काफी पैसे खर्च करते हैं एज एन इंडिविजुअल। हो सकता है सभी नहीं करते हो, बट बहुत आजकल ये जो सोशल मीडिया की वजह से ना हमें ये बहुत लगता है कि अच्छा ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए, इस तरह का फोन होना चाहिए, इस तरह के कपड़े, इस तरह की जगहों पे मुझे जाके फोटोज लेना है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक बेसिक जरूरत नहीं है, लेकिन आज के दौरान में ये एक फैशन या फिर एक ऐसी जरूरत बन गई है जो कि हमारी शायद इमेज मैनेजमेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारी इमेज ऐसी हो, तो हम उस इमेज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उसकी जरूरत है नहीं है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उसमें सही या गलत कुछ भी नहीं हो सकता या है। तो अब जब हम मनी की बात करते हैं ना, तो अभी देखिए सबने अलग अलग जवाब दिए, तो मनी की वैल्यू मेरे लिए कुछ और हो सकती है, सना के लिए कुछ और हो सकती है, संगीता जी के लिए कुछ और हो सकती है, हमारे जो और दोस्त जुड़े हैं सभी के लिए मनी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी जरूरत हो सकता है कुछ और होगी, आज मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं एज ए मदर हूँ तो मेरी जरूरत कुछ और हो सकती है। तो मनी की जो नीड है वो समय समय पर चेंज होती है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या चाहिए वो भी चेंज होता है। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ मनी की बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल इसकी विशेषता अपने हिसाब से डिफाइन करे, और इसमें कोई सही या कुछ गलत नहीं है। बिकॉज किसी के पास थोड़ा है तो उसमें भी शायद वो खुश है या ना खुश है, किसी के पास बहुत है तो उसमें भी वो खुश है ना खुश हो सकता है। सो मनी इज टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, द नीड ऑफ दैट मनी इज ऑल्सो टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर फ्यूचर, यू नो पेरेंट्स और योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। एवरीबडी अग्रीज, या इसमें किसी की कोई और सोच है या कोई और हेल्प करना चाहता है इसको डिफाइन करने के लिए? तो पहले तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मनी समझना है। यहाँ पे थोड़े बच्चे भी हैं, ये प्रिया वर्मा के जो सेंटर से हैं,
1: मैम 12 बंकी से लो।
0: बाराबंकी से हैं, ओके फाइन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट दिस एज ग्रुप टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये टीओटी सेशन ज्यादा है, सो आई बिलीव जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और अगर इन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर आज बात कर सकते हैं, या फिर आपके सेशंस के दौरान भी आप इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम अपना एक मंथली बजट बनाएंगे, मनी मैनेजमेंट की बात हम ये कर रहे हैं कि ठीक है एज ए स्टूडेंट मुझे क्या मैनेज करना है, कितना मुझे बजट चाहिए, एज ए हाउसवाइफ मुझे क्या चाहिए, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम अपना कोई उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं तो मुझे किस तरह का बजट चाहिए, वो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम जब एक महीने का भी बजट बनाएंगे ना, तो मोटा मोटा हमें पता चलेगा कि हमारा मेजर खर्चा वो किस चीज के लिए रहा है। कभी किसी ने बजट बनाया यहाँ पे अपने, जेन्युइनली बताना कि किसी ने भी बजट बनाया है अपने घर का या फिर बिजनेस का या फिर सेंटर का, तो आप बनाते ही होंगे, सेंटर का बजट बनाया है। कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश करी है कि मेरी जो सैलरी आती है या मेरी जो इनकम आती है वो जाती कहाँ, जब मैं 10 साल पहले काम कर रही थी या कर रहा था तो शुरुआत में जो मेरी इनकम थी मुझे वो भी कम लगती थी, आज भी जो इनकम है वो भी कम लगती है, आगे आने वाले मुझे जो चीजें हैं उनके लिए भी जरूरतें कम पड़ रही हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ, बनाया है किसी ने बजट अपने घर का या अपना खुद का, एज ए स्टूडेंट आपने कभी बनाया है कि ठीक है मुझे
1: यस
0: अपनी
1: मैम
0: हायर एजुकेशन के लिए, कोई कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहते हैं
1: जी मैम
0: बताएं।
1: मैम क्योंकि मैम कभी कभी मैम ऐसा होता कि मैम हम जो बनाते अचानक से कोई जरूरत पड़े, जैसे मैम कॉलेज की फीस हो गई, सेमेस्टर वही पड़ जाती है, जिम की फीस अलग जाती है, ये सब मैंने बना कर रखा है, और कभी कभी अचानक भी ज्यादा पैसों की जरूरत लग जाती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: थोड़ा मैनेजमेंट करना।
0: बिल्कुल सही। हम पूरा बजट बनाते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमने शायद प्लान भी नहीं करी होगी। तो बहुत जरूरी है पहले तो अपनी नीड्स को समझना, नीड्स हो गई जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना कितना बजट की जरूरत है, पहले तो हमें वो समझना है अपनी लाइफ में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में। और फिर दूसरी आ गई

0: जिसकी वॉन्ट्स मतलब जिसकी हमारी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम जी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा आउटलुक मेंटेन करने के लिए हमें वो चीजें चाहिए। मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा जगह पे खाना खाना चाहती हूँ। खाना तो मैं बेसिक भी खा सकती हूँ, घर पे बना हुआ, खुद का बनाया हुआ, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ, या बहन के या भाई के हाथ का, किसी के भी हाथ का बनाया हुआ खाना मैं खा के खुश रह सकती हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहां जाके अच्छे कपड़े पहनूं और फिर वहां जाके अच्छा सा खाना खाऊं और टाइम स्पेंड करूं, थोड़ी सेल्फीज लूं, वो सेल्फीज को मैं पोस्ट करूं, तो वो हो गई मेरी वॉन्ट। तो ये नहीं कहना है कि नीड्स और वॉन्ट्स जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। नीड्स मतलब अगर मेरी जरूरतें पूरी हैं तो मैं जी सकती हूँ, मैं वॉन्ट्स पे तब जाती हूँ जब मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जरूरतों को कम करके अपनी वॉन्ट्स को पूरा करूँ। जब हम वो करना शुरू करते हैं तब हमारा बजट जो है वो हिल जाता है कि भाई बेसिक नीड, राशन तो घर में आया नहीं महीने का, लेकिन हमने जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और एक ही बारी में 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो अब राशन तो आएगा नहीं क्योंकि वो हमने पैसा खर्च कर दिया। तो एक दिन तो मैंने अच्छी जगह पे खा लिया, मेरे पास फोटोज भी आ गई, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया, मेरे पास 10,000 लाइक्स भी आ गए, बट क्या वो मेरी जरूरत थी या नहीं थी, ये आप इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे अपने लिए। इसमें अगेन कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी का क्या नजरिया है आपकी जिंदगी के लिए वो यू कैन ओनली डिफाइन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत जरूरी है एक लाइफ स्किल होना कि पैसे की अहमियत आज समझिए, कल बेहतर, आज और बेहतर कल के लिए। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम अभी नया नया जॉब शुरू किया है, या चाहे हम एक लघु उद्योग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे हम हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं और एक हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपनी कुछ बिजनेस यहाँ पे कर रही हूँ और थोड़े टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल ग्रोथ हो और मैं कुछ आगे जाके एडवांस कोर्सेज करूँ, तो मुझे उसके लिए भी सेविंग्स करनी है। तो बहुत जरूरी है हम एक बजट बनाएं। कुछ लोग मंथली बनाते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने का बना सकते हैं, कुछ लोग साल का बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट डू मेक अ बजट एंड डू ट्राई एंड ट्रैक कि जो बजट आपने बनाया एट द एंड ऑफ द मंथ आप कहाँ पे थे, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। कभी कभी हम क्या कहते हैं, इम्पल्स इम्पल्स खर्चे भी कर देते हैं, कभी कभी इमरजेंसी खर्चे हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो हमारे फ्रेंड फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि कभी कभी वो कोशिश करते हैं कि इन इन चीजों पे खर्चा करें, बट ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है या ऐसी कोई फीस आ जाती है जो उन्होंने शायद प्लान नहीं करी थी और इमिजिएटली उनको पे करना पड़ा, तो उस चीज में उनका बजट हिल जाता है। जब आप ये 3, 4, 5, 6 बारी करेंगे ना, तो आप खुद इफेक्टिवली अपना बजट, जो मंथली बजट्स हैं या जो साल के या 6 महीने के आपका जो एक प्लान है बजट को लेके, वो आप अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे और जो भी मनी आपके पास है उसको आप एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी के पास सैलरी आती है, मान लीजिए जो काम कर रहे हैं, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं?
1: मैम, सबसे
0: हेलो
1: पहले
0: मैम।
1: जो नमस्ते मैम
0: नमस्ते जी।
1: जी, गजराज बोल रहा मैम, बारा से।
0: हाँ जी गजराज सर।
1: वैसे मैम, अभी जो सेशन चल रहा बड़ा अच्छा, अभी तक किसी अभी तक जो योजना है बजट को लेकर, पारिवारिक खर्चों को लेकर किसी मैं मेरी बताऊं तो मैंने अभी फोकस नहीं किया। बाकी ये आज का सेशन से आगे के लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनके साथ हम काम करेंगे उनको भी ये समझाने की जरूरत है मैम। अब जो
0: जी
1: आज अभी आप पूछ रहे हो कि क्योंकि जैसे जो सैलरी मिलती है, तो सबसे पहले तो जो राशन पर खर्चा कितना होता है, राशन पर खर्च होता है नंबर एक, तो 1 महीने में जितना भी जो अपन को जरूरत
0: बिल्कुल
1: होती
0: बिल्कुल,
1: है,
0: पेट
1: और
0: भरना
1: दूसरा
0: सबके लिए
1: पानी और
0: जरूरी,
1: बिजली,
0: ठीक है, पानी हो गया और बिजली हो गया।
1: और फिर एजुकेशन बच्चों के उस पर, क्योंकि ये तो मनुष्य की जो अति जरूरत चीजें हैं। जब तक राशन नहीं होगा, जब तक उसका जीवन नहीं चलेगा, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये है मैम। इसलिए सबसे पहले राशन, यानी कि 1 महीने का कितना खर्च, तो जो सैलरी मिलती है वो उस पर नॉन तेल की जो भी है जरूरतों पर चला जाता है मैम।
0: बिल्कुल
1: दूसरा
0: सर
1: फिर फोकस करते हैं कि क्योंकि बिजली नहीं है तो भी अंधेरा है, तो वो बिजली का बिल जो भी चुकाना होता है, पानी पर खर्च है, फिर उसके बाद में बच्चों के एजुकेशन पर मिनिमम जो भी जितना बचता है वो धीरे धीरे ऐसे मतलब इस खर्चे होते चले जाते हैं मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू गजराज सर। गजराज सर ने बहुत सिंपल और सरल तरीके में बताया कि सबसे पहले तो जरूरतों को हम पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे सैलरी आती है या जिनका कोई बिजनेस है कुछ मनी आता, तो महीने में सबसे पहले वो अपना राशन पूरा कर लेते हैं कि ठीक
1: जी
0: है पूरा राशन, कोई परिवार का पेट भरा होना चाहिए, तो हमने उसको राशन पूरा कर दिया। उसके बाद बिजली पानी होना चाहिए, हमारे ऑब्वियसली घरों में बिजली पानी का खर्चा है, वो खर्चे पूरे हो जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, तो ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं। हमारा हर मंथ मंथ दर मंथ ऐसे चलता रहता है, महीने दर महीने, महीने दर साल दर साल, बिल्कुल इन जरूरतों को हम पूरा करते रहते हैं। कोई और एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा इसके बाद? इसके साथ साथ किसी का कोई अलग नजरिया है, कुछ कोई अलग तरीके से अगर अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं, कोई शेयर करेंगे?
1: मैम, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं पहले हम उनको पूरा कर लेते, जो फिर मनी बचती है उसको हम अपने पास सेविंग्स रखते हैं, क्योंकि वो जो आगे मनी आएगी वो आगे भी काम कभी आ सकती है।
0: वेरी गुड। सो पहले हम बेसिक्स पूरा कर लेते हैं और जो बचा हुआ मनी है उसको सेविंग्स में रख लेते हैं। तो सेविंग्स में आप क्या सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें रखते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं?
1: सेविंग अकाउंट में
0: सेविंग अकाउंट में रखते हैं, भाई कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस सेविंग अकाउंट में से वो मनी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ 3% के करीब हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो जो सैलरी हमारी आई उसके हमने बेसिक खर्चे निकाल लिए और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा सेविंग में पड़ा रहा। बहुत ही बढ़िया आई। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू।
2: मैम, सबसे पहले प्रायोरिटी सैलरी आने के बाद होती है कि फीस जमा करनी है बच्चों की।
0: बिल्कुल
2: मैम, वो एक प्रायोरिटी है जो करना ही करना है, उसके अलावा जो ईएमआई है वो पे करना है। प्लस मैम, 5% मेरी सैलरी का हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, कभी भी कोई फंक्शन हो गया स्कूल में या किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ गई या बच्चों की कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, तो वो अर्जेंट नीड के लिए वो पैसे सेव करके रखने पड़ते हैं, 5% ऑफ द सैलरी,
0: इमरजेंसी, आप उसको
1: इमरजेंसी के
0: इमरजेंसी
1: लिए।
0: फंड कह सकते। तो ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा पहलू आ गया जो सना ने बोला। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो पहलू थे कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स जो है रोटी कपड़ा मकान उसके उसके ऊपर करते हैं, दूसरा था एजुकेशन, अभी तीसरा आ गया इमरजेंसी फंड, यानी कि एजुकेशन से बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि सना एक यंग कपल है तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कुछ भी खर्चा आए तो बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब हमारे पास मोटे मोटे तीन पहलू आ गए, पहला रोटी कपड़ा मकान, दूसरा हमारी एजुकेशन, तीसरा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हेल्थ के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। एक हमने इमरजेंसी फंड के लिए खुद से, वो कह रही है कि हमने बाय डिफॉल्ट 5% अपनी इनकम का सेविंग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इमरजेंसी फंड में उसको रख देते हैं 5%। बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ, किसी और का कोई और तरीका है अपनी सैलरी को मैनेज करने का, कुछ अलग, इससे कुछ अलग, अगर इसके कुछ एडिशन में अगर कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके तरीके से, जैसे मैं कभी इमरजेंसी फंड में शायद नहीं करती हूँ, लेकिन आज सना की बात सुन के शायद मैं आज से 2%, 1%, 3%, 5% इमरजेंसी फंड में हो सकता है रखना शुरू कर दूं। कोई कुछ और करता है अलग सा ऐसा? कोई डब्बे के नीचे छुपाता है पैसे हस्बैंड से, आटे के अंदर, चावल के अंदर, ऐसा नहीं करते?
2: ऑल द लेडीज मैम,
0: ऑल द लेडीज डू दैट। सो उसको उसको हम क्या
2: एवरीवन
0: बोल रहे हैं, उसको उसको भी हम एक सेविंग के तौर में, मतलब हमने कहीं बैंक में नहीं रखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए वो भी एक इमरजेंसी फंड ही है, लेकिन वो हमने एज ए सेविंग के तरीके से उसको अपने बचत की तरीके से रखा, यानी कि हो सकता है हमने घर की इनकम के लिए 100 रुपया निकाला हो सैलरी में से, लेकिन हमने घर को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि 80 रुपये में उस महीने के खर्चे हो गए और जो 20 रुपये बचे उसको हमने एक बचत के तौर पे रख दिया, यानी कि बजट बनाया और उसको भी बजट के तौर पे रख दिया। ये हम सब करते हैं, खासकर लेडीज करती हैं, शायद जेंट्स नहीं करते हो या करते हो या इससे भी इफेक्टिवली करते हो, तो ये भी एक सेविंग्स का तरीका है।
1: चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ
0: जी सर,
1: मैं, तो खुद तो मेरी बस बचत करता ही हूँ, पर लेकिन जो मेरे व्यूवर स्टाफ है जो भी साथ काम के, सबको 20% राशि की अगर आरडी का पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा रखी मैंने सबकी।
0: वेरी गुड। सो पोस्ट ऑफिस में जो कि सेफ भी माना जाता है, अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, और एक कंपल्सिव सेविंग भी हो जाती है,
1: स्वीपर से लगे,
0: दैट इज अनदर।
1: स्वीपर करता है उसकी भी मैंने उसके हिसाब से आरडी करा रखी है। 20 बार महिला है उनकी भी आरडी करा रखी है। तो सबकी जितना पैसा आता है एजेंट वही बुला लेता हूँ सेंटर पे, सबको जमा करवा देता हूँ। तो उनके लास्ट में 100 रुपये में उनको 6,500 करीब मिलेंगे उनको 5 साल में। तो एक उनकी सबकी सेफ बचत आदत पड़ेगी, सबकी बचत होने की।
0: तो छोटी छोटी बजट से आपने देखा किस तरीके से स्मॉल सेविंग्स कैन यील्ड टू अ बिग अमाउंट। एक 5 साल के हमें सोचने में लगता है कि 5 साल बहुत दूर है, लेकिन वो छोटी छोटी छोटी छोटी सेविंग्स करते करते लमसम मनी हमको एंड में मिल जाता है। थैंक
2: मैम
0: यू
2: कैन
0: चंद्र
2: आई
0: प्रकाश
2: से
0: जी।
2: समथिंग मैम?
0: जी जी मैम बिल्कुल।
2: मैम आई डोंट नो इफ आई कैन से लाइक दिस, आई सेव एवरी मंथ सम मनी टू गिफ्ट माय डॉटर एवरी ईयर समथिंग इन गोल्ड मैम, सो एवरी मंथ आई सेव।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो है कि यू हैव टू गिव समथिंग टू योर डॉटर, राइट? अभी आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो शायद आप प्रोबेबली उस एज में पहुंच गए, उस स्टेज में पहुंच गए आपकी लाइफ में जहां पे बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो चुकी है, यू हैव मेड कमिटमेंट्स टू देयर यू नो मैरिज एंड अदर अदर थिंग्स दैट यू हैव, यू माइट हैव सेविंग्स फॉर योर हेल्थ एंड एमरजेंसी। तो आपको लगा कि आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जो कि लमसम हो एंड यू कैन गिफ्ट टू योर डॉटर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो हम गोल की बात कर रहे थे कि आपको मनी क्यों चाहिए, ये आपको खुद को डिफाइन करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका। शायद मेरी जिंदगी में अभी वो नीड नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसे सना ने बोला उनके बच्चे छोटे हैं, तो हमारी नीड्स अभी इस वक्त है उनकी एजुकेशन को लेके, फ्यूचर को लेके। बट शायद जो हमसे थोड़े बड़े हैं, जो हमसे थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी नीड बदल गई है क्योंकि उनको एक अलग लेवल की जरूरत है। सो आई थिंक, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं कहना चाह रही थी कि नीड हम सबकी मनी को लेके हर वक्त अलग होती है और वो नीड बदलती रहती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट नीड एंड वर्क योर बजट अकॉर्डिंग टू योर नीड। एज ए स्टूडेंट हमारी नीड अलग हो सकती है, हमें उसे पहचान के अपना डिफाइन करना है कि मुझे लाइफ में कितना मनी चाहिए अपनी स्टूडेंट या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जब वो हो जाता है, हमें कितना बजट चाहिए अपने घर
2: हेलो,
0: परिवार को चलाने के लिए। हाँ जी
2: नमस्ते मैम, कैसे
0: नमस्ते जी,
2: हो मैम? ठीक
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: है मैम, हम भी, और आपको देख के और ज्यादा ठीक
0: अरे हाँ, हम भी आपको देख के खुश हो गए, और
2: गए।
0: आप
2: अच्छा
0: बोल रहे हैं ये
2: मैम,
0: सबसे अच्छी बात है। जी
2: मैं सुन सेंटर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मोबिलाइजेशन का काम करती हूँ मैम, शोभा नाम है मेरा।
0: जी जी जी
2: मैम
0: बताइए
2: हमने
0: शोभा
2: जो
0: जी,
2: हमारी सैलरी मिलती है ना, हम उसमें से अपने पैसे निकाल के हम बचत जमा करते हैं।
0: कहाँ पे करते हैं आप बचत जमा?
2: मैम हमने 10 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है,
0: अच्छा ठीक है,
2: 10 महिलाओं का ग्रुप बना के हम उसमें से 200 रुपये पर मंथ निकाल के अपनी बचत जमा करते हैं, सेव करते हैं।
0: तो फिर वो आपको मिलता कैसे है, वापस कैसे मिलता है?
2: मैम वो पैसा हमको, जैसे हमें कभी कोई इमरजेंसी आ जाए घर में, जरूरत पड़ती हो, तो हम एक प्रस्ताव बनाते हैं मिलके 10 लेडीज इकट्ठा होके, तो उसमें से जिसको जितनी जरूरत होती है उसमें से पैसे निकालते हैं और अपना काम चलाते हैं हम। और फिर
0: वेरी
2: वो
0: गुड,
2: 200 रुपये बचत तो हमेशा ही जमा होती है, लेकिन पर उसकी किस्त बन जाती है।
0: वेरी
2: 1% का
0: गुड,
1: ब्याज है, 1% का ब्याज है मैम इसमें।
0: 1% का ब्याज। तो
2: हाँ
0: आपने
2: जी,
0: ये एक लोकल लेवल पे जो सेविंग स्कीम है अपनी महिलाओं के साथ, एक महिला ग्रुप के साथ वो शुरू किया है,
2: हाँ जी,
0: तो ये जो है ये आपको एट ए टाइम ऑफ जो इमरजेंसी है या ऐसी कोई बेसिक जरूरत है जो यकायक आ जाती है, उसके लिए आप उसको, इस फंड को यूज कर लेते हैं, राइट?
2: हाँ जी,
0: बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये आपने दिया। तो जब हम अपने बेनिफिशियरीज के साथ बात करेंगे, जैसे चंद्र प्रकाश जी ने भी बताया कि हर किसी को ये जो स्किल है एज ए लाइफ स्किल आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आने वाली जेनरेशन को, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो इससे भी ज्यादा जो है स्ट्रेसफुल होने वाला है इमेज मैनेजमेंट के ऊपर, कि अच्छा मुझे किस तरीके से यू नो अपने आप को दुनिया को दिखाना है। उस चीज में कहीं ना कहीं हम अपनी बेसिक जरूरतों को काट के हम अपनी इमेज मैनेजमेंट में लग जाते हैं, और हम फिर क्रेडिट कार्ड्स पे या फिर लोन्स लेके या फिर ऐसे एक विशेष सर्कल में फंसते चले जाते हैं जहां पे हम कितना ही कमा ले हमको वो कम ही पड़ता है। सो इट इज वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मनी को मैनेज करना सीखें अपने लेवल पे। हम किस लेवल पे हैं आज, लेवल एज इन हम स्टूडेंट हैं, हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिन जिनकी हो सकता है हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि हमें उनके लिए भी सेविंग्स करना है। तो समय समय पे ये चीजें चेंज होती हैं और उस समय के अनुसार हमें अपना घर परिवार बजट मैनेज करना सीखना है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना हमसे भी शायद ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि चंद्रप्रकाश जी ने बताया, अभी हमें सुन से जो एग्जाम्पल मिला है, सना ने जो बताया एंड शैलजा मैम ने बताया, स्टार्ट स्मॉल। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम 10,000 रुपए की एफडी करें या 50,000 की एफडी करें या बहुत बड़े म्यूचुअल फंड में, आजकल हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है, बहुत बहुत आसान है, ऐसे करके एड्स आती हैं। अगर इस समय पे हमें वो बड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही या हम नहीं कर पा रहे, इट डज नॉट मैटर। हमारी पहले की जो पीढ़ी थी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी दादी या उनकी जो मदर थी, उनको उनकी कहानियां सुनेंगे तो ये होगा कि अच्छा, उन्होंने अपनी जो मंथली उनके पैसे आते थे, उनको मिलते थे हाथ में, उस टाइम पे तो लेडीज अर्न नहीं करती थी ना ज्यादा, उनको जो भी उनके हस्बैंड्स ने दिया या कुछ दिया वो घर के खर्चों में से बचत करके साल 2 साल 10 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लेती थी कि कभी कभी उनको खुद नहीं रियलाइज होता था कि इतने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। सो कहने का मतलब है कि स्टार्ट स्मॉल। आज आप छोटा भी अगर सेविंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं आजकल गवर्नमेंट के अंदर। हम स्कीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, पैसे को लेके जो एटीट्यूड है हमारा, उस लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात करते करते भी हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल गए हैं कि कुछ जो अभी फतेहपुर से थे, उन्होंने बताया कि वो सेविंग बैंक में रखते हैं, सना ने बताया वो इमरजेंसी फंड में रखते हैं, शैलजा मैम, संगीता हमारे साथ और चंद्रप्रकाश जी जो और 2-3 लोगों ने बताया कि वो अलग अलग तरीके के कुछ उन्होंने नॉन फॉर्मल या फिर फॉर्मल जो सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गई, प्रोविडेंट फंड है, आजकल तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हम छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा लेवल एज इन अगर आज हम 100 रुपए भी बचा सकते हैं, 200 रुपए भी बचा सकते हैं, तो 5 साल 10 साल के बाद हमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। कई स्कीम्स ऐसी होती हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स स्कीम्स हैं, उनको अगर हमें हम नहीं भी समझ पा रहे हैं तो हम सिंपल सेविंग, जो सिंपल सेविंग स्कीम्स हैं उनके उनको समझ के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें रिस्क कम है और अगर जब हमें इमरजेंसी में जरूरत हो तो हम वो फंड निकाल सकते हैं। लेकिन आदत सेविंग्स की होनी चाहिए। सेविंग्स की आदत ऐसे पड़ सकती है कि हम कंपल्सरीली कुछ परसेंट, 1%, 2%, 5%, 10% अपनी सेविंग्स का, अपने इनकम का सेविंग्स में रखें ही रखें। उस एटीट्यूड को बनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं, उस एटीट्यूड पे बात करने की आज कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो करीबन मतलब एक ऐसी एज पार कर चुके हैं जहां पे उनको सेविंग्स की आदत लग गई है, बट ये सेशन हम अपने बेनिफिशियरी के साथ करेंगे जो 15 से लेके हो सकता है 30 तक की एज में होंगे। वो एज ग्रुप जो है ना वो बहुत वनरेबल है। मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्पेंडिंग, ठीक है अर्बन है, यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, बट ये एक्सपोजर हर जगह पे है क्योंकि जो फोन के जरिए से मीडिया है ना वो सब तरीके से फैला हुआ है। तो ये चीज जो मनी को लेके हमारा एटीट्यूड है ना कंजम्पशन का, मतलब आज अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे कंज्यूम करके खुश हो जाएं, कहीं ना कहीं वो हैबिट आ रही है। कुछ हमारी जनरेशन में भी है, कुछ हमारी आने वाली जनरेशन में भी है। हमारे से पहले वाले जनरेशन तो पूरा ही बचत की तरफ चलते थे, कभी कोई नीड उन्होंने पूरी करी ही नहीं। एक नई शर्ट लेने के लिए भी मुझे लगता है वो 100 बार 10 बार सोचते थे, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। मतलब बहुत ही सेविंग्स की तरफ वो उनका रुझाव अलग ही लेवल का था। जब हमारी जनरेशन आई तो हमने एक मिक्स्ड, कुछ हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और कुछ हम सेविंग्स करते हैं। तो अगेन, सही या गलत कुछ भी नहीं है। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड वॉन्ट्स। पहले नीड्स को पूरा करके हम कुछ सेव करेंगे इमरजेंसी के लिए या ऐसी कोई प्लानिंग के लिए, जरूरी नहीं है इमरजेंसी के लिए हम सेव करेंगे। अगर मेरा शौक है कि मुझे आज से 20 साल के बाद मुझे किसी बाहरी देश में घूमने जाना है, तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। छोटा छोटा छोटा छोटा इन्वेस्ट करें, कहीं स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करें, 5 साल 10 साल के बाद एक फंड ऐसा आ जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हो सकता है आपका यही ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि शारजा मैम ने बोला, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक गिफ्ट करना चाहती हैं हर साल के एंड पे अपनी डॉटर को। सो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका फंड है, आप उसे मैनेज करेंगे, बट तभी कर पाएंगे अगर आप अपने फंड को तरीके से समझ पाए, अपनी नीड्स और वॉन्ट्स को दो मोटे मोटे भागों में बांट पाए। कभी कभी ना हम किसी चीज को देखते हैं और हमारे पास पैसा है, हमारे पास सेविंग्स भी है, कभी कभी लगता है हमें ना ये चीज खरीद लेनी चाहिए। तो जब मैं ये सेशन बना रही थी, बहुत प्यारी सी 30-day rule मेरे सामने आई। सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, हो सकता है किसी को ये हेल्पफुल हो। तो ये रूल ये कहता है कि अगर मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मेरा खाना पानी बिजली, मेरी एजुकेशन भी हो गई, बच्चों की एजुकेशन भी हो गई, अब मेरा दिल कर रहा है कि एक बड़ी सी कोई चीज लेने का। मान लीजिए मोबाइल फोन है, बहुत अच्छा सा नया मोबाइल फोन आया मार्केट में और मुझे वो लेना है, या एक बहुत सुंदर सी साड़ी आई है वो लेनी है, या एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है, सब उसमें जा रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, मुझे भी उसमें जाना है, लेकिन वो बहुत खर्चा हो जाएगा उसमें। जितनी मेरी सेविंग्स है, करीबन उसकी आधी जो सेविंग्स है वो निकल जाएगी। तो ये 30-day rule ये कहता है, बचत का ये रूल है कि आप जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं ना, 30 दिन के लिए रुक जाइए। 30 दिन आज आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये चीज मेरे को लेनी है, वो पैसा आप अलग से 30 दिन के लिए डाल दीजिए, किसी एक FD में डाल दीजिए, तो 30 दिन की FD भी आती है आजकल। 30 दिन के बाद आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप सिर्फ उसका ध्यान नहीं करेंगे। आपको ये पता है कि 30th day ही मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो 30-day rule ये कहता है कि अगर 30 दिन के बाद भी आपकी वो जरूरत उतनी ही प्रोमिनेंट है, तब तो आप उस चीज में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके 30 दिन के बाद वो जो जरूरत है वो कम हो जाती है, या आपको नहीं लगता कि ठीक है ये तो वेस्ट हो सकता है, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव मतलब मुझे मेरी जो आज की सोच है या आज के इमोशंस है ना, कभी कभी हम उससे बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं, जो आगे जाके हमें अफसोस होता है कि अरे इसकी शायद इतनी जरूरत नहीं थी। इसके बारे में, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आई वॉन्टेड टू लीव दिस विद यू, बट अगर आप चाहें तो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं इसके बारे में, ऑनलाइन स्टोरीज हैं 30-day savings rule के बारे में। आप चाहें तो ये स्टोरीज आप देख सकते हैं अपने बेनिफिशरीज के साथ। जब आप ये सेशन करेंगे, यू कैन शेयर दो स्टोरीज। एंड मुझे लगता है ये वाकई, मैंने खुद भी कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये बहुत आई थिंक प्यारा रूल है कि अगर कोई चीज हमें आज लग रहा है कि मुझे वो खरीद लेनी चाहिए या मुझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मुझे घूमने चले जाना चाहिए, इस जगह पे तो मुझे जाना ही जाना है, सारे लोग जा रहे हैं, 30 दिन के बाद भी अगर आपका दिल, आपका मन, आपकी जरूरत अभी भी वैसी ही है, ये हम इम्पल्सिव परचेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की हमारी सेविंग्स जो है वो खर्च हो जाती है, कभी कभी हमारा बजट पूरा हिल जाता है, उस चीज के बारे में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। किसी के कोई एग्जाम्पल्स, कभी किसी ने ऐसा किया हो, कोई बहुत जरूरत की चीज लग रही हो और उसको 5 दिन के लिए रख दिया कि नहीं अच्छा 5 दिन के बाद सोचूंगी या सोचूंगा, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नेक्स्ट टाइम लेट्स ऑल ट्राई, अगर ऐसा होता है, अगर हमें लगता है तो वी कैन ट्राई दिस, एंड दिस माइट हेल्प अस बिल्ड आवर सेविंग्स अलॉट, और हम उस मनी को हो सकता है किसी और अच्छी चीज पे खर्च करने के लिए बचा लें। सो दिस इज वन टेक्निक। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि जो हमारी इनकम है, उसको हम खर्च करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जैसे ही हमारी सेविंग्स आती है हम अपने बेसिक खर्चों में उसे खर्च कर देते हैं और जो बचा हुआ है उसको सेविंग्स में डाल देते हैं। ये ट्रेडिशनल वे है अपनी बजट मैनेजमेंट का। एक प्रोग्रेसिव वे और एक ऑल्टरनेट वे ये है कि जैसे ही हमारी इनकम हमारे पास आती है हम कंपल्सरीली सबसे पहले बचत में डालें उसको और जो बचा हुआ पैसा है उससे हम खर्चे पूरे करें। तो ये अब अलग अलग लोगों की अलग अलग नजरिए हो सकते हैं इसके बारे में, बट जो सेविंग्स करने का तरीका है वो उल्टा होना चाहिए। पहले हम अपने 100 रुपए में से 5 रुपए 10 रुपए जो जितना भी मेरा जितने भी मुझे लगता है कि मैं सेव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ पर मंथ, वो एंड में नहीं करेंगे, वो सबसे पहले करेंगे। जिसका एग्जाम्पल सना ने भी हमें दिया कि इनकम आते ही हम सबसे पहले अपना बचत का जो पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे और खर्चे बाद में करेंगे। दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग आवर मंथली बजट या हमारे साल दर साल का जो हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। देयर वाज अनदर रूल कि ये 50-30-20 का रूल है। इसके अलावा मुझे 70-20-10 का भी रूल मिला है। इसका कहने का मतलब वही है कि किस चीज पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है। तो 50% जो है हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम हमेशा उसको रखें, यानी कि रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ हो गया इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीजों पे आप समय समय पे अपना जो है एक्सपेंसेस जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 50% आप खर्च करते हैं। हम सब खर्च करते हैं। 20% सेविंग कर सकते हैं, 10% सेविंग कर सकते हैं, 5% सेविंग कर सकते हैं। और कुछ आप देखिए हर वक्त सेविंग करते रहेंगे इतना तो कोई हम साधु का जीवन नहीं जी रहा, कोई भी नहीं जी रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त सेविंग मोड में ही रहना है। हमें कुछ अपने शौक भी पूरे करने हैं, हमें कुछ अपने इच्छाएं भी पूरी करनी है उस मनी के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ समय समय पे अपने आप को अपनी फैमिली को या अपने जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको मैं कुछ अलग रिवॉर्ड सा दूं। वो आती है बॉन्ड्स में, वो आती है हमारी लग्जरी में। हो सकता है कुछ लोग दिवाली पे नए कपड़े खरीदते हैं, कुछ लोग ईद पे नए कपड़े खरीदते हैं, हो सकता है कुछ लोग मंथली बोलते हो कि ठीक है मुझे कुछ ना कुछ बचत करके अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नया खरीदना ही है। तो उसके लिए भी आप पहले से प्लानिंग करके चलें। जब आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आप इफेक्टिवली यूज करेंगे, इम्पल्सिवली नहीं यूज करेंगे। इम्पल्सिव में फिर हमारा 30 डे रूल आ जाएगा कि अगर इम्पल्स बाय है तो 30 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, 15 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, अगर 15 दिन के बाद भी मुझे वो जरूरत लगती है तो हम वो चीज को परचेज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगेन आई वुड से कि हम हो सकता है कर रहे हो इसको, लेकिन ये सेशंस हमने अपने बेनिफिशरीज के लिए भी बनाए हैं जिसमें कि बच्चे भी हैं, यूथ भी है, शायद उन्होंने अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन 20-25 साल की उम्र में जो कमाने लगेंगे अगर पहले से ही शुरू से ही वो आदत डल जाए कि हाँ हमें बचत करते हुए चलना है, तो आप ये सोचिए जब 20 साल में सेविंग्स करना शुरू कर देगा जब तक कि वो 50 साल का या 60 साल का हो जाएगा कितनी सारी सेविंग्स उनके पास इकट्ठी हो जाएंगी। सो दिस इज अ हैबिट मैनेजमेंट, दिस इज अ बिहेवियर मैनेजमेंट जो कि हमें खुद से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट सेशन। आई थॉट कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल जिसके बारे में हमने फॉर्मली कभी बात नहीं करी है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। आई जस्ट स्टॉप शेयर। ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल सेशन ऑन फाइनेंस मैनेजमेंट। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी, दिस यू कैन शेयर विद द बेनिफिशरीज, स्पेशली जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बोला वो उन्होंने आदत डलवाई है ना कि सिर्फ अपने बेनिफिश ना कि खुद को बल्कि अपने स्टाफ को भी इंक्लूडिंग एवरीबॉडी जितने लोग उनके साथ जुड़े हैं सेंटर पे। सेविंग्स की अहमियत उन्होंने वहां पे हाईलाइट करी है। आई वुड से सेविंग्स जो है हम छोटे से शुरू कर सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करें जितना इनफॉर्मल करें फॉर्मल करें। इनफॉर्मल मतलब हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखें, एफडी में उसको रखें, या फॉर्मल तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट में रखें। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रख रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ आप अपना फंड इन्वेस्ट करिए, पूरी समझ बूझ के साथ करिए, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी है। किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने के ऊपर किसी गलत स्कीम में मत उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा 30% का इंटरेस्ट मिलेगा, इतना हमें रिटर्न मिलेगा, उसके धोखे में आके गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम कम इन्वेस्ट करें, कम इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन जो हमारे को समझ में आता है उस चीज पे हम इन्वेस्टमेंट करके चलें। और जितना हम प्लानिंग से चलेंगे उतना हम लोन्स की तरफ कम हमारा रुझान रहेगा, जितना लोन्स की तरफ कम रुझान रहेगा उतना हम इंटरेस्ट कम पे करेंगे, और उतनी हम मनी सेव्ड इज मनी अर्न, कभी हमने सुना है। तो जितना हम सेविंग्स और जितना हम अपने से सक्षम होके चलेंगे उतना हमारा आगे आने वाला वक्त सही तरीके से गुजरेगा। सो दिस वाज सम टिप्स, सम सेशन ऑन दैट। कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वी कैन टेक दैट आल्सो।
2: मैम, इट वॉज सच अ वंडरफुल सेशन मैम, एंड मोस्ट नीडेड ऑफ द आवर मैम. वी कैन रियली, एज यू सजेस्टेड, वील रियली टेक इट टू द बेनिफिशरीज ऑल्सो.
0: यस यस, क्योंकि मैम सभी लोग काम इसीलिए करते हैं कि अपना फ्यूचर ब्राइट करके चल सके, खुद का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, अपनी फैमिली का, कोई इमरजेंसी हो तो। हमेशा पैसे को लेके हर किसी का चैलेंज ही रहता है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, हमेशा चैलेंज ही रहता है। सो दिस इज वन थिंग जिसमें हम कितनी ही बात कर लें वो बात कम ही, मतलब उसमें कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन हम जितना आपस में शेयर कर सकते हैं तरीके, उससे हमें कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी मिलेंगी शायद कि हम बेटर फंड मैनेज कर सकें अपने खुद के, अपने परिवार के। एंड दिस शुड बी अ हैबिट, मोर मोर ऑफ अ हैबिट टू मैनेज, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज आवर नीड्स, बिकॉज आजकल काफी इम्पल्स परचेजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली यूथ यूथ को लेके ये कंसर्न है काफी पेरेंट्स का। जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका भी ये कंसर्न रहता है, हमारा खुद का ये कंसर्न रहता है कि आगे जो बच्चे हैं वो बहुत मनी की जो रियल वैल्यू है उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर काफी डिबेट चलता है। तो दिस इज अ बिहेवियर चेंज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मनी फॉर अस, फॉर एज ए इंडिविजुअल। थैंक यू मैम, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अभी कोई और बोलना चाह रहा है? एनीबडी वॉन्ट्स टू एड प्लीज डू दैट।
2: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून अर्चना जी।
2: जी मैम, मैम अभी आपने बात करी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे सेंटर पे मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें से तीन बच्चे बहुत ही अच्छी तरह, उसमें उनको पहले से भी आता था कुछ, और फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली तो उनको बहुत अच्छे से आ गया। तो अभी तो जो बात हुई कि घर में हम किस तरह से मैनेज करते हैं, सबका अपना अपना नीड है, बेसिक नीड के अलावा भी बहुत सारे नीड होते हैं, फिर बहुत सारे वे हैं जहाँ पे वो सेविंग कर सकते हैं, करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के कि हमारे पास नए आइडियाज भी आए। और मैम वो आपने अभी बात करी थी, तो हम मेट्रो सिटी का तो नहीं पता, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें मैं उनकी बात बता रही हूँ, फिर मैं अपनी बेनिफिशरीज की बात बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया है। तो मैम मेरी सोसाइटी में, मैंने आपने भी बात जो की हुई थी उससे ही है कि पहले के जो हमारे पहले के जनरेशन के थे, पिछले जनरेशन के, वो अपनी सारी नीड को किल करके, मतलब जो जो बहुत जरूरी है, सर्वाइव करना, खाना पीना, ये सब, यहाँ तक कि मैंने देखा वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, अपने सारे नीड को किल करके और पैसे जमा करते थे।
0: बिल्कुल
2: फिर जो हमारा जनरेशन है उन्होंने देखा कि अरे वो तो सारे कुछ ही नहीं करते थे और फिर ऐसे ही चले गए दुनिया से। नहीं, हम लोग को ना अपना भी करना चाहिए और सेविंग भी करना चाहिए, यानी हम खाएंगे पियेंगे अच्छे से रहेंगे और थोड़ा सा सेविंग भी करेंगे। तो
0: बिल्कुल
2: हमें लगता है अभी का जो जनरेशन है ये दोनों चीज और इंजॉय भी कर रहे हैं ठीक ठाक। मैं मैम मिडिल क्लास, और मतलब मैं जो कम्युनिटी में रहती हूँ उसकी बात कर रही हूँ, और दूसरे जगह मुझे उतना नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं से मैथ्स तो करता ही होगा, तो उसने करी। अब जो हमारा अगला जनरेशन आने वाला है उनको तो मनी वैल्यू पता ही नहीं है, वो जो भी अर्न करेंगे वो सारा का सारा खर्च करेंगे जैसे दिख रहा है।
0: तो मैम हमें, मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को और जो भी हमारे आसपास जुड़े हैं उनको ये सिखाना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है, मनी वैल्यू। इसके लिए तो हमको घर से लेकर के और जहां भी हम काम करते हैं वहां तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैम, मतलब ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी चीज के लिए एक बार मन किया खरीद लिए, तो हमको जो खुद
1: बिल्कुल
0: वैल्यू नहीं है तो वो बच्चे क्या सीखेंगे। वो तो मेरी मेरी सिंगल चाइल्ड है तो वो तो यही समझेंगे ना, मम्मी को जब जरूरत होता है तब खरीद लेती है तो मेरे भी पास ही आ जाएगा, क्योंकि पैसा इसके पास है तभी तो आ रहा है। जब हम अपने ऊपर
1: बिल्कुल
0: नहीं कमांड करेंगे तो बच्चे तो यही सीखेंगे कि अच्छा मम्मी ने 20,000 का फोन लिया, ठीक है मैं भी जब कभी बोलूंगी मुझे तो 10,000 का आ जाएगा। तो मैं बच्चों के लिए भी ये करती हूँ कि मैं अपने, मेरी सिंगल चाइल्ड है, मैं फिर भी देर करती हूँ थोड़ा सा कि देखो अच्छा ठीक है आ रहा है, आ जाएगा 1-2 महीने में आ जाएगा या 15 दिन में, बहुत ज्यादा नीड है, एजुकेशन से जुड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इंजॉय करने की चीज है तो आ जाएगा। तो ये हुई, तो मैम सबके अपने अपने वो नीड है और अपने अपने तरीके हैं, तो सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं करती हूँ वो करते हैं एक ही पर्टिकुलर, सभी आजकल करते हैं सेविंग, जो अपना स्टेज वो पार कर चुके हैं 25 वाला, क्योंकि 25 तक तो सब। हाँ हाँ जी मैम, तो मैंने बेनिफिशरीज को मैम देखा, वो मैं कर रही हूँ, और मैं सभी से, आपसे भी मैम गुजारिश करती हूँ कि यदि कोई बहुत अच्छा टिप हो तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो बेनिफिशरीज ने तो हमारे यहाँ क्या हुआ, मैंने वो एसटीएस से शेयर किया हुआ था, जो हम 4 जन जिसमें से 3 बच्चे बेनिफिशरीज और एक मैं हूँ, 4 का ग्रुप बनाई और फिर हमने प्लान किया और हमने अपना पार्लर खोल लिया।
1: अरे वाह,
0: हाँ हाँ मैम, तो पार्लर में खोल लिया। अब इसका ये आया कि भाई सेटअप तो मेरे पास पहले से, जो सेंटर का ये दिया हुआ है तो सेटअप सारा मेरे पास पहले से था, उसमें कुछ प्रोडक्ट लाने थे और जैसे बोर्ड बनाना, कुछ बेसिक जो होता है थ्रेडिंग वगैरह के लिए, फेशियल के लिए, वो सारे प्रोडक्ट लाने थे, और फिर थोड़ा सा वो एडवर्टाइज के लिए कुछ पैसे खर्च करने थे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि घर से यदि लाओगी तो बेनिफिशरीज के तो गार्जियन पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये वो सब कुछ तो है,
1: बिल्कुल
0: हमारे यहाँ रूम है, इलेक्ट्रिसिटी है और बच्चे भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, कुछ पैसे हम लोग अपने में जितना भी सेविंग है 500 या 1,000, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट की हूँ मैम, तो हम लोग ले आते हैं। इसके बाद हमारा जो पैसा आएगा तो उसमें से एक बेनिफिशियरी जो ग्रेजुएट है वो बोली कि हमारे पास जो कमाई के कुछ पैसे आएंगे, जैसे कि अभी दिवाली छठ चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही हमारे पार्लर में, क्योंकि अभी उतना ज्यादा मैम प्रचार नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों तक पहुंचा है कि पार्लर खुल गया है। तो उस पैसे से हम और प्रोडक्ट जो भी मतलब जरूर है थोड़ा बड़ा करेंगे उसको, फिर हम पैसे शुरू करेंगे अपने पास रखना। तो मुझे आइडिया ये अच्छा लगा मैम, और इस छठ में मुझे लगता है उन लोगों ने 500 कुछ अर्न किया है और उससे वो सामान ही लाई है, कभी फेशियल का कुछ, तो मैनिक्योर का, पेडिक्योर का कुछ प्रोडक्ट सभी। तो मुझे लगा कि वो ग्रेजुएट बच्ची है, गांव की है, लेकिन फिर भी इतना मतलब कि सोच रही है, तो मुझे अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे भी थोड़ा सा ये ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अभी उसमें से खर्च नहीं करना है, अभी मुझे अपना वो पार्लर सेट करना है।
1: वेरी नाइस अर्चना जी, थैंक यू सो मच. एग्जैक्टली जो मैंने कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि मैं जो बोल रही हूँ शायद मैं सही से नहीं समझा पा रही, लेकिन आपकी इनपुट से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यही बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि जनरेशन दर जनरेशन एक तो नीड्स और वांट्स बदलती जा रही हैं, और जब हम खुद पे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कभी कभी खर्चा करने के लिए, तो हम अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं, या अपने जो हम जो जो हमें अपना एज ए मॉडल देखते हैं, या जो हमें सोचते हैं कि ठीक है अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी फिर ऐसा ही करना है, चाहे वो बेनिफिशरीज हो गए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आप सेंटर में अगर एक लीडर के आप सभी लीडर हैं अपने अपने सेंटर्स के, तो चाहे आप सेंटर पे एज ए लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो वेरी ब्यूटिफुली शेयर्ड एग्जाम्पल की किस तरीके से हम एक तो खुद को एज ए रिप्रेजेंटेटिव मान के हम खुद से अपनी मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करें, और दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया कि छोटे से ग्रुप ने कैसे एक फंड क्रिएट किया आपस में मिलके और एक छोटा सेंटर शुरू किया, लेकिन आइडिया है कि उसको धीरे धीरे करके उसी फंड से कैसे हम बड़ा करेंगे.
0: हाँ जी
1: दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ यू नो बजट मैनेजमेंट. घर का भी आपने बता दिया और अपने एंटरप्राइज का भी बता दिया. थैंक यू अर्चना जी.
0: थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम प्लीज सजेस्ट कीजिएगा आप इसमें कि बच्चे कर रहे हैं इससे भी कोई अच्छा होगा कि हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं, तो मैम इसके लिए बहुत ये रहेगा।
1: ठीक है जी, ठीक है, विल टॉक सेपरेटली फॉर दैट.
0: थैंक यू मैम।
1: थैंक यू. ओके, सो आई होप दिस सेशन वॉज अ लिटिल हेल्पफुल टू समबडी. हो सकता है शायद किसी ने कुछ सीख के इससे
0: कुछ अपने आज से या पहले से कर रहे हों तो उसको रीइंस्टेट करें और उसको अपने बिहेवियर में लेके आए. एंड आई होप यू शेयर दिस सेशन विद योर बेनिफिशरीज, स्पेशली टू द यूथ, क्योंकि जैसे अर्चना जी ने कहा, जो 25 साल से ऊपर है उनको तो कहीं ना कहीं हैबिट लग गई है, लेकिन ये हैबिट हमें शुरू से ही अपने, मैं सेविंग्स की बात नहीं कर रही, मैं आइडेंटिफिकेशन और उसमें फर्क की बात कर रही हूँ कि हमारी जरूरतें क्या हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं. इन दोनों चीजों में, जरूरतों में और इच्छाओं में फर्क करना बहुत जरूरी है. और अपने लेवल को पहचानते हुए, लेवल एज इन अपने सिचुएशन को, एज ए स्टूडेंट, अपने सिचुएशन एज अ होम मेकर या एज अ एंटरप्रेन्योर या फार्मिंग को लेके, जो हमारी जरूरत है उसको पहचानते हुए अपने बजट्स को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर हमने आज बात करी है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इट एट शॉर्ट नोटिस. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल. बाय बाय. थैंक यू.
2: वेरी हेल्पफुल मैम. थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू मैम.
2: थैंक यू मैम.
0: थैंक यू.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

भारत में जन्मे एक महान संत, वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु, एक युवा सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की सुगंध पूरी दुनिया तक पहुंचाई। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। स्वामी विवेकानंद का ये क्रांति वाक्य आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। बचपन में उनका घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे और दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। माता पिता के धार्मिक, प्रगतिशील और तर्कसंगत विचारों का बहुत गहरा असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। नरेंद्रनाथ दत्त के 9 भाई बहन थे। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। सन 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया और 1879 में पुनः कोलकाता वापस आ गया। वो एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने सन

1881 में ललित कला की परीक्षा पास की और सन 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने शिक्षा काल में वे सर्वाधिक लोकप्रिय और एक जिज्ञासु छात्र थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण भी पढ़े। अध्यात्म में उनकी विशेष रुचि थी। उन्हें साधुओं और सन्यासियों के प्रवचन और उनकी कही बातें हमेशा प्रेरित करती थीं। परमात्मा को पाने की लालसा उनके भीतर अत्यंत प्रबल थी। ईश्वर के प्रति अपनी जिज्ञासाएं लेकर वो पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष प्राप्त नहीं हुआ। नरेंद्रनाथ दत्त की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ सन 1881 के अंत और 1882 के प्रारंभ में आया, जब वो अपने दो मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर जाकर मां काली के भक्त रामकृष्ण परमहंस से मिले। यहीं से नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हुआ। परमहंस से ईश्वरीय सत्ता को लेकर तर्क करने के उद्देश्य से वे उनके पास गए थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आप हर समय भगवान की बात करते हैं, प्रमाण कहाँ है? कहाँ है भगवान? मुझे सबूत दिखाइए। इस पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं प्रमाण हूं। मैं जिस तरह से हूं, मैं प्रमाण हूं कि ईश्वर मौजूद है। नरेंद्रनाथ को उनसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। वो परमहंस से ईश्वर के विषय में किसी महान बौद्धिक व्याख्या की उम्मीद कर रहे थे, यूं कि जैसे वो कहेंगे कि ईश्वर का प्रमाण बीज का अंकुरित होना है या ग्रहों का लगातार चक्कर लगाना है आदि इत्यादि। परमहंस का जवाब सुनकर वे कुछ भी कह नहीं पाए और वापस अपने घर लौट गए। 3 दिन बाद वो फिर परमहंस के पास आए और कहा, ठीक है, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? इस पर रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, क्या वाकई तुम में देखने की हिम्मत है? नरेंद्रनाथ दत्त का जवाब था, हाँ, क्योंकि ये प्रश्न उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा था और वे उसका उत्तर चाहते थे। तब रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ की छाती पर अपना पैर रखा और वो समाधि की गहरी अवस्था में पहुंच गए, जहां वे मन की सीमाओं से परे थे। लगभग 12 घंटे तक इस अवस्था से नरेंद्रनाथ बाहर नहीं आ पाए और जब अपने भौतिक अनुभव में वो वापस आए तो उनके सारे प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका था। इस आध्यात्मिक अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया था।

रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात के बाद नरेंद्रनाथ का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। परमहंस से वे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। सन 1884 में पिता की अचानक मृत्यु से नरेंद्र को मानसिक आघात पहुंचा। उनका विचलित मन देखकर रामकृष्ण परमहंस ने उनकी मदद की। उन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त को अपना ध्यान अध्यात्म में लगाने को कहा। मात्र 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्रनाथ दत्त ने गिरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत वर्ष की यात्रा की और विश्व भ्रमण पर निकल गए। उन्होंने जापान के कई शहरों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए वो अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उस समय पश्चिमी देशों में भारतीय हीन दृष्टि से देखे जाते थे। वहां मौजूद लोगों ने प्रयत्न किया कि स्वामी जी को बोलने का समय ही न मिले, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयासों के बाद उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया। और फिर आगे जो कुछ हुआ वो एक इतिहास है। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, हृदय की अतल गहराई से निकले स्वामी जी के इस पहले संबोधन के समक्ष विश्व समुदाय नतमस्तक हो गया। वसुधैव कुटुंबकम के भावसागर से निकला ये संबोधन सुनकर सभी अभिभूत थे। इस संबोधन के बाद लगातार बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। भारतीय संस्कृति की आत्मीय उदारता के अनुभव से श्रोता विभोर थे। व्याख्यान का निर्धारित समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अध्यक्ष के अनुरोध पर स्वामी जी ने आगे बोलना शुरू किया और उन्होंने 20 मिनट से अधिक समय तक अपना व्याख्यान दिया। प्रसिद्ध लेखक रोमिया रोला ने कहा था, स्वामी विवेकानंद के द्वितीय होने की कल्पना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। 5 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने अमेरिका के विभिन्न नगरों, लंदन और पेरिस में व्यापक व्याख्यान दिए। उन्होंने जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप की भी यात्राएं की। हर जगह उन्होंने वेदांत के संदेश का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उनके कुछ शिष्यों ने उनका भारत तक अनुसरण किया। वे सदा स्वयं को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर में उज्ज्वल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने स्वामी विवेकानंद को भारत की आत्मा को जागृत करने वाला और भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा माना। स्वामी विवेकानंद सन 1887 में स्वदेश लौटकर आए। घर लौटकर उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा, नया भारत निकल पड़े। वे केवल संत ही नहीं

स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में चेतना भरने के लिए कहा था कि आज के युवकों को शारीरिक प्रगति से ज्यादा आंतरिक प्रगति करने की जरूरत है। आज के युवाओं को अलग अलग दिशा में भटकने की बजाय एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अंत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। युवाओं को अपने प्रत्येक कार्य में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यही कारण है कि उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। वो सदा ही एक लक्ष्य पर एकाग्र होने की सीख दिया करते थे। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे, जबकि इसके पहले उन्होंने कभी बंदूक को हाथ भी नहीं लगाया था। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए, सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देखकर लड़के दंग रह गए। उन्होंने पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा ध्यान उसी पर एकाग्र करो। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया जाता है। उनका कहना था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। योग, राजयोग और ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके स्वामी विवेकानंद ने युवा जगत को एक नई राह दिखाई। ये ग्रंथ एक धरोहर की तरह हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा

लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जीवन के लिए युवाओं को तैयार करना चाहते थे। वो कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों विकास हो सके। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई सन 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी और 9 दिसंबर सन 1898 को कलकत्ता के निकट हुगली नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। अपने गुरु के दिखाए मार्ग से लोगों को अवगत कराने के लिए उन्होंने दुनिया में जगह जगह रामकृष्ण मिशन की शाखाएं स्थापित की। रामकृष्ण मिशन की शिक्षा थी कि दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं और वे एक ही लक्ष्य की तरफ जाने के अलग अलग रास्ते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने धर्म के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए विशेष अभियान चलाए। इसके अलावा उन्होंने जगह जगह अनाथाश्रम, अस्पताल, छात्रावास की स्थापना की। मिशन के तहत उन्होंने अंधश्रद्धा छोड़कर विवेक बुद्धि से धर्म का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने मानव सेवा को ही माधव सेवा कहा। जाति व्यवस्था को दरकिनार कर उन्होंने मानवतावाद और विश्व बंधुत्व का प्रचार प्रसार किया। जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। 4 जुलाई सन 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में ही वे ब्रह्मलीन हो गए। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि आज भी विश्व भर में है। भारत की आत्मा, भारत का वेदांत दर्शन स्वामी विवेकानंद के कारण ही पाश्चात्य देशों तक पहुंच सका। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने उनके विषय में कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। नमन ऐसी महान विभूति को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अरंडी चौड़े पत्तों का छोटे कद वाला पौधा होता है जो प्राकृतिक रूप में जन्म लेता है। यह पौधा भारत में आम पाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते भी औषधीय रूप में बहुत काम आते हैं। यहाँ अरंडी के पत्ते, बीज और तेल से जुड़े फायदे बताए जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अरंडी की जड़ 20 ग्राम को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब यह 100 मिलीलीटर शेष बचे तो इसे पिलाने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ होता है। अरंडी के तेल की मालिश करते रहने से शरीर के किसी भी अंग की त्वचा फटने का कष्ट दूर होता है। ऐसे बच्चे जिनके सिर पर बाल नहीं उगते हो या बहुत कम हो, या ऐसे पुरुष स्त्री जिनकी पलकों व भौहों पर बहुत कम बाल हो, तो उन्हें अरंडी के तेल की मालिश नियमित रूप से सोते समय करना चाहिए। इससे कुछ ही सप्ताह में सुंदर, घने, लंबे, काले बाल उगने लग जाएंगे। सिर पर अरंडी के तेल की मालिश करने से सिर दर्द की परेशानी दूर होती है। अरंडी की जड़ को पानी में पीसकर माथे पर लगाने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। अरंडी का तेल थोड़े से चूने में फेंटकर आग से जले घावों पर लगाने से वे शीघ्र भर जाते हैं। अरंडी के पत्तों के रस में बराबर की मात्रा में सरसों का तेल फेंटकर लगाने से भी यही लाभ मिलता है। यदि मल त्यागने में कठिनाई का अनुभव हो तो अरंडी के तेल को दूध के साथ देने से लाभ होता है। अरंडी का तेल गर्म पानी के साथ देना चाहिए या फिर अरंडी का रस शहद में मिलाकर बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का रस रोजाना 2 से 3 बार बच्चे की गुदा में लगाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। अरंडी के तेल में कपूर का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार नियमित रूप से मसूड़ों की मालिश करते रहने से पायरिया रोग में आराम मिलता है। पत्ते पर थोड़ा चूना लगाकर तिल पर बार बार घिसने से तिल निकल जाता है। अरंडी के तेल में कपड़ा भिगोकर मस्से पर बांधने से मस्से मिट जाते हैं। अरंडी का तेल लगाने से जख्म भी भर जाते हैं और इसको मस्सों पर लगाने से मस्सा ढीला होकर गिर जाता है। अरंडी के तेल को सुबह और शाम 1 से 2 बूंद हल्के हाथ से मस्से पर मलने से 1 से 2 महीनों में मस्से गिर जाते हैं। अरंडी के बीज की मींगी को दूध में पीसकर रोगी को पिलाने से गर्दन और कमर दोनों जगह का दर्द चला जाता है। 10 ग्राम एरंड की जड़ को छाछ के साथ पीसकर पिलाने से उल्टी और दस्त बंद हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का क्षार 3 ग्राम, तेल एवं गुड़ आदि को बराबर मात्रा में मिलाकर चाटने से खांसी दूर हो जाती है। अरंडी के तेल की 10 बूंदों को रात को सोते समय पानी में मिलाकर सेवन करने से कब्ज की बीमारी में लाभ होता है। एरंड का तेल 30 ग्राम को गर्म दूध में मिश्री के साथ पीने से कब्ज दूर हो जाता है। 1 कप दूध में 2 चम्मच एरंड का तेल मिलाकर सोते समय पिलाएं। इससे पेट की कब्ज नष्ट हो जाती है। चोट लगकर खून आने लगे, घाव हो तो एरंड का तेल लगाकर पट्टी बांधने से लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर तिल का तेल लगाकर गर्म करके बांधने से चोट से सूजन एवं दर्द में लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर सरसों और हल्दी गर्म करके मोच वाले स्थान पर लगाएं और पत्ते को उस पर रखकर पट्टी बांध दें। अरंड के बीज की गिरी 10 ग्राम काले तिल 10 ग्राम दूध में पीसकर हल्का गर्म करके मोच पर बांध दें। अरंडी के तेल की 2 चम्मच मात्रा को गर्म दूध में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। जय हिंद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: हेलो, मेरा नाम रजनेश देवी है और मैं सावाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ और मैं यहाँ की सरकारी डिस्पेंसरी में आशा वर्कर का काम करती हूँ। मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगता और इस काम से अलावा अब मैं थोड़ा अपना टाइम बचा के मैं अभी इस मैरिड इंडिया में आती हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मुझे यहाँ सीखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करता है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस लगती है, सिलाई सेंटर है और यहाँ पे पार्लर का काम भी सिखाया जाता है, जो कि बहुत ईमानदारी से और लगन से सिखाया जाता है। यहाँ का स्टाफ हमें सिखाने में हमारी बहुत मदद करता है और मैं थोड़ा बहुत समय निकलता है तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं अपने एरिया में काम करती हूँ। मुझे वो काम करके बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर में ही बस बच्चों के साथ रहना, अपना करना, लेकिन अब मैं जब से मैं डिस्पेंसरी में जाती हूँ वहाँ पे मैं लोगों की मदद भी करती हूँ और हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हम सीखते हैं और हम फील्ड में उसको बताते हैं। जिससे कि प्रेग्नेंट लेडीज है जो हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप नहीं कराती है, हमारी मदद से वो लेडीज हॉस्पिटल में जाती हैं और अपना रूटीन चेकअप कराती हैं। बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को, क्योंकि एक भी बच्चा टीके से छूटना नहीं चाहिए। और इसके अलावा हम फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देते हैं। जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए हम NSV जो कि पुरुष नसबंदी है, इसमें बिना चीरे बिना टाके के नसबंदी होती है जिसे गवर्नमेंट उसको 1100 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है। और महिला के लिए नलबंदी है जिसमें गवर्नमेंट उसको 250 रुपये देती है। ये एक दूरबीन द्वारा किया जाता है, एक टाका आता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है और महिला अपना आराम से रहती है। जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है वो ये है कि बार बार अबॉर्शन ना कराए, अपना ये मेथड अपनाए और अपने सुखी जीवन, कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। और पहले हम करते नहीं थे तो हमें भी अजीब सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमने सीखा है हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम दूसरों की मदद करते हैं तो इसमें हमें अपने ऊपर भी गर्व होता है कि हम भी कुछ लायक हैं। जब उस टाइम पे जब हम पहली बार घर से बाहर निकले थे तो हमें डर सा लगता था कि हम कैसे पब्लिक से बोलेंगे, कैसे बातें करेंगे। हमें ऐसा डर लगता था क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, ये डर था। लेकिन अब जैसे जैसे हमें, मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए काम करते करते, अब मुझे किसी से कोई भय नहीं है। मैं अपनी बात रख सकती हूँ और दूसरों की बात भी मैं पूछ सकती हूँ, उनको पूछती हूँ, अपना बताती हूँ, तो उससे लोगों को मेरे पर विश्वास है और मुझे अब लोगों के ऊपर विश्वास हुआ है तो मैं बेहिचक घर से बाहर जा सकती हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। हम अगर कोई मदद कर रहे हैं तो दिन में कर रहे हैं तो ठीक है, अगर रात है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरी मदद करते हैं। इससे महिलाओं को भी फायदा होता है और हमें भी ये महसूस होता है कि हम भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। पहले जब हम नहीं करते थे तो हमें ऐसा लगता था क्या है, अब ऐसा है कि थोड़ा मैं भी कमाती हूँ, थोड़ा मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं तो मुझे खर्चने में कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं अपने फैसले अपने आप भी ले सकती हूँ और मैं महिला को ये ही समझाती हूँ कि वो भी अपने पैरों पे खड़ी होए और अपने लिए लड़े, अपने लिए तो कम से कम लड़े ही कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसमें ये होना चाहिए।

आजादी के आंदोलन से निकले आर वेंकट रमन उन लोगों में से थे जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कानून की पढ़ाई इसमें बहुत काम आई। पहली लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उनकी राजनीतिक पारी लगातार आगे बढ़ती रही। केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के तौर पर उनके फैसले पक्के होते थे और उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। 1980 से 90 के बीच भारतीय राजनीति में 1980 का दशक एक बार फिर अस्थिरता और उथल पुथल वाला था। ऐसे में 22 अगस्त 1984 को वो देश के उपराष्ट्रपति बने। करीब 25 महीने वो इस पद पर रहे। इस दौरान राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से समान आदर पाया। उनकी व्यवस्थाओं की कभी भी आलोचना नहीं हुई। 25 जुलाई 1987 को वो देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। उनका ये कार्यकाल इस मायने में अनूठा था कि देश ने 5 साल में 4 प्रधानमंत्री देखे। इनमें 3 को शपथ आर वेंकट रमन ने ही दिलाई थी। आर वेंकट रमन की ये पारी बेदाग और गरिमावान रही। अनेक किताबों के लेखक आर वेंकट रमन राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद भी सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे। 27 जनवरी 2009 को 98 साल की उम्र में आर वेंकट रमन का निधन हो गया।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महान शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का।
1: ये वतन का
0: एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, ये कहना था अखंड भारत के प्रबल समर्थक, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, महान चिंतक, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक दक्ष राजनीतिज्ञ तो थे ही, लेकिन उससे भी पहले वे एक प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। देश से उनके सरोकार गहरे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कोलकाता के एक संपन्न और अत्यंत प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक जाने माने शिक्षाविद थे। उनकी माता का नाम जोगमाया देवी था। बचपन से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी अत्यंत संवेदनशील और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। बचपन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को घर पर बेनी कहकर पुकारा जाता था। उनका रंग अपने भाइयों की तुलना में सांवला था, इसलिए सभी उन्हें चिढ़ाते और भूतिया भूती कहकर बुलाते थे। एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण में उनकी परवरिश आरंभ हुई। घर पर अध्ययन अध्यापन का बहुत अच्छा वातावरण था, जिसका प्रभाव बचपन से ही उन पर पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। शिक्षा के प्रति उनके भीतर गहरा अनुराग था। सभी विषयों में उनकी गहरी रुचि थी। अपने जीवन में शिक्षा को उन्होंने एक अनमोल निधि की तरह एकत्रित किया और आने वाली पीढ़ी में विद्या की ये निधि वे उसी उदारता और जिम्मेदारी के साथ बांटते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्राथमिक शिक्षा भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन से हुई। सन 1917 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। बीए करने के बाद उनका विवाह सुधा चक्रवर्ती के साथ संपन्न हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने आजीवन पुनर्विवाह नहीं किया। सन 1923 में वे विश्वविद्यालय सीनेट के फेलो बने। 1924 में लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया। कुछ समय बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी विदेश चले गए। वहां पर लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उन्हें सम्मानित सदस्य बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता की तरह उन्होंने भी बहुत कम उम्र में ही शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित कर ली थीं। भारत लौटने के बाद डॉक्टर मुखर्जी वकालत तथा कोलकाता विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत हो गए। मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही वे कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वो सबसे कम आयु के कुलपति थे। इस तरह एक विचारक, एक प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर बढ़ती चली गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कुलपति थे, तब 1937 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण देने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। उनके आत्मीय आमंत्रण पर गुरुदेव पधारे और बांग्ला भाषा में उन्होंने भाषण दिया। सभी छात्रों के लिए ये एक सौभाग्य क्षण था। सन 1938 तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पद पर बने रहे और शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया।

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरंभ से ही मानवता के उपासक और अत्यंत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों के भीतर आजादी की अलख जगाने के उद्देश्य से अपना राजनैतिक जीवन आरंभ किया। गुलाम भारत की स्थितियां उन्हें परेशान कर रही थीं। एक बेचैनी उनके भीतर लगातार बनी रहती थी। भारत की आजादी के लिए उनके भीतर एक तीव्र छटपटाहट थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सभी भारतीय एक हैं। इसलिए धर्म के नाम पर लोगों के मन में कड़वाहट बोने के वो कट्टर विरोधी थे। वो मानते थे कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, हमारी नसों में बहने वाला रक्त एक है, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है, हमें हर हाल में एकजुट रहना चाहिए। 1929 को वो बंगाल विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए, किंतु कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए। 1937 में वो बंगाल सरकार में वित्त मंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान वे अत्यंत ईमानदार और निरपेक्ष रहे। पद पर रहते हुए उन्होंने अतुलनीय कार्य किया, लेकिन एक साल से कम समय में ही इस पद से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1940 में उन्हें हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में वो इसके पूर्ण अध्यक्ष चुने गए। देश की आजादी के तुरंत बाद जो अंतरिम सरकार बनी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग और आपूर्ति मंत्री का पदभार संभाला। संविधान सभा में उनके प्रदर्शन, उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, शानदार भाषण कला और संसदीय प्रक्रिया में उनकी कुशलता, इन सब बातों ने उनके राजनैतिक व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई प्रदान की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने कार्यकाल के दौरान चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का कारखाना और बिहार में खाद का कारखाना स्थापित करवाया। देश की आजादी के बाद देसी रियासतों के भारत में विलीनीकरण की प्रक्रिया में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हैदराबाद के निजाम को अगर भारत में विलीन होना पड़ा तो सरदार पटेल के साथ साथ इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। विभाजन के बाद कश्मीर में जो तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उससे वो सहमत नहीं थे और 6 अप्रैल सन 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत उनका मान था। एक भारत, अखंड भारत उनकी आत्मा का संगीत था।

अपने सिद्धांत, अपनी स्पष्टवादिता, अपनी विचारधारा और प्रखर राष्ट्रप्रेम की वजह से न केवल अपने चाहने वालों के बीच बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विशेष सम्मान था। एक भारत अखंड भारत का भाव उनके लिए सर्वोपरि था। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण और तकनीक की दिशा में उन्होंने जो काम किया, वो काम उस दौर की सोच से बहुत आगे का काम था। खासतौर पर वो देश के विकास में जन भागीदारी को बखूबी समझते थे। उनके पास अत्यंत प्रभावशाली राष्ट्रवादी चिंतन था जिस पर वो अटल थे। यही कारण है कि अक्सर सहकर्मियों से उनका मतभेद हो जाया करता था, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के आगे कभी झुके नहीं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी संपूर्ण देश को एक इकाई के रूप में देखना चाहते थे। उनका स्पष्ट मत था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते। 21 अक्टूबर 1951 को देश को एक नई दिशा देने की सोच के साथ दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। इस तरह एक मजबूत राष्ट्रवादी प्रतिपक्ष तैयार हुआ। सन 1951-52 के आम चुनावों में वे विजयी हुए। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता के दृढ़ पक्षधर थे। उनका मानना था कि आजादी के बाद भारत की एकता और अखंडता कायम रखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आजादी के बाद राज्यों के विलय को लेकर उनका अपना स्पष्ट मत था और इस हेतु उन्होंने सत्याग्रह भी किया। कच्छ और कश्मीर में क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। संसद से सड़क तक उन्होंने आंदोलन किए। कश्मीर में चल रहे डोगरा आंदोलन का भी उन्होंने भरपूर समर्थन किया था। कश्मीर में लागू परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए उन्होंने एक लोकतांत्रिक सोच का परिचय दिया और उस पर अडिग रहे। कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियां उन्हें कचोट रही थीं। जम्मू कश्मीर की परमिट व्यवस्था से वे अत्यंत आहत थे। इसके विरोध स्वरूप वे बिना परमिट लिए ही जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। 8 मई सन 1953 की सुबह 6:30 बजे अपने समर्थकों के साथ वो पंजाब के रास्ते जम्मू के लिए रवाना हुए। जलंधर से अमृतसर के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी। अमृतसर में 10 मई 1953 को भारत की एकता पर उन्होंने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया और 11 मई 1953 की शाम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर की सीमा के 2 मील भीतर लखनपुर से गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया। नजरबंदी के दौरान ही 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। इस तरह देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। नमन ऐसे महान राष्ट्रभक्त को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: I'd like to call the speakers and talk about how the role of transformative libraries are implementing this mission on ground, and where Reed libraries could learn further and move further on this journey. So first in this series, I'd like to call upon Dr. Shantanu Ganguly. Please, sir.
1: Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Geeta for inviting me to share my experiences with all of you. Thank you very much, Geeta. I think since morning I learned a lot. I don't know what is the acronym stands for Reed Word. And I did it myself. R stands for resilience. E stands for enlightenment or engagement. A stands for access to knowledge resources. And D stands for development. That is how the entire Reed Word stands for. That is what I could coin.
2: After 17 years, we are getting the new name. Thank you, sir.
1: Second thing is that my colleague, Mr. Vibhutinath Jha. Vibhuti, please stand up. My colleague, Mr. Vibhutinath Jha, is there. In fact, he told me, sir, hame yahan se jab hum jayenge, to hame kuch karke jana chahiye. I said, kya karenge? Abhi to mere haath mein kuch bhi nahi hai. Just 1 month back, I have taken over Ashoka University mein. Sir, we are going to donate 2,000 children books to Read India. And that he promised, and he said, sir, let's make it and we will do it. So that is a small contribution from this conference for you. Let me tell you, I am in this profession for the last 26, 27 years, and all my stalwarts are here, starting from Dr. D.B. Singh, Dr. Jagtar Singh, Dr. P.R. Goswami. They are like my mentors, and Rangashri, my predecessor from Ashoka. And I had a very interesting dialogue with Jay, and when I discussed with him regarding that, one of the important component in today's context is the sustainability of the libraries. How do you take this journey for the next 17 years or maybe next 70 years? How do you look at it? What would be the journey is that? There are a couple of ideas. I told him that I'm ready to be a part of Read India, being in this profession, because I have a very strong backbone of research. I have completed almost 41 research projects, which are funded by the bilateral, multilateral organizations, Department of Biotechnology, DSIR, DST and all, where I have worked on some of the leading projects, which is making a marriage between a library information system and sustainable development goals, and reaching out to those sustainable development goals. And that's where basically I come from. Let me give you a very small presentation on this. Well, this is a beautiful quote from Alvin Toffler, Future Shock. And he said that the illiterate of the century for those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. And let me tell you, all my friends here, today I have proved this and I have learned a lot from this entire session. This is a very common, platform. This is a very common platform. Can anybody tell me, what is this?
3: WhatsApp.
1: I want to be an interactive. WhatsApp. Who discovered WhatsApp? Who discovered WhatsApp? That's my question is. And there is a relationship by the word which is talked about by Steve Jobs, connecting the dots. These two guys, I don't know how many of you know, Yan Koum and Brian Acton, came out of once again a Stanford University, sitting in a garage, and develop the entire model of WhatsApp. And that is what how the birth of WhatsApp has taken. And it is based on what? Connecting the dots. This is what connecting the dots is today. It is the content, it is the context, and third is the technology. Content, what do you write? अरे यार ये क्या खड़े होके स्टेज में बात कर रहा है, खाना खाया सोना है. Somebody must be typing out on that. Context, somebody want to escape this lecture today. And technology is that what is the platform is. Simple thing, but has given birth to the entire information and revolution today. So content, when we look at it, it is a multi-format in today's context. It is textual. It is the figures and the numbers. It is the images. And it is the videos which has come up. And many more formats. When you talk about context, it is the purpose. It is the objective. It is the scope. And it is the right content for the right person in the right time. And that is where you provide a service. I'll give you an example. I was doing a project in Almora. And I was trying to develop what is called as a village knowledge resource center. It is called a VKRC model. When I was in Terry, I went to their public library. It was completely in a dilapidated condition. बहुत हालत खराब था उसका. और उसको develop करने के लिए जमीन के सारे वहां के बच्चों से जुड़ा, उनके लोगों से जुड़ा और वहां पर एक विलेज नॉलेज रिसोर्स सेंटर बनाना. जब वहां पर पहुंचा विलेज नॉलेज रिसोर्स सेंटर, तो वहां के गांव के लोग हमको ये कहते हैं, सर हमको आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, हम कैसे करेंगे बताएंगे हमको. हम अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम अपना सब्सिडी में गांव गेहूं लेना चाहते हैं, कहां जाएंगे, कौन सी स्कीम को अवेल करेंगे, गवर्नमेंट कैसे बताएगा हमको. फिर मैंने उनको बोला कि यस, ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर सिर्फ किताबें नहीं देगा, ये यहां के लोगों को एजुकेट करेगा. वो एजुकेशन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी. एंड द टेक्नोलॉजी वॉज करेंटली देर इज अ बूम, लाइक जे ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज इन अ वेरी बिग वे, इट इज कमिंग अप. आई वॉज रीडिंग एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रूगल इनोवेशन, which is currently social and frugal innovation, is one of the big thing. In fact, in one of my event, Geeta was also one of the speakers. The Professor Sharadindu Bhaduri was talking about how the frugal innovation is making a radical change in the current context. Aaj frugal innovation. Frugal innovation hai kya? These are very big jargons. Let me easy way mein aap logon ko batata hun. Aapke paas resources ki constraint hai. जब आप रूरल कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास रिसोर्सेस की कमी है. और उसी कमी के साथ जब आप कोई सॉल्यूशन लेके आते हैं, और वो सॉल्यूशन एक दूसरे चीज पे रूपांतरित होता है, तो उसको हम फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं. इज अ वेरी सिंपल क्रूड वे. एंड so we are looking towards a smart library now. Smart ka matlab aisa nahi maine acha dress pehna hai, Jay ne badhiya dress pehna hai, madam ne pehna hai, aisa smart nahi hai. Smart word ka maine coin kiya hai, mere ko word coin karna acha lagta hai. Sustainable, measurable, achievable, retrievable and transformational. Sustainable. ग्रीन लाइब्रेरी लेके बहुत बातें हो रही है. आप लोगों को मालूम है कि इफ्ला ने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेशन में रिलीज किया है, वी हैव टू टॉक अबाउट ग्रीन लाइब्रेरी. सो मच ऑफ रिन्यूअल एनर्जी इज यूज्ड इन द ग्रीन लाइब्रेरीज. हमने अपनी HDFC लाइब्रेरी के अंदर जो है सेंसर बेस्ड लाइट्स लगाई है. अगर इस रूम के अंदर कोई नहीं बैठा है, nobody is sitting here in this room, तो क्या ये लाइट्स जलनी चाहिए? We should save this energy, ना? तो वो कैसे करेंगे? Paperless library हमने start किया है अपने HDFC library में. Maximum communication हमारी online में हो रही है. Futuristic. There are case studies. I could have presented those case studies. वहां पर augmented reality, virtual reality का applications किया जा रहा है. और वो भी higher education sector में. And the third, but not the least is the sustainable development goals. Already sir ne hame bahut logon ne bataya SDGs ko agar aap nahi batayenge to aap nahi survive kar sakte aaj ke date mein. SDGs is must. Aur SDG ka jo sustainable goals hain, jo sare goals hain, main kai goals pe kaam kiya hua hai maine. एक छोटा सी चीज आपको मैं बताता हूं. हमारा एक आई वॉज वर्किंग इन VHEI वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हम वहां पर एक छोटा सा न्यूज लेटर निकालते थे हमारी चिट्ठी आपके नाम हमारी लाइब्रेरी से और वो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता था. तो आई वॉज वर्किंग विद दिस सहारिया ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश की सहारिया ट्राइब्स के साथ जब मैं काम किया वहां पर तो वहां पर एक चाय वाला जो है वो शाम के टाइम एक छोटा सा अपना एक वो कैंडल टाइप लेके बैठता था और गांव वालों को साथ में बिठा देता था और साथ में वो जो हमारी चिट्ठी आपके नाम की हम जो डॉक्यूमेंट उनको देते थे जो पतला सा न्यूज़लेटर देता था उसको पढ़ के सुनाता था और उसमें कौन सी स्पेसिफिक चीजें होती थी. एनवायरमेंट की नॉलेज देते थे हम लोग, पर्यावरण की नॉलेज देते थे, पानी का नॉलेज देते थे, ऐसे बहुत सारी चीजों की नॉलेज हम उनको डिसेमिनेट करते थे. हेल्थ का, स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा देते थे क्योंकि ये जो गर्मी का टाइम आ रहा है, बरसात का टाइम है, ये सबसे ज्यादा बीमारियों का जन्म लेता है. इन चीजों की हम देते थे. सो वी स्टार्टेड हिटिंग ऑन दीज एरियाज and in fact I have done quite a good number of projects, research projects exclusively on sustainable development goals. Measurable, it's the library analytics. Aaj ke date mein itni resources hum kharide ja rahe hain lekin kya uski istemal proper ho rahi hai, kitne kitabe logon ne rack se nikal ke khol ke dekha hai. लोग तो डिजिटल वर्ल्ड में घूम रहे हैं, आजकल के बच्चे भी जेन सी जनरेशन है वो डिजिटल वर्ल्ड में है, कितने किताबें रैक से निकाल के देखते हैं. टीचिंग एनालिटिक्स, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं. मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, रीड इंडिया जय के जय इज अ फाउंडर ट्रस्टी गीता मैम है, मैम प्लीज आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एज एन एक्सटर्नल एडवाइजर कि अगर आप कोई ऑनलाइन में लाइब्रेरी साइंस के बच्चों का कोर्स करवाना चाहते हैं आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट. आई हैव गॉट 40 रिसर्च वीडियोज इन स्वयं पोर्टल. मैंने खुद ट्रेन किया है, मैं हार्ड कोर ट्रेनर, आई थिंक वन ऑफ माई स्टूडेंट मे बी स्टडिंग देयर. ऐसा कई लोगों को किया है और आज जब हम लोगों को कोई लाइब्रेरी इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू कम एंड वर्क विथ मी बिकॉज देयर इज अ गैप एंड वी ऑल ऑफ अस हैव टू मिनिमाइज दैट गैप. एंड द लास्ट कॉम्पोनेंट इज सेंटिमेंट एनालिटिक्स. जो भी चीज हम खरीदते हैं, जो भी चीज हम लेते हैं, कुछ भी करते हैं, सेंटिमेंट एनालिटिक्स, उसका आपका जो फीडबैक है वो जानना बहुत जरूरी है. वो आपने कैसे किया है. एंड इज अ वेरी बेसिक मेथड. आई कैन ट्रेन पीपल ऑन दीज एरियाज. अचीवेबल, दैट इज बेसिकली जितना हम अभी कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग मेटाफर, नॉलेज मेटाफर है. एक्चुअल सेंस में अगर देखा जाए, सिंस आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ आई वर्क ऑन केम सिस्टम्स, आई हैव इंप्लीमेंटेड क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ केम सिस्टम. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ केम. इनफैक्ट इन एक्सेट्री और PwC I have given a lot of trainings, even in Ernst & Young, McKinsey, lot of sessions I have taken on KM systems implementation. I'll give you an example. I was working in the in Bhopal in one of the leading multinational NGO there. Unke wahan par mere ko there was something called as state climate change knowledge management system banana tha. अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के अंडर में हमें स्टेट क्लाइमेट चेंज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था. सो आई वेंट देयर अलॉन्ग विद माई क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट. हमने वहां पर बनाने के लिए गया. जब मैं वहां बनाने के लिए गया तो देर वॉज अ स्टेक होल्डर वर्कशॉप वॉज टेकिंग प्लेस एंड सी हाउ डू वी नो कैच द टैसिट नॉलेज देयर. वहां गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने हम लोगों को वाटर लेके बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था कि कहां पर पानी का कैसा लेवल है, उसका ग्राउंड लेवल पे कैसा है, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत खपत है, इतनी पानी मिलती नहीं है, बहुत जमीन के नीचे चला जाता है,

I mean, this is unimaginable. And how do we capture that knowledge? That is actually the below the surface. We don't know these techniques. In fact, some of these areas I have also worked extensively in the northeastern belt with all the nine sisters. Jahan par is tarah ki knowledge ko preserve karne ka, conserve karne ka bahut prayas kiya ja raha hai. Bahut prayas kiya ja raha hai. So, best possible way to retrieve. So, retrieval is a very important thing. Kitna badhiya aap retrieve kar rahe ho, kyunki resources ke to kami nahi hai. Lekin aaj ke date pe actual resource, jab aapko nikal ke le aana hai, samundar mein se do boond pani aapko nikal ke le aana hai, kya aapke paas us tarah ka deep learning ka ya artificial intelligence ka platform hai, which can take out that actual information or contextual, which is basically called as contextual searching. Machine language ko use karke contextual searching mein us information ko nikal ke le aana. In fact, we are working towards that particular platform, and very soon we are going to have that in our own library also. The next component is transformational. Now, when I talk about transformational, this is a very big word. What is that transformational? हमें अपने आप में एक बार देखना चाहिए. हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम. वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन, और वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. कौन सी एरिया पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम? डिजिटाइजेशन, आपके पास इतने सारे पेपर्स हैं, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में, हो गया आपका. डिजिटलाइजेशन इज अ प्रोसेस बेस्ड. And digital transformation takes place in the entire organization, where everything goes into the digital framework, which is a very long way journey. And it is not a very easy thing also. I was reading this book, 4.0 Insight, and one of the important area was knowledge 4.0. Aaj ke date mein, ye ek naya terminology, ye once again sa jargon. Lekin hum sab karte hain. Yahan par baith ke, main peeche se bahut sari saman khareeda hai aaj maine. I bought many things for my wife, my daughter, my family members. Jo cheez mere ko bahar piche dekhne ko mila, and I was completely flabbergasted after seeing that. Co-creative, collaborative, comprehensive, problem solving, and simulation analytics based. Jab tak aap karoge nahi, ek dhaga ko kaise. अगर आप वो मूवीज को देखेंगे जो WE का मूवीज, जैसे एक धागा को कितना बारीक से वो उसको डाल रहे थे और उसके अंदर उसको स्टिचिंग कर रहे थे, ये प्रोसेस को कोई अगर नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा. इनफैक्ट अंडर द NEP 2020 इन माय पास्ट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन एट NIMS यूनिवर्सिटी, द फैशन डिपार्टमेंट वॉज अंडर मी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल फैशन, where different kinds of reused materials in the fashion industry, how they can be further taken to a next level. I worked on that level also. So, if I look at these five laws of library science, which was coined by S.R. Ranganathan, and I relate them with artificial intelligence, I find that there is a very correlation with that. Starting from books are for use, every reader, his or her book, every book its reader, save the time of the reader, and library is a growing organism. But what is most important today, we need to empower our information professionals. Hamare jitne bhi information professionals, library information professionals hai, unko sahayata chahiye, kaise wo practically apne systems mein jaye aur wahan seekhe. और वहां पर इंप्लीमेंट करे चीजों को, ये हमें चाहिए. लाइब्रेरी हैज कम अप ऑन अ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लाइक डेटा माइग्रेशन, कंप्लीटली अ डेटा बेस्ड, इट इज अ कंप्लीटली एन ऑटोमेटेड बेस्ड. ये बहुत टेक्निकलिटी है इसके अंदर. हम लोगों को कंप्यूटर साइंस के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है, हम कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट नहीं है. शेल्फ मैनेजमेंट, फॉर्म्स प्रोसेसिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर गई है. जैसे स्मार्ट लाइब्रेरी

गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अर्चना कुमारी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बेनीपट्टी सेंटर से हूँ। गीता मैम और रीड इंडिया, मैं आपके आभार हमेशा रहूंगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है। और मैंने अपनी लाइब्रेरी में मैम एक ही बात शेयर करती हूँ कि ये फाइनेंशियल इरा है तो सबको पैसे कमाने की चिंता लगी हुई है, लेकिन जो भी आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास एक रुपए है और मैं आपको दे देती हूँ तो आपके पास दो रुपए जरूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन नॉलेज यदि हम शेयर करते हैं तो मेरे पास भी एक है और आपके पास भी एक है, तो फ्री हम शेयर करेंगे तो मेरे पास भी दो हो जाएंगे और आपके पास भी दो हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। और मैं आभारी रहूंगी हमेशा क्योंकि सर सब अपने स्टोरी के, सब अपने लाइफ के नायिकाएं हैं, सब स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में। हमारी भी गवर्नमेंट जॉब जब छूट गई थी तो मैम ने मुझे पनाह दी, इसलिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आजीवन। और मैम मैं तो इतनी लायक नहीं हूँ कि जी से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आपके ए को बरकरार रखूंगी जब तक। थैंक यू मैम।

0: I would like to call Dr. D.V. Singh, former chief librarian, Delhi University, for sharing his views.
1: पहले तो धन्यवाद. मेरा टॉपिक है जो मुझे बताया गया वो है ट्रांसफॉर्मेटिंग रोल ऑफ द लाइब्रेरीज. एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, वो कैसे होता है पता नहीं चलता, लेकिन जैसे हम कई बार कहते हैं कि पानी में आग है, कई लोग एग्री नहीं करते, लेकिन है. पानी को हमने रोका, हमने टरबाइन में डाला, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, हीटर में लगाया, आग पैदा हो गई. कहां थी? पानी में. लेकिन हमने उस चैनल को क्रिएट किया, तो लाइब्रेरी भी ये काम करती है. जिन्होंने एटम बम बनाया था, दो लोग थे, एक आर्मी के जनरल थे. वैसे तो लोग कहते हैं कि अभी तक नहीं पता एग्जैक्ट कौन जिम्मेदार, बट उन दो लोगों को माना जाता है, ओपेनहाइमर और वो दोनों ने कहीं लिखा है, मैंने किसी जर्नल में पढ़ा कि ये गलती हो गई, बट गलती लाइब्रेरी में बैठ के हो गई. क्यों? क्योंकि वो सब कुछ वहीं देखते थे, वहीं से लाते थे, स्टडी करते थे, सोचते थे. और जब वो ड्रॉप किया, वो भी कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी में कि वर्ल्ड वॉर एटम बम से नहीं जीता गया, लाइब्रेरी से जीता गया. कि लाइब्रेरी में तय किया गया कि जापान के किस शहर में कितने बजे, क्योंकि डाटा वहीं था, उसका बम गिरा जाए. कहने का मतलब है ह्यूज एंड मिस्टेक. अब बहुत सी बात है, लाइब्रेरी तो बहुत कुछ करती है. पता नहीं आप लोग कितने जानते हैं, श्वेत लाना का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े डिक्टेटर, वर्स्ट डिक्टेटर ऑफ दी नोन हिस्ट्री, उसका नाम स्टालिन था. उसकी एक लड़की थी, वो इंडिया आ गई, यहां ब्रिजेश सिंह से शादी की, वहां नहीं मानी. बड़े उस डिटेल में मैं नहीं जाता. उसे पूछा, आप उसने स्ट्रेसफुल लाइफ में, जहां आपके पिताजी किसी पे विश्वास नहीं करते थे, आप एक शब्द विपरीत नहीं बोल सकते, आप सर्वाइव कैसे की? बोले एक ही रास्ता था, लाइब्रेरी. वो कैसे? कि बस मैं जाती थी लाइब्रेरी में, किताब पढ़ती थी, कुछ लिखती थी, और बस वहीं से मुझे स्ट्रेस मेरा निकल जाता था, मैं सर्वाइव की. तो इसका लिए तो तय होगा कि लाइब्रेरी स्ट्रेस को खत्म करती है, तो फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस को भी खत्म करती है. और आजकल तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस है. शाम को देखो यहां चौराहे पे क्या हाल होता है. मेरी समझ में आता है, ये आदमी दौड़ रहे हैं कि कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं, ये कहां जाएंगे, क्या होगा. मेरे गांव का आदमी आया, बोला दिल्ली तो खाली हो जाएगी मां, क्योंकि इतने लोग दौड़ रहे हैं निकलने के लिए, तो कहां जाएगी ये दिल्ली. लेकिन कहीं कोई नहीं जाता, वहीं दिल्ली में है और यूं ही दौड़ रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, बस एक ही बात कहूंगा. रंगानाथन जी ने 67 में वो लेक्चर कोई दिया था, वो मेरे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, लेकिन किस काम का, जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब हो. बाकी ह्यूमन टच अगर चला गया तो लाइब्रेरी की भी इंतजार मत कीजिए, वो भी चली जाएगी, प्रोफेशन भी चला जाएगा. और हमने सरेंडर कर भी दिया इसी चक्कर में. रिपीटेटिव जॉब क्या है? क्लासिफिकेशन, वो आप नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कभी टच कर पाएगी, वो अलग बात है. कैटलॉगिंग कर सकते हैं, आपको इश्यू रिटर्न करना है कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज देनी है, वो आपको केवल ह्यूमन टच के द्वारा देनी है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, वो क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं. एंड विच इज इन क्वालिटेटिव नेचर, इट रिक्वायर्स द ह्यूमन टच ऑल द टाइम. कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मां भी पैदा कर देगी, लेकिन मां ने, मेरी मां ने जो मुझे छाती से लगा करके थपकी दी है, और उससे जो मेरे अंदर इमोशंस डेवलप हुई है, वो मशीन उनको खत्म कर देगी, और आदमी मशीन बन के रह जाएगा, उस तरफ मत जाए. डिटेल में पढ़ना है तो 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी नो हारे की किताब है, प्लीज डू रीड दैट बुक. हिस्टोरियन है, इसराइल के हैं, और टाइम गड़बड़ हो जाए तो टाइम बता दीजिए. कि ऑर्गेनाइजर की सबसे बड़ी समस्या समय होती है, और बोलने वाले की सबसे बड़ी समस्या भी समय की. उसे पता ही नहीं होता मैंने कितना खा लिया, उन्हें समझ नहीं आता कि कब चुप होगा, तो वो स्थिति ना पैदा हो. तो वो जो बात है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ओके फाइन, लेकिन एक सीमा से परे नहीं. ह्यूमन इज ह्यूमन, यू कैन नॉट ट्रीट ए ह्यूमन थ्रू द मशीन, मशीन कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन। डिटेल मैं नहीं जाऊंगा, बहुत जा सकते हैं, किताब बता दी और रेफरेंस लीजिए, उसको पढ़िए। अब लाइब्रेरी कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, वो घटना मैं बार बार सुनाता हूं, फिर भी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी की सेंटिनरी मनी थी 1969 में, तो हम अपने गांव में पढ़ते थे, शायद थर्ड फोर्थ में थे, और मेरे गांव में एक थोड़ी दूर पे मुल्ला जी कुछ कुरान शरीफ पढ़ाते थे, और वो आपने कभी देखना मदरसे में जाके कुरान शरीफ पढ़ने वाले को यूं यूं यूं यूं गर्दन करके वो लगे रहते हैं, रुकते नहीं, बस यूं यूं यूं यूं, जो भी कुछ उनका है उस पर मुझे कुछ आता भी नहीं तो मैं कमेंट भी नहीं करूंगा। तो मैं सोचा यार ये सिर हिला हिला के इतनी बड़ी कुरान शरीफ याद कर लेता है, ये थोड़ी सी तो चीजें हैं जो मुझे एग्जाम में देनी है, मैं कैसे सीख लूंगा क्योंकि इससे जल्दी सीखा जाता है। बच्चा था, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वेद में तीन बात कही है, उसको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। स्वर्ण मन निधि ध्यास, सुनना, कभी आप किताब पढ़ते हैं तो आंख से सुनते हैं, तब कान से नहीं सुनते, आंख से सुनते हैं उस लेखक को, या आप मुझे सुन रहे हैं कान से सुन रहे हैं आप, तो मुझे सुनना है, उसके बाद विचार होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए, अन्य दिध्यासन तो उस पर आचरण होना चाहिए, क्योंकि बच्चा था, आंख से देख लिया, विचार नहीं कर सकता था कि विचारिक शक्ति उतनी विकसित हुई नहीं थी, और मैंने आचरण कर लिया। अब रिजल्ट क्या निकला, घर में सबने डांटा, पिटाई सिताई भी, उन दिनों थोड़ा पीटना एक अधिकार और साधन समझा जाता था सुधार का, आजकल तो सजा का साधन है वो, और कहते हैं इंग्लैंड में तू अपने बच्चों को पीट दे तो जेल चला जाता है, वो अलग विषय है, सुना है सब, देखा भी है कई बार, नहीं माना। स्कूल में उस दिन सारे टीचर नहीं आए थे तो हमें किताब दे दी, और किताब मैंने जब पढ़ी, बच्चों की किताब थी, वो आई थी उस समय सेंटिनरी ईयर में, पिक्टोरियल थी, तो उसमें लिखा था गर्दन हिला के पढ़ने से बुद्धि भी खराब होती है और आई साइट भी खराब होती है, और मैंने वो बंद कर दिया। तो किसका प्रभाव था, लाइब्रेरी की किताब का। और मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत से लोगों जो बहुत गर्दन हिला के कुछ याद करते हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं हो पा रही दुनिया में, बहुत कोशिश हो रही है सारी दुनिया में, किसी का नाम तो मैं क्या लू। तो लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और एक चीज मैं क्या बताऊं आपको, ये हिंदुस्तान है, यहां उन चीजों पे बहुत खर्च कर देती है सरकार जिनका कोई मतलब नहीं होता, और जिनका मतलब होता है उन पे विचार नहीं करते हैं, तो जानते नहीं या वो करना नहीं चाहते। वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इनिशिएट किया कि इंडिया का यूथ लीडरशिप सर्वे होना चाहिए, अप्रूव हुआ, होते आते 2009 में जाकर के ये काम एनसीईआर को, नेशनल काउंसिल इकोनॉमिक रिसर्च जो है आईटीओ पे, उसको दिया गया, और एनबीटी के कोलोबोरेशन में वो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट 11 में आई, बहुत फैंटास्टिक रिपोर्ट है। अमेरिका में तो अल्टरनेटिव ईयर पर यूथ लीडरशिप सर्वे होता है, यहां तो एक ही बार हुआ, उसमें यही जो बात पहले कही गई, किसने कही थी कि जहां रीडिंग बढ़ी वहां पर क्राइम घटा, उसने यही बात कही कि जो जो एरिया डिस्टर्ब थे वहां रीडिंग जीरो थी, जिन एरिया में रीडिंग अच्छी थी वो एरिया कम डिस्टर्ब थे, और जहां पहले से रीडिंग हैबिट्स अच्छी थी वहां डिस्टर्बेंसेस कम हुए और सोशल लॉस कम हुआ। ये हमारी इंडिया की रिपोर्ट है, एनबीटी से मिल जाएगी, नेट पे भी पड़ी हुई है, इस पे काम होना चाहिए। सैंपल ही सही, इंडिया बहुत बड़ा है, हम किसी डिस्टर्ब एरिया में थोड़ा सा एक सैंपल कर सकते हैं। कई बार हमारे पास रिसर्च की थीसिस भी आ जाती है तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता, तो हम कहते यार ये क्यों नहीं करते, लीडरशिप सर्वे क्यों नहीं दे देते, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द मूच वाला, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या क्या क्या क्या, एक ही चीज रिपीट होती रहती है, मैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल में क्यों रखते हो, लेट हैव द न्यू वाइन इन न्यू बोटल, अर्थात कुछ नए एरिया लेने चाहिए। जो हम बात करते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, अगेंस्ट तो नहीं हूं, बट इसके फेवर में नहीं हूं। अनइंप्लॉयमेंट के बारे में एक चीज समझ लीजिए, उसकी एक सोशल कॉस्ट होती है, व्हाट इज दैट, ये जो आज चैन छीन रही है ना, आप 3 मिलियन बेटे महिला का पर्स छीन लिया क्योंकि उसके पास जेब होती नहीं, उसके कपड़े कुछ इस तरह के हैं तो सब उसी में होता है, छीन के भाग गए, और जब वो पकड़े जाते हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि अनइंप्लॉयड है। अब उस क्राइम को रोकने के लिए आपने पुलिस बढ़ानी पड़ती है, उस पुलिस के लिए आपको थाने बढ़ाने पड़ते हैं, पोस्ट तो पे करनी पड़ती है। जैसे एक जोक भी है और सच्चाई भी है। मेरे एक मित्र थे हरिद्वार में, मैं पढ़ता था, बहुत विद्वान आदमी थे, सारे शास्त्र उनको, सच में मैं उनकी धूल हो जाऊं तो भी जीवन सार्थक समझूं। एक लंगोटी खाली पहनते थे, पेड़ के नीचे सोते थे सर्दी में, अदरवाइज खुले में। एक टाइम किसी के घर जाके मिल गया, जो मिल गया वो उसने खा लिया, वो कोई संपत्ति नहीं थी। वो अमृतसर गए और उन्होंने कहा मैं माथा टेकूंगा गुरुद्वारे में और गुरु महाराज के यहां। जब गुरुद्वारे में गेट पे गए तो उन्होंने कहा भाई सिर पे कपड़ा रखो। उसने कहा कसम खाई है एक ही कपड़ा रहेगा, चाहे इसको यहां बंधवा लो चाहे इसको यहां बंधवा लो। गुरुद्वारे से रोक नहीं सकते, जाऊंगा मेरे भी गुरु हैं। चलो अलग विषय। तो कहने का मतलब है तो जस्ट हंसने के लिए थी कि एक ही रास्ता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट पे कर लो, चाहे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट लेस कर लो, ये आपका डिसीजन है। इसलिए लाइब्रेरी में कंप्यूटराइजेशन की उतनी सीमा रखो जितना जरूरी है। किसी की आंख बंद कर करके पूंछ पकड़ करके नदी पार नहीं होती, नदी तैरने से पार होती है। आगे एक चीज मुझे आज बहुत अच्छी लगी, एक दो चीज मैं लेके जाऊंगा, एक दो उतनी जरूरत नहीं है जितना उनकी लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं वो चीज यहां खरीदूंगा तो कहीं दूर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिस जो हैव नोट्स की कैटेगरी मात्र से कुछ रोजगार मिलेगा, उसको साहस मिलेगा, उसको उत्साह मिलेगा। मैं मंदिर मंदिर में दान नहीं देता, मैं रस्ते में भिखारी को तो बिल्कुल भी नहीं देता हूं, और अगर किसी को रेफरेंस मिल जाए मैं रेफरेंस देता हूं। आर्टिकल सब पढ़ना, 1980 में लिस्टेड वीकली एक मैगजीन आती थी, उसमें एक आर्टिकल आया था जेआरडी टाटा और पीएन अक्षर का। पीएन अक्षर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इफ यू गिव टू वन बैगर यू क्रिएट 10 मोर, आफ्टर रीडिंग दैट आई हैव स्टॉप्ड इट। हर चौराहे पर 10 खड़े, किसको किसको दीजिए तो वो गलत है। तो मैं कहता हूं डोंट गिव ए ब्रेड टू ए पर्सन, गिव देम द आर्ट टू अर्न योर ब्रेड एवरी डे। रीड इंडिया उस काम को कर रहा है। एक दिन रोटी खिला दी कब तक, लेकिन स्किल दे दी, वो स्किल से रोज आपकी रोटी खाएगा। एक भंडारा करते हैं मुंह चेहते हैं, हमने 100 लोगों को खाना खिला, बड़ा काम किया, और जब खिला कर चले गए वहां कुत्तल पड़ी, यहां ग्लास पड़ा, यहां कुत्ते चाट रहे हैं, यहां मक्खी घूम रही है, हमने पुण्य का काम कर लिया। पुण्य का काम होता है जो दूसरे को कभी भी कष्ट ना दे। वो पुण्य का काम नहीं हो सकता किसी को कष्ट दे के आप कोई कार्य करें। तो एनवायरमेंट इतना सा भी ध्यान दे ले तो काम चले। मैं कई बार देखता हूं अच्छी खासी गाड़ी है, मर्सिडीज है, हमारी गाड़ी की टोटल को उसके बराबर इंश्योरेंस देते होंगे, शीशा को दे भाई खाते ही क्यों, तुमने तो थूक दिया। तो खैर बहुत सी चीजें हैं तो एंडलेस बातें हैं। तो रीड इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रही है जो सब काम हो रहा है, और लाइब्रेरी को डाइवर्सिफाई करना होगा। उसका उदाहरण आज वो एसेंचर के लोग शायद चले गए, डाइवर्सिफिकेशन का क्या लाभ होगा लाइब्रेरी को, एक छोटा सा उदाहरण। आर्थर एंडरसन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी कंपनी थी, दुनिया की टॉप 4 ऑडिट कंपनी थी। लेमन ब्रदर्स को गलत सलत रिपोर्ट दी, लेमन ब्रदर बैठ गए अमेरिका में 2008 में, कौन भी बैठ गई, रोना धोना मच गया, आर्थर एंडरसन भी मर गई। लेकिन एसेंचर भी उन्हीं की कंपनी थी, अलग थी, और उसने ठीक से काम किया, एसेंचर सर्वाइव की। क्यों? क्योंकि आर्थर एंडरसन ने डाइवर्सिफाई किया, एक पार्ट मर गया दूसरा फिर भी जिंदा है। अगर लाइब्रेरी डाइवर्सिफाई करेंगी, लाइब्रेरी का डाइवर्सिफिकेशन ये है जो रीड इंडिया कर रहा है। खाली किताब पढ़ा के कुछ नहीं, बहुत सारी बातें हुई हैं। एक बहुत बड़ा आदमी है, मैम टाइम ओके नाउ आई क्लोज इट, जस्ट लास्ट है, शुड आई कंटिन्यू और क्लोज इट ओके। एलन ग्रांट नाम का एक बहुत बड़ा आदमी है, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। उसने कहा ये बिगड़ क्यों गया, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज बैलेंस। उसने अल्टीमेटली ही केम बैक टू इंडिया। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा उसी बात को, उसने दूसरे तरीके से कहा। आपने कभी देखा बिच्छू किसी को काट ले तो वो क्या होता है, उसका उछलता है, उछलता है, लहर सी चलती, मुझे एक बार काटा हुआ है, बहुत परेशानी होती है, कई बार जीवन भी चला जाता। बंदर देखे हैं आपने कभी, बंदर को देखा होगा यहां बैठा, अब यहां बैठा, यहां बैठा, एक सेकंड रुकता नहीं कहीं भी, देखा है ना, अगर उसको बिच्छू काट ले तो क्या होगा? तो हमारा जो मन है बंदर है, इस पे एक्स्ट्रा एम्बिशन का बिच्छू काट गया इसलिए उछलते फिरते हैं, इसलिए टेंशन है। इस बिच्छू को अनावश्यक हमको काट ले। मैं मानता हूं एम्बिशन के बिना जीवन कैसे होगा और कल्पना के बिना एम्बिशन पूरी कैसे होगी। लेकिन यशपाल एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनकी किताब दिव्या है, वो महिला एसेंटिक उपन्यास है, बहुत सुंदर उपन्यास है। सोशल इश्यू को उसने कहा, कल्पना की उड़ान के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन कल्पना के दौर में जमीन से पैर नहीं उठने चाहिए। हम तो पैर ही उठाए फिर रहे जमीन से, जब नशा टूटेगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता। और फिर लोग कहते हैं कि वो तो 10 मंजिल से गिरा था इसलिए मर गया, मैं तो 7 मंजिल से कूदूंगा बच जाऊंगा, कि 3 मंजिल कम हूं, चाहे 10 से कूद लो चाहे 7 से कूद लो मरना तो पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ओवर एम्बिशन का, और यही वर्क लाइफ बैलेंस को खराब करता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी में रहे, बहुत किताब पढ़ी है, बहुत किताबों से डील किया है, अब बोलने को तो कितना भी बोल सकते हैं बट समाप्त भी करना होता है। अब हो क्या गया है जो रीड इंडिया कर भी रही और करना भी चाहिए। हम अभी तक हिंदुस्तान की लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी। गांधी ने बहुत विरोध किया था कि हर चीज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में मत ले जाना, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल कॉस्ट होगी, सोशल हार्मोनी खराब होगी। अब जूते हमारे गांव में लेते थे हम लोग, गांव के आदमी आज भी गांव जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने गांव को, वहीं की वजह से यहां खड़े हैं। अगर वहां नहीं होते तो यहां भी नहीं होते, यहां होते तो नकली होते, क्योंकि यहां पड़ोसी का पड़ोसी से लेना देना है। मेरे गांव में तो मैं किसी कोने में खड़ा होकर पेशाब करूं तो उस कोने में चर्चा होगी, उनका लड़का पढ़ा लिखा होकर भी खड़ा होकर पेशाब करता है, मैं उस समाज से आया हूं और उसी में जाना पसंद करूंगा जहां हर किसी को एक दूसरे का कंसर्न है। यहां तो कहते सानू की, पंजाबी में एक सब बड़ा यूज होता है, दिल्ली में सानू की, हमें क्या है, कोई मर गया तो मर गया। गांव में ऐसा नहीं है, आज भी कोई मर गया पूरा गांव जब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं होती भोजन नहीं करता, जब उसकी तेरवी होती है चाहे दुश्मन हो आके खड़ा होता है, अभी भी बचा हुआ है वो, हारमोनी बची हुई है, क्योंकि अभी सारा गांव ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आया है। हम जूती गांव में लेते थे, गांव में जूती बनती थी, हमारे गांव के पशु मरते थे उसी चमड़े से होती थी, उसका रोजगार था, हमारे पास एक साधन था, वो बाटा पे चला गया, एडिडास पे चला गया एटसेट्रा, और वो बाटा एडिडास का 10,000 का जूता पहन के अगर मैं अपने खेत में निकल जाऊं तो वो शाम को खराब हो जाएगा, लेकिन आज भी वो जूती पहन के मेरे गांव के किसान लोग खेत में घूमते हैं, जब वो सख्त हो जाती है थोड़ा सरसों का तेल डाल के रख देते हैं फिर पहनते। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बचाना पड़ेगा और लाइब्रेरी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना पड़ेगा। हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, कहीं कहीं ये पब्लिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट के एक बाबूजी के कब्जे में, ये जो भी आई है सो तो मैंने बाबूजी कहता हूँ, ये बड़े बाबू छोटे बाबू के कब्जे में है, उसने एक रूल बना दिया, उसके बाहर चलोगे आप सस्पेंड हो जाओगे। इसका रिजल्ट क्या निकला कि लाइब्रेरी रही ना लाइब्रेरी पढ़ने वाली रही। अब ये प्रयास हो रहा है रीड का, ये इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर को ले जाया जा रहा है, हर गांव में ले जाएंगे, वहां केवल किताब नहीं होगी, वहां की लोकल स्किल पे ध्यान देंगे, किसी को कुछ ट्रेनिंग देंगे, किसी को कुछ देंगे, यानी एक होलिस्टिक सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे, जिसके बारे में योगीराज अरविंदो ने कहा था इंटेग्रल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज द ओनली डेवलपमेंट विच कैन सस्टेन दिस सोसाइटी। व्हाट इज दैट, ये मेरा हाथ बहुत मोटा हो जाए, एक बीमारी होती है एलिफेंटाइस, पैर बहुत मोटा हो जाता है, बाकी तो बुरा लगता है आदमी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली पैर मोटे हो प्रोपोर्शनेटली वो आदमी कितना सुंदर, कि क्या यार फिटनेस है, कि वो उसका इंटेग्रल डेवलपमेंट है। वो इंटेग्रल डेवलपमेंट में केवल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, आपका मेंटल सोशल भी है इमोशनल भी है, वो इंटेग्रल डेवलपमेंट इसी तरह से होगा जब लाइब्रेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगी, कि तभी वो ट्रांसफॉर्मेट करेगी। आज भी जगता जी ने बड़ा सही कहा, हैव नोट्स और जिन पे बहुत है जिन पे नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी आती नहीं है, थोड़ी सी आती है, काम चलाओ, तो जिन पे नहीं है और जिन पे बहुत है दोनों की एक ही समस्या है, एक भूखे मारे शुगर का मरीज है, एक बहुत ज्यादा के मारे भूखे शुगर का मरीज है। क्यों, तो हमें इसको हैव एंड हैव नोट्स, जिनके पास नॉलेज नहीं है उनका शोषण हो रहा है, जिनके पास नॉलेज है उनका भी शोषण हो रहा है। जैसे एक एक उपनिषद है हमारे यहाँ ईशो उपनिषद, तदे जति तन्ने जति तद, नहीं भूल गया, गलत हो गया, अभी अभी एक सेकेंड, हाँ अब ध्यान आएगा। वो लोग जो केवल विद्या की उपासना करते हैं दंडम तम प्रविशंति, वो अंधकार में जा रहे हैं। बोले क्यों? कि उसका अभ्यास नहीं करते, राय बहादुर है अभी बुला लीजिए। जो अंधम तम प्रविशंति ये विद्या उपासते, अब ठीक से याद है, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो विद्या की उपासना करते हैं अगली लाइन का। क्यों? क्योंकि उस पर व्यवहार नहीं करते। तो वो विद्या, वो जो नॉलेज है जिस पे हम व्यवहार नहीं करते, वो अंधकार में ले जाती है। लास्ट में कह के खत्म करूंगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाइब्रेरी ले जाए बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, हैव नोट्स का कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ अनिता बहन जी हमारी जो आदिवासी ड्रेस में है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए, नहीं कि वहां बहुत काम करते हैं, इसके लिए करता हूँ, अपनी संस्कृति में अथाह विश्वास रखती है और हमने वो छोड़ रखा है। हम पैंट पहन के खड़े हैं और वो अपनी आदिवासी ड्रेस पहन के खड़ी, उनसे कुछ सीखो और लर्न करो, उनका सम्मान करता हूँ इस बात के लिए। आदमी को अपने में विश्वास रखना चाहिए। मेरे सिर पे चोटी है, एक दिन एक सरदार जी मेरे मित्र है, ये क्या है? मैं गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, मैं क्या करूं? बोले वो कैसे? मगर वो इन मुगलों से ना लड़ते तो मेरा नाम इब्राहिम मोहम्मद होता तो चोटी कहां होती? तो गुरु सिंह गुरु जी की देन है, मैं फेंक कहां सकता हूं? सच में उनकी देन है। तो कहने का मतलब है अपनी संस्कृति में विश्वास रखिए, अपने काम में विश्वास रखिए, अपने समाज में विश्वास रखिए, तो फिर राष्ट्र के सबसे बड़े एसेट आप हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत करी जा सकती है, लेकिन एक बस लास्ट छोटी सी बात है। 88 में मेरे एक दोस्त थे केरल के, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी, उन्होंने मुझे अरुणाकुलम में बुलाया कोचिंग। हमने कहा यार यहां आदि शंकराचार्य जी, एक वहां से 60 किलोमीटर पर अलो एक जगह है, उससे थोड़ी दूर जाएंगे कोई 8-7 किलोमीटर कालडी गांव में जहां आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। मैं यार थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं, गांव वाव भी देख लेंगे और वहां जाएंगे, उधर से गाड़ी। बोले ठीक है चलो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो जगह जगह लोग बीड़ी बना रहे थे और ग्रुप में बैठे हुए थे, अब पता नहीं वो अभी भी है कि नहीं वो चीज। एक आदमी किताब पढ़ रहा था, 10 जगह ऐसा हुआ। मैंने पूछा ये क्या? बोले हाँ ऐसे ही होता है, एक आदमी किताब पढ़ता है बाकी बीड़ी बनाते। मैं इसका क्या होता कि जितना वेज उन सबको मिलता है इतना ही वेज इसको ये अपने में से देते हैं। तो क्या हो रहा था? लर्निंग अर्निंग, किसके थ्रू? बुक्स के थ्रू। एक आदमी चलिए तुम किताब पढ़ो, ये कहानी पढ़ो, वो कहानी पढ़ो, सब सुन रहे हैं। जगह जगह मैंने उस चीज को देखा। मैं ये कहां से पैदा हुई? बोले तो मुझे भी नहीं पता, पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि ट्रैकिंग कभी नहीं की। हम क्या हुआ जहाज में बैठे दिल्ली से बंबई चले गए, हिंदुस्तान देख ले, लेकिन पता कुछ नहीं। तो रेलवे पता चलता नहीं हिंदुस्तान का, तो हम हवाई जहाजों में उड़ करके अर्थात ये देखा वो देखा, यहां से वहां गए, बढ़िया सी अंग्रेजी अंग्रेजी बोली, पीपीटी बनाई, और हमने कहा हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता है, जुड़ना पड़ता है। और थैंक यू सो मच आपने मेरी बात सुनी। टाइम दिया इसके लिए इंडिया का, धन्यवाद। बहुत सारी मैं एक बात हमेशा कहता हूं, दो बात लास्ट में, बहुत छोटी सी है, ज्यादा टाइम नहीं उसमें। गीता का एक 18वें श्लोक 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, उसमें कहा गया, हिंदी में मैं बता देता हूं, कि जो मेरे पास अर्जुन गहरे से गहरी जानकारी थी, गंभीरतम ज्ञान में रखता, तो आपको दे दिया। और दूसरी लाइन में गुह्यतम ही थे गुहामया, जो मेरे पे गहरे से गहरा गूढ़ से गूढ़ ध्यान ज्ञान ज्ञान था वो तुम्हें दे दिया, जो मेरे पे था, उसने कहा, और की बात नहीं करता मैं। और दूसरी लाइन में कहा इस हिंदी में इस पे आप क्रिटिकली विमर्श एतद विशेषण यथेसिद तथा करूं, इस पे विशेष प्रकार से विचार करना, सुन लिया विचार करना तो आचरण, यथेसिद विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना, तो जो मेरे पास अच्छे से अच्छी जानकारी अकॉर्डिंग टू मी वो आपको दे दे, इस पे आलोचना पूर्वक विचार करना, और जो अच्छा लगे उस पर आचरण करना, नहीं लगे छोड़ देना। अगली लाइन बसीर बद्र की, इन सब लोगों ने ज्ञान के दीपक जलाए, अभी भी और जलेंगे। इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिराग समझते हैं ना दीपक, इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, दूर तक अंधेरी रात ही रात होगी। जिंदगी में अंधेरे बहुत आते हैं, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर मैं भी हूँ, न जाने फिर किस मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू।

इवनिंग एवरीवन, मैं अर्चना कुमारी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बेनीपट्टी सेंटर से हूँ। गीता मैम और रीड इंडिया, मैं आपके आभार हमेशा रहूंगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है। और मैंने अपनी लाइब्रेरी में मैम एक ही बात शेयर करती हूँ कि यह फाइनेंशियल इरा है तो सबको पैसे कमाने की चिंता लगी हुई है, लेकिन जो भी आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास एक रुपए है और मैं आपको दे देती हूँ तो आपके पास दो रुपए जरूर हो जाएंगे लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन नॉलेज यदि हम शेयर करते तो मेरे पास भी एक है और आपके पास भी एक है, तो प्लीज हम शेयर करेंगे तो मेरे पास भी दो हो जाएंगे और आपके पास भी दो हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। और मैं आभारी रहूंगी हमेशा क्योंकि सर सब अपने स्टोरी के, सब अपने लाइफ के नायिकाएं हैं, सब स्ट्रगल करती हैं अपने लाइफ में। हमारी भी गवर्नमेंट जॉब जब छूट गई थी तो मैम ने मुझे पनाह दी, इसलिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आजीवन। और मैम मैं तो इतनी लायक नहीं हूँ कि जी से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आपके ए को बरकरार रखूंगी जब तक। थैंक यू मैम।

0: నా పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలుగుట్ట గ్రామం. నేను కడతట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీనివల్ల మనకు చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
1: పేరు ధనశ్రీ. మా ఊరు పేరు రంగంపల్లి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనాథంకి వెళ్లి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనాథం పక్కనే కడతటపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పారు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి నాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది, కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా రేడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రేడ్ ఇండియా.
2: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షాలిని ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. Before this class, we had no idea about such thoughts. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such thoughts. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much.
3: मेरा नाम रेखा सिंह है. हम कटहरी गांव में रहते हैं. हमारी उम्र 40 साल है. हाई स्कूल तक पढ़े हैं. जी हमारे यहाँ रीड इंडिया का सेंटर खुला है. वहाँ पर कंप्यूटर सिलाई सबसे जुड़ा है. हम लोगों को पता चला तो हम लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन कराए और पढ़े सीखने भी आते थे. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया. हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो इतना सब बहुत कुछ आ गया है. मास्क वगैरह, फ्राक और बेबी मेकर और बहुत से सलवार कुर्ता कुछ ब्लाउज बेटी को बताया गया. सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले. थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ.
4: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है. मेरी उम्र 20 साल है. हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर समराइज से सिलाई सीखी है. पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी. उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है. और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं. इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया. और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ.
5: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है. मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ. मेरी उम्र 16 साल है. रीड इंडिया सेंटर जो कटहरी में खुला है उससे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला. जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी. मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ. पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे. लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर खत्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
6: मैं विनीता मौर्य है, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
7: कोमलपाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं, अपने पूरे घर परिवार के, और जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
8: मेरा नाम बिंदेश सिंह है। हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर, और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ, या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
9: सुन है, मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदा है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10-15-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके, और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीखकर हम आगे अपने रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
10: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे, जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक मतलब शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है, जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था, जो चल रहा है इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है, जिससे मतलब हमारी जो सांस नली होती है वो उसमें सूजन आ जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है तो हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
11: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
12: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
13: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
14: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज काकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीड इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट एड इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। सारी क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेल्टीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीके का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर, किडनी, इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। और ये बहुत ही अच्छी जनरेशन थी, अच्छे से मैम ने हमें समझाया एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।

0: कराई गई थी, उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टैली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टैली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया, लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवा ऐसे जो करे वह प्राप्त किया जाता है, उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल अचल धरस्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, वो धरस्य संपत्ति होती है। अधरस्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अधरस्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
1: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसिन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रीड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
2: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी, लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया, जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए, पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
3: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मलर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ और मैंने जब डिजिटल इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके

0: जैसे फिल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना, उसके बाद वो शरीर को अलग करने करके वहां पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सीखा था। जो जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया।
1: हेलो नमस्कार रेडी इंडिया वाले, मैं मंजू हूँ। मैं गांव परानिया की रहने वाली हूँ और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रेडी इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें। और मुझे राजीविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो हम मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रेड इंडिया।
2: रेड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से, मान लो किसी ने फोन कर दिया कि ये तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, इसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते, हम इसमें सतर्क हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे, जो ट्रेनिंग में, जो उसमें भी हम बढ़िया तरह से सीख गए। हमारे मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें स्टोर पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी, थोड़ा बहुत खांसी भी आए लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
3: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से, मैं रेड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हम जैसे शॉपिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी, मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है, और ये खुद मैंने भी, मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट, हमारे OTP, ये सब मैं उनको भी इस सब करके जागरूक करवाऊंगी।
4: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSc किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचे के बारे में बताया गया था, और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए।

0: ये लिंक से कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें हैशटैग, @ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
1: राठौरे, मैं बबरगढ़ की रहने वाली हूँ और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी और इस पे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी वैक्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी और इनमें वो शहद, घी और वो ग्रीसलीन और रिबाम ये चीजों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको 3 तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में और रीड इंडिया में। यह सब चीज हमको रिया दीदी ने सिखाया था और इसमें मीना दीदी भी थी और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
2: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट भोयल तहसील सावा डिस्ट्रिक्ट बारा से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे एप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना ये सब कुछ था उसी में, और अपना ऑनलाइन अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें और OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
3: मेरा नाम जया बंसल है और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। उसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है और फेसबुक पर पेज कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है। और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रीड इंडिया।
4: मेरा नाम स्मिता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और पेंटिंग बनाने से लिए ये बना ली मैंने और अब वो बना के आई अम्ब्रेला वाला बात वो प्लाजो।
5: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
4: हाँ, मैं दो बार ले गई थी।
5: दो बार आप लेके गए।
6: मेरा नाम ईसा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ कहीं दुकान भी नहीं थी। अब ये तो बहुत महंगे होंगे, उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा अभी कि आप कहाँ जाती है, तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है बीमटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ के सीखने लगी। और मुझे आता भी कुछ नहीं था, मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना देती हूँ। और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ बढ़ती आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है और कोई भी मतलब बुरा बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं।

0: और यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम मिल रहा था, और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसने सिखाया था, और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने अपनी एक मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा, तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी, जिसपे मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
1: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनु सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं, और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए, जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे।
2: खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
1: कैंची भी चलाने नहीं आती थी।
2: कैंची भी चलाने नहीं आती थी, अच्छा। तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
1: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले तो,
2: हाँ,
1: और फिर अपनी एक छोटी सी शॉप,
2: बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ सीखने के बाद?
3: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास से तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी, और लेडीजों के साथ बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ। और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे, मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी, और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रेड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रेड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ, और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए। बड़े खुशी से आते हैं बच्चे, कौन सिखाता है, नहीं तो हजार हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे।
2: बिल्कुल,
3: तो बच्चे, गरीब बच्चे नहीं सीख पाते, बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने की।
2: लगन है सीखने की।
4: उनको मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैंने ऑनलाइन सेविंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब बहुत कुछ पता है, मैं इसके बारे में सीख रही हूँ, सीख चुकी हूँ, और जानकारियां मैं देती रहूंगी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेविंग कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में मुझे पता चल रहा है।
5: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम मैम का, जिन्होंने मुझे थ्रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी, बट जब यहाँ पे जुड़ी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स, फोटोज, ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रेड इंडिया सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीजों से मैं अनजान थी, पर जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसे, ये मायने रखता है, हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हमने इस समय में हम खाली नहीं बैठे, रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के, लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे FM रेडियोज को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था, लेकिन रीड इंडिया सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। जब हम इससे जुड़े

0: तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं बट कभी जाना नहीं, जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर, करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ, ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं करती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
1: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स सीखने को मिली है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू।
2: मेरा नाम रितिका है, मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। ये कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
3: मेरा नाम माया श्री है, मैं 32 साल की हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर द्वारका सेंटर से टैली का कोर्स कर रही हूँ। मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
4: मेरा नाम वंशिका जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीखती हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं अपने फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिजाइनिंग करना सीखा और पैम्पलेट्स बनाना सीखा। मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बना सकती हूँ।
5: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया, जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू।
6: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट, प्लाजो, फ्रॉक सूट, ये सब। और अब मैं बहुत खुश हुई सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं वहाँ रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है। और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, चाहे कितनी बार भी पूछो बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी बाहर के भी। और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी, जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूंगी। धन्यवाद।
7: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। और मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कम्प्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी, जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
8: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गाँव में रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया से स्टिचिंग एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह गले की डिजाइन बाजू सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
0: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला। जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक, और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है। मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरी अपनी खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
2: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे, लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए नए डिज़ाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रीड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रीड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
9: मेरा नाम नीनू है, मैंने रीड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी, जो मेरे किसी के पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती थी और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ शाबाद मोहम्मदपुर में। थैंक यू सो मच।
10: मेरा नाम किरण राजपूत है, मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रीड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया, जिससे कि मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
11: हेलो, मेरा नाम आशु है, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरे फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच।
12: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी, मैं शाहबाद के रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रीड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, हर्बल प्रोडक्ट, जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया, मेरी फैमिली को भी यूज कराया सबको बहुत अच्छा लगा और सबने मतलब बहुत तारीफ किया, इसीलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए, थैंक यू सो मच।
13: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, तो मुझे किसी से रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं रीड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है, तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।
14: हाय, माझं नाव सामी मी जोगेश्वर आहे, माझं शिक्षण 11वी पर्यंत झालेलं आहे, मी रीड इंडिया मध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते, त्यामध्ये मी ब्लाऊज साधा ब्लाऊज कटोरी ब्लाऊज परत प्रिन्स कटोरी वाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिकते।
15: हाय, मेरा नाम है रेशमा अभिरव जोगिनकर, मैंने 12वी की हूँ सायन्स से गोरेगाव से और मैं 3 महीने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ बेसिक टेलर कोर्स का, और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला बिनबाही का सादी चड्डी फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज फ्रॉक और पंजाबी सूट। थैंक यू।
16: हाय, माझे नाव अक्षत अशोक कांबळे, मी ऍग्रीकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे, त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लग्नासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जाते आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या रीड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते। थँक्यू।
17: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन अडविलकर, माझं शिक्षण TYBA मधून झालेलं आहे, मी इथे रीड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे, त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला कटोरी ब्लाऊज प्रिन्स कटोरी साधा ब्लाऊज ड्रेस हे सगळं शिकली आहे। थँक्यू रीड इंडिया।
18: माझं नाव नौशीन वजीर जोगिरकर, माझं शिक्षण 12वी, मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास, 3 महिन्याचा कोर्स आहे, त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला चड्डी सलवार कमीज ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेले आहे। हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत।
19: आपकी उम्र
20: 22।
19: रीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
20: कंप्यूटर के पार्लर की।
19: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं।
20: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं।
19: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
20: कंप्यूटर ही कोचिंग देंगे और कंप्यूटर में ही स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब करेंगे यहाँ पे।
19: आपका नाम क्या है?
20: स्वाति।
19: आपकी उम्र?
20: 24।
19: रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग ली?
20: यस मैम, हमने 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का।
19: तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा?
20: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
19: बेसिक सीखा आपने। और पार्लर में?
20: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग।
19: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
20: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम होगी।
19: और पार्लर का?
20: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है।
19: अच्छा, जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
20: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया।
19: गुड। आप आगे क्या करना चाहती हैं?
20: मैम पार्लर में कर रहा है, पार्लर खोलना है,
19: अपना पार्लर खोलना है। अच्छा, तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
1: माझे नाव आदिती संजय वाळंकर, माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे, आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटर मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली. रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटर मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो.
21: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमनी आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे. त्यामुळे आम्ही टाटरे मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत.
22: माझे नाव शर्मिला मंगेश पिसापूरकर, माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली. या वतीने टाटरा मॅडम, रीड इंडिया व टाटरा मॅडम यांचे मी आभार मानतो.
23: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला. यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं. त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
24: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला. या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो. या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू. रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद.
25: मेरा नाम लक्षा है, मैं दी इंडिया पडवाई सेंटर सिलाई सीखी है. मैं पडवाई में रहती हूँ और मैं इस सेंटर में आती जाती रहती हूँ. इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है. अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ. इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ. मैं इस रीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ. उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ. मेरा नाम निशा है, मैं पढ़वाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है. मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ. और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ. मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद.
26: मेरी एज 21 है. मैं ब्लास्ट पर रहती हूँ. मैं रीड इंडिया सेंटर एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है. मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पेंट, प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है. और मेरे डिजाइनिंग मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना डिजाइन सिलाई करना. और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर. और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ. और मैं पहले मतलब अभी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ. पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने लिए कर सकती हूँ. मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है.
27: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है. मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ. रीड इंडिया कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है. मैं रेड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ.
28: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनब है और मेरी एज 18 ईयर्स है. और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली में भी बहुत ज्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं, तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूं अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूं, मम्मी पापा से नहीं लूं। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूं, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूं खुद भी। फिर मैंने मुझे यहाँ पे रेड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पे आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। इसके थ्रू मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है, और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी, और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके, और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट फेस स्टिचिंग कर चुकी हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे मैं अपनी इनकम अच्छे से काम कर लेती हूँ और मैं अपना खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और पहले मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही, मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है, उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइन अपलोड किए और मैं उसको सेल करती हूँ इस पर, उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। और अपने मैं इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे रेडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मेरे रेडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रेडिया सेंटर।

0: अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो स्टार्स हैं, शाइनिंग स्टार्स, उनके जो लीडर्स हैं हमारे साथ, अंजू हैं, ऋतु हैं, फरा हैं, आप यू नो आप अपनी कुछ यू नो जर्नी बताएंगे शॉर्ट में, बिकॉज आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑन टाइम ऑल्सो, एंड देन वी विल टेक द नेक्स्ट सेशन. सो प्रॉब्ली विथ फरा.
1: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा. तो थोड़ा सुबह से चलती हूँ, मैंने सोचा था शायद मुझे आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दिल में था कि लास्ट मोमेंट पे 2 मिनट्स मुझे बोलना ही है. तो मैंने एक कविता भी लिख के फोटो खींच के रखी है कि अगर बोलने का मौका मिला तो जरूर आपको सुनाऊंगी. और एक और बात मेरे मन में सुबह से चल रही थी कि कब वो दिन आएगा कि मैं यहाँ स्टेज पे बैठूंगी. पता नहीं क्यों अंदर से ही फील हो रहा था कि कब मैं ऐसा कोई अच्छा काम करूंगी कि मुझे भी ऐसे बुलाया जाए. और जैसे सर का सारा दिखाया जा रहा था कि सर ने ये अचीव किया है, इतनी लाइब्रेरीज खोली हैं और लाइब्रेरीज के बारे में बताया है, तो वही मेरे मन में बहुत टाइम से सुबह से चल रहा था. बट जैसे ही स्मिता मैम ने मेरा नाम लिया, आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कि मैं उठी फिर बैठी ही नहीं, मैं नहीं हो सकती, कोई और होगा. तो वही है कि हम सपने देखते हैं और लगता नहीं है कि कभी वो सपने साकार होंगे, लेकिन जैसे ही वो सपने साकार होते जाते हैं हम एक छोटे से इतने से होते हैं, और जब हम इतना बड़ा बन जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये हमारी मेहनत का फल है या हम सबसे अलग हैं. मतलब समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा क्या किया है कि हम यहाँ तक पहुंच गए. तो आप सब मुझे तो जानते हैं, थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी को भी लेके जाऊंगी, टाइम कम है तो शॉर्ट में ही बताऊंगी. 7 ईयर्स पहले, कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा सा बताते हुए चलूंगी. 7 ईयर्स पहले जो रीड इंडिया हमारे आगापुर में खुला था, तो उसको रीड इंडिया के नाम को सुन के ही मैं बहुत शॉक थी. और वहां पर मैंने जब सुना कि लाइब्रेरी, सिलाई पार्लर, कंप्यूटर, लड़कियों के लिए काफी सारी चीजें सेंटर पे हमारे घर पर, घर के पास हमारे लिए आई है. बट एक मैं मुस्लिम इलाके से थी, वहां कोई भी लेडीजों को जाने का, कहीं भी घर से निकलने का कोई भी पेरेंट्स ने हुक्म नहीं दिया था. जाना है तो वही बुरखे से जाना है. जब हमारे सेंटर पे, जब हमारे घर के पास सेंटर खुला, तो वहां विजिट करने के लिए जब सेंटर पर गए तो वहां हमने बुक्स पढ़ी, और मुझे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का वहां बहुत शौक था. और जो वहां एक्टिविटीज होती थी तो उससे मन करता था, क्योंकि एक खुशी मिलती थी लाइब्रेरी से. वही है कि हमारा सेंटर ही लाइब्रेरी से स्टार्ट होता है. तो मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया. ऐसे ही मेरे पेरेंट्स का था कि 17 साल की उम्र में शादी कर देनी है और कुछ नहीं करना है, और वही जर्नी खत्म है, जाओ और रोटी बनाओ और खाओ पियो ऐश करो. तो वहीं से हमारी किताबें स्टार्ट हुई. मेरी मम्मी डैडी शुरू से ही बहुत मेहनत करते थे, और उन्होंने मेहनत करके ही मुझे पढ़ाया. मेरे रिलेशन में दूर दूर तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की थी. बहुत बातें बनाई लोगों ने, मतलब कि जो पास में लोग रहते थे उन्होंने भी, और जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने भी, और जो मेरे सगे थे, मतलब सगे चाचा वगैरह, उसको उन्होंने मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा ऑप्शंस उठाए कि क्यों पढ़ा रही हो. मेरी मम्मी ने हाई स्कूल इंटर तक सुना कि ठीक है इंटर पढ़ा के बंद करके शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वहां पर सोचा कि लेकिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने मुझे किस मेहनत से पढ़ाया है. जब वो रात को 8-8 बजे आके हमारे लिए खाना बनाती थी, और कैसे वो हमारी स्कूल की फीस भरती थी, हम तीनों बहनों को इतनी मेहनत से पढ़ाकर किसी की ना सुनकर आगे पढ़ती थी. तो मैंने एक मन में ठाना कि चाहे जैसे मेरी माँ ने सबकी सुन के हम लड़कियों को आगे पढ़ाया, ऐसे ही मुझे अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी कैसे भी ना करके, कुछ भी किसी से लड़ाई हो, बट मुझे शादी नहीं करनी है. तो वही सपना मेरा साकार होता गया. मेरे लिए एक मेरी पहली सीढ़ी रीड इंडिया खुली, वहीं से मेरी लाइब्रेरी की स्टार्ट हुई, और इसी दिन में मुझे वहां से जॉब मिली. मैंने इसी दिन को शुरुआत करके फिर मुझे, मैंने कंप्यूटर सीखा, फिर मुझे कंप्यूटर में वहां पर लड़कियों को सिखाने का मौका मिला. वहां तो मेरा 5-6 किलोमीटर मुझे दूर आगापुर जाना पड़ता था, लेकिन जब मैम ने पटवाई सेंटर 15 किलोमीटर दूर खोला, तो वहां पर मेरे कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया गया. और वहां पर मैं किसी लोगों को भी नहीं जानती थी, बहुत फर्स्ट टाइम डर लगा जाने में, लेकिन इतनी ट्रेनिंग से मुझे यहाँ पर मिली है, कॉन्फिडेंस मिलने की, आर्ट थेरेपी की, मोबिलाइजेशन करा, लोगों से बातचीत करने की. तो वहां 15 किलोमीटर दूर जाके जब मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया और मैंने सेंटर को संभाला, तो बहुत ज्यादा लोग वहां पर, जितने आज 7 साल बाद 4-5 हजार लोग मुझे जानते हैं, और बहुत ही आदर से, सम्मान से मेरा वेलकम करते हैं. और हम जो भी लड़कियों को, लड़कियां ट्रेंड हैं, उनके घरों में जाकर उनको कैसे बाहर निकालते हैं, उनको हम अपनी सक्सेस स्टोरी बताने की कि हम किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, जब उनके पेरेंट्स अपने घर से वहां भेजते हैं. तो शायद टाइम कम है, मैं अपनी एक छोटी सी पोएम सुनाकर एंड करना चाहूंगी। राह में मुश्किल होगी हजार, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में तुम कब तक गोते लगाते रहोगे। तुम एक राह है, चुनो तो सही, चुनो तो सही। तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे। जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे। गिरते पड़ते समझ जाओगे, गिरते पड़ते समझ जाओगे। फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

वेलकम ऑन दिस सेशन। तो आज हम सेशन जो है, आप सबको पता है लीडरशिप पे ही मैं सेशन लेती हूँ। और सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एवरीबॉडी शुड एक्नॉलेज कि हाँ, मैं एक लीडर हूँ, किसी ना किसी रूप में मैं लीडर हूँ। तो ये सब एग्री करते हैं इस बात पे कि लीडरशिप तो है, हम उसको इनवोक करते हैं कि नहीं करते, वो हमारा डिफरेंट कंसर्न है, बट एवरी बॉडी हैज अ लीडरशिप क्वालिटी इन दैट। एग्री करते हैं आप सब मेरे से? तो चैट में थोड़ा यस लिख दीजिए या हैंड रेस कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, एवरीबॉडी एग्रीज दैट एवरीबॉडी हैज द लीडरशिप क्वालिटीज। किसी में परसेंटेज वेरी कर ज्यादा है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बट एवरीबॉडी हैज दैट, राइट? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत करते हैं कि हर एक में लीडरशिप क्वालिटीज होती है, पर हमें क्या करना होता है, उस लीडरशिप क्वालिटीज को इन्वोक करना होता है। इन्वोक मतलब कि पहचानना होता है और उसको जागरूक करना होता है, जो हम नहीं कर पाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मे बी कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कोई चैलेंजेस ऐसे होते हैं, या हम अनइंटेंशनली भी नहीं कर सकते। इंटेंशंस तो सब में होती है कि हमें लीडर बनना है, पर हम अनइंटेंशनली भी उसको इन्वोक नहीं कर सकते हैं। इन्वोक मतलब कि उनको पहचानना, उनको रिकग्नाइज करना, और उनको एवरी टाइम वी हैव अ फीलिंग इन आवर माइंड, यस वी आर लीडर्स विद इन आवर सेल्स। सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग होती है, कोई बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, कोई डरता है कि मैं बात बोलूं तो मेरी बात पता नहीं पहचानी जाएगी कि नहीं पहचानी जाएगी, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो स्मिता उसके ऊपर लाइफ स्किल्स का सेशन लेती है, और वो कल इस बात को भी हाईलाइट करेगी कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल हेल्प अस इन डेवलपिंग आर लीडरशिप स्टाइल, आर लीडरशिप विद इन आवर सेल्स। इफ वी हैव लीडरशिप, हाउ टू इन्वोक दैट थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच स्मिता विल हाईलाइट टुमारो। द सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो कहना चाहते हैं अपने, जब हम लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सबको पता है कि बातचीत के दौरान कम्युनिकेशन के तीन प्रकार के हम यूज करते हैं टूल्स। एक तो हम वर्बली बोलते हैं, दूसरा हम लिख के बताते हैं, और तीसरा 80% ऑफ आर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो स्पीक्स अबाउट आर लीडरशिप क्वालिटीज। कि हम किसी के सामने अगर टिमिड बन के बैठ जाते हैं, टिमिड मीन्स कि हम अपने आप को कमजोर साबित करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुली व्हाट वी वांट टू से, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। बट यस, रिटन एंड ओरल आर द टू टूल्स नॉर्मली वी यूज फॉर शोइंग आर लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। दो साइलेंटली ऑल्सो, जो बहुत सारे लोगों का ये भी विचार है और मैं भी सहमत करती हूँ उससे, कि साइलेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट साइलेंट कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। सो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा बात हम ये होते हैं, सोचते हैं कि क्या हम ठीक है या गलत है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि क्या मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ये एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, सुनने से और
अपने आप को एक्सपोजर देने से इन राइट सोसाइटी, मेरे वर्ड्स अंडरलाइन करिए, इन राइट सोसाइटी अगर हम बैठ के कुछ भी बात बोलते हैं या कुछ सुनते हैं या सीखते हैं, तो हमारे अंदर का जो लीडरशिप सैंक्टिटी है, मैं इसको सैंक्टिटी बोलती हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं थी जो आज जो आपके सामने हूँ, तो इसलिए मैं बहुत क्लियरली आपको समझा पा रही हूँ कि लीडरशिप हर एक में होती है क्वालिटी, पर उसको उसको पॉलिश करना, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ी है उसको हटाना और अपनी बाकी के स्किल्स को एनहांस करना ही हमें हेल्प करता है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करने में। तो एक तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो हम कॉन्फिडेंट हो कि हम राइट बोल रहे हैं, राइट वे में कन्वे कर रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो भी ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं जिसको हम कंटेंट बोलते हैं वो भी ठीक है। तो ये कैसे आता है? पढ़ने से, सुनने से, आंखों से देखने से, कानों से सुनने से, और सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसको जानने से हमारा कॉन्फिडेंस, हमें क्लैरिटी भी आती है, हमें करेज भी मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो थर्ड पॉइंट है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, सब लेते हैं, सुबह उठते ही चाहे छोटा डिसीजन हो और रात के सोने तक चाहे छोटा डिसीजन हो, चाहे बड़ा डिसीजन हो, चाहे घर के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में हो, चाहे ऑफिस के बारे में हो, चाहे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में हो, या हम कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं पहले कि ठीक है या नहीं, वो प्रैक्टिस से हमें आता है जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, और फिर हम डिसीजन अपना कन्वे करते हैं। और बहुत बारी हमें एक्सपीरियंस ये होता है कि हम डिसीजन शायद इमोशनली ले रहे हैं या हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो कश्मकश है हमारे दिल में, जो हम ये इसके बारे में सोचते रहते हैं, वो एक आर्ट है, उसको हमें प्रैक्टिस से ही आता है और उसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ पीपल के साथ डील करते हैं और हमारा डिसीजन डिपेंड करता है कि हम उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसको हम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन अपना कन्वे करें या नहीं करें, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। और अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। हम जब अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, कोई उसको एक्सेप्ट करता है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर देता है, या कोई उसको डिस्कार्ड कर देता है। सिमिलरली मैं आज अगर सेशन ले रही हूँ तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, 29-30 लोग लाइन पे हैं, उनमें से हर कोई 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं किसी को सोचती हूँ तो मैं एक कुछ हद तक, मे बी 90%, मे बी 80%, मे बी 70% मेरी एब्जॉर्प्शन लेवल होता है। क्यों होता है, ऐसे वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने अलर्ट हैं। हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, शायद घर की टेंशन है, चाहे ऑफिस की टेंशन है, चाहे मैं आई रास्ते में मुझे बस नहीं टाइम से मिली, या मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, या मेरे बच्चे के स्कूल का कुछ है, या हस्बैंड के साथ कोई बात है, एनी रीजन जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, वो हमारे एब्जॉर्प्शन लेवल को
उसका असर होता है, राइट? तो हम तभी कहते हैं कि हमें अपनी सोच को उस हद तक ही एक्सटेंड करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए कि हम उसका उसका असर हमारी दिनचर्या पे नहीं हो। प्रॉब्लम सबके साथ है, चैलेंजेस सबके साथ हैं, पर ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अगर हमारे अंदर कुछ लीडरशिप की शक्तियां हैं या कुछ लीडरशिप के भावना है अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करने की, तो विद प्रैक्टिस हम ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, हम किसी हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हमें ये हमेशा ये लेसन हमें मिलता है कि हम अपने पास्ट को एनालाइज करें, अपने प्रेजेंट को उसी तरीके से एक्शन लें और अपने फ्यूचर को एनविजन करें। ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, क्योंकि लीडरशिप थोड़ा हटके होता है, वो दिनचर्या के साथ, हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको नहीं जोड़ सकते हैं। और मैं क्यों बार बार इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि हमें अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, जो सो रही हैं, उनको जगाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज मैं आपको 10 E's की फिलॉसफी समझाऊंगी कि 10 E's क्या है। E मतलब कि कैपिटल E। एक तो हम बहुत ज्यादा, मैं जिस भी गांव में जाती हूँ, जिस सेंटर में जाती हूँ, हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ। तो जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, तो हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं। इमोशनली एंटैंगल होते हैं तो हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि अगर हम इमोशनली बह जाएंगे तो हमें अपने दिमाग से जो सोचना है वो शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। वी आर वर्किंग विद वुमेन फ्रॉम द पास्ट 2 डेज। आई वॉज ट्रेवलिंग, आई वॉज इन रामपुर, आई वॉज इन उधम सिंह नगर, आई मेट हंड्रेड्स ऑफ वुमेन, जिनको मैं बार बार यही कहती हूँ कि देर इज अ नीड टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड योर ब्रेन, दिमाग के साथ। तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर ये प्रैक्टिस से आता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस के जो स्टेप्स हैं, मैं आज आपको समझाऊंगी कि क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, कि ऑलवेज अगर कोई हमारे पास सेंटर में आ रही है कोई इशू लेके, अपना पर्सनल इशू है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम उसको सुनते नहीं हैं, हम अपना बिना सुने, बहुत 90% लोग क्या होते हैं, सुनने की क्षमता कम रखते हैं और अपना डिसीजन करने हम बहुत जल्दी करते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम बिना सोचे समझे, बिना सुने, बिना उसको एनालाइज करे, हम अपनी बात पहले रखने की कोशिश करते हैं, और ये घर में भी होता है। हमें सिंपथी से ज्यादा एम्पथी अपनानी चाहिए। एम्पथी मीन्स, एम्पथी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के उस इंसान की प्रॉब्लम को रियलाइज करें। शायद आप उस प्रॉब्लम से ना गुजरे हो और दूसरा इंसान उस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, और वो उसके पास एक ही उम्मीद है कि मैं सेंटर में जाऊंगी, मैं अपनी टीचर से ये बात कहूंगी, या अपने पीयर ग्रुप में ये बात कहूंगी, या मैं अपने कोऑर्डिनेटर के सामने ये बात रखूंगी, और हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते। पर हमेशा हमें
उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के अगर हम वो प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उस प्रॉब्लम को

वो इंसान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और हमको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है, आगे चलो। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि वी शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ब्रेन बट वी कैन नॉट बी रथलेस। इसमें भी फर्क है। देखिए, एक तो मैं बोल रही हूँ कि आप 100% इमोशनली कोई डिसीजन कन्वे नहीं करें। दूसरा, मैं बोल रही हूँ कि आप अपने दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल करें, उसको सोचें, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखें। बट हमें बहुत हार्श, बहुत रथलेस जो होते हैं, रथलेस मीन्स विदाउट, मैंने कम्युनिकेशन की पहले बात करी थी आपके साथ कि विदाउट विदाउट एनालाइजिंग व्हाट वी आर कन्वेइंग, हाउ वी आर कन्वेइंग, व्हाई वी आर सेइंग दिस, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज वी आर नॉट मैनेजर्स, वी आर लीडर्स। हम यहाँ पे लीडर्स की बात कर रहे हैं। मैनेजर तो ये बोलते ना कि मुझे नहीं पता तेरे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इट्स योर कंसर्न, मुझे तो ये काम चाहिए चाहिए, मुझे आज ही करके दो, नहीं तो कल से जॉब पे नहीं आना। ऐसे कभी सेंटर्स में बात हुई है? नेवर एवर। मुझे नहीं पता कि आज तक हमने कभी इस लहजे में किसी से बात की है। हम कभी भी नहीं करते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ रीड इंडिया विच वी पास ऑन टू आर कोऑर्डिनेटर्स, आर टीम, आर स्टेक होल्डर्स, एवरीबॉडी। एम आई राइट? तो रथलेस बिल्कुल नहीं होना। एम्पैथी इज द आंसर, पुटिंग योर सेल्फ इन टू देयर शूज एंड एनालाइज व्हाई शी इज सफरिंग, व्हाई शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम टुडे, और उसको पूरा टाइम देना है उसकी प्रॉब्लम सुनने का। और ये मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जब भी सेंटर में जाती हूँ, कोई भी लेडी मेरे पास आती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको टाइम देती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें मैं नहीं जा पाई हूँ, जैसे बिहार के सेंटर्स है, मैं नहीं जा पाई। बैंगलोर का सेंटर है, कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई। बागेपल्ली मैं पहले बहुत बार गई हूँ, आंध्रा भी गई हूँ, श्री सिटी भी गई हूँ, पर जितना फ्रिक्वेंटली मुझे जाना चाहिए उतना फ्रिक्वेंटली मैं नहीं ट्रेवल कर पाती हूँ अर्लियर बिकॉज ऑफ द कोविड। एंड सेकेंडली, अभी इतने सारे सेंटर्स बढ़ गए हैं कि वो ट्रैवल करना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। नाउ जब हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो हमारे हमें अपनी एक प्रैक्टिस ये भी शार्प करनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें कि व्हाई दिस हैज हैपेंड टू हर। ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस को हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको एनालाइज नहीं करते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं है, और हम जल्दी से अपना डिसीजन लेके हम अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं। जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, या अगर हम इस तरीके से दूसरों को सलाह देते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता। हम उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके उस दिन के लिए अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं, पर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए अपने आप को। जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम अपने आप को ये जो वेब है चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का, डे टू डे लाइफ का, वेब का मतलब क्या होता है, जाला, उससे हम अपने आप को आस्ता आस्ता बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने चौथा ई यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएट करना, उस सिचुएशन को परखना, उस सिचुएशन को जांचना। और ये हम अगर आदत डाल लेंगे अपने, तो ये हमारी

0: रूटीन बन जाएगी कि व्हाई आई एम सीइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, व्हाई व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट एक्शन आई एम टेकिंग. ये हमें आदत पड़ जाएगी और कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिना हमें आके स्टॉप करेगा कि लेट अस नॉट बी वेरी एग्रेसिव इन कन्वेइंग आवर डिसीजंस, इन यूजिंग द रथलेस लैंग्वेज, इन यूजिंग द वर्ड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू से. तो ये हमें क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश भी करता है और ये डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत असर करती है ये चीज. तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए. फिर अगर हमारे में लीडरशिप का स्पार्क है तो हम उस दूसरे पर्सन जो हमारे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके, हम उसको एनेबल करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को खुद ही एनालाइज करो. हम अपना डिसीजन उनपे नहीं थोपे, हम अपना ये नहीं कन्वे करें कि यस आप तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम उनके उनके अंदर एक आदत डालते हैं कि हम उनको एनेबल करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करो और उनको बहुत ही हलीमी से हम उनको समझाते हैं, तो शायद हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद एनालाइज करे, खुद अपने जीवन में आगे बढ़े और अपनी प्रॉब्लम्स को उलझाना की बजाय उनको रिजॉल्व करने की आदत डाले. नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस प्रोसेस से अगर हम चलते हैं, हम उसको एनेबल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको किसी ना किसी तरीके से बातचीत करके, समझा के, उसको हेल्प करके उस शक्ति को भी हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम उसको एम्पावर भी कर रहे हैं. एम्पावर किसके लिए कर रहे हैं, जो सिचुएशन में वो फंसी हुई है, जो सिचुएशन से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस सिचुएशन को एनालाइज करके कामली कंपोज मैनर में वो अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रही है और हम उसको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरिंग. हम भी ऐसे ही करते हैं. रीड इंडिया क्या करती है, एंगेज करती है, एनकरेज करती है, एम्पावर करती है और आपको आगे बढ़ने का खुद ही आप अपना रास्ता ढूंढते हो. मैं खाली जो आप लोग करते हो उसी को आपके सामने रख रही हूँ, मैं कोई नई चीज आपके सामने नहीं रख रही हूँ, ठीक है? जब हम एम्पावर करते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनकलकेटिंग दी हैबिट ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर राइट एक्शन एट राइट टाइम. आप तीन चीजों को नोट करिए कि जब आप उसको एम्पावर एनेबल कर रहे हो, उसको एम्पावर कर रहे हो, तो आप उसमें एक आदत इनकलकेट कर रहे हो. इनकलकेट का मतलब उसको एक आदत उसमें ये बहुत अच्छे से डाल रहे हो कि वो राइट डिसीजन ले, राइट एक्शन ले उस डिसीजन के ऊपर और राइट टाइम पे ले, ठीक है? ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं. तो वो कैसे आती हैं, जब हम पिछले जो पांच स्टेप्स मैंने बताए हैं उनपे हम रेगुलर प्रैक्टिस करने की आदत डालें, उसको रोज प्रैक्टिस करें, अपने दिनचर्या को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को उसके साथ हम जोड़ें. तो मैंने आपसे अभी तक जो बात की है वो इमोशंस की बात की है, एम्पैथी की बात की है, इवैल्यूएट करने की बात की है, एनेबलिंग करने की बात की है, एनकरेज करने की बात की है और उनको एम्पावर करने की बात की है। तो ये पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं सबको मेल भी कर दूंगी, ठीक है। सो विद दीज 5 E's यू आर एनेबलिंग द अदर पर्सन टू एनलाइटन हिज और हर ओन पाथ ऑफ ग्रोथ। तो उसको एक रोशनी की किरण मिलती है कि हाँ, अरे ये तो ठीक ही है, इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे इन्होंने रास्ता दिखाया, डिसीजन मेरा है, उन्होंने खाली मुझे रास्ता दिखाया है कि आप इस रास्ते पे भी चल सकती हैं, सेकंड लेन में भी जा सकती हैं, थर्ड में भी जा सकती हैं, फोर्थ में भी जा सकती हैं, चॉइस आपकी है, क्योंकि आपने उसको डिस्कस किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको इवैल्यूएट किया है और आपने अपना राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें तो मैं ये कहूंगी कि ये इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो कभी तो वो विजिबल हैं सरफेस पे और कभी वो इनविजिबल भी हैं। विजिबल ये है कि हाँ, सामने सिचुएशन खड़ी है, सामने पहाड़ गिर गया है और मुझे सड़क पार करनी है, और जब तक मैं उस पहाड़ को, पत्थर को अपने रास्ते से नहीं निकालूंगी, नहीं आगे धकेलूंगी, तो मैं सड़क पार नहीं कर सकती। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, पर प्रॉब्लम्स तो हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे को रास्ता ढूंढना है। उन प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ का व्हीकल आगे बढ़ाने के लिए। और वो कैसे बढ़ेगा कि हमें अपने आप को सेल्फ एनकरेज भी करना है आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम अपने आप को सेल्फ एनकरेज नहीं करेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे और हम कहेंगे कि वी विल गिव अप, नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस। जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे तो हम वेवरिंग माइंड हो जाएगा हमारा, हम फिर भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो शुरू में मैंने क्या बोला कि हम अपने आप को इमोशनली वीक करें या हम अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को दिमाग से सोच के हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और उसको किसने करना है, आप लोगों ने करना है। कोई भी लीडर आपके दिमाग में घुस के आपकी सोच नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपके इमोशंस को नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाएगा। लीडर खाली आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना किसने है, आपने चलना है। ठोकरें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, इमोशनली वीकनेस भी आएगी, बट लीडरशिप सेज दैट यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। ब्रेक द बैरियर्स मीन्स जो भी रास्ते में उलझने आ रही हैं, उनको सही दिमाग से, बहुत हलीमी से, पेशेंस से, परसिवरेंस से उनके सॉल्यूशंस निकाल के आगे बढ़ना है। बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बट बिकॉज हमारा माइंड इतना वेवरिंग होता है, हमारे पे इतने प्रेशर्स होते हैं माइंड पे, हम राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हैं। अनलेस वी हैव क्लैरिटी इन आर माइंड, वी कैन नॉट डेवेलप द करेज फॉर शेपिंग आर ओन लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। इज इट राइट? अगर हम हमेशा कंफ्यूज ही हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है। अगर आप अपनी दो सिचुएशंस को एनालाइज करके उसका ठीक टाइम पे उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो आपकी क्लैरिटी अपने आप ही शार्प हो जाएगी। ये मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर अगर हम हमेशा रट में ही रहेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस भी नहीं आए। अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में, कि मुझे समाज ने दिया क्या है, मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, अगर हम ये क्वेश्चन मार्क की जिंदगी जिएंगे, तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जिंदगी से एफर्मेशन की जिंदगी में आना है कि हाँ, ये चैलेंजेस हैं मेरे सामने, इन चैलेंजेस को मुझे रिजॉल्व करना है, और इन चैलेंजेस की प्रायोरिटी भी आपने तय करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत प्रायोरिटी सिचुएशन हमारे सामने है, हम उससे आंखें छुपा के हम दूसरी प्रायोरिटीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लोग सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी। आज मैं ये सेशन आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं एक लाइफ सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। पर हमें प्रायोरिटीज भी अपने आप ही तय करनी है कि ये 100% प्रायोरिटी है, ये 80% है, ये 60% है, ये 40%। ये हमारी दिनचर्या, ऑफिस में भी यही होता है कि हम अपने पूरे 8 घंटे ऐसे ही पास कर देते हैं। हम मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजों को छोड़ के लेस प्रायोरिटी वाली चीजों के ऊपर फोकस कर देते हैं, और मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर देती हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है, जो हम बाकी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, और इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। और अब हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने आप को एनकरेज भी किया, और हमने अपनी लाइफ में एनविजन भी किया। जो मैंने आपको बोला था ना, मोस्टली स्टेटमेंट ये होती है कि यू लिव इन योर प्रेजेंट, राइट, इन अ मैनर दैट योर पास्ट गिव्स यू द हैप्पीनेस। आज का पल जो प्रेजेंट है, वो पल अगले मोमेंट में वो पास्ट बन जाएगा, बनेगा। जब वो पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट को इस तरीके से जिया है कि आपका पास्ट आपको खुशी नहीं देगा, तो आप दुख को ही लेकर आगे बढ़े। तो आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज नहीं किया, आपने अपने प्रेजेंट को इस तरीके से नहीं जिया कि जब वो पास्ट बने तो आपको उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको उसमें खुशी मिले। और खुशी अगर हम खाली अपने लिए ढूंढेंगे तो बहुत छोटी सी खुशी होगी, वो एक बिंदु होगा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यू लिव योर प्रेजेंट इन अ मैनर, व्हेन इट बिकम्स पास्ट यू फील हैप्पी अबाउट दैट। ये बहुत 4 अक्षर की स्टेटमेंट है, पर बहुत पावरफुल है। इस स्टेटमेंट को अगर हम इग्नोर करते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, और हमारा फ्यूचर तो कभी एनलाइटन फिर हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो पास्ट का भी इफेक्ट आएगा, प्रेजेंट का भी आएगा, और वो हमारा फ्यूचर बनेगा। सो वी हैव टू एनालाइज व्हाट वी आर डूइंग। हम एक समाज में रहते हैं, हमें हमेशा अपने दुख का गाना नहीं गाना है, लिव इन अ सोसाइटी, वी कैन नॉट जस्ट सिंग आवर ओन सॉन्ग्स, चाहे हमारी दुख हो चाहे हमारी खुशी हो, वी ऑल्सो हैव टू लेंड आवर इयर्स टू लिसन टू दी सॉन्ग्स ऑफ अदर्स। हमें अपने कान जरूर दूसरों के लिए रखने हैं कि हम उनका भी गाना सुन सके, चाहे वो दुख सैड सॉन्ग हो, चाहे वो खुशी का सॉन्ग हो, चाहे वो स्ट्रगल्स का सॉन्ग हो, चाहे वो ग्लोरी का सॉन्ग हो। हमें दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए उनके बारे में सुनने की, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। वी जस्ट रिएक्ट, दूसरे इंसान की बात ही खत्म नहीं होती है और हमारा सोचने का स्केल इतना हाई हो जाता है, वो हमें रिएक्ट करने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि दूसरे इंसान की बात वो किस लहजे में कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चीज उसको अंदर से प्रोत्साहित कर रही है ये बात कहने की, हम बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस मार देते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये जो जर्नी है ये लाइफ की हमारे हाथ में है, अब हमने डिसाइड करना है कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता अपनाएं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन हम कौन सी रखें। वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन आर अचीवमेंट्स एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस, ये हमारा मिशन होना चाहिए। ये आसान नहीं है, प्रैक्टिस से आता है। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना जो सुपर पावर है वो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर हम अपना ही दुख को इतना बड़ा और इतना एनहेंस कर देंगे तो जो हमारी क्षमता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की वो खत्म हो जाएगी। तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम ये आदत डाल लेते हैं, आप अगर मैं कल भी परसों रामपुर में मैं लड़कियों को बोलकर आई थी कि आप अपनी एक डायरी बनाएं और जो भी अच्छी चीज आपने सीखी, आपने समझी और आपने करी उसको अपनी डायरी में लिखें, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं वो डायरी देखना चाहूंगी। एंड दैट डायरी इज ए बाइबल फॉर यू, दैट डायरी इज ए कुरान फॉर यू, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल बुक्स भी क्या कहती हैं, हम अपने आप को सुधारें, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, हम अपना सुख भी लोगों के साथ बांटे, खाली दुख नहीं बांटे, और दूसरों के दुख में शामिल होके उनके चैलेंजेस में शामिल होके उनको भी हेल्प करें उसमें से बाहर आने की। यही कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल होली बुक्स। और अगर हम अपनी एक होली बुक लिखना शुरू कर दें तो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपका, जब एक साल के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं, है ना, कितना अच्छा लगेगा आपको वो पढ़ के। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा जब आप पेपर पे लिखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए और पॉजिटिव चीजों को इनवाइट करने के लिए। जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो आपसे आस्ता आस्ता दूर जाना शुरू कर देंगी और पॉजिटिव चीजें आपके आसपास रहेंगी और आपको हमेशा एक सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, एक आत्मविश्वास मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बस मैं आज इतना ही कहना चाह रही थी। अगर किसी के कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहता हो तो हमारे पास 10 मिनट हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मैंने इतने सारे ईज की आपके साथ आज बात करी है वो मैं शिवानी को दे दूंगी या मैं इसी मेल पे लिख दूंगी सबको। मैंने बात करी है इमोशंस की, एम्पैथी की, इवैल्यूएशन की, एनकरेजमेंट की, एम्पावरमेंट की, एनेबलमेंट की, एनलाइटनमेंट की, एनविजन करने की, लाइफ्स को एनरिच करने की, और लास्टली जब आप अपनी डायरी लिखना शुरू करेंगे तो आप एम्फेसाइज करेंगे दूसरों के सामने में कि इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन, यू हैव प्रूफ विद यू दैट यू हैव डन दिस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कोई कमेंट, और कोई शेयर करना चाहता है कुछ, तो प्लेटफॉर्म आपके पास है. हमारे पास 10 मिनट हैं और हम 10 मिनट में फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच, हमें इनक्रेज करने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच.
2: मैं सुवर्णा बोल रही हूँ मैम, पूना सेंटर से। बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने, जैसा मोटिवेट किया, मतलब हम भी आपके सेशन से हम भी बहुत अच्छा मतलब स्ट्रांग बन जाते हैं आपका सेशन अगर सुना तो।
0: बहुत अच्छी बात है. और एक पॉइंट, आप एक वर्ड शेयर कर दीजिए सबके साथ, जिस जो वर्ड ने आपको मोटिवेट किया है.
2: इमोशनली हम भी स्ट्रांग बन जाते हैं मैम आपका सेशन अगर सुना ना।
0: हाँ, वेरी
2: यस
0: गुड,
2: मैम,
0: वेरी
2: थैंक यू मैम।
0: गुड.
3: मैम अंजू द्वारका सेंट्रल से।
0: हाँ जी अंजू,
3: आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम, आपका लीडरशिप की क्वालिटी जो आपने बताई है।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस. प्रैक्टिस करिए उसको, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सरपास एवरीबॉडी.
3: जी मैम,
0: ये बहुत जरूरी है. इसको खाली सुनने से तो समझ में आता है, पर प्रैक्टिस करने से और भी ज्यादा अच्छे से. थैंक
3: थैंक यू मैम।
0: यू, थैंक यू अंजू.
4: मैम इस पे चलने के लिए भी हमें पावर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जरूर इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि बहुत कुछ है जिसपे प्रैक्टिस करना है। ऐसा लगता है चीज टूट जाती है, कुछ चलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इसके बाद हमें लगता है कि हमें किस किस जगह चीज को इम्प्लीमेंट करना है, इससे हमें पता चलता है कि हमें अभी और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल.
4: जी मैम,
0: पहले अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, फिर दूसरों की लाइफ को भी स्ट्रांग बनाना है. दोनों
4: जी मैम, जी मैम,
0: चीजों का दारोमदार आपके कंधों पे है.
4: जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम।
5: गुड आफ्टरनून मैम, फरहा बोल रही हूँ रामपुर से।
0: फरा, कैसी हो आप?
5: ठीक है मैम। आपने बताया कि हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है करना, कभी भी अगर हम सेंटर पे बेनिफिशियरीज को सिखाते हैं तो यही नहीं होना चाहिए कि उसका एडमिशन किया और सिर्फ हमारा मतलब है उसको सिखाने से, कि आज उसने क्या सीखा, कल क्या सीखा, वो क्या सीख रहा है, बट उसके साथ हमारा एक अंदर से बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए कि वो फैमिली में कैसा चल रहा है उसका, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सके। अभी मैंने लाइब्रेरी के सेशन में भी ये शेयर किया था और यहाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बेनिफिशियरी मेरे पास आ रही थी और वो आती थी, कंप्यूटर सीखती थी और चली जाती थी। काफी लड़कियां थी जो हंसती भी थी, बोलती भी थी, बट उसको किसी से कोई मतलब नहीं, आई और उसने सीखा और वो चली गई। तो मैंने नोट किया 15 दिन, 20 दिन, एक दिन मैंने उसे याद करने के लिए कुछ दिया कि आपको ये याद करके लाना है, तो वो अगले दिन याद नहीं करके लाई और बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि मैम आप हमें डांटेंगी। मैंने कहा आपने मतलब देखने से पहले ही सोच लिया कि हमें मैं डांटूंगी। मैंने कहा डांटूंगी नहीं, आप मुझे बताओ कि आप रो क्यों रही हो, कि मैंने ये स्पेलिंग याद नहीं की। तो मैंने कहा आपने याद क्यों नहीं की कि वो मेरी ना मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने उससे ऐसी धीरे धीरे बात निकलवाई, मम्मी क्यों परेशान करती कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो कहती है अब तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं जाना है, घर का काम करना है और भैंसों को देखना है, दूध वूध बेचना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है और मुझे पढ़ना है मैम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करने आऊंगी घर पे और उनको समझाऊंगी और आप सेंटर पर आओ, आपको जो सीखना है वो सीखो, बट ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बात करनी होगी खुद के लिए घर पर। तो उसको ये बात काफी समझ में आई, उसने अपने पाप मम्मी तो नहीं सुन रही थी उसकी बात, लेकिन उन्होंने अपने पापा से वो बात की और हम उसके गाँव गए, हमने उसकी मम्मी से जब फेस टू फेस बात की तो वो बहुत तेज किस्म की थी, वो यही बोल रही थी कि नहीं अब ये क्या करेगी पढ़ के, नहीं पढ़ना है, इसकी शादी करनी है हमें और ये है और वो, और वो जो उनकी सगी बेटी थी उनको पढ़ा रही थी। मतलब गाँव में ये होता है कि वहां पर सगा सौतेले का थोड़ा सा रखते हैं कि इनको नहीं करना है, तो वहां उनको हमने बहुत इनकरेज किया और बोला कि शादी से पहले अगर आप 1-2 महीने हमारे सेंटर पे भेज दो, पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप सीखने दो जो वो सीखने के लिए बोल रही है, आप फीस मत देना, आपको लगता है कि मेरी बेटी के लिए वहां फीस जा रही है और मैं नहीं दे सकती, आप फीस मत दीजिएगा लेकिन इसको भेजो क्योंकि ये सीखना चाहती है। तो वो उस चीज से बहुत खुश हुई और उसकी मम्मी ने ठीक है आधे पौन घंटे के लिए सेंटर पे भेजना शुरू किया। तो वो जो उसकी बातें दिमाग से थी और जो वो सोचती थी, डरती थी, वो टेंशन में रहती थी, तो वो धीरे धीरे दूर हुई। तो वो सारी चीजें आपने हमें बताई कि हमें कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है सेंटर पे। अगर हमारे पास एक एक बेनिफिशियस आ रहा है तो हमें उससे हर एक बेनिफिशियस से बात करना चाहिए, क्या पता हम अपनी बात समझा के उसको कुछ इनकरेज करें उसकी लाइफ के लिए, क्या पता उसकी सोच चेंज करें, उसके जितने भी दिमाग में निगेटिव पॉइंट है उसको दूर करके उसको पॉजिटिव सोच में बदले। तो ये बात आपका ये पॉइंट हमेशा हम नोट भी करते हैं, करते भी आगे, और आज आपने जो बताया वो काफी हमारे लिए काम आता है। थैंक यू
0: फरा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं सबको सबको ये बोलना चाहूंगी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं परसों मैं कब थे हम फरा के सेशन में, ऑन ट्यूसडे राइट, ऑन ट्यूसडे मैं स्मिता डिम्पल मैम फरा और अकबर के सेशन में सेंटर में थे और इट वॉज अमेज्ड। 50 से ऊपर लड़कियां थी जो इनके सेंटर में बैठी थी और सबने बुर्का पहना हुआ था। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, मेरी हालत एकदम खराब थी बिकॉज मुझे बहुत पसीना आता है वहां पे, तो आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। पर वो माहौल देख के ना मैं अपने आप को रोक पाई, ना स्मिता अपने आप को रोक पाई, ना डिम्पल अपने आप को रोक पाई, ना फरह रोक पाई और ना ही अकबर रोक पाया। हम पांचों ने इतना उन लोगों के साथ बातचीत की, इतना उन लोगों को समझाया और वो ना वर्ड्स अपने आप आते हैं उनसे बात करने के लिए। एंड फरह, अकबर इज नॉट हियर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑनलाइन, आज आपका फेस्टिवल है पर फिर भी आप सेशन मिस नहीं कर रही हैं। और उस दिन मेरे सामने से वो आंखों के आगे से वो सीन ही नहीं जा रहा है कि इतनी सारी लड़कियां वहां पे हमें सुनने के लिए आई हुई थी और पीछे की लड़कियां स्टूल्स पे खड़े होके हमारी शक्ल देख के हमें सुनना चाह रही। दैट वॉज अमेजिंग फरा, you are a real leader and you are working in the community.
5: Thank you.
0: very well.
5: ये सब आपसे ही सीखा है मैम, जो आप सिखाते हैं वो हम आगे करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा उस दिन मुझे। डिम्पल ने अपने सेंटर के, स्मिता ने अपने एक्सपीरियंसेस, फरा ने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैं हमेशा फरा को कोट करती हूँ कि फरा को मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो दरवाजे की एक पार्टीशन थी, फरा उधर से बोल रही थी और मैं इधर से बोल रही थी, आज फरा सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और अगर हमने ऐसे 10,000 या 20,000 भी लड़कियों को तैयार कर दिया तो वो लड़कियां कभी भी पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को नहीं देखेंगी, और आप लोगों की भी गारंटी है बिकॉज यू पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट राइट। ठीक है, थैंक यू फरा।
6: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड
6: आफ्टरनून मैम, मैं गरिमा गृह से शशि।
0: हाँ जी शशि।
6: यस मैम, लड़कियां आपसे बात करना चाहती मैम, वो आपका सेशन सभी सुन रही हैं और मैम सभी लड़कियां अभी आपके सामने हैं लाइव में, वे कुछ बात करना चाहती है मैम।
0: हाँ जी बोलिए।
7: और हम चाहते हैं कि हमें और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमने कभी सोचा भी था कि यहाँ ट्यूशन भी सिखाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ गरिमा गृह सेंटर में ट्यूशन आके बहुत अच्छा काम हुआ है मैम। एक और तो कहना आता है ना सुनता, हमें वो पहचानने के लिए मिला है मैम से, सती मैम से, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल से बहुत खुशी आ रही है मैम।
0: वेरी नाइस थैंक यू फॉर शेयरिंग. बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के. गरिमा गृह एक ऐसा सेंटर है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि कीर्ति नगर में एक एमसीटी का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था जिसको पीवीआर नेस्ट ने बिल्कुल रेनोवेट कर दिया और उसमें दो कमरे हमें दिए हैं जिसमें हमने लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेक्शन और स्टिचिंग सेक्शन और ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्शन बनाया है. और पैर रखने की जगह नहीं होती है, ये सब औरतें इतने उत्साह से उस सेंटर में आती हैं, कोई इनहिबिशन नहीं है कि वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमें नहीं बैठना, वहां पे हमने नहीं सीखना. जहाँ सीखने की इच्छा होती है वहां पे राह भी निकल आती है. ये मेरा विश्वास था, तभी हमने पीवीआर नेस्ट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सेंटर खोला था. थैंक यू सो मच, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका. फरजाना आप कैमरे में आई और फिर चली गई, आप कुछ कहना चाहती हूँ?
8: थैंक यू मैम,
0: बोलिए.
8: थैंक यू सो मच, आपका सेशन लेकर हमें ये महसूस होता है कि लीडरशिप सबके अंदर होती है, लेकिन आपका जब हम सेशन लेते हैं ना, हम अपने अंदर से उसे जगह पाते हैं. तो बात है तो सिर्फ उसे जगाने की है मैम, और फिर आपकी बातों से और आपके समझाने के तरीके से, आपके सेशन से हमें इतना अच्छा लगता है कि हमको ये अपने ऊपर कर पाते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं भी बहुत कुछ हूँ.
0: अब फरजाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर करने का. और ईद मुबारक, आज आपका त्योहार है और फिर भी आप सेशन अटेंड कर रही हैं. और फरजाना एक ऐसी लड़की है जो इतने रिमोट एरिया से और आगे इतनी बढ़ गई है और इसका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया और ये इतनी औरतों को एम्पावर करती है. तो अभी ये अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकती है, ये मेरे को पूरा विश्वास है ना फरजाना?
8: जी मैम, मुझे तो ना हर बार और अच्छा लगता है मैम, ऐसा लगता है ना पिछली जब मैं याद करती हूँ ऐसा लगता है मैं वो फरजाना हुई नहीं, पता नहीं कैसे ऐसे हो गई. मैं बात करने का तरीका, मतलब जो भी पहले था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, सिर्फ जो भी है आपकी वजह से है और हम बहुत अच्छा कर पाए और आगे भी इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे रीड इंडिया के.
0: थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना. Sana, you also came online and then you closed. Yes.
9: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon.
9: How are you, ma'am? Happy Eid.
0: Happy Eid to you all. सबके परिवार को बहुत मुबारक. और सबने बहुत अच्छी खीर भी बनाई होगी आज मुझे.
9: Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for the session, for taking out time. हम लोगों के लिए इतना time निकालने के लिए thank you.
0: नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है और मेरा काम है
9: मैम. एक्चुअली जी सेशन होता है इसकी वजह से हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, ऐसे हमारी बात हो वीडियो कॉल पर, हम एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं, सारे सेंटर्स के लोग इकट्ठा होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो हमें भी लगता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो अदर सेंटर से भी सीखने को मिलती रहती है कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लर्निंग्स बढ़ती है. तो ये सारे सेशन बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए. और मैम कल का सेशन पता मैम का है, वो भी बहुत अवेटेड सेशन है.
0: और बहुत अवेटेड सेशन है. और मैं आपको बताऊं, स्मिता और मैं इसके लिए प्रिपेयर करते हैं. इट्स नॉट दैट आई स्पीक एक्सटेम्पोर, मैं पहले अपने थॉट्स को कोलेट कर लेती हूँ, एक पेपर पे लिख लेती हूँ और स्मिता के साथ डिस्कस करती हूँ. क्योंकि हम कैसे यू नो एम्पावरमेंट जो है या लीडरशिप है, हम हवा में बात नहीं कर सकते. हमें बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करके, उसको समझा के, उसको कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, वो डिस्कस करने में हमें भी एम्पावरमेंट मिलती है, हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है. प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, पर उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इट्स ए कलेक्टिव सेशन फॉर एवरीवन. हम सारे इकट्ठे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की हम आ सकते हैं, अदरवाइज फिजिकली मिलना तो बहुत मुश्किल है. जैसे मैंने बोला कि मैं फरा के सेंटर पे हम लोग गए थे, इट वॉज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती. एंड थैंक्स टू ऑल द गर्ल्स हु केम देयर, मोर देन 50 to 60 गर्ल्स वर देयर, एंड दे वर बबलिंग विद एनर्जी कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है. तो वो प्रोत्साहन देख के हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी खुशी होती है, और फिर हमारा और करने का दिल करता है. ठीक है,
10: वेरी गुड मैम,
0: थैंक यू सर,
10: थैंक यू मैम.
11: मैम मैं सेशन आपका पूरा सुना है, फिलहाल मैं बस में ट्रैवलिंग पे हूँ, पर आपसे बहुत कुछ सीखा सभी लोगों ने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए. और आपसे सीख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश है लाइफ में, जो हम अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू मैम.
0: सुमन इज अनदर एग्जाम्पल, जो जो मैंने आज एक पिक्चर आपकी आंखों के आगे दिखाने की कोशिश की है. सुमन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरा इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, सना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरजाना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट. तो ये हमारे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, और शायद ये लोग ही मुझे इनकरेज करते हैं ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम सब तक पहुंच जाए तो एक्चुअली रियल माने में हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं. थैंक यू सुमन, बस में सेशन सुनने का थैंक यू सो मच.
11: थैंक यू मैम, थैंक यू,
0: थैंक यू,
6: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सबको फिर से ईद मुबारक, और सब लोग अपना ध्यान रखें. थैंक यू सो मच.

जामुन को काला जामुन, ब्लैक प्लम और भारतीय ब्लैकबेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति स्थान भारत है। जामुन का वानस्पतिक नाम सीजियन क्यूमिनी है। ये मिटेंसी कुल का सदस्य है। इसकी भारत में जंगली प्रजाति मिलती है। दक्षिण में मद्रास से लेकर गंगा सिंधु के मैदानों तक इसका उत्पादन किया जाता है। जामुन के फल गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। इसके फल अधिक गूदेदार और स्वादिष्ट होते हैं। जामुन भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पाए जाने वाला फल है, जिसका जिक्र आयुर्वेद के अनुसार यूनानी और चीनी दवाओं की पद्धति में भी है। खासकर जामुन के गुणों और स्वास्थ्य के लाभों के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार जामुन के फल में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। जामुन में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चों और बड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। इससे पेट दर्द और अपच जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जामुन का सेवन करने से शरीर में खून की कमी की भी पूर्ति होती है। जामुन सोचने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार है। जामुन शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में भी सहायक है। जामुन मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। इसकी गुठली का रस मधुमेह को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जामुन के तने के रस व बकरी के दूध से शिशु को पेचिश की समस्या से निजात मिलती है।

0: स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबां पर वंदे मातरम, यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने के ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है।
1: शुक्रिया अदा करती हूँ गीता मैम और रेड इंडिया का, क्योंकि मुझे ये फील्ड के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से गीता मैम, थैंक यू।
2: हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी दोस्तों, मैं हूँ संजना, मैं झज्जर जिले के माजरी गांव से हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का प्रोग्राम दहेज प्रथा पर है, तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये दहेज की कहानी।
3: बहू बहू जरा सुनती हो?
4: क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया?
3: बुलाया तो है, मगर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया है। तेरे माँ बाप ने जो 3 लाख रुपए गाड़ी देने की जो बात की थी, वो पैसे और गाड़ी अब तक देने क्यों नहीं आए?
4: माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, उन्होंने मेरे पढ़ने लिखने में सारे पैसे लगा दिए।
3: अपने पापा से कह देते, अपना मकान गिरवी रख कर दहेज के पैसे दे देती।
4: माँ जी मुझे घर से मत निकालो, मैं अपने घर से दहेज ले आऊंगी।
3: दहेज के तो पैसे नहीं लाई, मेरी माँ से ऐसे जुबान लड़ाएगी, निकल जा मेरे घर से।
4: माँ जी मुझे मत निकालो।
5: बाबूजी। हाँ बेटी।
4: मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा है कि जब तक तुम पैसे नहीं लेके आओगे, जब तक तुम्हारी शक्ल नहीं मत दिखाना।
5: ठीक है तो बेटी, मैं घर को गिरवी रख कर दहेज के पैसे दे दूंगा।
4: अगर वो अपने लिए पैसे मांग सकते हैं, अपने लालच को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो पापा मैं आपके साथ हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको घर गिरवी रखने की। आप है तो हम है, किसी से दबकर नहीं, सिर उठाकर और अपनी हिम्मत से जीना सीखिए।
2: तो दोस्तों आपने सुना, दहेज लेना और देना पाप है। तो दोस्तों संजना को दीजिए इजाजत, तो कल मिलेंगे इस समय और इसी चैनल पर। आप सबको मेरा नमस्कार।
6: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं प्रतिमा यादव बाराबंकी सेंटर से यहाँ आज दिल्ली ट्रेनिंग अटेंड करने आई हूँ और मुझे आकर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों ने जो ट्रेनिंग की उससे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली और सिर्फ यही नहीं, रीड इंडिया में आने के बाद इतनी सारी चीजें सीखने को मिली हैं, शायद पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में मुझे वो चीजें सीखने को नहीं मिल पाई। तो थैंक्स टू गीता मैम, थैंक्स टू रीड इंडिया सेंटर फॉर दैट। और मैं बाराबंकी में एज अ लाइब्रेरियन काम करती हूँ और वहाँ पे एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज भी सिखाती हूँ। और यहाँ पर आने का मकसद था कि कैसे रीड इंडिया सेंटर जो पहले से चल रहे हैं उनमें कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं उनको देखना, उनको समझना और अपने साथियों से मिलना जो रीड इंडिया सेंटर में बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम अपनी बाराबंकी में मोबाइल लाइब्रेरी का भी प्रचार कर रहे हैं और उस पर काम करना शुरू कर दिया है और वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे सेंटर का। और इसी के साथ मैं एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ।

0: Thank you.
1: कैसे हैं सभी लोग?
2: गुड मैम, गुड अच्छे हैं मैम.
3: गुड आफ्टरनून
4: मैम. बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है.
1: और सब कैसे हैं?
3: ठीक है मैम.
1: ठीक है. कोई और कैसे हैं?
5: गुड आफ्टरनून मैम. सब ठीक है, आप कैसी हैं मैम?
1: सब ठीक है जी. और कैसे हैं सब?
3: गुड आफ्टरनून मैम. हम
2: मैम अच्छे
1: अच्छे हैं. और
6: मैम
1: कैसे हैं?
6: अच्छे हैं. आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब.
1: एनर्जी है. और कैसे हैं सब?
7: ठीक है मैम.
1: ठीक है. और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है
2: मैम? बहुत बढ़िया.
1: बढ़िया है. और कैसे हैं
2: मैम? को आज सबकी वॉइस सुननी है.
1: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे. अभी तक मुझे ये पता है कि 5-6 लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं.
3: मैम सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम सबका.
1: ठीक है, गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना
3: मैम.
1: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना. कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं. 4-5 लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं. कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं.
8: सब अच्छे हैं मैम.
1: सब अच्छे हैं. यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं. स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही है शायद, है ना. हाँ जी. बच्चे कैसे हैं आप लोग?
8: अच्छे.
1: सांगले. सांगले का क्या?
8: बात करते हैं मैम.
1: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है?
8: अच्छे हैं हम सब.
1: अच्छे हैं, सब अच्छे हैं. और कैसे हैं? आपके पीछे मुझे है तो सब अच्छे हैं. ठीक है. अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है. जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है. या फिर जैसा रितु जी ने बताया, सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया. बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता. या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना. अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं. सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको? यस
2: यस मैम.
8: यस मैम.
1: तो आज इसी चीज पे बात करेंगे जिसपे मैम ने कल छोड़ा था. मैम ने कल अपने सेशन में 10 E's की बात करी थी. जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे. इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से. ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सकें, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली. क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं. जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं. सही बात है या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से?
9: सही बात है मैम, बिल्कुल.
1: चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं 5 बार पूछती रहूंगी ताकि खुद देखू सो तो नहीं गया कोई, है ना. तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था. पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 E नोट किए होंगे. पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
8: एम्पावर.
1: पावर ऑफ व्हाट
3: मैम? इमोशनल स्ट्रेंथ.
1: एब्सोल्युटली. मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं. हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना. अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं. ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं. ऐसा होता है? तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं ह्यूमन, एक इंसान में कितने इमोशंस हैं? आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त? ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने, बस आप अपनी समझ से, जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे, मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है।
4: बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक
1: कितने होते हैं? 5, 6। खुशी होती है, और बताइए।
4: हम जैसा फील कर होते हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
1: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो गया, गुस्सा
4: हम
1: हो
4: गुस्सा
1: गया।
4: आ जाते हैं, कभी कभी अंदर से नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं,
1: छह
4: तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी
1: सात
4: कभी
1: सात
4: कभी
1: खुश
4: दुखी भी होता है।
1: आठ आठ इमोशंस हो गए, तो बिल्कुल ठीक। 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए? मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
2: यस मैम,
1: फुल
4: यस
1: स्क्रीन
4: मैम।
1: दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम ई क्यू भी बोलते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा

डिस्क्रिप्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उस पे हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं इसे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता। अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूव किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में, तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं, उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है, हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है, हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा, वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में, नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं, वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो, तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हम

0: सारे पड़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है। या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया। मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई। अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी। गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशन को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ। अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका। हो सकता है मैं रुक के धो लूं उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे, कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली, पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा, अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना, सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है, किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मार मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखी है किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे?
1: मैंने देखी है मैम,
0: सबने देखी है। तो वो क्यों करता है, उसको
1: मैम
0: उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली, कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूँ और उसको मैं पॉजिटिव, मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको, वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयरली गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता, बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां, अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पर वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस, कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने, कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना, तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता है तब, क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट, कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहती थी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशेंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं, एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने EQ समझा, इमोशनल क्वोशेंट समझा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वोशेंट को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में ही घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो सुइंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं सुइंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप सुइंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी और वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80-90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक। तो आप सोचिए, काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती, तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है, लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा। अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे, तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है, ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है। और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था। अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी? अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा? तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर। पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए। तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो, एक शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे, और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं। कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हमारे ऊपर हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाय, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे। आप कितनी बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा। कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही। अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उससे डर के रुक जाएं? ये आपकी मर्जी है। अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे। रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी। बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है। क्या मैं रुक जाऊंगी तब? ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए, लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर 1 साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ, जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई हो सकता है 1.5 साल में खोला, अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरे को, मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उससे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स। जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं, जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए। नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 ईज। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, सेकेंड ई पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट? अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है, या कोई गोल या अपने डायरी रखनी शुरू करी है, कोई फीडबैक देना चाहता है? बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी एनकरेजिंग ईच अदर टू इंटरैक्ट। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ एंड आई एनकरेज एवरीबडी, आपके साथ बेनिफिशरीज भी अगर हैं तो उनको भी एनकरेज करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
1: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बाइरेडीपल्ली।
0: हेलो संगीता जी।
1: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था। दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है। बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे। वो पूरा बहुत अच्छे से था, तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम।
0: एब्सोल्युटली राइट। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना। जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी अच्छा नहीं फील कर रहे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी। सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा। भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का। तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
1: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं? मैं खुश हूँ मैम।
0: आप खुश हैं, अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट थी जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी, डबल पीएचडी करी है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है, इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है। इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है। इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा। जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे। अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता। तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी कर रहा है, पीछे जाना, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं है अभी, तो उस बेचारे की क्या गलती है, दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर। ऐसे ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन से ही पैदा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बने ही इमोशन पे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल इमोशन है, सोशल इमोशन है, फैमिली इमोशन है, घर के हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, मदर डॉटर, मदर सन, जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने। तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते, अपने अपने पहचान के और अपने अपने मैनेज करने। मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए। हेलो
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
0: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है, इतना सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में मैंने सारा शेयर कर दिया। कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
1: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने, और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घटती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
0: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आया था कि नेगेटिव इमोशंस जो है ना वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं। हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया, या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा। अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते। अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है। इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसकी इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है। अगर मुझे डिप्रेशन है या मुझे दुख है या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके। एक एक घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं। हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं, ऐसा होता है, एक सहेली सबकी होती है जिससे इतना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, ऐसा ऐसा, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है। तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है। कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते। कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है। वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकाल रहे मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें है, उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है। आज के दिन की ये चार बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी, और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट? लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्यों तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे? आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी, उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। हो सकता है बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है कि पूछे ही मत। वो कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बंधी होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में। उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
1: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दूँ, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
1: यस मैम, जब
0: और
1: गुस्सा होता है बर्स्ट हो जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं किसी से बोल के रो देते हैं तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से भी कितना भी शेयर करो डबल ट्रिपल होता जाता है।
0: लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं। कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, उस बैलेंस को कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी को। तो उसको निकलना भी जरूरी है, बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट? बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
2: हेलो मैम मैम,
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
2: मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी। आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी। जितने मेरे पेंडिंग्स काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई, तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी। तो अब मुझे ये चीज और आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम, जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
0: हम सब
2: लेकिन सबके अंदर होता है वन टू ऑल, अपने अपने लेवल पे मैम सबके अंदर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, पर ठीक है आज हमें और गाइडेंस मिले कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक
0: थैंक
2: यू सर।
0: यू।
2: ऐसे
0: मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते हैं आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो कर सकते हैं।
2: जी
0: हाँ जी तुषार, आप बोलना चाह रहे हैं?
3: मैम जी, 1 साल पहले आप हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप मैम आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री लेबर और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं, उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे, हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीजों से, नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करती है हमें और गाइडेड करती है, इसलिए।
0: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से, क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते, नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता है, कपड़ा बांध देता है, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ, पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशंस है वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे वो तो हो ही गया, क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशन हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना? आप, मैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी, थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई। मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। मुझे लगता था गुस्सा, हंसी, खुशी, यही 4, 5, 8, 10 इमोशन होते हैं। पर सोचे मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊं कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है, वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे। जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं। हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना? सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए। आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए। ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
2: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट।
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
2: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है। और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिकली। और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है और आप लोगों से सीखा है। थैंक यू मैम इसके लिए।
0: थैंक यू सुमन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बाय टू एवरीबॉडी।
4: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
5: मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं पीडब्ल्यूडी कॉलोनी बदोटोला रामपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली 5 मेंबर्स हैं, जिसमें मेरे पापा बैंड का काम करते हैं और वे बैंड में गाना गाते हैं। मेरे छोटा एक भाई है और एक बहन है जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। एक दिन इन इंडिया का स्टाफ मेरे गाँव में सर्वे करने आया, जहाँ इन्होंने हमें अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताया। यहाँ आकर मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया और मैंने कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग कम्प्लीट करी। यहाँ आकर मुझमें काफी कॉन्फिडेंट भी आया और स्किल भी अच्छी हुई। पहले मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी और अब मैं लोगों से कम्युनिकेट भी कर पाती हूँ। एक दिन इंडिया के स्टाफ ने मुझे जॉब के बारे में बताया और मैंने मौलीचार इंटर कॉलेज में जाकर अपना रिज्यूम लगाया और सर्टिफिकेट भी दिया। वहाँ उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में मैं क्लियरली पास हो गई थी। मौलीचार इंटर कॉलेज में अब मैं एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब कर रही हूँ। यहाँ मुझे 5,000 रुपये सैलरी मिलती है। मैं अपनी सैलरी से काफी खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ और मेरी फैमिली भी मुझसे काफी खुश है। मैं रीड इंडिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है और मुझे एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दी। रीड इंडिया का स्टाफ और रीड इंडिया को मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
6: मेरा नाम आशा नाज है, मैं रामपुर यूपी के एक पटवाई नाम के गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और मैंने 2019 में अपना बीए पूरा किया था, और बीए के साथ साथ मैंने स्पीकिंग, एंटिटी, नर्स, लाइब्रेरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी ली है, और क्राफ्टिंग एंड ड्राइंग मेरी स्पेशलिटी है। मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, मेरे पापा, मम्मा, मेरे 2 भाई। मेरे पापा की टायर सेलिंग की दुकान है। मेरे घर में मेरे पापा और मेरे बड़े भाई कमाते हैं, जिसमें मेरा छोटा भाई और मैं पढ़ाई करते हैं। जैसे कि मैं एक पटवाई गाँव से हूँ, जहाँ पे पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन मेरा था कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने ड्रीम्स खुद से पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, जिसके लिए मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता जो फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे। फिर 2017 में मुझे पता चला कि हमारे पटवाई में रेड इंडिया नाम से एक सेंटर खुल रहा है जहाँ पे तरह तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं ओपनिंग में आई, मुझे अच्छा लगा, मैंने वहाँ पे कंप्यूटर और लाइब्रेरी में एडमिशन लिया, मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली। उसके साथ साथ मैं वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करती थी, मेरी फैमिली वालों को रेड स्टाफ पे बहुत भरोसा हो गया था, मैं अपना ज्यादातर टाइम सेंटर पर ही बिताया करती थी। फिर मुझे पता चला कि हमारे पटवाई में ही रेड इंडिया की तरफ से एक स्कूल भी खुल रहा है जहां पर टीचर की जरूरत है। फिर मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, वहां पे 15-20 लड़कियों का इंटरव्यू हुआ जिसमें से थैंकफुली मेरा सिलेक्शन हुआ, वहां से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच रेड इंडिया मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने के लिए, थैंक यू सो मच।
7: आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ईशा चौहान है, मेरी उम्र 40 वर्ष है, मैंने एमए बीएड किया है, मैं रामपुर ज्वाला नगर में रहती हूँ। मैंने बहुत सारे पर्सनल कोर्स किए हैं जैसे कंप्यूटर, सिलाई, पार्लर, कम्युनिटी एलिमेंट्री का कोर्स किया है और कुछ मेरी हॉबीज भी हैं जैसे बुक रीडिंग करना, डांस करना, क्राफ्टिंग। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे हस्बैंड, 2 बेटे। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो अब रिटायर्ड हैं और मेरे हस्बैंड एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचर हैं, जो कोरोना की वजह से उनकी जॉब छूट गई। तो मैं ही एकमात्र महिला हूँ अपने परिवार में कमाने के लिए और मेरे फैमिली की कंडीशन काफी बेटर नहीं है और सब कुछ मेरी जॉब पे ही टिका हुआ है। जैसे मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे पता चला कि आगापुर में एक लाइब्रेरी है तो वहां मैं पढ़ने के लिए जाती थी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और सारे सब्जेक्ट वहां से पढ़ती थी, अपनी स्टडी जारी रखती थी। तो वहां के स्टाफ ने मुझे बताया कि स्कूल ओपन हो रहा है, वहां पर रिक्वायरमेंट है टीचर की। मैंने अपना रिज्यूम लगाया, मेरा सिलेक्शन हो गया और वहां से मेरी लाइफ स्टार्ट होती है। मैंने वहां जाकर काफी सारे कोर्स करे जैसे सिलाई, कंप्यूटर, पार्लर, कम्युनिटी एलिमेंट्री का कोर्स किया। मोस्टली एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने के बाद मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मेंटेलिटी कैसी होती है बच्चों की, पेरेंट्स को कैसे डील किया जाता है, एक्टिविटी द्वारा बच्चों को कैसे डील करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते उन बच्चों को कैसे खेल के द्वारा पढ़ाएं, शौक उनकी कैसे, उनकी मेंटेलिटी को समझें, उनकी उनकी बातों को समझें, ये सब मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन से सीखा है। और मेरे अब आगे ये लक्ष्य है कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं और इसके लिए मुझे रीड वाले भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू रीड इंडिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमीशा है, आई एम फ्रॉम गरिमा गृह। सो जब मैंने एक्चुअली मेरे डैड नहीं है, मैं जब 13 साल की थी तो मेरे डैड हमें छोड़कर चले गए थे और मैं बहुत छोटी फैमिली से हूँ। उसमें मेरी मम्मा है और मेरी एक सिस्टर है और मैं हूँ। तो मेरी मम्मा जैसे ही जब डैडी गए तो उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने हमें मतलब उन्होंने कभी नहीं बोला कि आपको कुछ करना है या कुछ भी। हमारे जितनी भी चीजें होती थी हमारे बिना बोले मम्मी कर दिया करती थी। हमें कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी मम्मी हमें ये चाहिए। पर जब मैं बड़ी हुई, मैंने 12th पास आउट करी और मैंने देखा हमारी मम्मी हमें मतलब इतने मेहनत से हमारी पढ़ाई करवा रही है, कभी उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को मम्मी की हेल्प करनी है और मेरे को अपनी छोटी बहन को टीच करना है, उसकी अच्छी एजुकेशन हो तो मेरे को भी जॉब करनी है। तो मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा मेरे को जॉब करनी है। तो मम्मा ने बोला अच्छा ठीक है। तो मम्मा PVR में अभी, तो जब गरिमा गृह बन रहा था तो वहां पे शिवानी मैम आती थी। तो फिर मैम मम्मी ने शिवानी मैम को बोला कि मेरी बेटी ने कंप्यूटर कर रखा है और उसको जॉब करनी है। तो मैं शिवानी मैम से मिली थी, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर अब मैं गरिमा गृह में एक IT टीचर हूँ। वहां पे जिस तरह बच्चे आते हैं और मतलब एक टॉयलेट है और टॉयलेट के साथ एजुकेशन चल रही है, मैं जब खुद गई थी तो मैंने देखा था तो मेरे को थोड़ा हुआ था कि मतलब बहुत पुअर, मतलब लोग इतने छोटे छोटे, हम मतलब जहाँ पे खड़े हैं उतने एरिया में लोग रहते हैं, उसी में किचन है, उसी में बेडरूम है, 5-6 भाई बहन है, पापा है, सब एक साथ रह रहे हैं। और वो मतलब कभी ये नहीं बोलते कि हम प्रॉब्लम में हैं। मैंने उनको देखा और उनसे खुद सीखा कि मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है और मैं उनके साथ रोज जाती हूँ, मेरे को इतना कुछ सीखने को मिलता है, मैं उनको सिखाती भी हूँ। और मेरी टीम और गीता मैम, मैम के लिए तो मैं कुछ मतलब मेरे पे वर्ड्स ही नहीं है। मैं गुरुजी को मानती हूँ और मैं मैम को, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैम को देखा तो मैं कैसे लगा कि मैं गुरुजी को देख रही हूँ। तो थैंक यू मैम विद अस एंड थैंक यू
0: रीड इंडिया। अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: हेलो, मैं पूजा शाबाद मोहम्मदपुर से। मैं रीड इंडिया से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने रीड इंडिया से सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर सीखा, उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग की, फिर मैंने सिलाई की। सिलाई करके फिर काफ़ी टाइम तक मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहने लगी। लेकिन मेरे एक दिन एक लेडीज़ मेरे पास आई कि बेटा मेरे को सूट सिलवाने हैं, अगर यहाँ पे कोई आसपास में सूट सिलता है तो मुझे बता दो। वो भी फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी, वो भी यहाँ पे नहीं जानती थी किसी को क्योंकि वो यहाँ पे किराए पे रहने वाली थी। उसने वो मेरे पास आई, फिर मैंने उनको बोला कि आंटी मैं सिल सकती हूँ। बोले कि बेटा आप सिलना जानते हो? मैं बोली कि हाँ आंटी मैं सिल सकती हूँ, मेरे को सिलाई आती है। उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे से सूट सिलवाया। उन्होंने जो सूट सिलवाया था उन्होंने मेरे को सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था और मैंने उनको 2 घंटे में सूट तैयार करके उनके पास फ़ोन किया कि आंटी आपका सूट कम्प्लीट है, आप ले जा सकते हो। तो वो मेरे घर आई, उन्होंने सूट देखा, उन्होंने सूट मेरा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसे ही सूट सिलते रहोगे तो हम आपसे और सिलवाएंगे। नेक्स्ट डे आई, फिर उन्होंने मेरे से एक ब्लाउज सिलवाया। मैंने उनका ब्लाउज सिलवाया, उन्हें वो भी अच्छा लगा कि बोला कि बेटा तुमने फिटिंग बहुत अच्छी मतलब बिठा रखी है कि सूट की और ब्लाउज की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बोले कि थैंक यू आंटी। बोले कि नहीं बेटा, आप सिलते रहो, हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे ही सिलवाएंगे। मैंने कहा ठीक आंटी, आपकी मर्जी है। उस टाइम मेरे पास हाथ की मशीन थी, वैसी पैर वाली मशीन नहीं थी। धीरे धीरे करके मैंने सिलाई की, सिलाई करके अपना पैसा जोड़ा, इकट्ठा किया। सबसे पहले मैंने अपनी एक गुल्लक खरीदी 5 रुपए वाली। मैंने उस गुल्लक में जितना मैं सिलाई करती थी सारा पैसा उस गुल्लक में डालती रहती थी। मैक्सिमम मुझे 1 साल हो गया था जब मैंने अपनी गुल्लक को फोड़ा, तो मेरे गुल्लक में मैक्सिमम 3,000 रुपए निकले। मैं यहाँ से घर से निकली, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सिलाई मशीन के पैर लेके आने हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर मैंने अपनी सास को बोला, वो बोली कि क्या करेगी, आंखें खराब होती हैं। फिर मैंने पापा को बोला, ससुर को, उन्होंने कहा बेटा नहीं, कोई सिलाई विलाई नहीं करनी है, अपने घर में रहो, बच्चों को देखभाल करो, उनको खाना पीना खिलाओ। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। एक दिन मैं खुद पालम गई, फिर मैं वहां से अपनी मशीन के पैर लेके आई। आके मैंने घर पे एक मशीन वाले को बुलाया, उन्होंने मेरी मशीन उस पे रखी, उसको स्टार्ट किया। उसके बाद मैं अपनी सिलाई करना शुरू किया। सब मेरे को टोकते थे कि बेटा नहीं, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मत सिल, और फिर यही है कि तेरे को दिखना बंद हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं सिलूंगी, मेरा मन करता है कि मैं सिलाई करूं। उस दिन के बाद मेरे को इतना प्राउड हुआ कि मैं खुद सिलाई करती हूं, और आज है मेरे अंदर इतना प्राउड कि मैं बाहर के सिलती हूं और अपना सारा पैसा इकट्ठा करती हूं। मेरे बच्चों को जो भी जरूरत होती है, जैसे कि हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करता, उनको किसी भी हेल्प बुक की ज़रूरत होती है, किसी भी पेन की, पेंसिल की, मैं सारी चीज़ें अफोर्ड करती हूँ उनके लिए। हस्बैंड तो सुबह अगर ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, वो मेरे को कोई खर्चा भी नहीं देके जाते, लेकिन जब भी पीछे से बच्चे बीमार होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सास ससुर को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं एक बार भी ये नहीं सोचती कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं उनके लिए भी हर टाइम तैयार रहती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे बीमारी के लिए कोई पैसा हुआ, या खाने पीने की चीज़ हुई, या कि कोई भी चीज़ पसंद आए कि हमें ये सूट चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें दिलाती हूँ। लेकिन एक बार भी उनको अब तक ये नहीं है कि हाँ वो हमारे लिए इतना कर रही है कि हम उसको सपोर्ट करें। रीड इंडिया से फिर मैं दोबारा से जुड़ी हूँ, क्योंकि रीड इंडिया में कंप्यूटर और सिलाई और ब्लॉक पेंटिंग और पार्लर का कोर्स किया जाता है। अब मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ और मैंने बेसिक कंप्यूटर भी सीख लिया है। और पार्लर का कोर्स करने के बाद अब मैं घर पे जाके मेरी 2 देवरानियाँ हैं उन पर ट्राई करती हूँ, मेरी सास है उन पर ट्राई करती हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड है, मेरे को अपने खुद मेरे हाथ से खुद अपनी हेड मसाज करवाते हैं, फुट मसाज करवाते हैं। वो बहुत बोलते हैं कि मुझे बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन अब तक उन्हें भी मेरा 1% भी सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं निकली हूँ घर से और मैं सीख रही हूँ कि मैं भी कुछ करूँ और मेरी भी एक अलग पहचान हो। जब फर्स्ट टाइम मैंने सिलाई की थी, जो मेरे पास सबसे पहले पैसा आया था, सबसे पहले तो मैंने भगवान के मंदिर में जाके उनका प्रसाद बांटा था, और सबसे पहले मैंने अपने एक सूट लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रीड इंडिया से भी जुड़ी हूँ, उससे मैंने सिलाई भी सीखी है, उस बेस पे मैं अपने पैरों पे स्टैंड हुई हूँ। तो मैं थैंक यू करती हूँ पूरी रीड इंडिया के टीचर्स का कि थैंक यू, आप सबने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया कि ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन घर में एक पूरी फैमिली के सामने मैं स्टैंड हूँ कि कल को अगर मेरे पर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो मैं किसी की तरफ देखूंगी नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ अपना। तो थैंक यू।

हेलो एवरीवन, दिस इज शरीन फ्रॉम लखनऊ लाइब्रेरी एंड मैं बस कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी कि दो शब्दों को मिला के बनने वाला बहुत ही सुंदर और प्यारा शब्द है पुस्तकालय. द लाइब्रेरी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. इस लाइब्रेरी ने बहुत लोगों की दुनिया को चेंज किया. एग्जैक्टली, बिल्कुल, नो डाउट. और मैं दो लाइन्स में अपनी बात कंप्लीट करूंगी कि ये बुक्स जो है ना, वो कभी हमें धोखा नहीं देती है, राइट. दूसरी थिंग ये है कि ये जो बुक्स हैं, वो कभी कभी हम इनकी स्टोरीज को पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि हमें ये हंसा रही है. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के जुड़े हुए इतने इमोशंस होते हैं जो उन स्टोरीज में निकल के आते हैं. कभी कभी ये बुक्स हमें रुला भी देती है, राइट. लेकिन कभी हमें इन बुक्स से, लाइब्रेरी से कभी धोखा नहीं मिला. और आपको पता है कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग कर रही हूं जहां पे हमारा सेंटर है, वहां पे लाइब्रेरी की मतलब नहीं पता थी. मैंने कल भी बात बोली तो एक छोटा सा आइडिया मैंने लिया कि जब हम औरतों को जो कि 60 अबव है, 60 से भी ऊपर 70 ईयर्स की हैं, उन्हें मैं बोलती थी कि लाइब्रेरी आइए, लाइब्रेरी आइए, तो वो ये बोलती थी कि मैं क्या करूंगी आगे लाइब्रेरी. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब वो बूढ़ी औरतें लाइब्रेरी आई जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये आइडिया अपनाया कि मैं उनको बैठाती थी अपने सेंटर में और बैठा के स्टोरीज को चूज करती थी. जस्ट लाइक कि वो ऐसी जगह से बिलोंग करती हैं कि जहां पे थोड़े से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो मैंने जस्ट लाइक झांसी की रानी, मैं उसकी स्टोरी सुनाती थी. टीपू सुल्तान, मैं उनकी स्टोरी सुनाने लगती थी. तो जो बुजुर्ग लेडीज होती थी काफी इंटरेस्ट लेके वो सुनती थी क्योंकि वो पढ़ नहीं पाती थी. इससे रिजल्ट क्या मिला कि उन लेडीज ने जो लाइब्रेरी आने से डरती थी, लाइब्रेरी का मतलब नहीं समझती थी, उन्होंने क्या करा कि मैम बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बुक से देख के पढ़ती हैं, तो ऐसा करते हैं कि आज हमारे घर के बच्चे भी जाएं और जाके उस बुक्स को रीड करें. जो बच्चे क्लास 9th और 10th के आते हैं हमारी लाइब्रेरी में, उनको ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं हिस्टोरिकल बुक्स में. तो आज हमारी लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे करीब 70 से ऊपर हैं. थैंक यू सो मच एंड माय प्लेजर कि आज मुझे रीड ने इस लाइफ समझा कि मुझे इस अवार्ड को दिया. थैंक यू गीता मैडम, थैंक यू ऑल.

और मैं ग्रेट नोएडा तुगलपुर गांव से आती हूँ। और यहाँ पे सर मैं आई थी मतलब अपने बच्चों का ही एडमिशन कराने के लिए, और मुझे पता लगा कि यहाँ पे लेडीजों को भी पढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे कम से कम एक साल करीब पढ़ी हूँ सर यहाँ पर। फिर सर यहाँ पे मार्क्स वगैरह बने थे तो उन चीजों वो भी हम लोगों ने निकाले थे, तो हमें सर ने मार्क्स दिए बनाने के लिए, हम लोग यहाँ मार्क्स बनाते थे।

0: तो आज हम कहाँ से कहाँ होते।
1: मेरा नाम सुषमा है, मैं रहती हूँ तुकलपुर में। मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ी एक साल में, तो आल लगा मेरे पे पढ़ना। तो अब मैं फिर इस, अब ये सेंटर खुल गया था, इसका सिलाई करती, मुझे अच्छा लगा, पैसे कमाए, माँ से भी बनाए थे मैं सर मैंने, तो पैसा भी कमाया था, 4000 रुपये मैंने कमाया यहाँ पे। एक फोन खरीदा मैंने अपने पैसों से और घर वाले को दे दिया मैंने।
2: मेरा नाम मोनी है और वो पार्लर का कोर्स किया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बिल्कुल भी। फिर मुझे मतलब बोलने में कंफ्यूज रहती थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। फिर मुझे यहाँ के बारे में किसी ने बताया, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई भी होती है, फिर मैं यहाँ किसी के थ्रू आई, फिर मैंने यहाँ से पढ़ना सीखा, काफी कुछ सीखा यहाँ से। फिर मुझे यहाँ पे बिनटेक से पार्लर वालर भी मिला, काफी कुछ, काफी हेल्प मिली मुझे यहाँ से। पहले मुझे सर किसी से भी पैसे वैसे लेने में मुझे डर लगता था, मैं काम कर लेती थी, मैं सोचती थी कैसे मांगू पैसे इससे, कैसे नहीं, अपने पैसे मांगने में मुझे डर लगता था, पर अब वो चीज नहीं है, अब मैं मांग लेती हूँ सीधे। तो काफी कुछ चीजें यहाँ से सीखने को मिली है, मेरा जो डर था वो यहाँ पे आके सारा निकल गया है।
3: सर मेरा नाम मिथिलेश है, तुगलपुर में रहते हैं। पहले हम बोलना भी नहीं झिझकते थे, बहुत ज्यादा डरते थे कि हम ये देखो लेडीजों के साथ, क्यों गांव के आदमी ऐसे ही हैं, नहीं जाने देते, नहीं बोलने देते। थोड़ी हमारी झिझक खत्म हुई यहाँ से, थोड़ा हम अपने आप को संभालने लगे। वो कहने लगे अपने लिए जीना सीखो, कब तक ऐसे दबके रहोगे। तो हम थोड़ा सा आने लगे यहाँ पे, फिर पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे। हम पे कुछ नाम वाम कुछ नहीं आता था, अब तो हम नाम भी थोड़ा मिला मिला के किताब भी पढ़ लेते हैं। लॉकडाउन में बहुत हालत खराब थी, हम पे मास्क मशीन चलाना नहीं आता था। फिर मैं उस पर लड़की ने मेरे चलाया सिखाया, फिर बेटी ने और मैंने हेल्प बहुत ली यहाँ से। फिर उन्होंने मार्क्स दिए, उससे मार्क्स बनाए, हमने 10-12 हजार रुपए कमाए थे सर। हाँ, तो उससे मैंने एक महीने का राशन उससे लिया था। मेरे हस्बैंड की बहुत दिमाग की हालत ऐसी थी, उनसे दवाई गोली ली उनसे सर, बहुत हेल्प हुई हमारे इसमें।
1: मेरा नाम संध्या सिंह है, मैं वाराणसी की हूँ, यहाँ तुगलपुर में रहती हूँ। मैं यहाँ सिलाई सीखने के लिए आती हूँ अभी, और पढ़ने भी आती थी। थोड़ा अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, सबके बीच में रहना, अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। और बाकी अगल बगल मेरे यहाँ जो भी रहती हैं, अगर खाली बैठी हैं तो मैं उनको बोलती हूँ चलो कुछ टाइम पास हो जाएगा, मान लो कुछ सीखने को भी यहाँ पे आने का मतलब कुछ सीखने को तो जरूर ही मिलता है।
2: जून में हुआ कि अनलॉक होने लगा, तो काफी लोगों का डिमांड आने लगी कि मैम पैसे नहीं है, घर नहीं चल रहा, कैसे करे क्या करे। तो लगा कि उनको सपोर्ट करने के लिए लॉकडाउन में, तो हम लोगों ने जो गरीब लेडीज थी उनको हमने एनवलप का एक वो दिया कि हमको रख भी दे के आते थे, वो एनवलप बनाते थे, हम उनकी एनवलप मेकिंग देते थे, क्योंकि ऐसे हम उनको कैसे वो करते तो पेमेंट देते। तो हमने सोचा कि आइडियल फॉर्म में एक स्मार्ट फॉर्म में हम उन लोगों को पेमेंट देते, तो उनकी जिससे उनकी आत्म उसको भी ना कोई लगे चोट लगे। तो फिर वहां से हम लोगों को ख्याल आया कि अब कैसे इनको अर्निंग करी जाए। तो देखा कि मास्क की डिमांड बहुत है मार्केट में, तो एक हमारे यहाँ लेडीज थी बेनिफिशियरी थी गीता, तो हमने उनसे पूछा कि गीता क्या तुम मास्क बना सकती हो। गीता ने कहा मैम मेरे को यूट्यूब दिखाइए। हम लोगों ने बैठ के यहाँ यूट्यूब देखी और यहीं पर बैठ के हम लोगों ने एक दिन एक डेमो मास्क बनाए, एक बनाया अच्छा नहीं बना, दूसरा बनाया अच्छा नहीं बना, तीसरे चौथे में हमारी बड़ी अच्छी फिनिशिंग आ गई। तो हम लोगों ने जब दूसरों को दिखाया बाहर वालों को, तो उन्होंने बड़े अच्छे रिव्यूज दिए कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है यार, तो ऐसा लग रहा है मार्केट में बनाया। तो हम लोग भी बड़े मोटिवेट हुए। वहां से हम लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, 1000 मास्क बनाते हैं और उनको कुछ पैसा मिलेगा। वो 1000 की हम लोगों का टारगेट था और हम लोगों ने करीबन 20,000 मास्क हम लोगों ने बनाए और उससे लोगों को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अर्निंग कराई।
4: कोविड में जिस समय सारा दुनिया बंद थी, लोगों के रोजगार छूट रहे थे, एक अवसाद में लोग बन जा रहे थे और उनके पास में रोजगार के साधन खत्म से होते जा रहे थे, खास तौर से लोअर मिडिल क्लास, वो इसमें सबसे ज्यादा सफलर था। ऐसे समय में रीड इंडिया और कुछ अन्य संस्थाएं साथ में आई और हमने यह मास्क बनाने का कार्य पहले प्रशिक्षण दिया इन महिलाओं को और उसके बाद में इनसे मास्क बनवाए गए, जिससे इन 3 महीनों में लगभग 20 परिवारों को औसतन 5,000 रुपए प्रति परिवार की आय में बढ़ोतरी हुई। ये बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जबकि कुछ भी नहीं हो रहा था, सारा बंद पड़ा था, तो ऐसे समय ये बहुत बड़ा सहयोग था।

0: ग्रीड इंडिया के माध्यम से अब यहां पर एडवांस प्रोग्राम्स इन आईटी जैसे साइबर सिक्योरिटी, ऑडियो एंड वीडियो मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज, टैली, इस तरीके के कई प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स जो है रीड इंडिया ने यहां लॉन्च किए हैं। उन्होंने अपने ट्रेनर्स हमको प्रदान किए हैं एवं कई अन्य प्रकार की भी सहायता वो प्रदान कर रहे हैं, जिससे कहना चाहिए फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है उसको एक बड़ा फायदा होने वाला है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इतना सम्मान किया। मैंने आपको तब सुनाया था कि इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला है। मेरा फादर 90 इयर्स ओल्ड है और ब्लाइंड है। इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला तो जो नेशनल अवार्ड हमको जो मिला था ना, उनको सबको बुलाया, बिठाया और बात किया कि नेशनल अवार्ड इतना सारा लेकर क्या करोगे। तो हम तो सब चुप हो गए कि क्या करेंगे, तो मतलब क्या है। तो बोले और कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके पास जो स्किल है वो बांटो, अब सबको बांटो, सबको दो, वो स्किल दूसरों को सिखाओ। तो योगानुयोग मैडम से भी मुलाकात हो गई और ये मौका मिल गया, अब ये बांटना है बस। धन्यवाद।
2: इनको ना एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं इटली से, जर्मनी से। ही कांट स्पीक इंग्लिश, वो समझ नहीं सकते हिंदी, तो वो कहते हैं मैं उनको अपनी ही किसी लैंग्वेज में ऑर्डर ले लेता हूँ और सप्लाई कर देता हूँ और कम्युनिकेशन।
1: हमारा एक मिशन है, हमारा फैमिली का एक मिशन है, एफ टू एफ, फार्मर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैशन से फॉरन।
3: We are each other's backbone. So it's time now to give out a few awards

छोटे होते हैं तो अपनी फैमिली के साथ, दादा दादी, मम्मी पापा के साथ खेलते हैं, घरों में रहते हैं, लेकिन इससे जस्ट अपोजिट मेरा बचपन था। मैं जब छोटी थी तो मैं रीड इंडिया की लाइब्रेरी में ही, मैंने जैसे होश संभाला, मैं वहीं पर खेलती थी। इतने अच्छे वहाँ पर खिलौने होते थे, बुक्स होती थी, तो मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है। रीड इंडिया में एक रेडियो भी चलता था जहाँ से मैंने सिंगिंग, एक्टिंग, स्क्रिप्ट लिखना ये सब भी सीखा। उसके बाद 2018 में मैंने एक्टिंग में अपनी स्क्रिप्ट लिखकर कंपटीशन में स्टेट लेवल पे थर्ड प्राइज भी अचीव किया। लाइब्रेरी से मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की। उसके बाद मैंने 2020 में 12 बोर्ड एग्जाम्स में 91% स्कोर किया। उसके बाद मैंने नर्सिंग की, निधि मैम ने जो सेशन लिए थे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के, उनके सारे सेशन लिए, क्लासेस ली, और उन्होंने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे वो सबसे मैंने पढ़ के 2022 में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नर्सिंग में भी टॉप किया 82%। मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी दादी ने, पापा ने, इन लोगों ने मुझे एम्बुलेंस में छोड़ दिया था मरने के लिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो मेरा सपना ये है कि मैं आगे चल के एक क्लिनिक खोलूं जिससे मैं लोगों का फ्री में इलाज कर सकूं। जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए मैं कुछ सपोर्ट उनको कर सकूं, और मैं गीता मैम जैसा बनना चाहती हूँ। जहाँ पर हम इतनी सारी लड़कियाँ इकट्ठा होकर बोल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ गीता मैम। गीता मैम ने हमको इतना सपोर्ट किया है, एक कॉन्फिडेंस जो लेवल हम लोगों को मिला है वो रीड इंडिया से मिला है। और मैं हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी, वहाँ पर मेरे फादर उनका इलाज कराने आए थे, मैंने उनको 14 साल बाद देखा एंड ही लाइक ये मेरी बेटी है। तो जिन लोगों ने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया था वो लोग कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी है, तो 50% तो मेरा सपना यही पूरा हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो लोग लड़की को बोझ समझते हैं वो लोग आगे चल के लड़कियों को बोझ ना समझ के सब कुछ समझे, और हम एक दिन वुमेन्स डे मनाते हैं, इसकी जगह हम पूरा साल वुमेन्स डे मनाते हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मेरा नाम पूनम है, मेरा जन्म हैदरपुर से है। मैं थोड़ी सी अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ मैं आपसे। मेरे जो फादर है वो थोड़ा पुराने ख्यालातों के हैं, उनका वो बेटे और लड़कियों में थोड़ा सा भेदभाव जो चल रहा था वो चलता है। लड़कियों को उन्होंने कभी इंक्रीज नहीं करा के वो आगे बढ़े, हमेशा लड़कों पर ज़्यादा फोकस करते थे।

0: बोलना है, मतलब खुल के ना तो कभी बोलना है ना अपने पहनना है मन से कपड़े जो होते हैं हमारे इंटरफेयर, वो कुछ नहीं, जो उन्होंने बोला वो ही करना है। मेरे पापा का कुछ सोचना था कि लड़कियों को हमेशा ढक के ही रहना चाहिए, ज्यादा अकेले नहीं घूमना चाहिए बाहर अकेले में। जैसे ही मेरी शादी हुई यहाँ की फैमिली में मुझे काफी चेंजेस लगे। मेरे जो इन लॉज है वो मेरी हर चीज में मेरा साथ देते हैं कि आप इतने पढ़े हो तो बाहर निकलो, थोड़ी मूवमेंट देखो, कुछ इम्प्रूव करो। उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने कभी मुझे पाबंदियां नहीं लगाई, मुझे इतना इंक्रीज करा कि मैं आज रीड इंडिया में जॉब कर रही हूँ कंप्यूटर ट्रेलर के रूप में। मेरे हस्बैंड का माइंड बहुत ही अच्छा है, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका, जो मन है वो करो, जो आपको पढ़ना है जॉब करनी है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है कि आप इंक्रीज करो। रीड से जुड़ने के बाद मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं, बहुत अच्छा है रीड, यहाँ पे मुझे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अच्छे लगते हैं, सीखने को मिलते हैं यहाँ पे, और मैं कोशिश करूंगी इम्प्रूव करने के लिए कि मैं सारे कोर्सेज सीख सकूँ जो, और यहाँ पे चल रहे हैं कोर्सेज, सबको पता होने चाहिए कि ओनली ये लेडीज के लिए जो चले हुए हैं, कि उन्हें जिनके लिए पाबंदियाँ है घर में कि वो बाहर नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, उन्हें पता होना चाहिए ये कोर्सेज यहाँ पे फ्री है और सिखाए जाते, अच्छे से इम्प्रूव सीख सके। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो टाइम मेरा था जो मुझे नहीं मिली यहाँ पे, मैं लेडीजों को आते देखती हूँ, ये अच्छा लगता है कि वो कुछ कर पा रही हैं, कुछ इम्प्रूव कर पा रही है, वो अपने इस लेवल को बना रही है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके।
1: वैसे तो आप जान ही गए होंगे हम जेवर से आए हैं, मेरा नाम प्रिया है और मैं बस थोड़ी सी दो तीन लाइन बोलूंगी कि पहले मैं इसी सेंटर में स्टूडेंट थी और अब मैं पार्लर की ट्रेनर हूँ और पार्लर की जॉब करने के साथ साथ मैं घर पे भी पार्लर का काम करती हूँ। इसीलिए मैं सभी को, इन सभी टीम को मतलब धन्यवाद बोलना चाहूंगी, इनकी वजह से मेरी इनकम डबल हो चुकी है और शादी के बाद कहते हैं सरनेम बदल जाता है, मुझे हस्बैंड के नाम से जाना जाता था लेकिन अब मुझे देख के सब ये बोलते हैं वो देखो प्रिया के हस्बैंड जा रहे हैं, तो थैंक यू।
2: नमस्ते सबको, मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़े कम शब्दों में लेकिन क्योंकि टाइम भी कम है और थोड़ी नर्वस है फर्स्ट टाइम मैं बोल रही हूँ मंच पे आकर, तो मैं इतना ही बताऊंगी कि मैंने जो ये ट्रेनिंग की ब्यूटी की मैंने मोहम्मदपुर अहिर से ही सीखा था और अब मैं एज अ ट्रेनर सोन में जॉब कर रही हूँ, तो थैंक यू सो मच मैम ये आने के लिए और ये सेंटर वहाँ खोलने के लिए, थैंक यू सो मच।
3: नमस्ते सभी को, मेरा नाम सविता है, मैं सोन सेंटर में स्टिचिंग की जॉब करती हूँ और मैंने ये स्टिचिंग यहाँ से मोहम्मदपुर अहिर से सीखा था और मैं रीड में सीखकर रीड में ही काम कर रही हूँ और मैं इसके साथ साथ अपने घर भी बुटीक खोल रखी है और उसमें भी काम करती हूँ।
4: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है, तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी उनकी जुबानी।
5: नमस्ते, मैं कुमारी उषा भारती, मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ रीज इंडिया में कुछ सीखती हूँ, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम कुछ सीख कर आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी भविष्य बना सकते हैं, ऐसा यहाँ है, बस इतना ही कुछ कहना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को कुछ लड़कियों के बारे में एक दहेज गाना सुनाना चाहती हूँ जो आप लोग भी सुनेंगी और जानेंगी कुछ कि लड़कियाँ कितनी आगे हैं और कितनी चल सकती हैं। ठीक है, मैं सुना रही हूँ। कब

छोड़ो, जिसके घर में है कन्या कुमारी, उस पिता के दिलों से तो पूछो, उस

0: इससे सहजी क्या पता बेटी शादी से सहजी क्या पता है कफन ओढ़े लेगी। मैं आप लोग को ये दहेज की सुनाने सुनाई बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, दहेज को दूर करो और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे भेजो, आगे कुछ बनाओ उन्हें, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, एक कदम आगे हैं। थैंक यू।
1: मैं अर्चना कुमारी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बेनीपट्टी सेंटर से हूँ। गीता मैम और रीड इंडिया, मैं आपके आभार हमेशा रहूंगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मुझे थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है। और मैंने अपनी लाइब्रेरी में मैम एक ही बात शेयर करती हूँ कि ये फाइनेंशियल इरा है तो सबको पैसे कमाने की चिंता लगी हुई है, लेकिन जो भी आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास एक रुपए है और मैं आपको दे देती हूँ तो आपके पास दो रुपए जरूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन नॉलेज यदि हम शेयर करते तो मेरे पास भी एक है और आपके पास भी एक है, तो फिर हम शेयर करेंगे तो मेरे पास भी दो हो जाएंगे और आपके पास भी दो हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। और मैं आभारी रहूंगी हमेशा, क्योंकि सर सब अपने स्टोरी के, सब अपने लाइफ के नायिकाएं हैं, सब स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में। हमारी भी गवर्नमेंट जॉब जब छूट गई थी तो मैम ने मुझे पनाह दी, इसलिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आजीवन। और मैम मैं तो इतनी लायक नहीं हूँ कि जी से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आपके ए को बरकरार रखूंगी जब तक।

प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं करमवती गांव माजरी से आशा वर्कर का कार्य करती हूं। मैं समाज में घर घर गली गली में घूमती रहती हूं। जैसे मैं कहीं पर जाती हूं, मुझे अनेक अनेक समस्याएं देखने को मिलती है, जिससे मेरे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन समस्याओं से निपटारा पाने की सोचती हूँ। मुझे कई समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कहीं लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है तो कहीं बहू पर टॉर्चर हो रहा है, लड़का लड़की की पढ़ाई में भी भेदभाव और उनके उत्पन्न होने पर भी भेदभाव। बहुत ही विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बहुत ही कम पैदा हो रही है, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर मैंने एक कहानी लिखी है जिसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माया, अरे माया, कल काम पर क्यों नहीं आई? क्या बताऊं बहन जी, कल मेरे घर वाले ने मुझे बहुत मारा, लेकिन क्यों मारा? क्या बताऊं बहन जी, पहले से ही दो दो बेटियां पल रही है और अब की बार फिर बेटी। क्या कहा तूने, लेकिन तेरे को कैसे पता चला कि तुम्हारे गर्भ में बेटी है? अरे बहन जी, मेरे घर वाले ने जो अल्ट्रासाउंड जो करवाया था उसमें पता चला कि अब की बार भी मेरे गर्भ में बेटी ही है। क्या तेरे पति को ये नहीं पता, लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है और इसे करने वाला करवाने वाला दोनों को ही सजा जुर्माना हो सकता है? ये तो पता नहीं बहन जी मुझे, लेकिन मेरे घर वाले ने मुझे करवाया और लड़की का पता चला तो उसने मुझे बहुत मारा। नहीं, अपने पति के पास मेरे को ले चल, मैं आपके पति को समझाऊंगी कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है और वैसे भी आपके पास दो दो बेटियां हैं तो अब की बार बच्चा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक तो इतनी महंगाई और एक आपका शरीर कितना कमजोर दुबला पतला है, बच्चे की और जरूरत ही नहीं थी। मैं उसको समझाऊंगी। अरे मैं बहन जी, आप क्या समझाओगी, वो तो मुझे बार बार अबॉर्शन के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। क्या क्या आपके पति को ये नहीं पता कि लिंग जांच करवाकर और भ्रूण हत्या करवाना महापाप है और कानूनन अपराध है? अरे बहन जी, मैंने इसके लिए मना कर दिया तभी तो उसने मुझे मारा और मैं तो ये पाप बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आज रात को जो मैं सो रही थी तब मेरे को सपना आया और सपने में मेरी बेटी ने पता है बहन जी आप मुझसे क्या कहा? क्या कहा तो प्रिय श्रोताओ, उस लड़की ने अपनी माँ से क्या कहा, मैं ये एक गीत के द्वारा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक बेटी ही तन है पुकार री माँ, मन मति

0: रीमा, तो बहन जी इस गीत ने, उस बेटी की बातों ने मेरे कलेजे को हिला दिया और मैंने तो चाहे मेरे हस्बैंड कुछ भी कहो, यह अबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करवाना और मैं आप आज आपके पास काम के लिए नहीं इसीलिए आई हूँ कि आप भी मेरी हेल्प कर सको और मेरे हस्बैंड को इस बारे में समझा सको। हाँ हाँ माया, मैं जरूर आपके पति को समझाऊंगी। और आपकी वो दो बेटियाँ वो क्या करती है, स्कूल तो जाती होगी ना? अरे नहीं बहन जी, क्या स्कूल, वो तो भी मेरी तरह किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है। क्या कहा माया तूने, किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है? आपको ये नहीं पता कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी के घर पर काम करवाना या कंपनी या किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करवाना कानूनी अपराध है और इसे करवाने वाला वे काम पर भेजने वाला दोनों ही इसके दोषी जुम्मेवार हैं। आप अपनी बेटियों को स्कूल क्यों नहीं भेजती? अरे मैम जी, कहाँ से स्कूल में भेजूं? आज इतनी महंगाई जो है, घर पाल चलाना ही मुश्किल हो रहा है, ऊपर से उनके स्कूल फीस व कापी किताबों का खर्चा मैं कहाँ से उठाऊं? अरे माया, क्या तेरे को ये नहीं पता कि आज जो सरकार ने है 8वीं कक्षा तक निःशुल्क किताबें और फीस फ्री कर रखी है। आप अपनी बेटियों को स्कूल में भेज के तो देखो, कोई खर्चा नहीं है, उनको फ्री में शिक्षा दी जा रही है, कापी किताबें भी सरकार ही दे रही है। अच्छा बहन जी, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, तब तो मैं अपनी बेटियों को जरूर स्कूल भेजूंगी। कल से ही मैं उनका एडमिशन स्कूल में करवाऊंगी और मेरे आसपास में जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, मैं उनको भी यही सलाह दूंगी, अपनी बेटियों के साथ उनको भी स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। ये तो बहन जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो प्रिय श्रोताओं, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप दे मुझे इजाजत, मैं करमवती गांव माजरी से कल आपको फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: माय नेम इज नौशाबा अंसारी, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है, उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ करके, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
3: हेलो, मेरा नाम दीपा है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 महीने का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी, उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर वो राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया, उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए, तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला, फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर का कोर्स भी किया। उससे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
4: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ मैं बिल्कुल, मेरे को वो हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है, टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ ये कर सकती है कुछ।
5: आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम चांद खान है, मैं राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय तहसील के गिजगढ़ गांव का रहने वाला, जहाँ पर रेड इंडिया का सेंटर है गिजगढ़ ज्ञान केंद्र के नाम से है। सबसे पहले मैं आपको गिजगढ़ के बारे में बताता हूँ कि यह गाँव पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, 100 से अधिक पुराने मंदिर हैं, इसकी आबादी करीब 15,000 के करीब है। यहाँ के लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे रोजगार के लिए, तभी एक गिजगढ़ गांव में रेड इंडिया संस्था आई जो 8 मार्च को आई थी, जिससे लोगों को रोजगार में काफ़ी सहायक रही, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर उनको हुनर सिखाया गया, स्किल सिखाया गया। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ आप लोगों को कि मैं कहीं भी नहीं जाता था, ना ही मैं किसी से बात किया करता था। आज मेरे अंदर इस संस्था के अंदर मुझे काफ़ी सीखने को मिला। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स में, जैसे हेल्थ कैंप है, रेडियो ट्रेनिंग है, मोबाइल वाणी है, ताराक्षर है, इनमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया मैंने और यूथ ने, तो मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक वॉलंटियर था और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। इस संस्था के कार्य में हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का भी बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस संस्था के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर जो स्किल वगैरह है उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। लाइब्रेरी के अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट आता है लाइब्रेरी सेक्शन। लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी यूथ, काफ़ी बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की और आज वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कंप्यूटर सेक्शन के अंदर बच्चों ने कंप्यूटर सीखा, स्किल सीखा कंप्यूटर का, आज वो प्राइवेट जॉब कहीं पर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, ECD है, तो इन सब के अंदर काफ़ी हुनर सीखा और आज वो खुद कमा रहे हैं। ECD सेक्शन में बच्चों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, फ्री सिखाया जाता था उन बच्चों को, उसके बाद में स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता था। जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम थे, जैसे कि ऑर्गेनाइज किए गए थे रेड इंडिया द्वारा गिजगढ़ गांव में, हेल्थ कैंप है, रेडियो प्रोग्राम है, होटल मैनेजमेंट है, ताराक्षर है, किसान मोबाइल है, हैंडीक्राफ्ट है और हैंडलूम ट्रेनिंग है। जैसे हेल्थ कैंप के अंदर गांव में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो हेल्थ कैंप लगाया गया था, रेडियो प्रोग्राम के अंदर काफ़ी यूथ ने पार्टिसिपेट किया, होटल मैनेजमेंट में काफ़ी बच्चों ने सीखा और आज वो वर्क कर रहे हैं। तारा अक्षर में जो महिलाएं साइन सिग्नेचर करना तक नहीं जानती थी, अंगूठा लगाती थी, उन महिलाओं को पढ़ाया और उन महिलाओं को सिखाया। किसान भाइयों के लिए किसान मोबाइल वाणी का एक प्रोग्राम चलाया गया था। हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी और आज महिलाएं जॉब वर्क कर रही हैं और काफ़ी इनकम भी कर रही हैं। हैंडीक्राफ्ट है तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर जॉब वर्क करके ही कमा रही हैं। हैंडलूम ट्रेनिंग दी गई थी औरतों को तो हैंडलूम के अंदर कपड़ा बनना सिखाया गया था तो औरतों ने कपड़ा बनना सीखा और खुद इनकम जनरेट कर रही है। स्टिचिंग, ब्यूटी पार्लर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इनके अंदर काफ़ी स्किल सीखा औरतों ने और आज औरतें खुद कमा रही हैं, खुद खुद की इनकम जनरेट कर रही हैं, खुद का घर खर्च चला रही हैं। जो हमारा रोज़गार का प्रोग्राम था वो गाँव से शहरों की ओर लोग जा रहे थे रोज़गार के लिए, वो रुक गए और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और इसमें काफ़ी गरीब परिवारों को सहायता मिली। उसके बाद हमारे पास भारती वॉलमार्ट के वर्क आया था बैग्स का, तो जिन औरतों ने हमारे पास स्किल सीखा था उन लोगों को वह वर्क दिया गया। उन लोगों ने काफ़ी पैसा किया, इनकम किया इस भारती वॉलमार्ट में। 10,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग रेड इंडिया संस्था द्वारा दी गई है। रेड इंडिया संस्था द्वारा स्किल सिखाया गया था औरतों को, औरतों में काफ़ी स्किल हुआ। जो औरतें घर से नहीं निकलती थी, जो औरतें घर तक ही सीमित थी, तो उन औरतों ने ट्रेनिंग ली और आज खुद की शॉप खोल रखी है घर के अंदर मार्केट में। जो औरतें शॉप नहीं खोल पाई वो औरतें आस पड़ोस के कपड़े सिलकर इनकम जनरेट कर रही है। जैसे मैं कुछ नहीं जानता था और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का इसमें बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद रेड इंडिया, धन्यवाद गीता मैम।

मेरा नाम मनीषा शर्मा है, मैं बाजरे के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हाल ही में हमारे राजस्थान में बाजरे की फसल तैयार हो रही है। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आता है। बाजरा खरीफ की फसल में आता है जो जून जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काटकर तैयार कर लिया जाता है। सर्दियों में बाजरे का सेवन लाभदायक है। बाजरे में सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है तथा पेट दर्द, गैस जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। बाजरे में मौजूद आयरन खून की कमी को भी दूर करता है।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 कल जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है इस सर्वेक्षण का महत्व, क्या है इसके प्रमुख पहलू और क्या है आगे की संभावनाएं, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुश्री आराधना पटनायक। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
2: सभी को मेरा नमस्कार।
1: जी आराधना जी, ये जो सर्वेक्षण जारी हुआ है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और जो NFHS 6/2023-24 के आंकड़ों के आधार पर जो जारी हुआ है कल, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है।
2: ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, ये 2023-24 के लिए जारी हुआ है, ये 6th सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण लगभग 6.79 लाख घरों को कवर किया है और इसमें लगभग 7.16 लाख महिलाएं और लगभग 1 लाख पुरुषों को कवर किया गया है। ये पूरे देश में ये सर्वेक्षण हुआ है और इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से हम कई सारे स्वास्थ्य के जो मानक हैं उनमें क्या प्रगति हुई है, उस पर हम मुख्य रूप से ये सर्वेक्षण करते हैं। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे पोषण की बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, परिवार नियोजन की बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी चीजें इस सर्वेक्षण में कवर करते हैं। इस बार जो ये सर्वेक्षण हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से जो हमें सबसे अच्छी उपलब्धि मिली है वो है कि हमारे जो प्रसव अस्पतालों में जो होता है, वो प्रसव हमारा लगभग 88.6 से बढ़कर 90.6 हो गया है। फिर जो बच्चों का टीकाकरण होता है, वो लगभग 96% से ऊपर चल रहा है और सबसे अच्छी बात इसमें है कि लगभग 95.6% बच्चों को जितने भी टीकाकरण जो लगते हैं, वो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो मुझे लगती है उपलब्धि है, हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जहां हम ये सुविधाएं देते हैं टीकाकरण का और जो हमारी ANM बहनें बच्चों का टीकाकरण करती है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें इसमें उत्साहवर्धक हमें सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया है। दूसरा एक और है ANC, जो गर्भवती माताओं का प्रसव पूर्व जांच जो किया जाता है, वो करीब 92% से बढ़कर 95.9 वो हो गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है हमारा। और बच्चों का जो टीकाकरण करते हैं, तो पूर्ण टीकाकरण वो 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है। तो यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। पोस्टनेटल केयर, जो प्रसव के पश्चात जो माताओं को सुविधा देनी है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, 79.1% से 85.3% वो बढ़ा है। तो इस तरह काफी सारे उत्साहवर्धक हमारे जो इंडिकेटर्स आए हैं, सभी चाहे वो मातृत्व की बात करें या शिशु की बात करें, सभी में ये बढ़ोतरी हुई है। और एक और मैं आंकड़ा भी बताना चाहूंगी, जो हमारे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में जो एक ये समस्या रहती है, उसमें काफी कमी आई है। तो जो स्टंटिंग और वेस्टिंग, हम सीवियर वेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें काफी कमी आई है और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज काफी बढ़ा है, 41% से बढ़कर वो 60.2% हुआ है। तो इसमें जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ है, PM जन आरोग्य योजना, उसकी एक अहम भूमिका नजर आ रही है।
1: सो जैसा आपने मेंशन किया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसी और भी इसके जैसी जो प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन्होंने आपको लगता है कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
2: हाँ, जो पहला मैंने कहा कि सबसे पहले जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था जी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के समीप ले जाएं और उसमें कई सारे पैकेजेस इसमें जोड़े गए थे। पहले हम लोग मुख्य रूप से मातृत्व और शिशु पर ही, स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते थे, अब वृद्ध लोगों पर, फिर जो बढ़ते हुए NCDs हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, पैलेटिव केयर, ऐसे
1: हम्म,
2: और 6 पैकेजेस जोड़े गए, तो अभी कुल मिला के 12 पैकेजेस ये सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिए जाते हैं। और
1: सभी आयु वर्ग
2: मुझे
1: के लिए।
2: खुशी है बताने में कि ये जो टोटल फुटफॉल की बात अगर हम करें 2018 से लेकर अब तक लगभग 522.41 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और जब हम सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पर जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ आ गया
1: जी,
2: उसके माध्यम से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, जो 5 लाख अगर कोई भी बीमारी है और उसका इलाज वो कराना चाह रहे हैं तो उसमें आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं, लगभग 44 करोड़ कार्ड दिए गए हैं और लगभग 12 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज हुए हैं और जो ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो लगभग 1.85 लाख करोड़ का हमारे लगभग 36,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिया गया है
1: जी।
2: और अगर हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे हमारे कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे पीएम जनमन, जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है PVTGs, उन तक पहुंचने के लिए हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाते हैं जिसके माध्यम से हम उनके लिए कैंप्स करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान देते हुए। जहां भी अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं है क्योंकि वहां आबादी बहुत कम है, तो वैसे जगह भी हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से यही जो 12 पैकेजेस की मैं बात कर रही थी वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम हर महीने आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करते हैं। ये शिविर हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो, और वहां पर स्पेशलिस्ट जाते हैं जो CHC जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस से स्पेशलिस्ट जाते हैं और वो विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। और उसी तरह जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर्स हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र जहां पर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO है, वहां पर मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं, तो डॉक्टर्स जाते हैं सेवाएं देने के लिए। इसके अलावा हमारा टेली कंसल्टेशन भी होता है जिसके माध्यम से डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई मरीज ऐसे आए हैं जिनको वो स्पेशलिस्ट सेवा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दवा और डायग्नोस्टिक जो मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स होते हैं उसमें फ्री ड्रग इनिशिएटिव हमारा प्रोग्राम है और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, सरकारी अस्पतालों में वो मुफ्त दिया जाता है।
1: तो ये जो इतना व्यापक आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जो हमारे देश में उपलब्ध है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से जनधन आधार मोबाइल के बल पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है आम आदमियों के पास, आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध भी है और उसके लिए जो पहुंच है वो भी आसान है एक आम नागरिक के लिए, इन दोनों चीजों में टेक्नोलॉजी का ओवरऑल क्या रोल है, ये जो हम पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम में इतना भारी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं?
2: ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम जो सेवाएं देते हैं 12 पैकेजेस, अगर वहां पर अगर किसी को कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो ई संजीवनी हमारा टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है, इसके माध्यम से आप स्पेशलिस्ट से सेवाएं ले सकते हैं। फिर अगर आपको मानसिक कोई बीमारी है या मानसिक आपको कोई परेशानी है तो हमारा एक टेली मानस कार्यक्रम है जिसमें काउंसलर से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मैं बताना चाहूंगी, 144416 ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी डायल कर सकता है। और हमारे करीब ऐसे 53 सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो कोई भी अगर कनेक्ट करता है और उसको कोई भी मानसिक बीमारी है, अगर दवा की आवश्यकता है या कोई सुझाव की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं, काउंसलर्स बात करेंगे और फिर वो उन्हें साइकेट्रिस्ट से जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो बता रही थी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो मिशन है हमारा, उसके NHM के माध्यम से जो हम विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे MMR कम करने की बात हो या under 5 मोर्टेलिटी घटाने की बात हो या डिजीज एलिमिनेशन की, हर एक में हमारा पोर्टल है जिसमें हम ट्रैक करते हैं, एक एक मरीज को ट्रैक करते हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे हमारा UWIN पोर्टल है तो बच्चों का टीकाकरण इसमें पूरा ट्रैक होता है, तो हर बच्चे का जिस दिन ड्यू उसका डेट है उससे पहले माँ को वो मैसेज जाता है कि आप अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले आइए टीकाकरण करने के लिए। अगर वो मिस कर गई तो उसको फिर जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर नहीं आए, अगला ये डेट है उस पर जरूर आए। तो ये रिमाइंडर भी जाता है, वो घर बैठे बैठे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है बच्चे का। तो इस तरह कई सारे हमारे पोर्टल्स है। एनसीडी के लिए एक अलग पोर्टल है जिसके माध्यम से हम जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओरल ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर, ये सभी की स्क्रीनिंग हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करते हैं। उनका फिर ट्रैकिंग होता है कि उनको वो रेफर किए गए, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, अंडर कंट्रोल है कि नहीं। टीबी का निक्षय पोर्टल है। तो इस तरह हर एक प्रोग्राम के लिए, लेप्रेसी के लिए निकुष्ट पोर्टल है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम ट्रैक करते हैं। और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हम लोगों ने इन सभी पोर्टल्स का भी इंटीग्रेशन करके एक स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है, और उसी के साथ साथ उसका स्वस्थ भारत ऐप भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सभी के बीच में जो हम समन्वय स्थापित करना चाह रहे हैं कि मरीज तो एक है, उसको तीन प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लेकिन पहले हम अलग अलग पोर्टल से ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब इस स्वस्थ भारत पोर्टल से, अगर उदाहरण स्वरूप अगर कोई गर्भवती माता है, वो अपना चेकअप के लिए गई, लेकिन पहले वो 2 महीने पहले गई थी और डायबिटिक पाई गई थी, तो ये हमें बता देगा कि अब वो आई है गर्भवती माँ अपने चेकअप के लिए, लेकिन वो महिला पहले से डायबिटिक है। तो ये जानकारी प्राप्त करके फिर डॉक्टर उनको फिर विशेष परामर्श दे सकते हैं। तो ये डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हम जो कहते हैं ना, लास्ट माइल तक पहुंचना, आखिरी घर तक पहुंचना और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो हम कर पा रहे हैं। और
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्रमुख उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है।
2: इस सर्वे में काफी अच्छी प्रगति हुई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में हमारे लिए और इस सर्वे में भी ये आया है, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो और वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करे, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। इस सर्वे में भी आया है कि एनसीडीज बढ़े हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन वैसे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन डायबिटीज काफी बढ़ा है, एडल्ट ओबेसिटी बढ़ा है। तो ये एक दिखा रहा है कि अब हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो एनपीएनसीडी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और तीन प्रकार के जो कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स है, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, इसका हम नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते हैं। और 2018 से ये स्क्रीनिंग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक हम लोग लगभग 42 करोड़ हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और डायबिटीज का 42 करोड़ लोगों का कर चुके हैं, लगभग 35 करोड़ से ऊपर लोगों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, लगभग 16 करोड़ से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं का स्क्रीनिंग हो गया है और सर्वाइकल कैंसर का भी 9 करोड़ से ऊपर का स्क्रीनिंग कर लिए हैं। हमारे लिए यही चुनौती है कि स्क्रीनिंग तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, प्लस पीएमजे के तहत अगर आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी ट्रीटमेंट आपका फ्री है। जो खुद को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, कम तेल का उपयोग करना है, कम नमक का उपयोग करना है, कम चीनी का उपयोग करना है, ये इसको आम लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। एक और भी हम लोग करते हैं, ईट राइट कैंपेन हमारा FSSAI के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में काफी अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोग महीने में 10 दिन वेलनेस सेशंस करते हैं जिसमें योगा, जुम्बा ये सब भी किया जाता है, उसमें भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हर व्यक्ति को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के दिन में चुनौती, हर कोई अगर खुद को स्वस्थ रखने के लिए खुद मेहनत करे तो सरकारी तंत्र पर बोझ काफी कम होगा। सरकार लगातार प्रयास है इसमें कार्य करने में और प्रिवेंशन पर ध्यान देने में। आशा बहने, उनको ट्रेनिंग दिया गया है और सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, सभी को ट्रेनिंग दिया गया है जागरूक करने के लिए, लेकिन लोगों को भी खुद आगे आना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा।
1: आराधना जी, आपने इतनी समग्र चर्चा की और जो हमारा देश का हेल्थ इको सिस्टम है उसमें क्या प्रगति हो रही है, उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6, प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में

0: surgió me.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन।
2: सर्वोच्च न्यायालय के कल के अहम फैसले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को पूरी तरह वैध ठहराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास SIR करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद विपक्षी पार्टियों के SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर पूरी तरह विराम लग गया। विपक्ष के इन सवालों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत जी, स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आइए हम सुनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है।

0: हो जाती है।
1: आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, ये जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, जो स्वच्छता की बात करते हैं इलेक्टोरल रोल की, इसमें एसआईआर का कितना महत्व रहता है?
2: बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है शुरू होता है इलेक्टोरल रोल से। कोई भी देश का, खाली भारत का नहीं, कोई भी देश का इलेक्टोरल रोल जो है वो अगर सही हो तो फिर इलेक्शन साफ होता है, फ्री फेयर होता है, और इलेक्शन के नतीजे लोगों का विल को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए सारी चीज का शुरुआत है वोटर लिस्ट से, जिसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। और भारत के इलेक्टोरल रोल जैसे है कि करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंचने वाला था, दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल है, शायद बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं होगा, लेकिन वो 100 करोड़ में अभी एक पॉज लग गया है एसआईआर के जरिए। अभी थोड़ा सा रिवर्स होगा, कुछ नंबर्स घटेंगे, और घटेंगे क्यों? अच्छे कारण से घटेंगे। अच्छे कारण से इसलिए घटेंगे क्योंकि सब घोस्ट नेम्स थे, ये नेम का कोई महात्म्य नहीं था। जो इलेक्टोरल रोल में जो मरे हुए लोगों का नाम हो, या जो चले गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर उन लोगों का नाम हो, या जो उन लोगों का नाम दो तीन जगह में हो उनका नाम हो, तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस सब को साफ करने के लिए, और जो लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहना चाहिए उनको नाम को निकालने के लिए, और खास करके आर्टिकल 326 के अनुसार कौन कौन एलिजिबिलिटी है हमारा भारत की इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए, नागरिक होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब तो देखना होगा ना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये सब चीज को अच्छी तरह देखा गया, क्योंकि उसमें एन्यूमरेशन होता है फ्रेश। एक बार मान लीजिए कि एक बार एक फ्रेश लिस्ट जैसे बनता है वो बात है, क्योंकि हर साल जो होता है समरी रिवीजन, उसमें क्या है कि उसी लिस्ट के ऊपर करेक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसमें लेकिन मान लीजिए कि पूरा एक बार एक समूचा नया इलेक्टोरल रोल आपके सामने रखा गया है, और जो लोग रहना चाहिए वो रहते हैं, जो लोगों को नहीं रहना है उनको निकाला जाता है, मतलब वो नाम को, लोगों को नहीं उस नाम को, और 20-22 साल के बाद हो रहा है। तो उससे लगता है कि अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल अगर इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है आर्टिकल 324 के तहत, तो वो काम जो 20-22 साल के बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से वो काम दुरुस्त तरीके से होता है, तो इसलिए होना चाहिए।
1: जो प्रक्रिया हुई, जो बिहार से शुरू हुई और बाद में फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया सेकंड फेज में, और थर्ड फेज का काम अभी चल रहा है, इस बीच में एक विवाद खड़ा हो गया एसआईआर को लेकर, तो इन सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो पूरा विवाद रहा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आने के पहले?
2: देखिए, जितने अथॉरिटीज होते हैं देश में, या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्निंग एजेंसीज होते हैं, ये सबसे इलेक्शन कमीशन थोड़ा अलग तरह के है। इनका काम ही एक हिसाब से पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कैंडिडेट के साथ, रोज काम इन्हीं के साथ ही होता है। इनका पंजीकरण करना, इनका कैंपेन को रेगुलेट करना, इनका इलेक्शन कंडक्ट करना, इनका नतीजे निकालना, ये सब इलेक्शन कमीशन काम है, सिंबल्स देना, ये सब काम है। तो ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता है एक हिसाब से। तो उसका मतलब नहीं है कि जरूर विवाद हो, उसका मतलब नहीं है कि जरूर पॉलिटिकल एक्यूजेशंस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल जरूर होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि भाई एसआईआर क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि भाई एसआईआर इस तरीके से क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है लोगों को तकलीफ देता है, इस तरह से नहीं करके ऐसे करना चाहिए, समय इतना लगना चाहिए, जो प्रोसीज्योर एलिमेंट है उस पर बार बार सुझाव आना चाहिए, और बार बार प्रश्न भी हो सकते, इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है वो सुझाव को लेके कुछ परिवर्तन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन, करेक्शन, कोर्स करेक्शन करना है, किया भी है इलेक्शन कमीशन, कुछ अपने आप में किया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया है। 60 करोड़ लोगों का एसआईआर हो चुका है, करीब 40 करोड़ लोगों का होना बाकी है, बड़े बड़े स्टेट्स में जनरली हो चुका है। तो इसमें जो सवाल आए लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों का जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, जैसे अर्बन नहीं है, जो लिखा पढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता नहीं है, और वो जाके पेपर के पीछे भाग रहे हैं या कहां अपील करने के लिए भाग रहे हैं, तो वो डिफिकल्टीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और कुछ हद तक एड्रेस भी हुआ है। लेकिन उसका राजनीतिकरण एक अलग बात है। वो राजनीतिकरण जब हो जाता है, उसका मतलब यह है कि आपका पॉलिटिकल आउटकम को नजर में रखते हुए आप किसको काठगड़े में खड़ा कर सकते हो, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन को आरोप लगा सकते हो और कुछ कर सकते हो, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया बात है ही नहीं। आप देखिए, एक तरफ बात चल रहा है कि भाई इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को निकालना है, एक तरफ बात चल रहा है कि लोगों का अधिकार से वंचित नहीं करा जाना चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट लोगों का हो रहा है, मुझे लग रहा है ये सब है राजनीतिक अल्फाज। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अल्फाज है वो है दो चीज, एक है कि भाई जो डेड हैं, जो डुप्लीकेट हैं, जो माइग्रेटेड हैं, इनका नाम को

0: निकलना है एज डिवोटर्स, और बाकी जो 326 में जो वोटर लिस्ट में जिनका होना चाहिए लोगों का एलिजिबिलिटी उनके हिसाब से, उनको अगर नहीं है तो उनको निकलना चाहिए, बाकी लोग जो एलिजिबल है उनको जोड़ना चाहिए। नो वन एलिजिबल शुड बी लेफ्ट आउट, नो वन इनएलिजिबल शुड बी इन। इस तरह का बात अगर हो तो तरीके की बात चलता है, फिर ये लोकतांत्रिक होता है, संविधानिक बात होता है, राजनीति को एक बार छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति जैसे आप और हम जानते हैं और देखे भी हैं इस सिलसिले में, राजनीति बहुत हद तक इसके अंदर आ गया और राजनीतिक सवाले आए और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, तो आरोप तो किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वो सब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, टू थ्रो द बेबी टुगेदर विद बाथ वाटर। अब बाथ वाटर को आप निपटाइए लेकिन उसका मतलब बच्चा को ही फेंक देंगे क्या? तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये अवॉइडेबल था, लेकिन आज की तारीख में खास करके अपने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मोहर लगाया है उसके बाद विवाद अंत होना चाहिए और पीसफुल स्मूथ तरीके से सबका कोऑपरेशन के साथ बाकी एसआईआर के जितना प्रक्रिया है ये वाली और आने वाली कभी भी एसआईआर होगा वो ठीक से हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेवारी बनता है, जो जो सवाल करें सुझाव दें सुने, जो सवाल करें उसके जवाब दें।
1: सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल जजमेंट को कैसे व्यू करते हैं?
0: एक तो है कि आप आर्टिकल 3326 में जो वोटर इंडिया में इलेक्टर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसमें एक है कि वो सिटीजन होना चाहिए, तो भारत की सिटीजन को ही खाली वोटर लिस्ट में डाल सकता है कौन? डालेगा इलेक्शन कमीशन डालेगा, तो इलेक्शन कमीशन रख सकता है हाँ भाई ये सिटीजन है इसलिए वोटर लिस्ट में है, ये सिटीजन नहीं है इसलिए वोटर लिस्ट में नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोला है कि बहुत सही बोला है, क्योंकि एसआईआर सिटीजनशिप या घुसपैठिया या इन्फिल्ट्रेटर बाहर के नागरिक ये चीजों का सोल्यूशन नहीं है, एसआईआर सोल्यूशन नहीं है। ना नागरिकता किसका है नहीं है उसका पुलिसिंग करना इलेक्शन कमीशन का काम है, सिटीजनशिप एक्ट अलग है उसका अथॉरिटीज अलग है, और वो जो अथॉरिटीज हैं वो देखें कैसे लोगों को बाहर देश के लोग हमारे यहाँ आके नहीं रहे, यहाँ के नागरिक नहीं बने, या नागरिक को जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिले, ये सब देखने का काम अलग है, सिटीजनशिप एक्ट है इनका है। एक है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसी के तहत लेकिन जो इलेक्टोरल रोल में रखेंगे वो नागरिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायलमा को या ये जो चीज को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, और पहले भी ऑब्जर्वेशन दिया था इलेक्शन कमीशन, ये तो मेरे को लगता है कि जो जजमेंट था बहुत हद तक एंटिसिपेटेड था, ये इतना सारे महीनों से चल रहा है ये सारे हियरिंग्स कि इसमें बहुत कीमती ऑब्जर्वेशंस दिया है बीच में सुप्रीम कोर्ट, वो फाइनली जजमेंट में कन्वर्ट हुआ कल। लेकिन उसने बोला है कि जो फाइनल सिटीजन कोई है या नहीं है उसको डिसाइड करेगा सिटीजनशिप एक्ट, वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि किसका सिटीजनशिप का वैलिडिटी नहीं है वोटर लिस्ट में होने के लिए, तो वो वोटर लिस्ट से उसको निकाल सकता है, वो एक लिमिटेड पर्पस अगर माने लिमिटेड पर्पस है, लेकिन उसका सिटीजनशिप का जो समूचा पर्सनालिटी है एक सिटीजन का वो डिसाइड करेगा, उसके लिए एक्ट है अथॉरिटीज अलग है, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग करके दिखाया है, और ये भी सही है, पहले भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है और ये भी सही है।
1: सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद इशू सेटल्ड माना जाए?
0: मैं तो सोच रहा हूँ बिल्कुल सेटल्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सेंसिटिवनेस था वो बॉर्डर स्टेट ऑफ जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में, ये सब स्थिति ज्यादा था, एक तो पॉलिटिकल साइड से, एक बार रियल टोपोग्राफिकल या ज्योग्राफिकल सेंस में या हिस्टोरिकल सेंस में या सोशियोलॉजिकल सेंस में वहां इस इशू का ज्यादा एक रिलेवेंस था, वैलिडिटी था और पॉलिटिसाइज तो था ही, तो इसीलिए वहां से अगर निकल गया है। और अभी मैंने जैसे कहा ना 60% आबादी जो है वोटर्स आबादी जो है 100 करोड़ मान लो रफली थे 2024 में शायद वही था, करीब 100 करोड़ वोटर होने वाले थे, और उसमें से अगर 60 करोड़ का हो गया 40 करोड़ का तो हो जाने का तो कोई नहीं होने का मुझे नहीं लग रहा है, और खास करके सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल मोहर लगा दिया तब तो ये सब कुछ क्लियर क्लियर क्लियर हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको और आपके श्रोताओं को कि इलेक्शन कमीशन पिछले 10-15 साल से एक बड़ा मुहिम में जुड़ा हुआ था, उसका है कि जो जो लोग हैं एलिजिबल सब पंजीकृत हो और जो पंजीकृत हैं सब वोट दें, तो लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में बहुत बड़ा मुहिम चला है और उसका नाम एक आप स्वीप जानते हैं, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छे नतीजा आया था, जो टर्नआउट में जो लास्ट 10-15 साल में इजाफा हुआ है रजिस्ट्रेशन में भी, वो इसी का कारण से ये एक इलेक्शन कमीशन का मुहिम था। मुझे लग रहा है कि ये SIR ने जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको निकालने का जो एक कैरेक्टर बन के उभरा है, यही उसका कैरेक्टर है बेसिकली, क्योंकि जो नहीं है उनको निकालो, लेकिन जो एलिजिबल हैं देश में उनको जोड़ो, वो भी इसका एक पर्पस है। लेकिन जो देखा लोगों ने, इस चीज ज्यादा उभर कर आया कि भाई नाम लोगों का निकल जा रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार और वो माहौल बनना चाहिए, कैंपेन बनना चाहिए कि जो जो लोग देश में जहां जहां हैं जो एलिजिबल हैं आर्टिकल 326 के अंदर, तो उनको सबको जोड़ा जाए। फिर जोड़ने का मुहिम अच्छी तरह हो, पंजीकरण और वोटिंग में, तो फिर डेमोक्रेसी में थोड़ा भागीदारी का और एक परिवेश या माहौल बनेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन SIR के ऊपर मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है अंत है और उसके हमें आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को, सिटीजन्स को, वोटर्स को और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबको आगे बढ़ना चाहिए अभी।
1: धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
2: प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख मंच है जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साझेदारी में परियोजनाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण की प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय में या रियल टाइम समीक्षा के माध्यम से उन्हें तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रगति इस बात का सशक्त उदाहरण है कि डिजिटल शासन किस प्रकार नीतिगत मंशा को वास्तविक और दृष्टिगोचर प्रगति में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया प्रगति भारत में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर चुका है। यह केवल एक समीक्षा मंच भर नहीं है बल्कि नौकरशाही की निष्क्रियता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने तथा ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा की जाए और परिणामों का आकलन किया जाए। दीपक जी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं और ये बताएं प्रगति किस तरह सरकार की अटकी हुई या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं को तेजी लाने में मदद कर रहा है और लागत में वृद्धि को भी चेक कर रहा है।
3: आपने जैसे कहा कि ये पूरा जो प्रगति है एक ऑनलाइन सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है। चाहे उसका जो शुरुआत में जब पहले समस्याएं आती हैं, जो जिस प्रोजेक्ट को इस पे रिव्यू किया जाता है वो भी आपके देखेंगे तो वेबसाइट पर इनका डिटेल डाला जाता है। जैसे आपने कहा इसकी जो मीटिंग होती है जो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होता है, तो देखा जाए तो एक तरह से एक पेपरलेस एक पूरा प्रोग्राम है। और दूसरी बात यहां तक की है कि प्रगति में हम देखेंगे तो आज तक की जब से शुरू हुआ है आखिरी जो प्रगति हुई थी वो 51वां, तो इसपे ज्यादातर जो लिया जाता है वो है डिलेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रकल्प जो है देर हो गए हैं। तो उसपे ज्यादातर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हीं का ही होता है, जैसे रोड, रेल, पावर, कोल, हाउसिंग, इस तरह के सब्जेक्ट ज्यादातर आते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम, जो बहुत बड़े स्कीम है, जैसे कि वन नेशन कार्ड, आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारे हॉकर भाई लोग हैं उनको जो 10-10 हजार उसके बाद 20 और 50 हजार की लोन देने का जो व्यवस्था किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, इनका भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जिसपे लोगों की बहुत सारे शिकायतें होती हैं तो उनका भी पूरा डिस्कशन होता है। उसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल देख सकता हूँ, कोरोना को लेकर हुआ था, रेरा जो हमारे रियल एस्टेट रेगुलेशन जो है, जो उसके लिए जो पूरी व्यवस्था की गई है, उनकी ग्रेवियंसेस को, उनकी जो लोगों की जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी मीटिंग हुई है। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर पे भी हुआ है, आपका जनधन योजना पे भी हुआ है। तो देखा जाए तो जो प्रगति है इस पे खाली आधारभूत या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नहीं है बल्कि सरकार की बड़े बड़े स्कीम और लोगों की जो समस्याएं होती है उनका भी मीटिंग में बातचीत होती है। जैसे हम जानते हैं सब कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विलंब होता है या उसका लागत में बढ़ोतरी हो जाती है तो देखिए ये देश के लिए तो नुकसान है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये होता है जब आप देर होता है तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और जब आपका पैसे उसका जो लागत बढ़ जाता है तो हमारे एक्सचेकर पे, हमारे सरकार पे वो दबाव बढ़ता है। तो प्रगति ने ये दो चीजों को तो बहुत ही सही तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एड्रेस किया है, क्योंकि उनको हर स्तर पे देखा गया कि किस प्रोजेक्ट के किस कारण से डिले हो रहा है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, चाहे वो आपको एनवायरमेंट और जंगल की जो एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो, कहीं पे आपका जैसे हम किसी को यूटिलिटी शिफ्टिंग, जैसे बिजली के बड़े बड़े खंभे हटाना, कहीं पे आपको बड़े बड़े पानी की पाइप जो जमीन के नीचे होता है उनको हटाना, तो ये सब चीजें बारीकी से देखा जाता है। और बारीकी से देखने के बाद ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री तक जाता है, बहुत प्रोजेक्ट हैं जो उससे काफी पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं। जो चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं वो प्रधानमंत्री आखिरी में उसका रिव्यू करते हैं। तो प्रगति होने से एक तो व्यवस्था ये हुई है कि जो प्रोजेक्ट विलंब हो रहे थे, जिनका कॉस्ट बढ़ रहा था, अगर प्रगति नहीं होती उनके कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाते, तो इसके कारण क्या हुआ कि आपको कॉस्ट तो घटा नहीं पर कॉस्ट की जो बढ़ने में जो आगे की संभावना था उसको घटा दी गई। तो एक तरह से आपका जो जिसको हम कहते हैं फिस्कल बर्डन होता हमारे ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन होता, वो घटा और समय भी इसके कारण बचा जो बहुत डिले लगता है। जैसे आप हम सब जानते हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो रेलवे लाइन है जो कई सालों से अटका हुआ था वो प्रगति के कारण बहुत जल्दी संभव हुआ। जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है अगर वो जिस गति से जा रहा था और कई साल लग जाते उसको कम्प्लीट होने में, प्रगति होने से उस पर उसका त्वरित गति में उसका काम हुआ है। इसका होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई मीटिंग कोई एक प्रोजेक्ट का जब हर ऑफिसर को हर ब्यूरोक्रेट को पता चलता है कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे तो आप देखिए कि वहां पे तत्परता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जितना मेरी जानकारी है मैं ये जानता हूं जैसे कि प्रगति मीटिंग की नोटिस आती है और जो जो प्रोजेक्ट का नाम आता है आप कोई भी मंत्रालय में जाइए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में जाकर बात करिए वो देखेंगे ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है क्योंकि वहां पे ये कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में ये कोई बोले कि आपने ये काम नहीं किया। और उसके कारण क्या होता है अचानक से आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कोऑर्डिनेशन है मीटिंग के पीछे की जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, स्टेट गवर्नमेंट सोचिए कोई मिनिस्ट्री से बात कर रहा है कोई डिपार्टमेंट से बात कर रहा है तो वो क्या करते हैं कि उसको रिजॉल्व करने के संपूर्ण तरह से प्रयास करते हैं। याद है वाक्य कि कोई एक मीटिंग होने वाली थी जिसपे ये आपका टेलीकॉम का जो फाइबर नेटवर्क डाला जाता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला था, काफी विलंब हो रहा था, मुझे क्योंकि मैं उसके बारे में लिखा था तो मुझे याद है ठीक मीटिंग से एक दिन पहले जितने भी उसका स्टेक होल्डर है जितने मंत्रालय है सबने एक साथ कह दिया कि हमने सारी चीज रिजोल्व कर ली है। तो देखिए इसका ब्यूटी है क्योंकि आप देखेंगे तो कि जो है यही इसका जो है सुंदरता है कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं तो उससे पहले ही बहुत सारी चीजें रिजोल्व हो जाता है और जब कॉस्ट ओवररन नहीं होता है लागत नहीं बढ़ने को हम रोक सकते हैं, समय की देरी को विलंब जो होता है उसको रोक सकते हैं तो इसके देखिए सबका फायदा होता है, सरकार का होता है और जैसे मैंने कहा लोगों को सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया सोचिए आपका जम्मू से श्रीनगर की जो रेलवे लाइन सोचिए और 5 साल डिले हो जाता तो क्या होता, जो लोगों को इतना लंबा समय रोड से जाना पड़ता है या फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा देकर जाना पड़ता है उससे तो बच गए ना।
2: प्रगति में जो परियोजनाएं लाई जाती हैं वो अक्सर ऐसा होता है जो रुकी हुई रहती हैं या डिलेड होती है, क्या कारण है कि ये परियोजनाएं रुक जाती हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? प्रगति तो करती है लेकिन क्या मंत्रालय स्तर पे या राज्यों के स्तर पे इनके भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
3: एकदम आपने सही कहा और जैसे कि 4-5 जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाता है वो एक तो पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका लैंड एक्विजिशन, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना जमीन के आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि रोड आपको बनाने के लिए 100% आपको जमीन चाहिए, आप अगर पावर प्लांट बनाते हैं तो आपको जमीन चाहिए, अगर आप सोचिए कोई बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है तो सब में आपको जमीन चाहिए। अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत खाली प्रगति की बात नहीं, अगर आप हर साल की अगर सवाल देखेंगे जो पार्लियामेंट में आता है हमारे संसद में आता है रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो परिवहन मंत्रालय हो या रेलवे मंत्रालय हो या आपका सिविल एविएशन मंत्रालय हो ये सब में देखेंगे तो जो भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्य कारण क्या है डिले का तो कहा जाता है लैंड एक्विजिशन, जमीन के अधिग्रहण में देरी। दूसरा जो सवाल आता है वह आपका क्लियरेंसेस क्या क्या है जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, इस पे देरी बहुत एक ये दो जो है सबसे प्रमुख कारण है। इसके साथ जैसे मैं आपको पहले बताया था कि तीसरा कारण है कि जिसको हम यूटिलिटी शिफ्टिंग देखेंगे, जहां पे एक नया सोचिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है वहां पे पहले कभी बिजली के बड़े बड़े हाई टेंशन वायर का जो खंभे लगे होंगे और वो छोटे नहीं है कि अचानक रातों रात बदल सकते हैं तो इनको सब शिफ्टिंग करने का भी बहुत टाइम लगता है। मेनली यही तीन चार चीजें हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होता है और जब प्रगति होती है तो उस पे क्योंकि सारी बातें क्लियरली आती है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये प्रगति मीटिंग होती है उसपे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में होते हैं, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में होते हैं, सब वर्चुअली जुड़े होते हैं ऑनलाइन माध्यम से, फिर सारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं। तो जैसे जमीन अधिग्रहण की बात अगर हम करें, हम तीनों चीजें जमीन अधिग्रहण पर्यावरण की बात करें और तीसरा जो यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये तीनों का जो मुख्य जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार का है। तो जब मीटिंग होती है इसकी तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या ये आपको जैसे कहें निर्देश दिया जाता है कि आप इसको जमीन के अधिग्रहण को जल्दी से संपूर्ण करें। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जांपल, अभी प्रगति हुई थी उस पर रेलवे का भी कोई प्रोजेक्ट था जहां पे वहां पे भी कोई कंपनसेशन जो आपका लोगों को जो पैसे देने की बात आई थी कुछ प्रोजेक्ट के कारण, तो उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया रेल मंत्रालय को कि जल्दी से लोगों को जो कंपनसेशन है दीजिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए। तो इस पे क्या होता है कि जो केंद्र का मंत्रालय हो या राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, देखिए केंद्र सरकार में देखा जाए तो सारे काम कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका अंडर सेक्रेटरीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार का तो मुखिया ही देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक हेड है, वो तो चीफ सेक्रेटरी है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मुख्य सचिव को, तो उसका सीधा असर देखने को मिलता है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताऊं, दिल्ली के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ये सब प्रोजेक्ट को पीएम ने एक एक करके प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है, और इस रिव्यू के कारण प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कम्प्लीट हुए।
2: जी, प्रगति की अभी तक 51 बैठकें हो चुकी हैं और इसमें 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा सका है और कुछ तो कंप्लीट भी हो चुके होंगे। ये मंच प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में केंद्र और राज्यों के बीच वास्तविक समय में तालमेल सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही को और अधिक अच्छा करती है। जमीनी स्तर पर प्रगति और क्या बदलाव ला रही है, चाहे वो गवर्नेंस लेवल हो या लोगों के लिए आराम सुनिश्चित करना या ईज ऑफ लिविंग, जो कि सरकार का बहुत फोकस एरिया रहा है, वो सुनिश्चित करने में कैसे मदद कर रही है?
3: जैसे आपने कहा कि करीबन 85 लाख करोड़ और उसके साथ मिला दें तो पिछले हफ्ते 30,000 करोड़ का और प्रोजेक्ट हुए हैं, तो 85 लाख 30,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट का रिव्यू हुआ है और ये करीबन 100 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा हैं। पहला वाला तो था इसकी कीमत कितना कॉस्ट था, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 3300 से ऊपर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं, ज्यादातर प्रोजेक्ट ही इस पे आपके एक्सपेडाइट हुए हैं। जितना भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे प्रगति में आई है, उनमें बहुत जल्दी उनकी गति पकड़ी है और ज्यादातर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इस पे जमीनी स्तर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब मीटिंग होती है जिसपे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और हर स्टेट गवर्नमेंट के, हर राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, तो देखिए एक मैसेजिंग होता है कैसे सबको साथ मिलकर काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, कोई भी अगर प्रोजेक्ट, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पावर का प्रोजेक्ट हो, कोई मंत्रालय का जब आता है, उनको ये जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। तो ये जो कल्चर धीरे धीरे, ये मेरा नहीं है, इस पे मुझे सोचना नहीं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रेक द साइलोज, कि आप जो अपने अपने हिस्से में बंधे रहते हो उससे थोड़ा बाहर जाइए। आप ये सोचिए कि खाली ये मेरा रोड का प्रोजेक्ट नहीं है, रेल का प्रोजेक्ट नहीं है, देश का प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है ये सोच, ये धीरे धीरे सबके जो अंडरस्टैंडिंग और जहन में ये आने लगा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कारण देर हो रहा है, तो आप सोचिए कि कोई सचिव जो है मुख्य सचिव को फोन करके बात करते हैं कि देखिए ये प्रगति में आ रहा है, ये प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए। जब आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी या कनेक्शन थोड़ा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाएगा, तो उसका असर ये भी होगा बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जो प्रगति में नहीं आ रहे, वहां भी अगर डिले हो रहा है तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर है, देखिए हर जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, अधिकारी हैं, जब उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट अगर कोई मेरा बहुत ज्यादा विलंब हो गया या कॉस्ट बढ़ गया तो प्रगति में चला जाएगा, प्रगति में गया तो फिर मुझे तो बहुत सारी सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो इसका असर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं उनको वो लोग भी कोशिश करते हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक से होता है, ताकि वो प्रोजेक्ट प्रगति में ना जाए। तो मुझे लगता है पूरा जो है वार कल्चर को प्रगति ने काफी बदलाव लाया है।
2: जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि ब्रेकिंग द साइलोस, ये साइलोस को ब्रेक करने में मदद करता है। आपको लगता है कि ये जो बैठकें होती हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज या संस्थागत रूप देने में भी मदद कर रहा है?
3: आपने ये बात तो एकदम सही कहा कि एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये स्ट्रेंथन करता है, इसको जब मजबूत करता है। इसका कारण मैं आपको इसलिए बताया कि जैसे जितना भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट को तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी कामयाब हो सकता है जब राज्य सरकार संपूर्ण तरह से उसके साथ काम करे। वो तभी हो पाएगा जब दोनों में सहयोगिता होगा या कोऑपरेशन होगा, तो फेडरल कोऑपरेशन के बिना ये तो काम हो नहीं सकता। दूसरा बात क्या है कि जब हर व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे रहकर बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे 50वां प्रगति हुई थी उसके बाद हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन शाह ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पर हम लोगों ने सवाल भी पूछा था कि जो है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कहा कि कोई भी राज्य सरकार या हर राज्य सरकार चाहता है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, और कोई सरकार नहीं चाहता उसका डिले हो, क्योंकि विलंब होगा, कॉस्ट ओवररन होगा तो सबको समस्या होता है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि हर सरकार चाहती है रोड बने, हाईवे बने, रेलवे लाइन डले, नया ट्रेन चले, अच्छे पावर प्रोजेक्ट आए ताकि वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके, और वो तभी कंप्लीट होगा जब केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर बात करेंगे। एक बात यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि कंप्लीटली एपोलिटिकल सिस्टम है, इस पे केंद्र में सरकार, राज्य में कौन सरकार है इसका कोई असर ही नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे हर राज्य के प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेडाइट किया गया है, कंप्लीट किया गया है।
2: जी दीपक जी, आपने बहुत विस्तार से प्रगति के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
0: सुर्खियों में

0: surgió me.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
1: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
2: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उसे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है, उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जल है तो कल है, वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा कामों का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे गाँव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है, इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड रिलेटेड, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की, कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार ये हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे सम अप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जी राम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक एनविसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
1: जी बिल्कुल, ये आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम, और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आप बता रही हैं चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स, और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 30 जून तक कि कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
2: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए, इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिक हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये वाइडर या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, हमारे एकेडमिशियंस हो, या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए, ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाएं। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे, और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं, ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इस अपेक्षा है।
1: रोहिणी जी, बेहतर व्यवस्था की सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हों, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
2: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं, और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं, तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है, जिससे कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी, सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन आए अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे,
1: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
2: बिल्कुल सही बात कही। यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यह ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8 से 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है, और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है। तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जीराम जी में अगर आप देखें सुनो जी, तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जीराम जी के लिए भारत सरकार ने किया है। तो इस 95,692 करोड़, दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड। तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन की एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
1: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को, रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
2: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम ये रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, जिन्हें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है, उनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी होती है। कई सारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स ने भी जो अध्ययन किए थे उसमें यह पता चला था कि कई बार ऐसी योजनाओं की वजह से कई बार किसान भाइयों को पीक एग्रीकल्चर सीजन जो बुआई कटाई का सीजन होता है उसमें कई बार एग्रीकल्चर के लिए जो है श्रमिक की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं यह बैलेंस करना बहुत जरूरी था कि एग्रीकल्चर को भी एडिक्वेट लेबर मिलता रहे और एट द सेम टाइम 125 दिन की गारंटी भी लोगों को दी जाए। इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए एक तरीके से यह 60 डेज का एक कैलिब्रेटेड पॉज जो है वह विकसित भारत जी राम जी में लाया गया है। यह 60 दिन जो है वह कंटिन्यूस 60 दिन नहीं है और ये राज्यों ने तय करना है कि उनके राज्य में कौन से समय पर बुआई कटाई एग्रीकल्चर का पीक सीजन होता है। इसमें भारत सरकार का बिल्कुल ये नहीं है, राज्य ही खुद तय करेंगे कौन से 60 दिन होंगे जबकि उनके किसानों को श्रमिकों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए ड्यूरिंग दो 60 डेज नॉट कंटिन्यूअस यह कार्य कुछ देर तक जो है पॉज किए जाएंगे और उसके बाद जो है लोग फिर से उस पर एम्प्लॉयमेंट अवेल कर सकते हैं। तो एक तरीके से यह एक बैलेंसिंग है बिटवीन हमारे किसानों का कल्याण और श्रमिकों का कल्याण।
1: तो रोहिणी जी, आप कहेंगी कि इस योजना के अंतर्गत जो अभी बदले हुए समय की मांग है उसके अनुसार बहुत कोऑर्डिनेशन है सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स और जो विलेज लेवल बॉडीज है, ग्राम सभा जैसे आप कह रही थी, उनके सभी स्तरों पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि ऑप्टिमम बेनिफिट मिले जो भी खर्च हो रहा है इस योजना पर उससे।
2: जी, आपने बिल्कुल सही कहा सोनू जी, जब विकसित ग्राम पंचायत होंगे तो यह एक बहुत डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है कि हमारे पंचायतें जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वह है पंचायत। तो पंचायत ही इसका प्लान बनाएंगी, परंतु पंचायत में प्लान बनाने के बाद यह प्लान जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे एग्रीगेट हो जाएगा और पीएम गति शक्ति जैसे बहुत अच्छे टूल्स के माध्यम से जब यह एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक प्लान बनेगा और नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के माध्यम से अगर हम और सभी स्टेट और सारे हितधारक अगर ये देख पाएंगे कि ऑन अ पर्टिकुलर डे एक दिन अगर हम ओपन करके हमारा डैशबोर्ड देखते हैं तो उसमें अगर पता चलेगा कि हर एक पंचायत में किस प्रकार के काम कौन से कैटेगरी के कहां तक आए हैं और उस पंचायत का विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो है वह कितने परसेंट तक एग्जीक्यूट हो गया है, तो इससे जो है फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही सुचारू रूप से हम पंचायतों को एक विकसित पंचायत की ओर बढ़ाने में सफल हो जाएंगे रादर देन डूइंग सम एडहॉक वर्क। मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत आ जाएगा, प्लान तरीके से हम कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है जैसे एसेट डुप्लीकेशन होता है कई बार एक ही काम को अलग अलग योजनाओं में दिखाकर उसमें प्लैरिटीज आ सकती हैं। तो हमने यह व्यवस्था की है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंश्योर करे कि कार्य बिल्कुल प्लान्ड पद्धति से हो और किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो है मिसयूज ना हो।
1: रोहिणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के मजबूत संस्थागत, प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय ढांचे के बारे में हमें बताने के लिए और ये बताने के लिए किस तरह से हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये सहायक होगा। बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद सोनू जी।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आज का सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: सुर्खियां सुर्खियों में
3: ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी कूड़ा पीछे भी, दाएं भी कूड़ा बाएं भी।

0: नहीं, गली में कूड़ा है, पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए।
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें। एक में गीला कूड़ा, जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: विटामिन ऐसी चीज है जिसे अगर खाया नहीं जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। विटामिनों की ये परिभाषा नोबल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्टेंस ग्योर्गी ने दी थी। उन्होंने विटामिन सी का पता लगाया था और जीवित कोशिकाओं में इसकी भूमिका की खोज की। विटामिन मानव शरीर के सामान्य विकास और कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनमें से कुछ विटामिन तो मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी कि शरीर की चयापचय क्रियाओं में कोएंजाइम की तरह से काम करते हैं। कोएंजाइम एक ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ हैं जो कुछ एंजाइम के साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। एंजाइमों के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन कोशिकाओं की झिल्ली के निर्माण और रखरखाव में मदद करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और चयापचय में भी ये सहायक हैं। जीवित कोशिकाओं में कई जरूरी प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका रहती है। जीव जंतुओं को अधिकतर विटामिन बाहर से प्राप्त होते हैं, ये उनके शरीर में नहीं बनते। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन डी के निर्माण में जीवों की कुछ भूमिका रहती है। विटामिन डी पाचन प्रणाली में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और विटामिन डी धूप में त्वचा द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ खास तरह के भोजन की आवश्यकता के बारे में विटामिनों की खोज से काफी पहले से पता था। 1970 के दशक में स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर जेम्स लिंड ने पता लगाया कि स्कर्वी नाम की बीमारी नींबू का रस पीने से दूर हो जाती है। एक डच चिकित्सक क्रिश्चियन इजिकमैन ने 1890 में बेरीबेरी बीमारी और कुछ खाद्य पदार्थों के बीच संबंध स्थापित किया। 1906 में ब्रिटेन के जैव रसायनज्ञ सर फ्रेडरिक गार्लिन हॉपकिंस ने पता लगाया कि जब जब चूहों को एक खास तरह की खुराक दी जाती है तो उन्हें जीवित रखने के लिए सहायक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। पोलैंड के रसायन शास्त्री कैसिमर फंक ने 1912 में सबसे पहले बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम के तरीके का पता लगाया। उन्होंने इसे विटामिन यानी विट प्लस अमीन नाम यानी अमीन नेसेसरी फॉर लाइफ दिया। लैटिन भाषा में जीवन को वाइटा कहा जाता है। आज भलीभांति इस बात का पता लग चुका है कि बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम करने वाला तत्व और कुछ नहीं बल्कि विटामिन B1 ये थायमिन है। थायमिन एक रासायनिक यौगिक है जिसमें अमाइनो समूह मौजूद रहता है। शीघ्र ही सहायक तत्व के स्थान पर विटामिन शब्द का उपयोग किया जाने लगा। बाद में ये भी पता चला कि विभिन्न विटामिनों के अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं। कुछ में तो अमीनो समूह जरा भी इस्तेमाल नहीं होता, मगर फंक द्वारा इजाद किया गया विटामिन शब्द इस्तेमाल होता रहा। सिर्फ विटामिन की अंग्रेजी स्पेलिंग में से आखिरी अक्षर मा हटा दिया गया। तरह तरह के भोजन में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले वर्ग में वे विटामिन आते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी। दूसरे वर्ग में वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे कि ए डी ई और के शामिल हैं। विटामिन ए या रेटिनल हमारी आंखों के दृश्य रंगों का आवश्यक घटक है। वसा में घुल सकने वाला ये विटामिन बीटा कैरोटीन नाम के पदार्थ से बनाया जाता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं मछली का तेल, कलेजे का मांस, दूध और इससे बनने वाले पदार्थ, फल तथा सब्जियां आदि। बीटा कैरोटीन जिससे कि विटामिन ए बनाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से मुंह तथा श्वास नलिका की झिल्ली में सूखापन आ जाता है। इसके अलावा अंधापन, शरीर के विकास में असामान्यता और संक्रमण जैसी बीमारियां भी इसकी कमी से हो सकती हैं। विटामिन ए से त्वचा तथा श्लेष्मा बनने वाले ऊतकों का निर्माण भी होता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील कई विटामिनों का समूह है। इसके अंतर्गत विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोबिन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनाकोल कोबेलामिन, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन एच और फॉलिक एसिड आते हैं। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोतों में अनाज, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालें, मटर और मांस शामिल हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। इस बीमारी से शरीर की परिधीय तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होने लगता है। इसी तरह की एक अन्य बीमारी जिसे वेट बेरी बेरी कहा जाता है, भोजन में प्रोटीन और विटामिन बी दोनों की कमी से शरीर के अंगों में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ जाता है। इससे अंगों में सूजन आ जाती है और बाद में दिल की बीमारी भी हो सकती है। विटामिन B2 कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के पाचन में सहायक होता है। ये खमीर, जिगर के मांस, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों और मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर की बढ़वार रुक जाती है। विटामिन B6 खमीर, जिगर, दूध, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालों और अनाज में पाया जाता है। अमीनो एसिड के चयापचय में इस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि इसकी कमी से कोई खास बीमारी होने का खतरा नहीं पाया जाता, मगर आहार में इसकी मात्रा न होने से केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में गड़बड़ी तथा त्वचा संबंधी सामान्य विकार पैदा हो सकते हैं। विटामिन B12 इसका निर्माण आम तौर पर आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। कलेजे के कच्चे मांस में यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से एक तरह की खून की कमी पैदा हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया नाम की इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाओं का विकास धीमा पड़ जाता है और मेरुदंड में विकार उत्पन्न होने की आशंका रहती है। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए का हिस्सा है, जो शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। यूनानी भाषा में पेंटोथिन का नाम है, रिपीट, यूनानी भाषा में पेंटोथिन का मतलब है चारों ओर से। इसके प्रमुख स्रोतों में जिगर, खमीर, अंडे, मांस, डेयरी उत्पाद, शीरा, फूलगोभी और फल आदि शामिल हैं। अगर जानवरों को पेंटोथेनिक एसिड से रहित खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं तो उनकी बढ़वार रुक जाती है, उनके बालों का रंग उड़ने लगता है और उनमें त्वचा संबंधी विकार भी पैदा हो जाते हैं। बायोटिन, विटामिन एच, खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में भी इसका निर्माण होता है। फैटी एसिड्स के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन एच को एंटी एज फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड पत्तेदार सब्जियों, खमीर, जिगर, गुर्दे और ताजे फलों में पाया जाता है। इसे फॉलिक एसिड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लैटिन भाषा में पत्तेदार सब्जी को फोलियम कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से अस्थि मज्जा में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे परिपक्व रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती। पर्निशियस एनीमिया नाम की बीमारी में रोगी को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दिए जाते हैं। नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की रिपीट नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की बीमारी के उपचार में किया जाता है। इस बीमारी में अमाशय और आंत संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं तथा खाल फटने व मानसिक गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विटामिन सी की आवश्यकता कई शारीरिक प्रक्रियाओं में पड़ती है, खास तौर पर स्वस्थ योजक ऊतकों के लिए ये बेहद जरूरी है। विटामिन सी सब्जियों और ताजे फलों, विशेष रूप से नींबू प्रजाति के फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इस बीमारी में कमजोरी, जोड़ों में दर्द आदि की शिकायत हो जाती है और बाद में मसूड़ों तथा अन्य अंगों से रक्तस्राव आरंभ हो जाता है। विटामिन डी स्टेरॉल्स नाम के अनेक मिले जुले यौगिकों के समूह का नाम है, मगर मुख्य घटक हैं कोलिकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कैल्शियम और हड्डियों का निर्माण करने वाले खनिजों को जमा करने के काम आता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। बच्चों को होने वाली इस बीमारी का असर हड्डियों पर पड़ता है। विटामिन डी भोजन में तो मौजूद रहता ही है, धूप में हमारी त्वचा भी इसका निर्माण करती है। विटामिन ई एक तरह के अनेक यौगिकों के समूह का नाम है। इन्हें टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ये यौगिक जैव एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करते हैं, यानी ये फैटी एसिड्स में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। इस तरह ये विटामिन फैटी एसिड्स को परऑक्साइड्स और रेडिकल से बचाता है। विटामिन ई चोकर वाले आटे, गेहूं के अंकुर, जिगर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। टोकोफेरॉल्स का व्यावसायिक इस्तेमाल वसा, खास तौर पर वनस्पति तेलों में बनाने में भी किया जाता है। विटामिन के पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। आंतों में कुछ लाभप्रद बैक्टीरिया भी इसका निर्माण करते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और इसकी कमी से खून का थक्का आसानी से नहीं जम पाता। विटामिन के अंतर्गत नैप्थेक्विनोन यौगिकों का एक समूह भी आता है। रक्त को जमाने में काम आने वाले रसायनों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिनों की आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है। सामान्य संतुलित भोजन में आदमी की जरूरत के तमाम विटामिन मौजूद रहते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग संतुलित भोजन नहीं खाते, जबकि बहुत से अन्य लोग संतुलित भोजन खाने की स्थिति में नहीं होते।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी सन 1769 और 1799 के बीच 30 साल की अवधि में ब्रिटिश सेना और हैदर अली तथा उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के दौरान अंग्रेजों को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय तकनीकों रॉकेट निर्माण और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी मिली। बाद में इन दोनों ही भारतीय तकनीकों का पहले इंग्लैंड में और तदनंतर यूरोप के अन्य देशों में तेजी से विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस तरह प्लास्टिक सर्जरी की विद्या सीखी, ये एक दिलचस्प दास्तान है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद की ही घटना है। अंग्रेजों की खिदमत करने वाला कवसाजी नाम का एक मराठा गाड़ीवान और 4 तिलंगे मैसूर राज की सीमा में दाखिल हुए तो टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ नाक कान सभी कुछ काट दिए। फिर उन्हें अंग्रेज कमांडर के पास वापस भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद की बात है, वहां अंग्रेज कमांडर एक भारतीय व्यापारी से कोई और सौदा तय कर रहा था तो उसने देखा कि व्यापारी की नाक कुछ अजीब तरह की है और उसके ललाट पर जख्म के निशान भी हैं। कमांडर के पूछने पर व्यापारी ने बताया कि परस्त्री गमन के अपराध के दंड स्वरूप उसकी नाक कान काट दी गई थी और कुम्हार जाति के एक मराठा वैद्य से उसने नाक कान बनवा लिया था। अंग्रेज कमांडर ने उस वैद्य को बुला लिया और उससे कवसाजी तथा 4 तिलंगों की नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया करने को कहा। शल्यक्रिया पुणे के पास एक स्थान पर हुई। उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर थॉमस क्रूसो

परत तैयार की गई। फिर ललाट से उसी आकार की त्वचा काटी गई, पर आंखों के बीच थोड़ा हिस्सा रक्त संचार के लिए ललाट से जुड़ा रहने दिया गया। उसके बाद नासा छिद्रों के लिए ठीक से स्थान बनाकर नाक की चतुर्दिक सीमा की त्वचा में चीरा लगाया गया। फिर ललाट से काटी गई त्वचा को आधा मोड़कर नीचे नाक पर लाया गया और चीरे से फंसा दिया गया। फिर कपड़े की पट्टियों पर भीगे कत्थे का लेप लगाकर उसकी चार पांच परतें त्वचा की जोड़ पर लगा दी गईं। जख्म को भरने के लिए कत्थे के उस सीमेंट के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। चार दिन बाद उन्हें हटाकर घी में डुबोई हुई पट्टियां जख्म पर लगाई गईं। 20वें दिन ललाट से जुड़ी हुई त्वचा को काट दिया गया। इस शल्यक्रिया के बाद मरीज को 5-6 दिन तक पीठ के बल बैठाया गया। नासा छिद्र पर्याप्त खुले रहे, इसीलिए 10वें दिन उसमें मुलायम कपड़े के टुकड़े रखे गए। अंत में इस शल्यक्रिया के विवरण में एक टिप्पणी है, नाक की ये प्लास्टिक शल्यक्रिया हमेशा सफल रही है। ये बनावटी नाक मजबूत होती है और काफी हद तक कुदरती नाक की तरह दिखाई देती है। कुछ अरसे बाद ललाट का दाग भी काफी हद तक मिट गया है। भारत में ही की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी का ये विवरण लंदन में प्रकाशित हुआ तो इसे पढ़कर वहां के अनेक सर्जन चकित रह गए। उस सचित्र विवरण ने 30 साल के तरुण सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेन कारपूर को सबसे अधिक प्रभावित किया। उससे इस प्रकार की शल्यक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। फिर उसने साहस करके लंदन में 23 अक्टूबर 1814 को नासिक संस्थान की ठीक वैसी ही शल्यक्रिया की जैसी भारत में कवसाजी और तिलंगों पर की गई थी। उसके साथ ही यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का युग शुरू हुआ। लंदन में नाक संस्थान की वह पहली शल्यक्रिया करने में कारपुए को कुल 37 मिनट का समय लगा। उस पहली सफलता के बाद कारपुए ने जल्दी ही नाक संस्थान की दूसरी शल्यक्रिया की भी, जिससे उसे खूब प्रसिद्धि मिली। भारतीय नाक यूरोप में मशहूर हो गई। समीप के अंग से त्वचा लेकर अंग भंग के स्थान पर जोड़ी जाती है तो उस विधि को आज भी भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। कारपुए ने नासिका संधान के अपने अनुभवों के आधार पर सन 1816 में एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। उससे प्रभावित होकर जर्मन सर्जन ग्रोएफ ने हाथ की त्वचा लेकर नासिका संधान की प्लास्टिक शल्यक्रिया शुरू कर दी थी। इस जानकारी से सहज स्पष्ट हो जाता है कि आज बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाला संश्लेषित प्लास्टिक पदार्थ से प्लास्टिक सर्जरी का कोई सारोकार नहीं है। प्लास्टिक शब्द यूनानी भाषा के प्लास्टिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सांचा बनाना या आकार देना। प्लास्टिक शल्यक्रिया में शरीर के खोए हुए अंग को पुनः स्थापित किया जाता है अथवा विरूपता या विकृत अंग को दुरुस्त किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक शल्यक्रिया एक बहुत पुरानी तकनीक है, परंतु तेजी से इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। प्राचीन यूरोप से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। होमर ने अपने महाकाव्यों में युद्ध जनित अनेक जख्मों और उनके उपचारों की जानकारी भी दी है, परंतु अंग भंग कहकर प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी जिक्र नहीं है। रोमन चिकित्सक सेल्सस होंठ, कान और नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया उल्लेख करता है, मगर लगता है कि स्वयं उसने कोई शल्यक्रिया नहीं की थी। रोमन साम्राज्य के अवसान के बाद फिर हमें मध्ययुग तथा यूरोप से प्लास्टिक शल्यक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी के उल्लेख 15वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। दरअसल कॉफ्रे के पहले ही नासिका संधान की भारतीय विधि की जानकारी दक्षिण यूरोप के देशों में पहुंच चुकी थी। सिसली द्वीप के सर्जन ब्रांका ने 1442 ईस्वी में नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। उस शल्यक्रिया में उसने गाल की त्वचा का उपयोग किया था। बाद में ब्रांका के पुत्र एंटोनियो ने पिता के कार्य को जारी रखा। हाथ से त्वचा लेकर नासिका संधान की शल्यक्रिया करने वाला एंटोनियो यूरोप का पहला सर्जन था। पिता पुत्र ब्रांका के बाद 16वीं सदी के आरंभ में इटली के

यानी परिवार ने प्लास्टिक सर्जरी का काम किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक जास्पारो ताग्लियाकोजी ने नाक संधान के सर्जन के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। उसने हाथ से त्वचा लेकर नाक संधान की शल्यक्रियाएं की। उसने कर्णबंध और ओष्ठबंध की शल्यक्रियाएं भी की। ताग्लियाकोजी ने 1597 ईस्वी की कागड़ा की प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा के बारे में जानकारी दी है। पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में कांगड़ा के बिधा नामक एक वैद्य ने नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। ईसा की 7वीं या 8वीं सदी के प्राख्यात चिकित्सक बाणभट्ट के ग्रंथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी प्लास्टिक शल्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु सबसे प्राचीन जिस भारतीय ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है वो है सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान के दो महान विश्वकोश हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसमें चरक संहिता अधिक प्रसिद्ध है और अधिक प्राचीन भी है। सुश्रुत संहिता की रचना कोई 2000 साल पहले हुई। चरक संहिता प्रमुख रूप से औषधि विज्ञान का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में मुख्यतः शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी दी गई है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, उसे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ भी माना जाता है। हाथ से त्वचा लेकर ताग्लियाकोजी ने नासिका संबंध की जिस विधि का विकास किया था वो अब इटालवी विधि के नाम से जानी जाती है। ताग्लियाकोजी ने चिकित्सा विज्ञान की अमूल्य सेवा की थी, फिर भी उसे ईसाई चर्च का कोपभाजन बनना पड़ा। उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और उसके शव को चर्च के कब्रिस्तान से निकालकर दूसरे सामान्य स्थान पर गड़वा दिया गया। मगर बोलोना के नागरिकों के दिल में अपने इस देशवासी के लिए अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने ताग्लियाकोजी की स्मृति में एक मूर्ति स्मारक खड़ा किया। उस मूर्ति के एक हाथ में नाग है। ताग्लियाकोजी के बाद उसके शिष्य प्लास्टिक शल्यक्रियाएं करते रहे।

0: सभी श्रोताओं को मंजू
1: और महिपाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे हैजा बीमारी पर।
0: हैजा रोग वीबीओ कोलेरी बैक्टीरिया से फैलता है
1: और इसका असर आपकी आंतों में होता है, जिससे उल्टी दस्त लग जाते हैं।
0: अभी कल की ही तो बात है, मेरी सहेली सुनीता अपने बच्चों को लेकर कल इंडिया गेट पर घूमने गई थी, मगर वहाँ पर उसने न जाने क्या खा लिया कि वो और उसके बच्चे सभी बीमार हो गए, उनको अस्पताल तक जाना पड़ा।
1: आप ठीक कह रही है, आजकल गर्मियों के मौसम में सभी बच्चों का दिल ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कटे हुए फलों को खाने का करता है,
0: और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। गंदे पानी का सेवन और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से यह बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है।
1: हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया मनुष्य के मल में पाए जाते हैं, और जब मक्खियाँ उस मल पर बैठती हैं तो उनके पैरों की गद्दियों में ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं।
0: ये मक्खियाँ खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं, और जब कोई इन वस्तुओं को खाता है तो यह उसकी आंत में पहुंचकर बीमारी पैदा करती हैं।
1: देखिए, यह बीमारी खुले में फल, खाद्य पदार्थ व अन्य प्रकार की खाने की वस्तुओं के सेवन से फैलती है। दूषित पानी ना पिएं, खुली जगह पर मल त्याग ना करें, और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का प्रयास करें।
0: इस रोग में जबरदस्त दस्त होने के कारण शरीर के पानी के साथ ही द्रव व लवण भी निकल जाते हैं। इनकी पूर्ति शरीर में फिर से करना जरूरी होता है। यदि दो दिन तक ऐसी ही स्थिति व इलाज में कोताही की जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है।
1: तो मंजू जी, सबसे पहले आप तो हमारे श्रोताओं को यह बताओ कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, और श्रोताओं को यह कैसे पता चलेगा कि स्वस्थ व्यक्ति को हैजा हुआ है या नहीं।
0: हैजा के बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और जब यह पर्याप्त संख्या में हो जाते हैं तो वहाँ पर विष पैदा करते हैं। यही विष रोग का कारण बनता है। इसमें जबरदस्त उल्टियाँ व दस्त होते हैं। उल्टी में पानी बहुत अधिक होता है और उल्टी के साथ पतले दस्त लग जाते हैं, जिससे कि शरीर का सारा पानी दस्तों के कारण शरीर से निकल जाता है।
1: इस कारण तो शरीर कमजोर हो जाता होगा और मरीज की हालत तो बहुत बुरी हो जाती होगी।
0: आपने सही कहा, इस बीमारी में बुखार नहीं आता, बस रोगी निढाल, थका थका सा, कमजोर व शक्तिहीन हो जाता है। प्यास जल्दी लगती है, पल्स मंद पड़ जाती है, यूरिन कम आता है व बेहोशी सी महसूस होने लगती है।
1: तो फिर मंजू, हमारे श्रोताओं को क्या करना होगा? क्या इसका कोई वैक्सीन भी बना है? अगर हाँ तो जरा इसके बारे में तो बताओ।
0: देखिए महिपाल, यह एंटीबायोटिक दवाई बीमारी को फैलने से रोकती है, मगर इसका एक वैक्सीन भी बना है जो कि 6 माह तक ही क्रियाशील रहता है।
1: तो मंजू, सबसे पहले डॉक्टर से इसका इलाज लेना चाहिए, और जब तक मरीज को बार बार नमक शक्कर का घोल बनाकर पिलाना चाहिए, जिसे हम ORS का घोल भी कहते हैं। यह किसी भी डिस्पेंसरी व अस्पताल में मुफ्त मिल जाता है। इसे पिलाकर भी रोगी के शरीर में लवणों की पूर्ति की जाती है।
0: हैजा से बचने के लिए खुले में बिकने वाली वस्तुओं को ना खाएं और हमेशा अपना खाना ढककर रखें।
1: दोस्तों, उल्टी दस्त लगने पर तुरंत अपने नजदीक के अस्पताल या नर्सिंग होम में इसका इलाज करवाएं।
0: और हाँ, जहाँ भी जाए साफ सुथरा खाना ही खाएं।
1: मंजू, हैजा बीमारी पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, चलिए सुनते हैं उनके विचार।
2: मेरा नाम शालिनी है और मैं विवेक विहार से हूँ। हैजा फैलने का मुख्य कारण यह है कि हम जब साफ सुथरा खाना ना खाएं और बाहर के कटे हुए फल जिन पे मक्खियाँ बैठती हैं उनको खाने से जो कीटाणु आते हैं उन सब की वजह से हैजा फैलता है।
3: मेरा नाम अमी है। सड़ी गली चीजें अगर कहीं खाते हैं या उससे हैजा हो जाता है, या कहीं गंदगी फैली होती है वहाँ अगर आप रहते हैं, या उस जगह से भी हैजा होता है, मतलब जहाँ भी गंदगी होती है बस वहाँ से मतलब हैजा हो जाता है बस ये।
4: मेरा नाम सिल्वी है, मैं साकेत में रहती हूँ। हैजा मेली खुले में खाना रखने से और उसको खाने से होता है, तो जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखें और खुला खाना को हमेशा ढक के रखें।
5: मेरा नाम निर्णय है, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ। हैजा बीमारी का मुख्य स्रोत गंदगी होता है, और जो मक्खियाँ जो भी बाहर खाने से वो हैजा बीमारी फैल जाता है।
6: I'm Madhu, I live in Kutub Enclave, and as far as my knowledge goes, cholera is caused by the pathogen called Vibrio cholerae. It's a waterborne disease, and we have to be careful about the kind of water we drink. In our home, we've got the 0B fitted onto the drinking water tap, so that we are able to drink filtered water.
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हैजा बीमारी पर।
1: मंजू, इस विषय पर आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर संजीत, जो कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, और उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी गीता जी।
7: डॉक्टर संजीत आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बीमारी बच्चों को ज्यादा होती है, बच्चे शिकार हो जाते हैं बिकॉज बच्चों को पता नहीं होता कि खुला सामान जो मार्केट में बिक रहा है उसको नहीं खाना है, तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे?
8: देखिए, एक तो है कि ये जो बीमारी है ये मेनली अनहाइजीनिक और इनसैनिटेशन कंडीशन में ज्यादातर ये फैलती है और पेरेंट्स इसके सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो इनको सिखा सकते हैं कि कैसे सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। सिंपल एक्सरसाइजेज लाइक वॉशिंग ऑफ द हैंड्स, हाथ धोने का, कैन रिड्यूस दिस एपिडेमिक बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि बाय सिंपल मैकेनिज्म्स, नो कॉस्ट, जस्ट बाय अवेयरनेस और बाय बिहेवियरल चेंज हम इसे कॉम्बैट कर सकते हैं।
7: इसका मतलब संजीत जी कि बच्चों को जो माता पिता हैं वो ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं कि वो खाना खाने से पहले हाथ धोएं,
8: हाँ,
7: बाजार से खुला खाना न खाएं, ज्यादातर जहां मक्खी वगैरह हो उस हाँ जगह को साफ रखना चाहिए, हाँ भोजन ढक के रखना चाहिए
8: और गर्म भोजन खाना चाहिए, जहां आप कट फ्रूट्स और जहां ज्यादातर फ्लाइज बैठते हैं वहां से ये ज्यादा फैलती है। ये बीमारी इज ओनली ट्रांसमिटेड इन मैन, इट इज मैन इज द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
7: डॉक्टर साहब, एडल्ट्स भी इसका शिकार हो जाते हैं, ये मेरे को लगता है कि टोटल इग्नोरेंस है।
8: हाँ जी, और ये एडल्ट्स में ज्यादा प्रेवलेंट भी नहीं है क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी ज्यादा होता है बच्चों से, बट ये एडल्ट्स में भी होता है क्योंकि एडल्ट्स ज्यादातर आजकल बाहर खाना भी पसंद करते हैं और कट फ्रूट्स और ज्यादातर अनकुक फूड या कुक्ड फूड जो कोल्ड हो गया है और उसपे मक्खी बैठा है उसमें भी ये ट्रांसमिट होता है।
7: और बीमारी का अगर सही तरीके से उसकी प्रिवेंशन के बारे में नहीं पता है कि इससे कैसे बच सकते हैं और इलाज के बारे में नहीं पता है तो ये घातक भी हो सकती है।
8: हाँ जी, इसका मेन कारण है कि इससे बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है, इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं, इसके कारण शॉक होता है और शॉक के कारण एक आदमी मर भी जा सकता है। और ये एक बहुत लिमिटेड टाइम विद इन 24 आवर्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से डेथ देखा गया है। आजकल हैजा घट गया है पर ये एक एंडेमिक साइकिल होता है और ये साइकिल लास्ट साइकिल हमने जब देखा था वो 1967 में देखा था और ये इंडोनेशिया में हुआ था, पर उसके बाद स्पोराडिक केसेस हर टाइम देखा गया है। भारत में बहुत ज्यादा है अभी भी और इसका प्रिवेंशन के लिए अभी वैक्सीन्स भी हैं और बच्चों में ज्यादातर जब मेले होते हैं या रथ यात्रा होता है तो मास वैक्सीनेशन होता है, पर ये एक ज्यादातर इम्यूनिटी उसी टाइम के लिए ही देती है, बट टू हैव टू वैक्सीनेशंस अपार्ट इन अ मंथ्स टाइम गिव्स फुल इम्यूनिटी, पर एडल्ट्स में एक ही बार वैक्सीन की प्रयोग से कॉलेरा कॉम्बैट किया जा सकता है।
7: तो ये बच्चे को इसका वैक्सीनेशन कब लगता है?
8: देखिए, जैसे दूसरा वैक्सीन है वैसे इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है।
7: अच्छा,
8: ये एज इन वेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे मान लो आप जा रहे हैं कि तीर्थ में और जहां बहुत लोग जा रहे हैं तो वैसे आप 1 month अहेड आप एक वैक्सीन ले सकते हैं एंड देन जस्ट बिफोर यू लीव यू कैन टेक अनदर वैक्सीन।
7: तो ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं?
8: हाँ, एडल्ट्स भी ले सकते हैं, पर एडल्ट्स में 2 doses की जरूरत नहीं होता है क्योंकि उनका प्रीवियसली कुछ इम्यूनिटी डेवलप्ड हो रहता है, तो इसमें एक ही डोज ऑफ वैक्सीन इज गुड एनफ।
7: तो ये तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी बाहर जा रहे हैं या जहां पे बहुत सारे लोग हों तो अपने बचाव के लिए 1 महीना पहले वैक्सीन ले सकते हैं इसकी, तो हम कुछ हद तक बीमारी से बच जाते हैं। तो डॉक्टर संजीत, ये जो प्रिवेंशन है वो तो इट्स ऑफकोर्स बेटर देन क्योर, पर आप थोड़े से सिम्टम्स बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि जैसे बच्चा अगर हैजे का शिकार हो जाता है तो माता पिता को एकदम क्या लक्षण से पता चलता है कि ये हैजा का शिकार हुआ है।
8: इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं और उल्टियां भी होते हैं, और ये जो दस्त होता है ये बहुत वाटरी होता है और बॉडी वेट का जितना वजन होता है उसका ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है इसमें। और ये जो दस्त होता है इसको हम लोग राइस वाटर स्टूल बोलते हैं, क्योंकि वो आप रिलेट कर सकते हैं जब आप राइस बनाते हैं तो उसका
7: उसकी माड़ का जो कलर होता है वैसे दस्त का कलर होता है।
8: और इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है सॉल्ट्स का, ये लीड करता है जनरली हाइपो वॉल्यूमिक शॉक को जिससे आदमी का डेथ भी हो सकता है।
7: ये शॉक इंसान को या बच्चे को लगता है कि जैसे ही बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई है और उसको बहुत ही कमजोरी सी महसूस होती है।
8: हाँ, कमजोरी तो महसूस होती है, पर इसमें सबसे ज्यादा पहले देखा जाता है कि मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं।
7: हाँ, हाँ.
8: और क्रैम्प्स के बाद आपको आपका जो पल्स है
7: हाँ,
8: वो बहुत थ्रेडी हो जाता है।
7: थ्रेडी मतलब?
8: थ्रेडी मीन्स आप फील करना मुश्किल हो जाता है। और कई जगहों में तो आप फील भी नहीं कर सकते हैं। और आपका जो स्किन का टेक्सचर भी है वो भी लॉस होता है इसमें।
7: पीलापन आ जाता है स्किन?
8: नहीं, पीलापन तो नहीं आता है इसमें, पर इसमें ज्यादातर जब क्रैम्प्स होता है तो आप फेंट भी कर सकते हैं, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है।
7: तो इसका मतलब इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और ORS घोल भी पिलाते रहने की जरूरत है घर पे।
8: वो बहुत जरूरी है ORS घोल पिलाने में, जितना जल्दी हो डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉस है हम तो घोल जो पिलाते हैं उससे तो बहुत ज्यादा है, तो इंट्रावीनसली भी फ्लूइड्स देके इसको बैलेंस मेंटेन करना होता है।
7: और कितने दिन का ये इलाज होता है? 2 दिन या 3 दिन या ज्यादा समय भी लग जाता है इसको ठीक होने में?
8: ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, जनरली 4 to 6 days में आप सही हो जाते हैं
7: अगर आप समय पे डॉक्टर
8: के पास पहुंचे। एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ता है, पर देर आर 2 schools of thought वेदर टू गिव एंटीबायोटिक्स और वेदर नॉट टू गिव एंटीबायोटिक्स, पर क्योंकि खाली फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी वेदर इट कैन बी टेकन केयर ऑफ,
7: तो वो तो उस समय डॉक्टर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। पर ये तो पक्का है कि जैसे ही उल्टी और दस्त हो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है।
8: और पेशेंट को आइसोलेट करना का भी बहुत
7: अलग से उसको रखने की जरूरत होती है। इसका क्यों ऐसे है?
8: क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है मैन टू मैन, सो इट इज बेटर टू आइसोलेट देम फॉर अ व्हाइल। तो उससे क्या होता है कि दी स्प्रेड यू आर एबल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज।
7: बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देते हैं इसके ऊपर?
8: एक है कि खाना खाने के पहले हाथ धो के खाना खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल के पीना चाहिए, और ज्यादातर बाहर के कटे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाना नहीं चाहिए, उसको घर लाके धो के खाना चाहिए। ये मेरा सुझाव होगा।
1: तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मंजू और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
9: आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम शाहबाद की आवाज में।
10: धन्यवाद शाहिल जी।
9: तो सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा दिवस के ऊपर, तो आपके जीवन में शिक्षक या फिर शिक्षा दिवस क्या महत्व रखता है?
10: शाहिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज अगर मैं शिक्षक हूँ तो मुझे भी किसी शिक्षक ने मुझे शिक्षक बनाया है। मैं भी एक टाइम में एक विद्यार्थी रह चुका हूँ और आज मैं एक अध्यापक हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो चीजें जो मेरा जीवन का अनुभव है या जो चीजें मैंने सीखी हैं अपने गुरुओं से, वो मैं अपने बच्चों को बता सकूं या उनको वो अपना अनुभव शेयर कर सकूं। शिक्षा एक एक मतलब त्रिवेणी की तरह है, तीन पैरों पे खड़ी हुई एक इमारत है जिसमें एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, एक पढ़ने लिखने की सामग्री होती है जिसको आप पढ़ते हो। शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन देता है कि किस तरीके से आप इस पथ पे चल करके, इस रास्ते पे चल करके अपने जीवन के उद्देश्य को अचीव करो या अपने गोल को जो है प्राप्त कर लो। तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन के अंदर एक शिक्षक का जो है, चाहे वो अर्ली एज में माँ बाप बच्चे के शिक्षक हैं, चाहे वो कम्युनिटी के लोग हमारे शिक्षक हैं, हर एक व्यक्ति जिससे आप सीखते हो वो आपका शिक्षक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा रहता है हमारे पूरे जीवन में, वो एक स्कूल टीचर का रहता है। मैंने कल अपने गुरु को फोन किया जो मुझे संस्कृत पढ़ाते थे, उसके बाद मैंने एक दो मेरे और जो बहुत करीब हैं, जो आज भी मेरे संपर्क में रहते हैं, जो शिक्षक मेरे, जिनसे मैं टाइम टू टाइम गाइडलाइन लेता रहता हूं कि आगे मैं क्या करूं। तो हम अपने गुरु को अपने साथ जोड़े रखेंगे तो अपना हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं और अच्छा दिन ब दिन निखरता जाएगा।
9: तो जैसे कि शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण बच्चे को पढ़ाने वाले साधारण टीचर और स्पेशल टीचर। तो जैसे कि आप एक स्पेशल टीचर हैं जो स्पेशल बच्चों को ट्रेंड करते हैं, पढ़ाते हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको स्पेशल बच्चों को ट्रेंड करते या फिर पढ़ाते समय?
10: बहुत अच्छी बात आपने कही कि दो तरह के अध्यापक होते हैं, और आज जो है हमारे विश्व भर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ कमियां हैं, ये कह लो कि कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं जिनकी वजह से इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, कि कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं हमारे समाज में, जैसे कि चाहे वो लोगों का अवेयर ना होना, बहुत ज्यादा कम उम्र में शादी कर देना, पहले बाल विवाह होते थे, कहीं ना कहीं बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी आज जो है एक और नई चीज है कि लोग 35 प्लस होकर के शादियां कर रहे हैं, वो भी एक चैलेंज है। दवाई है, नशा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसे एबनॉर्मल बच्चों को जन्म दे रही है। तो आपने कहा कि आप स्पेशल अध्यापक हैं तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले जब मैं इस विशेष शिक्षा के अंदर आया था तो मुझे लगा था कि यार क्या मैं इसमें कभी कुछ कर पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर धैर्य, संयम और आप ये कह लो कि बहुत ज्यादा लगन अपने अंदर भी होनी चाहिए और बच्चे में भी वो लगन जगाने की कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं इस बच्चे को करवा पाऊंगा। मैं अर्ली एज के बच्चों के साथ काम करता हूँ, जैसे कि एक ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है, वो ऑटिज्म के अंदर जो बच्चा है, स्वालीनता जिसको कहते हैं, कि बच्चा अपने अंदर लीन रहता है, कि वो समाज के अंदर नहीं आता है, समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो अपने अंदर रहता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, कि और जो है बोलना उसका बहुत लिमिटेड होता है, कि वो कम्युनिकेशन बहुत कम करता है, बातचीत का बहुत कम करता है। तो ऑटिज्म के ये लक्षण हैं काफी सारे जो हम किसी दिन डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं जिन छोटे बच्चों के साथ काम करता हूँ वहां पे मेरा काम रहता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को देखना। विकास तभी होगा जब हम एक बच्चे को उस तरह का माहौल देंगे। आप चुनौतियों की बात करें, चुनौती तो हम एक साधारण बच्चे को पढ़ाते हैं तो भी आती है, क्योंकि बच्चा एक एज के बाद जो है पर्सन पूछने की जो तादाद, वो पर्सन पूछने का जो उसका दायरा है वो बढ़ता जाता है, कि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होगा, जितना समझदार बच्चा होगा वो आपको हर एक चीज के बारे में पूछेगा कि माइक क्या है, इससे कैसे बात करते हैं, कैसे बनता है, ये है ये, तो चैलेंज आपको आता है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एक बच्चा मैंने मेट्रो में देखा, अपनी मम्मी को बोल रहा है, पॉइंट कर रहा है, ये नॉर्मल बच्चा, साधारण जिसको आप कह रहे हो कि किसी तरह की कोई भी उसके अंदर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांगता नहीं थी, तो वो बच्चा जो है एक मेट्रो के अंदर इतना चंचल और इतना शातिर बच्चा, जिसको हम कहते हैं इतना इंटेलिजेंट बच्चा, कि वो हर एक चीज के बारे में पूछ रहा है, और उसकी मम्मी पापा इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने जिस तरीके से बात किया तो मैंने उनको रोका कि नहीं, ये आपकी कम जानकारी है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, बल्कि बच्चा आपका बिल्कुल सही है, आप इसकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हो, उनके जो प्रश्नों के उत्तर है वो नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आप परेशान होकर के आपने इस तरह का व्यवहार किया, ये बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। अब आप स्पेशल बच्चों की बात करें तो अभी हमारा जो रीड इंडिया है वो एक प्रोजेक्ट लेके आया है, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो मुझे जब इस प्रोजेक्ट में लाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पे गांव के अंदर उस स्तर पे काम कर रहे हैं जहां पे लोगों की पहुंच बहुत कम है। बहुत अच्छा आपने बोला कि बहुत कम है, कम तो होता है कि कोई चीज नहीं है, मतलब बहुत कम लिमिटेड, यहाँ पे बिल्कुल वो सोर्सेज है ही नहीं, बल्कि जो हमारे सेंटर है वहाँ पे ऑलरेडी वो एनसीआर के टच में है। लेकिन फिर भी जब मैं लोगों घरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके उनसे बात करता हूँ, जब मैं उनके घरों को देखता हूँ, उनके माँ बाप से बात करते, तो हमें ये लगता है कि इस एनसीआर के अंदर रह करके भी माँ बाप जो है कहीं ना कहीं आज जो हम मानते हैं कि ग्रामीण स्तर में क्षेत्र में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वही हालात है कि एक किसी विशेष गांव या शहर को हम ये नहीं कहेंगे वो पढ़े लिखे हैं वहां पढ़े नहीं, लेकिन जहाँ पे जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, चाहे वो शहर है चाहे गांव है, एक जैसा ही हाल है। तो मैं जब द्वारका, गुड़गांव, नोएडा के गांव में जाता हूँ, जब मुझे बोला जाता है कि हम आज मोबिलाइज करने जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोगों को सच्ची में नहीं पता है। बच्चे हैं उनके पास, लेकिन उनकी अपने बच्चों के प्रति काफी माँ बाप जो हमें पॉजिटिव मिलते हैं कि अच्छा सोचते हैं कि हाँ ये कोशिश कर रहे हैं, काफी माँ बाप जो है वो कोशिश ही नहीं करते हैं या फिर उनको कोशिश करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है, क्योंकि हर जगह पे विशेष शिक्षक अवेलेबल नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है और हो सकता है कि टाइम लगे उसके अंदर, बट हमारे एनजीओ ने जो अभी ये पीडब्ल्यूडी का अभी शुरू किया हमने, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो हम चाहते हैं कि हम तीनों सेंटरों के अंदर हर एक डोर टू डोर जाकर के लोगों को अवेयर करें, उनको हमारे सेंटर तक लेके आए, चाहे वो किसी भी तरह से हमें उसको उनको बुलाना पड़े कि चाहे आप लेकर के आओ बैठो या फिर हमें काम करने का एक मौका दो। तो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, हम आप भी देखते होंगे, आप एक विद्यार्थी हैं, आप देखते हो ज्योति एक लड़की है और उसके साथ दो शाइना एक गुड़िया है और एक और दो तीन लड़कियां और भी हैं, तो आप देखते होंगे वो बच्चे भी आपके साथ बैठ के कंप्यूटर सीख रहे हैं, वो बच्चे भी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, वो बच्चे भी एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे भी ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाह रहे हैं, सब चीजें वो बच्चे कर रहे हैं। तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं? चैलेंज आते हैं, बच्चे को लाना सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके माँ बाप को ये समझा पाना कि नहीं ये कोई रोग या किसी पिछले जन्मों का कर्म पाप नहीं है, ये एक हमारी ही गलतियां हैं जो कहीं कहीं हमसे हुई है, चाहे वो बच्चे के जन्म से पहले है, चाहे वो बच्चे के जन्म के दौरान है या जन्म के बाद है, तो ये गलतियां हमारी हैं, लेकिन हम उनके अंदर दवाइयों से सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हम एक थेरेपी एक स्कूल सेटअप के अंदर डाल करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और कई सारी टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो तो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्तर का है, क्या बच्चा डिसेबिलिटियों के साथ आ रहा है, क्या क्या वो इश्यूज अपने साथ लेके आ रहा है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी गोल सेट करते हैं, फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं।
9: तो जैसे कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अगर इस प्रकार की सिचुएशन मेरी क्लास में किसी बच्चे को है कि वो पढ़ने में असक्षम है, तो मैं किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकता हूँ?
10: आप कह रहे हो कि पढ़ने लिखने में बच्चे को समस्या आ रही है, वो समझ नहीं पाता है, मैं उसको कैसे पहचानूं? तो पहली बात तो ये है कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठी को एक सहयोग दे सकता है, लेकिन आपको लग रहा है तो आप, मैं मानता हूं कि आप पढ़ने, अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो उसमें होता है कि आप लिखना पढ़ना गणित को समझना या भाषा के अंदर किसी तरह की असमानता ना हो, तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को पहचान सकते हैं। आप उसकी नोटबुक देखो, क्या उसका लिखता है वो सही लिखता है, आपके आपका सहपाठी है क्या वो बोर्ड से देख करके लिख पाता है, लिख पाता है तो क्या वो कितनी गलतियां करता है, वो टै को ठै तो नहीं लिख रहा, ए को आ तो नहीं लिख रहा, कि आप ये समझो कि मेरा नाम राजीव है तो वो खाजीव बोल दे, रा को खै बोल रहा है, मतलब उसको शब्दों की पहचान नहीं है, बिना देखे लिख नहीं पा रहा है। आप देखते हो कि क्लास के अंदर एक अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया लेकिन उसको याद नहीं रह पा रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि किसी तरह की उसके अंदर अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप पहले अध्यापक को बताओ, कि कभी कोई बच्चा खुल करके नहीं बता पाता है। अध्यापक का काम ही होता है कि जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पे एक काउंसलर है आपके स्कूल में,
3: जी हाँ,
10: आप काउंसलर को बता सकते हो, क्योंकि आपका काम पहचानना नहीं है, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक अपने साथी का या अपने सहपाठी का जो वीक पॉइंट है उसको आप सबके सामने उजागर मत करो, आप जाके डायरेक्ट अपने काउंसलर को बताओ, अपने टीचर को बताओ, ताकि उसकी उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब काउंसलर जो है एक प्रोसीजर में आएगा, एक प्रक्रिया में आएगा, वो क्या करेगा, वो बच्चे से मिलेगा। देखो हम किसी को, चाहे आपने देखा ज्योति इतना अच्छा कर रही है, अगर वो एक किसी स्पेशल स्कूल में जा रही होती तो सर इतना अच्छा ना कर पाती, क्योंकि उसको सब डिसेबल्ड बच्चे अपने सराउंडिंग दिखते, यहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों को देखती है, आपको देख के भी सीखती है और वो दूसरे बच्चों को देख के भी सीखती है, उसके पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, हर चीज में आप, मैंने 2 महीने में इतने बदलाव देखे हैं जो शायद एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय के अंदर जाके बच्ची लर्न नहीं कर पाती जितना वो यहाँ कर पाती है। सरकार भी चाहती है कि हमारा जो समाज है वो समेकित शिक्षा होना चाहिए, मतलब हमारे जो विद्यालय हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए कि जहाँ पे सब बच्चों को एक समान भागीदारिता मिले। आपने सबको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, उसी तरीके से इन बच्चों का भी अधिकार है। तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, आपका सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो यही था कि आपने बच्चे को देखा, अब आपने विशेष शिक्षा का टॉपिक आपने लिया है, इस पे आपने मुझसे बात की है, तो आपकी कुछ ना कुछ जानकारी बढ़ी है, तो आपको इस तरह के बच्चे लगते, तो आप उनको, आप पहले अपने लेवल पे देखो कि क्या उनको सच्ची में इस तरह की दिक्कत है, कोई और है। आप एक दोस्त हो तो कभी कभी बच्चा जो है ना, माँ बाप या घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा जो है घर से इतना सारा बर्डन लेके आता है, कभी कभी होता ना कि माँ बाप के झगड़े, बाप का शराब पीना या इस तरह की घर की कई सारी समस्याएं होती है जो बच्चे को पढ़ने में बाधाएं डालती हैं। तो क्या आप उससे बात करके देखो, अगर आपके गली मोहल्ले का तो आपका, आप उसके घर का सिचुएशन देखो कैसी है, ये चीज अपने तक रखो, गुप्त रखो। उससे क्या होगा कि आप जो है पहले बच्चे का जो स्तर है क्या वो डिसेबिलिटी में आता है या फिर कोई और समस्याओं के साथ वो ये इन सब चीजों से संघर्ष कर रहा है, और ये सब चीज नहीं है तो आप एक काउंसलर को बता सकते हो जो आपके स्कूल में है, आप उनको बताओ कि मैं उस बच्चे को, मुझे लग रहा है कि इस तरह की कोई समस्या है, मैं उसको परेशान देखता हूँ, उसको पढ़ने में भी समस्या आ रही, तो आप एक काउंसलर जो है फिर उसका असेस करेगा, उसको देखेगा, उसके माँ बाप को बुलाएगा, उनसे बातें करेगा, तो फिर एक प्रोसीजर आएगा। फिर आपके स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं आजकल, जो एनसीआर के स्कूल है उनके अंदर ज्यादातर स्पेशल एजुकेटर हैं, तो फिर धीरे धीरे एक प्रोसीजर शुरू होगा, फिर काउंसलर जो है स्पेशल एजुकेटर के पास भेजेगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, असेसमेंट करेगा, देखेगा बच्चा कहाँ अटका हुआ है। तो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है लेकिन इसके अंदर पूरे समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है।
9: तो ये बात तो ये, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, फिर आसपास में हम जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे बच्चों के बारे में, आज भी हमारे आस पड़ोस में जैसे मजदूर भाई होते हैं उनके बच्चे भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो हम उन बच्चों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो होते हैं इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार से विकसित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उनको ये पता भी नहीं रहता कि हाँ हम अपने बच्चे को किस प्रकार से ट्रेंड करें या फिर हम उसको कहाँ भेजें कि उसका मानसिक विकास हो सके।
10: आपने जो बात बड़ी अच्छी बोली है, क्योंकि आप बहुत होशियार हो और आप चीजों को पकड़ पा रहे हो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, पर्सन बहुत अच्छा है ये कि उनको हम कहाँ भेजें। देखो वो स्कूल नहीं जा रहे हैं
3: जी,
10: तो मैं आपके इस गांव की बात करूं शाहबाद की, तो वहां पे हमारे पास अभी रीड इंडिया के जरिए प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो जो हमारे डायरेक्टर है गीता मैम, उन्होंने बोला था कि अगर ये रहे ना रहे लेकिन पीडब्ल्यूडी हमेशा रहेगा, कि ये हमने रीड इंडिया के साथ जोड़ दिया है। तो अगर आपके गांव के अंदर आपको ऐसा बच्चा दिखता है तो आप उसके माँ बाप को बात नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप हमें बताओ, हम उनसे जाके बात करेंगे, हम हमारे सेंटर के अंदर उस बच्चे के साथ काम करेंगे। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर भी है, काउंसलर भी है, स्पीच थेरेपिस्ट भी है, हमारी एक पूरी टीम है, जैसे कि आप भी हो। अगर मैं आपको कहूंगा कि बेटा इस बच्चे को आप कंप्यूटर का कुछ सिखा दो या इसको कुछ कलरिंग करा दो, तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा था ना, वो हमने पार्ट शुरू कर दिया ऑलरेडी। भारत सरकार की जो नई नई शिक्षा नीतियां आ रही हैं या फिर पुरानी जो शिक्षा नीति है वो स्कूलों तक है, लेकिन कहीं अच्छे तरीके से काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। जो आपने कहा कि उन बच्चों को हम कहाँ पहुंचाएं, तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि आपके आसपास अगर कोई स्पेशल स्कूल है तो वहां बता सकते हो, अगर जैसे कि हमारा रीड इंडिया है तो आप यहाँ पे हमें बताओ, हम उनसे मिलेंगे, उनके माँ बाप से बात करेंगे और उनको हमारे सेंटर में लेके आएंगे, और जब वो बच्चे हमारे सेंटर में आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इस बच्चे को पहचाना और ये आज यहाँ पे आ रहा है, और जब वो चीज़ सीखेगा तो आपको वो ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ज़रूरत है आज के युवा को विशेष शिक्षा से जुड़ने का, विशेष शिक्षा वाले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानने का और उनके साथ एक प्रेम से रहने का, कि ये ना हो कि आप उनसे नफरत करें। आप जिस तरीके से, मैं आपके अंदर ये एक उमंग देख रहा हूँ कि आप इस मतलब स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा के बारे में जानने के लिए उत्तेजित हैं या इतने भावुक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास के 30 और बच्चे भी इस चीज को जानने की कोशिश करें और आप उनको भी मोटिवेट करो, क्योंकि आपके अंदर जो है मुझे भी वो शिक्षक वाली चीजें नजर आ रही है कि आप चीजों को जल्दी पकड़ पा रहे हो, और एक अच्छे शिक्षक की ये खास बात होती है कि वो वातावरण के अंदर अपने आप को या वातावरण के अंदर जो समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए उसी वातावरण के अंदर सोर्सेज ढूंढता है, मतलब स्रोत ढूंढता है कि किस तरीके से मैं इस समस्या को इसी वातावरण के अंदर खत्म कर दूं या इसको सोल्व कर दूं।
9: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
10: तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि हमारे हर घर के आस पड़ोस में, हर गली में लोगों को बच्चों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है कि विशेष आवश्यकता है या बच्चे के विकास में देरी हो रही है या बोल नहीं पा रहा या किसी तरीके से वो जो है अनजान है। जिन जिन श्रोताओं ने आज हमें सुना है, मैं चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा भी उनको समझ में आया है, अगर उनके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं तो अपने नजदीकी किसी भी एनजीओ में या उन माँ बाप को उस एनजीओ का पता बताए या फिर ये देखें कि इन बच्चों के लिए समाज की कौन सी संस्था, कौन सी इकाई, कौन लोग जो काम कर रहे हैं। जैसे समाज सेवी भी होते हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, जैसे रीड इंडिया जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आया है और वो इस पे काम कर रहा है। तो जैसे कि अगर शाहबाद, वजीराबाद और नोएडा के एक गांव की बात करूं तो हम अगर वहां के श्रोता सुन रहे हैं तो हमारा सेंटर है जहां पे आप वहां पे बच्चों को भेज सकते हैं। और अगर जो जहां पे अभी हमने शुरू नहीं किया है, आगे चल करके हम करेंगे, तो वहां के जो लोग हैं वो अपने आस पास ऐसे स्रोत ढूंढे कि जहां पे इन बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, जैसे स्कूल है, स्पेशल स्कूल है या फिर कोई एनजीओ है। अभी तो बहुत सारे एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं या फिर एक सरकार ने एक ना शिक्षक रखा हुआ है, घुमक्कड़ जिनको कहते हैं, वो सरकारी स्कूलों के अंदर आते हैं वीक में 3 दिन 4 दिन। आपके स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है? हाँ, तो वो कभी कभी आते हैं इन बच्चों को एक रिसोर्स रूम, मतलब एक संसाधन कक्ष जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इन बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनसे कि बच्चा पढ़ता है, जिनसे सीखता है, हाँ हाँ, तो वो एक रूम होता है हर स्कूल के अंदर, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा जो है जागरूकता की कमा जरूरत है हमें आज समाज के अंदर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम सब मिलकर के इससे लड़ेंगे और इसके इसके इसको डट के इसका मुकाबला करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल नहीं है। और हम अकेले से नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। तो मैं ये कहूंगा कि पूरे समाज को एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस चीज को जागरूकता के लिए हर स्कूल के अंदर एक एजुकेटर जो है होना चाहिए और उसको भी गांव के अंदर जागरूकता बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए कि हाँ इस तरीके के बच्चे हैं तो आप हमारे पास लेके आइए, चाहे आप उनको गृह आधारित काम दे दो या फिर उनको आप रेगुलर क्लासें लो या जो भी है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को ऐसे स्रोत ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि हम इन बच्चों को कैसे और कहाँ भेज सकें।
9: तो राजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम शाहबाद की आवाज में आए, आपने हमें स्पेशल बच्चों के बारे में बताया कि आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं। धन्यवाद।
10: धन्यवाद शाहिल जी।
11: पपीता खाने के जबरदस्त फायदे। पपीता स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसका सेवन न सिर्फ पाचन तंत्र को मजबूती देता है बल्कि ये मोटापे को कम करने में भी सहायक है। हर रोज पपीता खाने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके सेवन के फायदों के बारे में। पेट की बीमारी के इलाज में है पपीता लाभकारी। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो रोजाना पपीते का सेवन करें, इससे पेट साफ होगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने में पपीता लाभकारी। पपीते में विटामिन सी तो भरपूर होता ही है, साथ ही विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर है। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज में पपीता लाभकारी। पपीते में फाइबर, पोटेशियम और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसलिए आपको रोजाना पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। पपीते का सेवन गठिया की बीमारी में भी फायदेमंद है। दरअसल इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एंजाइम पाए जाते हैं जो गठिया के कारण होने वाले दर्द को दूर करने में मदद करता है। एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग नियमित रूप से पपीते जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं उन्हें गठिया होने की संभावना ज्यादा होती है। मोटापे को कम करने में भी सहायक। एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती हैं। ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में पपीता फायदेमंद। पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार है। इसी तरह से पपीते के सेवन करने से और भी अनेक फायदे हो सकते हैं, जैसे डेंगू बुखार को ठीक करने में कारगर, लीवर को रखे स्वस्थ, इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार, त्वचा के लिए फायदेमंद और बालों के लिए भी फायदेमंद।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में लगातार हम आपसे जुड़े विषय जो हैं उनको शामिल करते हैं, और हमारे आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो भी आपसे जुड़ा है। आज हम आपको जानकारी देंगे उन्नत बकरी पालन के बारे में, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन करके आप मुनाफा कमा सकते हैं, और यही वजह है कि बकरी पालन एक रोजगार का जरिया भी बन चुका है। यही जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के मखदूम में। जी हाँ, और यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक मनोज कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे ये जानकारी लेते हैं किस तरीके से हमारे जो किसान भाई है वो उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खेत खलिहान। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं?
1: देखिए कि बकरी पालन के द्वारा किसान भाई अपने आर्थिक की उन्नति कर सकते हैं, अपने कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं जी। और ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। उसके लिए जो बकरी पालन है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना होगा। जैसे कि उन्नत बकरी प्रबंधन, उन्नत प्रजनन प्रबंधन, उन्नत पोषण प्रबंधन, उन्नत स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग
0: जी।
1: अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए तो प्रति बकरी एक किसान एक वर्ष में 6,000 से 10,000 रुपया मुनाफा कमा सकता है।
0: लेकिन इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे जो, क्योंकि उन्नत बकरी हम पालन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी नस्ल है उसका चयन कैसे किया जाए, तो कौन सी जो उन्नत नस्लें हैं और कैसे उनका चयन, हमारे जो दर्शक हैं अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो चयन करें वो?
1: देखिए, हिंदुस्तान में बकरी की लगभग 24 नस्लें हैं
0: जी,
1: जिनको के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में हमारे पूर्वजों ने वहां की वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप उनको विकसित किया
0: जी।
1: तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बकरी जिस क्षेत्र की हो वहाँ वही की नस्लों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बकरी पूर्वी भारत की है, जैसे पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल नस्ल पाई जाती है
0: जी,
1: तो वहाँ के किसान उसी बकरी के ऊपर ध्यान दें। और जैसे उत्तर भारत है या उत्तर प्रदेश है
0: जी,
1: तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए जो बर्बरी बकरी की नस्ल है
0: जी,
1: ये अति उत्तम है।
0: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आसानी से बकरी पालन आप कर सकते हैं, लेकिन एक कम से कम अगर हम बात करें तो कितनी जगह इसके लिए चाहिए, क्योंकि बकरी पालन हम कर रहे हैं जगह का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और कम से कम कितनी बकरियों से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं?
1: दरअसल ये तो किसान के उपास उपलब्ध उसके आर्थिक संसाधन उस पर निर्भर करता है
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां पर के 20, 25, 50, 100 बकरी रखकर लोगों ने बकरी पालन शुरू किया है
0: जी,
1: तो 50 से 100 बकरी पालन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ जगह चाहिए, जिसमें के बकरियों के आवास भी बनेंगे, भूसा स्टोरेज भी बनेगा, दाना स्टोरेज भी बनेगा, और बकरियों के बाड़े भी बनेंगे
0: जी।
1: तो वैसे जो है बकरी को, एक बकरी को आवास के लिए 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए बंद आवास में, और इसकी दुगनी जगह चाहिए खुले आवास में।
0: बिल्कुल, जैसा डॉक्टर मनोज ने कहा कि तमाम प्रबंधन जो है वो आपको करने होंगे, बाड़ी की व्यवस्था होती है, और आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर संस्थान द्वारा जो बकरियां हैं उनको रखा जाता है। आपको भी दिखाते हैं और भी जानकारी हम देंगे, आइए हमारे साथ। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा आपने हमें बताया कि उन्नत नस्लें हैं और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमारे किसान या दर्शक हैं किस तरीके से वो उन्नत नस्लें ले सकते हैं?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया
0: जी
1: कि हमारे जो क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो बकरियों की जो उन्नत नस्ल है, जो प्योर ब्रेड है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे
0: जी।
1: तो किसान भाई को जब भी व्यावसायिक बकरी पालन आरम्भ करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो शुद्ध नस्ल के जानवरों को ही रखें
0: जी।
1: अब जैसे कि अभी हम बर्बरी के बाड़े में हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: तो अब ये बर्बरी नस्ल के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे कि ये जो है इसका जो कोट कलर है वो व्हाइट होता है, उस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं
0: जी।
1: इसके जो कान हैं वो छोटे होते हैं और इरेक्ट होते हैं
0: जी।
1: आपने देखा हुआ कि हिरण की तरह
0: पहचान
1: से,
0: इसके हम कह सकते हैं
1: ये बर्बरी नस्ल की पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे जितनी भी बकरियों की नस्लें हैं
0: जी,
1: उनकी अलग अलग पहचान है
0: जी।
1: अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम बकरियों का चुनाव कैसे करें
0: जी,
1: जो प्रजनक बकरे हैं उनका कैसे चुनाव करें?
0: बिल्कुल,
1: तो एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चा प्रजनक बकरी के रूप में चुन रहे हैं वो शुद्ध नस्ल का हो, यानी कि उसके जो माँ बाप हैं वो भी शुद्ध नस्ल के हों
0: जी।
1: दूसरी बात यह है कि उसकी जो बढ़वार है, जो विभिन्न उम्र के सोपान हैं, जैसे कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने पे, तो उसकी बढ़वार तेजी से होनी चाहिए और उसकी माँ के नीचे पर्याप्त दूध भी होना चाहिए। तो ऐसा नर प्रजनक बकरे के रूप में बहुत उपयुक्त रहेगा
0: जी।
1: और हम आमतौर पर 10 या 12 महीने की उम्र में ऐसे नर का चुनाव कर लेते हैं
0: जी।
1: उसके बाद हम देखते हैं कि ये बकरियों पे माउंट करता है, उन्हें कवर करता है कि नहीं। अगर ये बकरियों पे माउंट करता है, उनको गर्भाधित करा देता है, तो ऐसा बकरा उत्तम रहता है
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे जो ऐसा कि आपने बताया जो बकरा है, लेकिन क्या कुछ उम्र जो होती है वो होती है कि उसके बाद ही उसका चयन आप लोग करते हैं, और एक अगर देखा जाता है कि जिसका बकरे का चयन कर रहे हैं एक एक एक समय जो है वो निर्धारित होता है कि इतनी उम्र के बाद उसका चयन किया जाएगा?
1: देखिए, ये जो बकरियों में जो उम्र है तो ये उनके आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे कि जो बड़े आकार की बकरियां हैं उनमें प्रजनक बकरों को 2 उम्र का होने पर उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि जमुनापारी, सिरोही, झकराना। लेकिन चूंकि ये बर्बरी मध्यम आकार की है, तो जब प्रजनक बकरे की उम्र 1.5 वर्ष हो जाए तब उसे हमें उपयोग में लेना आरंभ करना चाहिए
0: जी।
1: और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बकरे से एक दिन में 2 या 3 बकरियों को ही गर्भित कराएं। अगर हम एक दिन में ज्यादा बकरियों को गर्भित कराएंगे तो उनके गर्भाधारण करने की संभावना कम रहेगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा कि लगातार आप हमें सावधानियां जो हैं वो आपने बताई, लेकिन प्रजनन के समय भी कुछ तरह की जो सावधानियां हैं वो रखनी होगी, क्योंकि रोग की संभावना रहती है अगर बकरा और बकरी संपर्क में आते हैं।
1: देखिए, जो बकरे से जो प्रमुख बीमारी है जो बकरियों में फैलती है, जिसके द्वारा बहुत ज्यादा एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, वो है ब्रुसोलेसिस
0: जी।
1: तो इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि हम प्रतिवर्ष बकरे की स्क्रीनिंग कराएं, उसका जो रक्त है उसको लेके जांच करवाएं, क्योंकि अगर कोई बकरा ब्रुसोलेसिस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे हमें कदापि प्रजनन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह भी रखनी है कि एक बकरे से एक रेवड़ में केवल उसे 1 से 1.5 वर्ष तक ही उपयोग में लाया जाए, क्योंकि इससे जो बच्चियां पैदा होती हैं वो पुनः जवान हो जाती हैं
0: जी।
1: तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अंतर प्रजनन से बचाव के लिए इस तरह से मेटिंग प्लान बनाना होगा कि उसकी जो बच्चियां हैं या उसकी जो माँ हैं वो इस बकरे के द्वारा गर्भाधित न हों
0: जी।
1: दूसरा, हमें यह भी सावधानी रखनी होगी कि उस बकरे का जो बच्चा पैदा होता है, नर पैदा होता है, वह भी हम उसी रेवड़ में न इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगा कि वो प्रत्येक 1 से 1.5 वर्ष के बाद अपने नर को बदल दें
0: जी।
1: और जो दूसरा प्रजनक बकरा है वो दूसरे किसी किसान भाई के यहाँ से लेके आए
0: जी।
1: इसकी सुगमता के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि अपना नर, अपना जो प्रजनक बकरा है वो किसी दूसरे को दे दें
0: जी।
1: और दूसरे का जो प्रजनक बकरा है उसे स्वयं इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अंतः प्रजनन की दर बहुत ज्यादा होने पर उनकी जो वृद्धि दर है, जो बढ़वार दर है, दूध देने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है।
0: बिल्कुल, इसलिए जरूरी यही कि जो तमाम सावधानियां हैं ये हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी जो बकरी पालन कर रहे हैं और जो बकरी पालन करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्नत बकरी पालन से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं वो भी जानते हैं, आइए हमारे साथ। डॉक्टर मनोज, आपसे हम ये और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब बेड़े में हमें यहाँ पर शेड में हम देख पा रहे हैं तमाम जो बकरियां हैं वो यहाँ मौजूद है, लेकिन किस तरीके से यहाँ संस्थान में हमने देखा अलग अलग जो शेड हैं वो बनाई गई हैं, क्या किस वजह से क्या जरूरत पड़ती है अलग अलग शेड्स की?
1: दरअसल ये जो उन्नत बकरी पालन है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है
0: जी
1: कि जो नर और मादा है उनको 3 माह के बाद अलग अलग रखा जाए
0: जी।
1: दूसरा ये है कि फिर जो है जो 3 से 6 माह की, 6 से 12 माह की या उससे जो अधिक उम्र की जो बकरियां हैं उनको फिर से अलग अलग रखा जाता है
0: जी।
1: जैसे कि कोई बकरी गर्भवती है, दूध देने वाली है, उनको भी फिर अलग अलग रखते हैं।
0: बिल्कुल, और जिस शेड में अभी हमें हैं कितनी उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं?
1: ये जो इस शेड में जो बकरी हैं ये आप देख रहे हैं ये सभी 6 से 9 माह की हैं
0: जी।
1: तो इस समय क्या है कि इनको एक अलग तरह का दाना, भूसा, चारा दिया जाता है
0: जी।
1: और जब ये बकरी 10 माह की हो जाएंगी फिर हम इनको गर्मी में आने पर गर्भाधित कराएंगे
0: जी।
1: अगर इनमें से कोई बकरी अभी गर्मी में आती है स्ट्रेस के स्ट्रेस हो करती है
0: जी.
1: तो हम उसे गर्भाधान के लिए नहीं भेजते हैं
0: जी.
1: क्योंकि ऐसा करने पर बकरी के ब्याने के समय उसका जो बच्चा है वो छोटा पैदा होगा
0: जी,
1: बकरी का स्वास्थ्य भी गिर जाएगा और आगे आने वाले ब्यात में उसका उत्पादन कम हो जाएगा
0: जी.
1: इसलिए हम ये तय करते हैं कि जैसे कि बर्बरी नस्ल है
0: जी,
1: कि इसमें जब तक कि बकरी 10 माह की न हो जाए
0: एक औसत उम्र हम मान सकते
1: औसत उम्र जो है और उसका जो वजन है वो भी 18 किलो होना चाहिए
0: जी.
1: उसके बाद ही हम बकरी को गर्भाधित कराते हैं.
0: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, हम यहाँ देख भी रहे हैं जो बकरियां हैं तमाम वो आहार की आपने बात की थी, चारा प्रबंधन की, किस तरीके से एक विशेष आहार की जरूरत होती है, क्योंकि आपने कहा कि 6 से 9 माह हो चुके हैं इन बकरियों को और उसके बाद 10 माह की जब बकरी हो जाती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है, वहां भी एक अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है.
1: देखिये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस समय खासतौर से जैसे बकरी के बच्चे हैं
0: जी,
1: तो जैसे कि जन्म लेने से 3 माह की उम्र तक उनकी जो बढ़वार दर है वो सबसे ज्यादा होती है. जैसे कि बर्बरी नस्ल में 80 से 100 ग्राम वजन प्रतिदिन बढ़ता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उस समय तो हम उनको 50 से 100 ग्राम दाना देते हैं
0: जी,
1: लेकिन जब वो 3 से 6 माह या 6 से 12 माह के हो जाते हैं तो उनकी दाने की मात्रा बढ़ती जाती है
0: जी.
1: लेकिन चूंकि 12 महीने की उम्र पे ये बकरियां परिपक्व हो जाती हैं तो इनको केवल मेंटेनेंस राशन दिया जाता है
0: जी.
1: लेकिन इससे पहले जैसे कि 6 से 9 माह की ये है तो इनको जो दाना है वो इनकी बढ़वार के लिए दिया जाता है.
0: बिल्कुल.
1: तो जैसे कि बर्बरी नस्ल में हम 6 से 9 माह या 6 से 12 माह की उम्र में इनको 300 ग्राम दाना प्रतिदिन देते हैं. अगर ये बकरी जब 10 से 11 माह की हो जाती है और ये गर्भित हो जाती है तो इनकी एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज पे हम उनको 200-250 ग्राम दाना और बढ़ा देते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बकरी है
0: जी,
1: ये तकरीबन 8 से 9 माह की है
0: जी,
1: ठीक है ना, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 16-18 किलो है.
0: बिल्कुल.
1: अब ये बकरी 1-2 माह के अंदर गर्भ धारण कराने के लिए तैयार है
0: जी,
1: और ये उसकी एकदम परफेक्ट एज है, परफेक्ट अवस्था है. इसका वजन निश्चित तौर पर 18 किलो से अधिक होगा
0: जी.
1: हाँ, तो अगर ऐसी बकरी को हम प्रथम बार गर्भाधित कराते हैं तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्यांत देगी, अच्छा उत्पादन देगी, ज्यादा बच्चे देगी, ज्यादा दूध भी देगी.
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो वयस्क बकरियां हैं, जैसा कि हमने देखा अलग अलग उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं, लेकिन जो नवजात हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी है, हम चाहेंगे उनके पास भी हम चलें, उनके बेड़े में, उनके शेड में, और वहां हम जाने कि कैसे उनकी देखभाल आप कर सकते हैं जी.
2: क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने, पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार, हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में, शुक्रवार शाम 7:30 पर.

0: तो बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ जैसा कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। और खासतौर से यहाँ अगर डॉक्टर सिंह बात की जाए, हरियाली भी हमें नजर आ रही है, कई तरह के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, तो ये सिर्फ छाया के लिए है, इनका कुछ अलग महत्व है?
1: देखिए, जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं
0: जी,
1: उनका प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव विषय है।
0: जी
1: क्योंकि बकरियों में अगर छोटे बच्चों की देख रेख अच्छे से न की जाए,
0: जी
1: उनकी सफाई का ध्यान न रखा जाए,
0: जी
1: उन्हें समय पर पानी न पिलाया जाए, तो वो कमजोर हो जाते हैं, फिर उनमें बीमारी भी तरह तरह की हो जाती हैं।
0: जी
1: तो छोटे बच्चे जहाँ पे हों वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सफाई बहुत अच्छे से हो,
0: बिल्कुल
1: सफाई बहुत पर्याप्त हो, और उन्हें समय समय पर पीने का पानी और चारा भी मिलता रहे। जैसा कि आपने कहा कि ये जो वृक्ष आपने लगाए हुए हैं ये हरियाली के लिए हैं, ऐसा नहीं है, ये हरियाली के साथ साथ समुचित मात्रा में चारा भी उपलब्ध कराते हैं।
0: जी
1: और जो इन पेड़ों से जो चारा मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, इससे उनकी जो बढ़वार दर है वो बहुत ज्यादा होती है और उनमें बीमारियां भी कम होती हैं।
0: जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे नीम जो है उसकी पत्तियां यहाँ पर फिलहाल जो ये छोटे बच्चे हैं ये खा रहे हैं, और किस तरह की इनके लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है?
1: देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो या बकरियां की
0: जी
1: सभी अवस्थाओं में वो सभी तरह के चारों को खाती हैं।
0: जी
1: यहाँ आप देख रहे हैं कि नीम है, पीपल है, पाखर है, बरगद है, देसी बबूल है, सूबबूल है, मलबेरी है,
0: जी
1: तो बकरियां इन सबको बहुत चाव से खाती हैं। और मैं किसान भाइयों को एक जरूर कहना चाहता हूं
0: बिल्कुल
1: कि जहां कहीं पर उन्होंने अपने बकरी का बाड़ा बनाया हुआ है,
0: जी
1: कृपया आप इस मॉडल को फॉलो करें और वहां पर तरह तरह के वृक्ष लगवाएं, और जब भी चारे की कमी हो उनको चारा खिलाएं।
0: बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानी हम कह सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको रखनी होगी, तभी आप देखिए उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात कही कि जो छोटे बच्चे उनका कैसे आप ख्याल रखेंगे, इससे ना सिर्फ जो पर्यावरण है वो हमारा अच्छा रहेगा, और एक संदेश भी जाता है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप एक पेड़ के आप कई पेड़ आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपके जो बकरी पालन है, जो बच्चे हैं उनके आहार की बात है, और ये जरूरी है कि उनको सही आहार मिले, तभी उसके बाद अगर आप सोचते हैं उनको मुनाफा अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पे संभावनाएं जो है वो काफी है, वो तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, और मुनाफा तभी होगा जब आप

0: बकरी पालन कर रहे हैं और यहाँ इस संस्थान से कितनी जानकारी उन्हें मिली है जिसका फायदा वो अभी तक उठा चुके हैं।
1: केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरा मुझे प्राप्त हुआ और मुझे बकरियां भी कुछ प्राप्त हुई और बाहर से कुछ मैंने बकरियां परचेज करी, जिसमें मुझे जो है उनसे प्रोडक्शन हुआ और कम टाइम में, कम समय में मुझे अच्छे जो है उनसे बच्चे और उन्नत नस्ल के बच्चे प्राप्त हुए।
2: हमने संस्थान से प्रशिक्षण लिया था अपना ये अक्टूबर 2014 में, और संस्थान का एक कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कुछ ब्रीडिंग मेल और बकरियां मिली थी, जिससे कि नस्ल सुधार में हमने उनको यूज़ किया है। कुछ बकरियां हमने बाज़ार से भी ली हैं जो कि इतनी प्योर नहीं थी, और जो संस्थान से बक मिला हुआ था हमें प्योर नस्ल के जानवर, उसकी वजह से हमारे यहाँ अब बहुत सारे जानवर प्योर नस्ल के पैदा हो गए हैं और जिनसे हमें जो है काफ़ी मुनाफा हो रहा है।
3: यहाँ से सही नस्ल से हमें जो है फ़ायदा काफ़ी मिला, अच्छी नस्ल पैदा करने की वजह से बाज़ार में उसका रेट काफ़ी बढ़िया मिला और 10,000 से लेके 20,000 25,000 तक के हमने बकरे बाज़ार में सेल करे। एक औसतन करीब 18 से 20,000 रुपये हमें हर बकरे के मिल जाते हैं बाज़ार में।

0: केंद्रीय भक्ति अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ के निदेशक जो हैं मनमोहन सिंह चौहान जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनमोहन सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खेत खलिहान।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर संस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लगातार जो संस्थान है ये काम कर रहा है?
1: देखो, ये हमारा जो है बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिंदुस्तान में जितने भी बकरियाँ हैं, जितने भी डिफरेंट ब्रीड्स की हमारे पास जो है जो बकरियाँ हैं, उन पर पहले खोज हो, उन पर हम ये करें कि किस ढंग से अच्छी जो है नस्ल को बढ़ावा दें, और जो नस्ल हमारे पास पैदा हो जाती हैं, जो होती हैं, उसको हम जो ये है कि फार्मर्स तक पहुँचाएँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ये और भी है कि बकरियों में क्या होता है कि हर बकरी हर जगह नहीं हो सकती है, उपलब्धता नहीं होती है। तो हमारा ये है कि कोई खास जो ब्रीड है, जो एक एक जगह, जैसे हमारा है कि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर कोई ब्रीड होगी, जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर दूसरी ब्रीड होगी, जहाँ पर ऐसी है कि कोई जो है उसका जो टेम्परेचर अलग है वहाँ पर और कोई ब्रीड होगी। तो हमारा ये है कि कौन सी ब्रीड कहाँ पर फिट होगी, और इस ढंग से हम काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान में डिफरेंट एरिया पर हमारे यहाँ हो रहा है काम।
0: बिल्कुल डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने बताया जो तमाम नस्लें हैं वो इस संस्थान में है, और इसी की जानकारी जो है वो आप लगातार किसानों को भी देते हैं, लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे जो किसान है वो इन नस्लों के बारे में जाने, यहाँ पहुंचे और इसकी जानकारी ले सकते हैं?
1: हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर साल जो है 4 या 5 हम मतलब किसानों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं
0: जी।
1: यहाँ पर किसान आते हैं, हम उनका रखरखाव का ध्यान रखते हैं, 10 से 12 दिन वो हमारे साथ रहते हैं, और उनको जो भी हमारे पास जो ब्रीड है, जो हमारे पास जमुनापारी है, बरबरी है या जखराना है, उसके बारे में हम ब्रीड के बारे में उनको डिटेल में नॉलेज देते हैं कि कैसे उनका रखरखाव होता है, कौन कौन सी वैक्सीन उनको होगी, कैसे उनके दवाइयों का वो होता है, ताकि जो है वो सारा सीख कर जाते हैं। जब किसान वापस जाते हैं तो उसके बाद में वो अपने यहाँ देखते हुए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें इस ब्रीड का ये बकरी चाहिए या ये बकरा चाहिए, तो हमारे पास एक थोड़ा सा गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से हमें उनको देना है, और हम किसानों तक वो अपने यहाँ की जो नस्ल है उनको पहुँचाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर वो ठीक ढंग से रख रखाव करें, तो उसको डिटेल में हम ये कूद देते हैं कि ताकि आप ये जो आपने जो ब्रीड ले गए हैं इसका रखरखाव कैसे हो सके। अगर उसके उससे हम फोन नंबर ले लेते हैं, उससे फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा ठीक ठाक से हो रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, ताकि हम यहाँ से अपने वैज्ञानिकों
0: समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर चौहान, अगर बात की जाए बकरियों की, तो गरीब की गाय कहा जाता है उसको, लेकिन अब इतने फायदे नजर आते हैं इस गाय के भी, क्योंकि प्रसंस्करण जो है वो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि चलन में आ गया, और इसका काफी फायदा जो है वो किसानों को होता है, तो क्या प्रसंस्करण की भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है?
1: देखो, अगर हम इसकी बात करें गरीब की गाय का, तो जो दूध इसका है, दूध में मुख्य गुण कुछ ऐसे हैं जो गाय और भैंस के दूध में नहीं है
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बायोपेप्टाइड्स हैं जो गाय और भैंस में नहीं होते हैं, और इनका काम क्या होता है ये दूध का, कि अगर हम हमारे मानना है कि अगर इसका दूध को पिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके जो एक तो हजम आराम से हो जाता है, ये कहा गया है कि ये इसका दूध कहीं ना कहीं आदमी

0: के दूध के बराबर मिलता जुलता है
1: जी।
0: तो इसका मतलब है कि जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, इसमें इस ढंग से है ताकि वो बच्चे के लिए भी हो या बड़े के लिए भी ढंग से इस्तेमाल हो सके
1: जी।
0: और इसमें एक और है कि इसका जो फैट होता है, फैट का साइज जो है वो छोटा होता है, तो जिसको फैट को हजम करने की दिक्कत होती है उसका आराम से हजम हो जाता है
1: जी।
0: इसके अलावा हमारे इसके दूध में ये पाया गया है कि कुछ ऐसे वो होते हैं कि जो हमारा रोगी के जो रोग के वो होती है जिसको इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी को कहते हैं कि इन्हांस करता है, बढ़ाता है,
1: बिल्कुल उसको बढ़ा सकता है।
0: हाँ, बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है इस दूध को ये माना गया है कि ये अच्छा है।
1: साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक है यानी हमारे जो किसान है उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन की ओर
0: देखो। अब सबसे पहले जो भी होता था बकरी पालन, उसमें क्या होता था कि जो बकरी ले गए वो अपने हिसाब से पालते रहते थे। अब हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो शिक्षा है हम दें, हम कई बार ये है कि अपने पंपलेट हैं हमारे यहाँ से छोटी छोटी किताबें हैं जो हिंदी में हमने की हैं, संस्थान से हम डिफरेंट जगह पर दूसरे पार्ट में भेजते हैं। हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया जो है कुछ वो है प्रोग्राम है जिसमें हम की सारे जगह जहाँ जहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं, जो भी वहाँ पर है केवी के हैं, किसी जो है विज्ञान केंद्र है वहां तक हम पहुंचाते हैं, और ताकि वहां पर फार्मर्स आकर वैज्ञानिक जो ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको वो करते हैं तो इससे एक तो ये है कि कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लें
1: जी,
0: और दूसरा ये है कि उनको नुकसान ना हो।
1: बिल्कुल, देखिए जो किसान है वो अच्छे से और ज्यादा अच्छे से ना सिर्फ एक आजीविका के रूप में बकरी पालन कर सकते हैं बल्कि पूरे परिवार का उससे भरण पोषण भी कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: साथ ही हमारे दर्शक जो है वो और अच्छे तरीके से अब समझ पाए होंगे कि अगर वो उन्नत तरीके से बकरी पालन करते हैं और उसके साथ साथ देखिए जो वैज्ञानिक पहलू हैं उनका भी आपको ख्याल रखना होगा, तभी एक उन्नत ढंग से आप बकरी पालन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अरंडी चौड़े पत्तों का छोटे कद वाला पौधा होता है जो प्राकृतिक रूप में जन्म लेता है। यह पौधा भारत में आम पाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते भी औषधीय रूप में बहुत काम आते हैं। यहाँ अरंडी के पत्ते, बीज और तेल से जुड़े फायदे बताए जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अरंडी की जड़ 20 ग्राम को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब यह 100 मिलीलीटर शेष बचे तो इसे पिलाने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ होता है। अरंडी के तेल की मालिश करते रहने से शरीर के किसी भी अंग की त्वचा फटने का कष्ट दूर होता है। ऐसे बच्चे जिनके सिर पर बाल नहीं उगते हो या बहुत कम हो, या ऐसे पुरुष स्त्री जिनकी पलकों व भौहों पर बहुत कम बाल हो, तो उन्हें अरंडी के तेल की मालिश नियमित रूप से सोते समय करना चाहिए। इससे कुछ ही सप्ताह में सुंदर, घने, लंबे, काले बाल उगने लग जाएंगे। सिर पर अरंडी के तेल की मालिश करने से सिर दर्द की परेशानी दूर होती है। अरंडी की जड़ को पानी में पीसकर माथे पर लगाने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। अरंडी का तेल थोड़े से चूने में फेंटकर आग से जले घावों पर लगाने से वे शीघ्र भर जाते हैं। अरंडी के पत्तों के रस में बराबर की मात्रा में सरसों का तेल फेंटकर लगाने से भी यही लाभ मिलता है। यदि मल त्यागने में कठिनाई का अनुभव हो तो अरंडी के तेल को दूध के साथ देने से लाभ होता है। अरंडी का तेल गर्म पानी के साथ देना चाहिए या फिर अरंडी का रस शहद में मिलाकर बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का रस रोजाना 2 से 3 बार बच्चे की गुदा में लगाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। अरंडी के तेल में कपूर का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार नियमित रूप से मसूड़ों की मालिश करते रहने से पायरिया रोग में आराम मिलता है। पत्ते पर थोड़ा चूना लगाकर तिल पर बार बार घिसने से तिल निकल जाता है। अरंडी के तेल में कपड़ा भिगोकर मस्से पर बांधने से मस्से मिट जाते हैं। अरंडी का तेल लगाने से जख्म भी भर जाते हैं और इसको मस्सों पर लगाने से मस्सा ढीला होकर गिर जाता है। अरंडी के तेल को सुबह और शाम 1 से 2 बूंद हल्के हाथ से मस्से पर मलने से 1 से 2 महीनों में मस्से गिर जाते हैं। अरंडी के बीज की मींगी को दूध में पीसकर रोगी को पिलाने से गर्दन और कमर दोनों जगह का दर्द चला जाता है। 10 ग्राम एरंड की जड़ को छाछ के साथ पीसकर पिलाने से उल्टी और दस्त बंद हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का क्षार 3 ग्राम, तेल एवं गुड़ आदि को बराबर मात्रा में मिलाकर चाटने से खांसी दूर हो जाती है। अरंडी के तेल की 10 बूंदों को रात को सोते समय पानी में मिलाकर सेवन करने से कब्ज की बीमारी में लाभ होता है। एरंड का तेल 30 ग्राम को गर्म दूध में मिश्री के साथ पीने से कब्ज दूर हो जाता है। 1 कप दूध में 2 चम्मच एरंड का तेल मिलाकर सोते समय पिलाएं। इससे पेट की कब्ज नष्ट हो जाती है। चोट लगकर खून आने लगे, घाव हो तो एरंड का तेल लगाकर पट्टी बांधने से लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर तिल का तेल लगाकर गर्म करके बांधने से चोट से सूजन एवं दर्द में लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर सरसों और हल्दी गर्म करके मोच वाले स्थान पर लगाएं और पत्ते को उस पर रखकर पट्टी बांध दें। अरंड के बीज की गिरी 10 ग्राम काले तिल 10 ग्राम दूध में पीसकर हल्का गर्म करके मोच पर बांध दें। अरंडी के तेल की 2 चम्मच मात्रा को गर्म दूध में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। जय हिंद।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आज के हमारे ऐसे ही सफल किसान हैं पवन कुमार कुशवाहा, जो कि वैसे तो विदेश में यानी ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन उनका मन था स्वदेश में और इसीलिए वापस वो भारत लौटे और कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें काफी नुकसान भी झेलना पड़ा और यहाँ उनका मार्गदर्शन किया कृषि वैज्ञानिकों ने और उन्हें बताया कि कैसे वर्मी कंपोस्ट को अपनाकर वो इस राह में सफलता हासिल कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। पवन कुमार कुशवाहा ने इन वैज्ञानिकों की सलाह पर काम किया, आगे बढ़े और आज बन गए हैं हमारे आज के सफल किसान।
1: उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि पर निर्भर है। इसी राज्य से हमारे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा भी आते हैं। कुशीनगर जिला मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। बात करें खेती किसानी की तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं, धान, गन्ना आदि है। कुशीनगर के रहने वाले पवन कुमार कुशवाहा भी इन दिनों खेती किसानी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। कैसे, तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी।
2: मैं एक इंटरनेशनल जॉब जो मैं ऑस्ट्रेलिया में करता था, तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि जॉब के अलावा भी जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जो अपनी भविष्य की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग गांव में भी कुछ व्यवस्था डेवलप किया जाए, कुछ फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो उसी सोच के तहत मैंने गांव में गौशाला का शुरुआत किया। गौशाला ज्यों ज्यों आगे बढ़ा, चूँकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि चूँकि शहर से दूर हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी वजह से मार्केट जो गौशाले का जो होना चाहिए दूध का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर हो नहीं पाया, जिसके वजह से मेरा जो बिजनेस था गौशाला वाला थोड़ा सा नुकसान में रहा। तभी उस समय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमको कुछ सहयोग मिला और जो गाय के गोबर से जो पैसे का इनकम किया सकता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी कि गाय के गोबर का उपयोग कैसे किया जाए, स्पेशली बायोगैस में और उसका जो वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है उसमें, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनके माध्यम से मुझे ये तरीका या टेक्नोलॉजी मिली, उन लोगों ने सिखाया और फिर मैंने वर्मी कंपोस्टिंग और बायोगैस का यूज गाय के गोबर से कैसे किया जाता है उसको शुरुआत किया।
1: पवन कुमार का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ पवन जी ने शुरुआती दौर में एक छोटे से गौशाला का निर्माण किया। अभी पवन अपने फार्म में गाय, बकरी, मुर्गी एवं मछली का पालन करते हैं। पवन ने कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेकर एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर नई शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन्हें बाहर से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पशुओं के अवशेषों को प्रयोग में लेकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इससे इन्हें काफी फायदा होता है, लेकिन एक सवाल मन में ये भी आता है वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग को लेकर। तो चलिए मार्केटिंग के बारे में जानते हैं हमारे सफल किसान पवन जी से ही।
2: 2012 में मैं वर्मी कंपोस्टिंग किया, धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो मार्केटिंग भी हुआ, क्योंकि जागरूक जो किसानों को करना होता है, उनके साइंटिस्ट जो भी हैं उनके माध्यम से किसान लोगों को जागरूकता मिलती है कि कम से कम अपने वर्मी कंपोस्ट का खेत में उपयोग करके जो जैविकता है खेती बाड़ी का वो बढ़ाया जाए। तो जो जो समय बढ़ता रहा वैसे वैसे मेरा मार्केटिंग भी डेवलप करता रहा, मैं प्रोडक्शन भी होता रहा। शुरुआत में गाय के गोबर से रहा, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की डिमांड ज्यादा आती गई तो मेरे लिए चैलेंज था कि भाई उतना गाय उतना मेरे पास गोबर का प्रोडक्शन था नहीं, तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट लोगों के माध्यम से जो फसल अवशेष के माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, फिर उसकी टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद से जो भी अन्य पशुओं के जो अवशेष हैं, जैसे बकरी की मैगनी या मुर्गी का जो वेस्ट होता है, मलमूत्र होता है, उसके माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी मुझे प्राप्त हुई, उन लोगों के माध्यम से सीखा मैंने। और आज मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का जो रॉ मटेरियल है वो गाय का गोबर भी है, बकरी का जो मैगनी है वो भी है, मुर्गी का खाद भी है, पुआल भी है, भूसा भी है, जो कुछ भी मतलब नेचुरली हमारे पास उपलब्ध है सबका मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूँ और सक्सेसफुली उसका मार्केटिंग भी करता हूँ। हमारे से लगभग कुशीनगर और आसपास के जितने भी जिले हैं उस सारे जो किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, लगभग मोर देन 1000 किसान मेरे पास जुड़े हुए हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग का जो उपयोग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद लेके अपने जमीन की जैविकता बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं और एक इकोनॉमिकल तरीके से खेती कर रहे हैं।
1: वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसे खेती किसानी के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। जैविक खाद विधि से बहुत कम समय में सामान्य तापक्रम के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जा सकती है जिसमें केचुओं की समुचित प्रजातियों का उपयोग होता है। इसमें केचुओं की आंतों में विद्यमान सेलुलाज तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर निगले हुए जैविक पदार्थों का बड़ी तेजी से विघटन करते हैं। ये केचुए अपनी पाचन क्रिया और जैव पदार्थों के संयुक्त मिश्रण के प्रभाव से एक अपशिष्ट पदार्थ बाहर छोड़ते हैं जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। किसान पवन का मानना है कि अगर सही रख रखाव के साथ केचुए को रखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट के लिए फायदा होता है। इस बारे में पवन क्या बताते हैं सुनिए।
2: बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि ये केचुआ कितना हेल्दी है और यही मौसम है जिसमें केचुआ प्रजनन करके अपने बच्चे पैदा करते हैं, इनको जाड़ा बड़ा पसंद है। तो जैसे ही जाड़े का मौसम बीतता है उसके बाद से ये लोग अपना प्रजनन करके अपने अंडे का उत्पादन करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो अंडा है ये अंडा लगभग मैच्योर होने की स्थिति में है और इस अंडे में से 5 से 7 बहुत पतले पतले केचुए निकलेंगे और फिर उसके बाद से धीरे धीरे खाना खा के अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इनकी जो जनरेशन होती है, पैदावार होती है, वो तो बहुत शानदार होती है। और लेकिन चूंकि यही एक बहुत नाजुक होते हैं, ये तो जल्दी मरते भी हैं दूसरे कारणों से, लेकिन यह है कि अगर उचित रख रखाव किया जाए, उचित इन लोगों का माहौल दिया जाए तो केचुओं की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है और बहुत शानदार उत्पादन करते हैं ये केचुए। खाद भी बनाते हैं, खुद भी डेवलप करते हैं ये।
1: केचुआ बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाले होते हैं। वे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का अक्षरण करते हैं और उसका कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में बाहर छोड़ते हैं। पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कास्टिंग पौधों के लिए एक पौष्टिक खाद है। यह कृमि खाद पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं पौधों में हार्मोन्स को बढ़ाने के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है जिससे मिट्टी द्वारा पानी और पोषक तत्व धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के बारे में और विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते हैं सफल किसान।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा।
4: 20,000 का लोन तुरंत?
3: पता है कौन दे रहा है?
4: ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
4: वो भी जांच कर।
3: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं पवन कुमार कुशवाहा की, यानी उनकी सफलता की कहानी। कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नौकरी छोड़ी और भारत लौटे और यहां पर अब वो वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार कुशवाहा का और जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के तमाम पहलुओं के बारे में।
1: वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया है जो कीटाणुओं के सहयोग से जैविक अपशिष्टों को कंपोस्ट बनाने का काम करती है। यह एक पर्यावरण सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया है जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पवन कुमार कुशवाहा ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जो सिर्फ पवन को ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। सफल किसान पवन का मानना है कि मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इनका मानना है कि मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केचुआ काफी उपयोगी है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं।
2: इतने सालों से मैं ये वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूँ, धरती माँ की सेवा कर रहा हूँ। जो मुझे अनुभव मिला है उस अनुभव के आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है तो सबसे बढ़िया जो साधन है वो ये केचुआ है। इससे बेहतर कोई संसाधन नहीं है केचुआ के अलावा जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार सके। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। इसलिए कम से कम इस केचुआ के महत्व को पहचाना जाए। हम ये कहते हैं कि केचुआ गाय का पूरक है। अगर गाय जमीन के ऊपर भगवान के रूप में है तो जमीन के नीचे ये केचुआ भगवान के रूप में है। अगर केचुआ जब तक जिंदा है तब तक धरती माँ स्वस्थ है और हम लोग को स्वस्थ रखने के लिए जो भी अनाज आएगा, जो भी वहां से उत्पादन आएगा, हम लोग खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे।
1: अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह सामान्य तौर पर होने वाली खेती से अलग है और इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग तब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। हमारे सफल किसान पवन का मानना है कि अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी।
2: तो अमेरिका जैसे कंट्री में जो लोग थोड़ा जागरूक हैं तो वो लोग वर्म फार्मिंग करते हैं और वही वर्म्स जाके मिट्टी में डालते हैं और लगातार, क्योंकि मिट्टी में भी इनका प्रोडक्शन होता रहता है, तो 3 से 4 साल में, 5 साल में जो मिट्टी जो बीमार हो चुकी होती है ना, बंजर हो चुकी होती है, वो दोबारा का उसमें जीवन आ जाता है, जान आ जाता है और दोबारा सजीव हो जाती है। और जब मिट्टी सजीव हो गई तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो वातावरण का जो पेड़ पौधा है, जो इकोसिस्टम है, वो खुद ब खुद अपने आप सुचारू रूप से अपने नेचुरल वे में काम करने लगता है और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डेवलप हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए वर्म फार्मिंग भी एक कंसेप्ट है जो अपने भारत में लोगों को जानना चाहिए, करना चाहिए।
1: पवन कुमार कुशवाहा अपने गांव में ही पशुपालन के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगाए हुए हैं। इनका मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ साथ गांव का भी विकास होगा। पवन के पशुपालन करने की मुख्य वजह है कि ये पशुओं के अपशिष्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पवन ने अपने फार्म में वर्मीवास, गोबर और गोमूत्र को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग टैंक लगाए हैं। पवन जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
2: अपने खेती बाड़ी सिस्टम में हम लोग कहते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए एज ए टॉनिक। तो लिक्विड फर्टिलाइजर चूंकि एक तो रासायनिक भी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन है क्या कि गांव का जो इकोसिस्टम है, गांव का जो परिवेश है, उसमें चूंकि गांव के लोग गांव के ही अगर हेल्प करेंगे तो कुछ गांव के लोगों का विकास होगा। तो हम चूंकि गांव में ही रह के ये जो पशुपालन है, चाहे ये जो खाद का जो काम है, वर्मी कंपोस्टिंग है, मैं वो कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास जितने भी पशु हैं, तो पशु का जितना भी अवशेष है, चाहे वो मल के रूप में हो चाहे मूत्र के रूप में हो, मैं उसका उपयोग जीवामृत बनाने में चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने में कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पास वर्मी वास आ रहा है वो यहाँ पे टैंक में इकट्ठा हो रहा है, जो गौमूत्र आ रहा है वो बगल के टैंक में इकट्ठा हो रहा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जैसे कि वर्मी वास गौमूत्र से हम जीवामृत डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि इसमें जो गुड़ बनाने का जो अवशेष होता है, जैसे बदर मैया हम लोग अपने भोजपुरी में बोलते हैं, वो है, बेसन है, इसमें प्याज का रस है, इसमें डिकम्पोजर भी डाले हैं, उसमें नीम का भी पत्ता डाले हैं, उसमें प्याज मिर्चा भी है, लहसुन भी है, जो सुरती का डंटल होता है वो डाले हैं, मतलब जो भी इजिली उपलब्ध है अपने गाँव समाज में, जो अपने बाग बगीचे में, सबका उपयोग करके जो जीवामृत बनाया गया है, जो अपने फसलों के जड़ों पे भी दिया जाता है, और साथ में किसी किसान को अगर स्प्रे करना हो तो 1 लीटर में 5 लीटर पानी मिला के वो अपने फूल पत्ती पे चाहे पेड़ पौधे पे स्प्रे करे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। मतलब कि कुल मिला के ये पौधे का अमृत है, इसलिए इसको हम लोग अपने भाषा में जीव अमृत बोलते हैं। तो हम लोग सब डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, और इजिली किसानों के लिए बहुत ही उचित दाम पे उपलब्ध है अपने किसानों के लिए, गाँव समाज के लिए।
1: अगर वर्मी कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाया जाए तो खेती के लिए काफी मददगार साबित होगा। वर्मी कल्चर में पौधे और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने का एक लाभकारी तरीका है। वर्मी कल्चर मुख्य रूप से कीड़ों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। फिर फसलों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यह वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पवन कुमार कुशवाहा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को भी अपनाया है, जानेंगे इसके बारे में भी छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार के फार्म का, जहां पर वो एकीकृत कृषि प्रणाली को भी अपनाते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका है कृषि का जिसमें तमाम घटकों को साथ लेकर हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे की जाती है एकीकृत कृषि और कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग से पवन कुमार कुशवाहा को लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से।
1: एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसमें दो या इससे अधिक उद्यमों का एकीकरण शामिल होता है। इसमें किसान की अधिकतम जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि, कृषि अपशिष्टों का कुशल पुनर्चक्रण, संसाधनों का बेहतर उपयोग और रोजगार पैदा होते हैं। इसमें जोखिम कम होने के साथ स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। एकीकृत कृषि प्रणाली का उद्देश्य संबंधित उद्यमों के साथ फसलों की गहनता और विविधीकरण के आधार पर प्रति क्षेत्र प्रति समय उपज को अधिकतम करना है। इसके अलावा यह पोषक तत्व पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती है। तालाबों में मछलियों के साथ बत्तख या मुर्गी पालन के अलावा तालाबों के किनारे या तालाबों के ऊपर में पशुओं द्वारा तालाब का निरंतर जैविक निषेचन किया जाता है। इस प्रकार पशु और चारा अपशिष्ट के लाभदायक उपयोग से पशुधन, कृषि और मछली पालन की दक्षता बढ़ जाती है। ऐसे में किसान कई उद्यमों से एक साथ कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
2: जैसे आप देख रहे हैं, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें मुर्गा पालन और मछली पालन एक साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कि पशुपालन में अगर एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के लिए अगर रॉ मटेरियल फीड के रूप में काम आ जाए तो आपका इफिशेंसी या जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे मुर्गा पालन प्लस मछली पालन एक साथ ये हो रहा है। जैसे कि नीचे पोखरा है, पॉन्ड है और ऊपर हमारा कड़कनाथ मुर्गी फार्म है जिसमें जो साइज है उसमें 100-150 मुर्गियाँ आराम से रह लेती हैं। तो दिन में चूंकि हमारा जो ये मुर्गियाँ हैं बाहर चरती हैं क्योंकि उनको नेचुरल फीड मिलता है, साथ में धूप की भी आवश्यकता पड़ती है मुर्गियों को, तो वहाँ पे जाके अपना धूप सेकते हैं, खाना खाती हैं, दिन भर बाहर आती हैं। लेकिन जैसे होता है रात में वो अपने आप चले आते हैं और रात भर यहीं करते हैं। तो रात भर जो वो बीट करते हैं तो वो मुर्गियों मछलियों के लिए वो फीड का काम करता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि अगर 5 से 6 दिन लगातार अगर पानी को चेंज न किया जाए तो पानी गंदा हो जाता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रात में छोटा सा 1 घंटे के लिए हम लोग पानी चला देते हैं कि पानी का सर्कुलेशन हो जाए। इसका जो पानी का ओवरफ्लो होता है बगल में जो हमारा पॉन्ड है बड़ा वाला वहां चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा कभी भी पानी गंदा नहीं होता, मछलियों के अनुकूल रहता है।
1: पवन कुमार कुशवाहा अलग अलग देशों में नौकरी कर चुके हैं लेकिन नौकरी रास नहीं आई। कहते हैं ना कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ करने की तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर आज पवन आसपास के लोगों को भी फायदा कर रहे हैं। पवन का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भाग रही है, जबकि हम ठान ले तो नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। पवन आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, सुनिए।
2: मेरा एक जो खुद का अनुभव है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं भी जॉब करता था, अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया, चाइना में जॉब किया। वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि नहीं कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता था, जो मातृभूमि में अपना जो एक प्यार होता है ना वो खींच के लाता ही लाता है वापस। तो मेरा जॉब करने के साथ प्रयास था कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो आफ्टर जॉब मतलब रिटायरमेंट के समय में भी अपना कुछ रोजी रोटी के संसाधन डेवलप हो। तो उसी के सिलसिले में जॉब के साथ मैंने ये डेवलप किया। तो लगभग मेरा 15 साल का ये अनुभव है।
1: कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार किसानों के हित के लिए काम करते हैं। बात करें एकीकृत कृषि की तो इसे बढ़ावा देने के लिए अधिकारी किसानों को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में रसायन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इस कृषि प्रणाली में मुर्गी पालन के अपशिष्टों को बत्तख और मछली को आहार के रूप में उपयोग दिया जाता है। गोबर का इस्तेमाल खाद के लिए किया जाता है और खेतों में पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा गोमूत्र और नीम के अर्क को खेत में कीटनाशक के रूप में छिड़का जा सकता है। अनाज और इसके भूसे का उपयोग मुर्गी एवं गाय के आहार तथा चावल के भूसे को गाय के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पोल्ट्री की बेडिंग सामग्री का उपयोग खाद में भी किया जा सकता है। तालाब में जलकुंभी की तरह जलीय खरपतवार का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में बेडिंग सामग्री के रूप में किया जा सकता है।
3: आज बढ़ती आबादी को देखते हुए रोजगार की संभावनाएं कम हो चुकी हैं और जो छोटी होती जा रही है, तो ऐसे में हम यही सलाह देना चाहेंगे कि किसान भाई जो एकीकृत कृषि है, एकीकृत कृषि को बढ़ावा दें। इसमें बहुत सारी फसलें हैं, तालाब है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है। इन सबको एक संग्रहित एरिया में, इस संरक्षित एरिया में, छोटे से एरिया में आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से रासायनिक खादों का, उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग खेतीबाड़ी में हो रहा है, इससे हमारी जो जमीन है वो इन रसायनों से के दुष्प्रभाव से दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। इससे उत्पन्न होने वाले अनाज दूषित हो रहे हैं जिसको हम भोजन में ले रहे हैं, और इसको लेने से हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी शक्ति है, वो क्षीण होती जा रही है। तो अगर हम अपने खेतों में एकीकृत रूप से खेती करें, तो इसमें इंटीग्रेशन के रूप में अगर खेती करें, तो जिन खेतों में हम रसायनों का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पर हम अपने जो एकीकृत खेती हमारी है, जहाँ पर कि हम पशुपालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, इनके खाद का जो इनका वेस्ट है, इनको सड़ा गला करके अच्छे से खेतों में प्रयोग करेंगे। उस खेतों का जो प्रयोग करेंगे जिस खेत में, उसमें निश्चित ही तौर से जो रासायनिक उर्वरकों की डिमांड है वो कम हो जाएगी, उसमें रोग व्याधियां कम आएंगी और फसल का जो उत्पाद होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, रसायन मुक्त होगा।
1: पवन कुमार कुशवाहा एकीकृत प्रणाली को संयमित तरीके से कर रहे हैं और इससे इन्हें काफी फायदा हो रहा है। इन्होंने केचुए के महत्व को समझा और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। अभी इनके साथ करीब 1000 किसान जुड़े हुए हैं। आसपास के किसान इनके फार्म में बने जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद की मार्केटिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी काफी मदद करते हैं। इनकी इस सफलता को देख आसपास के किसान इनसे प्रेरित होकर सलाह भी लेने आते हैं।
0: तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि पवन कुमार कुशवाहा ने कैसे सफलता हासिल की। हालांकि वो विदेश में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वदेश को ही चुना और वो भी वर्मी कंपोस्ट का क्षेत्र। आशा करते हैं कि उनकी सफलता की कहानी से आपको भी जरूर प्रेरणा मिलेगी। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। सफलता की कुछ ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे देखिए अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं, आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, और इक्विवेलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपका, एक तरह से 12th के इक्विवेलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलॉसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया, और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं, जैसे ए टू डी क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज, आप देखेंगे एनसीआर एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगिनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट पीएसयूज में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं,
बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती हैं, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्वलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4-5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमाज की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गावा में या NCR के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती हैं काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर
जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्वलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जैसे मैंने आंसर किया उसका, हाँ जी मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए असेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं, प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल या वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली, स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो।

सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं, पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ इसके अंदर तीन तीन साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमा को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से तीन साल का डिप्लोमा करते हैं, थ्री ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर आईटीआई, वो क्या करते हैं आईटीआई भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो आईटीआई है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये तीन आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो आईटीआई आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, स्टेट वाइज जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब से अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल वीएलसीसी का नाम आप सबको पता ही होगा, वीएलसीसी एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं। ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है, तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब
एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, साइट्स जो बनती

0: वो आप बन सकते हैं बना, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं, लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है। मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे, हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया, और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया, और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका, माने मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं, वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू, Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है, SEO का कोर्स किया हुआ है, तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं, सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है। मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब देते, एक तरह से ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो हमें खुद कुछ भी कोर्स, कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं जिसमें सेल ये आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है, तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। अब देखिए कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक मई में, हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से, कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है, तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये मैं, ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स है। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में, इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती है टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI आई है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना, अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास है, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नगर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती है, जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहां पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ, जिसे हम कहते हैं कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक, यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है। बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज है, आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है, कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी PSU या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता, तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई, आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे ये कोरोना का अटैक हुआ COVID-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल, और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इन टू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे जिसमें जापान था, USA था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से, दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहां पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं, जो डीएमआरसी है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं डीएमआरसी के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं डीएमआरसी में। और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है। आप तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि डीएमआरसी ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो डीएमआरसी के अंदर लग गए जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th, 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंट ही हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है। जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीड का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीड का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीड कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है, भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं PSU की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ONGC गेल इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ONGC में गेल में कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते, जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था, टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर,
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारत वर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं, तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक स्कोप है, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते, मतलब अपना जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के,
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं, जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी एडवोक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो आपकी परमानेंट जॉब्स है जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

0: नमस्कार बहनों, मैं दिनेश मिगलानी आपका रीड इंडिया की कार्यशाला में स्वागत करता हूं। यह कार्यशाला रीड इंडिया के द्वारा आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यापार कैसे किया जाए, स्वरोजगार पैदा करना एवं आपको आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यशाला को हमने तीन भागों में बांटा है। पहले भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार क्या होता है, उद्यमी कैसे बना जाता है, इसके अलावा एक सफल उद्यमी या सफल व्यापारी में क्या क्या गुण होते हैं, तथा एक व्यापार करते समय या आप जब अपना कार्य करते हैं उसको करते समय किन किन कार्य को आपने करना है। इसके अलावा हम यह भी सीखेंगे आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या महत्व है। कार्यशाला के दूसरे भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाती है और शुरुआत से लेकर व्यापार को खड़ा करने में हम कैसे छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हम एक सफल व्यापार की तरफ अग्रसर हो सकें। कार्यशाला के तीसरे भाग के अंदर जो व्यापार हमने स्थापित किया है उसकी वृद्धि कैसे की जा सके एवं उस व्यापार के आंतरिक चीजों को में क्या क्या आपने ध्यान रखना है, कैसे अपने व्यापार के अकाउंट्स या लेखा बनाने हैं, किन किन चीजों को आपने संभाल के रखना है ताकि भविष्य में अगर आप किसी बैंक के पास जाएं तो कैसे उस व्यापार की वृद्धि की जा सके। तो बहनों, चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे कार्यशाला के पहले भाग से, जिसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है व्यापार क्या है। मैंने बोर्ड पे एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है आपको समझाने के लिए। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं, व्यापार क्या है। बहनों, आप देखते हैं आपके आसपास में कुछ लोग बैंक में नौकरी करते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई किसी कारखाने में कार्य करता है। तो यह नौकरी करना जीविका कमाने का एक साधन है। तो इस तरह के जीविका कमाने को हम कहते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जो एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं या किसी ने कोई कारखाना खोला हुआ है। तो जीविका कमाने के इस साधन को हम कहते हैं स्वरोजगार या व्यापार। ये तो हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और पैसे से ज्यादा जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा विश्वास होता है। एक सफल गृहिणी या एक महिला जो आत्मनिर्भर है वह उस आत्मनिर्भरता से पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेती है। आज के समय में सरकारी नौकरियां काफी कम हैं और हमारी बहनें जो गांव में रहती हैं कम पढ़ी लिखी हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो छोटी मोटी नौकरी या जीविका का कोई साधन आसानी से बनाया जा सकता है, पर गांव में रहने के कारण छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो हमारी बहनों के पास में अपना कार्य शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि गांव में आप देखेंगे काम भी नहीं मिलता आजकल। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रोजगार का साधन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें छोटा मोटा कार्य तो करना पड़ेगा और वो जो कार्य है वो एक तरह से हमें व्यापार करने या उद्यमी बनने की तरफ अग्रसर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मन में पहली चीज अब ये आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आत्मनिर्भर होने के लिए। अब वो करना जो है वो कोई ना कोई आपको व्यापार करना है या कोई ना कोई आपको आत्मनिर्भर होने के लिए स्वरोजगार शुरुआत करनी है। तो स्वरोजगार की आप जो शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते समय सबसे पहले हम यह समझें कि जो एक सफल उद्यमी है, जो एक सफल व्यापारी है, उसमें क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह एक व्यापारी बन पाया या एक उद्यमी बन पाया, ठीक है। तो मैंने एक पहला चार्ट बनाया है यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए कि एक सफल उद्यमी में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहली जो चीज है जो हमारी बहनों में भी है, वो होती है पहल। पहल से हमारा क्या मतलब है। जैसे ही हमारे आसपास आप देखते हो, रोजाना हमारे मन में कई तरह के नए नए विचार आते हैं, ठीक है। वो विचार आने के बाद हम उनके बारे में थोड़ा सोचते हैं और फिर हिचक के उनको कार्यान्वित नहीं करते, ठीक है। अब एक जो सफल व्यापारी है, अगर उसके सामने कोई विचार आता है तो विचार आने के बाद वह उसके बारे में चीजों को समझता है और समझने के बाद वह ये देखता है कि यदि उससे कोई बिजनेस बनाया जा सकता है, कोई व्यापार किया जा सकता है, तो वह उसके तरफ अग्रसर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज होती है पहल। तो हमारी बहनें जो अब यहां बैठी हैं, अगर आपके मन में कोई भी विचार है, कुछ बहनों को ऐसा लगता होगा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, या पापड़ बहुत अच्छे बनाती हैं, ठीक है, या चटनी अच्छी बनाती हैं, इसके अलावा हमारी बहनों के पास में सिलाई कढ़ाई बुनाई या गांवों के अंदर मिट्टी के बर्तन या हम कहें मिट्टी के खिलौने या आजकल साज सज्जा की जो चीजें हैं जो गांव की महिलाओं को बचपन से सिखाई जाती हैं, जो उनको आती हैं, तो इस तरह का अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार है जहां आपको ये लगता है कि उसमें आप काफी अच्छे हैं, तो पहल अगर आप करेंगे तो एक सफल व्यापारी की तरफ यह आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। एक सफल उद्यमी का दूसरा जो सबसे गुण होता है वह होता है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। अब देखो, आप कोई भी व्यापार करते हैं, सबकी इच्छा यह होती है कि व्यापार आपका सफल हो, पर ऐसा होता नहीं है, हर व्यापार सफल नहीं होता। फिर भी हमारे अंदर जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि हम जोखिम ही नहीं उठाएंगे, यदि हम किसी भी कार्य में जोखिम नहीं उठाएंगे, तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वह है हमारा जोखिम उठाना, क्योंकि जोखिम उठाने से ही कार्य होगा। फिर होता है अपने अनुभव से सीखना। व्यापार करते समय, कोई भी कार्य करते समय गलतियां तो होती हैं, ठीक है। अगर उन गलतियों से हम नहीं सीखेंगे तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा नुकसान जो होगा उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जोखिम उठाने की शक्ति काफी कम है। तो इसलिए हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर यदि दोबारा वह गलती फिर से होगी तो यह हमारी बहुत भारी गलती होगी। फिर प्रेरणा, हमारे अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए। मान लीजिए हम बहनों के बीच में कोई एक बहन ऐसी है जो कुछ कार्य करती है, कार्य करना मतलब वो आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसा कार्य करती है जिससे धन कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, तो हमें उससे प्रेरित होना चाहिए। अगर आप उससे प्रेरित होंगे तभी आपके मन में यह इच्छा जागेगी कि मुझे भी उस बहन की तरह आत्मनिर्भर होना है। इसके अलावा आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में वही सफल होता है जो अपने पर विश्वास करता है। यदि आप अपने पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए, दूसरा कोई व्यक्ति आप पर क्यों विश्वास करेगा, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो आप अपने पर विश्वास पैदा कीजिए, आपको यह समझना चाहिए कि आप यह कार्य कर सकती हैं। व्यापार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक महिला जो सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे घर को संभाल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, खाना बना, आप देखो, आप कार्य देखिए, एक महिला की सुबह से आप दिनचर्या की शुरुआत करें आखिर तक शाम तक देखें, तो एक महिला इतना कार्य करती है कि अगर उसी कार्य को व्यापार के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा आत्मनिर्भरता होने का जरिया बन सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वह होता है निर्णय लेने की योग्यता, ठीक है, या निर्णय लेने की क्षमता। आप देखेंगे आपके जीवन में या कोई भी कार्य करते समय काफी बार ऐसे मौके आते हैं जहां आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। यदि आप उस निर्णय लेने की में क्षमता रखते हैं, तो निर्णय लिया, आपका निर्णय गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखो धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके सभी निर्णय सही होंगे। निर्णय हमारे गलत भी हो सकते हैं, निर्णय हमारे सही भी हो सकते हैं, बट हमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, हमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास होना चाहिए। तो एक सफल जो व्यवसायी है उसमें यह गुण तो सबसे पहले है। और मेरे हिसाब से हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, बट उन्हें उनको बस अपने अंदर झांकना है, उनको अपने अंदर से प्रेरणा लेके आनी है, उनको यह करना है कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी आत्मनिर्भर होना है, हमें भी स्वरोजगार पैदा करना है जिससे हम अपने परिवार का अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, ताकि उन बच्चों को भविष्य में इस तरह की मुसीबतों का सामना न करना पड़े जो शायद आज हमारी बहनें गांव में रहकर कर रही हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कि अगर आप एक उद्यम शुरुआत करना जा रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत के बाद आपको किन किन कार्यों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन कार्यों को आपने करना पड़ता है मैंने चरणबद्ध उन कार्यों को लिखा है ताकि आप यह समझ सके कि आप अगर एक बिजनेस या कोई भी व्यापार या कोई भी स्वरोजगार की शुरुआत करते हैं तो यह कार्य आपको जरूर करने होंगे। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है अवसर की पहचान करना। ठीक है, हमारे जीवन में अवसर आते जाते रहते हैं। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, घूमते घूमते आपने देखा कि फला जगह पर काफी लोग आते हैं, वहां खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, अगर आपने यह सोच लिया क्यों ना मैं हर रोज दोपहर के वक्त वहां जाकर कुछ खाने का सामान बनाकर जो घर में बनाया जा सकता है, ऐसा सामान जिसको आसानी से बनाया जा सकता है और वह खाने लायक है और आसानी से लोग खाते हैं, अगर आप वहां जाकर बेचना शुरू कर दें, हो सकता है शुरुआत में लोग ज्यादा ना खरीदे, पर अगर वह सामान आपका बिकने लग जाए तो यह अवसर होता है। इसे हम अवसर कहते हैं। अवसर कहीं भी आपको मिल सकता है, अवसर को पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए, हर जगह पर अवसर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्यमी का कार्य है, जो आपके लिए भी है, आपके लिए पहला कार्य यह है कि आप उस अवसर की पहचान करिए। आप यह देखो कि ऐसी क्या चीज आपके पास में है, ऐसा क्या मौका आपके पास में है, यदि आप उसे उस मौके को फायदा उठा पाए, उस मौके को व्यापार में बदल पाए। तो सबसे पहला काम है हमारा है अवसर को पहचानना। अवसर को पहचानने के बाद विचारों को कार्यान्वित करना। कई बार क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको पहल करनी है, अवसर तो मिल गया, आपको लग गया हाँ भी ये कार्य किया जा सकता है। अब उस कार्य को करने के बाद आपको यह देखना है कि उस विचार जो आपके मन में आया है उसको कैसे एक व्यापार के फॉर्म में लाया जाए, कैसे उसको जमीनी स्तर पर आप उस पे कार्य करिए। तो यह एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह होता है अपने विचारों को जमीनी स्तर पर लाकर कार्यान्वित करना ताकि कुछ शुरुआत की जा सके। इसलिए मैंने यहां सबसे पहले ही आपको बताया पहल सबसे इम्पोर्टेंट है, पहल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, और पहल विचारों को कार्यान्वित करना तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होगी। फिर संसाधनों को उपलब्ध कराना, जब आपके मन में यह बात बिल्कुल बैठ जाए कि अब तो मुझे कुछ कार्य करना है, आपने यह फाइनल कर लिया, यह आपने निश्चित कर लिया कि यह कार्य आप करेंगे, इस तरह का व्यापार आप शुरुआत करेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे उसको करने के लिए किन किन संसाधन आपको चाहिए, क्या क्या संसाधन आपको चाहिए। तो एक व्यापारी को इन सभी संसाधनों को इकट्ठा करना और उन संसाधनों को उपलब्ध कराना उसका कार्य होता है। जैसे मान लीजिए मैं खाने की बात, अब मैं देखो अगले भाग के अंदर मैं अलग अलग एक एक उस पे आऊंगा, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मान लीजिए कहीं हमने खाने का छोटा मोटा सामान बेचना शुरुआत किया, तो खाने को बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक, बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक हर तरह का संसाधन आपने जुटाना है, और क्योंकि हमारे पास में पैसा भी कम है, जोखिम उठाने की क्षमता कम है, तो इसलिए हमें यह सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे कम से कम पैसे से हम अपनी शुरुआत कर सकें। स्थापना करना, व्यापार को स्थापित करिए, शुरुआत करिए, उसके बाद प्रबंधन करना, ये सब एक व्यापारी का कार्य है। शुरुआत हो जाती है कई बार, शुरुआत में हमें रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, बट धीरे धीरे अगर हम डटे रहेंगे, अगर हमारी पहल ठीक थी, अगर हमारा अवसर ठीक था, तो उसमें वृद्धि भी होगी और उसमें फायदा भी होगा। आप देखेंगे जीवन में कभी भी ऐसा, कई बार ऐसा मौका आ जाता है, हमें यह लगता है कि अब यह कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम कुछ समय और कार्य करते रहे तो वह कार्य सफल हो जाता है, वही चीज व्यापार में होती है, ठीक है। तो यह सब चीजें हमें अपने दिमाग में बिठाकर फिर हम सोचेंगे कि क्या हमारी बहनें व्यापार करने के लिए उनमें इच्छा शक्ति है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रेरित होके वो अपने अंदर इच्छा शक्ति लेके आए, आत्मविश्वास पैदा करें, और उनके साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये कार्य उन्हें करने पड़ेंगे। अंत में इस कार्यशाला के अंतिम भाग में मैं यह जरूर बात करूंगा कि आपको स्वरोजगार के फायदे क्या है, व्यापार का आपके जीवन में क्या फायदा है, ठीक है। देखो, व्यापार का हमारे जीवन में सबसे पहला, सबसे मुख्य फायदा जो होता है वह होता है आत्मनिर्भर होना। हम अपने जीवन में जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों पर आधारित रहेंगे, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, और आत्मनिर्भर होने के बाद हम अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो आत्मविश्वास हमारी बहनों में आएगा, और उसके साथ जो उनके परिवार की तरक्की होगी, क्योंकि परिवार की तरक्की होगी तभी देश की तरक्की होगी। अगर परिवार ही हमारा उन्नति नहीं करेगा तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से दो चीजों में फायदा होता है, एक तो हमारी परिवार उन्नति करता है और परिवार के साथ साथ देश भी उन्नति करता है, परिवार आगे बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमारी एक विशिष्ट पहचान बनती है। अब हमारी जो बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ बहनें ऐसी होंगी जो आत्मनिर्भर हैं, जो कुछ ना कुछ कार्य करती हैं और उस कार्य करने से धन की अर्जन होता है उन्हें, तो वो जो उनकी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है समाज में, उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो जो विशिष्टता आपके अंदर आएगी, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका परिवार और देश उन्नति करेगा। तो अंत में कार्यशाला के पहले भाग के अंदर मैं यह आपको फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी बहनें जो घर में रहती हैं, वो कृपया करके अपने मन में यह जरूर लेके आए। देखो, सबसे पहली चीज आपकी इच्छा शक्ति है। जब तक आपके मन में इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें अपने मन में इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यह सोचेंगे कि किस तरह का व्यापार हमें करना है, कितना जोखिम हम उठा सकते हैं, और उस व्यापार को करने के लिए संसाधनों को कहां से एकत्रित करेंगे। रीड इंडिया हमारी बहनों को काफी सपोर्ट करती है, सहायता भी करती है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमने व्यापार के बारे में सीखा। कार्यशाला के दूसरे भाग में हम व्यापार की स्थापना से लेकर व्यापार के बाकी भागों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: माय नेम इज नौशाबा अंसारी, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है। उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ करके। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
3: हेलो, मेरा नाम दीपा है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा 1 बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैंने 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवर्क के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 महीने का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी, उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया, उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए, तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला। फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर कोर्स का कोर्स भी किया। उससे मैं मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
4: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा, और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे को वो हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है। टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ, ये कर सकती है कुछ।

0: अभिता और फर्रा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं, और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपैरल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपैरल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबीदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबीदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर से छोटे से मोहल्ले कलकत्त के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए हैं, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हूँ और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ कुछ चेंज करनी है। मुझे लड़कों से, लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, कवरलगा स्कूल, वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद, वहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के, खुद के पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को कोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था, बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर

0: में बहुत खुश आई, बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा और उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया। उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उसके पापा का काम छूट गया और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँगी। तभी मुझे री नौकर अकबर सर आए जहाँ और हमारा हॉल पसंद किया और रीड इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की, तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल, तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे, तो मैंने रीड इंडिया सेंटर चलाया और मेरा ये सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और काफी दिक्कत मुझे थी और लड़के से अच्छे से बोल नहीं पाती थी और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया, मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी जान मेरी जान पहचान बढ़ गई और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई, और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते, लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया और मेरे पास में लड़कियों को भेजा और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बातचीत करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने रहने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैर पर खड़ी हुई है, उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया। काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा रही, कमा भी रही हैं।
1: आपके साथ बैठी है फरा, और आप तो रीत से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीत से जुड़ी हैं, और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कल घर में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब
0: जी मैम,
1: पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अबिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अविदा की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
0: जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं, तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और

0: लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे, मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई फरा के जैसी भी कोई और है, करने के लिए जज्बा रखती है। तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए, तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का। और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़कियां नहीं निकल पाती है। तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें एक हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं। तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां ला के दी, और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई और लड़कियां आज इतनी हैं कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहाँ पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है या स्विमिंग का कोई काम है या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया, और वो फर्क लाने के लिए आबिता ने बहुत कोशिश की है और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही है, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150, 150 से 400 लड़कियां बन जाए, और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा, और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों और लड़कों तक पहुंचे और रीड का नाम बहुत रोशन। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
1: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आएं और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसेस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से। और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगा दी, क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम, और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है, इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली, जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ, तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ।
0: थैंक
1: अभी मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
0: मैम। ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनकी फैमिली को सपोर्ट ज्यादा नहीं था उन पर, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है, काफी लड़कियों के वालिद वालिद उनके पापा, तो लड़कियों को हमने हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट्स जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना खर्च भी उठा रही हैं और अपने घर का खर्च भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी और उन्होंने इतना कमाने लगी है वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़कियां ऐसी हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती है कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना खर्च अपने बच्चों का खर्च खुद खुद उठा रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर करे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया, दूसरा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा, जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम किन इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
0: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है, स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें रीड इंडिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विमिंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्प्रिंग बूट स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के, जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही हैं वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं, तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंग बूट स्कूल की भी क्लासेस ली जाती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे, कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक बेस बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेस बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर और क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं इस पे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में भी बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए, लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो हमने उन्हें बताया, बात करते हो फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हमसे ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है आप हमारे सूट भी देखो, वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे ले, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था, तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आ करके देखते हैं चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी वो चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ, तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास पहुंचती और हमने आपस में 20-20-30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज ये कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही है माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका है, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे, उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग थक जाते हैं आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो उसके बाद हम अपने घर में करेंगे, उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग थक जाते हैं आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है, फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम ला के चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उस

0: आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही है क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती है। तो सीखने के बाद जो फरह ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
1: जी मैम, मैं हमारे पैनल में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में एक ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आई, लेस वगैरह लेकर आई, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो, दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही हैं। उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे बात की कि मैम, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूं। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही
0: वेरी गुड, बहुत
1: हैं।
0: अच्छी बात है। और मैं फरह को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं बोलूंगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
1: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहन रही हैं तो प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं। बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आबिदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं, हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया, तो उसको ना नहीं करना है। चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे, कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो, या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
0: बहुत
1: जी
0: बढ़िया
1: मैम,
0: फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
1: पहले मैं थोड़ा बेबी क्रॉप से करवाती हूँ। बेबी क्रॉप वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेक वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस यही कहती है, मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट फरारे और पटियाला सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ। साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना, और लहंगा सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ। साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना, और लहंगा, और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
0: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
1: जी
0: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या
1: जी
0: हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
1: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे, तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी। और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में, तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं। ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं, वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोचें कैसे करेंगे। तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है, वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है।

0: रुझान है और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
1: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम,
0: ऑनलाइन ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सके, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सके आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सके फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना
1: टेक्नोलॉजी
0: चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
1: में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें स्विंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर में कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए, कंप्यूटर है यहाँ पर रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम टेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए, वो ऑनलाइन पे आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आके बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
0: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं, और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अमिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
1: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीट के जरिए हूँ और मैं रीट के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीट इंडिया, जैसे मेरा परिवार है मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीट इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीट इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम अच्छी तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रील इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ, अपने और अपने घर वालों।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबिदा, मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं, जैसे

0: एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, जैसे एजुकेशन है आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुके हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुके हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं, बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है, और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं, और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आए, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

नमस्कार बहनों, मैं रीड इंडिया द्वारा आयोजित वर्कशॉप के दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम दिनेश मिगलानी है। इस वर्कशॉप के पहले भाग में हमने यह सीखा था कि हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता की क्या उपयोगिता है, कैसे हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो घर की बहनें हैं, कैसे वो आत्मनिर्भर होकर अपना एवं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं एवं देश की उन्नति में अपना योगदान प्रदान कर सकती हैं। पहले भाग में हमने यह भी सीखा था कि व्यापार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें क्या क्या कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। यह हमारा भाग दो है वर्कशॉप का। इस भाग दो के अंदर हमारा जो मेन प्वाइंट है सीखने का वह यह है कि

व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए। व्यापार जो होता है, व्यापार करने के लिए हमारी एक व्यापारिक मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। व्यापारिक मानसिकता क्या होती है? व्यापारिक मानसिकता होती है कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए हम जोखिम उठाते हैं। तो व्यापार का पहला मूल मंत्र क्या है? जोखिम उठाना, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे मन में यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें व्यापार करना है, ठीक है। अब तक के सेशन में हमने यह तो समझ लिया था कि आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बट अब इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि व्यापार का पहला कार्य क्या है। व्यापार का सबसे प्रथम कार्य होता है अवसर की तलाश करना, सबसे पहला जो कार्य है। अगर आपके पास अच्छा अवसर है, ठीक है, अगर आपको यह पता चल गया कि मैं अगर ये काम करूं तो इससे मैं आत्मनिर्भर हो सकता हूं, तो आप मान लीजिए आधा कार्य आपका हो चुका है। जैसे हम जनरल एक हिंदी में बात कहते हैं ना कि किसी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आधा कार्य तो वहीं पर हो जाता है। ऐसे ही व्यापार में सबसे इम्पोर्टेंट यह होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह होती है कि अवसर की तलाश हो जाए, ठीक है। अब देखो, यदि हम व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो हमारे मन में कई तरह की संभावनाएं आती हैं, कई तरह की बातें आती हैं, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, ठीक है। कई तरह के अवसर हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमें हर जगह संभावना दिखती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी कार्य में संभावना दिख रही है तो मात्र उत्तेजना में आकर मैं वह कार्य शुरू कर दूं। पहले हमें यह समझना होगा कि क्या जो कार्य क्षेत्र में मुझे संभावना दिख रही है, क्या उस कार्य क्षेत्र के अंदर वो कार्य क्षेत्र व्यवहारिक है या नहीं है, क्या व्यवहारिक है उसमें व्यापार करना। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां बात करेंगे पहले कि क्या क्या अवसर हमारे पास में, हमारी बहनों के पास में हो सकते हैं जो गांव में रहती हैं या ऐसी जगहों पर रहती हैं जो शहरों से ज्यादा दूर नहीं है, शहरों के आसपास है, ठीक है। या हमारी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो वैसे नौकरी नहीं कर सकती बट कुछ अपनी ओर से कुछ कार्य करके पैसा कमाना चाहती हैं, तो इसमें देखिए, वैसे आजकल के समय में, आजकल के समय में सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा जो लोग शामिल है, वह खाने पीने की चीजों से रिलेटेड व्यापार में है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर आदमी अपना कुछ पैसा खाने पर खर्च करता है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली के पास किसी गांव में रहती हैं, या आप चंडीगढ़ के पास कहीं रहती हैं, या कोई बहुत बड़ा शहर या छोटा शहर भी आपके पास में है, तो अगर शाम को मार्केट में घूमने भी चले जाएं तो आप यह देखेंगे कि जगह जगह पर लोगों ने अपने ठेले लगा रखे हैं, ठीक है, और उन ठेलों पर वह वो सामान बेच रहे हैं, वो खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं जो घर में बड़े आसानी से बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि देखो हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ जो पुरुष उनके घर में है या उनके कुछ बच्चे जो एज में उनकी काफी एज है, तो वो उनकी सहायता कर सकते हैं बाहर जाके खाने पीने चीजों को बेचने में। जैसे कि गोलगप्पे हैं, पानीपुरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, पानी पूरी को बनाना कितना आसान है, कुछ भी नहीं लगता उसके अंदर, ठीक है। और एक पानी पूरी 2 या 3 रुपए की ज्यादा की आपकी बिकती है, और अगर आप किसी बड़े शहर में उसे बेच रहे हैं तो वो ज्यादा की आपकी बिकने वाली है। पानी तो बेचना आपने, ठीक है, तो चीजें आसान है, तो आपको अवसर तलाशता है। तो खाने पीने की चीजों में आप और बहुत कुछ देख सकते हैं, ऐसी ऐसी सूखी चीजें होती हैं जो खाई जाती हैं, ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं खाना, तो उनको बेचा जा सकता है। इसके अलावा कढ़ाई बुनाई और सिलाई से रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि हमारी गांव की महिलाएं कढ़ाई और सिलाई में काफी तेज होती हैं, मतलब क्योंकि यह प्रशिक्षण उन्हें अपने परिवार से ही मिलता है, ठीक है। तो आज के समय में सभी महिलाएं शहर में आप देखेंगे, या सभी लोग अपने घरों को चमकाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में साज सज्जा हो, तो जो हाथ से बुनाई हुई चीजें काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो यदि आप में हाथ की कला है जिसमें आप सिलाई कर सकती हैं,
कढ़ाई कर सकती हैं, तो आप छोटी-छोटी कपड़ों पर कढ़ाई करके उसको एक डिजाइनिंग पीस में बना के शहर में बेच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वेटर एवं डिजाइनदार कपड़े, आज के युग में, आज के समय में जो महिलाएं शहरों में रहती हैं, नौकरियां करती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वे अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना सकें, तो जनरली वो महिलाएं क्या करती हैं, दुकानों पर जाकर स्वेटर खरीदती हैं। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लीजिए आप जहां रहते हैं आपसे पास कोई शहर या गांव है, आप उस गांव में अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके देखें तो आपको स्वेटर बनाने के ऑर्डर मिल सकते हैं, तो आप एक बच्चे का नाप लेके उसकी स्वेटर बना सकती हैं। तो यह एक तरीके से आपका आत्मनिर्भर होने का जरिया हो सकता है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि ऊन जो है वह तो जिस परिवार ने बनवानी है अपने हिसाब से आपको देगा, ठीक है। तो आपको तो ओनली जो आप अपने हाथों से काम कर रही हैं उसी की ही मेहनताना आपको मिलना है। इसके अलावा साज सज्जा का सामान है, मैंने पहले ही आपको बताया कि सभी लोग अपने घरों को ऐसा चाहते हैं कि उनका घर चमका चमका रहे, घर उनका शानदार सा दिखे, ठीक है। तो घर को शानदार दिखाने के लिए हम साज सज्जा का सामान बनाते हैं। तो यदि हमारी कुछ महिलाएं, अगर आप में कुछ ऐसा हुनर है जो आप ऐसे डिजाइन बना सकती हैं मिट्टी के उससे कपड़े के ऊपर जो घरों में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सौंदर्य से आधारित, हर महिला अपने आप में सुंदर दिखना चाहती है, चाहे कोई भी महिला, मैं कहता हूं चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर महिला यह चाहती है कि वह सुंदर दिखे। अगर वह कहीं से जाए तो लोग माने कि हाँ वो सुंदर है, ठीक है। तो आज के समय में चाहे आपके पास पैसा है चाहे पैसा नहीं है, चाहे आपके आमदनी के साधन है चाहे आमदनी के साधन हमारे कम है, फिर भी हमारी महिलाएं जो भी उनके पास में चीजें अवेलेबल है उनको यूज करके सुंदर दिखना चाहती है। तो यदि आप सौंदर्य से आधारित कार्य कर सकते हैं जिसमें छोटा मोटा आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, मैं एक ब्यूटी पार्लर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप अपने घर से ही जिसमें छोटी-छोटी महिलाओं की जो जरूरतें हैं वह कार्य सीख के आप अपना कार्य शुरुआत कर सकती हैं। जैसे कि हमारी जो संस्था है रीड इंडिया है, यह हम अपनी लाइब्रेरीज या अपने सेंटर्स के माध्यम से आपके ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग देती है, ठीक है। और यदि आप हमारी संस्था के थ्रू जुड़े हैं और आप अगर आप ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेते हैं तो इतना तो आप सीख ही जाते हैं कि कैसे महिला को सुंदर दिखाया जाए, ठीक है। तो यह एक आपका अच्छा कार्य हो सकता है। इसके अलावा आप बच्चों के खिलौने बना सकते हैं, लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, यह वो चीज है जो हमेशा चलती है। देखो कोई भी इंसान है जब उसका बच्चा कुछ भी मांगे उससे, ठीक है, जब छोटा बच्चा है तो खेलने के लिए इंसान, अब चाहे उसका इनकम सोर्स है या नहीं है, फिर भी वह बच्चों के लिए काफी पैसा खर्च करता है। तो आप कोई भी, जैसे आप देखेंगे शहरों के अंदर शाम को या सुबह में जो गुब्बारे वाले होते हैं वह भी एक अच्छी कमाई कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपका बच्चा गुब्बारे की डिमांड कर रहा है, गुब्बारा मांग रहा है, तो आप उसे गुब्बारा लेके देंगे। और आप सोच के देखिए, एक गुब्बारे को फुलाकर और उसको एक डोर से बांधने में आपका कुल खर्च कितना है और कुल कितना पैसा उसके लिए लिया जाता है। 10 रुपए से कम गुब्बारा नहीं बिकता, ठीक है। और यदि आप उस गुब्बारे पे खर्चे की बात करें तो आपका 1 से 2 रुपए का गुब्बारा आता है, 1-2 रुपए आप यह मान लीजिए उससे जो आपने डोर बांधी है, तो 3 से 4 रुपए के खर्च को आप 10 रुपए तक बेच सकते हैं, ठीक है। ये एक सोच की बात है, अभी देखने में हमें लगता है कि यह बेचना बहुत मुश्किल होगा, पर आप देखिए हजारों लोग ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के डिजाइनदार बर्तन आप सकते हैं बना। देखो गांव में हम बहुत तरह की कलाएं सीखते हैं, अगर हमारे हाथ में हुनर है, तो हम ऐसी कोई भी चीज बनानी सीख सकते हैं। और यह सब चीजें शहरों में बड़ी आसानी से बेची जा सकती हैं। आप देखिए किसी भी बाजार के अंदर, कोई जो बड़े बड़े शहर है वहां तो सड़कों पर बाजार लगता है, ठीक है,
सड़कों पर बाजार लगता है तो लोग आते हैं, अपने से जो भी सामान उन्हें चाहिए उन्हें खरीदते हैं। तो यदि आप कोई ऐसी चीज बनाने में अगर आप में हुनर है तो यह भी आपके आत्मनिर्भर होने का रास्ता खोल सकती है। इसके अलावा पापड़, अचार, जो ऐसी सूखी चीजें हैं, देखो अचार है, जो लोग बहुत साफ सुथरा ढंग से अचार बनाते हैं, यदि वह शहर में जाकर उसका विपणन करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो अचार बिकना शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से ताजी चटनी, कटी हुई सब्जियां, देखो आजकल के युग में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो महिलाएं जॉब करती हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी है चाहे वह प्राइवेट नौकरी है, तो वो महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर के छोटे मोटे कार्य जो हैं वह उन्हें किए मिले। तो आजकल आप देखोगे, पहले मार्केट में जाते थे तो वहां सब्जी खरीदी जाती थी, ठीक है, बट आज जमाना ऐसा आ गया है कि मार्केट में कटी हुई सब्जियां खरीदी जाती हैं। अब आप आलू वाले भैया को बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो आलू देना, अब आप ये नहीं कहोगे 1 किलो आलू देना, आप उसे ये कहेंगे मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो 1 किलो कटे आलू देना। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि यह वो सारी बातें हैं जिनको जिनमें से आप यह देख सकते हैं कि व्यापार की, इन सब चीजों में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हो सकती है, क्योंकि जब आप अवसर के बारे में सोचती हैं, अवसर के बारे में तलाश शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या आता है। ठीक है, और कई बार ऐसी चीज होती है जो हमें आती नहीं है, बट हमारे मन में आता है कि इस चीज से कोई ना कोई व्यापार किया जा सकता है। तो इस तरह से इन सभी अवसरों को कुछ मैंने यहाँ पर बताए हैं, या इसके अलावा बहनें हमारी इतनी सारी यहाँ बैठी हैं, और मैं तो यह मानता हूं कि हमारे बहनों की जो सोचने की शक्ति है वह सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहनें आपस में एक समूह में होती हैं। जब आप किसी समूह में बैठे होते हो तो इतने सारे दिमाग एक साथ कार्य करते हैं, तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं भी यह आइडिया आपके मन में है। तो जो भी आइडिया आपके मन में आए, जो भी व्यापार करने की बात आपके मन में आए, आप यह उस व्यापार करने के मुद्दे को अपने सहेलियों के साथ में उनसे बात करिए, क्योंकि जब आप किसी आइडिया को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको उसमें से कुछ और अच्छी बात सुझा सकता है। तो पहला जो हमारा मुद्दा है वह है अवसर को तलाश करना। मैं फिर बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूं, यहाँ पर हमारी महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, यदि उनके मन में कोई भी अवसर है, यदि उन्होंने किसी अवसर को अगर तलाश लिया, ठीक है, और उत्तेजना में आकर व्यापार शुरू कर दिया, उत्तेजना मैं नहीं कहूंगा, पहले सोच समझकर अगर उन्होंने सारी बातें सोच समझकर कार्य करना शुरू करा, तो 100% उनका कार्य यह है सफल होगा। ठीक है, अब अवसर तो तलाश लिया, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, मैं मान रहा हूं, कुछ बातें मैंने बताई हैं, कुछ आप लोग भी आपस में बात करेंगे, तो यह मैं मान के चल रहा हूं कि अवसर तो हमने तलाश लिया। अब अवसर तलाशने के बाद में यह नहीं है कि जैसे ही आपने अवसर तलाशा तो मतलब आपका व्यापार चल पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अवसर तलाशने के बाद में हमारी जंग शुरू हो जाती है, हमारी जंग शुरू हो जाती है किसके साथ में, हमारी जंग शुरू हो जाती है भाग्य के साथ में, हमारी जंग की शुरुआत हो जाती है जो मार्केट में दूसरे लोग हैं जो उसी तरह के सामान को बेचते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो कार्य हमारे करना होता है वह होता है विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान, अब आपको लगेगा कि विपणन क्या होता है और अनुसंधान क्या चीज होती है, तो विपणन अनुसंधान से हमारा मतलब यह होता है कि आइडिया या जो हमने अवसर के बारे में बात करी है, अब हम यह देखेंगे कि उस अवसर में कितना दम है, क्या जो हमारा ग्राहक है क्या वह उसे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, क्या हमारा ग्राहक जो हमारा जिसको हमें सामान बेचना है वो उसमें अलग क्या चाहता है। तो विपणन अनुसंधान के अंदर सबसे पहले हम ग्राहक की बात करते हैं, सबसे पहला हम क्या बात करते हैं, ग्राहक की, क्योंकि अंत में पैसा तो आपको ग्राहक नहीं देना है,
मतलब सारी बातें अपनी जगह, कोई भी अगर हम इसमें से सामान को चुनाव करते हैं, कोई भी व्यापार करने की शुरुआत करने की बात करते हैं, तो अंत में जो पैसा है, जो सामान बेचा जाएगा, वह तो किसको बेचा जाएगा, ग्राहक को ही बेचा जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ग्राहक के बारे में सोचना होता है कि ग्राहक क्या हमारी वस्तुओं को पसंद करेगा या नहीं करेगा, और क्या ग्राहक हमारी चीजों के बारे में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ग्राहक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राहक को समझने के लिए हम पहली चीज यह देखते हैं कि

को टारगेट करके अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अंत में पैसा तो ग्राहक ने ही देना है। इसके अलावा मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सामान हम बना रहे हैं, उससे दूसरे सामान और क्या क्या अवेलेबल है, ये हमें जरूर देखना होता है। ऐसा नहीं कि उत्तेजना में आकर हम अपना कार्य शुरुआत कर दें और जब हम मार्केट में सामान बेचने जाएं तो हमें यह पता चले कि हमारे सामान के अलावा जो दूसरे सामान मार्केट में उपस्थित है वह क्वालिटी वाइज या उनमें गुणता हमसे ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों के प्रोडक्ट्स को भी देखना है, उनको समझना है कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या है और हम अपना जो सामान बनाएंगे हम उनसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा सामान दूसरों के सामान से बेहतर होगा तभी उसका मार्केट में बिकने के चांसेस ज्यादा है, तभी हम एक अच्छी बाजार में अपने आप को अच्छा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दूसरों के सामान को भी देखना होगा। सामान को देखने के बाद फिर हम यह देखेंगे कि हम अपने सामान को दूसरों के सामान से कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और फिर यह भी आपको समझना है कि क्या हमारा सामान जो हमने बनाया है क्या वह ग्राहक की इच्छाओं को पूरा करता है, क्या वह ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि हमारा सामान ग्राहक की आवश्यकताओं को दूसरों के सामान से ज्यादा पूरा करता है तो इसका मतलब हमारे सामान को मार्केट में चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा एक मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर इंग्लिश के अंदर, पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग, अब हमारी कुछ बहनें हैं वह नहीं समझ पाएंगी कि पायलट क्या होता है। अब ये तो आपको पता ही है बहनों कि पायलट का मतलब होता है जो जहाज उड़ाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि किसी को हम जहाज दे रहे हैं तो पहले ही उसे कहें जा बेटा जहाज उड़ा, हजार सवारी ले जा साथ में, ऐसा तो नहीं है। पहले हम कुछ थोड़े से पोर्शन पे ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार में नमक खरीदने चले, और हमने जो सड़क के किनारे नमक बेच रहे हैं उनसे बात करनी शुरुआत करी, वहां दो ढेरियां लगी हुई थी। ठीक है, एक ढेरी में नमक था और दूसरी डेयरी में भी नमक था। हमें यह देखना था किस डेयरी का नमक हम लें, तो हम क्या करते हैं, चुटकी भर लेते हैं, अपनी जीभ पर लगाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें जो नमक पसंद आता है उसको हम लेते हैं। सेम यहां पर है, यदि आपके मन में कोई अवसर आ गया और आपका मन पूरा बन गया कि मुझे इस अवसर पे व्यापार करना है तो अपने ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय पहले हम थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे और उसे उस थोड़े से सामान को मार्केट में बेचने का प्रयास करेंगे, यह समझने के लिए कि क्या हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक नहीं है और हम काफी ज्यादा सामान बना लेते हैं तो इसमें हमारा जोखिम ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले कुछ सामान बनाकर हम मार्केट में बेचने की ट्राई करें, बेचने की कोशिश करें, और यदि हम अपनी कोशिश में सफल हो जाते हैं और ग्राहकों के फीडबैक से, जो ग्राहक हमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो हम आगे नई से नई चीजें बना सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आगे हम ज्यादा सामान नहीं बनाना चाहिए, पहले हमें उस सामान की मार्केट में पायलट टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या वह हमारा सामान जो है मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। इसके अलावा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में, आज के समय में साफ सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी ग्राहक, कोई भी, मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे अगर कुछ भी खरीदना है तो पहली बात मैं सामान को देखूंगा क्या साफ सफाई है, या जहां पर वह बनाया जा रहा है या जहां पर बैठ के आप उसे बेच रहे हो क्या वह साफ सुथरी जगह है या नहीं है। तो सामान को बनाने से लेकर उसको बेचने तक, किसी भी सामान को बनाने से लेकर और उसे बेचने तक साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई हमारे देश की पहचान है। मोदी जी का नारा है ना, स्वच्छ भारत।

0: तो ये जो स्वच्छ भारत की बात है वो इसी बात से निकली हुई है, साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, खाने पीने की चीजें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पैकेजिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? पैकेजिंग। पैकेजिंग आकर्षित होनी चाहिए। देखो, आप मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप सामान को देखते हैं, जो सामान सबसे ज्यादा आकर्षित ढंग से जिसको पैक किया जाता है, हमारा मन पहला उसी पे टिकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, और देखो सामान तो जब आप यूज करते हैं उसके बाद ही समझ में आता है कि वो कितना आपके लिए कारगर होगा, पर सबसे पहली चीज जो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है वह होती है सामान की पैकिंग। तो पैकिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चों के गिफ्ट की बात भी करें तो हर चीज को पैक किया जाता है, पैक करने का एक उपयुक्त तरीका होता है। तो रीड इंडिया के सेंटर्स के माध्यम से पैकेजिंग कोर्स भी चलाए जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि सामान को कैसे पैक किया जाए, कैसे रैप किया जाए अच्छे रैपर्स के अंदर। तो पैकेजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप अचार बेच रहे हैं, आप चटनी बेच रहे हैं, तो उसको किस ढंग से पैक किया जाए। ठीक है, पैक करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए ताकि ग्राहक उसको देखते ही समझ जाए कि इसके अंदर क्या चीज है। ठीक है, और अंत में हम बात करेंगे मूल्य निर्धारण की। अब यह काफी ज्यादा कठिन प्रश्न हो जाता है कि सामान का मूल्य क्या रखा जाए, सामान का मूल्य क्या रखा जाए। ठीक है, और तो जो सामान हाथ से बनाया जाता है वैसे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम तो एक चीज कहते हैं कि जो हाथ से बनाई जाती है वह अतुलनीय चीज है, वह मतलब बेशुमार कीमती है। पर ऐसा नहीं है, ग्राहक तो कीमत के हिसाब से ही अपने सामान, उपयोगिता के हिसाब से ही सामान खरीदेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? ऐसा नहीं कि हम यह चाहें कि इतना मुनाफा कमा लें कि एक ही सामान को बेचकर मुनाफा कमाएं। देखो, मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम अपने सामान की कीमत को ज्यादा रखें, ठीक है, दूसरा हम अपने सामान की कीमत में हमने मन में सोच लिया कि यदि मेरी 100 रुपए लागत है, 100 रुपए की लागत के ऊपर मैं कम से कम 15 से 20% का लाभ चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने एक परसेंटेज अपने मन में फिक्स कर ली, तो मैं सामान की कीमत को इस तरह से रखूंगा कि लागत के बाद जितना मुझे लाभ चाहिए उतना मैं लाभ उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, या हम क्या करें कि अपने सामान की सेल को बढ़ाएं। यदि ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा सामान बिकेगा, तो ज्यादा सामान बिकेगा तो कम, अगर कीमत कम भी है, कीमत अगर कम भी है तो भी हमें लाभ उतना ही होगा। तो हमें यह सोचना चाहिए कि एक बार में लाभ न कमा लिया जाए, लाभ कमाएं, मुनाफा कमाएं, बट ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा मुनाफा कमाएं कि ग्राहक दूसरी बार हमारे पास आए ना। तो हमारे सामान में क्वालिटी के हिसाब से, सामान की उपयोगिता के हिसाब से हमें उसका मूल्य निर्धारण करना होता है। मूल्य निर्धारण करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम जो हैं उनका मूल्य कितना है। ऐसा ना हो कि हमारे सामान का मूल्य उनके मूल्य से काफी ज्यादा हो, जिससे कि हमारे सामान के बिकने के जो चांसेस हैं वह कम हो जाए। तो हमें मूल्य निर्धारण पे भी काफी ध्यान देना चाहिए। तो इस भाग के अंदर हमने कई बातों पर बात करी, तो आशा है मुझे कि हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं उनको यह समझ में आया होगा कि व्यापार करना जितना बाहर से आकर्षित करता है अंदर से उतना आसान नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है हर हिस्से में, व्यापार के हर भाग में। ये नहीं कि हमने सामान बना लिया और हम यह सोचें कि हमारे घर से बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके अलावा सामान तो हमने बना लिया अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बनाया गया सामान ग्राहक की सोच से यदि मैच नहीं करता तो वह सामान हमारा बिकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ग्राहक हमारे लिए देवता है, जैसा ग्राहक चाहेगा सामान तो हमें वैसा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तेजना में आकर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर बड़े स्केल पर सामान बना दिया जाए और फिर हम उसे बेचने जाएं मार्केट के अंदर, तो यह भी मूर्खता होगी। पहले हमें यह देखना चाहिए, थोड़ा बहुत सामान बनाकर बेचने की ट्राई करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि किन किन मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है या हमारे सामान में किन किन बातों किन किन चीजों से सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज जितनी अच्छी पैक्ड होगी, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, उसकी उतनी ही उपयोगिता ज्यादा है, उतने ही वह ग्राहकों को आकर्षित करती है और उसके बिकने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। और मूल्य तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है कि ग्राहक आपका सामान तभी खरीदता है जब वह सामान उसकी उपयोगिता के हिसाब से जो मूल्य आप उसे बता रहे हैं उसके साथ यदि वह मैच कर जाता है तो ग्राहक आपका सामान जरूर खरीदेगा। आशा है इस भाग को, वर्कशॉप के इस दूसरे भाग को समझने के बाद आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि व्यापार करने की शुरुआत कैसे की जाती है और कैसे कैसे हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। इसी वर्कशॉप के भाग तीन के अंदर हम यह सीखेंगे कि मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए। सामान तो आपने बना लिया, मूल्य भी निर्धारण कर लिया, कंपेयर भी कर लिया, कैसे मार्केटिंग करी जाए। और इसके अलावा मार्केटिंग के अलावा हम यह भी देखेंगे कि कैसे अपने खाते बनाए जाए। मतलब आप कुछ ना कुछ खाता बना जरूर होना चाहिए ताकि आप यह देख पाएं कि कितनी हमारी लागत लग रही है, कितना हमारा खर्चा आ रहा है और महीने या दो महीने के अंत में हमें कितने का लाभ होगा। तो वह हम इस वर्कशॉप के भाग तीन में सीखेंगे। आशा करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। हम परिवार में पांच सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और तीन बहन भाई। मेरा भाई 9th class में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही हैं हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो भाई की, छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
3: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी 10 साल की थी और 6th class में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी, अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में, मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज की मानते हैं आजकल के ना, बॉयज की बहुत डिमांड वगैरह है, और गर्ल्स से जो कुछ कर दे जैसे बॉयज के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमजोर पता नहीं क्यों समझते हैं आज के देश में, नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज कमा के नहीं खिला सकते। और बॉयज से ना बहुत मतलब भी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज की तरफ तो बहुत ही कमी जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं, और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी जिंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयज होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, और साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: अच्छी हूँ मैं।
0: सब अच्छे हैं? सब सबकी फैमिलीज ठीक हैं? एवरीबडी इज डूइंग वेल। तो अभी का जो सेशन है ये सेवेंथ सेशन है। हमने अभी तक 7 सेशन करे हैं। हालांकि जो हमने सीरीज शुरू करी थी उसमें एक एक टॉपिक अभी बाकी है। बट व्हाट आई थॉट वाज कि प्रोबेबली वी कैन डू समथिंग व्हिच इज आल्सो रिलेटेड, व्हिच इज अ प्रिपरेशन फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो आज का सेशन मैंने उस तरीके से डिजाइन किया है। होपफुली ये हम सभी के लिए और हमारे जो बेनिफिशरीज जो इस ट्रेनिंग में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए बेनिफिशियल हो। अभी तक जो हमने बात करी थी लाइफ स्किल्स की, आई एम श्योर आप अपने आगे बेनिफिशरीज के साथ वो सेशंस होस्ट कर रहे हैं। अगर कोई चैलेंज है, अगर कोई इश्यूज हैं, तो हम अलग से एक दिन एक सेशन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था, जिसमें कि हम कुछ क्वेरी है तो आपस में मिलके उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉट टेकिंग मोर टाइम ऑन दिस, मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। अगेन एज आई सेड कि दिस इज अ लाइफ स्किल सेशन फॉर प्रोफेशनल्स, मतलब कि कोई जॉब करना चाहता है या कोई अपना काम करना चाहता है, तो ये लाइफ स्किल के सेशंस उन बेनिफिशरीज के लिए हैं जो कि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं या इवन अपना कोई काम करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे कि हम लोग दूसरे से अलग दिख सकते हैं। ये सेशंस उसके बारे में है। आज का जो सेशन है, आई जस्ट शेयर माय स्लाइड्स। तो जैसे कि हमने बताया कि आज का ये सेशन हमने ये रखा है कि अगर हमें सब आ गया, हम कॉन्फिडेंट भी हैं, हमें अपने बारे में पूरा पता भी है कि हमारी क्या क्या चीज हमें है और किस तरह के जॉब के लिए हम जा सकते हैं, क्या हमें कोई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का जॉब के लिए अप्लाई करना है या टेक्नोलॉजी में कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है या जो ट्रेनिंग हम हॉस्पिटैलिटी में दे रहे हैं उसका कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है या हम जो रेडियो और ऑडियो वीडियो एडिटिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, टैली की ट्रेनिंग है, टैली में जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो हमारे बेनिफिशरीज को अभी तक कुछ ना कुछ स्किल्स तो आई है, या तो हमारे सेंटर से उन्होंने वो स्किल ली है या फिर उनको पहले से वो आती थी या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने वो स्किल को एक्वायर कर लिया। तो ये हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बेनिफिशियरी है उसको या तो आता है या वो सीख रहा है या सीख रही है या सीखना चाहता है या सीखना चाहती है। लेकिन
2: हाँ
0: कई बार क्या होता है, स्किल आते हुए भी जो हमें आता है वो आते हुए भी हम अपनी बात कहने में हम डिलीवर नहीं कर पाते जब हम एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक हवा बना रहता है कि कोई सामने वाला मुझे इवैल्यूएट करेगा और मुझे इवैल्यूएट करेगा तो मुझे अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है। तो वो एक जो डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में या एक खौफ बैठ जाता है, उसकी वजह से कई बार हम लोग उतने अच्छे से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते या हम प्रेजेंट अपने आप को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये सेशन के थ्रू एक कोशिश है जिसमें कि आपकी जो कला है या जो आपका जो स्किल है जिसके लिए आप अपीयर करने वाले हैं इंटरव्यू में, उसके साथ साथ आप अपनी पर्सनालिटी को या अपने हाव भाव को या अपनी बातचीत को रखेंगे तो वो कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ प्रिपरेटरी पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम एटलीस्ट अगर इनको हम करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती कोई इंटरव्यू में। पॉजिटिव होगी कि नहीं वो आपकी डिलीवरी ऑफ इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर कोई एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो मार्किंग सिस्टम होता है, मान लीजिए उसी जॉब के लिए 100 लोग अपियर कर रहे हैं, 200 लोग अपियर कर रहे हैं, 10 लोग अपियर कर रहे हैं, तो किस किन पॉइंट्स पे आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं या एटलीस्ट आपके मार्क्स कट ना हो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आपका इम्प्रेशन डाउन ना हो जब आप एक इंटरव्यू पैनल में जाते हैं या 1-to-1 जाते हैं। तो जॉब इंटरव्यू क्या होता है, कोई कोई बता सकते हैं? आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से कभी किसी ने कोई इंटरव्यू दिया है? कोई मुझे वॉलंटियर कर सकता है कि इंटरव्यू क्या होता है, जॉब इंटरव्यू? बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने सभी ने जॉब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बिना तो शायद किसी को भी जॉब नहीं मिला होगा। आई हैव नेवर सीन एनीबडी, इवन टॉप पोजीशंस में तो मल्टीपल इंटरव्यू होते हैं, आठ आठ नौ नौ लेयर्स ऑफ इंटरव्यू होती है अगर एक टॉप पोजीशन पे किसी को रखा जा रहा है तो। कौन सा ये जॉब इंटरव्यू क्या होता है
1: मैम
0: जी? कौन बोल रहे हैं
1: आकांक्षा,
0: जी? आकांक्षा, आप कौन से सेंटर से हैं?
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कौन से सेंटर से हैं आकांक्षा? महाराष्ट्र?
1: महाराष्ट्र
0: जी बोलिए।
1: मैम, जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यू इंटरव्यू भी रहते हैं, और वो बहुत से मतलब उस इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। वो इंटरव्यू हर एक से कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वो जो इंटरव्यू होते हैं अपने क्वेश्चन के बेस पे जैसा उनको आंसर मिलता है वो उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि किसको ये जॉब प्रोवाइड करना चाहिए, कौन इस जॉब के लायक है।
0: तो वो इंटरव्यू में क्या देखते हैं? जो जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू ले रही हैं और मैं अपियर कर रही हूँ एक इंटरव्यू में, तो आप मेरे में क्या देखना चाहेंगे आकांक्षा?
1: मैम मैं ये देखना चाहूंगी कि जो जॉब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्या आप उस जॉब को कर सकती हो, उस लायक हो या नहीं।
0: तो आप
1: इट्स
0: वो
1: लाइक
0: बिल्कुल सही,
1: अगर कोई फाइनेंशियल चीज हुआ तो मैं आपसे फाइनेंस के बारे में करके कुछ क्वेश्चन करूंगी एंड ऑल।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप मुझे इवैल्यूएट करेंगी कि जो पोस्ट निकाली है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं या मेरे साथ जो 10 लोग आए हैं उनमें से कौन इस पोजीशन के लिए बेस्ट सुटेड है, तो उस पोजीशन के लिए आप क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे? आकांक्षा के अलावा कोई और भी बता सकता है? अब हमारे सामने एक केस है कि हम एक पोजीशन के लिए कैंडिडेट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये जॉब इंटरव्यू होता है, ये जॉब इंटरव्यू का मकसद होता है। तो अब कोई बता सकता है कि एज ए इवैल्यूएटर आप क्या इवैल्यूएट करेंगे? आपके सामने मेरा सीवी रखा है, आप सीवी में पढ़ लीजिए कि मुझे मुझे क्या आता है, मैंने क्या किया है, क्या नहीं करा। आप फिर जॉब इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं?
2: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी।
2: मैम दिस इज निशा फ्रॉम वजीराबाद सेंटर।
0: नमस्ते निशा जी, कैसे हैं?
2: मैम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
0: सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी बताइए।
2: तो मैम आई थिंक जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो सबसे पहले ना कॉन्फिडेंट लेवल चेक किया जाता है।
0: तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि हम ये जॉब कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट है कि नहीं, ये एक मकसद होता है, क्योंकि सीवी में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में आप कर भी पाएंगे कि नहीं, वो जज करने के लिए या वो इवेल्युएट करने के लिए इंटरव्यू किया जाता है। और कोई और किसी का कोई और पॉइंट निशा के अलावा?
3: हेलो मैम, रेनू बोल रही हूँ, ग्रेटर नोएडा सेंटर से।
0: नमस्ते रेनू जी, बताइए।
3: नमस्ते मैम। मैम अगर हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मीन्स जो दो बातें भी हमने डिस्कस कर ली कि एक तो हम कॉन्फिडेंस देखते हैं, या आप एक कह रहे हैं कि एक रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, बट कभी जब हम लोग जाते हैं तो हमें क्या नॉलेज है, तो हम इंटरव्यूअर हमसे कहता है कि आप अपने आप मतलब अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा समरी या समराइज करके बताइए कि आप कैसे अपना ऑफिस को रन करते हैं, या हमने बताया जो भी हम इनको सिचुएशन देते हैं, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं हम उसमें कि हम ये है, हम ये है, ये है, वो फिर वो ये कह सकते हैं कि यार ठीक है आप हमारा ये पढ़ा है, हमारा बिल्कुल बेकार में इस मैसेज आए, अब आप इसमें क्या नया कर सकते हो। तो एक यहाँ पर भी एक क्वालिटी जज की जा सकती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, या आपके पास आप आइडिया इनोवेटिव आइडियाज आपके पास है कि नहीं है।
0: वेरी गुड।
3: और आई थिंक
0: तो हमारी दो या तीन चीजें आ गई। पहला कि इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने सीवी में लिखा है वो हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा चेक करते हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे इनोवेशन की जरूरत है, आप इनोवेटिव हैं कि नहीं, वो आपको अलग अलग सिचुएशंस में डाल के आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछ सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आप अगर एक सिचुएशन दी जाए तो उसमें आप किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे या काम करेंगे। वेरी गुड। सो नीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
4: यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी, कैसे?
4: मैम ने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते हैं, इसके अलावा मैम पर्सनैलिटी, इंटरव्यू के द्वारा हम पर्सनालिटी भी सामने वाले की देख सकते हैं, और अवेयरनेस अबाउट द जैसे कि सामने अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में कितना अवेयर है, स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग, रिटन भी हम देख सकते हैं।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मुझे याद है हम दोनों ने मिलके ही हमारी जो स्कूल था प्री स्कूल का उसका एक इंटरव्यू किया था. तो हमने किन किन कैटेगरीज पे अपनी टीचर्स को इवैल्यूएट किया था. एब्सोल्युटली राइट, बच्चों के साथ काम करना है, उनकी राइटिंग स्किल कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग है कि नहीं, और ये सब चीजें हम इंटरव्यू में ही जज कर सकते हैं. हम सीवी देख के नहीं जज कर पाते या फोन पे बात करके ज्यादातर नहीं जज कर पाते. तो इन सब पॉइंट्स जो सभी मेरे साथी हैं उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट्स. और भी बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, बट कहने का मकसद ये था कि इंटरव्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करता है, आप दोनों इवेल्युएट कर सकते हैं. अभी तक हमने जितने पॉइंट सुने हैं वो हमने यही सुने हैं कि एज अ कैंडिडेट आप में क्या क्या चीजें हैं, बट कैंडिडेट का भी ये राइट है कि वो पूछ सकता है या वो देख सकता है या वो देख सकती है, जज कर सकती है कि जिस एनवायरमेंट में वो काम करने जाने वाला है या जाने वाली है वो एनवायरमेंट उसको सूट करता है, उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता है कि नहीं करता. इट्स अ टू वे प्रोसेस. तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कॉन्फिडेंट रहिए कि आप भी सिर्फ इवैल्यूएट नहीं होंगे, आप भी इवैल्यूएट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं. कॉल सेंटर का जॉब है क्या, रात की ड्यूटीज लगेंगी, रात की ड्यूटीज क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अच्छा कैसा एनवायरमेंट है वहां पे, सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, अगर गर्ल्स जा रही हैं लेडीज जा रही हैं उनकी क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, आपका भी पूरा अब बनता है कि आप देखें इवैल्यूएट करें अपनी सूझबूझ से. सो इंटरव्यू इट्स अ मीडियम कि जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है, मेरे और मैम के जैसे जैसे 14-14 साल से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो एक लाइफ टाइम हो सकता है. बट यू हैव टू इवैल्यूएट दैट दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कम्फर्ट कि आप एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और सामने वाला एज एन एम्प्लॉई आप दोनों का मेल बैठता है एक पोजीशन के लिए जिसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया. ये कहना बहुत आसान है, कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है. हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम इंटरव्यू करने जाते हैं, हम ज्यादातर सवाल नहीं पूछ पाते हैं ये सोच के कि सामने वाला हमें बोलेगा कि रूड है या अपने आपको बताने क्या समझता है इतने सवाल पूछ रहे हैं. आप सवाल मत पूछिए, लेकिन ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, आप ऑब्जर्व करिए. बिकॉज अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप लॉन्ग टर्म अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रख पाएंगे और आप अच्छा काम करेंगे जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयर भी खुश होगा और वो भी लॉन्ग टर्म आपको एसोसिएट कर पाएगा. वेरी वेरी बेसिक थिंग, बहुत ही बेसिक थिंग था. लेकिन जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहले कुछ वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है उसे अच्छी तरीके से, एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है कोई एडवर्टीजमेंट होती है या कोई आपकी सहेली या आपकी कोई फ्रेंड है उन्होंने बताया होगा कि इस कंपनी में जॉब निकला है इसमें अप्लाई कर दो, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मोबाइल पे आपके पास कोई अलर्ट आया होगा कि जॉब्स के लिए है. लेकिन वो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन भी होती है, उस डिस्क्रिप्शन को पूरा डिटेल में पढ़िए. बहुत सारी कंपनीज काफी डिटेल में वो डिस्क्रिप्शन देती है कि किस तरह का जॉब होगा, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, ट्रैवल रहेगा कि नहीं रहेगा, सेल्फ व्हीकल चाहिए कि नहीं चाहिए. कई कई जॉब्स ऐसी होती है जैसे कि कोई कुरियर कंपनी है या लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो पहले ही एडवर्टाइज करते हैं कि आपका सेल्फ व्हीकल होना बहुत जरूरी है. जैसे कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉब्ली रिटेल में है तो वो वर्किंग आवर्स पहले ही एडवर्टाइज कर देते हैं कि वर्किंग आवर्स हमारे 11 o'clock से 8 o'clock तक रहेंगे. जैसे कि मॉल हो गए, एडवर्टाइज कर देते हैं कि वर्किंग आवर्स हमारे 11 o'clock से 8 o'clock तक रहेंगे. जैसे कि मॉल हो गए या फिर कोई कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें कि उन्हें पर्टिकुलर स्किल चाहिए, तो आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और इवैल्यूएट करिए कि आप उस क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं, और प्रिपेयर करिए अपने आप को कि जो जो क्राइटेरिया दे रखा है उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे. अगर क्वेश्चन है कि क्या आप एमएस एक्सेल जानते हैं, तो हाँ आप जानते हैं कि नहीं जानते, उस क्वेश्चन के ऊपर प्रिपेयर करिए. तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी वो स्किल जो है आपके अंदर है कि नहीं, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें अपना आंसर दीजिए। बहुत जरूरी नहीं है आजकल की जॉब मार्केट में कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग को ही जॉब मिलेगा। तो जॉब्स ऐसी हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश की जरूरत है, आप खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो उसमें अभी आप एलिजिबल हैं कि नहीं। बट जो भी बात कही उसे अपने कॉन्फिडेंस से रखिए। जो पहला शब्द हमने इस सेशन में सुना था, कॉन्फिडेंस, बिकॉज इंटरव्यू में वो आपका कॉन्फिडेंस जज करना चाह रहे हैं और उनको फटाफट पता चल जाएगा ये रियल कॉन्फिडेंस है या ये मतलब एक शो, आप शो पुट अप कर रहे हैं या रियल में आप कॉन्फिडेंट है, ये हर किसी को आपके बात करने के तरीके से पता चल जाता है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, मान लीजिए अमेजोन ने कोई जॉब निकाली है या फ्लिपकार्ट ने कोई जॉब निकाली है या सम वोडाफोन ने कोई जॉब निकाली, एयरटेल ने कोई जॉब निकाली, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो जॉब लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़िए कि जो लोग इन जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कैसे, उनका कोई कभी कभी रिव्यूज होते हैं, स्टोरीज होती हैं, आजकल ब्लॉग्स भी बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब है थरो रिसर्च करिए। अगर आपको कोई बोलता है बस जाके अपना सीवी मत भेजिए, हाँ भाई तू जा रहा है ठीक है मेरा सीवी भी भेज दे उसमें, ऐसे नहीं, आपको प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर करना होगा अगर आप रियल में चाहते हैं कि उस इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिले। कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कई साइट्स पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो हम एक सेशन भी कर सकते हैं टिपिकल क्वेश्चंस जो एक जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।

0: अबाउट योर सेल्फ. अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कुछ लोग ना कहानी गढ़ने शुरू करते हैं, मैं छोटा था तो ये था, मैं वो था. आपको प्रिस्ट में बताना है. गीता मैम ने कई बार वो एलिवेटर पिच के बारे में बात किया कि एक मिनट में हमें अपने बारे में बताना है कि मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है. कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहेगा. अगर 100 लोग बैठे हैं, यू कांट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू रिमेम्बर. बट वो एक ऐसी क्वालिटी जो आप में है, जो आप बताना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करते हैं, जो उस इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकती है. कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आप अपने बारे में शॉर्ट में बताइए. इसको बार बार प्रिपेयर करिए, रिटन में लिखिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ को, और इसको प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में. आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्या ऐसी मोटिवेशन है जो ये जॉब आप करना चाहते हैं. ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं. आप अपने आप को यहाँ से 3 साल के बाद कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ. किसी भी जॉब में आप जाएंगे ये जरूर पूछा जाता है. सैलरी कितनी लेंगे, हम लोग हिचकिचा जाते हैं. कई कई जॉब में तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, पर फिर भी पूछते हैं कि आप सैलरी कितना लेना चाहेंगे. तो आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे कि इस तरीके की जॉब इंटरव्यू के लिए क्या क्या सैलरी है, क्या क्या पर्क्स हैं. कई बार क्या होता है, जैसे कि कुरियर कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, सैलरी कम होती है बट पर्क्स या रिलेटेड अलाउंसेस बहुत होते हैं. ट्रैवल का दे देते हैं या टेलीफोन का दे देते हैं क्योंकि कुरियर से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए. इंश्योरेंस होती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं. अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है वो सारी चीजें फ्रेशर लेवल पे शायद ना हो, क्योंकि आपको शायद प्रोबेशन दिया जाएगा. 3 मंथ्स का प्रोबेशन होगा, 6 मंथ्स का प्रोबेशन होगा. जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट किया था तो मुझे 6 मंथ्स का प्रोबेशन था. 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करने के बाद उसी बैंक में 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करने के बाद 6 मंथ्स का प्रोबेशन था, तो इफेक्टिवली मेरा प्रोबेशन 9 मंथ्स का हो गया था. बट दैट्स देयर रूल. किसी भी फ्रेशर को वो बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके ही परमानेंट करते हैं. बट डोंट गिव अप. हमारी प्रोफेशनल जर्नी अगर हम 24 या 25 साल में शुरू करते हैं और हम 60 साल तक अगर काम कर रहे हैं, 70 साल तक काम करें, तो बहुत लंबी प्रोफेशनल जर्नी है. इसमें आप धीरे धीरे धीरे धीरे करके ही अपनी स्किल्स को ऊपर बढ़ा सकते हैं. अगर आप एकदम से चाहेंगे कि आपको सारी पर्क सारे सारे बेनिफिट्स मिल जाए तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे. So know about the job, prepare yourself, prepare the basic question. और लेकिन basic question prepare करके जाइए, लेकिन उसे जल्दबाजी में deliver मत करिए. अपनी pitch को, अपनी communication skill को, जो first session हमने पढ़ा था कि communication skill, उस पर practice, उस पर focus करिए कि आपको crisp रहना है, concise रहना है, clear रहना है, फिर भी अपनी बात कहनी है. हो सके तो अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के साथ, या फिर सेंटर में अगर कोई लोग हैं या कोऑर्डिनेटर्स के साथ आप मॉक इंटरव्यू करिए. अगर जो भी आपका सबसे नियर एंड डियर वाले है उसके साथ आप मॉक इंटरव्यू मतलब ये जो 5-10 क्वेश्चन हमने बोले, एक इंटरव्यूअर बन जाए, एक इंटरव्यू ही बन जाए. कोशिश करिए आप इंटरव्यू देने जा रहे तो आप इंटरव्यू ही बनिए, आप इंटरव्यूअर मत बन जाइएगा. आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप खुद सोचेंगे कि शायद मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा कहने का तरीका या मेरे कहना जो चाह रहा हूँ वो बेटर हो जाए. आप उसे रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब हम बोलते नहीं है, अपनी आवाज नहीं सुनते, तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे ही रहता है. कभी आपने देखा टीचर्स में क्या कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो हर वक्त अपनी आवाज सुनने की आदि होते हैं, क्योंकि वो अपना प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, वो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके चलते हैं. उनके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट काफी कम रहता है. जब हम स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, हमने देखा हमारी टीचर्स क्या एकदम स्मार्ट और एकदम डिलीवरी करती हैं उसके लेक्चर के जो भी टॉपिक होता है, प्रिपेयर्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर करके आते हैं. तो आप अपने आप को शीशे के सामने किसी फ्रेंड के साथ, मोबाइल पे आजकल तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्फ कैमरा से, या कैमरा खड़ा करके किसी जगह पे आप आराम से उसे रिकॉर्ड करके खुद सुन सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि कैसे आप बोल रहे हैं और वो कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है. बहुत जरूरी है कि आप जहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका लोकेशन पहले से ही ध्यान में रखें। अगर इंटरव्यू का टाइम 9 बजे है तो आप कोशिश करिए कि आप अपना घर से इंटरव्यू तक पहुंचने का डिस्टेंस पहले ही जान लें, ताकि आप टाइम से पहुंच पाए, ना टाइम से ज्यादा देर से, ना टाइम से बहुत पहले। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, साथ में एक हैंकी या एक टॉवल साथ में रखिएगा, ताकि जब आप जाते हैं, गर्मी का टाइम में पसीना आ जाता है, तो आप 10 मिनट पहले ही पहुंच जा सकते हैं वहां पे। अपने आप को प्रिपेयर करिए, वहां पे कहाँ रेस्ट रूम्स है उनसे बात करिए, जो भी वहां पे सपोर्ट स्टाफ है उनसे पूछिए रेस्ट रूम्स कहाँ पे हैं। आप जाके अपने आप को क्लीन अप करिए, कोम करिए अच्छे से, और बहुत जरूरी है कि आप अपने क्लोथ्स, आप क्या पहनने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान, हम इस पे भी आएंगे कि क्या पहनना चाहिए। जस्ट अ सजेशन, नो देर इज नो राइट और रॉन्ग, बट एज अ मैच्योर पर्सन हमें किस तरीके से अपने आप को प्रोफेशनली शो करना चाहिए या कंडक्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले से आप तैयार करके रखिए, अगर उसे आयरन करना है आयरन करके रखिए, देखिए उसमें कोई बटन तो नहीं टूटा हुआ, कौन से चप्पले पहनना है, शूज पहनना है, पूरा एक दिन पहले प्रिपेयर करके रखिए, ताकि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो। आप जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसके ऊपर भी अभी हम आगे स्लाइड्स पे बात करेंगे। हम बॉडी लैंग्वेज पे पहले कम्युनिकेशन के टाइम पे भी बात कर चुके हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस दौरान में जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज। आप जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मत करिएगा कि उसने कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दी, जो ऑनेस्ट आंसर है, जो आप कर सकते हैं उसी को आंसर करिएगा, क्योंकि सामने वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इंटरव्यूअर है, वो बहुत सालों से शायद उस पोस्ट पे बैठे हैं, और वो फट से समझ जाएंगे कि आप सही कह रहे हैं या आप सिर्फ गप मार रहे हैं और ये चीज आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगी। तभी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कमिटमेंट। आपको आता है, नहीं आता है, आप सीख सकते हैं, आपके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी है, बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू। तो हम अभी तक किसी का कोई सवाल, या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, सवाल हम एंड में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बॉडी लैंग्वेज की बात करी। अब बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम ना बोलते हुए भी, अभी तक तो हमने बात करी पिछले की 2 स्लाइड्स में कि आप जब बोले तो सही बोले, कॉन्फिडेंस से बोले, अपनी कम्युनिकेशन में जो पिच है उस पर ध्यान रखिए, अपने जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसे प्रिपेयर करिए। लेकिन इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, जब हम वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं ना, तभी भी कई बार हम इवैल्यूएट हो रहे होते हैं, या हो सकता है कि लोग हमें देख रहे हो कि हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों से जो हमारे साथ इंटरव्यू देने आए हैं। तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है या जो हमारे जेस्चर्स हैं जब आप इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, वो बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस की हमने बात करी, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हम जब नर्वसनेस अपने अंदर कम करते हैं, नर्वसनेस कैसे कम करेंगे? जब हम प्रिपेयर करके जाएंगे, और प्रिपेयर कैसे करेंगे उसकी बात हमने ऑलरेडी करी है। आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उस इंटरव्यू के लिए सही कैंडिडेट हैं कि नहीं, रिसर्च करिए, अपने बारे में पॉइंट्स लिखिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, आप क्यों, आप ही क्यों वो कैंडिडेट हैं जो इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, ये सब चीजें, तो ऑलरेडी आपकी नर्वसनेस काफी कम हो जाएगी। बट ये मत सोचिए कि यही 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को ही भी आ सकता है, बट जब आपने इन 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दिया, कहीं ना कहीं आंसर इसी में ही छुपा होगा। आप एक पीसफुल माइंड से जाइए, एक इंटरव्यू है, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आप गेन करके बाहर निकलेंगे, कुछ नए लोगों से आप बातचीत करके निकलेंगे, उनको ऑब्जर्व करिए कि और कैंडिडेट्स कैसे जो आए हैं वो कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नर्वस होने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपकी नर्वसनेस आपके हाव भाव में साफ दिख जाएगी, क्योंकि सामने वाले बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए, कई वीडियोस हैं ऑनलाइन, उन वीडियोस पे आप प्रैक्टिस देख सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन को पूछते हैं उनके आंसर किस तरीके से तैयार करें। मैंने कहा कि हम इस पे भी एक सेशन कर सकते हैं अगर हम सबका इंटरेस्ट होगा तो कोई बता सकता है कि ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं इनमें मैंने ऑलरेडी वैसे कुछ इंडिकेशन दे दिया है, बट कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि क्यों मैंने क्रॉस लगाया है? ये जो ब्लू शर्ट में जेंटलमैन बैठे हैं इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर मैंने क्यों एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाया है? ऐसा क्या गलत है? उनके उनकी चारों फोटोज हैं, एक एक करके अगर आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इन चारों फोटो में, मुझे क्या क्यों मैंने क्रॉस लगाया है इसके ऊपर, या अगर आपको सही लग...
1: हाँ जी मैम, आई थिंक इनकी सिटिंग पोजीशन ना करेक्ट नहीं है।
0: इनकी करेक्ट क्या होता है? व्हाट इज करेक्ट?
1: मैम अपना बैक स्ट्रेट करके बैठना, अपने दोनों आर्म्स अपने लैप में रखना, अपने लेग्स दोनों बिल्कुल स्ट्रेट और पास में रखना, इस तरह से आई थिंक दीज काइंड्स ऑफ सीटिंग सिचुएशंस और पोजीशंस आर करेक्ट।
0: करेक्ट हो सकता है। क्या होता है कि कई बार ही जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 200 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, वॉक इन इंटरव्यू है, आप कभी अगर गए हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, मैं खुद गई हूँ वॉक इन इंटरव्यूज के लिए, तो 100-100 लोग होते हैं और वो टाइम दे देते हैं सुबह 9 बजे से और सभी लोग पहुंच जाते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है जो पहले पहुंचा उसका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है। रीड में अगर आते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है, मैम आपको पर्सनली मिलती है, ऐसा नहीं होता हर जगह पे। ये होता है कि 100 पीपल आ गए, ठीक है, उनको 20-20 के बैच में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनका एक ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में से वो 5-6 लोग निकालेंगे हर एक ग्रुप में से, और 5-6 लोगों में से वो पर्सनल इंटरव्यू करेंगे और फिर पैनल डिस्कशन होगा। तो कई बार ऐसे लेयर्स क्रिएट कर देते हैं क्योंकि ये एचआर वालों का काम होता है। तो अब बहुत टाइम से आप बैठे हैं, आपको उबासी आ रही है और आप बोर हो रहे हैं, आप अपने पैरों के साथ फिडल करना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी। आप कितनी देर आराम से एक कॉन्फिडेंट नर्वस ना होके बैठे रह सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए या कुछ है तो आप इंटरेस्टेड लगिए। अब ये जो लास्ट में फोटो है ये कुछ फेक स्माइल लग रही है कि ये फेक दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। ये देखने वाले को साफ पता चल जाएगा कि ये फेक स्माइल है, उबासी ले रहे हैं, बोर ऐसे करके बैठे हैं तो बोर हो गया, यानी कि वो इंटरव्यू देने आए हैं लेकिन वो बोर हो गया। तो ये सब चीजें ना नेगेटिव इम्प्रेशन देती हैं। हो सकता है आते जाते आपका इंटरव्यू देखना देख रहे हो, या आप सीसीटीवी लगा है उसमें वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है आप कस्टमर सर्विस में हो तो वो चाहते हैं कि वो ये देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, चाहे आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, आप पैनल डिस्कशन में बैठे हैं, अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव कैसे रखते हैं? ना तो बहुत ही खुश, ऐसे खुश दिखाने की भी बहुत जरूरत नहीं है जो हम लास्ट फोटो में देख रहे हैं, ना तो ऐसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मल जैसे आप कॉन्फिडेंटली बैठेंगे एक प्रोफेशनल एनवायरमेंट में वैसे आप बैठिए। कई लोगों को आदत होती है अपना पूरा पैर फैला के एकदम, मतलब बिल्कुल पैर आगे करके या पैर को फिडल करके ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं कई लोग। कोशिश करिए ये ना हो, ये ना करें जब हम किसी वेटिंग एरिया में या जॉब इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू के सामने बैठे हैं। पेंसिल को कभी कभी मुंह में डाल लेते हैं, पेंसिल को, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। तो पोस्चर, यानी कि जहां हम बैठे हैं हमारा पोस्चर प्रोफेशनल दिखना चाहिए। सो सिट स्मार्ट, सिट कॉन्फिडेंटली, एंड दिस कॉन्फिडेंस विल शो इन योर इन योर इन योर किसी ने चैट में कुछ लिखा है जस्ट, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये लेडी की 8th रैंक आई थी, ये IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हैं, ये IAS का इंटरव्यू चल रहा है। आप इस लेडी की पोजीशन देखिए कैसे वो बैठी है, ना तो ज्यादा झुक के बैठी है, ना तो ज्यादा ही अलर्ट बैठी है, कि एकदम अलर्ट भी नहीं बैठी है, बहुत कॉन्फिडेंस से। मैं जानती हूँ कि इनको बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, बट मैं ये दिखाना इसलिए चाहती थी कि इस तरीके का भी अगर प्रोफेशनल इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें भी किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करके गई होंगी, क्या उन्होंने पहना है, किस सिंपलिसिटी से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी पैनल ऑफ इंटरव्यू में जाते हैं या इवन पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो जो क्लोथ्स, मैंने कहा था कि आप अपना जो क्लोथ्स है जो आप पहनने वाले हैं आप पहले से डिसाइड करके रखिए। थोड़ा टाइम हम इस पे देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल आजकल हम लोग कई चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल थोड़ा डिफरेंट है. हम डोंट टेक मी रॉन्ग, बट कई बारी हम जिस तरीके के कपड़े पहन, चॉइस ऑफ क्लोथ्स कैन ऑल्सो डिटरमाइन समटाइम्स द काइंड ऑफ पर्सन वी आर. कंप्लीटली डू नॉट टेक मी रॉन्ग, सबको फ्री चॉइस है, फ्रीडम है, बट वो हमारी पर्सनल लाइफ में वो फ्रीडम है. प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होंगे तो चांसेस ये है कि एटलीस्ट इन द इंटरव्यू स्टेज आप अपने जो सिलेक्शन होगा वो आपके स्किल के बेसिस पे होगा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है, कोई आदमी या बॉय इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो एक प्लेन टी शर्ट, चेक टी शर्ट, सॉरी प्लेन शर्ट, चेक शर्ट, अच्छी कलर में, नॉट वेरी ब्राइट येलो रेड, इन सबको अवॉइड करते हुए. हमने कलर थेरेपी पे कई सेशन करे हैं. कलर थेरेपी में भी बोला जाता है कि व्हाइट कलर, ब्लू कलर, अर्दी कलर्स जो है वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं. कुछ जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं ज्यादातर वो इन द आई लगते हैं और वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते हैं. तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. तो अगर आप चाह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू बी फ्लैशी, आप में जो क्वालिटी है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ना कि आपने जो पहना है, आपने क्या हेयर स्टाइल बनाया है, वो डिसाइड नहीं करेगा. तो अगर कोई मेल मेंबर जा रहे हैं, साफ प्रेस हुई भी है, नहीं प्रेस हुई है, लेकिन साफ शर्ट डिसेंट कलर में, बहुत ब्राइट ना हो, मतलब बहुत कुछ उस पर ज्यादा कुछ ना बना हो, क्योंकि आजकल तो फैशन की दुनिया में एवरीथिंग सेल्स. बेसिक ट्राउजर, कार्गोज मत पहन के जाइए, जीन्स मत पहन के जाइए. इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड एज अ लिटिल बिट मोर मैच्योर पर्सन, जस्ट अ सजेशन. फ्लिप फ्लॉप्स मत पहन के जाइए, ओपन जो हमारे आते हैं आजकल, फ्लिप फ्लॉप्स आप जानते होंगे, चप्पलें जो होती है, चप्पलें तो बिल्कुल ही नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सैंडल बोलते हैं, वो जो एक बकल के साथ आता है जिसमें आपका थोड़ा पैर दिखता है. तो मेल मेंबर्स के लिए होता है कि बारिश बहुत हो रही है, हम शूज नहीं पहन के जा सकते, अंडरस्टैंडेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. बट नॉर्मल सिनेरियो में कोशिश करिए कि बंद जूते पहन के जाए, साफ हो जूते, चमकने नहीं बट साफ तो हो कम से कम. कंघी करके जाइए, तेल मत लगाइए, कुछ लोगों को तेल लगाने का आदत होता है तो मत लगाइए. कई बार सामने वाले को किसी चीज से एलर्जी होती है, इरिटेशन हो सकती है. आप अपने नेल्स क्लिप करके रखिए, साफ रखिए, क्योंकि जब आप बात करेंगे आपके हाथ जरूर दिखेंगे. जैसे मेरी बहुत आदत है हाथ को यूज करने की, ऐसे अगर किसी की आदत है तो प्लीज आप अपने नेल्स का साफ रखिए ध्यान से. तो ये हुई मेल मेंबर्स की बात, जस्ट अ सजेशन अगेन, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग. फीमेल के केस में कोशिश ये करिए कि जो आप कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप अगेन यू रिसर्च अबाउट द कंपनी, उनका कल्चर कैसा है. ट्राई एंड स्टिक टू क्लोथ्स दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन. कुर्ता है, साड़ी है, इवन अगर स्कर्ट्स आप पहन के जा रहे हैं उसकी लेंथ का ध्यान रखिए. कोशिश करिए बड़े बड़े झुमके नहीं पहन के जाने, बड़े बड़े झुमके हो. बहुत सूट भी अगर आप पहन रहे हैं तो प्लेन कॉटन का. आप देखिए वो IAS के इंटरव्यू के लिए आई है, उसने एक बेज कलर का सूट पहना है, मरून कलर का दुपट्टा है, ना तो कोई बड़े झुमके हैं, ना तो कोई ज्वेलरी उसने पहनी है, क्योंकि वो चाहती थी, ये जो फोटो है इसकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो बोल रही है, जो उन्होंने CV में लिखा है, उस पे एम्फेसिस हो उन चारों लोगों का जो इंटरव्यू करने उसको उनको बैठेंगे. आप देखिए चारों का ध्यान उसी तरफ है जो वो बोल रही है, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं है. आपका हेयर स्टाइल जो है, मेन वुमेन गर्ल बॉय सभी का क्लीन एंड नीट होना चाहिए, बहुत बड़ा हेयर डू नहीं चाहिए, और मतलब बेसिक नीट एंड क्लीन आपका अटायर होना चाहिए. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. कई बार क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा आप खुद ही कभी फंस जाएगा कुछ कान में और आप खुद ही परेशान हो जाते हैं. अगर कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं है तो हो सकता है गर्मी लग रही हो बहुत ज्यादा. ट्राई एंड नॉट टू वियर एनीथिंग लाइक अ पार्टी. आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे, आप किसी प्रोफेशनल कंडक्ट में जा रहे हैं, तो उसी तरह बहुत ज्यादा मेकअप मत करके जाइए. बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, बेसिक आप आईलाइनर लगा सकते हैं, बट बहुत मेकअप करके मत जाइए. इट डिस्ट्रैक्ट्स, it distracts the other person from what you are saying. These are just some tips about that, about what you can wear. किसी और का कोई पॉइंट है तो वो आप लिख लीजिए, हम जरूर डिस्कस करेंगे. वी कैन कम बैक टू इट इन फ्यू मिनट्स. मैं टाइम देख रही थी कहीं मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ. अपना फोन जरूर से जरूर साइलेंट पे रखिएगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहता है. जैसे मैंने अभी अपना फोन चेक किया टाइम के लिए, तो ये जरूर करिएगा कि आप अपना फोन को डिस्ट्रैक्ट करें. सोशल मीडिया पिंग पिंग पिंग पिंग पिंग करता रहता है, कभी कभी हम बात कुछ करें टिंग टिंग की आवाज पीछे से आती है. प्लीज अवॉइड दैट. जब आप बात कर रहे हैं तो आप रिलैक्स्ड मैनर में डीप ब्रीदिंग के साथ पेशेंटली आप बात करेंगे, और अपनी पाम्स को हमेशा ओपन रहेंगे, क्योंकि अगर आप बात करते हुए ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं. या कभी कभी हम ऐसे हाथ दबा के बात करते हैं, या दुपट्टा है तो दुपट्टे को दबा लेते हैं अपने हाथ में कि पीछे से कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है आ रहा है. अवॉइड करिए. अगर पेन पेंसिल हमारे हाथ में होती है, कभी कभी हम अनकॉन्शियसली उसको चबाने लग जाते हैं. हो सकता है हम पैनल में बैठे हैं, 10 लोग हैं और आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा, सवाल किसी और से पूछा जा रहा है, तो आप पेन चबा रहे हैं उतनी देर या पेंसिल चबा रहे हैं उतनी देर, या फिर आपके हाथ में कोई पेपर है उससे आप वो, मेरी बहुत आदत है कि पेपर पे मैं वो छोटे छोटे छोटे छोटे कुछ ड्रॉइंग ऐसे करने लग जाती हूँ. तो इंटरव्यू के टाइम पे प्लीज वो अवॉइड करिए, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन रहती है. अपना पैर मत हिलाइए, पैर हिलाना या फुट हिलाना, नोज पिकिंग करना कंप्लीटली नो, हम सभी को ये बातें पता है, बट कहीं ना कहीं जब हम नर्वस होते हैं तो ये एक नर्वस रिएक्शन हमारे हमारे पीछे से वो माइंड उसको कोशिश करता है कि हम किस तरह से वो नर्वसनेस को, कभी कभी बहुत लोग पानी बहुत पीते हैं इंटरव्यू में, फिर पानी बहुत पियेंगे तो वो भी एक शो है कि नर्वसनेस आ रही है. तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं. बिलीव इन योर सेल्फ, आपको वो स्किल आती है क्योंकि आपने वो रिसर्च करी है कि इस जॉब को किस स्किल की जरूरत है, तभी आपने अपने आप को जॉब के लिए अप्लाई किया है. ड्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली फॉर द प्रोफेशनल थिंग दैट यू आर गोइंग. You are not going for a cultural event. आप किसी शादी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं. Don't dress like you are going for a marriage. Personal life में आप कैसे भी dress करें, professional में certain basic etiquettes are there. We should follow those things. कई कई organization में uniform भी होती है. आप ये आप तो सोचिए कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो जैसे मारुति में काम कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं जिनमें अपनी यूनिफॉर्म होती है. तो आप ये सोचिए कि उनका तो प्रोफेशनल, उनको अटायर मिलता है, उनको साड़ी ही पहनना होता है, मंडे को अलग, ट्यूजडे ऐसे अलग अलग कलर्स की साड़ीज मिलती हैं. तो आप ये देखिए जो वो इतना प्रोफेशनल अटायर को सीरियसली ले रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरीके तरफ से कोशिश करना है. हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छे ब्रांड का शर्ट लेके जाओ या बहुत अच्छा क्वालिटी का सूट पहन के जाओ. बेसिक साफ नीट एंड क्लीन अपने आप को, क्योंकि ड्रेसिंग को मैंने देखा है बहुत लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड कर रही हूँ. अगर अगर आपकी कम्युनिकेशन है वर्बली आप कर रहे हैं, रिटन में भी कभी कभी लिखने को बोलते हैं. हम कभी कभी ना कुछ जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं हम बोलते हैं कि ठीक है आप एक पैराग्राफ लिख के दे दीजिए. आप जिस भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी तेलुगु, आप उसमें लिख के दीजिए, बट क्लियर और क्रिस्प में लिख के दीजिए. ऐसे मत लिखिए, शॉर्ट में लिखिए क्या कहना चाह रहे हैं. प्रैक्टिस करके जाइए उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर से मैं कह रही हूँ, कंपनी के बारे में एडवांस रिसर्च करके जाइए, वो कौन इंटरव्यू ले रहा है. कई बार HR के नाम दिए होते हैं वेबसाइट पे, तो आपको थोड़ा फेमिलियर हो सकते हैं. आप देख सकते हैं कि सारे जो HR के लोग हैं वो कभी कभी वेबसाइट पे लिखा होता है कि इंटरव्यू कौन लेंगे. तो जितना ज्यादा आप कंपनी के बारे में जानेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा. ट्राई एंड रिमेन काम, प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बी पोलाइट बी कर्टियस टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि उसका ये काम है. अगर वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि अभी सुनी किसी ने बताया था कि वो ऐसी सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करेंगे कि वो जज करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अगर हम आपको डालते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. तो आप पोलाइट रहिए, कर्टियस रहिए. अगर कुछ नहीं आता तो आप कह सकते हैं आई एम अ गुड लर्नर, मैं जल्दी सीख लेता हूँ, ये मैं जल्दी सीख लेती हूँ. अगर आप सिखाएंगे, अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं सीख लूंगा. बट आप हर क्वेश्चन के लिए ये नहीं बोल सकते। कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल जो आपको लगता है इस जॉब

दो कॉपीज करा के जाइए। आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उन सर्टिफिकेट के ओरिजिनल भी कई बार लोग देखना चाहते हैं। एक अच्छा सा, महंगा नहीं, अच्छा सा फोल्डर खरीद लीजिए। फोल्डर में पॉकेट्स होती हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स नीटली उन पॉकेट्स में रखिए। कोई पूछता है, कोई मांगता है, तभी उसे दिखाइए। बिकॉज आपने सीवी में ऑलरेडी लिख दिया है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज करे हैं, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, कहीं पे वॉलंटियर किया है कि नहीं, वो आपने सीवी में ऑलरेडी कर दिया है। आप चाहें तो रेज्यूमे राइटिंग पे भी हम एक सेशन कर सकते हैं, बट ये चीजें आपने ऑलरेडी सीवी में लिख दी है। तो कोई सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं या कभी कभी एचआर में जमा कराने पड़ते हैं, तो आप कहेंगे अच्छा आज तो है नहीं, मैं कल दे जाऊंगा या दे जाऊंगी, तो वो अवॉइड करिए। अननेसेसरली कोई जरूरत ही नहीं है, कौन फॉलो अप करेगा, नहीं करेगा। हैंडी रखिए, कोई पूछता है तो वहीं पर उसकी कॉपी सबमिट करके आइए। अपना आई कॉन्टेक्ट कभी भी लूज मत करिएगा अपने इंटरव्यूअर के साथ। हमेशा पोलाइटली चीयर, मतलब बहुत खुश नहीं, अभी हमने फोटो में देखा था कि वो आदमी कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। इस तरीके का फेस नहीं रखना, उदास नहीं रखना, खुश और कॉन्फिडेंट फेस रखना है। बट इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली अपनी जो स्किल है, जिस इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी का है, तो आप अपनी स्किल्स जो है ब्रशअप करके जाएंगे। टैली का इंटरव्यू है, आप टैली की लेटेस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में रिसर्च करके जाएंगे। हेल्थ वर्कर्स की कोई नर्सिंग का कोई अपॉइंटमेंट निकला है, आप नर्सिंग की अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं। आप आजकल कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं, उनमें क्या क्या चीजें, अगर कोविड का टाइम अभी जैसे चल रहा है, आप पूरी रिसर्च करके जाएंगे कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ, सेकेंड वेव में क्या हुआ। आपको कोई डॉक्टर बनने को नहीं कह रहा, बट जो एज ए नर्स, एज ए असिस्टेंट, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, बेसिक दवाइयों के बारे में, आपको वो चीजें रिवाइज करके जानी है, तभी आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे और तभी आपका नर्वसनेस कम होगा। आप टीचर हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, आप एक्सपर्ट अपेरल, किसी अपेरल कंपनी में आप जा रही हैं, आपको सिलाई आती है, आप बढ़िया एकदम फर्स्ट क्वालिटी की सिलाई करते हैं, आप अपने सैंपल साथ लेके जाइए। जो हम सैंपल रजिस्टर वो बनाते हैं, आपका रजिस्टर, उसको साथ लेके जाइए। अगर जैसे कि मैंने बताया वो कुछ नहीं आता, यू कैन ऑलवेज से कि मुझे अभी नहीं आता, मैंने इस चीज की कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मैं ये सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ अगर मुझे सिखाया जाए। अपनी रेफरेंसेस, चाहे रेफरेंसेस का मतलब जो लोग आपके बारे में, आपसे हटके, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं और मेरे बारे में कोई और बताए, थोड़ा फर्क पड़ता है। रेफरेंसेस उसको बोलते हैं जो आपके बारे में फीडबैक दे सके। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके टीचर्स हो सकते हैं। ज्यादातर फ्रेंड्स के रेफरेंसेस मत दिया करिए, कोई भी मेरे दोस्त से पूछ लीजिए, ऐसा नहीं होता। रेफरेंसेस की भी अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए, या तो वो आपके टीचर्स हो सकते हैं अगर आपने, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल हो सकता है जो आपकी फैमिली में है। आप फ्रेशर हैं लेकिन कोई प्रोफेशनल आपकी फैमिली में, फादर मदर को छोड़ के, इमीडिएट फैमिली को छोड़ के, आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने कहीं ऑलरेडी काम करा हुआ है, अगर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ जॉब 10th जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उस इंसान का रेफरेंस दीजिए जो आपको, जिसके साथ आपका कंडक्ट अच्छा है और वो आपके बारे में अच्छे रेफरेंस देंगे, और उनकी खुद की भी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। उन रेफरेंसेस को आप पहले से बता दीजिए कि आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आपको इनसे फोन आएगा मेरे बारे में चेक करने के लिए। अगर आप फाइनल पोजीशन के लिए नहीं भी सिलेक्ट होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, आप जॉब इंटरव्यू में गए, आपको एक एनवायरनमेंट में पता चला कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप वापस घर आइए। आप नहीं सिलेक्ट होते तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करिए। डोंट लूज योर हार्ट कि अगर एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, 10 इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन एनालाइज जरूर करिए कि क्यों, मेरा क्यों नहीं हुआ। वो एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले ही जितने स्टेप्स थे आप उन पे काम करेंगे। आप कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, आप अपनी स्किल्स को ब्रशअप करके चलेंगे, आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में अपियर होंगे, एंड योर रेफरेंसेस आर गुड, आपकी अच्छी रेफरेंसेस होंगी, और आप मतलब बिल्कुल पोजीशन से अप्रोप्रिएट आपका स्किल होगा। ऐसा नहीं कि पोजीशन हेल्थ वर्कर्स के लिए आती है आपको स्विंग है और आप हेल्थ वर्कर्स के लिए देने चले गए, आती आपको स्टिचिंग एंड स्विंग है, या स्टिचिंग एंड सुइंग अपेरल का कोई है आता आपको, ब्यूटिशियन का कोर्स है।

0: देने चले गए आप स्टिचिंग एंड सुइंग के उसके लिए, तो वो मिसमैच हो जाएगा। टैली आपको आता ही नहीं, कभी आपने सीखा ही नहीं, तो आप इंटरव्यू देने चले गए, आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, जितना भी अच्छे आप ढंग से अपने कपड़े पहन के चले जाएं, कितने भी अच्छे से आप इंटरव्यू से, आप ये नहीं कह सकते टैली आई विल लर्न ऑन द जॉब, आई एम अ फास्ट लर्नर। नो, दैट वॉज द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। हाँ, उसमें वो बोले कि अच्छा आप टैली में कर लेते, क्या आप ईमेल राइटिंग आती है? अगर आपको ईमेल राइटिंग नहीं आती लेकिन टैली आता है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे को बेसिक इंग्लिश आती है, ईमेल राइटिंग में सीख लूंगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हम एज ए प्रोफेशनल, चाहे हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 0 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। वो ऐसी स्किल्स हैं कि जैसे एमएस ऑफिस हो गया। एमएस ऑफिस क्यों हमेशा? क्योंकि इसमें नए नए वर्जन आते हैं, हर वर्जन के साथ कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी एड ऑन हो जाता है। ईमेल राइटिंग इज एन आर्ट, मतलब इसमें कितने कितने कोर्सेज लोग करते हैं, क्योंकि किस तरीके से आप ईमेल लिख सकते हैं जो दूसरे को कन्विंस कर सकता है आपकी बात को मानने के लिए। बेसिक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, बेसिक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश में ना डरना नहीं चाहिए। बेसिक इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, आप देखिए ज्यादातर लोग वही 50-60 वर्ड्स के अंदर अंदर ही बेसिक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत, जैसे कि वो कहते हैं ना, जैसे कि जैसे शशि थरूर को आपने कभी अगर तो इंटरव्यू किसी ने देखा होगा, तो वो जिस लेवल की इंग्लिश, या सुधा मूर्ति जिस तरह की इंग्लिश यूज करते हैं, हमें उस इंग्लिश में बात नहीं। बेसिक चीज मैंने बोली आपकी समझ में आए, आपने बोली मेरी समझ में आई, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उस शब्द को कहाँ यूज करना है, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है और फ्री है, और आपको जॉब में हेल्प करेगी। ये जैसे ही आप अपने सीवी में डालते हैं, आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है एज अ कैंडिडेट। सो दिस वाज इट। आई डोंट नो इफ दिस इज यूजफुल और नॉट, बट आई थॉट, बहुत सोचा कि बहुत हैवी हो रहे थे वो सेशंस, तो हम कौन सा ऐसा कुछ टॉपिक पकड़ सकते हैं जो सबके सबके लिए जरूरी है। आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल अगर ले लेते हैं और इंटरव्यू स्किल ले लेते हैं, तो भी हम एटलीस्ट किसी लेवल पे पहुंच सकते हैं। बाय, सब अपना ध्यान रखेंगे, कोरोना
1: यस
0: से बच के
1: मैम, थैंक यू
0: रहेंगे।
1: सो मच
0: बाय
1: मैम,
0: बाय बाय।
1: बाय।

नमस्कार बहनों, रीट इंडिया द्वारा आयोजित व्यापार को कैसे स्थापित किया जाए एवं आत्मनिर्भर कैसे बना जाए की वर्कशॉप के भाग तीन में मैं दिनेश मिगलानी आपका स्वागत करता हूं। अभी तक के दो चरणों में या दो भागों में हमने यह सीखा था कि आत्मनिर्भरता की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है एवं भाग दो के अंदर हमने यह सीखा कि व्यापार कैसे किया जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को हमें देखना है और कैसे मूल्य निर्धारण करना है। भाग तीन के अंदर हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पहला भाग हमारा जो है कि सामान को कैसे बेचा जाए, सामान की मार्केटिंग कैसे करी जाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो, वैसे तो मार्केटिंग जो सामान को बेचना है यह एक तरह की कला है, यह एक तरह की कला है और कला ऐसी होती है जो इंसान में आंतरिक तौर पर होती है, वंशागुणत होती है। मैं तो ये कहता हूं कि वह जन्म जाति होती है। हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं बहनें हमारी ऐसी हैं जो बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताती है और इतने अच्छे या रोचक ढंग से बताती हैं कि सामने वाला उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और सारा जो बाजार का खेल है वह केवल विश्वास का खेल है। यदि ग्राहक आपकी बातों पर विश्वास कर रहा है वह आपसे सामान खरीदेगा, उसके बाद सामान का उपयोग करेगा और यदि वह आप सामान का उपयोग और आपकी की गई बातें अगर आपस में मेल खाती हैं तो ग्राहक संतुष्ट ग्राहक माना जाता है, जो एक व्यापार अच्छे व्यापार का सूचक है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर हम दो भागों में बात कर रहे हैं। पहला भाग जो है सामान को कैसे बेचा जाए। देखिए, सामान बेचने के लिए सबसे पहले हमारी अपनी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए अपने सामान के बारे में। हमें यह लगना चाहिए कि हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है, हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है। यदि हमें यह लगेगा कि मेरा सामान बहुत अच्छा है तभी मैं अपने ग्राहक को यह बता पाऊंगी कि मेरा सामान औरों से क्यों अच्छा है। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे चीजों के तरफ एक सकारात्मक सी सोच होनी चाहिए, हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए या हमारे मन में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो सामान हम बेच रहे हैं यह मार्केट में उस दाम पर सबसे अच्छा मिलने वाला सामान है। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ साथ आपको अपने सामान के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है, मैं अपने सामान के बारे में तभी बता सकता हूं जब मुझे अपने सामान की हर बात के बारे में जानकारी होगी। मैंने सामान कैसे बनाया, किस किस कच्चे माल का उसमें प्रयोग करा, बनाते टाइम मेरी विधि क्या थी, क्या मैंने साफ सफाई का ध्यान रखा या नहीं रखा, हर चीज के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने सामान के बारे में बताते हैं तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसके बारे में एक पूर्ण रूप से जानकारी होगी। ठीक है, तो सामान की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अच्छे मार्केटिंग के लिए। हम ये कहें अच्छे जो सामान बेचने वाला होता है उसके लिए महत्वपूर्ण बात यही होती है कि सामान की जानकारी और उसका सामान दूसरे सामान से कैसे अच्छा है। क्योंकि जब हमें अपने सामान की जानकारी होगी तो हम अपने ग्राहक को यह बता पाएंगे कि हमारा जो सामान, अगर जो सामान हम बेच रहे हैं वह दूसरे सामान से कैसे अच्छा है, कितना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि तभी ग्राहक हमारा सामान खरीदेगा। तो सामान की विशेषताएं, जानकारी एवं दूसरे जो मार्केट में सामान अवेलेबल है उससे कंपैरिजन करना, या हम कहें कि उससे हम नाप पाए कि हमारा सामान उनसे कितना अच्छा है। इसके बाद हमारी वाक्पटुता होनी चाहिए। देखो, वाक्पटुता बोलने की कला है। बोलने की कला मतलब यदि कोई ग्राहक हमारे पास में आता है तो हमें बात करनी है उससे, ग्राहक से। ठीक है, क्योंकि हम यदि ग्राहक ने मान लीजिए मुझसे किसी सामान के बारे में पूछा और मैं उसे एक रूखा सा जवाब दे दूं तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि ग्राहक मेरा सामान नहीं खरीदेगा। और यहीं यदि मैं एक बहुत अच्छे ढंग से उसे जवाब दूं, अच्छे ढंग से अपने सामान की विशेषताओं के बारे में बताऊं तो ग्राहक उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और ग्राहक हमारा सामान खरीदता है। तो आपकी बातचीत की कला सामान बेचने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे बातचीत कला व्यक्ति या महिला
अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकती है। और कुछ कार्य हमारे ऐसे हैं, मैंने शुरुआती लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिन कार्यों में हमारा व्यापार जो है वह सारा जो आधारित होता है, जैसे कि एक ब्यूटिशियन का कार्य है, जो ब्यूटी पार्लर वाली महिला है जो साज सज्जा का सामान या सौंदर्य से आधारित जो काम करती है, तो उसको बातचीत में पारंगत होना चाहिए। यदि वह जिस महिला के सौंदर्य पे कार्य कर रही है, यदि वह उससे बातचीत करती है बहुत अच्छे ढंग से, उसे हर चीज को समझाती है, हर चीज की उपयोगिता बताती है, हर चीज का महत्व बताती है, तो जो दूसरी महिला है जो उसके पास एज ए ग्राहक आई है, अगली बार उसी के पास ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी बात करूं, देखो मैं बाल कटवाता हूं, ठीक है, बाल कटवाता हूं तो मैं उसी नाई के पास जाना पसंद करता हूं जो बड़े प्यार से बोलता है। बोल तो मेरे घर के आसपास काफी नाइयों की दुकानें हैं, ठीक है, बट फिर भी हम हर बार एक ही नाई के पास जाते हैं। या मान लीजिए आप कहीं से सामान खरीदते हैं, तो ज्यादातर आप देखोगे, ज्यादातर आप एक ही दुकान पे जाएंगे, बार बार उसी दुकान पे जाएंगे। यदि वह दुकानदार आपसे कुछ पैसा ज्यादा भी लेगा तो भी आपको यह लगेगा कि उसी दुकान पर जाना ही आपके लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हम यह देखते हैं कि सामान खरीदने के साथ साथ हम जिससे सामान खरीद रहे हैं क्या वह हमसे अच्छे ढंग से बातचीत करता है या नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो बातचीत है, जो उसकी बात करने की कला है, वह हमें सम्मोहित कर लेती है। तो हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं वह बातचीत करने में काफी अच्छी हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत लोगों से हम बात करते हैं तो महिलाओं की जो वाक्पटुता होती है, महिलाओं की जो बात करने की कला होती है, वह पुरुषों के मुकाबले काफी अच्छी होती है। तो उनकी जो बातचीत करने की कला है वह आपको अपना सामान बेचने में काफी ज्यादा सहायता करती है। इसके साथ साथ हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग का पहला नियम यही है कि अपने सामान के बारे में बताते समय कभी संकोच ना करें, मन में कभी संशय ना लाएं, ठीक है, ना ही कभी आपको ऐसा लगे कि मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं, हर ग्राहक को बताता हूं और ग्राहक मेरे सामान को पसंद नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्राहक सामान खरीदना ही नहीं चाहता, तो यदि आप उसे विशेषताएं बताएंगे, उपयोगिता बताएंगे, तो आपकी बातों पर ध्यान न दे। तो हमें निरंतर बिना संकोच किए एक अच्छे तरीके से अपनी चीजों के बारे में ग्राहकों को बताना चाहिए। साफ सुथरा रहें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप मार्केट में जाके सामान बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, तो वहां पर कोई भी ग्राहक अगर आपके पास आता है तो ग्राहक पहले ये देखता है कि जो व्यक्ति सामान बेच रहा है वो किस वेशभूषा में है, कैसे बैठा है। यदि आप देखिए, मुझे कुछ खाने का सामान खरीदना, मान लीजिए छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुझे पानी पूरी खानी है, ठीक है, अब मेरे सामने तीन पानी पूरी वाले ठेले हैं, ठीक है, मैं किसी उस ठेले पर जाना ज्यादा पसंद करूंगा जहां जिस ठेले पर जो पानी पूरी खिला रहा है वह साफ सुथरा व्यक्ति होना चाहिए, हाथ साफ हो, कपड़े साफ हो, क्योंकि तभी देखो आज के युग में कोई भी ग्राहक है वह आपसे तभी बात करना पसंद करेगा, तभी आपकी दुकान पर आना चाहेगा जब आप एक साफ सुथरे होंगे, ठीक है। तो हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मेहनत तो देखो पहली चीज है, मेहनत के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार मेहनत कर दी फिर आप मेहनत करना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए मेहनत कश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना मेहनत के आप कोई भी व्यापार नहीं चला सकते। इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य व्यापार का है, लाभ कमाना तो है ही है, लाभ कमाने के साथ साथ ग्राहक की संतुष्टि लक्ष्य है। तो मार्केटिंग में या सामान बेचने में आप जो आपने ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो ग्राहक की संतुष्टि, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक मार्केटिंग से एक संतुष्ट ग्राहक उस पैसे खर्चने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक जब दूसरे ग्राहकों को आपके सामान के बारे में बताएगा तो दूसरे ग्राहक भी आपके सामान के लिए आकर्षित होंगे। तो हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी सामान बेचें, जिस तरह का सामान बेचें, जिस ग्राहक को हम बेचें, वह ग्राहक हमसे संतुष्ट होकर जाए, वह हमारे सामान से संतुष्ट हो, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक आपका बेस्ट मार्केटिंग वाला पर्सन होता है, क्योंकि वह हर जगह जाकर आपकी बात को बताएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ पैसा खर्च करके मार्केटिंग करना चाहें तो हम कुछ पैम्पलेट छपवा सकते हैं अपने सामान के बारे में,
हमें पता है भी इस पर्टिकुलर एरिया के लोग हमारे सामान को खरीद सकते हैं, तो हम उनके घरों पे जाकर एक एक पर्चा फेंक सकते हैं। तो ये कई सारे माध्यम हो सकते हैं। आप देखो वैसे तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल छोटे स्केल पर, मतलब उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके पास ना तो काफी ज्यादा पैसा है, वह जो उनके पास साधन उनके पास है उन्हीं को ही यूज करके, उन्हीं का ही उपयोग करके आत्मनिर्भर होने की ट्राई कर रही हैं। तो यदि कुछ पैसा आ जाता है, यदि हमारा कार्य चलने लग जाता है, तो हम फिर अपनी मार्केटिंग के तरीकों को उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम पर्चे छपवा सकते हैं, हम एक बैनर बनवा सकते हैं जिसपे जो भी सामान हम बेच रहे हैं उस सामान से, उससे सामान में क्या क्या है, उस सामान में क्या क्या विशेषता है, जो मार्केट में दूसरा सामान अवेलेबल है वह सामान उनसे कितना अच्छा है, उस सबके बारे में उसपे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सामान बेचने की ट्राई करिए, सामान बेचने की कोशिश करनी चाहिए, और जो एक मेहनत कश कार्य है जिसमें काफी मेहनत लगती है, और संतुष्ट ग्राहक को करना हमारा पहला उद्देश्य है। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। भाग तीन के दूसरे पॉइंट, जो दूसरी बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, खातों में हिसाब रखना। देखिए हम व्यापार तो शुरू कर देते हैं, ठीक है, और व्यापार शुरुआत करने के बाद शुरुआती दौर पर जब हमारे पास में कुछ जमा पूंजी होती है तो हम उसे खर्च करते हैं। ठीक है, कई बार हमारी बहनें या काफी लोग ऐसे होते हैं जो हिसाब किताब नहीं रखते, और कुछ समय के बाद में उनको यह नहीं समझ में आता कि उनका कितना पैसा किस चीज पर खर्च हुआ और उन्होंने कुल कितना पैसा खर्च किया, और जो अब वह लाभ कमा रहे हैं क्या वह उस उनकी कॉस्ट या उसके खर्चे के अनुरूप है या नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा न जाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आप एक अपनी डायरी जरूर बनाइए, एक डायरी अपनी जरूर बनाइए। ठीक है, उस डायरी में कुछ भागों में आप उसे बांट सकते हैं। ठीक है, क्या क्या भाग बना सकते हैं? एक भाग के अंदर तो आप यह देखो, मान लीजिए मेरा पहला पेज है, आपने आगे तो लिखना था, लिख दिया ओम नमः शिवाय, भगवान जी का नमस्कार करके अपना स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जो लक्ष्मी माता का प्रतीक है। उसके बाद पहले पेज पर आप ये देखिए, हमने इसके दो भाग कर दिए। ठीक है, एक भाग हुआ हमारा खर्चे का और एक भाग हो गया हमारा आय का। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां लिखेंगे सारा खर्चा, जो भी खर्चा होता है आपको एक एक करके रोज का खर्चा लिखना है, और यहां हमने लिखनी है आय, मतलब उससे हमें कितने का सामान बिका। मान लीजिए अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में मैं उस महीने में मैंने जितना भी खर्चा किया वह मैं सारा एक तरफ लिखता जाऊंगा। ठीक है, और जितनी भी मुझे आय हुई सामान बेचने से, जहां जहां से पैसा आया वह मैं सारा यहां पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, और महीने के अंत में हम जोड़ कर लेंगे दोनों तरफ का और यह देखेंगे हमें लाभ कितना हुआ। ठीक है, ऐसी अगले महीने आपने करना है। मतलब आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि यदि आपने 100 रुपए व्यापार में लगाए हैं तो 100 रुपए किस किस जगह पे आपने खर्च किए हैं। ठीक है, और यदि महीने के अंत में हमारी जेब में 500 रुपया है तो हमें यह जरूर पता हो कि वह कहां से हमारे पास में आया है। तो इससे हमें दो बातों में फायदा होता है, एक तो हम यह कंपेयर कर सकते हैं, यह हम आपस में तुलना कर सकते हैं कि मान लीजिए जो कच्चा माल मैंने आज खरीदा, अगले महीने अगर मैं वह कच्चा माल खरीदने दोबारा जा रहा हूं तो क्या उसकी लागत में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, उसकी मूल्य बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यदि मैं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा, यदि मैं कोई खाता नहीं बनाऊंगा, तो मैं इस चीज को ढूंढ नहीं पाऊंगा कि पिछले महीने मैंने जो सामान खरीदा था उसकी लागत क्या थी, उसका मूल्य क्या था, और इस महीने जो मैं सामान खरीदने वाला हूं उसका मूल्य क्या होगा। क्योंकि यदि सामान का मूल्य बढ़ रहा है तो हम उसी के हिसाब से अपनी जो वस्तु है, अपना जो सामान है, उसका भी मूल्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि अगर आपकी लागत बढ़ेगी तो हम अपनी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को जरूर बनाइए, खर्चा सारा लिखो, आय सारी लिखो। ठीक है, इसके अलावा आप यह देखो कि व्यापार चलाने के लिए आपने किन किन चीजों को खरीदा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एसेट हैं, एसेट का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, वह भी उस डायरी में आप एक जगह पर लिखिए क्या क्या सामान आपने व्यापार के लिए खरीदा है। इसके अलावा आप जब ग्राहकों से मिलते हैं तो जो आपके संतुष्ट ग्राहक है, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए उन संतुष्ट ग्राहकों के पते भी आपके पास में हो। यदि ग्राहकों के पते आपके पास में होंगे
तो किसी कारणवश अगर कोई ग्राहक आप तक सामान लेने नहीं आ रहा है तो आप अपने सामान को वहां तक जाकर बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपका व्यापार आगे बढ़ता है फिर हम और चीजों पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए शुरुआती दौर पर हमने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, ठीक है, और 6-8 महीने की मेहनत के बाद में वह व्यापार में काफी वृद्धि हो गई। अब मुझे ये लगता है कि मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं और लागत बढ़ रही है, तो मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता। तो फिर हम यह सोचते हैं क्यों ना किसी को साझेदार बना लिया जाए, तो फिर हम साझेदारी में आ जाते हैं। तो इस तरह से समय की मांग के साथ साथ, देखो मैं तो अंत में फिर ये कहूंगा, समय की मांग के साथ साथ हमें किस तरह के व्यापार के स्वामित्व पे जाना चाहिए, एकल व्यापार करना चाहिए या साझेदारी का व्यापार करना चाहिए, वह सब बात जो आती है वह बात आती है कि हमारे व्यापार का स्केल कितना है, क्या हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा फिर आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जो पैसा हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है, मान लीजिए मुझे पता है कि अगले 6 महीने मेरे पास में इतना पैसा ज्यादा आएगा, फिर पैसा नहीं आएगा, तो वो पैसा मैं अपने बैंक में डाल सकता हूं जिसपे मुझे कम से कम ब्याज तो मिलेगा ही, ठीक है। उसमें आप अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, यदि आपका सेविंग खाता है या आपका बचत खाता है तो कुछ ब्याज गवर्नमेंट आपको देती है, सरकार की तरफ आपसे मिलता है, तो इस तरह से आप बैंक खाता खुलवाइए। तो धीरे धीरे एक अच्छे व्यापार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और यदि इसके बाद भी व्यापार और ज्यादा बढ़ रहा है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, क्योंकि यदि बैंक में हमारा पैसा जमा होगा, हमारी साख होगी, तभी बैंक हमें फ्यूचर में हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन प्रदान करेगा। अंत में फिर मैं एक बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा, जो बहनें हमारी यहां पर बैठी हैं, इन वर्कशॉप के माध्यम से मैंने आपको एक कागजी तौर पर समझाया है कि व्यापार क्या होता है, व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद अवसर कैसे तलाशते हैं, अवसर तलाशने के बाद हमें अपना सामान बनाना होता है, सामान बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा उसका मूल्य निर्धारण कैसे करना चाहिए, और उसके बाद सामान बनाने के बाद उसको कैसे बाजार में बेचा जाए, और बेचते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसके अलावा जो हमने सामान बेचा है या जो हमने खर्चा किया है या जो हमारी आय हुई है, उस आय को कैसे एक लेखा के तौर पर एक उसके खाते बनाए जाने चाहिए, एक कॉपी में जरूर, आप एक डायरी में जरूर उसको एंट्री करिए, और धीरे धीरे जब आपका व्यापार बढ़ जाता है तो किन किन बातों का आपने आगे ध्यान रखना है। आशा करता हूं मैं कि इन वर्कशॉप के 3 भाग जो मैंने आपको, आपने जो मेरे 3 भाग देखे, इनको सुनने के बाद आपके मन में यह इच्छा तो जरूर पैदा होगी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए आपको, और आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है। हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और परिवार की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है, तो उन महिलाओं को उन महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर आना चाहिए कि वह भी आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार को पाल सकती हैं और अपना गुजारा कर सकती है। अंत में रीड इंडिया के माध्यम से मैं दिनेश मिगलानी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी तत्परता से और इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से मेरे लेक्चर्स को सुना। धन्यवाद, नमस्कार।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: प्रियंका चंदेलिया, बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे है, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर, मुझे मॉडल बनना था, बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं। बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23, कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पर। एक्चुअली सर, रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है, एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट हैं, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
2: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने इनके लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया, वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज़ करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने, मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपनी लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम, उनके लिए जितना करूँ मैं, जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है, वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बनाए, हर काम गर्ल्स के लिए बनाए। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया, तो उनके लिए भी हर काम बनाया, वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है, हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीख के जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज़ यहाँ की, हर चीज़ अच्छी है।
3: आई एम प्रियंका जायसवाल, आई बिलोंग यूपी इलाहाबाद एंड लिविंग शाहबाद मोहम्मदपुर। मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज़ उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूँ, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी। इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली ना शायद ना मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे, तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।
4: मेरा नाम लकी साहू है, मैं लखनऊ गोसाईगंज सेंटर में स्टिचिंग सिविंग की ट्रेनर हूँ और वहाँ पे रहती हूँ। रीड इंडिया से मैं 1.5 साल से जुड़ी हूँ। वहाँ पे 1.5 साल से मैं स्टिचिंग एंड सीविंग की क्लासेस लेती हूँ और बच्चों को सिलाई के बारे में बताती हूँ। और रीड इंडिया के थ्रू मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस

0: could somehow manage to convince them that we are not alien. We are an insiders. We have come here with the message to improve your lifestyle, the way you want to improve yourself. And that was the power of Dr. Geeta Malhotra and the entire team of Read India and the Read Global. They changed the world. How do they change the world? That is also a very interesting, Dr. Geeta ji would tell you. But I must tell you, after 1 year and so, they happily agreed to donate the land. And they themselves constructed the library. Read India paid the cost of the library, not the land. And some of them also contributed significantly, nominal, but that contribution was significant. And then the library was made, women started reading. Now the women which were motivated by Read India, they are the representatives of the Gram Panchayat and their powerful women. And the new beginning was made, and prevalence of Read India can easily be found in the locality of Mewat. Mewat is now divided into two districts. Initially, it was a Mewat district. That was Firozpur, Jhirka, Noh, Tavru, Punahana, Hathin and Nagina. Now the Hathin part is in Palwal district, and the remaining is in the Mewat district. So before I go to invite Dr. Geeta Malhotra ji to talk about her experience and the experience of Read India, her innovations and everything that she did. Now, without any delay, I would request Dr. Geeta Malhotra, the country director of Read India, the visionary, the leader, the master. She is a proper leader who works 24/7. And this is, I remember one thing, I am not exaggerating. I have been feeling her commitment. I am the witness from last 12 years, what she has been doing and how she has been motivating, energizing, emotionally evaporating the people who have been working with her. So Geeta ji, aapka bahut bahut swagat hai. Humne chaha tha ki log jo hai, wo dekh le ki aap kaise karti hai. After presence, I have seen people is teaching their vision, decision and future. I have seen women reading and writing. I have seen women, using the library. I have seen people using the computer. I have seen women reading. So, this is a new discovery that you have created. Please.
1: Thank you, Dr. Mishra, for such a elaborate description, which I don't need at all. But I'm so thankful to you for giving this gesture to me. That I am very simple, very introvert person, but I do believe in doing. I do believe in action. That's what you have narrated. Thank you so much. Mera jo soch hai, aap mujhe apne 5 minute ki explanation mein 2012 mein le gaye mujhe. 2012 में जब मैं रीड ग्लोबल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीड ग्लोबल के साथ बात कर रही थी, 2012-14 कुछ ऐसे ही है, मुझे पक्का याद नहीं है, बट हाँ 7 साल पहले की बात है. मुझसे टीना शाबिका हमारी उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी. शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट टाइम एंड द ईयर शी ज्वाइंट शी केम टू चाइसा विलेज टू डू द स्टोन लिंग सेरेमनी ऑफ द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर. शी केम इन मे, इट वॉज वेरी हॉट एंड आई टुक हर टू चाइसा फॉर स्टोन लिंग सेरेमनी. But before stone laying ceremony, she asked me that Geeta, one of my very close friend settled in Singapore would like to dedicate one of the library in her mother's name. Her mother was live. She's live now also. But she said, "Ki I would like to build a community library, but let me know the area, the geography, who need the most." That time back home, I was interacting with Mewat people, the stakeholders there, and Asif Ali, who was the sarpanch that time, came to my house in Gurgaon and said that Geeta ji, we need the most. Hamari community ko bahut zarurat hai. Agar aap wahan aake study kare, jo Dr. Mishra ne study kari, to aapko pata chalega ki kitni zarurat hai. So I was convinced. I visited the area. I sat with him. I sat with other Mewati stakeholders on the ground of his house, the land. I was the only woman. All were men. But I was very confident that I have to come back again in this area. I have to work in that area. Mujhe wahi kaam karna hai. Mujhe unhi logon ke saath kaam karna hai. Because one thing which I experienced, because I am a great observer for culture and attitude of the people, they gave me lot of respect. Lot of respect. First time the woman came in one room, they gathered. They did not come out where I was sitting with the stakeholders. They told me later on that the women are waiting inside the room. When I went inside, there were more than 100 women sitting in just in each other's on each other's lap, and they welcomed me. They said, "Hum aapko dil se swagat karte hain aur aapka bahut bahut welcome hai. Aap hamare liye, hamare bachiyon ke liye, hamare bachchon ke liye, hamare samuday ke liye kuch kariye." That changed my mind 100%. I said, whatever challenging it would be, but I have selected a community. Next very day, I called my executive director in US and said, I have found a community where I would like to set up a community library and resource center. Then I started working there. And that Singapore friend of my executive director committed that she will come on the inauguration of the building, which was great, great emotional attachment with the building, which I'm going to show you the inauguration also. Then we did the stone laying ceremony. Asif Ali had a house on the main road of Hathin block in Chansa village. He said, ma'am, the whole land, whole building is for you. You decide what you want to take. Then I said, okay, main road part I will not take because the children will come. It will be risky for them to cross the road and come through the main road because it was part of the highway. I said, give me the backyard. And he divided completely half of his land. उन्होंने वो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे जरूरी, मैंने उनको लिंक भेजा है. एंड ही वो इतने जेनरस थे, मैं ये एक्नॉलेजमेंट हिंदी में बोलना चाह रही हूँ उनके लिए. वो इतने जेनरस थे, उन्होंने अपने प्लॉट की जो लंबाई थी उसको बिल्कुल आधा करके उसमें दीवार बना दी और बोला, ये पीछे वाला लैंड आपका, आप जो मर्जी करिए, आप बिल्डिंग आप सेंटर बनाइए, मेरी 100% सपोर्ट आपके साथ है. तो दैट वाज द कमिटमेंट ही गेव मी एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एरिया. मैं मिस्टर आर एस दलाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी इस फोरम पे, क्योंकि ही वॉज द वन हु एनकरेज्ड. ही इज द रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ऑफ हरियाणा. व्हेन बिफोर द बिल्डिंग वॉज यू नो इनॉग्रेटेड, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, सर आपके एरिया में हमने एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बनाया है और मैं आपको इन्वाइट करने आई हूँ कि आप उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करें. एंड ही वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और दैट वॉज द जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट वॉज ग्रेट ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस बिकॉज एट द बैक ऑफ अस उनका हाथ था, उनका आशीर्वाद था, उनकी सपोर्ट थी और आज तक हर रोज जो एक मैसेज वो नहीं भेज लेते हमें एनकरेजमेंट का, वो आराम से नहीं बैठते हैं। तो मैं उनकी एसोसिएशन को यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। और उन्होंने खाली हथीन ब्लॉक में हमारे सेंटर को इनॉग्रेट नहीं किया, हरियाणा में हमने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, दिल से वो रीड को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रासरूट्स की के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है जो काम करती है और लोगों को साथ लेके चलती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है अपने कार्यक्रम से, ये वो बहुत अच्छे से जान गए हैं। तो डॉक्टर मिश्रा अलोंग विद यू आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज मिस्टर आर एस दलाल ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ही सपोर्टेड अस अ लॉट एंड टिल टुडे ही इज सपोर्टिंग अस। तो आपने लॉन्च में
0: He's a bubbling star, an energizer, you know, he's an energizer. He's emotionally charged. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire haveli for the Reed activities, you know.
1: So, Jhajjar, उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेंटर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए। तो that is he extended to us until now he is working towards making that Jhajjar village, Mehndipur village, the Bodha village, a beautiful village where one can go and even, you know, spend days together. The community is so, you know, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड इंडिया के जितने भी सेंटर हैं वो कम्युनिटी टूरिज्म को भी सपोर्ट करते हैं बिकॉज होम स्टेज आर वेलकम देयर बाय द कम्युनिटीज एंड वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट पीपल कम देयर एंड होम स्टे तो है ही है, पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग आई शुड से दैट। और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बारी खाना खाया होगा। उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी पर उनके ड्राइंग रूम में बैठ के मैं खाना जरूर खाती थी इतना तो मैं कह सकती। और मैं वेजिटेरियन थी और उनके घर में तो नॉनवेज इट्स अ कल्चर देयर, आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। बट व्हेन यूज टू गो विद माय टीम स्मिता राय, नाहिद जुबेर एंड अदर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही हैं क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे। तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ। और अभी डॉक्टर मिश्रा यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन।
0: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर निरुपमा अनुपमा, तो जो डॉक्टर अनुपमा थी शी वॉज एन आईएएस ऑफिसर और शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवात डेवलपमेंट एजेंसी व्हाट यू कॉल इट एमडीए। और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब, उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी। सी ऑल्सो टोल्ड मी डॉक्टर मिश्रा लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर। मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का। लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है तो पता नहीं मुझे कहाँ से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर। और हम वहां गए, जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को फैला रही थी। उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे जो फोटोग्राफ मेरे पास है. तो और एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग वन मोर बेबी. उसके बाद मैंने देखा वहां का सिचुएशन, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत सारे चीजों को हमने देखा. देन आई रियलाइज कि ये एरिया है जहां पर काम करने की जरूरत है. हमने उनके नमाज में भाग लिया, उनसे दोस्ती की और हम वहां पे काम करने लगे. शुरू में थोड़ा सा हुआ लेकिन बाद में वो हमें इतने प्यार करने लगे, खास करके अशरफ जी, आसिफ जी और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को, उनको लगा कि ये लोग अपने लोग हैं. और हमने उनकी सारी जानकारी ली. वहां पे हर एक घर में दो चार भैंस है और एक जो दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था. उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे. हमने सारा रिपोर्ट कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है. उसके बाद जो गीता जी ने कहा कि एक प्रपोजल आया और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं और 12 में वो बन गया था. तो वो प्रपोजल आया और गीता जी वर्क डे एंड नाइट. वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता. लेकिन गीता जी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जमीन नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है? मदर वॉज हिडन इन साइड हर एंड द मदर से लुक, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे. तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया और वहां पे काम शुरू करने लगे. बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने ये महसूस किया कि रीड जो है, ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है. इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती हैं. और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया. लेकिन उनका जो तो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे. और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली नो मैटर, आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा. वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा.
1: ओवर टू स्मिता. थैंक यू मैम. थैंक यू डॉक्टर मिश्रा. एज राइटी सेड, इट्स अ वेरी वेरी रिच कल्चर इन दिस कम्युनिटी, वेरी वेरी वार्म वेलकमिंग कम्युनिटी. As shared in the PPT, there are many, many programs that we have done in partnership with this community. We've done the setting up of community library and resource center. There are many, many women who've been trained on livelihood skills. Then we've had trainings on as advanced computer skilling. This was done through Adobe. IT skilling program for youth. Then since past 4 or 5 years, we have been doing Skills to Succeed program in this area and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each household have one mother and her girl or child

0: लिटरेसी से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके महिलाओं की पढ़ाई तक हमने काम किया। महिलाओं को हमने सक्षम बनाया, उनकी जो कल्चरल स्किल्स थी उसको एनहेंस किया। और कल्चरल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, अब रीत तो बहुत छोटी सी संस्था है, तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी, और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था, उसको उभारा। और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए, जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉरपोरेट्स को गिफ्ट दिए, बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था। और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया। और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए। तो ये एक ये भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम। जब हमने काम किया, डोनर्स ने अप्रिशिएट किया, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर 1 साल का एमओयू साइन होता है, और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में। बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में, मैं सबका बहुत ही, मतलब कि आई नो देम वेरी वेल, दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम गोइंग टू द ग्रास रूट्स, कैचिंग देयर कल्चर, अंडरस्टैंडिंग देयर एटीट्यूड्स एंड ब्रिंगिंग वैल्यू टू देयर लाइव्स वाज व्हाट रीड हैज डन। दीज आर द 3 मेजर अचीवमेंट्स वी हैव डन इन दिस एरिया। डॉक्टर मिश्रा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर व्हाट आई हैव सेड?
1: Yes, ma'am. Without any political motive, you know, Reed has gone there as an organization to work without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood. They are well respected people, well-educated people, well-cultured people, their culture glory is restored. So these the women are well-respected. There is a continuous harmony, you know, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. You know, that is the USP of working Reed in the Mewat, you know. Area that is really very very great. That is
0: all. Memory goes back when we saw power. तो है ही नहीं, तो computer कैसे सीखेंगे बच्चे?
1: Yes.
0: Oh, power! How they will read the books? Then we requested Bill and Melinda Gates Foundation. They gave us a special grant to put solar panels in the areas where we are facing problems with regard to the power. So you could see in the film also, we put solar panels on top of the building so that 24/7 there is a power in the library, and there is no power cuts, and the children can come, enjoy it there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are their own language. Because we did not want to put the book they cannot touch, they cannot read.
2: बिगावली की रहने वाली हूँ और ताराक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है। ऐसा है कि हमारे पास में ताराक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि अब पढ़ाई कर लो। हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या हो, कौन पढ़ावेगो, कौन पढ़ पावेगो। उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार। तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा।

0: पढ़ने में लिखने में हमारा मन भी लग रहा है। फिर वो हम तो हर जगह पे कर लेंगे, कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे हैं, है घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी सब में काम आती है पढ़ाई, मतलब ठीक है ना, हर चीज में आती है। अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं, बच्चे ये है हर को इसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो।
1: पहले भैया हमने इसलिए पढ़ा, मान पढ़ते तो हमने आवाज दी कि भैया हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर पे करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपना भी सीख जाते हैं, तो बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब कर आते हैं बैंक में जाके। इसीलिए हम भैया के पास पढ़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते थे, भैया पढ़ा देंगे तब इससे सीख जाएंगे।
0: मेरा नाम गजना है और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ाई पूछी कि तुम पढ़ सको, पढ़ सको, एक बार आए, दो बार आए, तीसरा के हम बोले अब तो हम पढ़ेंगे। जब ये भैया पढ़ान लगे हैं यहाँ स्कूल नहीं खोल दियो तो आगे पढ़ाने,
2: आपको क्या फायदा हुआ इससे?
0: अब हम सीखने लग गए, जो भी हम पे आ गए या हमें देख देख के चैट में कुछ पहले हम पे आ गई ना हो कुछ तो हम नाम भी लिख लें, अब हम अपने काम कर ही ले जाए। भैया बताऊ
1: सर्वे और पढ़ना चाहते अपने बच्चे ने पढ़ा ले, घर का काम कर ले, कोई काम काज आ जाए उसे कर ले, और सेंटर आ जाए कोई काम आ जाए, इसीलिए मेरा सीख लूंगी कुछ तो कुछ काम कर बैठूंगी मैं, परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए, उस भी काम जो तुम खिलाओगे वो हम करने को जाने।
3: दाम ये सरदार पढ़ाने आवे हम लोग, हम न पढ़े पर दो बार आए तीन बार आए, हम बोले हम पढ़ेंगे, हम पर पहले कुछ नहीं आवे, हम नाम भी लिख ले और जो काम दे पूरा काम कर ले,
4: हम पे तो एन आर भी ना आवे अब तो एन आर ने भी सीख ले। अरे बेचारा आया पढ़ने के सुखवीर लगो ना भाई लाली पढ़ लियो माता जी पढ़ लियो, हम बोले हम ना पढ़े हम बुराते में कहा पढ़ेंगे, तो बेचारा कई बार आया फिर हम पढ़ने लग गए, कई सीखो हमने पढ़नो, हम पे अनार भी नहावे या फिर या भी सीख गई नाम भी सीख गई अपनो।
1: मेरा नाम अमिता है, आप सभी को मेरा नमस्कार, और मैं तारा शहर में पढ़ती हूँ। पहले इन लोगों ने आकर हमारे गांव में सर्विस करी थी, हमने जानी क्यों कर रहे हैं, और जब हमारे सब आई थी तो पढ़ाई करने के लिए, पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे और अब इससे पढ़ते नहीं है पढ़ना सीखे हैं, और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है, और हमारे गांव के अंदर तीन तारा छवि एक ज्ञान चौपाली भी खुली हुई है, और हम बचत पढ़ते हैं सभी और उसके बारे में भी जानते हैं, पहले जानते नहीं है कुछ।
5: मेरा नाम भगवती है, मैं स्वामी के रहने वाली, मुंह पे कुछ भी नहीं आता है, मैं अक्षर समाज जान गई नाम, हाँ अक्षर जान गई हूँ, मैं अक्षर समझ गई नाम लिख लेती हूँ।
6: मेरा नाम रजनी है, मैं स्वामी के रहने वाली हूँ, मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी और यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
7: मेरा नाम आशा है, मैं स्वामी के में रहने वाली हूँ, मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा, हमने हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे, हम पर साइन कर सकते हैं, अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
8: मेरा नाम सरस्वती है, गाँव में तारा अक्षर का स्कूल खुला है, ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे, हमें बात समझ में आई और पढ़ा लिखना शुरू कर दिया, ये इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते थे, और ये गांव के अंदर जो समूह खुली रहती है उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते, बैंक में जाते थे पैसे भरना निकालना कुछ नहीं जानते थे, अब हम खुद पैसे भी निकाल लेते हैं, फार्म वार्म भर देते हैं। पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते, उसकी किताब कॉपी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है, कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे कितने नहीं दे रहे, तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते।
0: अपना नाम कांति।
2: कौन से गाँव से? यहाँ
0: छाए से।
2: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा
0: है? इतना फर्क है, पहले हम 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके, अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें, पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े अब थोड़ी बहुत अक्षर मिला के मात्रा मिला के सब कुछ अब हम कर लें, मात्रा लगा दें डंडा लगा दें।
9: मेरा नाम मीना है, झांसे के रहने वाली हूँ, पहले कुछ ना बनाओ अब हम लिखनो पढ़ना थोड़ा बहुत आने लगो, हिसाब जोड़ जो 100-200 रुपया आए 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
6: मेरा नाम बबीता जी है, छाए से रहने वाली हूँ। पहले कुछ नहीं आता था, अब बहुत कुछ सीख गई, बहुत अच्छा लगा पढ़े के। इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें, लोकेश जी की बात पे अच्छा पढ़ाने सुनाया वो।
10: हम तारा सर में ट्रेनिंग ली थी हमने, जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जिन अक्षर होते हैं, अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है, अपने गांव का नाम कहीं भी आ जा सकती है, हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
11: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया। बिरादरी में मेरी ड्यूटी है, वहाँ पे मैं 3 बैच चलाता, वहाँ पर 10-10 महिला आती है, प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है, बहुत ही अच्छी तरह से वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ। अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके, अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं, तो वो भी क्लास में आ जाती है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत खुश हैं इसमें आकर।
12: ताराक्षर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं हैं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी अम्बेवात इलाके के 3 गाँव में चला हुआ है, छायसा, बिघावली और स्वामी का। इसमें लगभग 90 से 100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं इस कार्यक्रम का, और ये तीनों गांवों में कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक गांव में 3 बैचेस चलते हैं, इसे कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो किसी के सामने भी खुलकर उनको जवाब देने लगी, अच्छे से बोलने लगी हैं। और वो पहले उनपे कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब वो क्या नाम है पढ़ने लगी हैं, लिखने लगी हैं, अपना खुद का नाम लिख सकती है, पति का नाम, अपने बच्चे का नाम और अखबार भी पढ़ने लगी हैं। इस कार्यक्रम से महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सभी खुश हैं कि ये कार्यक्रम हमारे इस पिछड़े इलाके मेवात में चलाया जा रहा है।
13: मैं पूरे अपने गाँव की औरतों से, बड़े बूढ़ों से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी ये स्कीम है, जो भी संस्थाएं यहाँ आ रही हैं, वो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव के हित में, हमारे गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तह दिल से अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से, तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: Wonderful, wonderful. So much to be shown. We have so much of content to be shown to the audience, but the time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किए. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे, हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मेवात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कंट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था, तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया था. आई वुड लाइक टू शो दैट फिल्म डॉक्टर मिश्रा, रीड इन तारो.
1: इस फिल्म के में जो भी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज मैं गीता मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनिनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, तो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में, और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwad, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering five villages, including Nihalgarh and Sheikhpura. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, studying in government schools, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities, and the same activities are repeated at the Reed Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. So the funds for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn, teaching is giving to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise and also collectively join the group for working together to reach center. We have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other read centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys, to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit making, agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth on voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwaris and the villages to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages and also focusing on their children's growth by creating positive environment at the Reed centers and at their homes. Reed India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is creating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
3: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है। तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है, जो फार्मर भी की भी मीटिंग हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
4: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
5: मैं रीड अमेजोन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर ट्रेनिंग की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को कुछ सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे इस्लामी सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
6: रीड इंडिया अमेजोन तरफ से जो सेंटर चल रहा है, इसमें मैं जो छोटे बच्चों का ईसीडी का सेक्शन है वो देती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है, जैसे हेल्थ की भी हुई है, कार्यक्रमों के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद भी बीए करके बीएड की हुई है तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि आपको क्या करके कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं भाग ले रही हूँ, तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
7: मैंने परंतु करने के बाद जेबीटी किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रीड इंडिया एंड अमेजोन की सामुदायिक लाइब्रेरी है, वहां से मैंने मुबारक सर से संपर्क कर 2 बुक्स प्राप्त की और वहां 2 बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया, जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
8: यहाँ पे पहले मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैं कंप्यूटर के और फिर बच्चों को सिखाते, जिससे उसे सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते। बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पे सब चीज, क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है, लाइब्रेरी भी है, ईसीडी का भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं आंगनवाड़ी में भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का कोर्स चल रहा है, बच्चों को कराती हूँ और इससे इधर मीटिंग होती है, इससे किसानों की मीटिंग होती है, इधर डॉक्टर आते हैं और इधर हमने सिलाई भी सीखी है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
9: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती हैं और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रुपए भी कमा लेती है, अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
10: मेरा नाम राम बाबू, 8 जिला में पढ़ता हूँ। अब मैं जब छुट्टी हो जाए सेंटर में आता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर खिलौना से खेलता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
11: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था, तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियाँ हैं औरत है जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती है, इससे काफी सुविधा है क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यही कपड़े सी जाते हैं तो अपना काम हल हो जाता है, पैसे की भी बचत है।

0: गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम स्मिता है. लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे लाइफ स्किल के सेशंस होंगे वो लीडरशिप सेशंस के पैरेलल चलेंगे. जो जो टॉपिक्स मैम कवर करेंगे, हम उसको एक एक टॉपिक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ लीडर तो ठीक है कि हमें वो चीजें समझनी, एज एन इंडिविजुअल भी हम उससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं. मैम की प्री कमिटमेंट की वजह से इस बारी जो हमारा सेशन है वो अभी अगले वीक पोस्टपोन हो गया है. सो आई थॉट कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीम वर्क का, हमने पहले भी ये वाला सेशन लिया था, बट कुछ नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, नए बेनिफिशरीज जुड़े हैं. सो मे बी वी कैन स्टार्ट विथ टीम वर्क, कि टीम वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि हमें एक साथ जुड़ के काम करना क्यों जरूरी है. सो आई होप जिनको ये रेपिटेटिव लग रहा होगा, इसका मतलब है आपने टीम वर्क में काम करना शुरू कर दिया है. और कुछ अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड, छोटा सेशन है ये, वी विल हैव अराउंड 30 मिनट्स ऑफ माई स्पीकिंग एंड देन वी कैन शेयर योर व्यूज. तो टीम वर्क से क्या समझ में आता है, किसी को कुछ पता है ये टर्म टीम वर्क क्या होती है? टीम वर्क इंग्लिश की टर्म है. इसका मतलब है कि एक साथ जुड़ के, एक होता है कि अकेला चलता है, एक इंसान अकेला काम करता है, और दूसरा होता है कि हम आते दुनिया में अकेले हैं लेकिन रहना तो हमें सबके साथ है. और घर में हो गया, प्रोफेशनली हो गया, पर्सनली हो गया, हम कोई भी काम अलग से नहीं करते, अकेले नहीं करते, कुछ लोगों के साथ जुड़ के, कुछ लोगों की मदद से करते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, उसको हम टीम वर्क कह सकते हैं. रीड इंडिया में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीम वर्क है, क्योंकि हम समुदाय के साथ काम करते हैं, समुदाय के लिए काम करते हैं और समुदाय में रह के काम करते हैं. हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो कम्युनिटी के अंदर हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, और कम्युनिटी ही उनसे हमारे हम उनसे सेंटर्स के थ्रू इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो, अगर हमारे सेंटर्स पे कोई आता नहीं है तो हमारे सेंटर की कोई वैल्यू नहीं है. वो मशीनें, वो किताबें, वो जितनी हमने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, चाहे वो मशीनें हैं, चाहे ब्यूटी का सामान है, इसीलिए हमारे सेंटर्स आज, जो जो 15 15 साल पुराने सेंटर्स भी हैं, आज भी वो लोग क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि नया नया समुदाय जुड़ रहा है और जो पुराना समुदाय है, जो पुराने बेनिफिशरीज हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो सीख के गए हैं, वो आज भी आते हैं. शायद कुछ बच्चे किताबें पढ़ना शुरू किया था उन्होंने और आज वो कोई ना कोई लघु उद्योग की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे साथ पिछले 5 10 सालों से जुड़े हैं. तो उनको हम क्यों जोड़ के रख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो समुदाय का है. और हम अपनी सर्विसेज अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे तो कोई हमारे सेंटर पे नहीं आएगा. कभी कभी हम ऐसा भी सुन देंगे, अब एनजीओ तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे सेंटर पे आके सीखना चाहते हैं. कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं हमारे सेंटर में, स्पेशली लड़कियां क्यों आके सीखना चाहती हैं? आप सभी लोग करीबन 10 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल से सेंटर चला रहे हैं. कोई मुझे बता सकता है कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं या टीम की बात करते हैं, टीम वर्क तो छोड़ दीजिए, टीम वर्क से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि वो 4 लोग जिनके साथ हम रीड में जुड़े हैं, यानी कि आप हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, ट्रेनर हो गया, लेकिन हम अपने बेनिफिशरीज को नहीं भूल सकते. वो लोग जो हमारे साथ आके हमारे लिए जुड़ के काम कर रहे हैं उनको हम नहीं भूल सकते. मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दूंगी, जो हम रामपुर में विजिट किया था उसका मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्यों लगता है कि समुदाय हमारे साथ जुड़ के क्यों रहता है, बार बार क्यों आता है, साल दर साल, 10 साल, 15 साल तक क्यों आता है हमारे पास, हमारे सेंटर्स में? फ्री दे रहे हैं क्या, इसलिए आता है या कोई और रीजन है?
1: मैम, हमारा कमिटमेंट, जो हमारी कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है, जिस
0: क्या
1: तरह से हम
0: कमिटमेंट?
1: कम्युनिटी को लेकर चलते हैं अपने साथ, मैम, जो कनेक्शन हमने उनके साथ बिल्डअप किया है, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी को हमारे ऊपर है, हमारे साथ सीखने में है, वो चीज उन्हें अलग जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो हमारे साथ कनेक्टेड है. 5 साल से हम
0: ओके.
1: उन्हें रिटेन कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द गुड कॉज. और उन्हें भी पता है कि वी आर डूइंग इट, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वी आर डूइंग इट विदाउट एनी प्रॉफिट. तो दिस इज आर डेडिकेशन टुवर्ड्स अवर वर्क विच इज कनेक्टिंग द कम्युनिटीज.
0: तो आवर डेडिकेशन, तो हम एक पॉइंट रखते हैं कि हम जो एज ए टीम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है, यानी कि वो चार पांच लोग जो सना के सेंटर में हैं, और सना के पास दो सैटेलाइट सेंटर्स भी थे, जो इनकी टीम है वो एक क्वालिटी सर्विस दे पा रही है अपनी कम्युनिटी को, इसीलिए उनकी जो कम्युनिटी है वो लगातार साल दर साल इनसे जुड़ी हुई है। सिंस वी प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ट्रस्ट फैक्टर, दीक्षा ने मैसेज में लिखा है। थैंक यू दीक्षा। और कोई बताना चाहेगा? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी एज ए टीम, एज ए रीड इंडिया, आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हैं, क्या 80 लोग एक टीम है या हम अलग अलग सेंटर से जुड़े हैं? अगर हम एक हैं तो हमारी एक कॉमन क्वालिटी क्या है एज ए टीम? अगर हम अलग अलग हैं तो हमारे अलग अलग क्या क्वालिटीज हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एनीबडी एल्स कोई कोशिश करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा?
1: गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून
1: मैम।
0: स्वाति जी।
1: मैम, एक तो सेफ इन्वायरमेंट है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड बॉय स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड सेकंड ये है कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके साथ वो भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे एरिया के होते हैं। उसके साथ साथ ही जो 3 महीने वो हमारे पास सीखते हैं, तो उन 3 महीनों में हम भी उनको ज्यादा अच्छे से मतलब पहचान सकते हैं, और वो भी हमें अच्छे से जानते हैं, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास 3 to 6 ईयर एज ग्रुप से लेकर मतलब अडल्ट तक के सारे लेवल का कुछ ना कुछ सबको सीखने का चांस है, सीखने के लिए साधन है हमारे पास, तो इसलिए वो हमारे पास मतलब सालों तक अटैच रहते हैं।
0: राइट राइट। थैंक यू स्वाति। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बिल्कुल ठीक बोला है स्वाति ने कि जो क्वालिटी सर्विस है, जो डेडिकेशन है, और जो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, एक एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं उनसे, उनकी तकलीफें जो हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं उसको समझने की कोशिश करते
1: लाइट
0: हैं।
1: ऑफ हो जाएगी, मतलब देखिए लाइट आ गई है ना, ये यूपीएससी का
0: तो
1: कितना है।
0: तो वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड। ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि सना हो गई, स्वाति हो गई, एवरी ईच वन ऑफ अस, जितने भी लोग हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं, सालों से जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं। फर्दर जा रहे हैं एज इन हम लोगों के घर में जा जाके उनको निकाल के लेके आते हैं कि नहीं, आप आइए हमारे सेंटर पे सीखिए। सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ वेरी गुड टीम, जहाँ पे हम बियॉन्ड आवर कमिटमेंट जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव इन आवर मिशन। हम बिलीव करते हैं कि कोई हमारे सेंटर पे आएगा तो वो हमारे सेंटर से कुछ सीख के ही जाएगा, कुछ लेके ही जाएगा, और ऐसी चीज लेके जाएगा जो हमेशा साल दर साल उसके साथ रहेगी। क्योंकि अगर हमने किसी को कोई स्किल दे दिया तो वो स्किल हम वापस तो नहीं ले सकते ना। आपने किसी को 100 रुपए दे दिए तो वो 100 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, वो शायद खाना खरीद लेगा उसका, या कपड़ा खरीद लेगा, या अपनी कोई भी जरूरत की चीज खरीद लेगा। लेकिन जिसको हमने कला दे दी एक बार, चाहे वो स्टिचिंग की स्किल है, ब्यूटी की स्किल है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की स्किल है, या फिर सॉफ्ट स्किल है, यानी कि बातचीत करने का तरीका, या अपना आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल हो गई, टेक्नोलॉजी स्किल हो गई, तो वो स्किल तो कोई वापस नहीं ले सकता। बट वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, हम लोग एज ए टीम काम करके एक और दरिया जो है वो पार करते हैं, जो कि है सोशली। सोशली जो दबाया जाता है कि नहीं, आपको नहीं जाना है सेंटर पे, नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उस बांध को भी हम तोड़ें। दिस इज वन ऑफ द कोर क्वालिटी ऑफ आवर टीम, जो रीट की जो टीम है ये कोर क्वालिटी बन गई है। एनीबडी एल्स, कोई और कुछ, किसी ने कमेंट में लिखा है कुछ, लेट मी जस्ट रीड दैट। पॉजिटिव एनवायरमेंट, ज्योत्सना जी लिख रहे हैं पॉजिटिव एनवायरमेंट, वेरी गुड। कैन यू डिफाइन पॉजिटिव एनवायरमेंट?
1: गुड आफ्टरनून मैम। गुड
0: गुड आफ्टरनून,
1: आफ्टरनून मैम।
0: गुड
1: ऐसे
0: आफ्टरनून।
1: क्या अपने से सवाल? हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग यहाँ पे आते क्यों है कि एक उनको ट्रस्ट होता है रीड इंडिया के नाम से, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं और लड़कियों को भेजते हैं हमारे यहाँ पे, कि उनको पता है कि यहाँ पे बच्चियां जा रही है या लेडीज, हमारे घर से कोई भी लेडीज जा रही है तो यहाँ पे सेफ है इस चीज के लिए। और जो भी सिखाया जाएगा, जो भी चीज होगी यहाँ पे अच्छे से ही सिखाया जाएगा, उनकी ग्रोथ ही होगी, कभी वो डाउन नहीं होगी किसी चीज के लिए। तो कुछ
0: बिल्कुल
1: बेनिफिशियरीज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, उनसे आपसे बात भी करना चाहते हैं।
2: डायरेक्ट आप उन्हीं से बात करिए, वो लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या उनको आने से फायदा है, वो क्यों सीखते हैं यहाँ पे आने के बाद, बताओ
0: राइट
2: बेटा आप बता
0: राइट
2: सकते हो कोई भी? पढ़ाई
0: गुड आफ्टरनून
2: के साथ साथ काम भी करते हैं, हमें यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ हम आगे भी बढ़े और इससे हेल्प मिले उसके लिए हम आते हैं।
0: ऑल राइट थैंक यू सो मच थैंक यू
2: दामिनी आप
0: गुड
2: बोलना, बोल कुछ बोलो। गुड आफ्टरनून
0: आफ्टरनून
2: मैम। हाँ मुझे ना सिलाई करना बहुत पसंद है इसलिए मैं आती हूँ।
0: तो रीड के सेंटर पे क्यों आते? सिलाई सेंटर तो बहुत सारे खुले हुए हैं,
2: हाँ
0: बहुत सारे
2: सीख
0: खुले।
2: भी रहे हैं उसके साथ नए नए डिजाइन में, मतलब सीख रहे हैं जो बन रहा है वो सीख रहे हैं, मैम अच्छे से बताती हूँ इसके साथ।
0: अच्छा
2: बताओ प्रोडक्शन में आप काम करके पैसे कभी कमा रहे हो उस टाइम? हाँ काम
0: अच्छा
2: करके पैसे भी मिलते हैं।
0: अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसलिए आप आपको यहाँ आना अच्छा लगता है कि सीख भी रहे हैं और प्रोडक्शन का
2: हाँ
0: काम
2: हाँ
0: भी आ रहा है। वेरी
2: जी
0: गुड वेरी गुड थैंक यू ज्योत्सना जी। यू वर ट्राइंग टू से समथिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो
2: हाँ जी मैम। हेलो मैम
0: आप
2: हेलो मैम बोलिए बोलो बोलिए सर। मैं ये कह
0: मास
2: रहा था
0: जो
2: कि
0: बोले
2: जब यहाँ आते हैं
0: सुमन
2: वो
0: जी, सुमन जी आप म्यूट। हाँ
2: हम जब आते हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं होता उनके माइंड में, बहुत कुछ चीजें होती हैं और थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट से आता है जो वो बहुत पॉजिटिव साइड पे सोचते नहीं है। तो यहाँ पे आके जब उन लोगों को हर चीज पॉजिटिवली सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है तो उनके माइंड्स काफी क्लियर हो जाते हैं और पॉजिटिव सोचा। और सबसे अच्छी चीज है कि हम जो एनवायरमेंट है सिर्फ स्टडी वाला रखे हैं, और चीजों पे बातें करना, डिस्कस करना या कुछ ऐसी चीजें करना, उसमें हम लोग बच्चों को इंटरेस्ट लेने ही नहीं देते, जिससे क्या होता है वो लोग पॉजिटिव सीखते भी हैं और साथ साथ बात भी पॉजिटिव करते हैं। और एक
0: राइट
2: ही जगह उन्हें तीन तीन चार चीजें सीखने के लिए यहाँ पे मौका भी मिलता है। जैसे मैम कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेकअप सीख रहे हैं या वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेकिन उनका बाद में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम थोड़ा सा और भी कुछ सीख लें और आगे सीखें, तो ऐसे भी वो सीख सकते हैं।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू जसन जी। सो मैंने कहा था मैं एक एग्जांपल दूंगी कि किस तरीके से हमारी टीम एक कदम आगे ही चल के काम करती है। अभी हम रिसेंटली रामपुर में गए थे और करीबन मेरे को लगता है 50, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन, और 50 से भी ज्यादा लड़कियां उस सेंटर में बैठी हुई थी। नया सेंटर जो रिलोकेट किया है हमने, हमारा रामपुर में जो सेंटर है, बहुत गर्मी थी एकदम, लेकिन एक एक बच्चा जो था, एक एक स्टूडेंट्स जो था, वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ ना कुछ एक उमंग थी उनके अंदर कि हाँ हम रीड सेंटर पे आए हैं तो रीड सेंटर से कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। इतना एनर्जी था, पहले शुरुआत में वो बहुत घबरा रहे थे बोलने में, बहुत ज्यादा, पहली बारी मिले थे, मैम थी हमारे साथ तो बहुत ज्यादा उनको हिचकिचाहट हो रही थी बोलने के लिए, लेकिन 5-10 मिनट के बाद वो लोग कंफर्टेबल हुए और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कोई भी लड़कियां, इतना उनके पास था शेयर करने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई जब हमारी टीम ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं आप आइए सेंटर पे, आइए सीखिए, यहाँ पे सीखने के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल, यानी कि आपस में जब आता है लोग, इंसान मिलते हैं तो उनको लगता है कि हम और भी कुछ सीख सकते हैं। देखो सिलाई तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी सेंटर पे जाएंगे आप सीख जाएंगे, ब्यूटी भी आप कहीं ना कहीं सीख जाएंगे, आप हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी सीख जाएंगे, लेकिन एक माहौल जो हम क्रिएट करके रखते हैं अपने सेंटर में, जिसमें जो आप ही ने मुझे बताया कि हम पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं, हम एक अच्छे तरीके से सिखाते हैं, जो सना ने बोला कि जो भी हम सिखाते हैं हम बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं, हम सेफ एनवायरमेंट रखते हैं कि ताकि अगर लड़कियां आ रही हैं या उनके पेरेंट्स को कोई ऐसा हिचकिचाहट ना हो। ज्योत्सना जी ने बोला कि हम फोकस करते हैं जिस काम के लिए आए हैं, पहले हम वो काम करें, उस पे फोकस रहें, इधर उधर गॉसिप नहीं करें, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं फैलाएं। तो ये सारी चीजें जो कंपोनेंट्स है ना, ये मिलके ही किसी टीम को सक्सेस करा पाती है। तो यही कुछ चीजें आज मैं एक छोटी सी मैंने पीपीटी बनाई है, आई विल जस्ट ट्राई एंड शेयर विद यू। ऑल राइट सो टीम वर्क, यानी कि एक ग्रुप में एक साथ होके हमें जो एक कॉमन गोल, अब हमारे केस में कॉमन गोल क्या है कि हमारे सेंटर को इसी तरीके से ग्रोथ मिलती रहे, हमारा सेंटर कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा सेंटर तो खुला है लेकिन कोई वहां सीखने ही नहीं आना चाहता। तो एक कॉमन गोल जो है, हम आज जितने 89 पीपल जुड़े हुए हैं, हम सबका एक कॉमन गोल है कि आपका छोटे दर पे गोल ये है कि आपका सेंटर जो है वो साल दर साल चलता रहे, उसमें बढ़ोतरी होती रहे और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको सेल्फ सस्टेन कर सकें। ऐसे ही अगर हम सारे सेंटर्स को ले लेंगे और इन सबका जो एक कॉमन गोल होगा वो यही होगा कि हमारे सेंटर्स चलते रहें, इनमें कोई रुकावट नहीं आए, और जो हम मिशन है जो हमारा, जो कि कम्युनिटी को सर्विस देने का हमारा गोल है, वो हम एक साथ अचीव करें। अगर आप में से कोई भी एक सेंटर वो गोल अचीव करने में नाकाम हो जाता है, किसी एक सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो उंगली किसके ऊपर उठेगी? सीधा रीड इंडिया के ऊपर। तो जो टीम है हमारी, जो हम टीम वर्क की आज बात कर रहे हैं, तो अगर एक भी पुर्जा उस टीम का कमजोर हो जाता है या उसकी वैल्यूज मैच नहीं होती या वो किसी और रास्ते पे निकल जाता है, तो जो हमारी टीम है, जो एक माला है, अगर उसमें से एक मोती निकल जाता है तो माला टूट जाएगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार हम सेंटर से जुड़े रहें, हम सेंटर्स को अपनी कोर वैल्यूज से जोड़ के रखें, क्योंकि हम टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझते हैं। और इसीलिए रीड जो है, मैम भी है, हम सबको नर्चर करती हैं कि हम सबका जो कॉमन गोल है वो हमेशा एक ही रहे और लाइव रहे, यानी कि हम उसे चेंज कर सकते हैं ग्रोथ की तरह, लेकिन ऐसा ना हो कि अलग ही दिशा में चला जाए। मान लीजिए कोई सेंटर बोलता है ठीक है, अब तो मुझे ये करना ही नहीं है, अब मैं इसमें जिम खोलना चाह रहा हूँ, अब मैं अपना सेंटर में जिम खोलूंगा, जी अब तो ये सेंटर हमारे को दे दिया गया, अब मैं इसमें जिम खोलूंगा, जिम की बहुत डिमांड है। क्या ये हमारा गोल है? नहीं, हमारा गोल है स्किलिंग का, हमारा गोल है एजुकेशन का, हमारा गोल है सॉफ्ट स्किलिंग का, हमारा गोल है कि हम महिलाओं को या लड़कियों को या जो कम्युनिटी है ऐसे एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनकी ऑल्टरनेट इनकम हो सके, जिससे हम सेंटर भी सेल्फ सस्टेन कर सके। यही 5-6 गोल है, इसके अलावा तो और कोई गोल नहीं है हमारा। तो ये कॉमन गोल को डिफाइन करना और सभी पूरी टीम जो है, जो जितने भी लोग एक टीम में जुड़े हैं, उसकी तरफ काम करने से ही वो हमारा गोल अचीव हो सकता है। कभी भी टीम में हम ये नहीं कह सकते अच्छा मैं तो अच्छा कर रही हूँ। कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, या आपके फाइनेंशियल डेटा नहीं आया, या आपकी रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आ रही। बोले नहीं मैंने तो दे दिया था, आगे उन्होंने नहीं दिया, या आधी ही आई या आधी रिपोर्ट ही आई, बट हमारा अचीव तो नहीं हुआ ना। तो टीम में जो लीडर होता है या जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, या चलिए मुझे ज्यादा तजुर्बा है, या कभी कभी लीडर जो होता है हम चुनते नहीं है, लेकिन वो इतना रिस्पेक्ट कमांड करता है कि उसको मान लेते हैं कि हाँ ये लीडर है। तो ये एज ए लीडर या एज ए कोर मेंबर ऑफ एनी टीम, आप हम सबका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कभी भी आई विन यू लूज, मतलब मैं तो जीतूं और तुम हार जाओ, कि दूसरे को नीचे खींच के हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। ये टीम अच्छी टीम के कॉम्पोनेंट नहीं है। अच्छी टीम की कॉम्पोनेंट है कि मैं भी जीतूं तुम भी जीतो, यानी कि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस करें। मेरी प्रोग्रेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तुम्हारी कम हो सकती है, कि तुम्हारी कभी ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, राइट? सो टीम में सबका मिल बांट के काम करना, सबके रोल्स डिफाइन होना। अगर रोल्स सही से डिफाइन नहीं होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन में कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता। घड़ी जो होती है, घड़ी में पीछे हमको सिर्फ 3 सुइयां दिखती हैं, राइट? लेकिन कभी अगर हम उसको पलट के खोल के देखें तो पीछे बहुत सारे छोटे छोटे छोटे छोटे पुर्जे हैं जो काम करते हैं। अगर उनमें से एक भी पुर्जा काम करना बंद कर देता है, तो घड़ी सही टाइम नहीं दिखाएगी, या टाइम दिखाएगी ही नहीं, राइट? वो 3ों सुइयां शायद मूव नहीं करेंगी या गलत मूव करेंगी। तो हम जो पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे हमारी लीडरशिप है, हमारी ट्रस्टीज हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारी वेबसाइट है, लेकिन इसको बनाता कौन है? बनाते तो हम लोग हैं। तो जब हम आपसे रिपोर्ट्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फोटोज लेते हैं, आप ये सोचिए आप वो घड़ी का वो छोटा पुर्जा है जिसको टाइम तो देखेगा कोई कोई होगा कॉर्पोरेट, उसने देखना है कि हाँ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो टाइम दिखाना हो गया, लेकिन पीछे का काम तो हम सब मिलके कर रहे हैं ना। तो अपने काम को हम कभी भी छोटा नहीं सोचेंगे। कुछ भी अगर रीड में कुछ काम चल रहा है, तो आप ये सोचिए कि ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो मुझे दिया गया है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कि कभी भी मत सोचिए कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टीम, अगर मैं ये नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं 100% नहीं दूंगा इसका या नहीं दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फॉर अ गुड टीम, सारे कॉम्पोनेंट्स का एक साथ जुड़ के अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। अभी हमने बात करी कि रोल्स डिफाइन होने बहुत जरूरी होते हैं एक टीम में। अगर रोल्स डिफाइन नहीं होंगे कि भाई किसने सुबह सफाई करनी है, किसने स्विंग की क्लासेस लेनी है, किसने रिपोर्ट भेजनी है, किसने फाइनेंस का हिसाब रखना है, किसने देखना है कि भाई चाय पत्ती दूध चीनी सेंटर में है कि नहीं, किसने देखना है कि किताबें सही से लगी हुई हैं, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं। अगर ये रोल्स ठीक से डिफाइंड नहीं होंगे तो हमारा जो लाइब्रेरी है, हमारा जो सेंटर है, वो नहीं चलेगा, वो सही से नहीं चलेगा। देर इज सम जोक गोइंग ऑन जो हमारा ये सेंटर है जूम यूजर वाला, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू हियर दैट जोक। आप याद रखिएगा, वी विल कम बैक टू यू एंड वील हियर योर जोक। सो इस जो जो टीम वर्क होता है उसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अभी सना ने और जो दो तीन लोगों ने बोला, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम फुल डेडिकेशन के साथ अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, उसी तरीके से एक अच्छी टीम का काम करने के लिए टीम में आपस में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। हम समय समय पे आपको पूरे आई वुड रिक्वेस्ट जूम यूजर, इधर आप चले जाएं बिकॉज देर इज सम गॉसिप गोइंग ऑन, या फिर आप अपनी स्क्रीन बंद कर दीजिए बिकॉज मेरे लिए बहुत अटेंशन डाइवर्शन हो जाता है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आई कैन हियर यू लाफिंग एंड आई कैन हियर यू यू नो इट इज वेरी इरिटेटिंग। आई एम श्योर आपके पास ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, आप स्क्रीन बंद कर लीजिए, सिर्फ नाम वास्ते आप ऑनलाइन रह सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज विद यू, राइट? प्लीज स्विच ऑन योर स्विच ऑफ योर स्क्रीन। आप अपने जोक्स कंटिन्यू करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? ऑनेस्टी के साथ काम करना बहुत जरूरी है एक टीम में, बिकॉज अगर हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तो दैट मीन्स हम टीम में इक्वली ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को छुपा रहे हैं, और ये हमारी टीम की हेल्थ के लिए और हमारी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आज आप यहाँ पे हैं, हो सकता है आप आगे जाके किसी और कंपनी में जाएंगे या किसी बड़ी संस्था के साथ काम कर सकते हैं। तो एज ए लीडर, क्योंकि हम लीडरशिप के भी सेशन लेते हैं, एज ए लीडर और एज ए मेंबर ऑफ द टीम, बहुत जरूरी है कि हम कोई चीज अगर हमें पता चली है और हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो हमें सब मेंबर्स के साथ वो शेयर करना चाहिए। सो ऑनेस्टी इज वन ऑफ द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ अ गुड टीम। ऑलराइट, आई विन यू विन आई विन हमने बात कर ली है, इसके इसके लिए कोई एग्जाम्पल्स अगर किसी के पास हैं तो वी विल बी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। टीम में ना तीन जो

0: जो है वो अच्छी है या बुरी है, तो हम एक टीम में एक जैसे तो नहीं होते। हर टीम में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 90 लोग हैं, तो हर कोई अलग अलग होगा। तो टॉलरेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो जनाब यहाँ बैठे हुए थे 3-4 लोग, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंस था, बट हमें हमें उनके लिए भी टॉलरेंट होना है। मे बी आज वो सुन रहे हैं, ये चीज हो सकता है कल उनके काम पे आए, आज नहीं इम्पोर्टेंट लग रहे, बट वो आगे जाएंगे किसी कंपनी में काम के लिए जाएंगे, तब शायद ये बात मेरी उनको याद रहे या याद आ जाए जब उनको कहा जाएगा कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। सो हमें हर किसी को टॉलरेट करना सीखना पड़ता है, और जिनके पॉजिटिव्स हैं, जो नेगेटिव्स हैं, उस पे काम करना चाहिए एज ए गुड टीम। अगर एक टीम में किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो और लेकिन अगर उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो एज ए टीम लीडर हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन स्पीकिंग स्किल्स तो अच्छी नहीं है, तो हम यू नो वी वोंट गिव यू अ रोल। हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ्स देखनी है कि हमारे टीम में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स क्या है। किसी की फाइनेंस में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी फाइनेंस में अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि कुछ बोर्ड पे लिख दो या ड्रॉ कर दो, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है और ड्राइंग तो उससे भी बुरी है। लेकिन कोई बोले कि इसका फटाफट एक्सेल में कुछ बना दो, इसका जोड़ तोड़ कर दो, इसको बताओ कि इसका क्या, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो मेरे लिए बहुत आसान है। तो मुझे ये पता है, तो मैं अपनी जो मेरे लीडर है, मैंने उनको पहले ही बताया कि अगर इस तरीके का काम करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, और अगर इस तरीके का काम मुझे दिया जाएगा तो शायद मेरी कैपेबिलिटी उसमें नहीं है। सो वी हैव टू बी टॉलरेंट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बट ऑल्सो टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत विनम्र होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी मतलब एकदम से वो घबरा जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं, और काम करने में उनका दिमाग नहीं लगता, डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वी हैव टू एज ए टीम लीडर हमें उनको फीडबैक देना है। आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है हम लोगों की। बार बार हम फोन देखते हैं, बार बार हम फोन पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, अच्छा क्या न्यूज है। हम लोग भी न्यूज आज सुबह, कल से तो मैं भी न्यूज बार बार देख रही हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है, अच्छा फ्लडिंग कहाँ पे हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टीम में हमें टॉलरेट करनी है, लेकिन हमारा गोल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट आज जानी है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आज जानी है, तो एज ए लीडर हमें ये देखना है कि टीम में टॉलरेंस की जगह तो है, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी यानी कि काम ना हो इस चीज की जगह नहीं है, क्योंकि फिर हमारी टीम फेल हो जाएगी। ट्रस्ट, टॉलरेंस, टुगेदरनेस तो होगी लेकिन टीम फेल हो जाएगी, है ना। सबसे ऊपर गोल है, गोल के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है वो हम पहला कंपोनेंट था कि टीम में सबका एक साथ मिलके चलना बहुत जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल टीम। टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की कमियों को टॉलरेट करना कुछ हद तक हमें सीखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ आके भी बोल जाए तो हम बोले नहीं नहीं ये तो हमारा टीम मेंबर है, और ये नहीं नहीं हम तो इसको कुछ कहेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। टॉलरेंस एज फार एज इट इज एडिंग टू आवर गोल, राइट, एंड टुगेदरनेस। हम अकेले तो कुछ, अकेले तो टीम है ही नहीं, अकेले तो फिर हम इंडिविजुअल है, राइट। एक ये खरगोश और कछुए की कहानी हम सबने सुनी है, अब बचपन में हमने ये कहानी छोटे बचपन से सुनते आए हैं कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, और ये दोनों ही रेस लगाते हैं, और खरगोश सो जाता है क्योंकि उसे लगता है अरे मैं तो इतना तेज भाग रहा हूँ और इतनी तेजी से मैं फटाफट कर लूंगा, और मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर सो भी जाऊंगा। उसने पेड़, एक पेड़ ढूंढा और उस पेड़ के नीचे सो गया। इतने में जो कछुआ था वो अपने गोल पे कायम रहा, धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो गोल की तरफ बढ़ता रहा, और उसने देखा कि कछुआ तो उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं इसको जगाता नहीं हूँ, ये तो सो ही रहा है, इन एनी केस मुझे जीतना है, ये रेस जीतने के लिए है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कछुआ जो था धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अंत में वो रेस जीत गया। जब खरगोश उठा तो उसने देखा अरे मैं तो सो गया था और मैं ये रेस हार गया। ये स्टोरी सुनी है किसी ने पहले, या इससे अलग कोई स्टोरी सुनी है किसी ने कछुए और खरगोश की? आप
1: हाँ जी,
0: मुझे
1: सही
0: सबने
1: है, हम सबने
0: सुनी है, सबने सुनी है। इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लेके आ

0: इस स्टोरी को अगर एज ए टीम सुनाना है हमको, तो हम कैसे सुनाएंगे? अगर खरगोश और कछुए की टीम है, अभी क्या था कि कछुआ अलग भाग रहा था, खरगोश अलग भाग रहा था, वो एज ए टीम नहीं भाग रहे थे। कछुए की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी और खरगोश की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी। अभी वो तो जंगल में रहते हैं, लेकिन हम लोग तो इंसान हैं, हमें तो एक साथ जुट के काम करना है, और हमारी क्वालिटीज कछुए और खरगोश जैसी ही है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अलग है। हाँ, हम सबकी जो शक्तियां हैं या सबकी जो वीकनेसेस हैं, वो सबकी अलग अलग हैं। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी टीम वर्क में सुनाई जाए, तो उसमें हम ये डाल सकते हैं कि कछुआ और खरगोश एक रेस में थे। उस रेस में कई रुकावटें थी। पहले तो बहुत रास्ता जो था वो पथरीला था, बहुत उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता था, और आगे जाके नदी आती है और फिर पहाड़ आता है। ये रेस उनको पार करनी थी। तो जब कछुए और खरगोश ने देखा कि ये रेस तो इम्पॉसिबल है पार करना, अलग अलग अगर हम करेंगे तो एक पड़ाव तक जाके हम रुक जाएंगे, हम ये रेस नहीं पार कर सकते। तो फिर कछुए और खरगोश ने बोला कि ठीक है, क्यों ना हम टीम वर्क में काम करें। जब हम टीम वर्क में काम करेंगे, तो जो पथरीला रास्ता है वो खरगोश फटाफट पार कर लेगा और मैं खरगोश के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और जो पानी का रास्ता है वो कछुआ फटाफट पार कर लेगा और खरगोश उसके ऊपर चढ़ जाएगा। जो पहाड़ का रास्ता है वो फिर खरगोश कवर करके ऊपर पहुंच जाएगा और कछुआ उसके साथ चला जाएगा। तो अगर रेस पार करनी थी तीनों दोनों को, तो ये तीनों पड़ाव पार करने थे। अब अकेले तो वो शायद नहीं कर पाते, खरगोश पानी में डूब जाता और ये दोनों ही हार जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है और हम एज ए टीम काम करेंगे। सो एज ए टीम हमें ये देखना है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, क्या हमारे टीम वर्क करने से वो इश्यूज पार हो सकते हैं? क्योंकि हमारा गोल क्या था कि वो रेस को पार करना, गोल ये नहीं था कि जीतेगा कौन, राइट? अगर गोल रीडिफाइन कर दिया जाए, अगर गोल कॉमन हो, जो कि रीट का गोल है, कॉमन गोल है, हम कोई कंपनी नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक संस्था है जो समाज समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे गोल में इंडिविजुअल का जीतना जरूरी है, या एक टीम का एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है? कठिनाइयां उसमें भी आएंगी, हो सकता है कछुआ जो है खरगोश का भार ना सहन कर पाए, बट धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो एज अ टीम शायद वो रेस पार कर लेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है कि अकेले वो नहीं पार कर सकते। हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर रोल्स हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो। आप देखेंगे बार बार मैम हमें कम्युनिकेट खुद से करती हैं, जहां भी चैलेंज आता है वो खुद से फोन उठाती हैं, हर एक से बात करती हैं, और जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए लीडर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है वो लगातार सही तरीके से चलती रहे इन इन अ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल्स हम आसपास अपने, जैसे कि यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है, चींटियां जो हैं बड़े से बड़ा पहाड़ उठा लेती हैं, अपने भार से कई गुना ज्यादा भार वो उठा लेती हैं एज ए टीम जब काम करती हैं। इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप देखें हनी बीज, हनी बीज जैसे काम करती है ना, उनका रोल्स बहुत डिफाइंड होता है। रानी मक्खी कौन सी है और वर्कर बी कौन सी है, शहद कौन इकट्ठा करके लाएंगी, और रानी मक्खी की जो क्या कहते हैं सोल्जर बीज होती है वो कौन सी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लियरली कि किसका क्या रोल है एक टीम में, क्योंकि जो कॉमन गोल है हमें वो अचीव करना है, राइट? और ज्यादातर टीम्स, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां आप देखोगे, ज्यादातर टीम्स जो है ना वो फेल इसलिए करती हैं क्योंकि शायद उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं होती। शायद लीडर अच्छा है, लेकिन लीडर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। शायद कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है, लेकिन उनके गोल्स ही डिफाइन नहीं है। भाई बहुत अच्छे से किया, लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ है, पता ही नहीं है करना क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन अच्छे रखें, अपने लीडर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, गोल्स क्लियर होने चाहिए कि टीम किस लिए काम कर रही है। ये जो सेंटर हमने खोला है, इतनी जगह पे जो हमारा सेंटर है, किस लिए क्यों काम कर रहा है? और
1: हेलो, मैं
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: स्मिता जी, मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन स्टोरी. अभी मैंने फुल टाइम
0: मैं एक मिनट अपना कैमरा
1: अंजलि.
0: ऑफ करती हूँ क्योंकि मेरे को ना आवाज थोड़ी कम आ रही है. 1 सेकेंड, सॉरी. हाँ जी, आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए.
1: आई हर्ड कि समबडी वाज सेइंग कि हम शुड वर्क लाइक सनफ्लावर्स. तो व्हाई सनफ्लावर? सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ देखता है टू गेट एनर्जी, और वो पूरा दिन सन की तरफ देखता है. सन की तरफ ही जैसे साइड पे सन हमारा जाता है, सनफ्लावर उधर ही मुड़ जाता है एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना बाकी का जो उसका प्रोसेस है वो पूरा कर सके. एंड एट द टाइम्स जब सन नहीं होता है, वेदर की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, तो सन के ना होने पे सनफ्लावर का, मैंने सुना कि वो सनफ्लावर्स एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते हैं टू एक्सचेंज एनर्जी. तो जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, हमारा है, हमारे मेंटर्स हैं, वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं जहाँ तक वो कर सकते हैं वो करते हैं. जब वो लोग अपने किसी और काम में हैं, तो वी शुड ऑल्सो वर्क लाइक सनफ्लावर्स, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी टीम को हर तरह से, हर हर सिचुएशन हम लोग को आगे लेके जाने के लिए वी शुड वर्क. आई जस्ट वॉन्ट टू
0: इट इज अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन सीमा जी. अगर आप अलाउ करेंगी तो मैं ये स्लाइड अपने पैक जो हमारा पीपीटी है इसमें ऐड करना चाहूंगी. आई हैव नेवर हर्ड सच अ ब्यूटिफुल थिंग. मतलब डेफिनेटली ये वर्थ ऐड करने का है कि जब जब सूरज चमकता है, यानी कि जब पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तब तो हम एज ए टीम काम कर रहे हैं. बट जब कठिनाइयां आ जाती हैं तो हमें एक दूसरे की तरफ देखना है, एक दूसरे का साथ जो है वो एज सनफ्लावर, एज ए गुड टीम मेंबर हमें वी शुड नॉट यू नो लेट गो कि अगर आज कठिनाइयां हैं तो आज हम टीम नहीं है, अब हम अलग अलग काम करेंगे. जब तक कि सब कुछ अच्छा था तब तक हम एक अच्छी टीम की तरह काम कर रहे थे. आज क्योंकि प्रॉब्लम आ गई, सन नहीं है, अब हमें रोशनी नहीं मिल सकती, तो रोशनी हमें एक दूसरे से लेनी है. वेरी गुड, थैंक यू सीमा मैम. सो दैट वॉज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन आई हैड क्रिएटेड जस्ट ऑन टीम वर्क. वो हम आपसे शेयर कर देंगे. बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. चाहे आज यहाँ पे हैं आप, चाहे कल बड़े हो किसी कंपनी में जाएंगे, चाहे हम ये प्रोफेशनली बात करें तो ज्यादा मतलब ये स्लाइड्स रहेंगी. पर्सनली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्सनली भी हम घर में अकेले नहीं होते. हमारे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, और जब अगर शादी हो जाती है स्पेशली फॉर लेडीज, महिलाओं के लिए हम दूसरे घर जाते हैं तो सास ससुर हो सकते हैं, वहां पे पूरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है. तो उनको भी हम कैसे एक परिवार को एक टीम की तरह देखें, ये भी शायद सोचने की हमें जरूरत है. क्योंकि आजकल इतने मनमुटाव हैं, इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही वाला एटीट्यूड है ना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो. लेकिन हम सबको तो ये नहीं समझा सकते, सिर्फ खुद को ये समझा सकते हैं. इन छोटी छोटी चीजों को हम आप तक इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी चीज किसी की लाइफ में कोई बदलाव लेके आ सके. मुझे मेरे काम का ये पार्ट नहीं है लेकिन मुझे करने में मजा आता है आपसे सीख. जैसे आज मैंने नई चीज सीखी है सीमा मैम से, ऐसे ही मैं चाहूंगी जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं वो कोई ना कोई नई चीज, कोई एक नई सीख हम सबके साथ शेयर करें. बिकॉज सिर्फ मेरा बोलना अच्छा नहीं है, सब सबके पास वो नॉलेज है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी के पास वो एग्जाम्पल्स हैं. और कुछ भी एग्जाम्पल सही या गलत नहीं होता क्योंकि हम सब लाइफ से सीख रहे हैं. अगर हम सभी शेयर करने शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना कुछ हम सीखने को मिलेगा. इस सेशन में आना कोई जबरदस्ती नहीं है. जिनको लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट काम है या कुछ और प्रायोरिटी है, आप प्लीज मत आइए इस सेशन में. ये सेशन इन एनी केस आपसे शेयर कर दिया जाएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास वक्त है और आपका दिमाग इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है. आप तभी भी सुन सकते हैं. सो देर इज नो मैंडेटरी, यहाँ कोई अटेंडेंस नहीं है. रिकॉर्ड किया जाता है जस्ट क्योंकि ये सेशन हम आपसे शेयर करेंगे ताकि वो आप जब चाहें सुन सकते हैं. ये जूम जूम यूजर का जोक तो हम सबको सुनना है, राइट? वो क्या जोक चल रहा था? फतेहपुर सेंटर, फतेहपुर, राइट?
2: I'm so sorry. जो भी ये चला था कि आपने वहां पे एक पॉइंट रखा था कि सब जो लीडर होता है वो ये चेक करता है कि जो किचन में चीनी है या नहीं, या फिर चाय की पत्ती है या नहीं, या मैम. बट एज अ लीडर मैं ऐसा कुछ मैंने गलती की, तो सो मुझे हंसी आई अपने ऊपर. कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, आज मैम जो बात कह रही है वो रियलिटी में मेरे साथ ऐसा हो रहा है,
0: राइट
2: इसलिए मुझे
0: हमने
2: मैम,
0: के
2: या मैम डर
0: बहुत
2: नॉट
0: अच्छा
2: जोक मैम,
0: पॉइंट,
2: या मैम
0: बहुत
2: ये
0: अच्छा
2: जोक नहीं कर
0: पॉइंट
2: रहा
0: है।
2: है, यस मैम, क्योंकि
0: नहीं
2: मैंने
0: मैंने
2: ये
0: ये
2: गलती
0: नहीं
2: फील
0: बोला
2: की
0: है,
2: कि मुझे
0: हाँ
2: इन्हें किया है, सो मुझे थोड़ी सी हंसी आई अपने ऊपर आई इस बात को लेकर के, और मेरे
0: नो
2: जो
0: प्रॉब्लम,
2: मेंबर्स हैं उनको भी लगा कि तो सो सॉरी मैम, मैंने ऐसा कोई
0: नो नो सॉरी की
2: बोला था
0: बात ही नहीं है,
2: जिसको,
0: मुझे लगा कोई अच्छी बात चल रही है तो
2: नो
0: हमें
2: नो
0: भी बोला
2: मैम,
0: जाए। तो
2: नहीं
0: मैंने ये
2: मैम,
0: नहीं बोला था कि लीडर जो है वो ये देखेगा चाय पत्ती है कि नहीं, मैंने
2: या
0: बोला
2: मैम,
0: था,
2: या मैम,
0: मैंने ये
2: बिल्कुल
0: कहा था कि रोल्स बहुत जरूरी है डिफाइन होना, हमारे सेंटर में या हमारी टीम में किसका क्या रोल है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारे ऑफिस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ चीजों का हिसाब रखना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे जो और 10 लोग हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो मान लीजिए कोई 2 लोग उसमें से उस दिन नहीं आए, तो एज ए टीम मैं ये नहीं कह सकती ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। एज ए गुड टीम मुझे थोड़ा सा आइडिया है अगर, तो मैं कह सकती हूँ ठीक है आज वो नहीं आए तो मैं उसका उसकी जगह ये काम करने को तैयार हूँ। तो दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड टीम वर्क, राइट। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है?
3: गुड आफ्टरनून मैम,
0: वेरी
3: सुनीता
0: गुड
3: फ्रॉम।
0: आफ्टरनून,
3: मैम जैसा कि आपने आज सारे पॉइंट इतने अच्छे से बताया, तो उसी का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जो स्प्रिंगवुड स्कूल शीतला कॉलोनी का है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है टीम वर्क की वजह से ही कर रहा है। कहाँ लास्ट सेशन जुलाई में मेरे पास 11 एनरोलमेंट थे और अभी मेरे पास 75 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं
0: वेरी गुड, वेरी गुड,
3: और पेरेंट्स आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है, और ये रिजल्ट है हमारे टीम वर्क का और आपके सेशंस का, और जो भी मेरी हेल्पर्स हैं, मेड हैं, और जो भी मेरी टीचर्स हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है। अगर टीम वर्क ना होता तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। थैंक
0: नहीं
3: यू
0: कर
3: सो मच।
0: पाते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे टीम्स अच्छी नहीं थी और वो नहीं कर पाई क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि भाई हमारी सैलरी आई कि नहीं आई, फोकस यही था कि इस मंथ हमारी सैलरी आई नहीं तो अब हम काम नहीं करेंगे। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए। सैलरी इज नॉट एन इश्यू, बट अगर हमारा स्कूल चल ही नहीं रहा है, अगर हमारे बच्चे आ ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर है ना, उस कमी को तो हम समझेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वरना अगर बच्चे ही नहीं है, बच्चे हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर स्कूल सिर्फ किताबें चेयर टेबल रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अगर 10 ही बच्चे हैं। सो वेरी गुड एग्जाम्पल सुनीता जी, आपकी टीम इतने अच्छे से 75 बच्चों को मोबिलाइज कर पाई, अपनी अपने आप को आप सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं था।
3: यस मैम, यस मैम। हेलो मैम,
0: हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड
3: आई एम फाइन मैम।
0: दैट आपने ज्वाइन किया है,
3: क्या मैम?
0: अच्छा लगा आपका देख के कि आपने ज्वाइन किया है।
3: मैम हमारे सेंटर में बहुत सारी लेडीज ऐसी थी कि उनके घर वाले मतलब उनको यहाँ भेजते नहीं थे, तो जब नई नई लेडीज आती थी तो बोलती थी हमारे घर वाले नहीं भेज रहे, तो हमने घर वालों के साथ बात की, तो अब खुद घर वाले आके यहाँ छोड़ देते लेडीज को, देखते हैं कि खुद लेडीज इतना अच्छा टीम बना के सीख रही है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है मैडम, और लेडीज को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक जगह पे आके इतना अच्छा सीख रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए मैम, आप उनके साथ भी बात कर लीजिए, देखो बहुत सारे
0: हेलो मैम,
3: स्टूडेंट्स हैं।
0: हेलो हेलो एवरीबॉडी, आपको कैसा?
4: वही हम बता रहे कि हमें इधर रीड इंडिया में आके बहुत अच्छा लगता है। रीड इंडिया, रीड मीन्स पढ़ना सीखना। यहाँ पे आके हम जो पढ़ते सीखते, मतलब पार्लर हुआ, जो जो इधर है वो सब हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारे घर वाले हमें ना इनक्रीज करते कि लेडीज है, सिर्फ लेडीज है इधर, कि आप जाओ पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, आगे पढ़ो जैसा। और फिर इधर सोना मैडम भी हमें इंक्रीज करते कि ना आप आइए, और लेडीज होंगे, स्टूडेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट है, वो भी इधर आते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में हमें अच्छा लगते हैं। थैंक
0: अच्छा
3: यू।
0: ठीक है, आपको सबको मैं देखती हूँ काफी सारे यंग बच्चे हैं, सो
3: हाँ
0: अगला सेशन अगर हम इंटरव्यू स्किल्स पे रखें या फिर रेज्यूमे राइटिंग पे रखें, अगर जो जो लीडरशिप से लिंक्ड होगा वो तो हम करेंगे ही, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यूथ हियर, तो यूथ के लिए अगर एक सेशन आप चाहेंगे तो हम रख सकते हैं। ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा मुझे ऐसा लगता है, बट आप बता सकते हैं इफ इफ यू नीड हम रेज्यूमे राइटिंग या इंटरव्यू स्किल्स पे एक सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन। ठीक है जी, ऑल राइट। सो सभी अगर किसी को और कुछ इनपुट देना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज करिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन।
1: जी मैम, सुमन
0: हाँ जी सुमन जी,
1: मैम, सबसे पहले आपका थैंक यू, रीड का थैंक यू कि हम लोग इतना कुछ सीखते हैं रीड से, और टीम वर्क में आप लोगों से सीखा है टीम वर्क में कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। और शीतला बलून जैसे भी स्कूल हमारा टीम वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, उसी तरह से सेंटर में भी हम लोग टीम वर्क में ही काम कर रहे हैं। जो टीम है यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे स्वाति जी है, मास्टर जी हैं, और सभी लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं और नए भी आ रहे हैं, टीम वर्क हुआ तभी हम लोग जो लेडीज को रोजगार देने का एक मिशन है इसको हम लोग चला पाए, और इसको हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं इसीलिए। और आज वाले सेशन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू मैम इस चीज के लिए। थैंक यू।
0: थैंक यू, मुझे भी सीखने को मिला क्योंकि मुझे सीमा मैम ने एक बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है, और डेफिनेटली ये जो स्लाइड्स आपके पास पहुंचेंगी ये स्टोरी उसका पार्ट होगी। सो थैंक यू मेरी नॉलेज भी बढ़ाने के लिए, एंड आई होप ऐसे एग्जाम्पल्स और भी आए आगे। सो आप लोग सब सेफ रहेगा, स्पेशली जहाँ बहुत बारिश हो रही है। सीमा मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
5: स्मिता जी, मैं आप सबको शायद पता भी है, मैंने कॉर्पोरेट के साथ भी बहुत साल तक काम किया है, तो एक बहुत ही मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत रिनाउंड कंपनी, उसके सीईओ, उनके साथ मेरी मीटिंग थी रिगार्डिंग माय कैफेटेरिया स्टार्टअप। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग, वो मैं मेरे को इतना अजीब लगा। मैंने बहुत बहुत बार बहुत लोगों से सुना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज लाइक एक दूसरे को क्रश करके ही आप ऊपर जा सकते है ना, टीम वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं होता होगा। वो
0: बिल्कुल
5: इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ से मेरी बात हो रही थी कि स्ट्रेट अवे सेड ऑन माय फेस, ही सेड कि 10 में से आपको आगे बढ़ना है तो 9 को यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, उसके बाद ही आप कमर बन के आ सकती है। मैम बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आपने आपको सरवाइव करना है, तो आप अपने आप को यूनिक रखिए, 9 को हटाइए, तब आप पहले नंबर पे आए। वो मेरे लिए बहुत खराब था सुनना, बिकॉज तो मैंने ऐसा सुना था लेकिन अपने सामने मैंने ये देखा कि वो खुद मुझे कह रहे हैं कि आप अपने आप को सबसे अलग रखिए, सबको पीछे छोड़ के ही आपकी तरक्की है। लेकिन आज मैं रीड इंडिया के साथ काम कर रही हूँ, एंड वी आर टेकिंग सेशंस ऑन लीडरशिप, ऑन टीम वर्क, एंड सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट, सो लकी कि हम लोग टीम वर्क के बारे में सेशंस ले रहे हैं, टीम वर्क में और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने अपने सेंटर्स पे हम टीम बना के काम कर रहे हैं, और एक बिग फैमिली, बिग टीम इंडिया की फैमिली जो कि महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ तक पूरे इंडिया में पहुंची हुई है, उस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रशिंग एनीबडीज हेड, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सीमा मैम, इट इज अ रियल थिंग। ऐसा ऐसा कॉरपोरेट में ऐसा ऐसा हर रोज हर घड़ी होता है कि हम किसी को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे ही हम देखेंगे कि हमें आगे बढ़ना है तो किसी को तो दबाना ही पड़ेगा, किसी को साथ लेके। सिर्फ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ही चाहते हैं कि शायद मतलब माँ बाप ही हैं जो एक एक तरीके से चाहते हैं कि मतलब बच्चे हमसे भी आगे बढ़ जाएं। शायद और कोई इस दुनिया में नहीं चाहेगा कि कोई और मुझसे आगे बढ़ जाए, बट एज ए टीम जब हमें काम करना है, मैम ने मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। वो हमेशा बोलेंगी अच्छा तुम ये भी कर लो, अच्छा वो ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर लो। अब वो करना है नहीं करना है वो मेरे ऊपर है, राइट? सो हमने मैम से सीखा है कि एज ए लीडर किस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं विद आवर टीम। अकेले तो वो शायद मेरे को लगता है यूएन की भी हेड, मतलब यूएन में, यूनाइटेड नेशन में किसी हो सकता है, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सब पार्ट में वो किसी लीडरशिप रोल पे होती है। बट उन्होंने ये अपने ऊपर रखा है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, रीड में काम करना है। अगर वो अकेले निकल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किसी मतलब सबसे आगे ही निकल जाएंगी। बट हम 5 लाख लोगों से जुड़ के हम कहते हैं कि हम आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हुए हैं, 80 लोगों के साथ शायद 10 10 लोग बैठे होंगे तो हम 800 लोग हो गए। 800 लोगों की भी फैमिली हो गई, तो आप उसको अगर 10 से गुणा करते हैं तो 8,000 लोग हो गए। ऐसे करते करते हम कहते हैं कि रीड सेंटर पे पिछले 17 साल से करीबन 5 लाख लोग आए हैं। अब वो 5 लाख लोग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सीख के गए होंगे, चाहे वो यही सीख के गए होंगे कि किताब खोल के पढ़ना कैसे है, दो शब्द पढ़ के गए होंगे, कुछ सीख के गए होंगे। तो रीड का गोल यही है, और रीड का ये गोल हम इकट्ठे ही उसको अचीव कर सकते हैं, एक साथ ही अचीव कर सकते हैं, अकेले नहीं अचीव कर सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, स्पेशली इन आवर केस। और कहीं बाहर भी जाते हैं आप लोग, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे आगे लाइफ में, आप ये देखेंगे कि हर कोई इसमें बिलीव नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई विन यू लूज एटीट्यूड पे ही काम करते हैं। हमें कैसा होना है ये हमारी चॉइस है। जैसे सीमा मैम ने बोला, शायद वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी, बट वो कंपनी में कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, और वो अगर लीडर कह रहा है कि यू हैव टू विन, तो ही और शी हैज टू विन अगर उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने अंदर कौन सी वैल्यूज लानी है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। तो जो लोग रीड में जुड़े हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि प्लीज आप टीम वर्क में काम करिए, आई विन यू विन, मतलब हो सकता है विन थोड़ी छोटी हो लेकिन सबकी विन हो, इसी में ही हमारा यही हमारा कॉमन गोल। सो थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए 1 घंटे के लिए, एंड लिसनिंग टू मी एंड शेयरिंग सो मेनी नाइस थिंग्स। सो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: यस
0: हाँ जी
2: मैम,
0: हाँ जी
2: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने टीम वर्क के बारे में मुझे बताया, हम लोगों को अच्छा लगा और कि ये नॉलेज बढ़ती है कि हम कैसे टीम वर्क करेंगे, कैसे लोगों के साथ मेंटेन होकर के अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे। बट मैम, एक इन्फ्लुएंस करना होता है, किसी को बताना होता है कि कई बार हम ऐसी जगह पे स्टे करते हैं, रहते हैं, यहाँ पे हमने अपना सेंटर ओपन कर रखा है, कुछ करना चाहते हैं। वहाँ की जो आसपास के लोग हैं ना, वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं। अब वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं तो वो निकल ही नहीं रहे उससे, तो उन्हें कैसे, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करें? मैम ये तो समझ, हम लोग क्या है कि अभी कम एज के हैं, कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती है, अभी जस्ट है, ग्रो है, यूथ है,
0: तो
2: तो इतना
0: इसका,
2: समझ।
0: हाँ इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगी, मेरे पास तो महारथी है इसका जवाब देने के लिए। मेरे पास सीमा जी हैं, फरा है।
2: मैम
0: नहीं नहीं 1 मिनट आप रुकिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट फरा, सीमा जी, मीना, सना, ये
2: जी
0: तो आप कंजर्वेटिव कम्युनिटी की बात कर रहे हैं।
2: मैम,
0: सो
2: कंजर्वेटिव के
0: बिल्कुल बिल्कुल आपको जवाब यहीं पे मिलेगा। सो प्लीज प्लीज बी माय सपोर्ट, मैं इसमें वीक हूँ, मेरी टीम मुझे सपोर्ट करेगी।
5: यस मैम, एक्चुअली मैम आदित्य इज फ्रॉम माय सेंटर ओनली फतेहपुर। तो मैम अभी न्यूली लॉन्च सेंटर है, तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। ये मैंने आदित्य को भी बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज इतनी जल्दी कम्युनिटी बाहर नहीं आती है। वी रियली नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस।
0: राइट। सो फरा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी फतेहपुर सेंटर को? आप बताएं कि कंजर्वेटिव कम्युनिटी में कैसे लोगों को बाहर निकालते हैं।
6: पहले तो मैं थोड़ा सा हिंदी में जानना चाहूंगी क्योंकि इंग्लिश मेरे इतनी जल्दी समझ में नहीं
0: तो
6: आता।
0: वो ये कह रहे हैं फरा कि उनकी कम्युनिटी में लड़कियों, उनकी जो समुदाय है वो इतना खुले दिमाग का नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, बट आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि वो लड़कियों को नहीं निकलने दे रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि सेंटर पे लड़कियां आए या महिलाएं आए या कोई भी आए सेंटर पे सीखने के लिए।
6: जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी इनका नया सेंटर खुला है, और अगर इनका नया सेंटर खुला है तो इतनी जल्दी वो लोग बाहर नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। इनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने एक दो लड़कियां या 5 लड़कियों को भी बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छी वहां पर सेंटर की बातें पहुंची, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां खुद आना शुरू हो जाएगी, इनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ये है कि हम समझा कैसे रहे उन्हें, हम किस तरीके से बता रहे हैं, क्या चीज उन तक पहुंच रही है, कि सिर्फ हम सिखा रहे हैं। 1 मिनट, सॉरी, ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। तो हम वहां पर क्या चीज पहुंचा रहे हैं, पहले हम उनके उनको बताएंगे कि हमारा सेंटर किस लिए खुला है। लाइब्रेरी है, सिलाई है, पार्लर है, कंप्यूटर है, बट खुला है लेकिन लड़कियों के लिए क्यों खुला है, लड़कियां आगे इससे सीख के क्या करेंगी, उनके लिए ये किस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके से वो सक्षम बन सकती है। तो वो थोड़ा सा आप उनको समझाइएगा, और अगर वो आपकी बात नहीं समझे तो दो तीन टीचर्स को लड़कियों को लेके जाइए, उनसे थोड़ा सा बात करवाइए। जब तक आप अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक वहां के लोग नहीं निकल पाएंगे।
0: थैंक यू फरा
2: मैम
5: जी। नमस्ते स्मिता जी।
0: नमस्ते नमस्ते। थोड़े आप हेल्प करेंगे हमारे दोस्त को यहाँ पे, इनका नया सेंटर खुला है।
7: जी मैम। हाँ देखो, सबसे पहले हमने जिस गांव में भी आज सेंटर निकालते हैं, नई कम्युनिटी होती है, तो सबसे पहले लोगों के साथ हमें एक रिश्ता बनाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जैसे हम लोग किसी गांव में जाते हैं और हमारी मीटिंग लेके जाते हैं कि हम रीड इंडिया में ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसके घर पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी किसी का कोई बीमार है या उसके बच्चे को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हम उसकी बात सुने। हो सकता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम हल कर दें। कभी कभी स्कूल में अपनी पहचान होती है कि चलो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हम करवा देते हैं, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले गए, तो एक बार हमने जिस बंदे का काम कर दिया तो वो हमेशा हमारा फ्रेंड बन जाता है। फिर उसको आप कहीं कहीं पे भी बोलो कि तुम इस सेंटर में आ जाओ तो वो तुरंत आने को तैयार है। और उसी गांव में जो हमारे सेंटर से जो लड़कियां सीख के गई हैं, देखो जब 10 लड़कियां दूसरी होती हैं और 5 लड़कियां हमारे जो सेंटर से निकल के जाती हैं, उनमें एक अलग ही चेंज होता है। तो उन्हीं के माध्यम से वहां पे जाके कम्युनिटी में उनकी मीटिंग करवाएं कि देखो ये आपके यहाँ से लड़कियां नहीं थी और इनमें इनसे पूछो कि इन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो शुरुआत में ये चीजें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे कम्युनिटी का एक रिश्ता बन जाता है हम लोगों के साथ, तो वो बहुत हेल्प करता है। जैसे अभी भी हम लोग नए नए और गांव को जोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस कर रहे हैं। 5-7 लड़कियों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, मैं उनको लेके जाते हैं, उनसे बात कराते हैं, तो ऑटोमेटिक 10-10 20-20 रजिस्ट्रेशन डेली होते हैं।
0: थैंक यू मीना
6: अच्छा
0: जी।
6: लगाइए सर कि वहां लड़कियां निकलना क्यों नहीं चाह रही है, क्या वो स्कूल नहीं जाती या फिर वो पेरेंट्स मना कर रहे हैं या वो कुछ कुछ से खुद से कुछ सीखना नहीं चाहती, कैसा माहौल है वहां का, क्योंकि हमने तो नहीं
2: एक्चुअली
6: देखा ना।
2: एक्चुअली मैम, टाउन एरियाज में क्या है कि जब थोड़ा जो पिछले होते हैं ना, जब थोड़ा सा ग्रो करते हैं, तो आजकल आपको पता है ना, सोशल मीडिया जो बहुत बच्चों को टाइम जो है वो खराब करवा रहा है, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो उनका मन ही नहीं करता है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ सीखें, या आते भी हैं तो कुछ नए तरीके से, या फिर लोग जॉब के लिए करते हैं कि हाँ ये ऑप्शन है तो मुझे सिर्फ जॉब सीधे मिल जानी चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आते हैं क्लास में बैठे, कोई कॉलेज भी जा रहा है, पढ़ रहा है, फिर वहां से निकल रहा है, उनको मार्क्स की चिंता भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को उनकी जो बिहेवियर है या जो उनकी आजकल जो टाइम का चल रहा है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, कोई गेम खेल रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, तो ये सारी चीजें लोगों के अंदर बनती जा रही है। एक्चुअली वो कंजर्वेटिव है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर से वो एकदम शांत है क्योंकि वो बच्चों को कुछ कहते ही नहीं है कि यहाँ पे ये सेंटर ओपन हुआ है, यहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट कर लो। तो इसके लिए मैम कोशिश की जा रही है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस करने का क्या और भी रीजन हो सकता है, जब मैंने अच्छे अच्छे सारे उनको चीजें बताई कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, एजुकेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आप बैठ के, ढेर सारी बुक्स हैं आपके पास, कोई भी बुक आप बैठ के पढ़ सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, तो लोग आते हैं, लोग विजिट करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते, भूल जाते हैं, तो ये चीज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन
5: आप एक
2: रखा।
5: चीज कर सकते हैं, आप देखिए कि किस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस वाले एरिया में, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी स्किल्स के लिए आप ज्यादा उनसे बात करेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे हम लोग बिल्कुल एकदम टिपिकल गांव में बैठे हुए हैं जहाँ पे इलिटरेट लोग चलते हैं, तो उनको तो हम ऐसी चीजें सिखाते हैं जैसे स्टिचिंग हो गया या और कोई स्किल्स जो जो अनपढ़ औरतें भी कर सकती हैं उस पे फोकस करते हैं। आपके वहां देखिए कि किस टाइप की स्किल्स पे वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसी के फोटोग्राफ्स आप दिखाइए उनको, अपने सेंटर के फोटोग्राफ दिखाइए और लेडीज को,
2: मैम,
5: लेडीज स्टाफ को लेके जाइए उनके साथ,
6: और
5: दैट विल बी
6: आपकी
5: मोर इम्पोर्टेंट।
6: खेती ज्यादा डेवलप है तो फिर आप एडवांस कोर्स वहाँ स्टार्ट करिए, जैसे कि अगर बच्चे बेसिक कंप्यूटर नहीं सीखना चाह रहे कि बेसिक तो हमें आता ही है, तो थोड़ा टेली सी टेट मतलब ये चीजें स्टार्ट करिए, ट्रिपल सी का कोर्स वगैरह, कि जिससे बच्चों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट आए, वो लगे कि हाँ हमारे लिए सेंटर खुला, ये नहीं कि हमने बेसिक चीजें रख दी है, बेसिक कंप्यूटर सिखा रहे हैं, बेसिक सिलाई सिखा रहे हैं, बेसिक पार्लर सिखा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सिखा सकते, तो बच्चों को लगता है कि ज्यादा जहाँ एरिया डेवलप होता है कि ये चीजें तो हमें बेसिकली घर में आती है, हमारी किस काम आने वाली चीजें, तो थोड़ा
2: एक्चुअली
6: सा
2: मैम,
6: एडवांस भी रखिए।
2: मैंने ये भी बताया कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैंने ये भी कहा कि 10th और 12th तक के बच्चों को मैं एजुकेशन भी दे सकता हूँ, आपके कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ ऐसे आपके अंदर कुछ फीलिंग्स टाइप की प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताइए, शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ट्यूशन के लिए भी कह रहा हूँ, स्पेशली बताने के लिए कि हाँ,
6: हाँ
2: मैं
6: हाँ
2: अलग से,
6: बिल्कुल
0: आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं।
2: ओके थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी हेल्प किया, हम लोग ट्राई करेंगे और बेटर करेंगे। ओके मैम
0: थैंक यू, ये टीम वर्क का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मेरे सामने सामने। सभी लोग चाह रहे थे कि इनका सेंटर जो है वो किसी तरीके से चल चल पड़े, और शायद हम लोग कभी मिले भी नहीं है और शायद हमने अभी आपका सेंटर देखा भी नहीं है, बट एवरीबडी वॉन्टेड कि ये टीम, ये रीड का सेंटर है और ये चल नहीं रहा है। सो कितनी मतलब कितने पैशन के साथ सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आई थिंक इससे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल नहीं हो सकता था टीम वर्क का। आई एम सॉरी मैं आपका नाम नहीं जान पा रही, फतेहपुर से जो है
2: आदित्य श्रीवास्तव।
0: आदित्य आपके ना ये जो सना का सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने, आपका जो सना का ये जो सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख के अभी वो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं अपने सेंटर पे ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और वो बच्चे भी शुरुआत में शायद उतना ध्यान नहीं देते थे और शायद वो इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन आज 5 साल के बाद वो जहाँ पे है, मैंने हमने खुद सुना है उनके मुंह से कि कितना फायदा हुआ है सेंटर को। सना प्लीज हेल्प हिम टू मोबिलाइज, एंड आप कोशिश करिए कि जो आपका जो जो स्टोरीज थी जो जो बच्चे वो पीछे बोल रहे थे हम जब आए थे ज्ञानेश सर के साथ, पीपल गो टू हिज सेंटर एंड वो मोबिलाइज करने में थोड़ा मदद करें ये बताते हुए कि उनको कैसे फायदा हुआ है। शायद किसी को देख के हम सीख जाएं कि हाँ यू नो दिस सेंटर कैन बी एड वैल्यू टू आवर।
8: यस मैम, हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पर।
0: ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू। हाँ जी रितु जी।
9: मैम मैं भी एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैम हमें जब टारगेट मिला था तो हमने नूना माजरा जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है मैम, तो वो लोकेशन हमने ली थी। वहाँ के सरपंच इतने हठी थे कि मतलब वो मान ही नहीं रहे थे कि भाई आप लोग एनजीओ चला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो हमने उनको मतलब अपना पूरा डिटेल दिखाया, ऑनलाइन भी दिखाया उनको सारा, तो वो उनको डाउट्स थे जो उनके वो क्लियर हो गए। पैम्पलेट्स भी हमने दिखाई, फिर हमने सर को कहा कि आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए और आइए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सर आए यहाँ पे, सर ने देखा कि हमें जो एक्स डीजीपी सर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रेडी हो गए। और फिर उन्होंने खुद ही आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके साथ हम लोगों की मीटिंग करवाई, क्योंकि पहले वो हमें गांव में जाने ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा विजिट था वो सरपंच के साथ था कि हम सरपंच से बात करें कि वहां का कैसा माहौल है, हमें कहाँ बिल्डिंग लेनी चाहिए। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि, तो हम भी इतने हताश हो गए थे कि भाई पता नहीं यहाँ पे सेंटर चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन सर के विजिट से, क्योंकि हमने इतना उनको पूरा प्रूफ दिखाया कि हमारे कितने सारे सेंटर्स हैं, सारा उनको डिटेल दिखाया, तो वो एग्री हो गए। फिर अब वो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि पानी की हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमें फ्री जो जो गांव में पंचायत घर होते हैं वो हमें दिलाया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सपोर्ट करवाया उन्होंने और बहुत सारा सपोर्ट करवाया है, क्योंकि जो ये हमारा कम्युनिकेट है वो देख के कि मतलब कम्युनिटी में हम कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिले, बात की उन्होंने, तो मैम ऐसे भी उनके डाउट्स क्लियर होते हैं लोगों के। तो जब हम विजिट करवाते हैं, कम्युनिटी से मिलवाते हैं, तो जो डाउट होते हैं जिस बंदे के वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे आके। तो हमें अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वर्क अगले बंदे को दिखाने पड़ते हैं कि हमारे आगे कैसे सपोर्ट मिल रहे हैं हमें और हम लोग क्या कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि एनजीओ बहुत सारे चल रहे हैं और शायद सभी एनजीओ का अपना अपना कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा। हमारा स्ट्रेंथ जो शुरुआत में बताया था कि हम जो कमिट करते हैं वो कम्युनिटी को डिलीवर करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। सो थैंक यू वंस अगेन, टाइम बहुत हो गया है, लोग छोड़ के मतलब बैठे हैं अपना काम। सो आई विश एवरीबडी सेफ, बहुत कहीं हो रही है। सो कौन बोलना चाह रहा है?
10: नमस्ते मैम, मैं सर के लिए एक थोड़ी सी बात मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एरिया से बिलोंग करती हूँ। वो सर से, सर आप ना टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमको पता है अभी आपका सेंटर नया नया है, और क्योंकि ऐसे एरिया में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो एक दूसरे को कामयाब होते देखते हैं ना, तो उनके उनको देखा देख तो वो खुद को उनके मन में एक एहसास उठता है कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि बहुत से लोग देखा देख भी आते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रीड इंडिया हमेशा बड़ा है और बढ़ता रहेगा, देखना एक दिन बहुत अच्छा से बढ़ेगा।
0: थैंक यू
11: जी
0: फरजाना, थैंक यू. राइट,
10: थैंक यू मैम.
0: ऑल राइट, थैंक यू एवरीबडी, स्टे सेफ, एंजॉय, बाय बाय.
12: Thank you.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: एज ए पार्ट ऑफ द करियर काउंसलिंग में आज के सेशन में हम टीचिंग जॉब से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, तो आज हम सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या चीजें आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एक यू कैन बिकम ए गुड टीचर, तो ये सारे इश्यूज पे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी तक पिछले सेशंस में हमने सिविल सर्विसेज के बारे में, फिर हमने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में किया था डिस्कस, तो आज का जो सारा सेशन है वो टीचिंग जॉब से रिलेटेड है। फिर लास्ट में आपकी जो क्वेरीज होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, वो भी हम इस सेशन में सारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिये सबसे पहली चीज क्या है, देखिये टीचिंग जो है ना वो एक नोबल प्रोफेशन, और ऐसा नहीं कि मतलब आपको अगर अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा टीचर आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास के लिए बन सकते हैं। चाहिए क्या कि आपके अंदर हो, जोश हो पढ़ाने का, यू मस्ट हैव पैशन फॉर द टीचिंग, टैलेंट, नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो ये अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और विद द पैसेज ऑफ कि आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो हमारा जो मेजर पॉइंट है कि जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। सीटेट है, एसटेट है, रीट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, डीएसएसबी, केवीएस, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्मी स्कूल्स, तो मतलब इस तरह की सारी टर्म्स जो है वो जब भी कोई पर्सन एक गवर्नमेंट टीचिंग के टुवार्ड्स प्लानिंग करता है तो इस सारी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए। उससे क्या रहता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप उसी तरीके से अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में जाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशंस भी है, कुछ आपको टेस्ट भी क्वालिफाई करने रहते हैं, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप यू कैन प्लान अर्ली, जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही फिर आप एक अपने राइट ट्रैक पे जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में आपको मैं इन सब टर्म्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, किस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये सारा आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा। सबसे पहली चीज क्या है बेटे कि हाँ अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो जस्ट एक मैंने एक वो दिया है, परव्यू दिया है, अभी हम आगे एक एक फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब आप टीचर की बात करते हैं तो ये कुछ जनरल सी वैकेंसीज होती है हमारे पास में, या तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, उसके लिए तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो आपकी, आपने बीएड किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको गवर्नमेंट में टीचर बनना है तो उसमें ये अलग अलग आपके लेवल्स होते हैं। सबसे जो एलिमेंट्री लेवल होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, प्राइमरी टीचर जिसे हम कहते हैं, फिर आपके 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के टीचर होते हैं। ठीक है, कॉलेज कैडर में भी टीचर रहते हैं, फिर आपके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सारी वैकेंसी आती है, तो ये एक स्किल होता है। तो मतलब स्टार्टिंग से प्राइमरी टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का, और इसमें एंट्री के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। तो आज अब हम समझेंगे कि करके कि सबसे एलिमेंट्री पर क्या क्वालिफिकेशन होती है और कैसे आप टीचर बनते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूंगा यहाँ पर सी टेट और एस टेट के बारे में, जो स्कूल लेवल टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं हमारे, जो सीटेट होता है इसमें आपके क्लास वन से लेकर एट क्लास तक के टीचर आप बनते हैं, और उसके बाद में जो पीजीटी की वैकेंसीज होती है वो स्टेट वाइज आती है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये क्लियर हो कि प्राइमरी टीचर होता है फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के जो क्लासेज है उनको जो टीचर टीच करता है उसे हम प्राइमरी स्कूल टीचर भी कहते हैं, पीआरटी भी कह देते हैं, एलिमेंट्री टीचर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है सिक्स क्लास से लेकर एट क्लास तक, तो सिक्स क्लास से लेकर एट क्लास तक जो टीचर होते हैं वो टीजीटी टीचर उन्हें बोला जाता है, और ऐसे ही जो नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक होते हैं उन्हें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं। तो नाइन्थ से ट्वेल्थ तक आपके पीजीटी टीचर्स कहा जाता है, सिक्स टू एट में टीजीटी, और क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक प्राइमरी टीचर होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे आज अभी हम डिस्कस करेंगे सी टेट के बारे में। क्लास वन से लेकर क्लास एट तक अगर आपको टीचर बनना है, मतलब प्राइमरी टीचर बनना है या टीजीटी टीचर अगर आपने बनना है, तो उसके लिए आपके लिए सी टेट क्वालिफाई करना मस्ट है। मतलब दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी जहां भी वैकेंसीज निकलती हैं, या आपकी केवीएस में निकलती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, या आर्मी स्कूल्स के अंदर, जवाहर नवोदय के अंदर, जहां भी वैकेंसीज निकलती है, तो सीटेट आपके लिए एक असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। अब हम सबसे पहले ये समझें कि सीटेट की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सीटेट जो है वो साल में दो बार कंडक्ट होता है। अभी इस साल कोविड 19 के कारण अभी एग्जाम अभी था सितंबर के मंथ में, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बट जनरली सी टेट का जो एग्जामिनेशन है साल में दो बार आपका होता है, ठीक है, और क्लास वन से लेकर क्लास एट तक के लिए, तो मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, उसके साथ साथ टीजीटी टीचर के लिए, दोनों के लिए सी टेट का एग्जाम होता है। इसमें दो पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट इज पेपर वन, सेकेंड इज पेपर टू। पेपर वन जो आपका होता है वो होता है क्लास वन से फाइव के लिए, और पेपर टू होता है सिक्स टू एट के लिए। इसका मतलब अगर आप क्लास वन से लेकर क्लास एट तक कोई भी क्लास के लिए टीच करना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे पेपर वन और पेपर ऑलमोस्ट मैंने अनम्यूट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या है, पेपर वन और पेपर टू अपीयर करते हैं। दोनों की क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं। जैसे आपको क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो ट्वेल्थ में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास में कैंडिडेट शुड क्लियर ग्रेजुएशन विद 45% और ट्वेल्थ विद 50%। सी टेट के लिए जैसे एक तो जो आपका एलिमेंट्री टीचर्स के लिए है तो ट्वेल्थ में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। जेबीटी या आपने एनटीटी का कोई भी ट्रेनिंग किया हुआ है वो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनेशन होता है, जैसे पेपर वन जो है, पेपर वन मतलब एलिमेंट्री क्लासेज के लिए क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए, तो उसमें आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज वन एंड टू, ये दो लैंग्वेजेस में आपको देना है, मतलब टू लैंग्वेजेस आपकी होती है, जनरली हम इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये मतलब फाइव सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। 30-30 मार्क्स के फाइव सब्जेक्ट आते हैं। 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो पेपर वन होता है, जिसके थ्रू अगर आप पेपर वन क्वालिफाई करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर जिसको हम क्लास वन से क्लास फाइव तक की जो टीचिंग है वो आप हर गवर्नमेंट जॉब में एंटाइटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कई बार दिल्ली में काफी वैकेंसीज आती है, जब भी आती है, या आजकल तो अगर एज ए गेस्ट टीचर भी लगाना है वहां भी आपको सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले पेपर वन जो देना है वो आपका ये रहता है 1-5 के लिए, और सिमिलरली पेपर टू होता है, पेपर टू स्कीम है, उसमें क्या है कि बाकी सब चीजें सेम है, जैसे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सेम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज भी आपको टू लैंग्वेजेस आपको लेनी होती है, इंग्लिश और हिंदी, उसके साथ साथ फिर आपको या तो मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है या आपका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप जैसे मैथ्स के टीचर रहेंगे या साइंस के टीचर रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना रहता है, और 60 मार्क्स का आपका पेपर रहता है वो, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि सीटेट आपने क्वालिफाई करना है। और अब मैं आपको बताऊं भी कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इतने डेप्थ नहीं होते, मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, या इसके साथ साथ आप जो मैथमेटिक्स साइंस या एसएस पढ़ते हैं तो वो 8th स्टैंडर्ड तक का आपको क्लियर होना चाहिए। और उसमें भी बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को अपना फॉलो करिए, और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक का एनसीईआरटी, अपने मैथमेटिक्स का, साइंस का और एसएस का आप उसको स्टडी करिए। उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप बीएड के लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स आती हैं, तो कोई एक अच्छी सी बुक आप परचेज कर सकते हैं। मार्केट में भी एक नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल जिसमें अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी की, तो आप उन बुक्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं सीटेट के, क्योंकि हर साल में दो बार होता है और पेपर पेंसिल बेस्ड होता है तो उसके पेपर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर सो कर लेंगे, एक वहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका सीटेट के बारे में है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट के अंदर। हाँ, आप चाइल्ड देखिए उसमें क्या है कि अरिहंत पब्लिकेशन बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रतियोगिता किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, या बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बुक्स होती है। अगर आप मतलब अगर आपने जेबीटी किया है, बीएड आपने किया है, तो बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स होती है, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सीटेट में देखा गया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, ये जो ध्रोवर की बुक है, प्रतियोगिता ध्रोवर है, ये एक तरह का पब्लिकेशन है, तो इनकी भी अच्छी बुक्स है, ठीक है। बट उसमें वही सेम चीज है जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया, तो पहले एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करिए, एक बुक को जब आप देखते हैं उसके बाद फिर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन है, और जो बुक आप पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं क्या उस बुक में उस लेवल के क्वेश्चंस कवर्ड है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। मैं आपको बीएड की जो बुक्स आती है उसमें नेम ऑथर आपको मैं कंफर्म करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सीटेट के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आपका, तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना सीटेट का प्रिपरेशन करिए। हाँ, ये एक चीज मैं फिर ऐड कर रहा हूं यहाँ पर दोबारा से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि साल में दो बार होता है और सारे पेपर्स अवेलेबल है, तो आप अगर 5-7 पेपर्स उनको अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो सारे स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसमें कोई चेंज होने का नहीं है, कोई आपका जो करंट का क्वेश्चन तो आता नहीं उसमें, तो सारे हैं जो आपके फिक्स ही हैं। तो पिछले कुछ सालों के पेपर जब आप चेक करते हैं तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है आपके लिए, अगर आपको प्राइमरी या टीजीटी टीचर में जाना है तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट के एग्जाम की मतलब दे ऑल्सो आस्क फॉर क्वालिफिकेशन इन सीटेट, तो मतलब ये आपको पहला स्टेप आता है। अभी आता हूं बेटा एनटीटी के बारे में भी आता हूं। अब इसके बाद सेकंड होता है हमारा जेबीटी, मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जेबीटी कह लीजिए या आपका एनटीटी का प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, या इसके अलावा
2: आपका डीएलईडी होता है, ठीक है, जो बेसिकली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या रहता है कि ट्वेल्थ के बाद आप जेबीटी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री जो टीचर है, जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए या तो आपने जेबीटी किया हो, जिसको हम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग है ये ट्वेल्थ के बाद होती है, ये एक तरह का डिप्लोमा होता है 2 इयर्स का, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें स्टेट वाइज कॉलेजेस हैं, बाकी फॉर्म्स निकलते हैं जब आप ट्वेल्थ के एग्जाम देते हैं उसके बाद में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ट्वेल्थ में 45% की है, राइट। ये एक तरह से जो डीएलडी होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्वल होता है, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। ऐसी एंटिटी का आपका होता है, उसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमा रहता है एंटिटी का, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको जहां से भी आप ये जेबीटी करें, चाहे आप अपना डीएलडी करें, चाहे आप एंटिटी करें, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कई बार मार्केट में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो फिर बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो आज से 4-5 साल पहले, व्हाट हैपेंड, आज से 4-5 साल पहले जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ था, ठीक है। तो जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ तो बहुत लोगों ने जम्मू से जेबीटी किया, ठीक है, और बाद में फिर पता चला कि वो तो आपका वैलिड नहीं है। तो ये इस तरह से कई बार प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम ऐसा अपना कोर्स डिप्लोमा कर लेते हैं और जो बाद में वैलिड नहीं होता, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है इसमें कि आप जहां से भी करिए वो आपका वैलिड होना चाहिए। तो जेबीटी है चाहे आपका एंटिटी है, ये आपको एक टाइप से मतलब एक टाइप से एलिमेंट्री जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये मस्ट होती है ये क्वालिफिकेशन आप। अब इसमें स्टैंडर्ड मतलब क्या पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसी है, देखिए कैसे वैकेंसीज आती हैं और कैसे आप उनमें अप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट का अपना पैटर्न है, जैसे मैं पहले हरियाणा की आपको बताऊं, हरियाणा में क्या है कि एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है। वैसे तो जो सी टेट है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, बट हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में एज ए टीचर लगाने के लिए एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो जो टीईटी का मतलब यही होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब हरियाणा में क्या है कि 3 स्टेजेस में वैकेंसीज आती हैं, मतलब उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं, आपके टीजीटी की वैकेंसी आती है जिसको हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और ऐसे ही आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए है, जो टीजीटी टीचर होते हैं वो क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 8 से अबव। अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग है, जैसे जो पीजीटी आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है उसमें आपकी 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ साथ आपने जेबीटी किया हो, एंटिटी का कोर्स किया हो, या आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, ठीक है, तो उसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए एंटाइटल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना है, जिसको हम टीजीटी कहते हैं, तो टीजीटी के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ बीएड करनी है। अब देखिए बीएड क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिएगा अगर आपको प्राइमरी टीचर से ऊपर किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो टीजीटी है और चाहे वो पीजीटी है, तो दोनों के लिए बीएड होना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या होता है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए तो 12th इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में आपने जेबीटी एनटीटी कुछ भी किया हो। अगर आपने टीजीटी टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी है, और उसके बाद अगर आपने पीजीटी के लिए जाना है तो मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एचटेट की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए जनरली बच्चों को टीचिंग के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि बेटे आप पहले अपनी ग्रेजुएशन करिए सबसे पहले, तो क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन होने के बाद आप बीएड करो, ठीक है। नहीं इसमें केवल आर्ट से या साइंस नहीं, इसमें आप बेटे किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी

इसके साथ साथ मास्टर्स में भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका जो एस्टेट क्वालिफाइड है वो भी मैथमेटिक्स में ही क्वालिफाइड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज्यादा रहती है, अदरवाइज हम जो टीजीटी है या जो आपके प्राइमरी टीचर्स हैं उसमें कॉमन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब इन सब का अलग अलग एग्जाम है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप बाकी सबके लिए भी एग्जाम अपियर कर सकते हैं। हरियाणा में जो एस्टेट 2020 की जो एज आई है 18 से लेकर 38 इयर्स तक है, बट कुछ कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न रहता है, एक बार मैं एस्टेट का आपको पैटर्न बताऊं। एस्टेट का तीनों लेवल के जो पेपर होते हैं, पेपर वन है चाहे पेपर टू है चाहे पेपर थ्री है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 2.5 आवर के अंदर आपने करने होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और तीन अलग अलग पेपर हैं, अगर आपको प्राइमरी का देना है तो आप पेपर वन देंगे, ऐसे ही अगर आपको टीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर टू देंगे, और अगर आपको पीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर थ्री देंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही सेक्शनल कट ऑफ होता है, जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम जो सब्जेक्ट का पैटर्न है, कि हरियाणा में अब पीछे इन्होंने सब्जेक्ट्स में चेंज किया था, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो सीटेट में है उसमें ये चीज नहीं आती, आपने देखा होगा अभी मैंने पीछे आपको सीटेट का पैटर्न बताया जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, वहां दो लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब हरियाणा में क्या पैटर्न है, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक तरह के बहुत ही जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में सभी टॉपिक से आपके जो कवर हो जाते हैं जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक आते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ऐसे जो मैथमेटिक्स होता है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जैसे एक जनरल आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अब बेसिक अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का, फिर हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस हैं, फिर आपका मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का, एनवायरमेंटल स्टडी जिसको हम ईवीएस कह देते हैं। तो ये हमारा पेपर वन है एलिमेंट्री टीचर के लिए हरियाणा के अंदर। इसके साथ साथ आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर टू अपियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर टू किस टाइप का है, क्या पैटर्न है पेपर टू के अंदर, तो इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स के हैं, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश यहाँ तक कॉमन है, फिर आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एसएस, साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आप वैकेंसीज जो निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आपने जैसे आपको साइंस में जाना है या अगर आपको मैथमेटिक्स में जाना है तो उसी सब्जेक्ट का पेपर आप उसमें अपियर करते हैं, ठीक है। तो एस्टेट का जो पेपर जनरली होता है, आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो 5 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आपको देना है, ऐसे ही आपका सीटेट का पेपर है कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो कुछ सालों तक वो पेपर आपका चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। अब हरियाणा में वैकेंसीज का पैटर्न कैसे होता है कि पहले तो आपका एस्टेट का पेपर होता है, एस्टेट का पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, फिर वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनकी फिर फाइनल जाके ज्वाइनिंग होती है। हाँ, ये हरियाणा में 5 साल का ना बेटे एस्टेट जो है, ये अभी शायद कुछ चेंज करने की इसमें बात चल रही है 7 साल के लिए, क्योंकि पीछे जो एस्टेट सीटेट एस्टेट हुआ था उसके बाद में फिर वो तब उसके बाद की वैकेंसी ही नहीं आई बहुत सालों से, तो ये कुछ उसमें चल रहा है अभी इसको 7 साल के लिए कर दें तो ये पीछे दैट वाज इनटू द न्यूज आल्सो, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे राजस्थान है वहां पे रीट का पेपर होता है, जैसे हरियाणा में आपका एस्टेट का पेपर है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होता है, तो वो भी बेसिकली इसीलिए है। जैसे आपकी वैकेंसी अभी जैसे पीछे इट वाज इनटू द न्यूज़,

0: दिल्ली 2020 में अराउंड, हाँ यूपी का भी होता है बेटे, यूपी का टेट होता है, तो उसमें हर स्टेट अपना पेपर कंडक्ट कराता है, बट मोर और लेस जो इनके सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सभी स्टेट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट आता है, सभी स्टेट्स में आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है, उसके साथ साथ फिर आपका सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स एज ए ऑप्शनल, जैसे भी आपने जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे रिसेंट में राजस्थान में री 2020 का, हाँ मतलब अप्लाई आप कर सकते हो बेटे, क्या होता है ना, देखिए क्या, जैसे हरियाणा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई यूपी का बच्चा उसे एस्टेट देना तो वो यहाँ भी अपीयर कर सकता है, क्योंकि जो टीचिंग जॉब में कोई ये तो फिक्स नहीं होता कि हरियाणा का ही होना चाहिए, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह के उनके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब वैकेंसी से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, इसमें बेटे जो आपका जीके का पैटर्न होता है, बस वही थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें जैसे हरियाणा में क्या है कि आपका अभी पहले उसमें जीके का सेक्शन नहीं आया करता था, तो लास्ट ईयर से उसमें जैसे 30 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के, 10 मार्क्स रीजनिंग के और 10 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के उसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो जो 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं उसमें फिर वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही और स्टेट्स में भी ऐसे ही होता है कि जैसे आप हम रीट की बात करें तो रीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है, जैसे उसमें भी रीट में भी 2 लेवल के पेपर्स रहते हैं, लेवल 1 है और लेवल 2 है। तो लेवल 1 जो है वो आपका एलिमेंट्री टीचर के लिए है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज रहता है। नहीं एक्चुअली देखिए क्या है बेटे कि प्राइमली ये जो टीचिंग के टेस्ट है ना, देखो ज्यादातर मैं आपको वैसे पर्सनल ओपिनियन दूं, इसमें हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में टीचर्स की जो सैलरीज है, ठीक है, या अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट टीचर्स की जो वैकेंसीज है वो कंपैरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले में ज्यादा आती है। महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसीज काफी कम आती है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादा टीचर लगाए जाते हैं, तो वो अपना इस तरह का उनका भी एग्जाम होता है, वैसे होता है, मतलब वो भी अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है उसी के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके बेसिस पे वो करते हैं। पर एज ए जनरल नॉर्थ इंडिया में टीचर्स की सैलरी ज्यादा है एज कंपेयर टू द महाराष्ट्र और व्हेन यू गो इनटू द साउथ, तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में बहुत बच्चे ऐसे हैं बेटे जो एक टाइप से टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये रीट का ये पेपर 1 है, ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है, हाँ ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है जिसमें आपका अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे हरियाणा में है, चाहे आपका राजस्थान में है, चाहे यूपी में है, कि ये रेगुलर अफेयर है, हर साल 2 साल के बाद में कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है, कोई ना कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे टीचिंग जॉब्स के लिए काफी बच्चे जाते हैं। तो स्कूल लेवल में टीचर बनने के लिए आप 2-3 चीजें बेटे आप अपना ध्यान रख लीजिए, ये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दूं। एक तो आप बेटे ये लेवल्स इनको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपको प्राइमरी टीचर्स में जाना है तो 12th के बाद आप कुछ ना कुछ अपना JBT करिए, चाहे आप बेटे NTT का कोर्स करिए, ठीक है, चाहे आप DLD करिए, ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ आपने, चाहे आप डीएड करो। रीट में क्या है कि नहीं, इसमें रीट में यहां पर आपका लेवल 3 की वैकेंसी नहीं है, जैसे लेवल 2 में तो वो साइंस और SST में चॉइस नहीं देके कुछ क्वेश्चन साइंस के होते हैं, मतलब उसमें एक तरह से जो कॉम्बिनेशन मेक किया हुआ है साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कुछ क्वेश्चन साइंस के कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, SST का भी कॉम्बिनेशन एड कर दिया उसमें। पर मैं एक जनरल अपना वो बताऊं आपको बेटे कि अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी लेवल के लिए, तो टीजीटी लेवल में तो आप ये मान के चलो बेटे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट्स में ही आप अपनी कमांड लेके चलिए, क्योंकि पीजीटी में फिर भी कुछ स्पेसिफिक आपका वो हो जाता है कि आप मैथ्स के टीचर हैं या साइंस के आप टीचर हैं, पर जनरली टीजीटी में ये देखा गया है कि सेम टीचर जो है वही मैथ्स भी ले रहा है, साइंस भी ले रहा है, एसएसटी भी ले रहा है। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर स्टार्टिंग से अपना परव्यू ऐसा लेके चलिए कि तीनों, क्योंकि देखिए आपको ओनली 8th क्लास तक का मैथ्स करना है, 8th क्लास तक की आपको साइंस करनी है, 8th क्लास तक का आपको एसएसटी पढ़ना है, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप कमांड लेके चलेंगे तो आगे फिर आपको हर तरह का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। तो मेन थिंग आपने अब ये ध्यान रखना है बेटे कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो 12th करने के बाद से ही अपना जेबीटी कर लीजिए, एनटीटी कर लीजिए, कोई भी एक आधा कोर्स करिए, डिप्लोमा करिए टीचिंग के अंदर, और फिर आप प्राइमरी के लिए एंटाइटल है और सीटेट का पेपर क्वालिफाई करिए। सिमिलरली अगर आप अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड करिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, आजकल की बीएड भी आपकी 2 years की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको 2 साल बीएड में स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो 5 साल 12th के बाद कम से कम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएड में कुछ चेंज किया गया है, अब देखो जब अप्लाई होगा तभी वो चीजें क्लियर हो पाएंगी, बट अभी जो एट प्रेजेंट जो पैटर्न यही है कि आपको 12th के बाद कम से कम 5 years लगाने पड़ेंगे, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 year का बीएड, और वही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको मास्टर डिग्री भी करनी है, तो कम से कम 7 years 12th के बाद आपको स्टडी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करिए जो अलग अलग होते हैं और फिर आप कहीं जाके अप्लाई कर पाएंगे। रीट की बेटे आपकी राजस्थान में लोकल लेवल की काफी किताबें आती हैं, मतलब जैसे आप राजस्थान में किसी भी जहां भी आप स्टे करते हैं कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो एक तरह से जो पब्लिकेशन नहीं है, बट कई सारी जो बुक्स अवेलेबल है उपकार पब्लिकेशन की भी आती है रीट की, या आपके लोकल में भी कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो काफी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी अपने स्टडी मटेरियल भी आते हैं, तो ऐसे तो क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता तो मुझे वहां की बुक्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। अब जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में तो अरियंत पब्लिकेशन की बुक चलती है, ठीक है, या यहाँ पर विद्यापीठ टाइम्स है और भी कई सारे लोकल पब्लिकेशंस हैं जिनकी काफी बुक्स आती हैं। तो अब सेकंड पॉइंट क्या बेटे कि ये जो वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकलती है, टीचर की वैकेंसीज कहाँ कहाँ आती है, एक तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, जैसे नहीं महाराष्ट्र में इस तरह का एग्जाम नहीं है बेटे, महाराष्ट्र में क्या है कि वो एक तो आपका जो सीटेट का एग्जाम एक तो लेते हैं मतलब प्राइमरी टीचर के लिए या आपका जो टीजीटी के लिए, ठीक है, हम मेडिकल तो वो तो बेटे बाद की स्टेज है ना, वो तो क्या होता है कि वो तो जैसे पहले आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया जो भी आपने एसटेट सीटेट या रीट जो भी आपने दिया, उसके बाद फिर वैकेंसीज आती है, स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, जैसे हरियाणा अपनी वैकेंसी अलग निकालता है, यूपी की वैकेंसीज आती है, राजस्थान में वैकेंसीज आती है, दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसीज आती है, ठीक है, तो उसमें भी कई बार काफी टीचर्स की जॉब्स आती है। आपका केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय है, तो केवीएस में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तो केवीएस की भी काफी वैकेंसीज आती है, हर साल एक तरह का फिक्स पैटर्न है, ठीक है, तो ऐसी आर्मी स्कूल्स है इंडिया में, नंबर ऑफ आर्मी स्कूल्स आर देयर, आर्मी स्कूल्स भी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं टीचर की, इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय है इनकी भी वैकेंसीज आती है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी सीटेट होती है, तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, अब टेस्ट कंडक्ट होता है उसमें फिर जैसे जैसे आपका स्कोर आता है फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ये एक सारी चीजें इस तरह का रहता है। हाँ एक्चुअली क्या है कि देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बट कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आपको सीटेट मांगते हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या पैटर्न हो गया, अब कि आपको अगर टीचर बनना है, अगर चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, चाहे आप एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब पे है, तो उसमें सीटेट तो आपसे मांगेंगे मांगेंगे। तो मतलब आपके लिए ये पहली चीज है कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सीटेट मस्ट बी क्वालिफाइड, क्योंकि तभी आप फिर कहीं एंटाइटल हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सीटेट का पेपर तो आपका पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो स्कूल लेवल में इस तरह से अलग अलग एरियाज में वैकेंसीज आपकी आती हैं, ठीक है। तो बाकी फिर भी ये है कि देखिए, अगर आप मेहनती हैं, आप पढ़ने वाले हैं, टाइम तो लगता है, क्योंकि अभी पिछले, जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 3-4 साल पहले हरियाणा में हजारों में वैकेंसीज आई थी। मतलब हालात ये थी कि जिस पर्सन की क्वालिफिकेशन पूरी है, अगर उसने अपना एमए एमएससी जो भी किया हुआ है और उसने एसटेट का पेपर क्वालिफाइड है, तो वो जॉब पे लग गया था। फिर उसके बाद में वैकेंसी आनी कम हो गई, पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी काफी कम है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि जो टीचिंग की वैकेंसीज है, अगर आपकी स्पेयर होती है तो उसके बाद वैकेंसीज निकालनी पड़ती है। चाहे स्टेट, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, आज ही चेक कर रहा था कि राजस्थान में री 2020 के अंदर 30,000 की अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज आएंगी। तो 30,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है। अब 30,000 वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की है, तो अगर क्वालिफिकेशन पूरी है, हमने मेहनत कर रखी है, तो उनको कहीं ना कहीं हम अपना वे आउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा होता है, जनरली क्या होता है कि देखिए, आप अपना अपने क्वालिफिकेशन पूरा किया, अपना आपने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल में टीच करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस एड ऑन होता जाता है, और जब भी आपकी एक टाइम से गवर्नमेंट सेक्टर में जब वैकेंसीज निकलती है, तो आप वहां अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी सेटलमेंट हो जाती है, जॉब कहीं ना कहीं आपको लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्कूल लेवल की टीचिंग जॉब होती है, ये सारी टाइप की आपकी वैकेंसीज है। हर साल फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सीटेट का है वो तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एसटेट भी ऑलमोस्ट साल में 1 बार तो कंडक्ट होता ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रीट की, मतलब अगर आप राजस्थान की बात करें, तो साल 1.5 साल में 1 बार एग्जाम जरूर होता है, यूपी टेट का भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, तो वहां तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक रेगुलर उस पर होते ही है। डीएसएस की वैकेंसी आती रहती है, मतलब हर साल 2 साल में वैकेंसी आती है। केवीएस की ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी आती है, आर्मी स्कूल्स की है, चाहे जवाहर नवोदय की है, तो ये वैकेंसी तो रेगुलर बेसिस पे आती है। तो अगर हमारी क्वालिफिकेशन पूरी है, और इनमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई ऐसा एसच वो नहीं कि हम ये कहें कि पेपर आउट हो गया, सिफारिश चल गई, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने अचीव करना है, और उसके बाद आपका टेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते रहते हैं। मार्क्स की वेटेज रहती है, आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं। देखिए, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पढ़ने में हम अच्छे हो, तभी आगे हम एक वी कैन बिकम ए गुड टीचर। तो ये तो सारा मैंने आपको स्कूल, वही फिर हम पास में ऐसा नहीं कि हम स्कूल लेवल पे, हम कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं एज ए टीचर। तो कॉलेज लेवल में जैसे हरियाणा में है या और स्टेट्स में है, तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज होती है, मतलब जो कॉलेज जो कैडर की वैकेंसीज आती है, जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स कहते हैं। और ऐसे ही जो यूनिवर्सिटीज है, उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती है। तो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के टीचिंग में एंट्री में थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? आप जैसे मैंने आपको बताया, अभी स्कूल लेवल में अगर आपने टीजीटी या पीजीटी में आपने जाना है, तो आपको बीएड करना मस्ट है। वही कॉलेज के लिए आपको बीएड करने की नीड नहीं है, आपने सिंपल मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मास्टर डिग्री कर लिया, मास्टर डिग्री के जब आप फाइनल ईयर में होते हैं मास्टर डिग्री के, तो आपको फिर नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। जो प्राइमरी आपका नेट का एग्जाम होता है, एनटीए कंडक्ट करा रहा है, पहले यूजीसी कराता था, उसके बाद सर कुछ साल सीबीएसई बोर्ड में कंडक्ट कराया, तो नाउ दिस नेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जो नेट का एग्जाम है वो हमारे लिए मस्ट है, ठीक है, उसमें भी दो तरह के आपके नेट होते हैं। एक तो जो नेट के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ये तो आपका एनटीए कंडक्ट कराता है। और साइंस से रिलेटेड जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो सीएसआईआर कंडक्ट कराता है। तो इस तरह से दो आपके नेट के एग्जाम्स होते हैं। तो जिस भी स्ट्रीम के आप है, जिस भी स्ट्रीम में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, उसी स्ट्रीम का आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। जो नेट में भी आपका एक जेआरएफ होता है, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। जैसे आपने मास्टर डिग्री करने के बाद नेट का पेपर दिया, उसी नेट के एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, 55% है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स की एज होती है। जेआरएफ का मतलब क्या है कि जूनियर जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है, अराउंड 25,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि उसी नेट एग्जाम में कुछ टॉप के स्टूडेंट लिए जाते हैं, उनको जेआरएफ लगता है, और फिर वो जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी टाइम में उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। अब नेट का पेपर जो है, एनटीए का जो नेट का पेपर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी या कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम एनटीए पेपर वन कहते हैं। और सेकंड होता है एनटीए पेपर टू, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई करना है उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं पैटर्न बताऊं आपको, जो एनटीए का पैटर्न है, जैसे पेपर वन है, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं। पहले पैटर्न अलग था, पिछले कुछ टाइम से पैटर्न चेंज हुआ है। तो पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे सपोज आपने आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो आप नेट इकोनॉमिक्स में पास करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर 100 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जो इकोनॉमिक्स के होंगे। आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 ओवर का आपका पेपर होता है, जिसमें कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक आपका स्कीम होती है जो एनटीए नेट का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर कॉलेज वाइज वैकेंसीज निकलती है, जैसे प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर वो अपना अलग से पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसमें जिस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई हैं, आपने उसी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है। और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज वर्क करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, दैट इज द नेट, कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप वहां पर जॉब के लिए एंटाइटल है। वैकेंसीज निकलती है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे कॉलेजेस में जाने के लिए, कि नेट का पेपर आपको उसी सब्जेक्ट में जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टीचर बन सकते हैं। मतलब स्कूल लेवल में थोड़ा ये डिफरेंस है कि वैकेंसी ज्यादा आती है। अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो कॉलेज लेवल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी एडवांटेज क्या है कि अगर आप किसी भी लेवल पे एंटर करना चाहो, अगर स्टार्टिंग में सपोज आपने क्वालिफिकेशंस पूरी हैं बट हमें जॉब नहीं मिलता, बट इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है। आप देखेंगे, चाहे आप बेटे किसी भी लेवल पे देखिए, चाहे आपके ग्रेजुएशन के अंदर है, चाहे मास्टर डिग्री के अंदर है, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज में है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, तो काफी ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो फिर क्या रहता है कि आप अपनी कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आप अप्लाई करते रहिए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर क्वालिफिकेशंस पूरी है तो हाँ, अब सपोज आपने बीएड नहीं कर रखा, अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ तो फिर दिक्कत है। तो क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना सबसे पहला काम है, और एक बार आपकी क्वालिफिकेशंस पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट पास करिए। तो आज नहीं, कल कल नहीं परसों, विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स लगती हैं, वैकेंसीज काफी ज्यादा आती हैं टीचिंग में, काफी वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें जॉब लगने का स्कोप रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये हमारे सारे एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, राइट। तो ये बेटे दैट इज फ्रॉम माई साइड। अब आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी टाइप से रिलेटेड, तो अब मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा। मैंने अपनी ओर से एक बार आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस टाइप के एग्जाम्स हैं, किस किस टाइप की जॉब्स हैं, क्या रहता है इसके अंदर। हाँ, सैलरीज काफी अच्छी है, मतलब अगर हम आज के टाइम में गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे आप एलिमेंट्री टीचर भी हैं, और उसके बाद में एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स आर देयर, तो आपकी सैलरी मतलब 15 से 20 साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए टीचर रहते हैं तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी कम से कम रहती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60-70,000 प्लस रहती है। तो सैलरीज अच्छी है, वर्कलोड कम है इंडिया में, ज्यादा पढ़ाने का इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता है, बस एक बार एंटर करना इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए, उसके लिए आपको रेगुलर एफर्ट करना रहता है। तो अब आप कुछ भी पूछना चाहें तो हम आंसर करेंगे एक एक करके।
1: दिनेश जी, एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये सभी के लिए शायद कॉमन होगा, ये शायद इन लोग के पास भी कुछ उनको आइडिया हो जाए। ये सीटीटी के बारे में जो आपने बताया है, जो ऑलरेडी आप प्राइमरी टीचर के लिए जो आप जो है 1 से 10th क्लास तक के आप जो अप्लाई करेंगे, उसको करने के बाद बहुत सारे होते हैं जो जो गवर्नमेंट का जो निकलता है स्कूल वाइज या फिर सेंट्रल स्कूल का या अदरवाइज लेकर के प्राइवेट स्कूल वाले भी आजकल एंट्रेंस, इससे कोई एंट्रेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी लोग पैटर्न भी स्टेट वाइज अपना रखते हैं कि चलो भाई
0: प्राइवेट स्कूल्स जो है वो कई बार एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर मांग लेते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो कई बार या आपसे बीएड मांग लेते हैं कि बीएड होना चाहिए आपका, अदरवाइज तो प्राइवेट स्कूल का तो सिंपल सा पैटर्न है कि वो तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, उसमें तो वो तो उनके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको टीचर चाहिए होता है, तो उनका पैटर्न अलग है, ऐसे कोई हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर टेस्ट आपको अपीयर करना है फॉर द प्राइवेट स्कूल टीचर, उसके लिए ऐसे कुछ क्वालिफिकेशंस भी नहीं है,
1: नहीं है।
2: जैसे वो ये बता देते हैं कि प्रेफर है, ये अगर आप कहते हैं तो प्रेफर है और कुछ नहीं होते।
0: हाँ,
3: गुड आफ्टरनून सर, फरा बोल रही हूँ रामपुर से। सर मुझे ये पूछना था सी टेट या यूपी टेट में से हमें एक ही क्वालिफाई करना है या फिर दोनों क्वालिफाई करना है?
0: एक्चुअली क्या रहता है, देखिए जो सीटेट का एग्जाम है ना, वो आपका एक टाइप से जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जैसे आपने दिल्ली की कोई वैकेंसी आई, ठीक है, कहीं भी वैकेंसी आएगी वो आपसे मतलब जो क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करेगा वो सीटेट करेगा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, बट जब स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है ना तो फिर वो अपने स्टेट का ही वो मांगते हैं, एग्जाम मांगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में अगर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है तो वहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखेगा ना वहां पर वो यूपी टेट लिखेगा, तो फिर आपको यूपी का टीट वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो दोनों ही पास करने हैं आपको।
3: जैसे अभी हमने बीटीसी कर ली है तो सी टेट का भी एग्जाम दिया था, तो अभी 3 नंबर से रह गए थे हम।
0: हाँ जी, हाँ जी,
3: पूछ रही हूँ कि सी टेट या यूपी टेट से अगर हमारा एक ही क्वालिफाई होता है तो क्या उसके बाद टेट फिर आएगा?
0: नहीं नहीं, ये क्या करते हैं, ये जो स्टेट वाइज वैकेंसीज निकालते हैं ना तो उसमें वो सी टेट को नहीं मानेंगे, वो अपना पेपर मानेंगे जो यूपी टेट का होगा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, बट ये है कि अगर आप जो सी टेट का क्वालिफाई करते हैं तो बाहर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
3: अच्छा, यूपी में नहीं हो सकता ये, यूपी का ही
0: चल जाता है, मतलब क्या रहता है ना कि वो उसमें अब जैसे क्या है कि अगर आपकी पीजीटी की वो आएगी, अगर आपकी पीजीटी की आती है वैकेंसी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर पेपर 1 है पेपर 2 है, तो मतलब आपका चल जाता है, पर वो उसमें लिखा होता है, मतलब जैसे जो फॉर्म निकलते हैं ना तो उसमें, क्योंकि देखिए क्या है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो टेट का पेपर है वो ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब आपकी वैकेंसी आती है ना तो उसमें फिर लिखा होता है भी आपने आपका या तो टेट क्वालिफाई हो या आपका सीटेट क्वालिफाई हो या उसके अलावा कोई और भी कोई एग्जाम अगर है तो वो लिखा हो तो वहां आपका चल जाता है।
3: अच्छा सर, जो सुपर टेट है, यूपी टेट हमारा जैसे क्लियर हो गया, उसके बाद हमने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया, तो उसके बाद भी हमारा इंटरव्यू या कोई एग्जाम वगैरह होता है या डायरेक्टली हम डाल सकते हैं फिर?
0: नहीं, उसमें ये क्या करते हैं, देखिए अभी जैसे पहले तो क्या होता था कि जो टेट क्वालिफाई होता था उसी के बेसिस पे होता था, जॉब लग जाती थी,
3: जी
0: अभी उन्होंने क्या किया हुआ है कि अभी ये जैसे टेट को कर रखा है अलग, ये तो एक टाइप का ये हो गया कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। फिर जब वैकेंसीज निकालते हैं तो वैकेंसीज निकालेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि मिनिमम वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसका टेट क्वालिफाइंग है। फिर वो अपना अलग से पेपर लेते हैं एट द टाइम ऑफ अज्वाइनिंग। जैसे हरियाणा में क्या है कि आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, एस्टेट पास करने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, जब वैकेंसी आएगी वो फिर से पेपर लेंगे आपका। तो इस तरह से चलता है इसमें।
3: ठीक है,
0: हाँ थैंक यू। एक ये क्वेश्चन है सीमा सिंह जैसे पूछ रही है कि बीएड करने का क्या प्रोसेस है। जो बीएड करने का प्रोसीजर है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, डिस्टेंस से बीएड नहीं होती है। पहली चीज, ओनली इग्नू ऑफर करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट उसमें भी उसमें आप किसी ना किसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रहे हो, तो उसमें जो लोग एज ए टीचर जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए एक उनके लिए प्रोसेस है कि वो बीएड जो है डिस्टेंस से कर सकते हैं, बट इन जनरली जो बीएड है वो आपको एज ए रेगुलर कोर्स ही करना पड़ता है। तो आपने बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने किया है तो उसके बाद आपको 2 ईयर का बीएड करना पड़ेगा। ये आपका जैसे सर मैंने डीएलडी किया है, टेट क्लियर है, इंटर कॉलेज जॉब्स का क्या स्कोप है? क्योंकि इंटर कॉलेज जैसे ये मेरे हिसाब से यूपी से बिलोंग करते हैं ना आप, यूपी में इंटर कॉलेज होता है। हाँ, तो वैसे तो इन जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपनी हरियाणा या और जगह की बात करें तो वहां पर जो कॉलेज की वैकेंसी तो आपकी अलग से आती है। यूपी में क्या है कि इंटर कॉलेज मतलब जो ट्वेल्थ को करता है टीच, मतलब आपका 8 to 12 एक पीजीटी कहते हैं ना उसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। देखिए क्या रहता है कि पीजीटी के लिए बीएड क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है। और अगर आपको एलिमेंट्री टीचर का करना है तो आपने जैसे डीएलडी किया हुआ है तो आप उसमें टाइटल है, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, सीमा सिंह आस्किंग वन हैज टू गो टू कॉलेज एवरी डे। देखिए नहीं, उसमें क्या है कि बीएड में देखिए आपके दो तरह के कॉलेजेस है, एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज तो फीस ही चार्ज करते हैं बस, मतलब आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है। मैक्सिमम जो बीएड है वो आपकी इसी तरह से होती है, बट रेगुलर कोर्स है, मतलब उसके साथ आप कुछ और नहीं कर सकते। बीएड एक तरह का रेगुलर कोर्स है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है, एग्जाम्स होंगे बस आपके, ठीक है। बट उन 2 सालों के अंदर अंदर आप उसके साथ कोई और डिग्री नहीं हो पाएगी आपकी, आप केवल बीएड ही करेंगे, क्योंकि काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएट होगा। अकबर जी पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब के लिए नेट की आवश्यकता होती है। देखिए क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर वो पूरे स्केल की सैलरी देंगे तो नेट आपसे मांगेंगे जरूर। देखिए क्या होता है ना, प्राइवेट में भी मतलब जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो 2 टाइप के टीचर रखती है। एक तो वो टीचर रखती है जो वो अपने रोल्स पे दिखाती है, मतलब जिनको एक नंबर में सैलरी पे दिखाती है, तो वहां तो नेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे टीचर तभी बन सकते हो जब आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो कुछ टीचर्स को वो एडवोक पे दिखाती है, तो वहां पर आपका चल जाता है। मतलब तो ये है कि स्टार्टिंग की जा सकती है, बाकी अगर आपको कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करनी है तो नेट क्वालिफाई करना मस्ट है आपके लिए, उसके बिना आपको सैलरी कभी पूरी नहीं मिल पाती। सुनील जी पूछ रहे हैं एस्टेट का सिलेबस क्या रहेगा, बीएड एसएसटी इंग्लिश से है, बीएड एसएसटी उसमें देखिए अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं पेपर तो उनकी तो आपके टॉपिक वाइज आपको बुक्स मिल जाती है उसमें। जैसे जो टीजीटी का पेपर है, हाँ, उसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे 150 नंबर का पेपर आता है तो 30 क्वेश्चंस तो आपके हरियाणा में जैसे मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हो गए, 30 क्वेश्चन चाइल्ड पैडागोजी के हैं, और उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी के हो गए, और फिर बच्चे 60 क्वेश्चन आपके बचे, उन 60 क्वेश्चंस में आपका एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके टीजीटी में। जितने आस्किंग कॉलेज रेगुलर करना चाहिए ना वो नहीं, देखिए क्या क्या रहता है कि आप कॉलेज कैसे भी कर सकते हैं, आपने बीए चाहे कॉरेस्पॉन्डेंट से किया हुआ है चाहे आपने रेगुलर किया हुआ है, वो मैटर नहीं करता, बट हाँ उसमें मार्क्स आपके मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी वैकेंसीज आती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ जो वेटेज है कुछ आपके मार्क्स को होता है वेटेज, तो आपने कहीं से कोर्स किया हो वो आपका चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से है चाहे आपका रेगुलर कोर्स है वो इक्विवेलेंट ही ग्राउंड पे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता एज ए जॉब के लिए। देखिए कॉलेज रेगुलर करना ही बेनिफिशियल होता है, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतलब जनरली आप बीए बीकॉम जो भी करिए मतलब आप हर कोर्स को रेगुलर से ही करिए तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से एक तो ना तो मार्क्स आपके अच्छे आते पहली चीज और ना ही आपकी सब्जेक्ट में इनडेप्थनेस हो पाती है, तो ये तो एडवाइजेबल होता है कि करना तो रेगुलर ही चाहिए।

0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और आज का जो सेशन हमारा है वो बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। प्राइमली जो हम फोकस करेंगे कि जो बच्चे 10th के बाद में मेडिकल साइंस एज एन ऑप्शन लेते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं 12th के बाद में, क्या क्या वो कर सकते हैं। तो आज उन सब इश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमली जो मेडिकल प्रोफेशन है आज वो हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। इससे पहले जो लोगों ने पहले भी सेशन अटेंड किए हैं तो हम काफी चीजें अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमने कॉमर्स से रिलेटेड एक सेशन किया था और भी डिफेंस एग्जाम्स का है, गवर्नमेंट जॉब्स का, तो हम काफी चीजें पहले कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा फोकस है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर रहेगा। एंड आई होप जो बच्चे अभी 10th क्लास से नीचे हैं, 9th में है, 8th में है, 7th में है, तो उनके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है। और आप देखेंगे कि कोविड के टाइम पे, देखिए आज के टाइम में कोरोना के टाइम पे, तो मेरे हिसाब से सबसे जो सेफ लोग हैं, जो जिनके इनकम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वो या तो कौन है बेटे, जो डॉक्टर्स हैं एक टाइप से, जो मेडिकल प्रोफेशंस के लोग हैं, या फिर आपके जो बनिए हैं, बनिए मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिनकी शॉप्स हैं एक टाइप से, तो उनका काम चल रहा है। बाकी तो देखो सभी के लिए किसी ना किसी टाइप से चैलेंज है। तो जो मेडिकल प्रोफेशन है एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक तरह से नेक्स्ट टू गॉड है, कि भगवान के बाद अगर और कोई है तो हमारे लिए कौन होता है, डॉक्टर होता है, क्योंकि उसी का वही एक ऐसा है जो हमारी जान को बचा सकता है। तो ये एक चैलेंजिंग प्रोफेशन होता है और बच्चे अगर मेहनत करें और उनका ठीक ठाक कोर्स में एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, राइट। अब देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये मैंने लास्ट टाइम भी ये पीपीटी शेयर किया था, इस टाइप का एक इंट्रोडक्शन रिमार्क मैंने दिया था कि जनरली हमारे मन में ये होता है कि जो बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं तो वो किताबों में खोए रहते हैं, ठीक है। वो किताबों में खोना इसलिए पड़ता है कि अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है जिसमें पीएमटी है, आपका नीट का एग्जाम है, या इसके अलावा और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी रहती है, ठीक है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो इसलिए जनरली माइंड में भी हमारे एक अप्रोच होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 12th में पहली चीज तो क्या है कि जब आप मेडिकल साइड लेते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। प्राइमरी मेडिकल और नॉन मेडिकल में फर्क इतना ही है कि नॉन मेडिकल में आप मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट आपका होता है, और वही अगर आप मेडिकल की बात करेंगे तो आपको बायोलॉजी पढ़ना रहता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको लेना है, प्लस वन प्लस टू में आप पढ़ते हैं। मेडिकल साइड लेने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो मेडिकल स्ट्रीम पर बेस्ड है, ठीक है, उन सब में जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑलमोस्ट वही का वही है जो आप प्लस वन प्लस टू में पढ़ते हैं, मतलब आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप MBA होटल मैनेजमेंट लॉ का एग्जाम देंगे तो आपको कोर्स के अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बट आप अगर नीट का एग्जाम देते हैं तो जो आपने प्लस वन प्लस टू में एज ए सब्जेक्ट आपने स्टडी किया है वही चीज आपको पढ़नी रहती है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारा टारगेट है। आप देखेंगे ये बीच में एक इमेज के अंदर दिखा हुआ है ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पहले आपको मैं एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर हम इन डिटेल बात करेंगे एक एक बात के ऊपर। सबसे पहला जो मेडिकल साइड का, जो एक तरह से जो बच्चा मेडिकल साइड लेता है तो एक सबसे ऊपर उसके मन में क्या होती है कि उसे MBBS करनी है, उसे मतलब डॉक्टर बनना है। सबसे पहली चीज जो है कोई बच्चा जो मेडिकल साइड लेता है तो पहला एम, पहला लक्ष्य, पहला उद्देश्य उसका यही होता है कि उसे डॉक्टर बनना है, ठीक है। और डॉक्टर्स में भी सबसे टॉप पे MBBS आता है, जिसे आप देखते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके नाम के पीछे डिग्रीज लिखी होती है, MBBS है, MS है, MD है। तो MBBS एक तरह की बैचलर डिग्री होती है, ठीक है, आपकी सर्जरी एंड मेडिसिन के अंदर, राइट। और MBBS एक आपकी जनरल डिग्री है, उसके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं और स्पेशलाइजेशन में आप MD करते हैं आगे, फिर ये डिवाइड होता है कि आप किस चीज के डॉक्टर हैं, ठीक है। ऐसे ही जिन बच्चों का MBBS में एडमिशन नहीं हो पाता तो वो BMS करते हैं, ये आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन सर्जरी होती है, BMS जिसका नाम होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। तो बीएमएस जो डॉक्टर होते हैं वो बेसिकली आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, राइट, और उनका भी काम ऑलमोस्ट एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होता है, बट कुछ एंगल्स पे हम कह सकते हैं कि एमबीबीएस ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि एमबीबीएस में पर्सन को सर्जरी करने का एक तरह से उसके पास में पे वो स्पेशलाइजेशन करता है। सिमिलरली होम्योपैथी के डॉक्टर भी होते हैं जिसको हम बीएचएमएस कहते हैं, दैट इज होम्योपैथिक एंड द मेडिसिन। यू हैव द बीडीएस भी होते हैं, आपके जो डेंटल साइंस से डॉक्टर होते हैं, जो आपके दांतों के डॉक्टर होते हैं, या बीएनवाईएस भी होते हैं, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस। आप देखेंगे आज के टाइम में का ये एक्यूप्रेशर काफी ज्यादा स्कोप है, तो ये एक आपके पास में ऑप्शन होता है मेडिकल साइंस के अंदर, अगर आप मेडिकल साइंस में रहना चाहते हैं। और इन सब के लिए एक कॉमन एग्जाम है, आपको नीट का एग्जाम देना होगी। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्वेल्थ के बाद जो बच्चे अपने इन एक तरह से इन चीजों में करियर मेक करना चाह रहे हैं तो उनको नीट का एग्जाम देना। अभी मैं नीट के एग्जाम पे भी आता हूँ। सेकेंड होता है बेटे अलाइड मेडिकल सर्विसेज। अलाइड मेडिकल मतलब जिसको हम पैरामेडिकल भी कह देते हैं, इसमें बीएससी नर्सिंग टॉप पे रहता है। आप मानेंगे कि बीएससी नर्सिंग का इतना ज्यादा स्कोप है कि अगर किसी भी, वैसे तो आजकल पहले क्या होता था कि बीएससी नर्सिंग जो होती थी वो गर्ल्स के लिए होती थी, ठीक है, बट आज के समय में बीएससी नर्सिंग जो है उसमें बॉयज भी आ सकते हैं, मतलब बॉयज के लिए भी ओपन होती है। तो जिस बच्चे ने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आप ये मान के चलिएगा 100% उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। उसके पीछे रीजन क्या है, आप देखिए एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास अगर कोई डिपार्टमेंट में है तो कम से कम 10-12 नर्सेज उस डिपार्टमेंट में होती हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास में बहुत अच्छा स्कोप है गवर्नमेंट जॉब लेने का। इसके साथ साथ आप बीएससी रेडियोलॉजी और मतलब काफी स्ट्रीम्स हैं जो आप एक तरह से पैरामेडिकल सर्विसेज में उसे हम कहते हैं, या फिर आप फार्मेसी कर सकते हैं, बी फार्मेसी, फार्मेसी डी फार्मेसी होती है। तो मतलब एक काफी ज्यादा स्कोप है अगर बच्चा मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहे तो। देखिए चार्ट है, इसमें आप देखेंगे सबसे टॉप पे एमबीबीएस है, फिर आपका बीडीएस है, उसके बाद आपका बीपीटी है, फिजियोथेरेपी, बीएचएमएस है, होम्योपैथी। पहले तो आपको नाम भी, उसके मतलब भी पता होने चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाहर नेम प्लेट लगा हुआ है रवि कुमार बीएचएमएस, तो आपको जैसे ही बीएचएमएस आपने पढ़ा तो आपको पता है भी होम्योपैथी का डॉक्टर है, ठीक है। उसके नाम के नीचे अगर आपका लिखा हुआ है बीएमएस लिखा हुआ है तो आपको पता है कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर बच्चे को नॉलेज होनी भी चाहिए। जितना आपको नॉलेज होता है उतने ही आप अपना एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये एक सारे तरह से अलग अलग कोर्सेज हैं जो बच्चे के पास में ट्वेल्थ के बाद ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक टाइप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया है कि जो मेडिकल साइंस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। हम एक एक करके इन डिटेल बात करते हैं इन सबके ऊपर, और भी क्या क्या करियर्स हैं, क्या क्या स्कोप है ट्वेल्थ के बाद में, वो हम सारा डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखिए बेटे ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, अगर आपको मेडिकल साइंस में करियर बनाना है तो आज के समय में आपको नीट का एग्जाम देना है। मतलब नीट का एग्जाम होता है एट प्रेजेंट जो एग्जाम का नाम है, हो सकता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम दो तो उस टाइम पर नया पैटर्न हो, पर आज के टाइम पे जो है वो नीट का एग्जाम होता है। 3 आवर का आपका एग्जाम होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है और 180 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और नीट के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, जो भी आपने +1 +2 में पढ़ा है सारी चीजें उससे रिलेटेड है, ठीक है। 720 मार्क्स का पेपर होता है, 180 क्वेश्चन आते हैं आपको। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो भी नीट का एग्जाम आपको देना कंपलसरी है। तो एक चीज आप मान सकते हैं कि अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में अपना करियर बनाना है तो नीट का एग्जाम देना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। अब 180 मार्क्स का जो पेपर आता है वो कैसे डिवाइडेड है, उसके बेटे 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट फिजिक्स का है 45 मार्क्स का, सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का है 45 आपके क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड होता है बायोलॉजी 90 क्वेश्चन, मतलब बायोलॉजी का जो फोकस है वो नीट के एग्जाम में ज्यादा रहता है। ठीक है, एक चीज और मैं बीच में ऐड कर दूं कि बहुत बच्चे बेटे आप में से ऐसे होते हैं कि जो मान लीजिए मेडिकल साइंस से नहीं है, मेडिकल साइड से नहीं है, फिर भी उन्हें अलग अलग करियर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है उसके पीछे, कि अगर आप अपने टाइम में इन चीजों की प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो कम से कम आपके छोटे भाई बहन है, आपके आस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स हैं, तो आपको पता होगा कि आप किसी को एडवाइस कर पाएंगे। तो तभी मैं बार बार हमेशा कहता हूं हर सेशन के अंदर कि आपको हर चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि हम नहीं कर पाए, बट हमारे आने वाली जनरेशन जो है, आपके नोन के बच्चे हैं, उनको आप एक्सप्लेन कर पाते हैं अभी नहीं बेटे ऐसे तैयारी करनी है, स्कोप काफी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी अपना इंटरेस्ट लेके समझे। तो 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो प्लस वन प्लस टू में आपने पढ़ा है वहीं से आपका आना है सारा का सारा। थोड़ा एडिशनल प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो मतलब आप नीट की अगर आप एक टारगेट करें तो, और ये हार्ड वर्किंग काम है, ट्वेल्थ के मार्क्स की कोई वेटेज नहीं है। ट्वेल्थ में आपके कितने भी परसेंट मार्क्स हो, चाहे कम भी है, तो अगर आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, तो ये एक टारगेटेड एग्जाम है। और जितने भी मेडिकल साइंस के कोर्स हैं, चाहे आपको मैंने BHMS बताया, चाहे आपको मैंने MBBS बताया, चाहे आपको मैंने BMS बताया, तो सभी नीट से ही आपका एडमिशन लेंगे, सभी के सभी नीट से ही एडमिशन लेंगे। और जैसे BSc नर्सिंग है, ये सभी नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये बेटे आपने टारगेट करना है अगर आप आगे फ्यूचर में मेडिकल साइंस के प्रोफेशन में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लस वन प्लस टू में आपके पास में मेडिकल साइड अगर है तो। अब जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने जो मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बताया, जिसमें आपको मैंने BMS BHMS बताया, ऐसे ही काफी लोग ऐसे हैं जो फार्मेसी में जाना चाहते हैं, फार्मेसिस्ट बनते हैं। आपके पास बी फार्मेसी का कोर्स होता है जिसको हम बी फार्मा कहते हैं, 4 ईयर का कोर्स रहता है आपका। ठीक है, और बी फार्मा करने के बाद भी आपके पास में काफी स्कोप है। मैं आपको थोड़ा स्कोप, सबसे पहला क्या है कि बेटे फार्मेसी करने के बाद आप अपनी फार्मेसी की शॉप ओपन कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट में काम स्टार्ट हो जाता है। और आप देखेंगे आज के टाइम में फार्मेसी का स्कोप बहुत ज्यादा है। आप किसी भी केमिस्ट की शॉप पे चले जाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दवाइयां फ्री में मिल रही हैं, इतनी भीड़ रहती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द हैबिट्स, फूड हैबिट्स कह लीजिए या हमारा वर्क कल्चर कह लीजिए, कि उसमें हम अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, और हेल्थ पे ज्यादा ध्यान
1: नहीं, पता सिखाने का मन कर रहा है तो।
0: क्या
1: अरे ब्रदर, तो आज मेरे,
0: हाँ जी, तो अगर हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर उसमें आपको मतलब आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर। तो फार्मेसी जो है वो एक बहुत आसान जरिया होता है भी, आप उसके बाद अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, आप एज ए MR का काम कर सकते हैं जिसको हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अगर आप आगे फ्यूचर में और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहें, एम फार्मा करना चाहें, तो आप एम फार्मा भी कर सकते हैं। और एम फार्मा करने के बाद टीचिंग में, रिसर्च में, मतलब एक बहुत अच्छा स्कोप है फार्मेसी का। ऑल्दो MBBS के मुकाबले फार्मेसी की जो डिग्री को अगर हम MBBS से कंपेयर करें तो लो माना जाता है, बट अपने आप में फार्मेसी का स्कोप है। देखिए जितनी भी दवाइयां बनती हैं वो सब फार्मेसी वाले ही बनाते हैं, मतलब MBBS जो है ना, जो डॉक्टर है वो तो उसे प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, जो एक्चुअल में जो मेडिसिन बनाई जाती है वो फार्मेसिस्ट ही बनाता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा स्कोप है, और आप इसको फ्यूचर में अगर जो बच्चे मतलब एक तरह से फार्मेसी में जाना चाहे तो बी फार्मा उन्हें करना रहता है। और दुनिया भर के कॉलेजेस हैं, आप मानेंगे फार्मेसी के इंडिया में काफी कॉलेजेस हैं, हर स्टेट में कॉलेजेस हैं। ठीक है, उसमें कुछ कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस काफी कम रहती है, तो बहुत ही कम पैसा स्पेंड किया आप अपना एक बार। मेन थिंग इज दैट कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन करेंगे, और नीट की प्रिपरेशन में जो लो स्कोरर्स होते हैं जिनका एक तरह से MBBS या BDS में नहीं हो पाता है, तो फिर वो फार्मेसी की तरफ जाते हैं। ऐसे ही फिजियोथेरेपी एक आप ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम का प्रोफेशन है। आज भी जो फिजियो है, आज भी फिजियोथेरेपिस्ट की इनकम काफी ज्यादा होने स्टार्ट हो गई है। तो जैसे फिजियोथेरेपी है, तो फिजियोथेरेपी में भी करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, आप अपना काम कर सकते हैं। हम ऐसे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट को आप देखिए, अगर आप इफ यू स्टे इन दिल्ली और इन एनी प्लेस, तो वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट मतलब एक सिटिंग के ही 1000 रुपीज चार्ज कर लेता है, मतलब एक आधे घंटे के 500 से 1000 रुपए चार्ज कर लेता है। और फिजियोथेरेपिस्ट में अपना काम करना बहुत आसान है, वैकेंसीज काफी निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या करना रहता है, आपको बीपीटी करना होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। ये आपका 4.5 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर आपका डिग्री है, और उसके बाद में 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप होता है, ठीक है। फिर आप अलग अलग स्ट्रीम के फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं आगे, उसके अंदर अगर आप मास्टर डिग्री करें तो स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं, मतलब हाँ एक्चुअली क्या है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट में फीस स्ट्रक्चर जो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, उनमें तो फीस बहुत ही नॉमिनल है, उनमें तो स्टाइफंड तक मिलते हैं, मतलब जो आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें फीस काफी कम है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में पर एनम फीस होती है 50,000-60,000 के आसपास एनुअल फीस रहती है। बट देखिए क्या रहता है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी काफी हैं, बाकी इसके अंदर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं। तो एडवाइस यही किया जाता है कि अगर आप ऐसा कोई कोर्स करें तो गवर्नमेंट कॉलेज से करें, ताकि आपको ज्यादा पैसा स्पेंड ना करना पड़े, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है फिजियोथेरेपी का, जिसको आप एज ए करियर बना सकते हैं। बीएससी फाइनल के बाद आपके डिप्लोमाज होते हैं। देखिए सर क्या रहता है कि आपके दो तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है वो तो एक तरह से 4 साल का आपका फिजियोथेरेपी का ही कोर्स है। इसमें क्या रहता है कि जो लोग 12th के बाद नहीं कर पाते वो बीएससी कर लेते हैं। तो बीएससी कर डिप्लोमेज होते हैं आपके, 2 ईयर का है डिप्लोमा, आपने 2 साल का फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा किया और उसके बाद फिर आपने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी ऐसे ऑप्शन हैं, अवेलेबल हैं, दैट इज ऑल्सो इन द मार्केट। तो मैं अभी आगे स्लाइड्स के अंदर हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करेंगे, तो उसमें कई सारे मैं बताऊंगा आपको ये डिप्लोमाज होते हैं जो आप 12th के बाद में या बीएससी के बाद में कर सकते हैं, और उसके अंदर भी बहुत इजीली अपना करियर बनाया जा सकता है। इसके बाद जो बच्चे एक तरह से साइंस लेते हैं, मेडिकल साइंस लेते हैं, तो उनके पास में हाँ ये भी है, बीएससी के बाद में लेटरल एंट्री मिलता है बिल्कुल, अगर आप उसके अंदर बीपीटी करना चाहें तो आपको मतलब 1 साल का एडवांटेज हो जाता है। आप बिल्कुल अकबर जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो ऐसी आपके पास एक बहुत अच्छा स्कोप होता है वेटरनरी साइंस का, जिसको हम बीवीएससी कहते हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ठीक है। लास्ट ईयर तक तो इसका एग्जाम होता था, ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट होता है, AIPVT। ये बेसिकली जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, आप देखें इंडिया में जानवरों के डॉक्टरों का भी काफी स्कोप है। रूरल एरियाज की बात करें जिसमें गाय भैंस के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, या अगर आप बहुत बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं तो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो उनके डॉक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए AIPVT का एग्जाम था लास्ट ईयर तक, इस बार तो नीट का ही एग्जाम लिया है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना, तो एक ही एग्जाम कर लिया। तो ये वेटरनरी साइंस होती है आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि एक काउंसिल है, वेटरनरी काउंसिल है, उसमें आपका BBSC होता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जिसमें जानवरों से रिलेटेड आपको, जैसे आप MBBS करते हैं तो वो ह्यूमन से आपका डील करता है, तो वही आपका जो BBSC है वो डील करता है एनिमल से। और काफी कॉलेजेस हैं इसके भी इंडिया में, असम में है, जोरहाट में है, बॉम्बे में है, ऐसे हिसार में भी आपके आसपास में, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर। जब आप कोई बच्चा एक स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हो BBSC के अंदर तो वो थोड़ा एक्सप्लोर करेगा, तो उसे इंडिया लेवल पे काफी इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो वेटरनरी के अंदर टीच करते हैं। और इसके अंदर भी गवर्नमेंट जॉब का काफी ज्यादा स्कोप है। रीजन क्या है कि रूरल एरियाज में एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आप देखेंगे हर गांव में एनिमल का हॉस्पिटल होता है, तो एनिमल का हॉस्पिटल है तो वहां पे डॉक्टर भी चाहिए, राइट। तो जो इसमें डॉक्टर होते हैं वो आपके BBSC होते हैं, तो इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का भी काफी स्कोप है। अगर आपने BBSC किया हुआ है तो बहुत इजिली आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाता है, तो आपके इंटरेस्ट की बात है। तो ये भी एक स्कोप रहता है, अगर आप साइंस साइड आप ले रहे हैं तो आप वेटरनरी के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके ये एक कोर स्ट्रक्चर है BBSC का, जिसमें बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस कहते हैं। इसकी जो कोर्स फीस है, देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां तो 5,000-10,000 रुपए एनुअल फीस है, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 1 लाख तक फीस है उसके अंदर 1 साल का। और 5.5 साल का कोर्स है और उसमें फिर आपकी जो सैलरी है अच्छी सैलरी मिल जाती है। मतलब ये मतलब एक टाइप से यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ज्यादा रहती है, तो गवर्नमेंट जॉब में आप एज ए डॉक्टर ज्वाइन करते हैं तो जो एक तरह से डॉक्टर का स्केल रहता है तो वो स्केल रहता है। तो स्टार्टिंग में 5-1 लाख के आसपास आपका एनुअल सैलरी रहता है, पर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, एज ए करियर वेटरनरी साइंस को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर बीएससी एग्रीकल्चर, ये भी एक ऑप्शन रहता है कि जिन बच्चों ने 12th में मेडिकल साइड लिया है, ठीक है, उनका अगर इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द एमबीबीएस और वेटरनरी साइंस, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया में कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करती हैं। जैसे आप हरियाणा में देखें तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, आप दिल्ली में देखें तो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं वहां पे आपकी पंत नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक या एक से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करती है, ठीक है। और बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में भी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप अपने कई सारे मतलब एक तरह से अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जा सकते हैं, नर्सरी के बिजनेस में काम कर सकते हैं, एग्री क्लिनिक्स होती हैं, अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में लैंड अवेलेबल है तो आप उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आज के टाइम में तो वैसे भी अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो जो फार्मर की जहां तक बात है ना, हमारे फार्मर जो हैं वो मतलब एक तरह से एजुकेशन कम है उनके अंदर, तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज को न्यू चीजों के बारे में इतना अवेयर नहीं हो पाते, तो वो एक तरह से जो स्टैंडर्ड चीजें चल रही हैं उन्हीं पे ही काम करते रहते हैं, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप कर लेते हैं तो आपके पेरेंट्स अगर एग्रीकल्चर में है, खेती करते हैं, तो आप बहुत हद तक उन्हें एक तरह से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में। इसके साथ साथ काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब होती है, क्लास 1 ऑफिसर होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, आपके असिस्टेंट कंजर्वेटर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर, जहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है वो बीएससी एग्रीकल्चर मांगी जाती है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो इन सब गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप जा सकते हैं, और आपको एक सिंपल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसे ही आप इसमें रिसर्च में जाना चाहें तो मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, जिसमें आप एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी सोयल साइंसेज, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, मतलब काफी बड़ा स्ट्रीम है ये। आप किसी एग्रीकल्चर, अगर आपने कभी किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके देखा हो तो आप देखेंगे इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप उसमें यू कैन गो फॉर द मास्टर डिग्री ऑल्सो। आप एमबीए भी कर सकते हैं एग्री बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे एग्री बिजनेस का भी स्कोप काफी ज्यादा है, तो मैक्सिमम जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो एमबीए इन एग्रीकल्चर भी ऑफर करती है। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप एमबीए भी कर सकते हैं। तो इस तरह

कैंसर का। फिर कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। अब पैरामेडिकल कोर्सेज, पहले तो हम ये समझें कि पैरामेडिकल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं। देखिए, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टर है जो आपको ट्रीट करता है, फिर उसके साथ में उसकी असिस्टेंस के लिए नर्सिंग स्टाफ होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखेंगे और भी हॉस्पिटल में काफी लोग हैं। काफी लोग में क्या क्या है, आप देखेंगे एक फार्मासिस्ट होता है जो आपको मेडिसिन आपको देता है। अगर आप लैब में जाएंगे आपको टेस्टिंग करवानी है तो लैब टेक्नीशियन आपको मिलेगा। अगर आपका एक्सरे होना है तो एक्सरे असिस्टेंट अलग से होगा। ऑपरेशन अगर आपका होना है तो एनेस्थीसिया, जो एक तरह से आदमी को बेहोश करता है, वो अलग से होगा। तो इस तरह से मतलब काफी बड़ा पैरामेडिकल स्टाफ होता है किसी भी गवर्नमेंट, एक तरह से किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्यादा आगे टाइम वेट नहीं कर सकते, या जो एक तरह से हम ये कहें कि दे आर नॉट गुड इन स्टडीज, तो उन्हें ये लगता है भी ठीक है एमबीबीएस करना तो हमारे बस की बात नहीं है, तो चलो हम मेडिकल प्रोफेशन में रहना चाहते हैं, तो आप उनकी बजाय आपने और कोई कोर्स कर लिया। तो उसमें सबसे पहला कोर्स आपका होता है जीएनएम का, जिसको हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहते हैं। जीएनएम का कोर्स होता है। आप देखते हैं आपके आसपास में एएनएम और जीएनएम के कोर्स किए जाते हैं, तो ये 3.5 साल का कोर्स होता है ट्वेल्थ के बाद में, ठीक है। तो इसमें आप एडमिशन सकते हैं ले। इसमें काफी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं एएनएम और जीएनएम के लिए, और काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपने अगर जीएनएम का कोर्स कर लिया तो गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं। ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्टाफ नर्स होता है, जैसे आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है ऑलमोस्ट उसके इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि इसके बाद भी आपको नर्सिंग जॉब मिलती है। अगर आपने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है तो इसके बाद आपको जो जॉब टाइप मिलेगी वो आपको नर्सिंग टाइप जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन होते जा रहे हैं, और आजकल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो किसी होटल से कम नहीं है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे आज ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स ओपन हो चुके हैं कि जैसे आपका मैक्स हॉस्पिटल है, वेदांता है, और ऐसे दुनिया भर के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मतलब एक तरह से इट्स लाइक ए 5-star होटल्स। तो वहां पर काम करने का मजा अपना ही है, चाहे आप मतलब इफ यू आर नॉट एमबीबीएस कोई बात नहीं, उससे नीचे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो एक वे ऑफ लिविंग है, और आजकल हॉस्पिटल्स काफी ठीक ठाक सैलरी भी पे करते हैं, तो ये एक आपके पास में स्कोप रहता है। ऐसे ही आप एनेस्थीशियन असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, 2 मंथ का कोर्स रहता है, बट इसमें स्कोप थोड़ा कम है। मैं यहाँ एक बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा, ये एमपीएसडब्ल्यू का कोर्स होता है। ये बेटे ये आप मान के चलिएगा, ये एक ऐसा कोर्स है एमपीएसडब्ल्यू का कोर्स जो है, एक तो वो 10th बेस पे होता है, एक तो उसका जो एडमिशन होता है 10th बेस पे होता है। हर स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, एक स्टेट हेल्थ इंस्टीट्यूट होता है। जैसे हरियाणा का जो है वो रोहतक में है, ठीक है। यहां पर मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग होती है, जिसको हम एमपीएसडब्ल्यू कहते हैं। आप जैसे बेटे गांव से बिलोंग करते होंगे, आप में से काफी बच्चे, तो आप देखते हैं कि गांवों में मलेरिया एक टाइप से जो वर्कर होते हैं, ठीक है, पहले उन्हें मलेरिया वर्कर कहा जाता था, तो वो एमपीएसडब्ल्यू होते हैं। अगर आपने एमपीएसडब्ल्यू का कोर्स किया हुआ है तो आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलती है, तो एक साथ वैकेंसी निकलती है, ठीक है। जब भी वैकेंसी आती है तो पुराने जिन्होंने कोर्स किया होता है सबकी जॉब लग जाती है। तो एमपीएसडब्ल्यू का वर्कर का कोर्स होता है, हेल्थ वर्कर का कोर्स होता है, 18 महीने से 2 साल का कोर्स होता है 10th के बाद में, बट इसमें गवर्नमेंट जॉब लगने का स्कोप ज्यादा रहता है। ऐसे ही आपका FMHW होता है, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कोर्स रहता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, और 10th बेस पे एडमिशन, और मार्क्स बेस्ड एडमिशन है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, आपको सिंपल मार्क्स आपके जो 10th में आए हैं उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा, बट थोड़ा एक्सप्लोर करने वाली बात है। बहुत बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों का पता ही नहीं है, उन्होंने कभी ट्राई नहीं करके देखा, ठीक है। बट अगर ये है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो और आप थोड़ा एक्सप्लोर भी करो, जैसे आपकी 10th हो गई तो आप थोड़ा पता करिए कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। हरियाणा का तो मैं आपको सकता हूँ बता, हरियाणा का रोहतक में इंस्टीट्यूट है और ये आपका पीजीआई के अंदर ही है, ठीक है। तो यहां पर आपका कोर्स रहता है एमपीएसडब्ल्यू का। ऐसे ही आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स होता है। आप देखो बेटे, आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपके टेस्ट लिख देता है, आपका ब्लड टेस्ट लिख दिया, ये कराओ वो कराओ, तो वो टेस्ट करने वाले कौन लोग हैं, वो टेस्ट करने वाले लेबोरेटरी

0: टेक्नीशियन होते हैं, जिसे हम एलटी कहते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी 2 साल का कोर्स रहता है ट्वेल्थ के बेसिस पर, और एलटी के भी प्राइवेट और गवर्नमेंट काफी आप देखेंगे इंस्टीट्यूट्स हैं। और अगर आपने एलटी का कोर्स किया हुआ है तो आप अपनी लैब ओपन कर सकते हैं सबसे पहली चीज, या आप किसी लैब में काम कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने किसी लैब में काम किया, किसी भी एक तरह से लेबोरेटरी में आपने वर्क किया, और उसके बाद फिर आप अपना भी एक तरह से ये जो लैब का अपनी लैब ओपन कर सकते हैं, जिसको हम एलटी कहते हैं, लैब टेक्नीशियन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन का भी देखिए, जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, जितने ज्यादा डॉक्टर्स होंगे, उतने ही ज्यादा पेशेंट्स आएंगे, ठीक है। उतने ज्यादा पेशेंट्स आएंगे तो उनके उतने ही ज्यादा टेस्ट होंगे। अब जब टेस्ट होंगे तो टेस्ट तो लैब टेक्नीशियन ही करेगा, एलटी करेगा, तो एलटी करेगा तो एलटी का भी स्कोप काफी ज्यादा है। आप देखेंगे गांवों में जो एलटी होते हैं, मतलब बहुत लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जिन्होंने एक सिंपल एलटी का कोर्स किया, लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया, और उसके बाद उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, जैसे कि उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन के नाम याद कर लिए, थोड़ा देख लिया अभी बुखार है तो ये दवाई देनी है, ये हो गया तो ऐसे करना है, और कुछ उन्होंने साथ साथ कुछ एक टाइप से जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड चीजें सीख ली, और उन्होंने गांव में अपनी क्लिनिक ओपन कर रखी है। बढ़िया काम चलता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब हर चीज का स्कोप है, वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना एक्सप्लोर करेंगे। सिमिलरली एक्स-रे असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है, तो उसमें भी कोर्स रहता है आपका, ऑपरेशन थिएटर का भी कोर्स रहता है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का। जैसे आप देखते हैं अभी जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करते समय उसके चारों तरफ काफी लोग होते हैं जो डॉक्टर को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, या उसके साथ साथ काफी चीजें ऐसी हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ऑपरेशन करने से पहले जो करनी पड़ती है, तो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता है, जिसको हम ओटीए स्टाफ कहते हैं। तो ये काफी कोर्सेज है, मतलब जो आप डिप्लोमा या एज ए सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, और जिनको करने के बाद में मेडिकल प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आप अपना एक प्लेस बना सकते हैं, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिले, चाहे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, बट आप कहीं ना कहीं अपना एक एक अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बार बार यही कहूंगा आपको कि मेडिकल लेना, क्योंकि बहुत बच्चे मैं देखता हूं प्लस वन प्लस टू में वो दे टेक द मेडिकल साइड, पढ़ने में ज्यादा अच्छे नहीं होते, तो इसका मतलब पढ़ने में अगर ज्यादा अच्छे नहीं है तो एमबीबीएस में तो नहीं हो पाएगा, बहुत क्लियर सी बात है। फिर ऐसा नहीं, फिर वो क्या करते हैं कि उन्होंने जो मेडिकल साइड लिया बिल्कुल छोड़कर फिर वो बीए में एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं। मतलब आप बीए में एडमिशन लेने की बजाय आप कुछ एक्सप्लोर करके देखो, कुछ और कोर्सेज के बारे में जान के देखो, कि एमबीबीएस नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप और ऐसा कोर्स कर लीजिए जिसके बाद कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स, जो मैंने आपको इतनी सारी कोर्सेज के बारे में बताया, तो इसमें जब आप कोई भी कोर्स करते हैं तो जिन कोर्सेज में जॉब्स निकलती हैं, तो आप कोई ऐसा कोर्स कर लेंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी, और दूसरा अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जो बीएमएस मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक होता है, मैं पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसमें एमडी भी होती है। मतलब देखिए क्या है कि जितने भी आपके जो कोर्सेज हैं, आपने एमबीबीएस किया, चाहे आपने बीएचएमएस किया, चाहे आपने बीडीएस किया, सभी में मास्टर डिग्री भी होती है। तो मास्टर डिग्री में थोड़ा और स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो जो ज्यादा स्पेशलाइजेशन है उसमें आप आगे जा सकते हैं, तो वहां से आपको काफी एडवांटेज होता है। फिर इसके बाद मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं करा, जितने कोर्सेज की हमने बात करी आपने इसमें से कुछ भी नहीं करा, तो फिर आप 12th मेडिकल साइड के बाद में आप बीएससी कर सकते हैं, सिंपल बीएससी जिसको हम जनरल बीएससी कहते हैं, या बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स स्पेशलाइज हो जाती है, केमिस्ट्री ऑनर्स आपने किया, आपने फिजिक्स ऑनर्स किया, और बीएससी जनरल में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। और बीएससी करने के बाद अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था, हमने एक पूरा अलग से सेशन लिया था कि टीचिंग प्रोफेशन का क्या स्कोप है, कैसे कैसे उसमें आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो उसमें क्या है कि बीएससी करने के बाद में एटलीस्ट टीजीटी के लिए अप्लाई हो जाते हैं, मतलब आपने बीएससी किया उसके बाद बीएड कर लिया, तो बीएड करने के बाद 8th क्लास तक के स्कूल में आप बहुत इजीली पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और साइंस पढ़ाया जाता है आपके, आप साइंस पढ़ा सकते हैं, और आप देखिए बीएससी करने के बाद तो आप प्लस वन प्लस टू लेवल तक की साइंस भी इजिली पढ़ा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, क्योंकि आप अपनी जो मास्टर डिग्री है वो साथ साथ करते रहिए। बीएससी किया, आपने एमएससी किया, बीएड किया, वो ठीक है, बट क्या होता है कि जब आपने बीएससी कर ही लिया है तो एटलीस्ट प्राइवेट में इधर उधर आप कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, उसके बाद एक टाइम से गवर्नमेंट जॉब का भी स्कोप तो है ही, हमेशा ही रहा है कि मैंने आपको बताया था कि आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया है, चाहे बीए किया है, अगर आप एसएससी बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं, एसएससी बैंकिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये एक तरह की आपकी मास्टर डिग्री है। तो मतलब एक तरह से ये आपकी बैचलर जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट है। तो आप ऐसा नहीं, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बीएससी कर लेते हैं और बीएससी करने के बाद में वो एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, वो एग्जाम देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपके पास में है। एक चीज हो रहा है यहाँ पर कि बीएससी करना मतलब हार्ड वर्किंग काम है, ऐसा नहीं जैसे आप, जैसे आप लोग बीए करते हैं, बीए में आपने बहुत ही लाइट सब्जेक्ट आपने ले लिए, आपने हिस्ट्री ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, तो वो बहुत लाइट सब्जेक्ट है। बट अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी इजी नहीं है, आपको उसमें पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री फिजिक्स, एक बहुत काफी मेहनत वाला काम है। पर यह है कि एक बार साइंस में आपकी कमांड हो जाए तो कम से कम 12th लेवल तक के बच्चे को भी अगर आप एज ए कोचिंग भी पढ़ाना स्टार्ट करें तो भी आपकी काफी इनकम है। मतलब स्कोप हर चीज का है, थोड़ा सा इंटरेस्ट और पढ़ने की बात होती है। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी शहर में हो, हर शहर में आप देखेंगे कि साइंस के काफी टॉप टीचर्स होते हैं। आप उनके अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो उन्होंने बीएससी या एमएससी किया होता है, ठीक है। बट अगर आप उनके पास पढ़ने वाले बच्चों की लाइन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाखों में इनकम है उस। तो एक तरह से आप किसी भी फील्ड में जाइए, उसको तो अच्छे ढंग से करना, वही आपको एक अच्छे करियर की तरफ लेके जाता है। तो ये कहना हम बहुत बच्चों से सुनते हैं, कई बच्चे आप भी आपस में बात करते होंगे भी बीए बीएससी करना क्या करना, बट ऐसा नहीं है। अच्छे ढंग से की हुई हर चीज, एक अच्छी इंटेंशन से की हुई, हार्ड वर्क से की हुई का हमेशा स्कोप रहता है। मास्टर डिग्री कर सकते हैं, उसके बाद आप जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या एक तरह से कॉलेज कैडर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, वो मैंने आपको एक अलग से सेशन में पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपको उसके बाद नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, सीएसआईआर कंडक्ट कराती है, तो दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। तो ये सारे स्कोप आपके पास में है, ठीक है। और अगर आप इसके बाद भी आपको लगे भी कुछ नहीं करना, तो बेटे प्राइवेट स्कूल तो है ही अपना, प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा ही सकते हैं, बीएससी एमएससी करने के बाद में आपको जॉब लग जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बीएससी एमएससी के बेसिस पर वैकेंसीज आती हैं, लेबोरेटरीज में आप काम कर सकते हैं। तो ये एक मेडिकल साइंस का एक मोटा मोटा, ये मैंने आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताया। तो आप लास्ट में ये जरूर समझ सकते हैं कि बीएससी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं एसएससी बैंकिंग के थ्रू, तो आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे बीए आपने किया, चाहे आपने बीएससी किया, चाहे आपने बीकॉम किया, वो सब इक्विवेलेंट है। बट कुछ प्लेसेस पर टीचिंग में साइंस के टीचर की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। रीजन क्या है, क्योंकि साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आपकी साइंस में कमांड है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जॉब लग ही जाएगी। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं भी मिल पाई तो प्राइवेट सेक्टर में तो आप काम कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये एक मतलब ये सारा स्कोप जो है, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये स्कोप आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बीच में एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको। अब हम आपके एक एक करके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें साइंस फील्ड से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आपके मिले काफी। तो आई एक्सपेक्ट कि आपके जो दो क्वेश्चंस हैं आप अपने चैट बॉक्स के अंदर या वैसे आप पूछ सकते हैं।
1: सर, फार्मास्यूटिकल्स के गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में कितने बेनिफिट्स?
0: देखिए क्या होता है कि हर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसिस्ट की वैकेंसी आती है। पहली चीज, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, आप कभी चले जाइए, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मेसिस्ट होते हैं, हर पीजीआई में फार्मेसिस्ट होते हैं, तो उन सब की वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि देखिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 से 3 फार्मासिस्ट होंगे, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम क्या है कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो उनका काम होता है कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे आगे जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो जाके फार्मेसी से लेते हैं, तो ये एक जो मेन काम होता है फार्मासिस्ट का। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या पीजीआई में इन सब में काफी वैकेंसीज निकलती हैं, इनकी पहली चीज। सेकेंडली क्या होता है कि बीए आपने अगर बी फार्मेसी किया हुआ है तो इंडिया में जो ड्रग इंस्टीट्यूट है, मतलब कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो फार्मेसी के इंस्टीट्यूट है, जो ड्रग इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च की जाती है या क्लिनिकल रिसर्च की जाती है, तो वहां पर भी फार्मेसी की वैकेंसीज आती है। तो वहां भी आप एज ए फार्मेसिस्ट काम कर सकते हैं, या अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो फिर प्राइवेट सेक्टर में आप अपना एक तरह से यू कैन ओपन यूर ओन केमिस्ट जॉब ओपन कर सकते हैं या एमआर का वर्क कर सकते हैं. तो इस तरह से ये सारा स्कोप रहता है फार्मासिस्ट का. हम मनोज जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ यू वांट टू ओपन ए क्लिनिक इन रूरल एरिया, तो देखिए क्या होता है कि एमबीबीएस के अलावा आप बीएमएस बीएचएमएस कोई भी आपने डिग्री किया हुआ है तो आपने क्लिनिक ओपन कर सकते हैं उस चीज से रिलेटेड. ठीक है, जैसे अगर आपने बीएमएस किया हुआ है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक में किया हुआ है तो भी आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं. या उसका एक तरीका क्या रहता है कि मान लीजिए अगर आपने ये चीजें नहीं की हुई है तो फिर आप कोई भी डिप्लोमा कर लीजिए पैरामेडिकल कोर्स करके. देखिए ऑल्दो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद में क्लिनिक मतलब एक तरह से आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ठीक है, एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर क्या रहता है कि आपने पैरामेडिकल कोर्स कर लिया और आपको फील्ड की अच्छी नॉलेज है. राइट, तो आपने जैसे मान लीजिए एक्यूप्रेशर और एक टाइप से जो फिजियोथेरेपी में आपने किया हुआ है तो आपने उसके नाम से क्लिनिक ओपन किया, पर पेशेंट्स तो हर तरह के आएंगे आपके पास में. देखिए क्या होता है ना, जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो एंटाइटल्ड है, अपने नाम के नीचे स्पेसिफाई कर सकते हैं अब ये फील्ड के पेशेंट मेरे पास आएंगे. आपने कोई और कोर्स किया फिजियोथेरेपी का कोर्स किया, फिजियोथेरेपी की क्लिनिक ओपन करी और इनडायरेक्टली आप उस वहां पर एज ए क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं उसी के अंदर ही इनडायरेक्टली आप काम कर सकते हैं. आप देखेंगे बहुत केमिस्ट ऐसे हैं जो जो आपके डॉक्टर का काम है ना वो केमिस्ट्री कर देता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज बेटे आपको पेट में दर्द है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक तरीका तो क्या है कि आप पहले एक चाहिए एक, अगर आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास आएंगे तो पहले तो आपको 500 रुपए की आपकी पर्ची काटेगा, फिर आपकी बात पूछेगा आपसे, फिर आपको मेडिसिन देगा. ठीक है, और मैं आपको एंश्योर कर रहा हूं अगर कोई आपको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर आप किसी केमिस्ट के पास भी चले जाइए और केमिस्ट को बता दीजिए भी मुझे ये प्रॉब्लम है तो केमिस्ट अपने आप आपको वो मेडिसिन दे देगा. 99% चांसेस में जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है 500 रुपए लेने के बाद में वही मेडिसिन केमिस्ट आपको देगा 99% केसेस के अंदर. ठीक है, तो मतलब वो केमिस्ट क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली डॉक्टर का काम कर रहा है.
2: एएनएम करना हो तो प्लस वन या प्लस टू में साइंस जरूरी है या आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं फिर?
0: देखिए क्या रहता है कि एएनएम और जीएनएम के लिए तो साइंस जरूरी है, मतलब तो साइंस रहेगी आपकी एएनएम के कोर्स के लिए तो 12th में साइंस होना चाहिए आपके पास. इसमें मतलब 12th साइंस होना चाहिए इसमें. ओनली एमपीएसडब्ल्यू के अंदर साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये आपने अगर 10th किया हुआ है क्योंकि उसमें तो कोई स्ट्रीम नहीं होता है तो उसमें आप बिना किसी स्ट्रीम के आप कर सकते हैं एमपीएसडब्ल्यू. बाकी में काफी कोर्सेज में साइंस की रिक्वायरमेंट होती है आपकी.
2: जैसे सर प्राइवेट कॉलेज में करवाते हैं जैसे जो होते हैं ना आर्ट्स वाले उनको भी करवाते हैं.
0: जो जीएनएम का कोर्स है ना उसमें तो साइंस चाहिए, एएनएम में नहीं. देखो इसमें भी दो कोर्सेज आपके, एक आपका जीएनएम है और एक आपका एएनएम है. एएनएम में बिना साइंस के भी हो जाता है बट जो जीएनएम है वहां साइंस चाहिए आपको.
2: जी सर मैं एएनएम की बात कर रहा था.
0: हाँ जो एएनएम में हो जाएगा वो हो जाएगा बट तो ये मतलब क्या है ना कि जैसे जैसे आप इनडेप्थ जाएंगे ना तो अलग अलग आगे इनडेप्थ उसमें अलग अलग डिवीजन होता जाता है. ऐसी जो सीएमएस है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये देखिए ये जो सारी चीजें है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये प्राइमरी आपकी आईटी वर्क है. आईटी मतलब हम ये करें कि जो बैकएंड से आपकी वो रहती है सपोर्ट रहती है. ठीक है, उसमें तो आपके कोर्सेज होते हैं तो उसमें आप काम कर सकते हैं. उसमें जनरल आपने बीए बीकॉम किया हुआ है बीएससी किया हुआ है आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है या आपको एक तरह से आईटी से रिलेटेड आपकी बैकग्राउंड है तो ये काफी वैकेंसीज होती हैं. क्या ना देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि दो तरह की जॉब्स है प्राइवेट सेक्टर में. एक वो जॉब्स है जो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, और सेकंड जॉब्स है जो स्पेशलाइज्ड नहीं है. हाँ जो कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग स्टैंड फॉर सीएमएस एंड ईडी ईडी कोर्सेज. देखिए क्या रहता है ना, ये सब आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर ऑफ एरियाज आर देयर जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है. हम तो एक जनरली एमबीबीएस या नर्सिंग की बात करते हैं बट उसके अलावा भी कई तरह की वैकेंसी होती हैं. तो ये भी कोर्सेज होते हैं अलग अलग आपका, जैसे एक टाइप से जो असेंशियल ड्रग का कोर्स है तो उसमें उन्हीं फील्ड्स में जॉब मिल जाता है आपको. बट क्या है कि ना इनके स्कोप ज्यादा नहीं है. स्कोप मतलब कि वैकेंसीज कंपैरेटिवली कम होती हैं, ठीक है, वैकेंसीज कम होती हैं, तो इसलिए फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती और उतने फेमस कोर्सेज नहीं होते हैं। ये थोड़ा देखा जाता है, बाकी जॉब्स तो देखिए है ही, आप देखिए हर सेक्टर में अगर कोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ स्कोप भी है। एट द एंड हम एक बात कह सकते हैं भी, अगर भी कोर्स किया है ना, चाहे आपने कितना भी, चाहे आपने 6 महीने का या साल का भी किया है, तो उसका कहीं ना कहीं स्कोप है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल जाती है। डाइटिशियन का कोर्स आप कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड आपका है तो उसके बाद आप कर सकते हैं। तो वहां भी आप देखते हैं जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी हॉस्पिटल्स के अंदर डाइटिशियन की वैकेंसीज होती हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो मतलब हेल्थ का जो फील्ड है दैट इज ऑलवेज द ग्रे एरिया, हमेशा ही जॉब्स हैं इसके अंदर इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ। तो थोड़ा सा एक तरह से आगे बढ़ के काम करने वाली बात है, बाकी स्कोप है हेल्थ का हमेशा से। ठीक है, क्या है कि फार्मेसी करने के बाद में ना इंडस्ट्री में क्या रहता है कि थोड़ा सा जैसे आप MR की जॉब करते हैं या कोई भी टाइप की जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 15,000 से 20,000 रुपए मिल जाते हैं, बट इसमें धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। मतलब देखो थोड़ा टाइम लगता है, ये फील्ड्स वो नहीं है कि आपने आज ही आपने अपना फार्मेसी किया और पहले दिन ही आपको 1,00,000 रुपए की जॉब मिल गई, बट ये है कि आप देखेंगे 2-3 सालों के अंदर अंदर आप काफी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। हाँ, फार्मेसिस्ट आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ओपन कर सकते हैं। उसमें क्या है, देखिए आपने अगर बी फार्मेसी किया हुआ है उसके बाद एम फार्मा आपने किया हुआ है, देखिए क्या होता है ना कि जो बिजनेस मतलब आपने इंडस्ट्री ओपन करने में, तो आपने अगर बी फार्मेसी भी किया हुआ है तो बी फार्मेसी भी अपना एक तरह से फार्मेसी ओपन कर सकता है, जिसमें वो स्टार्टिंग में जो ड्रग्स मतलब हम ये कहें कि जो मेडिसिन होती है स्मॉल, जो आपकी मेडिसिन है जहाँ इन्वेस्टमेंट कम है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है, बट उसमें भी कॉम्पिटिशन है, आपको स्टार्टिंग में यू नीड सम इन्वेस्टमेंट इन दैट, आपको उससे जो एसोसिएटेड जो सॉल्ट परचेज करने रहते हैं, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो मतलब जो फार्मेसी में कुछ भी करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी बी फार्मेसी है। आपने एक बार बी फार्मेसी कर लिया तो आप ऑलमोस्ट फार्मेसी से रिलेटेड हर काम करने के लिए एंटाइटल है। तो टीचिंग का तो स्कोप ऑलमोस्ट हर फील्ड में है, जैसे आपने अगर बी फार्मेसी किया है एम फार्मा कर लो तो एम फार्मा करने के बाद में यू कैन बिकम द टीचर। आपने MBBS किया, आपने MD कर लिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो हर फील्ड में, क्योंकि कोई भी फील्ड है जहां कोर्सेज है तो उन कोर्सेज में पढ़ाने वाले टीचर भी चाहिए होंगे, तो उससे रिलेटेड जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है तो अपना उसमें एज ए करियर दे कैन मेक देयर करियर। देखिए 12th में अगर आर्ट्स आपके पास है और आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं ना, तो आप जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उनके बारे में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मतलब आप फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है, या इस तरह के जो है उनमें आपको, क्योंकि देखिए जो जनरली जैसे MBBS BMS BHMS वो तो सब 12th में आपके मेडिकल साइंस पर उसके बेसिस पर है। ठीक है, आप डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, उसमें कोई स्ट्रीम की फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो मतलब इन कोर्सेज में आप जा सकते हैं, बाकी जो कोर मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें तो आपको 12th में मेडिकल साइड होना चाहिए। बट उसके अलावा जैसे लैब टेक्नीशियन का कोर्स है वो आप कर सकते हैं, वहां पर आपको 12th में नहीं है। आप जो मैंने आपको MPSW के बारे में बताया था, जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो कोर्स आप कर सकते हैं, वहां पर आपको +1 +2 में स्ट्रीम का कोई वो नहीं है। तो ये थोड़ा और भी इन डिटेल आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी एक तो पहली देखो दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपको ये स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो मेडिकल साइंस जो है वो बहुत वाइड है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप थोड़ा ये देखिए जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, फिर उसमें आप थोड़ा एक्सप्लोर करके देखिए, क्योंकि काफी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो उसके उनको करने के बाद में आप अपना उस फील्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं।
3: ठीक है सर, मेरे ख्याल में और कोई क्वेरी नहीं है किसी का।
0: थैंक यू।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroot Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroot Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. तो सना और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही होती थी मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट्थ में ही थे, तो फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरेन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ था, जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ की मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको एक्सपेक्ट करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई. और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने, वो मुझे लेकर जाते थे. शादी के 3 महीने बाद ही जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते थे. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे ट्वेल्थ भी करना है, तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न आफ्टर टेन, बट मी दैट अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करना है, फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी डॉटर भी, फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड कराना पड़ा, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 twins के साथ. इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 12th हुआ. उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने MA किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अ लॉट. इंटर के बाद MA का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि अब क्या करना है. तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई नीड कि मुझे बाहर जाना चाहिए. घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई एम मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ. देन आई स्टार्टेड मैंने अपनी सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ. उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे. तो आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं. फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर. इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी. जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की. रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए. सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचर उनके साथ कुछ है अट्रैक्शन, क्योंकि वो मेरी क्लास है. तो इस तरह से चलता रहा. फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई. स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे. मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी. तब जब सेकेंड टाइम में गीता मैम और नाइट सर आए तब हम घर पे थे, इट वॉज डिसम्बर. तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैंने शिव लाइक मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के वीमेंस रिलीज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं. तो एट द टाइम मतलब मुझे आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है, जो ऐसा काम करते हैं. बिकॉज एक इमेज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इमेज थी. आप न्यूज़ देखते हो, आप आसपास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम है एनजीओ. मतलब दैट वॉज एन इमेज. अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की. आई वॉज लाइक दैट. मतलब आज शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए. तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठकर, मैम हम मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोची थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है. देन मैम हमारा गुसाईगंज का भी सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था हमारे सेंटर के सीमा पर. तो मैम ने बोला कि आप आइए, आप देखिए सेंटर हमारा क्या है. फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है. मैम का सेंटर कहता है वाले को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज दैट. जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, इट वॉज लाइक मतलब मैं देख रही थी ये स्कूल है कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं. मतलब लाइब्रेरी वॉज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी. जैसे लाइब्रेरीज होती हैं हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है. और आई वॉज लाइक यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है. मीन्स ये सारी चीज़ें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है. तो आई वॉज लाइक कि मतलब मैंने बहुत अच्छे से
3: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए. बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम, तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज के, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं. क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना.
2: तो गोसाईगंज बाराबंकी जो सेंटर है यूपी में है, गोसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है. इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश, यूपी सिटी है लखनऊ, विच इज वेरी वेल नोन बाई एवरीबडी. लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट

0: मेरे सेंटर आता है बाराबंकी सेंटर, जो बड़ा गांव में जिस पे अभी हम वर्क कर रहे करेंगे, और गुसाईगंज सेंटर अप्रोच में है, वो अदर रूट पर है, वो लखनऊ से अप्रॉक्स 20 किलो 20 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये बड़ा गांव सेंटर है जिसके पिक्चर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। ये वो सेंटर है, ये पूरी लोकेशन है सेंटर की। तो
1: जी
0: इस तरह से फिर हम जब बस्तिया गए, बस्तिया बस्तिया में मैंने देखा सारी चीजें, फिर मैंने वहां के लोगों से बात करना शुरू की कि ये सेंटर के बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो यहाँ आया है तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे ही सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम, यहाँ पे सब गए थे बताने सेंटर के बारे में, हम लोगों को बताया गया सेंटर खुलने वाला है, तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने। तो गोसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो मतलब प्रॉपर विलेज है, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहां उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं, ये बेस्ट है जो बड़ा गाँव में होने वाला है, इट विल चेंज बड़ा गाँव, इट विल गिव अ ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ा गाँव। सो वी वर लाइक ओके, मतलब ये एनिमल वाज सो सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है। तो वेरी से जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है। दैट वाज सो मतलब एक बार वो फ्रेंड पहले सोच तो लो, मैंने कहा नहीं मुझे अब यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मगर मुझे करना है ये।
1: हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही हैं,
0: बराबर
1: जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं। जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है। ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है, करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई। तो सना हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप। सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया, जिस तरह का माहौल जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है। सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
0: यस मैम, मैम बीइंग इन अ कम्युनिटी, इन अ मुस्लिम कम्युनिटी इज वेरी टफ टू कम आउट ऑफ द हाउस, मतलब हमारे यहाँ का तो कल्चर नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं, बट एजुकेशन चेंजेस एवरीथिंग, आई बिलीव इन दैट। और ये क्योंकि जो लोग इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा जानते हैं, जिसे ना इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहती है तो करने देते हैं, और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है, अगर कोई कुछ बोलता भी है कुछ रोक भी रहा है तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और वही हुआ मैम, 2 बार 3 बार सबने ऑब्जेक्शन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम। और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीख जाते हैं उनसे, कैसे वो बच्चे के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, कैसे वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती है, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है। तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत और फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं, ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेल इंडिया की वजह पे। रेल इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन है।
1: ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो कैसी बहुत बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल हैं जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग होंगे. So that is what I wanted to bring to the audiences. Special mention to you and your family for this initiative जो आपने life changing अपने लिए और अपनी community के लिए लिया है, कि एक second नहीं लगाया और आपने कहा कि मैं अपना job resign कर रही हूँ और मैं रीड के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ. So we congratulate you for this effort and we want to know more about your center now. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
0: मैम, कैलेसेंस जो हमारा प्रोजेक्ट है तो दिस इज बेसिकली फॉर मेन पावर के, हम मेन पावर को भी टारगेट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं. तो मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मेन फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मेंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है, तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ. तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग में, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे. अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं. सो जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता. तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस. हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़े. बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा. और मैं क्योंकि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है, तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग. तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग ही करती है और मिंट फार्मर्स ही हैं. तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं. उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग्स लेना स्टार्ट किया, हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं. तो वो कहती हैं मैडम हमारे पास हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं. तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिल्क का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर, बट आप जब भेज सकते हैं जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपकी लाइफ टाइम के लिए है. एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है. लोगों को गांव से के घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे. तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लग रहे थे, क्योंकि आप पूरे गाँव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा, बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी पेरेंट्स हैं और वो हर वुमेन एक अलग फैमिली से आ रही है. तो कहते हैं ना अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई. तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ, कि मैम बच्चों को अकेला तो नहीं भेजेंगे. हमने कहा तो आप आइए, आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है, आप आइए, आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए, आपके हस्बैंड आएंगे, हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाएंगे. इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था, तो हम उसको संभाल पाते. इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी नहीं कैसे संभालेंगे. फिर ये हो चीज़ होती रही. फिर हमारे यहाँ मैम एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं, फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटी स्टार्ट करी। हम लोग कम्युनिटी में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे। उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपनी मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते। उसमें क्या होता था, गेम खेलना स्टार्ट किया, आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे। फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स स्पीकर्स लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहां पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना। मैम वहां पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है। हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी, तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से। फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज थोड़ी सी बीच में रह गई, बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ब्रेल्स मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें। एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें, अब वो नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सकें।
1: अभी हम ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, हमने टाई अप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें। वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना। आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड। थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया है?
0: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशंस हमारे यहाँ अप्रैल से जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर निधि लाठी जो हमारी हेल्थ कंसल्टेंट है उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे। सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे अपने फोन में हम लोगों को, और वो जाकर अपने मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था कि ये उनको बताते थे बच्चों को ये डॉक्टर है, स्पेशली आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए सेशन लेने आए हैं। तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिशियरी हो जाते थे। मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, उनकी मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर। मैम ने 2-3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी और मैम के सेशन से काफी बच्चे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आपके टाइम मत खाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट होगी। मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी क्वेरीज उनकी, मैम सारी चीज़ें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी। तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पे।
1: थैंक यू सना। जब हम आपके सेंटर पे आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पे चल रहा था, चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया? बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
0: तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने तो ये बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि अभी जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी एडिट है, फॉरन इंडिया देखेगा वो हम देखेंगे कि हमें कैसे अलाउड करता है, आप पहले काम सीखो। तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि ये ही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सीविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते। आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए, आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीखकर आप कहीं पर काम करने लग जाओ, या चिकन मकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ नाम अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मीन चाहे हमारे कैल्सन्स के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी हम सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते थे, और वो उन्हें और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाई भी करते थे उस चीज़ को। मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाई करते थे, तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी ये मैंने इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी। मैम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख ले हम सीखेंगे इसको।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम कर रहे हैं, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
0: श्योर मैम। मैम चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं। मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं। मैम उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से एक साल पहले। मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी, और जब उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया मैम उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है, बिकॉज ही सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज़ थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे रीजन के लिए जॉब नहीं मिलनी चाहिए, एंड दैट थॉट चेंज माई माइंड कि नहीं शी इज राइट, उनमें स्किल है। मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मैम ये पहनेंगे, मैम इतनी बड़ी हम 2 कुर्ते देते, सॉरी एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो हम शी वाज लाइक कि ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे लिए कुर्ते पहनेंगे। मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे, तो हम शी वाज लाइक मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कुर्ता खुश थी। फिर मैम उन्होंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तक की जॉब की, कोविड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर 1 साल जॉब किया, एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं एक बेटा है, मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। दिस मैम हमारे यहाँ एक सेकेंड स्टोरी है, एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम उसके वो यहाँ पर सीविंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीविंग का कोर्स, मैम उसने बेसिक सीविंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीविंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश नहीं आते। मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है, देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा, उसके बाद बोलते कि मैम मुझे मेरे पास पैसे नहीं है मुझे मशीन खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो, तो बोलते मैम आप वापस ले लेंगी, मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जो पहले मशीन खरीद लो, फिर दूसरे मैं बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है, एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं पूरे गांव के, मैम वो कपड़े बनाती है, एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है अभी जल्दी एफआईआर हो गए, तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन। तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि रीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि रीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है मैम, ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम ये कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ, कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को, मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है,
1: ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में, कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई,
0: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था। पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप से खत्म हो गए, जो जो हालत मैम, जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं, इसको बेचेंगे नहीं। हम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था। अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था। और मैम कोविड खत्म हुआ, फिर दूसरा वेव आया, सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया। उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे, यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट जारी हो गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम, जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया। और एक बार ही हो गया, दो बार के मैम कॉन्टिन्यू से 15 15 दिन बारिश हुई है, 20 दिन बारिश हुई है। ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम हम लोग जानते हैं, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए।
1: वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट। इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके, उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए। तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज़ कर रहे हों।
0: यस मैम, मेरे पास
1: जी
0: मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो, उन कुत्तों पे हम उनका स्टॉक करेंगे, फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, तो एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो, शायद तुम्हें कल काम आए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो मैम ये सब चीजें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना जरूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए, आप इन्हें भी सिखाइए।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वो ही कपड़ों को हम भी इनकरेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती है कि जिस सेंटर पे जाए वो जरूर वहां से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि ये जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है, रीड का जो नेटवर्क है, उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं, चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज पास दिस मैसेज टू योर टीम ऑल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफी जो है मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू कॉल आवर कोर मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा, बिकॉज उन्हीं की ये विजन है जिसको हम सब मिलके आगे लेके जा रहे हैं। सो I welcome ma'am to the show. Good evening ma'am. We have Sana from Barabanki today.
2: Yeah. I have been listening the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Barabanki.

0: because mint is a seasonal crop, right? And I would like to know from you that how many mint farming communities you reached through your interventions and how many have been benefited from that.
1: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages, and they have maximum population of mint farmers there. So, ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center. They are connected. They are coming to the center. They have learned the skills, and they have moved out. Ma'am, there are many children in mint. I remember one boy was there. His name was Ram, I think. So he was from in farming communities and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, "Ma'am, I have passed out my 12th. Now what should I do?" So I asked him to learn computers because you're a boy, you can learn computer and do something, and you can search for a job also. But not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, "Ma'am, should I do graduation?" So I said, "Yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here, take the books, use the library." Because, and when he came to the library, he was like, "Ma'am, इतनी सारी किताबें हैं यहाँ पर, मैम आप ये भी किताब है, मैम ये भी बुक है, मैम अगर मैं कुछ मंगाऊँ तो मिल जाएगा?" आई वाज लाइक, "यस प्लीज, आप ऑर्डर दीजिए, हम मैम को लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैम मुझे सारी बुक प्रोवाइड करवा दीजिए, मैम हमारे डिमांड्स पर सारी बुक इंडिया में देता है, हेड ऑफिस तुरंत अप्रूव करता है बुक्स की जब भी डिमांड जाती है, आप प्लीज मुझे बताइए आपको कौन सी बुक्स चाहिए." तो मैम ही डिमांडेड, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, फिर बुक के लिए हमने डाला था, फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास. And then he was sitting in the library for 3 to 4 hours regularly. And after that, I'm, you won't believe, he was in second year only, and he got the job in Lucknow in Fun Mall, and he's earning 15,000 to 18,000 per month right now. And he was like, he came with to me with a box, with a sweet box, and he was like, "Ma'am, ये सब आपकी वजह से हुआ." मैंने कहा, "ये मैंने नहीं कहा, ये इंडिया ने कहा, please say thanks to you." Ma'am, these are the stories which inspire me a lot.
0: No, Sana, this is your contribution. Teed India is just a facilitator because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know कि बड़ा गांव में तो बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे, तो आसपास के कितने और गांव हैं जिससे कम्युनिटी इतनी दूर दूर से चलकर आती है आपके सेंटर पे, और कोई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जहां तक मुझे नॉलेज है. So I would also like to listen back to revive my memories about that.
1: Yes, ma'am. Today only I visited one place, Hasnapur, ma'am, and that, ma'am, I was tired by going by car, but ma'am, the children, the girls from that village is coming to the center on bicycles. मैम आई वॉज सो शॉक कि मैम आज मैं सोच रही थी कि वो जब बच्चे आएंगे तो मैंने पूछूंगी कि आप 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते हो सिर्फ सेंटर के लिए. तो अभी तो वो आए भी नहीं, बारिश होने लगी, बट मैम इतने ऐसे ऐसे विलेजेस है, दिस इज द लेटेस्ट डिस्टेंस मैं टेलिंग यू, कि ये 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, मैम 25 to 30 किलोमीटर बहुत टफ है साइकिल चलाकर सेंटर तक आ पाना. एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, मैम इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं, और मैम वो आके बस इतना ही कहती है, "मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें." तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में इंटरटेन करते, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं.
0: सना, ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं, और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती है इकट्ठी, तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज you motivate them for continuing their education and they find this space safe, protected. Support itna milta hai, books unko yahan se milti hain, knowledge support milta hai, aap unke issues resolve karti hain. To yahi ek community library ka jo services hain, you are providing more than what is needed actually. So that is highly appreciated. Main और भी, मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप

0: कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना और फिर उनको टाइम भी देना। और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, दे कम टू यूपी क्वाइट ऑफन बिफोर कोविड। तो आप कैसे अपना दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते हैं?
1: मैम, समटाइम्स तो वी हैव द इन्फॉर्मेशन दैट दे आर कमिंग एंड समटाइम्स दे कम लाइक दिस ओनली. तो बिकॉज मैम आई एम वेरी पंक्चुअल, मैं हमें मैम आई एम रेगुलर इन द ऑफिस बिकॉज आई डोंट लाइक टेकिंग लीव्स एट ऑल एंड आई डोंट अलाउ द स्टाफ ऑल्सो टू टेक लीव्स अननेसेसरली. सो दिस इज द थिंग दैट वेन दे कम विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वी ऑल आर हियर, वी ऑल आर प्रेजेंट इन द सेंटर. सो वी नो दैट कि अभी वो आए हैं तो आई हैव टू गिव माई एटलीस्ट दे टेक माई 1 आवर. सो आई हैव टू स्टॉप ऑल द चिल्ड्रेन कि आप लोग लाइब्रेरी में जाके बैठिए, अभी मैं कोई सेशन नहीं लूंगी, अभी मैं इन लोगों के साथ बात कर रही हूँ. फिर मैम उनके साथ पूरा उनको एक्सप्लेन करना पूरे सेंटर के बारे में, कैसे हम काम करते हैं. मैम दे आस्क सो मच अबाउट एवरीथिंग अबाउट इन इंडिया अबाउट बिकॉज दे आर नॉट द डोनर्स एग्जैक्टली बिकॉज दे आर कमिंग विद द डोनर्स. सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो. सो दे डोंट नो वॉट इज इन इंडिया. सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रीड, अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द चिल्ड्रन कमिंग टू द सेंटर, वॉट सर्विसेज वी आर गिविंग एट द सेंटर, वॉट आर द फेसिलिटीज दैट आर बींग ऑफर टू द स्टूडेंट्स इन रीड इंडिया. सो दिस इज दिस हैपन्स एवरी टाइम एंड वेरी फ्रीक्वेंट इन बड़ागांव सेंटर. तो लास्ट ईयर लाइक पेंडेमिक से तो अभी तक सिर्फ 2 ही विजिट हुई है, बट 2018 एंड 19 वॉज फुल ऑफ विजिटर्स. एवरी मंथ देयर इज समबडी हैज टू कम टू द सेंटर एंड वी समटाइम्स फील लाइक सरप्राइज दैट दे आर सेइंग विजिटिंग ओवर हियर इन द ऑफिस एंड वी सी समबडी मूविंग इनसाइड द ऑफिस एंड आई वाज लाइक गुड आफ्टरनून सर. तुम आप काम कर रहे हो तो एकदम डिस्टर्ब माइंड में एंड एवरीबडी कोई आगे सामने से खड़ा हो जाता है. लाइक आई टेक 2 मिनट टू थिंक दैट हु आर देयर इज लाइक कभी कभी चेहरा ही नहीं याद आता कि कौन है ये. So it happens sometimes with me.
0: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you inspire them to come to the center regularly, right? So these
1: Yes,
0: two
1: ma'am.
0: things go parallel, right?
1: Exactly, ma'am. Ma'am, I
0: एक और
1: remember one
0: जो
1: story.
0: या प्लीज प्लीज कंटिन्यू।
1: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. So she was coming from like 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there was continuously उसको परेशान करने जा रहा था मॉर्निंग में आने के टाइम पे, मॉर्निंग शाम को जाने के टाइम पे. तो मैम शी कंप्लेन 2-3 टाइम्स टू मी कि मैम मैं नहीं आऊंगी सेंटर, मैम मुझे नहीं सिखाना बिकॉज अभी घर में पता चल जाएगा तो फिर मैम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए. एंड शी वॉज अ ट्रेनर तो इवन दैट शी वॉज अ स्टूडेंट ऑल्सो देन आई हैड टू टेक केयर ऑफ इट. तो मैम हमारे पास एक प्रेरक था हमारा जो हमारे लिए कम्युनिटी में जाकर सेशन लेता था. आई आंसर आई टोल्ड कि अभी घर पे कुछ मत बोलो. देन आई आई हैव टोल्ड दीपक आप जाओ आज मैम को लेके घर बाइक से और आप देखो कि मैम को कौन परेशान कर रहा है. फिर मैम उन्होंने वो जाके घर पे छोड़ के आया, फिर उसने मुझे आकर बताया कि मैम ये है. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक बार को कि आप जाइए आप इनके घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं. मैम एक बार हिमसेल्फ वेंट टू वेंट देयर और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गाँव में बहुत आते हैं क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है, आसपास बहुत सारे फार्म होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ इधर उधर से कवर होते. तो हम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
0: Major of the population in Barabanki and Vadagam are Muslim population, right? And many girls come from these families to your center. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the Reed Center and establish themselves, then they'll get married?
1: Yes, ma'am. And there was one girl. She was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me कि मैम मैंने तो पहले अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि आप शादी तो मेरी कर रहे हो, बट मैं जब तक अपना अपना एडवांस टीचिंग का कोर्स सेंटर से मेरा पूरा भी हो जाएगा तब तक मैं सिखा नहीं चाहूंगी, मुझे नहीं जाना वहाँ. तो मैम शी वॉज लाइक शी स्टेड हियर फॉर 6 मंथ, शी लर्न कम्प्लीटेड हर कोर्स एंड देन शी वेंट बैक. मुस्लिम कम्युनिटीज में तो स्पेशली जैसे बच्चे 10th 12th में लड़कियाँ आ जाती हैं, पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर मैरिज. बट मैम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैज ऑल्सो कम हियर बड़ागांव. आई हैव ऑल्सो अर्लियर डिस्कस दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं देन दे गेट मैरिड. यहाँ पर भी मैम लोगों का काफी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. जितने मेरे कम्युनिटी विजिट्स, जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए, देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है, आपको ये स्किल्स सीख रहे हो वो भी बाद में आता है, बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18-19 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए. मतलब 20 इज वेरी यंग इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन, 20 इज ऑल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड. सो दिस हैपेंस एवरी टाइम दैट वी हैव टू काउंसिल द पेरेंट्स, वी हैव टू काउंसिल द गर्ल्स एंड दे कम एंड दे यू नो दे डिस्कस विद मी एवरीथिंग, स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटीज.
0: Very nice, very nice. It's very satisfying to know all these things, because it's not only about Muslim community or a Hindu community. The jo hamare regulations bane hue hain ki mentally, physically, socially, the girl should be prepared to get married, only then she should get married. Aur jo the component jo bhi add ho raha hai ki she should be economically independent also, because COVID has taught us many things to do. Independent and be ready to support the family when any emergencies come in the family. So wo bhi hamare center ki taraf se aap hamesha unko karne karti rehti hain. Sana, abhi hum jo future planning ki baat kar rahe hain, hum baat kar rahe hain ki hum satellites bhi bana denge, right? Aur jab hum satellites banayenge, kyunki hame nahi pata third wave aayegi ya nahi aayegi. और बाई चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं, शायद वो ना आ पाए, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कम्प्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए, तो हम कब तक ये सैटेलाइट्स बना देंगे सना?
1: Yes, ma'am. I would like to say that, ma'am, if we are going for the sub-centers or satellites, we should make that satellites for a time period, like 6 months for year or 1 year for at one place. Then we move in other direction, in the other village. Like if it Baragao is the center, then it has it in its stages. There are many villages, so we should rotate from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefited from the center, because it will be moving, like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, it will be a very, very good option if we are going with them and we are partnering with them, because that will make an image of Free India more powerful and more accessible to people, because they will know what Feed India is and what facilities what we are giving to the children everywhere.
0: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching, and we can do much more whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders. That I'm sure under your guidance and commitment, what you're showing to Read India from the past 3 years. And we will also do the impact studies and collect the stories what you are sharing on this platform.
1: Sure.
0: So that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having the brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
2: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. So, Sana, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद योर चिल्ड्रन, कैसे आपके बच्चे, आई नो यू हैव 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, सो इतनी स्ट्रांग मदर को, इतनी स्ट्रांग फैमिली को देख के how they are feeling, especially both of your girl, the twins, the beautiful twins that you have. Anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, you know, REIT initiative being in your village and you being an inspiring person in your own community.
1: Yes, ma'am. During the last year, if you talk about COVID only, and they were like, kuch karne ke liye nahi hai, mamma, kya karenge? So, maine bola, kuch nahi. Jab center khul raha, aap center mein aake batho. Ab bachche aate hai, aap unko padhao. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा, बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो कि जो क्या है दैट वर्ल्ड. सारे छोटे बच्चों को अभी तक दे वर टेकिंग द क्लासेस देयर एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर लाइक, मैम आप मैं पढ़ाई दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए, तो आई एम लाइक ओके जाओ पढ़ा दो आप. सो इट हैपेंड मैम, यस मैम, आई एम, it helps them. Every child, you know, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Geeta ma'am, from everybody. So you know, the learning is never ends. I believe that.
2: And aapke parents ko kaisa lagta hai aaj wo Sana hai jo shayad kahin pe apni education bhi complete nahi kar pa rahi thi aur aaj wo logo tak education ko pahuncha rahi hai.
1: Ma'am, actually, my parents are separated. That was the reason I got married earlier. So, ma'am, Papa ke saath such a connection hi nahi hai. But my mother feels very proud of her because the three of us are very, you know, active. And my other sister, you know, the sister who's living in Hong Kong also, she is also working for an NGO only. And very she's working nice. From past 7 years. So, we both are very social and we help each other a lot in everything.
2: Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
1: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want to get married early, maybe any because of any reason, aapko ye chahiye ki aap give up mat karo. Kisi bhi life stage par, just don't give up and keep learning. That will help you for your entire life. Nothing much.
2: On those inspiring lines, if there's nothing else, then we can, you know, close this session for today. Thank you so much, Sana, for sharing your such a beautiful and inspiring journey. Thank you, Geeta ma'am, for constantly mentoring us. And thanks to Shushank for moderating the session. We wish you all the very best, Sana. Hopefully, you reach all the communities. और जो आपकी सैटेलाइट सेंटर्स हैं वो भी उतने ही सक्सेसफुल हों जितना आपका प्रेजेंट सेंटर है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी थैंक आवर व्यूअर्स आल्सो फॉर पेशेंटली ड्यूरिंग आवर प्रोग्राम. वी कैन एंड द सेशन, वी विल जॉइन यू अगेन ऑन फ्राइडे विद अनदर एक्साइटिंग प्रोग्राम ऑन कल्चर नॉलेज.

0: आज जो मैं आप लोगों के साथ सेशन लूंगा वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का। तो आई थिंक ये मॉड्यूल जो है आप सबके पास ऑलरेडी है, एंड इसी से हम स्टार्ट करेंगे। एंड टोटल 10 सेशन हम लेंगे। आज इसका फर्स्ट सेशन है, एंड प्लीज़ इसको इंटरेक्टिव बनाइएगा। क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं भी पूछूंगा, और अगर कोई आंसर नहीं करेगा तो फिर मैं किसी को भी पूछ बोल दूंगा अनम्यूट करके बोलने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज बिजनेस मीन्स टू यू। बिजनेस का मतलब क्या होता है? आप लोग एक सिंपल हिंदी में या जैसे भी लेमन टर्म्स में क्या बोलोगे? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है धंधा, यही कहते हैं ना,
1: हाँ सर, बिजनेस का मतलब धंधा व्यापार।
0: व्यापार करना, धंधा करना। तो उसमें इसका इसका ये होता है, या तो आप कोई चीज खुद बना रहे हो, खुद बना के उसको एंड यूजर तक बेच रहे हो, जितनी आपकी लागत लगी है उससे थोड़ा सा ऊपर मार्जिन रख के आप उसको बेचते हो, जिससे आपको एक मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कोई चीज ऑलरेडी जो बना हुआ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है उसको आप कहीं से खरीद रहे हो, होलसेल पे खरीद रहे हो, क्योंकि आप जब एक बल्क क्वांटिटी खरीदोगे तो वो आपको कम रेटों में मिलती है, और फिर उस चीज को आप रिटेल करते हो, मार्केट करते हो और एंड यूजर तक पहुंचाते हो। जो एंड यूजर मतलब जो लोग होते हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ आ गई आप लोगों सबको या नहीं आई?
2: यस सर,
0: इजी इजी लैंग्वेज थी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को?
2: नो सर।
0: चलो अब इसको पढ़ भी लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है इसमें भी, कि एक एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी जिसमें हम या तो कोई गुड है या कोई सामान है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है जिसको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कहीं से उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा रेट बढ़ा के बाहर बेचते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी जैसे दिवाली का टाइम चल रहा है, तो या तो आप क्या करोगे, दिए सारे जो दिए हैं अगर आप मार्केट में बेचोगे, या तो आप उसको खुद बनाओगे, खुद बना के मोम लगा के उसमें बत्ती ऐड करके वो आपका खुद का बना हुआ हो गया, आपने खुद प्रोड्यूस करा है उसको और फिर उसको आप मार्केट कर रहे हो। या फिर आप क्या करोगे, किसी से ऑलरेडी दिए जहाँ पे बने हुए हैं उस दिए को आप उठाओगे, बहुत बल्क क्वांटिटी में उठाओगे, कम रेट। जब आप ऑब्वियसली बल्क क्वांटिटी में लोगे तो क्या होगा, आपको रेट कम मिलेगा, कम आप सस्ते में खरीद लोगे, और उसको जब आप सस्ते में खरीदोगे उसको बाहर आप मार्केट करोगे तो क्या होगा, उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है, जो कम्युनिटी में हम जैसे हम काम करते हैं, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है उसके लिए आपको बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपको एक कंपनी ही फॉर्म करनी पड़ेगी या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी या एक पार्टनरशिप किसी के साथ करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। जो आपको अगर आप एक कंपनी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या पार्टनरशिप के साथ करते हैं तो ये अच्छी चीज है, इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। एक आपको लीगल एड मिल जाती है, आप लोन ले सकते हो, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो आपको जो लागत लगानी है वो भी आप लोगों का डिवाइड हो जाता है, तो ये अच्छी चीज है। बट ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि अगर आप जिस स्तर पे काम कर रहे हो उस स्तर पे आपको इन चीजों को करने की जरूरत है। आप एक सोल प्रोपराइटर जैसे होता है अपना, अलग से अपने आप भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाओगे, धीरे धीरे आपका काम चलने लगेगा, मार्केट होने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, तो आप इसको एक चैनलाइज वे में, इसको एक पूरा फ्रेमवर्क देके कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप इसको चला सकते हो। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है?
1: नो
0: अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना कष्ट अगर आपको लग रहा है अनम्यूट करने में तो आप प्लीज चैट में भी लिख सकते हो।
1: अभी जो आपने समझाया एकदम मतलब आसान भाषा में तो सबको क्लियर हो गया। मतलब
0: अच्छा, थैंक यू।
3: जी
0: अच्छा
3: पहचान
0: जी,
3: जी नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते।
3: वैसे आपके जो समझाने का तरीका बिल्कुल ठीक है सर और सरल भाषा में है, तो अगर लगेगा कहीं समझ में नहीं आएगी तो हम आपसे बात कर लेंगे।
0: ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो आप चैट बॉक्स में लिख देना यस, जब भी मैं कुछ
3: बिल्कुल
0: पूछूंगा तो।
3: बिल्कुल सर।
0: ठीक है, अच्छा, इसमें एक एक एक लाइन और ऐड हुई हुई है, इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। तो इस लाइन का भी वही मतलब है जो मैंने अभी तक वो समझाया, अल्टीमेटली जो आदमी बिजनेस कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसको प्रॉफिट कमाना है, तो इसीलिए उसमें एक लाइन ऐड हुई है कि इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। कोई भी चीज आप खरीद रहे हो या बना रहे हो, उसकी लागत निकाल के उसके ऊपर की जो कमाई है वो आपकी प्रॉफिट होती है, जिससे आप अपना घर चलाते हो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस किस प्रकार के बिजनेस होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी तक आप लोगों के सब सबने यही बोला है कि ये होता है बिजनेस, उसके बारे में आप लोगों को पता लग गया है, तो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस तरीके के बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है सर्विस बिजनेस, एज द नेम सजेस्ट, जो नाम ऑलरेडी इसमें लिखा है सर्विस बिजनेस, उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इट इज अ बिजनेस वेयर प्रोडक्ट हैव नो फिजिकल फॉर्म एंड दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। ये वो बिजनेस है जिसमें आप कोई चीज या कोई सामान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कुछ उसमें बना नहीं रहे हो और बना के बेच नहीं रहे हो, ना कि कोई चीज आप किसी से होलसेल में खरीद के सामान और आगे बेच रहे हो, ये प्योरली एक सर्विस का बिजनेस है। एक आपको बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अब मुझे, चलो अगर ये मुश्किल होगा तो मैं चेंज भी कर दूंगा। अभी फिलहाल क्या है, कुछ लोग जैसे फ्रिज होता है या एसी होता है, लोगों के लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं लोगों के, तो जब आप नया नया कोई टीवी खरीदते हो तो 1 साल के बाद जब उसकी वारंटी एक्सपायर हो जाती है तो कंपनी आपको फोन करती है कि सर हमसे एएमसी ले लो। एएमसी क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको वो बार बार फ्रिज नहीं दे रहा है, लेकिन आपको वो कुछ पैसे लेते हैं कि भाई हमारे साल के 1,000 रुपए हैं, आप 1,000 रुपए हमें दो, और इस दौरान, इस पूरे 1 साल के दौरान आपके फ्रिज में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो हम आपको फ्री में फ्रिज या एसी या टीवी वो सब आपको ठीक करके देंगे। होता है कुछ लोग हैं ऐसे जो एग्री करेंगे इस चीज के लिए, एएमसी पता है। इवन ये मशीन में भी होता है, जो आप सिलाई मशीन जो हम सेंट्रो पे यूज करते हैं, कंपनी जो होती है वो आपको ऐसा एक वो बोलती है कि आप हमें मशीनों के इतने पैसे दे दो साल में, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी 500-1,000 रुपए, और इस पूरे 1 साल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी मशीनों में तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको ठीक करके देंगे। आप प्लीज कुछ, कोई अनम्यूट करके बताएगा, ऐसा कुछ है?
3: इसमें सर एडवांस जमा का तो नहीं करवाया, बाकी जैसे फ्रिज की सर्विस करवानी है तो उनको फोन करके और वो घर पे सर्विस करके तो
0: हाँ,
3: जाती है। ये तो 2-4 बार मैंने भी बुलवाया टीवी का और फ्रिज के लिए, तो वो जो सर्विस की बात है ना, तो वो मतलब अपन ने कॉल किया उनको और वो अपने घर पे आके और जो भी उनको
0: राइट,
3: पे कर देती हैं
0: चलिए
3: एडवांस
0: ठीक है।
3: वाला। जी
0: हाँ, वही वही मैंने आपको बोला कि शायद ये गांव के स्तर पे इतना नोन नहीं होगा, तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे आप एसी लेते हो, मान लो एसी या फ्रिज ले सकते हो, तो उसके बाद आपको
3: बिल्कुल
0: कुछ सर्विस दी जाती है। अगर एसी का सीजन खत्म हो गया तो वो ठंड के टाइम या गर्मी के टाइम पे जब दोबारा हमें स्टार्ट करना होता है तो वो दोबारा आके उसकी सर्विस करते हैं। तो शुरू में कुछ सर्विस क्या रहती है, फ्री रहती है। उसके बाद क्या है, एसी आपका सेम है, लेकिन 1 साल बाद भी जब आप उसकी सर्विस कराते हो तो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और आपको वो सर्विस देते हैं कि आपके फ्रिज को, ये एसी या फ्रिज को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसको दोबारा से बढ़िया से वो चालू करके देते हैं कि दोबारा से वो काम करने लग जाए। ऐसा तो सबने करा होगा ना।
3: जी हाँ
2: जी सर
0: इसमें देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, रिपेयर शॉप, स्कूल, बैंक और रेस्टोरेंट। तो इवन ये रिपेयर शॉप का वही हो गया, मान लो चलो कोई चीज आपकी खराब हो गई तो उसके लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ आपको वो, आप पैसे दे रहे हो तो आपको कुछ वो सामान नहीं दे रहा, लेकिन आपको सर्विस दे रहा है। मान लो आपकी बाइक ही खराब हो गई, स्कूटी खराब हो गई, साइकिल खराब हो गई, तो वो क्या कर रहा है उसमें, उस चीज को वो आपको सर्विस दे रहा है, आपकी बाइक ठीक करके दे रहा है। ये हो गया, इसमें समझ आ गया सबको? ठीक
2: यस
0: है,
2: सर
0: ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। इसमें क्या लिखा है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो इसके बारे में पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बारे में हम प्लेन करेंगे अच्छे से। इट इज अ बिजनेस विच बाइज प्रोडक्ट एट अ होलसेल प्राइस एंड सेल इट एट रिटेल प्राइस, इट इज कॉल्ड एज बाय एंड सेल अ बिजनेस। तो जैसे हम जब बिजनेस को डिफाइन कर रहे थे स्टार्टिंग में, तभी हमने शायद इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी, तो थोड़ा सा हम इसको इन डिटेल फिर से बात कर लेते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है कि आप सामान जो उठाते हो वो बल्क में उठाते हो, किसी किसी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आप सीधे चले जाते हो, वहां से आप सामान उठा लेते हो। जो चीज मान लो मार्केट में आपको 100 रुपए की बिकती है, आप अगर होलसेल से भी लोगे तो वो आपको पड़ेगी 60 रुपए 70 रुपए में। तो आप क्या करते हो, उसको बल्क क्वांटिटी में बहुत सारा सामान एक ही बार जो होलसेलर होता है उससे खरीद लेते हो कि हाँ भाई मैं तो बल्क में क्वांटिटी में खरीद लूंगा और इसको अपने इलाके में जाके, कम्युनिटी में जाके, बाजार में जाके इसको बेचूंगा, क्योंकि इसका रेट तो 100 रुपए है। तो आराम से आपका उस एक प्रोडक्ट पे 30 से 40 रुपए बचेगा। होता है, करते हैं लोग या नहीं करते? और अगर आप एज अ कस्टमर भी देखोगे तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है या हमें कोई चीज ज्यादा चाहिए होती है, मैं अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे मार्केट जाते हो, होलसेल मार्केट जाते हो ताकि आपको वो चीज सस्ती मिले। ये एग्री करेंगे सब लोग इस चीज के बारे में?
2: यस
1: करते हैं सर, ज्यादा सामान के लिए तो भी बड़े मार्केट में ही जाते हैं, होलसेलर की।
0: हाँ, तो जैसे आप जाते हो, ऐसे ही जब आप एक धंधा करोगे या बिजनेस करोगे तो आपका वो रेगुलर बन जाएगा जाना, क्योंकि आपका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको सर्वाइव करना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपको बड़े मार्केट या होलसेल मार्केट ही जाना पड़ेगा। वहां से आप सामान लाके जब मार्केट में बेचोगे अपने कम्युनिटी में, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन यही मैंने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, इसलिए बोला ताकि आप लोग समझ जाओ कि जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, शादी भी होते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजें बल्क में लेनी होती है, तो आप खुद भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के से नहीं, लेकिन खुद अपने यूज के लिए भी उसी मार्केट में जाते हो, क्योंकि वहां पे आपको चीजें सस्ती मिलती है। ठीक है, सबको समझ आ गया? अभी हम
1: यस सर,
0: थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें इसमें पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों इसके बारे में बताऊंगा। इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, प्रोसेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ लेबर मशीन एंड प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिखा है, इसका आप नाम से ही देखेंगे तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि इसमें एंड टू एंड चीजें जो हो रही हैं, ये भी शायद स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करा था। एंड टू एंड चीजें जो है वो आप ही कर रहे हो। मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, एंड टू एंड चीजें आप ही कर रहे हो। मतलब कोई भी चीज ले लो, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है व्हीकल, स्टील, मशीनरी, क्लोथ। गीजगढ़ से है कोई यहाँ पर? गीजगढ़ से किसी ने ज्वाइन करा हुआ है?
3: नहीं फैजान, कहीं कोई ज्वाइन नहीं किया गीजर से।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं गीजगढ़ का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकियों को भी पता होगा, जैसे गीजगढ़ में हमारे पास पूरा एक यूनिट सेट हुआ है जिसमें हम रुई से धागा बनाते हैं, धागा से कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े से उसको, अगर हमारे कोई डिजाइनर है तो उससे शर्ट भी बन रही है, जवाहर कट भी बन रही है, वेस्ट कोट भी बन रही है, पैंट भी बन रही है। तो इसका ये है कि एक तरह से सारी चीजें जो है वो हम ही कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रुई से धागा बनाना हो, धागे से कपड़ा बनाना हो, और कपड़े से उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करना हो जो कि हम लोग नॉर्मली आम दिनों में पहनते हैं। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस। अब समझ आ गया सबको?
1: यस सर,
2: यस सर,
0: ठीक है, तो अब कौन मुझे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में एक बार नाम बताएगा सारे?
2: सर मैं रिया बंसल फ्रॉम भवदड़।
0: ठीक है, पहला मैंने क्या बताया था आपको?
2: सर आपने फर्स्ट सर्विस बिजनेस बताया था।
0: ठीक है, सर्विस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: सर इसमें हम कोई भी, जैसे हमें कोई भी, जैसे हम कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं तो वो हमें पैसे देने की जगह कोई सर्विस देता है जिससे कि वो हमें प्रॉफिट हो सके, उसको
0: नहीं
2: भी
0: पैसे,
2: प्रॉफिट
0: हाँ
2: हो सके हमें भी।
0: मतलब बेसिकली क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं खरीद रहे, उसमें ऑलरेडी आपने एक प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, आप जो पैसे दे रहे हो उससे कुछ सामान नहीं मिल रहा आपको, लेकिन उसकी सर्विस मिल रही है।
2: हाँ
0: ठीक
2: सर, जैसे कि अभी गांव लेवल पे, जैसे सर हम गैस वगैरह खरीदते हैं तो उसमें क्या, मतलब वो गैस देते नहीं है लेकिन उसकी सर्विस कर देते हैं वो लोग।
0: है, बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट। और
2: मैचिंग, वो मैचिंग डायनेस बिजनेस जिसमें हम
0: चलो,
2: बना
0: हाँ
2: हुआ सामान खरीदते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही, बना हुआ सामान हम लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिसमें हमें जो मार्केट प्राइस उसका हो है उससे कम पैसों में मिलता है, एंड जब हम उसको
2: सर
0: मार्केट करते हैं तो हम हमें जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। मान लो
2: हाँ
0: कोई
2: सर,
0: चीज़ 10 रुपए की है तो हम उसको बड़े बाजार
2: तीस
0: से, जैसे
2: या
0: आपने
2: फिर
0: बोला,
2: फिफ्टी, हाँ हम उससे पैसे अर्न कर सकते हैं।
0: राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड क्या है? अच्छा कोई और बताओ, आपने तो बोल दिया, बाकी आप कोई और बताओ,
2: ओके सर, थैंक यू।
0: कौन बताएगा?
2: मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम रॉ मटेरियल्स किसी भी मार्केट से जहां पे हमको सस्ता मिल रहा है वहां से उठाते हैं, फिर अपने यहाँ पे मशीन वगैरह लेबर की मदद से हम उसे तैयार करते हैं, और फिर फाइनली जब वो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है तो हम उसे मार्केट में उसके उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितना हमारा खर्च हुआ है और उसके इनकम यानी हमारी जो प्रॉफिट आएगी उसको लगा करके फिर हम मार्केट में सेल करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो, अगर आपको बिल्कुल एक शॉर्ट नोट में उसको याद रखना है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि सब चीजें जो भी वो आपको प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको पूरा एंड टू एंड जो है वो आप ही ने बनाया है, चाहे वो लेबर की मदद से बनाया हो, मशीन की मदद से बनाया हो, जो भी है, मतलब सारा, मतलब छोट आपको कोई चीज शर्ट बनानी है तो आपका उसका कपड़ा वपड़ा जो भी चीज है वो सब आपने ही अरेंज कराए, और फिर उसको एक कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट में उसको तैयार करा और फिर उसको बेचा है आपने। ठीक है जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अभी अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ ली है, उसमें हमने एक चीज देखी होगी, सब चीजें जो कॉमन है वो ये है कि चाहे आप मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर लो या सर्विस बिजनेस कर लो, अल्टीमेट एम जो होता है एंटरप्रेन्योर का इन सब बिजनेस में वो क्या है, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अभी तक ये सबको समझ आ गया?
1: यस सर,
0: ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें लिखा है व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मिशन जो है वो एज कंपेयर टू विजन, मतलब लेमेन टर्म में बता रहा हूँ, मिशन छोटा है और विजन बड़ा होता है। मिशन क्या है, मिशन एक कंटिन्यूस चीज है ताकि आप अपने विजन तक पहुंच सको। तो व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस में हम मिशन के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अ शॉर्ट टर्म गोल ऑफ बिजनेस, इट आउटलाइंस व्हाट बिजनेस वांट्स टू एंड हाउ इट वांट्स टू अचीव इन शॉर्ट स्पैन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप ही की ट्रेनिंग जैसे होती है, अभी एक फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आप एक बेकरी शॉप सेटअप करना चाहते हो, तो बेकरी शॉप अगर आप सेटअप करते हो तो उसका एक मिशन ये रहेगा कि भाई जिस भी कम्युनिटी मैंने खोला है मेरी बेकरी बहुत अच्छी चले, और अच्छी कैसे चलेगी, जिसमें आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, आपकी जो पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, जो बिस्किट्स हैं, जो भी आप उस बेकरी में सामान रख रहे हो वो सारा फ्रेश रहे। ये जो भी चला रहा है प्लीज दीपाली दोखले प्लीज को नहीं करें। तो मिशन में अगर आप, मैंने जैसे भी बेकरी का एग्जांपल ले रहा था, तो अगर आप अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में वो बेकरी खोल रहे हैं, तो आपका मिशन यही रहेगा हमेशा कि डेली मेरा जो सामान है वो एक तो बिक जाए, और वो जो भी मैं बनाऊं वो क्वालिटी प्रोडक्ट रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी दोगे तभी आपके पास लोग आएंगे, वरना कोई भी नहीं आएगा। तो ये तो आपका एक डेली एम रहेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का क्या है कि 24 घंटे का बिजनेस रहता है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक छुट्टी है, आपको तो काम करना ही करना है, और एक साइकिल सी बन जाती है, रोज काम करना है, कमाना है, काम करना है, कमाना है। तो अगर हम बेकरी के एग्जाम्पल में आए, तो उसका काम यही रहेगा कि आप जो भी अपने प्रोडक्ट बना रहे हो वो एक तो फ्रेश बनाओ, अच्छे बनाओ, खाने में अच्छे लगे, लोग उस पे उसके टेस्ट से अट्रैक्ट हो, तभी आपकी चीज बिकेगी। अब अगर हम विजन पे आते हैं, तो विजन के बारे में पढ़ता हूँ। इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस। जैसे मैंने बताया, विजन आपको कंटिन्यूस अपने विजन पे, मिशन पे रहना होगा, तभी आप अपना विजन अचीव कर पाओगे। तो विजन की बात करते हैं, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस, इट आउटलाइंस द पर्पस, गोल, वैल्यू एंड ड्रीम स्टेट ऑफ द बिजनेस। अब इस ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड इसलिए क्योंकि मिशन में जब मैंने बोला कि आपका एक मिशन बन जाता है, आपको अपनी कम्युनिटी में अच्छा से अच्छा सामान सर्व करना है कम्युनिटी को, और विजन क्या है, जब आपको बड़ा बनना है बिजनेस, हमेशा आप जो भी एक मुनाफा कमा रहा है, काम कर रहा है, वो यही चाहेगा ना कि आज अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद मैं इतनी मेहनत करूँ कि वो उसको मैं 20 कर सकूँ, फिर उसको मैं 40 कर सकूँ, फिर उसको मैं 80 कर सकूँ, या जो भी है एक एक रेट पे आप अपना चाहोगे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो उसके लिए वहां पर आपका विजन आ जाता है। जब आप अपनी कम्युनिटी में अच्छा काम करोगे तो आपका अपने आप, और वो नेटवर्क से जब आपकी चीजें फैलेंगी, तो आपका विजन एक तरह से आप अपने विजन पे चलने लगोगे कि आपको अब एक कम्युनिटी के अलावा आपको दूसरे कस्बे में भी या दूसरे एरिया में भी अपना एक ब्रांच खोलनी है, आपको और बढ़ना है, यही चीजें होती हैं विजन के अंदर। अब अभी यहां तक सबको समझ आ गया?
1: जी सर,
0: बाकी
1: इसलिए
0: लोग कम से कम चैट बॉक्स में तो लिख दिए कि हाँ समझ आ गया, यस नो कुछ नहीं, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई भी अभी तक कोई भी चीज है अगर समझ नहीं आई है तो। यस सर, समझ में आ गया सर। आ गया समझ सबको? ठीक है, तो अभी हमने पार्ट वन कवर कर लिया है, अब हम पार्ट टू पे चलते हैं। पार्ट टू में सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब ये क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो होते हैं उसके बारे में आप क्या समझते हो। कोई बोलेगा कुछ? लिखा तो है ही आगे, कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस?
4: सर, इसमें
0: कोई
4: प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हम रॉ मटेरियल लेके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में या फिर अपने लोकल स्तर पर उस प्रोडक्ट में जो मटेरियल लगाया है वो लोकल ही होगा और उस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी एक प्रोडक्ट फिक्स कर ले, एक मिशन फिक्स कर, ये हमारा प्रोडक्ट हमको सेल करना है।
0: ठीक है, पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। इट इंश्योर्स दैट द कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट दैट देन टेक अ डिसीजन अबाउट बाइंग इट। इट कैन बी एडवर्टाइज इजिली इन द मार्केट। तो अभी जैसे अभी कुछ टाइम पहले, 5-10 मिनट पहले, जब हमने एक सर्विस बिजनेस के बारे में बात करा था, तो उसमें ये लिखा था कि जब कस्टमर कोई सर्विस बिजनेस अवेल करता है तो वो कुछ सामान नहीं खरीदता, उसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ सर्विस लेते हो। अब जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है वो ये है कि द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल, मतलब कोई सामान आप ले रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल दिया ही हो गया, अगर आप एक दिवाली का जैसे टाइम है तो एग्जाम्पल दिए का ले लेते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो अगर आप दिया लोगे तो दिए को आप एक वो फिजिकल फॉर्म में है, टेंजिबल चीज है, उसको अगर आप छुओगे आप फील कर सकते हो, हाँ ये कोई चीज़ है, हार्ड सरफेस पे बनी हुई है। तो उससे उसका मतलब हो गया टेंजिबल भी हो गया, और फिजिकल मतलब जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। इट इंश्योर्स कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट, मतलब जिस चीज को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपके हो गए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। एंड देन डिसाइड, अब आप अगर मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आप दसियों तरीके की वैरायटी की चीज़ें देखोगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप दिए लेने जा रहे हो तो हर दुकान पे आपको सेम दिए मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना।
2: नो सर,
0: हाँ, तो आप जब भी कभी दुकान पे जाओगे तो आपको दिए भी 10-10 तरीके के मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे। सिंगल सिंगल 4 दिए रखे होंगे, सिंगल सिंगल 2 का पैक रखा होगा, कहीं कहीं पे 4, 5, 6 दिए एक साथ जुड़े हुए होंगे। अब उसमें क्या लिखा है, इसीलिए उसने एक लिखी है ये चीज़, इट एश्योर्स दैट कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोडक्ट एंड देन डिसाइड अबाउट बाइंग। अब उसमें से आप उसको टच करोगे, फील करोगे, उसकी क्वालिटी देखोगे, मटेरियल देखोगे किस तरीके का लगा, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या चीज बाय करनी चाहिए। इट कैन बी एडवर्टाइज इजिली इन द मार्केट। तो यहां तक अभी सबको समझ आ गया या नहीं आया?
2: यस
1: यस
2: सर,
1: यस सर।
0: चलो ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बारे में कौन बताएगा मुझे जो मैंने अभी समझाया?
1: मैं
0: बताओ जल्दी।
1: दयाराम बोल रहा
0: दयाराम,
1: हूँ।
3: दयाराम तुमको छोड़ करके, मैं देख रहा हूँ कि दो ही लोग बोल रहे हैं, बाकी भी बोले। दयाराम तुमको
0: हाँ,
3: छोड़ करके कोई और बोलना चाहे तो बोले, बहुत सारे लोग हैं।
0: अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दिए आप लोग, मैं दोबारा समझा दूंगा।
2: सर मैं खुशी जैन।
0: हाँ
2: सर, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में ये होता है कि किसी
0: कहाँ
2: भी
0: से हो आप,
2: चीज
0: कहाँ से हो?
2: को हम, सर समरानिया से, 12 डिस्ट्रिक्ट से, जैसे अपन किसी चीज को प्रोडक्ट है उसका अपन फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी क्वालिटीज मालूम कर सकते हैं, और अलग अलग तरह टाइप्स के होते हैं।
0: हाँ ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जिसको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद आपने हाथों से पता कर सकते हैं, आंखों से देख के कि हाँ भाई ये क्वालिटी कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये हमें लेना नहीं चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसका वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। ठीक है, और कोई कोई बोलना चाहेगा प्लीज? अब बारान के अलावा प्लीज और लोग भी हैं यहाँ पर, वो बताएं। सेम चीज़ अभी उन्होंने आपके सामने बोली भी है, मैंने भी आपको समझाई है। कौन प्लीज कोई अनम्यूट करके बोली।
3: महाराष्ट्र से भी लोग हैं, तो महाराष्ट्र से कोई बोलना चाहे तो।
0: जब हम ये आपको सेशन देंगे तो हम ये चाहते ही नहीं कहीं पे भी आप लोगों को कोई डाउट रहे, हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे वो प्लीज़ आप अच्छे से समझ के आगे कम्युनिटी में बताइए। इसीलिए हम लोग ये सब सेशन ले रहे हैं आप लोगों के साथ।
5: हेलो सर,
0: जी
5: मैं
0: जी
5: रत्नावली महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी,
2: हमें काफी, मतलब आप काफी अच्छे से समझा रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ रही है, जैसे बिजनेस
0: चलिए। अच्छा,
2: क्या
0: आपको
2: क्या
0: समझ आ गया सारा? एक
2: है,
0: बार
2: सर्विस
0: जो मैंने स्टार्टिंग में
2: बिजनेस,
0: बताया था टाइप्स ऑफ बिजनेस, एक बार वो बताएंगे कौन कौन से होते हैं? दो तो देखो सामने लिखे हैं।
2: एक सर्विस बिजनेस था, एक
0: हाँ
2: मर्चेंडाइजिंग बिजनेस था, मर्चेंट डिजाइनिंग, और एक
0: हाँ
2: मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था।
0: ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा सा बस, जल्दी जल्दी।
2: जी सर,
0: हाँ
2: सर्विस बिजनेस वो होता है जिसमें हम सर्विस देते हैं, जैसे फ्रिज रिपेयरिंग का हो, या फिर ब्यूटी पार्लर का भी हम बोल सकते हैं, तो
0: हाँ बिल्कुल
2: हम
0: बिल्कुल राइट,
2: होम सर्विस भी दे सकते हैं, और जो हमारे पास आते हैं कस्टमर उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
0: ठीक है, थैंक यू
2: और
0: सो मच।
2: जो
0: ऐसे ही
2: मर्चेंट
0: थोड़ा सा
2: डिजाइनिंग है।
0: बस बस
2: जी
0: बस
2: सर,
0: आप बस बस ठीक है ठीक है, आप बाकी बाकियों को भी मौका देते हैं। थैंक यू सो
2: जी
0: मच।
2: सर,
0: ऐसे ही आप लोग प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा सा बोलेंगे, अच्छा लगेगा, हमें भी पता लगेगा कि आपको समझ आ रही हैं चीजें, क्योंकि
2: जी
0: ये आपको
2: सर,
0: मॉड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों को ये सेशन आगे लेने होंगे बेनिफिशरीज के साथ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पार्ट टू में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कवर करा है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग आगे जब इस चीज़ को बताएंगे बेनिफिशरीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब आपको कौन कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और कोई भी आप काम शुरू करते हैं या कोई जॉब भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी जो स्किल होगी वो अगर आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच होगी, या आपकी जो स्किल होगी वो जिस बिजनेस में काम आएगी, आप वही काम करेंगे, आप वही जॉब करेंगे, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं बनता कोई जॉब भी करने का या बिजनेस करने का। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कम्युनिकेशन, एक एंटरप्रेन्योर के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आपकी जो डीलिंग होती है, वो इंटरेक्शन जो होता है, वो आपका लोगों से होता है, कस्टमर से होता है, एंड यूजर से होता है, जो आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे, ड्यूरेबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि वो प्रोडक्ट उनसे आप वो लोग आप लोगों से ये प्रोडक्ट क्यों लें, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं तो मानता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, देखो इम्पोर्टेंट सारे ही होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस किस जगह पे फिट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे अभी हम इतने टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से, कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसमें एक लागत लगती है। अब आपको जो समझ आ रहा है कि भाई हमने एक एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें 6 रुपए की लागत आई है, तो जाहिर सी बात है आपको अपना मुनाफा भी कमाना है, तो उसमें आप 2-4 रुपए ऐड करके तब उसका एक मार्केट प्राइस निकालोगे। अगर आपने मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइम उस चीज़ को करा ही नहीं, आपने मान लो लागत तो लगा ली, लेबर कॉस्ट लगा ली, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका रेंट नहीं लगाया, बिल्डिंग का या उस जगह का रेंट नहीं लगाया, तो वो क्या है? आपका आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल हो गया ना, क्योंकि आपने उस रेंट को, एक एक चीज़ जब आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है कि एक एक चीज़ आपको उसमें डालनी पड़ेगी। आप जो एक रॉ मटेरियल लेकर आए उसका, जब कहीं से तो रॉ मटेरियल लेकर आओगे ना, जब वो आएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, आपको उस ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी उस चीज़ में आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। लेबर की कॉस्ट हो गई, लेबर का टाइम हो गया, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वो भी आप उसमें डालोगे, रेंट भी हो गया। तो आपको इसीलिए आपको हर चीज को बहुत ही ध्यान से लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक ये 2 पॉइंट सबको समझ आ गए? ठीक
1: यस
0: है, तो अभी तक कोई डाउट? आप लोग, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज बता रहा हूँ आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट भी है इसमें, तो वो आप लोग भी ऐड कर सकते हो, आपके इनपुट भी बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप इस सेशन में दोगे। इसीलिए मैंने बोला कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो चीज बताई है उसका और कोई और तरीके से भी मतलब आ सकता है, तो आप भी उस चीज़ को शेयर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी वो चीज़ पता लगेगी और इवन और बाकी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे 20-22, उनको भी ये चीज पता लग जाएगी। सिर्फ मेरी नॉलेज इस चीज में काम नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं ये भी चीज ऐड कर सकते हैं, तो आप वो भी बताइए प्लीज। तो अभी हमने दो चीजें कवर करी हैं, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर बिजनेस, उसमें हमने कवर करा है अभी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड आ गया प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जब भी आप कोई चीज करोगे उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों क्यों होता है, एक बार कोई एक्सप्लेन करेगा इस चीज को, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है?
5: सर, अगर हम अगर अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो हमारा बिजनेस फेल हो सकता है।
0: हाँ मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या क्या ऐसा और क्या करना है, और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
5: पहले सर मार्केट रिसर्च वगैरह सारा कुछ करना चाहिए। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो
0: हाँ
5: पहले उस चीज का जैसे लोकल लेवल पे या बड़े लेवल पे उसको देखना चाहिए कि ये हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, और
0: राइट
5: इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, कितनी नहीं है। ये सारी चीजें हमें क्या पहले सर्च करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल। और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें?
3: इसके
0: और
3: साथ
0: सर
3: जैसे
0: इसमें
3: ट्रांसपोर्टेशन का
0: बहुत
3: खर्चा था,
0: इम्पोर्टेंट हो
3: भंडारण
0: सकते
3: का,
0: हैं सर।
3: सर ये देखना पड़ता पड़ेगा लोडिंग बोर्डिंग पर कितना बैन होगा, किस जगह पर आएगा, उसके भंडारण की क्या व्यवस्था होगी।
0: सही बात है।
5: सर इसमें एक और पॉइंट है सर, मैं ऐड कर सकते हैं इसमें,
0: क्या सर?
5: स्पॉट और इम्पोर्ट सर, ये बहुत नेसेसरी है सर बिजनेस ग्रोथ ग्रोथ के लिए सर।
0: क्या कर सकते हैं?
5: एक स्पॉट और इम्पोर्ट एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं सर इसमें जो
0: बिल्कुल
5: बिजनेस।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने उसको इसलिए ऐड नहीं कर रखा क्योंकि अभी जो हम फिलहाल जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो एक छोटे स्तर पे काम शुरू करने की बात कर रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर आप इसका एडवांस मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें हर चीज़ लिखी रहती है, ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, और अगर आप एक
5: ये
0: प्लानिंग कर लोगे तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्लानिंग करके रखोगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती है।
5: और
0: आप
5: प्रोडक्ट
0: इस
5: की
0: चीज़ों
5: एक्यूरेसी भी सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी दोनों चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और किसी को कोई चीज़ ऐड करनी है?
5: जी सर, एक
0: हेलो
5: इसमें ये है, जैसे हम मान लो फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये भी जरूरी होता है कि जैसे हमारे पास लाइसेंस है उसका है नहीं है, सारा कुछ ऐसे भी प्लानिंग करना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मीना जी आप कुछ बोल रही थी?
6: जी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
6: हाँ, जैसे हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें काम कौन करेगा, कितनी
0: राइट
6: महिलाएं उस काम को करने के लिए होंगी, फिर उसमें जो भी चीज हम बना रहे हैं
0: राइट
6: उसमें कितनी लागत आएगी, कितना फिर उस चीज से हमको प्रॉफिट होगा,
0: राइट
6: ये भी
0: तो
6: देखना
0: ये
6: पड़ेगा हमको भी, क्योंकि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सी उसमें ऐसी महिलाएं होंगी जो इस बिजनेस को करेंगी,
0: बहुत
6: तो
0: बढ़िया। तो
6: वो
0: मतलब आप
6: सारा।
0: ये कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग में हमें रिसोर्स मैनेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कभी पता
6: जी
0: लगा डिमांड एकदम से बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल, क्यों मैं बार बार दिए का एग्जांपल ले रहा हूँ, दिवाली के टाइम पे दिए की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, खपत होती है। तो मान लिया आपका पूरे साल का दिए का काम है, लेकिन दिवाली पे ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उस 1-2 महीने पहले से आप ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मेरे पास महीने में 1,000 दिए का ऑर्डर आता है तो दिवाली पे वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना अमीना जी? ठीक
6: जी सर।
0: है जी। और फिर हम आगे बढ़े या इसमें कुछ आप लोगों को और ऐड करना है?
6: नहीं सर, बढ़ सकते हैं आगे।
1: सर इसमें टाइमिंग का सर वो समय अवधि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारे
0: बिल्कुल
1: दिवाली नजदीक हो, हम उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते दिवाली निकल जाए, तो एक टाइमिंग
0: बिल्कुल
1: का भी बहुत सर बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: राइट राइट बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये आपके मैनेजमेंट में आ जाते हैं, चाहे आप वो फाइनेंशियल लें या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लें, दोनों को ऑलमोस्ट ये दोनों इंटीग्रेटेड ही रहते हैं। अच्छा सेकंड फोर्थ पॉइंट जो है वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्यों आपके अंदर ये डिसीजन मेकिंग की स्किल होनी चाहिए, इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा? मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे डिसीजन बहुत सही टाइम पे और सही तरीके से डिसीजन लेना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो वो आपके बिजनेस को नीचे भी ले जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सब जो है सारा का सारा रिस्क पे होता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि रिस्क जरूर होता है, लेकिन इसीलिए फिर उसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उसमें क्यों डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, क्योंकि डिसीजन जो होते हैं वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको जो अपना मिशन विजन है, जो आपका गोल है, आप वो तभी अचीव कर सकते हैं जब आप उसके जो डिसीजन है वो बहुत टाइमली लें और बहुत सोच समझ के लें। ऐसा बेकरी करेंगे इससे या नहीं करेंगे? एंड डिसीजन मेकिंग ही चीज होती है जिससे आपके सारे फाइनेंस या लोग कब रखने हैं, कब हटाने हैं, क्या करना है, कितने लोगों को क्या काम देना है और टाइम आर एलोकेटेड, इसको हम उसी हिसाब से फिर अगर आप करेक्ट डिसीजन लोगे तो वो इसी में आता है। आपका रिसोर्स एलोकेशन जिसे कह सकते हैं वो चीज होती है कि कोई भी बिजनेस है, कोई स्टार्ट आप कुछ कर रहे हो, आप अगर डिसीजन लोगे वो आपका ही इसी इसीलिए लिया जाता है कि जो आपके सारी पेमेंट हैं, फाइनेंसेस हैं, लोग कितने काम करेंगे या नहीं करेंगे, किस टाइम पे कितने लोग होंगे, क्या टाइम रखना है, तो वो आपका इफेक्टिव डिसीजन से ही निकल कर आता है। लास्ट पॉइंट इसका है जो स्किल्स में हम लेते हैं वो आता है आपका नेटवर्किंग का। ये आपकी बिजनेस में इसलिए जरूरी होती है क्योंकि भाई आपका बिजनेस तभी बढ़ सकता है जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, और क्योंकि जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तो आप लोगों से कोई चीज खरीदेंगे कैसे, या आपके बिजनेस को नहीं जानेंगे तो लोग आपके पास आएंगे कैसे, कस्टमर कैसे आएगा, क्वेरी तक नहीं लेंगे लोग अगर आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत जरूरी होता है कि जब भी आपके कोई चीज आप स्टार्ट करो तो कस्टमर को जो है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है, ताकि अगर आपसे कोई सामान ले, प्रोडक्ट ले, या आप कोई सर्विस का काम कर रहे हैं, सर्विस का बिजनेस है, अगर कोई सर्विस ले तो वो चीज आपसे इतना खुश हो जाए कि जब नेक्स्ट टाइम कहीं बात हो या कुछ आपके बिजनेस को वो जरूर लोगों में रेकमेंड करें। इस पे कोई और कुछ बोलना चाहेगा नेटवर्किंग पे? क्योंकि हम तो ये काम करते ही है ना, आपके पास अगर एक बैच बनता है ट्रेनिंग का तो कितने हम स्टोरीज देखते हैं जिसमें बेनिफिशियरीज हमें सक्सेस स्टोरीज में ये बोलते हैं कि हमें इस ट्रेनिंग रीड सेंटर के बारे में, रीड लाइब्रेरी के बारे में अपने दोस्तों से पता लगा कि वो वहां जाते थे। तो इस पे कोई कुछ बोलना चाहेगा?
5: जैसे सर कि हम नेटवर्किंग में इम्प्रूवमेंट लाने के सर सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो मॉड्यूल का नाम है वो यही है, एंटरप्रेन्योरशिप इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि फर्स्ट सेशन था, हम बिल्कुल इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल गए हैं। आपने देखा होगा हर कोई आजकल घर से भी अगर काम कर रहा है तो उसने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, इन सब चीज़ों में लोग रील्स बना बना के डालते हैं। तो हम इसको नेटवर्क को सोशल मीडिया के थ्रू भी हम बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, इसके बारे में पहले पढ़ता हूँ फिर आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द क्लाइंट एंड कस्टमर नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू बाय और सेल। इट इन्फॉर्म्स कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस यू आर सेलिंग टू देम एंड हाउ इट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्यों कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम स्किल्स की बात कर रहे थे तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा था वो यही है कि लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपसे कस्टमर पूछेगा कि मैं ये चीज़ क्यों खरीदूं, तो आपके पास उसके आंसर आने होने चाहिए। क्योंकि आजकल एक ही प्रोडक्ट के, सिर्फ आप ही नहीं बैठे मार्केट में कि आप ही एक चीज़ बना रहे हो, मार्केट में उसी प्रोडक्ट को लेके 100 ही व्यापारी बैठे होंगे। इवन अगर आप जिस जैसे आप विलेज लेवल के स्तर की बात करोगे तो आप जो चीज़ बेच रहे हो, बराबर वाला भी आपकी दुकान के बराबर में जो बैठा है वो भी वो चीज़ बेच रहा है, बस थोड़ा सा फर्क होगा कुछ ना कुछ। तो उसमें आपको कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट उससे कैसे अलग है, और आप उससे ना लेके मेरे से लोगे तो उसमें क्या फायदा होगा। तो ये चीजें, ये इसको कहते हैं यूनिक सेलिंग प्राइस, कि आपका जो वो है ये मतलब क्यों उससे अलग है? यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आपको लोगों को बताना आना चाहिए कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट जो आप मेरे से अगर लोगे तो ये दूसरे प्रोडक्ट से इसलिए अलग है, इसमें ये, और आप अपनी तरफ से क्या बेनिफिट दे सकते हो उसको कि बाई चांस अगर इसमें कुछ खराबी आ गई तो आप मेरे पास ला सकते हो। सर्विस भी साथ साथ देनी दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ भाई, अगर आपके आप इसको ले जाते हो, अगर 3 महीने 6 महीने में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट में तो

0: आप कस्टमर को किस तरह से हैंडल कर रहे हो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में, जो भी जर्नी होती है इसकी, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, बाकी फिर मैं थोड़ा से क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, कोई सा भी पॉइंट के बारे में बता दो।
1: जी सर, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेल होगा कि नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट की मतलब प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे सेल होगा कि नहीं होगा, और इसमें जितना जितना हम खर्चा कर रहे हैं उसमें प्लस करके इसमें कुछ मुनाफा होगा या नहीं होगा, ये सारा कुछ आता है इसमें।
0: ठीक है, ठीक है।
1: तो
0: और ऐसा ऐसा कोई काम कुछ मतलब अभी तक किए हैं आपने? क्योंकि आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग करी है, बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा हो जो इसमें जो सारी चीज जो भी बताया गया वो इन्वॉल्व हो उसमें, जैसे लीडरशिप भी हो, फाइनेंशियल भी हो, डिसीजन मेकिंग भी हो, प्रोडक्ट जो सर्वे वाली बात है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया अभी तक इन
1: जी
0: सब
1: सर,
0: चीज
1: हमें
0: को अप्लाई करते हुए?
1: टेक्नोलॉजी
0: क्या बनाया?
1: मैनेजमेंट भी है, प्लानिंग भी है, नेटवर्क भी है,
0: पुष्पिंदर तुम्हारा आवाज
1: सेलिंग
0: क्लियर नहीं है,
1: भी
0: पुष्पिंदर तुम्हारा
1: है।
0: आवाज क्लियर
1: आवाज
0: नहीं है। आवाज कट रहा है पुष्पिंदर आपकी। हाँ कुछ लता बताओ, कोई भी क्या
1: जी
0: ये?
1: सर, हाँ इसमें हमने दरियां भी आती हैं सर इसमें, और हमारे पिकल्स भी आते हैं सर, क्योंकि जो हमने जो नींबू का अचार बनाया था उसमें हमने वो क्वालिटी भी अच्छी आई थी, और वो हमारा इतना जितना बनाया था वो यहीं से सेल हो गया, और उसमें हमने कुछ मुनाफा भी अपने सेंटर के लिए किया है।
0: वेरी गुड। और बाकी और लोग कहाँ हैं? ये तो 5 पॉइंट हैं, एक को सुमलता ने एक्सप्लेन कर दिया प्लानिंग का, बाकी और कौन? नेटवर्किंग कौन बताएगा? बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी खत्म हुआ है।
1: स्वाति जी सर, गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून। आप ये जो 5 पॉइंट बताए हैं ना, तो आप अगर प्रोडक्शन किए हो, कुछ चीजें सेल की हो, तो ये कौन सा
1: जी,
0: पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहोगे? आपने कैसे किया था उस चीज का मैनेजमेंट?
1: सर इसमें मैं डिसीजन मेकिंग का एक्सप्लेन करना चाहूंगी।
0: बिल्कुल
1: बाकी
0: बिल्कुल
1: सभी
0: बताइए।
1: पॉइंट्स भी जरूरी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग भी है कि टाइम पे, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट के मामले में जब भी हम सोचते हैं तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने की भी बात करते हैं, या फिर हमारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे हो ये सोचते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है या फिर टाइम पे उसके सेम ही प्रोडक्ट अगर अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे मार्जिन कितने रहेगा, हमने जो बैकग्राउंड में जो भी पैसा लगा है वो भी निकलना चाहिए, हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए, या फिर एंड टाइम पे अगर हमें मार्केट चेंज करना पड़े, हमें मार्केट स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी पड़े, तो इस तरीके के छोटे छोटे डिसीजन हमें लेना आना चाहिए, और उस बात का हमें ख्याल भी रखना चाहिए कि प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए हर बार, कि अगर ये नहीं हुआ तो उस टाइम पे मैं ये डिसीजन लेके इस गुस्सा रहूंगी। थैंक यू सर। जी
0: ठीक है,
1: सर,
0: तो बस एक छोटा सा नीचे लिस्टिंग, जैसे अभी कम्युनिकेशन के बारे में बात करी हमने, तो पार्ट टू हम खत्म कर देंगे आज, आज पार्ट टू तक ही रखेंगे। तो बस ये लास्ट है, इसका ये जो है लिखा हुआ, इसमें लिखा है, डू यू थिंक लिसनिंग इज वाइटल फॉर कम्युनिकेशन? मतलब आप कोई चीज अगर कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट है तो आप ही हमेशा उनको बताओगे इस चीज के बारे में कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, इसलिए अलग है, मैं ये चीज़ देता हूँ, मैं उनसे इतनी अच्छी सर्विस देता हूँ बाकी लोगों से। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, वो आता है लिसनिंग टू द कस्टमर। क्योंकि आप भी अगर कोई काम कर रहे हो तो आप भी एक वैरायटी बेच रहे होगे ना, हमेशा जो कस्टमर जाएगा वो वैरायटी पे ही जाएगा, जिसमें आप एक अगर कोई चीज़ आपसे लेना है तो आप उसमें वैरायटी रखोगे कि ये वैरायटी है, अगर आप इस क्वालिटी भी होती है, ये लो क्वालिटी है, ये मीडियम क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, इसी हिसाब से उसके रेट्स भी डिसाइडेड होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी है तो रेट भी ऊपर होगा, मीडियम क्वालिटी तो रेट ठीक ठाक होगा, लो क्वालिटी है तो प्राइस भी कम होगा, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ भी कम होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लिसनिंग, अब मैं पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, वी हैव टू लिसन टू आर कस्टमर्स नीड एंड वॉन्ट एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट इज टू बी अलाइंड विद द कस्टमर। तो हमेशा आप अपना कोई प्रोडक्ट है वो सीधे कस्टमर पे नहीं थोप सकते, आपके पास जब कस्टमर आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी नीड लेकर आएगा आपके पास कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसी हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट दिखाओगे। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप चीज़ें दिखा रहे होते हो लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को वो चीज़ समझ नहीं आती, तो वहां पे